नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव के रंग की करते हैं। आपसे देखिए, पांच दिनों के बाद गणेशोत्सव का श्री गणेश होने वाला है। शहर शहर गजानन की आस्था के रंग दिखने लगे हैं और शहर शहर मूर्तिकार गजानन की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। गणपति पंडालों की सजावट भी अंतिम दौर में पहुंच गई है। घर गलियों में मोदक की खुशबू बिखरने लग गई है। नागपुर से लेकर अकोला तक गणपति उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर शहर बप्पा की भव्य आगमन की यात्राएं चल रही हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज और नाचते झूमते भक्तों के बीच में बप्पा पधार रहे हैं। 14 सितंबर को बेहद श्रद्धा के साथ गजानन की स्थापना की जाएगी। गणपति बप्पा के आगमन को लेकर हर उम्र के भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। पूरा माहौल भक्तिमय है। जैसे जैसे गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आ रहा है, मूर्ति निर्माण से जुड़े कारीगर बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। तो वहीं बप्पा के प्रिय मोदक को बनाने का काम भी जोर शोर से शुरू हो चुका है। गणपति उत्सव की तैयारियों से जुड़ी तमाम तस्वीरें आज आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि बप्पा की भव्य आगमन की

अब जो स्वयं गणराज कहलाते हैं उनका स्वागत किसी राजाधिराज से कम क्या ही होगा। सो नागपुर वालों ने अब की बार वही करने की ठानी। गणेश उत्सव से पहले नागपुर में सार्वजनिक पंडालों में गणपति बाप्पा का आगमन शुरू हो चुका है। ये तस्वीर है नागपुर के महल इलाके में विराजमान होने वाले गणपति बाप्पा की। महल के दक्षिण मूर्ति चौक उत्सव पंडाल में बाप्पा को धूमधाम से लाया गया। डीजे ढोल नगाड़ों की धुन के साथ सैकड़ों लोग अपने लाडले बाप्पा का स्वागत करने पहुँचे। पंडाल को पहले ही सजाया जा चुका है, बस एक बाप्पा की कमी थी, अब वो भी पूरी हो गई। सुनागपुर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं। अब 14 सितंबर को गणनायक पूरे विधि विधान के साथ अपने भव्य पंडाल में स्थापित कर दिए जाएंगे और उसके बाद 10 दिनों तक बाप्पा की भक्ति का ये उत्सव यूं ही चलता रहेगा। नागपुर क्या, इन दिनों तो शहर शहर यही सूरत दिख रही है। ये तस्वीर गुजरात के सूरत की है। सूरत में गणेश उत्सव की रौनक नजर आने लगी है। गणेश उत्सव शुरू होने से पहले शहर के अलग अलग इलाकों में गणेश प्रतिमाओं के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है। गणेश पंडालों की चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले सूरत की इस गणेश आगमन यात्रा को देखिए।

शहर की गणेश आगमन यात्राओं में इस बार पारंपरिक आयोजनों के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों की अनोखी कलाकृतियां और आकर्षक प्रस्तुतियां लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। तस्वीरें सूरत के भटार इलाके में साई युवक मंडल की ओर से निकाली गई भगवान गणेश की भव्य आगमन यात्रा की है। इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और शहरवासी शामिल हुए। गणेश प्रतिमा के आगमन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आगमन यात्रा में अलग अलग धार्मिक और पौराणिक पात्रों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया।

0: कलाकारों ने अलग अलग रूप धारण कर नृत्य नाटिका का मंचन किया। कोई कलाकार राक्षस के रूप में नजर आया तो किसी ने भगवान का स्वरूप धारण कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आगमन यात्रा के दौरान भगवान शिव के तांडव की विशेष प्रस्तुति भी हुई। कलाकार भगवान शिव का स्वरूप धारण कर तांडव करते नजर आए। उनके चारों ओर जलती आग ने इस प्रस्तुति को और भी प्रभावशाली बना दिया। आगमन यात्रा में भगवान के 12 अवतारों को भी अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया। गणेश चतुर्थी से पहले भव्य आगमन यात्रा का आयोजन करने के मुख्य रूप से दो उद्देश्य थे। एक तो श्रद्धालुओं को गणेश उत्सव की धार्मिक भावना से जोड़ना और दूसरा भारतीय संस्कृति और पौराणिक परंपराओं की भव्य प्रस्तुति। और वाकई कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों ने पूरी यात्रा को एक अलग ही रंग दे दिया। लोगों ने कलाकारों की प्रस्तुतियों को अपने मोबाइल फोन में कैद किया और बड़ी संख्या में लोग इन दृश्यों को देखने के लिए यात्रा के मार्ग पर मौजूद रहे। सूरत के भटार इलाके में इस साल गणेश उत्सव के लिए एक और खास तैयारी की जा रही है। यहाँ गणेश मंडल की ओर से ओडिशा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर भव्य गणेश पंडाल तैयार किया जा रहा है।
1: कोणार्क जो सूर्य मंदिर है उसकी थीम पर इस बार भगवान गणेश की स्थापना की जानी है। और मूर्ति की अगर हम बात करें तो मूर्ति का आगमन हो चुका है। जिस मूर्ति के आगमन के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे और कई राज्यों से कलाकार आए थे, उन्होंने कई अपनी अलग अलग थीम पर यहाँ पर नृत्य किया था, अपना प्रदर्शन किया था। और जो आप मूर्ति देख सकते हैं वो यहाँ पर अभी रखी हुई है भगवान गणेश की, और जब यहाँ पर स्थापना की जाएगी तो गणेश उत्सव के दौरान हजारों की संख्या में भक्त भगवान गणेश के दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो ये जो मूर्ति है वही इस पंडाल में विराजमान की जाएगी। फिलहाल मूर्ति का आगमन हो चुका है।
0: हर साल यह गणेश मंडल एक अलग और अनोखी थीम पर गणेश पंडाल तैयार करवाता है। इस बार आयोजकों ने ओडिशा के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर को अपनी थीम बनाया है।
2: साईराम योग मंडल पिछले 28 सालों से बड़े बड़े थीम पे आयोजन करता है। पिछले साल वनतारा थीम, उसके पहले शीश महल, उसके पहले जयपुर महल, ऐसे अलग अलग महलों में सूरत के अंदर बहुत फेमस है। इस साल हम लोग ओडिशा का कोणार्क मंदिर का भव्य आयोजन कर रहे हैं और हमने शोभा यात्रा पिछले दिनों बहुत भव्य आयोजन किया था, जिसमें हजारों की तादाद में हमने शोभा यात्रा का बहुत बड़ा आयोजन किया था, जिसमें महाराष्ट्र से ढोल पटक आए थे, महाराष्ट्र के इवेंट द्वारा समुद्र मंथन का कार्यक्रम किया था, उसके बाद गणेश वंदना की थी।
0: आयोजकों ने इस पंडाल का 3D वीडियो भी जारी किया है, जिसमें पंडाल का प्रस्तावित स्वरूप दिखाया गया है। पंडाल तैयार होने के बाद गणेश उत्सव के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। नागपुर से योगेश वसंत पांडे और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, बात जब गणपति के आगमन की हो रही हो तो ये कैसे मुमकिन है कि मोदक का जिक्र ना हो। दरअसल मोदक को गणपति का प्रिय भोग माना जाता है। वैसे तो मोदक किसे पसंद नहीं होते, लेकिन गौरी पुत्र को मोदक से विशेष प्रेम है। गणपति से जुड़ी कहानियों में वो माँ गौरी से लेकर देवी अनुसुईया तक सबके हाथों से मोदक पाते रहे हैं और बप्पा का ये मोदक प्रेम उनके भक्तों को भी खूब भाता है। तो चलिए, एक वक्त था, ये भी आपको बता देते हैं, जब गणेशोत्सव में मोदक बनाने का चलन महाराष्ट्र तक सिमटा था, लेकिन देखते ही देखते मोदक देश के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच गया। मुंबई से लेकर दिल्ली तक मिठाई की दुकानों में गणेश चतुर्थी के मौके पर लड्डू के साथ साथ अब मोदक भी खूब बनने और बिकने लगा है। दिल्ली के चांदनी चौक की एक ऐसी ही दुकान मौजूद है जहां के लिए दावा किया जाता है कि मोदक का चस्का दिल्ली वालों की जुबान पर वहीं से चढ़ा। दरअसल 40 साल पहले इस दुकान के मालिक महाराष्ट्र के दौरे पर गए तो कुछ नया करने की चाह में लौटते समय मोदक बनाने के सांचे वहां से लेते आए। फिर क्या था, चांदनी चौक में मोदक बनने का सिलसिला चल पड़ा और अब यहां लगभग 25 तरह के मोदक तैयार किए जाते हैं। चावल, काजू, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट के अलावा स्ट्रॉबेरी, हेजलनट, कलाकंद के स्वाद वाले मोदक भी यहां पर मौजूद हैं।

0: बप्पा आ रहे हैं और बप्पा के आने की तैयारियां हर तरफ दिखाई पड़ रही है। आज हम आपको दिल्ली के दिल चांदनी चौक में लेकर आए हैं और चांदनी चौक की उस दुकान पर जहां पिछले 35 साल से लगातार मोदक तैयार किया जा रहा है, बप्पा का फेवरेट भोग तैयार हो रहा है। आज भी हम आपको यहां पर अलग अलग तरह के मोदक की तैयारी दिखा रहे हैं, वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं, उनकी मेकिंग दिखा रहे हैं। किचन में हम मौजूद हैं और आपको बात करवाएंगे उन लोगों से भी जो पिछले 35 सालों से लगातार इस काम में लगे हुए हैं। ये दुकान 1910 के आसपास शुरू हुई थी, लेकिन ये इस दुकान के उन लोगों का इनोवेशन ही था कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नई चीज़ लाई जाए जो कि नॉर्थ इंडिया में भी बहुत तेज़ी से चल जाए। और नए के नाम पर वो पहुँचे महाराष्ट्र और वहाँ से लेकर आए ये सांचा। ये वो पहला सांचा है जो इस दुकान के पूर्वज लेकर आए थे मोदक बनाने के लिए। ये सांचा आया और तब से यहाँ पर बप्पा का फेवरेट भोग मोदक बनना शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक ये लगातार ऐसे ही बन रहा है। 25 से ज़्यादा फ्लेवर ये लोग खुद बनाते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल फ्लेवर ऑर्डर भी करता है तो उसकी पसंद का मोदक भी यहाँ पर तैयार हो जाता है। हम भरत के किचन में हैं, तो कौन कौन सी वैरायटी है इसमें, कितने तरह के मोदक हैं?
1: सर देखिए, यहाँ पे शाम स्वीट्स के अंदर हम डिफरेंट तरीके के मोदक बनाते हैं। वैसे तो इंडिया हमारा रिच ऑफ कल्चर्स, टेस्ट एंड अलग अलग जगह के अलग अलग स्वाद हैं। जो मोदक असल बनना शुरू हुआ था महाराष्ट्र से, साउथ साइड से वो बनना शुरू होता है सब अनाज का, बट दिल्ली में आते आते उसके फ्लेवर्स वेरिएशंस चेंज हो गए। जैसे अब आप यहाँ पे इस थाल में देख पा रहे हैं, एक मोतीचूर का है, केसर का है, मोती बूंदी का है, स्ट्रॉबेरी का है, आपका खोए का है, पेड़े का है, ये आपका कीवी का हो गया, मोटे गोले का हो गया, अल्फांसो विद चॉकलेट हो गया, कलाकंद का हो गया, ये केसर मिक्स हो गए। इस तरीके से वेरिएशंस हैं अलग अलग तरीके के, और इसके अलावा ना जाने कितने किस्म के बन जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट है और एक इनोवेशन है जो जिस तरीके से जैसे बना सके। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हमारे को इस तरीके का मोदक चढ़ाने का मन है, क्योंकि भगवान को तो वही अर्पित किया जाता है ना। जो भगवान को एक ही चीज़ कब तक खिलाएंगे कहते हैं ना बहुत से लोग, तो इसलिए जो सामने वाले का स्वाद हो हम वो चीज़ बनाने में सक्सेस करते हैं उसको, ताकि वो अपने मन के हिसाब से वो पूरा कर सके अपनी पूरी श्रद्धा भाव से।
0: जो भाव का है वो भगवान का है, सिंपल सी बात है। तो अभी जब मोदक हम लोग बना रहे हैं, 35 साल पहले जो यात्रा शुरू हुई थी उस समय भी क्या वजह थी कि मतलब, क्योंकि तब यहाँ पर गणेश पूजा उस लेवल से नहीं होती थी, लोग जानते नहीं थे, कैसे इसकी शुरुआत हुई?
1: इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई थी, अब जैसे पुराने लोग बताते हैं, इसमें पुराने मतलब हमारे बड़े बताते हैं, गणेश चौथ तो गणेश चतुर्थी जिसको शॉर्ट में गणेश चौथ बोलते हैं, तो इसको तो ये तो पहले ही मनाई जाती थी, मगर दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ भगवान को लड्डुओं का भोग लगाते थे। तो फिर हमारे बड़े गए, कभी बाहर घूमने गए होंगे या किसी कारणवश गए होंगे किसी काम से, तो उन्होंने वहाँ पर कुछ डिफरेंट चीज़ देखी, तो वहाँ से मोदक बनाने का सांचा लेके आए, वहाँ से रेसिपी लेके आए, वहाँ से कारीगर को लेके आए, वो बनाना सीखा, वो रेसिपी आज तक है हमारे पास, और वो सांचे भी हैं। जैसे ये बहुत पुराने सांचे हैं, मतलब मैं अगर गलत नहीं हूँ तो करीबन 40 से एक साल तो हो गए होंगे इस सांचे को, जो आज भी हमने संभाल के रख रखा है उनकी याद में।
0: ये सबसे पहले आया था?
1: हाँ जी, ये आया था एक बड़े के लिए और एक छोटे के लिए, ये था इस तरीके से जी। तो पहले तो, अब तो आज की डेट में बहुत सारे स्टील के बनते हैं, स्टेनलेस स्टील के, प्लास्टिक के बनते हैं, बट ये पहले के ज़माने में जो हाथ से बनते थे ये यही थे। इसमें एक पहले लकड़ी का और होता था, लकड़ी का तो अब समय के हिसाब से थोड़ा सा नहीं रहा सही, अभी है भी नहीं हाथ में, तो इसलिए जो आपको है वो दिखा पा रहे हैं। बाकी अब जो हम बनाते
0: हैं, कि आपके पूर्वजों ने कहा था कि भाई नई चीज़ दिखेगी तो वो बिकेगी, अब नई चीज़ के लिए फिर एक्सपेरिमेंट करना था और वो एक्सपेरिमेंट ये था।
2: गणेशोत्सव की शुरुआत से कई दिनों पहले ही कलाकारों ने अलग अलग रूपों में बप्पा को ढालना तो शुरू कर दिया था। ऐसे में अब बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। कहीं गणपति देवा अपने पिता महादेव के वेश में नजर आ रहे हैं, तो कहीं लाल बादशाह राजा के स्वरूप वाली प्रतिमा भी बनकर तैयार है। शहर शहर श्रद्धालु बप्पा की इन प्रतिमाओं को खरीदने पहुंच रहे हैं।

जिसकी जैसी भावना वैसे उसके बापा। गणेश उत्सव में बहस कुछ ही दिन बाकी है, सो शहर शहर गणपति की मूर्तियां बनाने का काम भी तेज हो गया है। मूर्तिकार इन मूर्तियों

0: तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बाजार में इस बार भगवान गणेश के पारंपरिक स्वरूप के साथ साथ कई नए और आकर्षक डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। खास तौर पर भगवान भोलेनाथ से जुड़े स्वरूपों वाली गणेश प्रतिमाएं लोगों को खूब पसंद आ रही है। शिवलिंग के साथ गणेश प्रतिमा, भगवान शंकर के वेश में गणेश और लाल बाग के राजा के स्वरूप वाली प्रतिमाओं की मांग खूब है। इसके साथ ही AI डिजाइन से तैयार किए गए नए नए स्वरूप भी भक्तों को भा रहे हैं। स्वरूप के अलावा बात अगर डिजाइन की करें तो घर में गणपति की स्थापना के लिए 1 से 3 फीट तक की प्रतिमाओं की मांग सबसे ज्यादा है। झांसी की तरह ही दिल्ली में भी गणेश प्रतिमाओं के निर्माण का काम जोर शोर से इन दिनों चल रहा है। इस काम से जुड़े कई कारीगर बाप्पा की मूर्तियों को डिमांड के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। इन मूर्तिकारों के लिए ये सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं बल्कि आस्था और कला का एक साथ पेश करने का मौका भी है। ये दो बहनें भी 20 साल से गणेश प्रतिमा तैयार कर रही हैं। पहले ये काम इनके पिता किया करते थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद दोनों बहनों ने इस काम को आगे बढ़ाया। ये दोनों बहनें न सिर्फ मूर्तियां बनाती हैं, बल्कि वो खुद गणपति बैठाती भी हैं।
1: गणेश पूजा, गणेश उत्सव, गणेश जी की मूर्ति को तैयार करना, उसको सजाना सवारना, इसके क्या मायने हैं ये आप इन दो बहनों से समझ सकते हैं, मंजू और वसुंधरा। ये दो बहनें सालों से इसी काम में लगी हुई हैं। हर साल मूर्ति को अपने हाथ से तैयार करती हैं, फिर उसे बेचती हैं, कुछ पैसे कमाती हैं। 20 साल से दोनों बहनें एक साथ ये काम कर रही हैं। इसके पहले ये काम इनके पिताजी किया करते थे, वो चल बसे तो उसके बाद दोनों बहनों ने मोर्चा संभाला हुआ है।
2: मूर्ति में सजावट करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, जो काम आते हैं वो कर लेते हैं।
1: ये काम सीखा किससे, अपने आप से या फिर पिताजी सिखा गए थे?
3: पिताजी सिखा के गए थे वैसे तो, अब देखते देखते सीख गए हम भी।
0: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को है, सो इस समय शहर शहर ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है। कोई मूर्तियों को आकार दे रहा है तो कोई रंग भरने का काम भी जुटा है। खास बात ये है कि कई जगहों पर अब मूर्तियों को बनाने के लिए सिंथेटिक मटेरियल की जगह मिट्टी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन प्रयागराज में बनाई जा रही इन मूर्तियों के निर्माण में गंगा की मिट्टी, धान का पुआल या पराली और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे विसर्जन के बाद पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। यहाँ के मूर्तिकार दस्तकार उत्साहित हैं, क्योंकि लगातार बारिश के बावजूद इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की मांग बढ़ गई है। घरों से लेकर बड़े बड़े पंडालों तक के लिए बड़ी संख्या में ऑर्डर मिल रहे हैं।
4: गणेश जी का मिट्टी पूरा प्योर मिट्टी और गंगा जी का शुद्ध मिट्टी से बनता है, और इसमें धान का पैड़ा है और लकड़ी है, बांस है, ये इको फ्रेंडली, पूरा कलर भी हमारा इको फ्रेंडली है।
0: ये तस्वीरें राजकोट की है, जहां भी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं को ही सजाने का काम चल रहा है। कोलकाता के दीपक जाना पिछले 30 वर्षों से लगातार यहां आकर बापा की प्रतिमाओं को तैयार करते हैं। राजकोट के गणेश उत्सव में अपने हुनर के रंग भरते हैं।
5: लेटेस्ट डिजाइन इंटरनेट में आया, उसी को ढूंढ ढूंढ के कलेक्शन करके मैं लोग बनाया मूर्ति।
6: कौन सा वो खास मूर्ति है?
5: खास मूर्ति जो पहले नंबर है, नव दुर्गा का स्वरूप में, उसका नव दुर्गा है, उसका गोद में बैठा हुआ गणपति बापा 9 फीट का ऊपर है। ऐसा और भी बहुत सारे थीम है, सभी अलग अलग है, एक ही डिजाइन एक में नहीं है, सभी जितना भी मूर्ति है सब अलग अलग डिजाइन का।
0: तो वही करनाल में राजस्थान से आया मूर्तिकारों का ये परिवार पिछले 6 महीने से बापा की मूर्तियों को आकार देने में जुटा है। इनकी मेहनत का नतीजा ये है कि बापा की सैकड़ों प्रतिमाएं अब यहाँ गणेश भक्तों को लुभा रही है।

0: अभी गणेश तो तैयार करने के मेरे 6 महीना हो गया बनाते बनाते। अभी एक एक मूर्ति में 10 से 12 दिन लग जाते जी, बारीकी काम है।
1: तो वही महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तो बच्चे ही मिट्टी से पापा की मूर्त गढ़ रहे हैं। गणेश उत्सव से पहले यहाँ बच्चों के लिए इस खास वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहाँ बच्चों ने मिट्टी से दोस्ती की और अपने हुनर के रंग भरकर पापा की प्रतिमाओं को तैयार करने में जुट गए। अब इनकी बनाई प्रतिमाएं इस साल गणेश उत्सव की शान बनेंगी। झांसी से अजय झा, राजकोट से रौनक मजीठिया, करनाल से कमलदीप, चंद्रपुर से विकास राजूकर, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब देखिए, कुछ सालों से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए गणेशोत्सव पर खास तौर से प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय इको फ्रेंडली यानी मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं बनाने का चलन भी रहा है। वास्तव में ये जल प्रदूषण से बचाव का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ऐसे में कई मूर्तिकार जहां मिट्टी और दूसरी सॉल्यूबल चीजों से एक से बढ़कर एक मूर्तियों को आकार दे रहे हैं, तो इनकी डिमांड भी मार्केट में खूब बनी हुई है।

0: बीते कुछ सालों से गणेशोत्सव पर प्रकृति का भरपूर ख्याल रखने का संदेश दिया जा रहा है। नेचर को नुकसान पहुंचाने वाले जहर से कोसों दूर बाप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां आज मूर्ति कारीगरों के साथ आस्थावानों की पहली पसंद है। ऐसे में कुछ मूर्तिकार परिवार अपनी गणेश भक्ति को ही पीढ़ियों से चली आ रही कला परंपरा में बदले हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर का एक परिवार है जो हर साल आस्थामयी और कलात्मक माहौल में भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय बांस, नारियल की छाल और मौली धागा से बेहद खूबसूरत और पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों को आकार दे रहा है। इस परिवार की मुखिया हैं शिवचरण यादव, जो कभी सरकारी मुलाजिम रहे, घर चलाने के लिए भेल भी बेची, लेकिन जब इस काम में मन नहीं रमा तो फिर कलाकारी करने का महज ख्याल ही मानो पैशन बन गया है।
1: बच्चे लोग सबसे पहले मेरे को वहाँ अध्यक्ष बनाए, उसके बाद फिर मैंने अपना धीरे धीरे स्थल सजावट का काम किया। स्थल सजावट करने के बाद अब उसमें भी मजा नहीं आया, तो फिर मैं बोला उसको बंद करके मूर्ति का काम स्टार्ट किया।
0: मूर्तिकार शिवचरण को इन मनोहारी मूर्तियों को आकार देते हुए 25 साल से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान उन्होंने ठेले पर भी बाप्पा की मूर्तियां रख कर बेची। साल 2011 से शिवचरण ने घर पर ही मौली धागा, नारियल की लकड़ी, नारियल की बुछ जैसी कई इको फ्रेंडली चीजों से मूर्तियों को आकार देना शुरू किया। वहीं इस बार के गणेशोत्सव में शिवचरण ने धूप दीप, पेड़ की छाल और बांस की लकड़ी जैसी कई और पर्यावरण सुरक्षित जैसी चीजों से खूबसूरत बप्पा बनाए हैं, जिनके डिमांड काफी है।
1: इस बार हम लोग बनाए हैं धूप दीप का बनाए हैं राम भगवान के रूप में, और पेड़ के छाल से बनाया गया है, और उसके बाद बांस की लकड़ी से बनाया गया है, और नारियल की बूच को नारियल का स्वरूप दिया गया है।
2: बिंदी से शंख और सीप से
1: बनाया गया है, और ये मोती से बनाया गया है।
0: शिवचरण और उनके परिवार की नजर में प्रकृति का सम्मान ही बाप्पा की सच्ची भक्ति है। शिवचरण अपनी पत्नी, दो बेटे और एक बहू के सहयोग से विघ्नहर्ता की ऐसी ऐसी सुंदर मूर्तियां बना रहे हैं जिनके चाहने वाले ग्राहक हर साल बढ़ रहे हैं।
3: बाकी मूर्तियां तो अलग अलग बनाए जाते हैं मिट्टी से और बाकी अन्य चीजों से, लेकिन हम लोग गणेश जी को किसी भी चीज में अलग अलग रूप में बनाकर, मतलब आप देख सकते हैं कि पीछे एक लकड़ी की छाल है, सामने धूप अगरबत्ती है, उसके हिसाब से अलग अलग चीजों में बनाते हैं।
2: आस्था भी है गणेश
3: जी, बहुत आस्था है हमारी।
0: फिलहाल तो मिट्टी की ये सुंदर सुंदर इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा हमारी प्रकृति को मुस्कुराने की वजह दे रहे हैं। रायपुर का ये परिवार गणेश मूर्ति को बनाने की कला को जिस अंदाज में जिंदा रखे हुए है, उससे न केवल समाज को अपना पर्यावरण बचाने की प्रेरणा मिल रही है, बल्कि खुशहाल प्रकृति बने रहने का संकेत भी मिल रहा है। तो हो जाए एक बार फिर विघ्नहर्ता का ये प्यारा सा उत्सव इको फ्रेंडली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि बप्पा पधार रहे हैं। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरें जा रही हैं, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: जोधपुर में भारत और जापान की वायुसेनाएं आज से करेंगी युद्धाभ्यास। वीर गार्जियन 2026 एक्सरसाइज में 22 सितंबर तक दोनों देशों के लड़ाकू विमान दिखाएंगे दमखम। देश भर में गणेशोत्सव को लेकर सजे बाजार, अकोला से लेकर सूरत तक बप्पा के आगमन पर खुशी के साथ झूमे तमाम भक्त। राजधानी में बप्पा के भोग की विशेष तैयारी, चॉकलेट से लेकर स्ट्रॉबेरी तक मोदक के नए फ्लेवर तैयार, काजू, ड्राई फ्रूट्स, हेजलनट और कलाकंद भी ग्राहकों को खूब पसंद आ रहे। महाराष्ट्र में पोला पर्व की उमंग, बैलों के श्रृंगार के सामान से सजे बाजार, रस्सी और घुंघरू वाले पट्टे खरीदने पहुंच रहे किसान। एप्पल ने आईफोन 18 प्रो, प्रो मैक्स और अल्ट्रा लॉन्च की तैयारी की, ग्राहकों में उत्साह, आज रात हो सकता है लॉन्च। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। चलिए देख लेते हैं अच्छी बात धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।

एक बात आपको हमेशा याद रखनी होगी, सफलता एक दिन में नहीं मिलती पर एक दिन जरूर मिलती। सफलता एक दिन में नहीं मिलती ये तो तय है, पर एक दिन जरूर मिलती है ये भी तय है। अब वो दिन कब हो सकता इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, रोज तैयारी करनी पड़ेगी, रोज दुकान, ग्राहक आए न आए दुकान तो खोली जानी चाहिए। अब मंदिर में कोई दर्शन करने आए न आए इसका मतलब ये थोड़ी कि आज मंदिर के आज बालाजी का स्नान नहीं करवाएंगे, श्रृंगार नहीं करेंगे, प्रसाद नहीं लगाएंगे, आज किसी को आना ही नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। कोई आए या ना आए मंदिर के पट तो खुलेंगे, पूजा तो होगी ही होगी। किसी समय एक बात ऐसी घटना हुई कि एक बार बादलों ने नाराजगी जताई कि हम बरसेंगे नहीं, और उन्होंने घोषणा भी कर दी कि कोई किसानी तैयारी ना करे, खेती की तैयारी ना करे, हम नहीं बरसेंगे। शायद पहले बादल बोलते होंगे तो सब किसान अपना अपना सामान रख के अंदर बैठ गए। एक किसान था बड़ा हटीला, वो अपने हल को तैयार कर रहा था और खेती को तैयार की, खेती बोने की तैयारी कर रहा था, और इतना विचित्र किसान कि तपती धूप में दोपहर 12 बजे उसने लगा दिया हल, तो ऊपर से जो बादल गुजर रहे थे वो ठहरे कि हमने एक साल पहले घोषणा कर रखी कि हमें नहीं बरसना, जब नहीं बरसना तो बीज की बुवाई भी नहीं होगी, खेती भी नहीं होगी, फिर भी तुम तैयारी क्यों कर रहे, खेत क्यों जोत रहे। किसान ने कहा कि हमें ये पता है कि आप नहीं बरसोगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपना काम करें ना। बोले उससे क्या फायदा होगा, बोले आप पता नहीं कब बरसोगे, जिस साल बरसोगे तब तक हम भूल ना जाएं, तो कहीं हम खेती बोना ना भूल जाएं, खेत जुताई ना भूल जाएं, इसलिए हम अपनी आदत बनाए रखना चाहते हैं। तो बादलों को भी शर्म लगी कि जब ये अपनी ऐसी तैयारी कर रहा तो कहीं हम बरसना ना भूल जाएं। ऐसे ही ये जीवन है कि एक दिन सफलता तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन में सफलता नहीं मिलती पर एक दिन तो मिलती, पर वो एक दिन कब हो सकता ये तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए रोज ध्यान करना चाहिए। इन 3 दिन में सीख कर आप जब घर जाएं तो रोज ये आदत डालें, सुबह या शाम जब आपको मौका मिले, सुबह शाम ना भी आपको मौका मिले तो रात को थोड़ी देर ही सही 10 मिनट का ध्यान, हम आपको कल एक विधि बतला देंगे कि जो आप घर बैठ करके 10 मिनट में ध्यान कंप्लीट कर पाएंगे, आपका ज्यादा समय भी ना लगेगा, काम भी हो जाएगा। पर रोज आदत डालो, किसी ना किसी दिन आपके जीवन में एक नया सवेरा घट ही जाएगा। वो पागलपंती आपके जीवन में उतर ही जाएगी, वो आनंद आपके जीवन में उतर ही जाएगा, और हम चाहते भी यही है कि आपके अंदर वो एक बार उतर जाए, वो आनंद आपके जीवन में एक बार आ जाए, वो मस्ती एक बार आपके जीवन में चालू हो जाए, जो कभी बंद ना हो। अभी कोशिश करनी पड़ रही है, अब ऐसा हाल हो जैसे कल वो बच्ची बहुत अच्छा बात कह रही थी अपनी कविता में कि लोग करते होंगे आपको ध्यान, हमें तो बिसरते ही नहीं, भूलते ही नहीं, तो हम भी यही चाहते हैं कि आपको ऐसी आदत पड़ जाए ध्यान करने की कि ध्यान करना ना पड़े, ध्यान होता रहे, ये आपकी आदत में हो जाए। मुस्कुराहट के लिए, हंसने के लिए, प्रसन्नता के लिए आपको कुछ करना ना पड़े, अपने आप प्रसन्नता जीवन में बनी रहे। उल्टा ये कोशिश करनी चाहिए कि कहीं ऐसी जगह ना हंस दें जहां लफड़ा हो जाए, हमें ये कोशिश करनी पड़ती है, हमारे साथ ये लफड़ा होता है कई बार, हमारी आदत है हर बात पे हंसने की, हर बात पे कोई ना कोई बहाना निकालने की हंसने की, हमें ये ध्यान करना पड़ता है कि कहीं शोक सभा में ना हम चले जाएं, इसलिए हमारी अक्सर आपने देखा होगा शोक सभाएं बहुत कम होती हैं हमारी,
हम जाते ही नहीं शोक सभा में, जाएं कब लफड़ा हो जाए कोई ठिकाना थोड़ी है। हम अपनी दादी जी के में गए थे तो लफड़ा हो गया था, उसके बाद में फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दादी जी के में गए तो बहुत देर हो गई, सुबह सुबह दादी जी चल बसी, हम पन्ना में थे, माता जी ने खबर दी कि आओ, आ गए। 10-15 मिनट तो मुंह लटकाए बैठे रहे, हमें नया आए रोना, और पूरा घर छाती पीट पीट रो गए। सब ताऊ चाचा जितने रहते थे सब आ गए, लगे रोने। थोड़ी देर हुई 15-20 मिनट तो हमने अपनी बहन से कहा, रीता से, कि रो लिया हो तो चाय बनाओ। तो माताजी ने ऐसी देखा हमारी तरफ कि मानो हमने उनका प्रोग्राम फेल कर दिया। बहुत नाराज हुई वो, और आंख चिड़ा चिड़ा के, अब पूरा खानदान बैठा, सब ताई चाची हरे बैठे, भाभी मामी हरे आ गई, वहां दादी जी के भी खानदान के वहां से आ गए, मायके से लोग आ गए, सबकी नजर हमारी तरफ। हमने कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, ये सब हमें देखे, और हम करें क्या, हम टिके बैठे हैं बढ़िया ऐसे। अब बहुत देर तक हम गमगीन रह लिए, 10 मिनट बहुत होता है हमारे लिए। हमका बनाओ चाय, और बहन जी से कहा, माता जी से तो कहा ही नहीं, आवाज थोड़ा तेज हो गई कि रो लिया हो तो चाय बना लो। अब माता जी बड़ी नाराज, उन्होंने ऐसा मुक्का बनाया, ऐसे हाथ में यहां मारा, तो हमने पूछा काहे मार रही, तो शर्म नहीं आती, दादी जी मरी रखी वो तो मैं चाय पुसा रही। तो हम कहा माता जी हमारे चाय ना पीने से इन्हें जगना हो तो हम छोड़ देते, अगर ये जाग जाए तो लो हम छोड़ देते, वैसे तो चाय हमें छोड़ना बहुत मुश्किल है, पर इन्हें जगा लो आप। अब और नाराज, तो तुम्हें शर्म नहीं आती, आदमी मरा रखा है और तुम्हें ऐसी बात है, ऐसे समय पे भी प्रवचन ही सुनाते। बड़ी नाराज हूँ, बहुत नाराज। हमारे एक मित्र हैं गांव के, रिक्की सिंह, वो बगल में बैठे थे, तो काहे को तमाशे कर रहे, ऐसी हालत है। उनका तमाशे थोड़ी, सीधी सीधी बात है भैया, चाय बना दे पिला दे, यदि हमारे तो। अब माता जी कह रही, अरे कम से कम लोगों की तरफ देख, सब रो रहे छाती पीट पीट के। हम कहा माता जी हमारे रोने से इन्हें जगना है नहीं, अब तुम लोग खूब रो रही हो 2 घंटा से, जाग गई क्या? और ये जितने रो रहे हैं ये जब तक जिंदा रही तब तक तो आए नहीं, सब सब यही चाहते थे, कुछ हमारे परिवार कुछ लोग ऐसे थे हमका कुछ, जब ये जिंदा थी तब चाहते थे कब जाएंगे, अब चली गई सो रो रहे हैं, और जग जाएंगे तो ये फिर चले जाएंगे सब। तो हमका इन्हें जगना है नहीं, और यदि माता जी हमारे रोने से जागे तो सबसे ज्यादा छाती पीट पीट के हम रोएंगे। बाद में हमारे मित्र ने समझाया, लफड़ा नहीं करते, चलो चाय हम अपने घर पिलाते हैं। तो हम उनके घर गए, दादी जी वहां रखी नहीं, हम चाय पीते रहे। उस दिन के बाद हमने शोक सभा में जाना बंद कर दिया। जाते भी हैं तो 10-15 दिन जब हो जाते हैं, किसी के यहाँ जाना भी पड़े परिवार में भी 2-4-10 दिन हो जाए ताकि भाई माहौल शांत रहे। जाते भी हैं तो वही अपनी स्टाइल में, वो कुछ ना कुछ हमारे साथ गलती हो ही जाती है, कितना भी हम कंट्रोल करें कोई ना कोई बात ऐसी निकल ही जाती है कि जिसके घर पे ये घटना हुई होती है वो भी हंसते ही है। हाँ वो भी हंसते ही है, हमसे नहीं हो पाता है कंट्रोल। तो हम चाहते भी आपके साथ ही, बल्कि इस हालत में लोग तुम्हें पागल कहेंगे, घोषित कर देंगे, पर हम चाहते भी यही है, हमारे जैसा तुम्हें कंट्रोल करना पड़े कि भाई कहाँ नहीं हंसना है, ये कंट्रोल किया जाए। इसका मतलब है, हंसने का मतलब ये नहीं कि बहाने खोजें, वो अपने आप अंदर से आता है, उसके लिए कोई बहाने खोजने की आवश्यकता, सहज बस आता है। वो सहज बस तभी आएगा जब आप अंदर बाहर से एक हो जाओगे, जब आप बाहर की तरफ भागना बंद करके अंदर की तरफ जागना प्रारंभ करोगे, तब स्वाभाविक रूप से आपके अंदर में मुख खुल जाए। तो इस 3 दिन के शिविर में आज दूसरे दिन में थोड़ा सा प्रयोग अलग है, आपको कल जो प्रयोग कराया गया उससे थोड़ा सा भर अलग है, बाकी एकदम वैसा ही है। कल जो कम
आपके मन में बहुत डर था कि अब क्या करना, अब क्या करना, गलत तो नहीं कर रहे हैं, कुछ उल्टा तो नहीं कर रहे हैं, विपरीत तो नहीं हो जाएगा। आज ऐसा सोचना आपको बंद करना है, जैसा आए वैसा पूरा डूब के करना है, बस इतना ख्याल रखना है। जितना भी करें वो पूरी ताकत जोर लगा करके और पूरा डूब के करें। ये भाव हटा दें कि हमारा लोग सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, क्योंकि जब ध्यान करते हैं, जब वो उस क्रिया में पांचों चरण में जाते हैं तो कोई किसी को नहीं सुनता, सब अपने में ही लगे रहते हैं। जैसे बारात में सब श्रृंगार करके जाते हैं कि हमें लोग देखेंगे देखेंगे, पर पूरी बारात में कोई किसी को नहीं देखता, सब खुद को ही देखते रहते हैं। ऐसे यहाँ पर कोई किसी को नहीं सुन रहा, आपको ये मानना है आप अकेले हैं। और वो कल वाला याद रखना सूत्र, दुनिया लुट चुकी है, सुनामी आ चुकी है और तुम अकेले बचे, ऐसा मान करके तुम्हें फिर ध्यान करना है, तो ध्यान थोड़ा गहरा हो पाएगा। तो आज दूसरे दिन में आप सब बहुत धैर्यता और विनम्रता के साथ आज के सत्र को, क्योंकि वैसे भी लेट हो गए हैं, तो ज़्यादा लेट नहीं हुए, थोड़ा ही, थोड़ा दूर दूर बैठ जाएं, शायद लोग बढ़ गए कि हमें ऐसा लग रहा है। हाँ अच्छा, कल नहीं तो इधर दिख नहीं रहे थे, चलो ठीक है, अच्छा थोड़ा दूरी दूरी कर लें, ये हाथ वाली दूरी आप आपस में ही अंदाजा लगा लें कि पता लगे कि एक दूसरे का तनाव एक दूसरे पर छोड़ दें, इतनी दूरी बना करके रखें, शरीर को एकदम ढीला कर लें। इस आत्मशुद्धि शिविर का नाम ही है आओ पागल बने। क्या बने? तो तुम बनना चाहते हो, लोग हंसेंगे तुम पर, तो आप आओ पागल बने में तीन सूत्र हमने कल आपको दिए थे, आज एक उसमें बात हम और कहना चाह रहे हैं जो चूक गए हैं। आज पूरे दिन आपको एक कोशिश करनी है सतर्क रहने की, ये नियम आपको आज, कल मौन पर जोर था, आज भी मौन पर जोर है, पर मौन थोड़ा अलग तरीके से होगा। आज का मौन जो आपका दिन का होगा, जैसे ही संवाद ये साधना पूरी होगी, वैसे ही आज के मौन का जो जोर होगा वो होगा सक्रिय रहने की, सतर्क रहने की। सक्रिय रहने का थोड़ा तरीका समझ लें, मौन है पर सक्रिय मौन। सक्रिय मौन क्या है? ये आवाज आ रही है, अभी आपको सिर्फ हमारी आवाज सुनाई पड़ रही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोगों को कूलर की आवाज सुनाई पड़ रही होगी, लेकिन कुछ लोगों को कूलर के साथ साथ पीछे से साउंड की, माइक की आरती की आवाज भी सुनाई पड़ रही, पर सबका ध्यान वहां केंद्रित नहीं, सबका ध्यान सिर्फ हमारी आवाज पर केंद्रित। पर सक्रिय मौन यही है जिसका तीनों आवाजों पर ध्यान है, कूलर भी सुन रहा, पीछे के माइक को भी सुन रहा, खुद की श्वास को भी सुन रहा है। इतना सक्रिय रहें, मतलब एक पत्ता भी हिले तो आपको ख्याल है। इस ध्यान का नाम ही है कैट मेडिटेशन। क्या नाम है? जरा जोर से बोलो, बड़ा अजीब नाम है, कैट मेडिटेशन, बिल्ली का ध्यान। और बिल्ली का ध्यान है इतना गहरा, किसी से आप कुछ सीख पाओ या ना सीख पाओ, बिल्ली से आप सीख सकते हो। बिल्ली जब चूहों को पकड़ने में बैठती है, चूहे को पकड़ने में बिल के बाहर, तो पत्ता भी थोड़ा हिले तो बिल्ली सतर्क रहती। चूहा जितनी रफ्तार से भागता चूहा ही जानता, पर बिल्ली का ध्यान इतना बारीक होता है, इतना बारीक होता है, इतना बारीक होता है कि वो चूहे के पैर की आवाज को भी सुनने की क्षमता रखती, इतना बारीक ध्यान होता है।
और आप कभी बिल्लियों पर एक प्रयोग देखना, हो सके तो नेट पे भी देख सकते हैं आप, बिल्लियों पे एक प्रयोग देखना, कितनी भी ऊंचाई से बिल्ली को फेंका जाए वो नीचे गिरने के पहले अपना संतुलन ठीक वैसे ही कर लेगी जैसे फेंका जाता है, वो हमेशा सीधी ही गिरेगी, पैरों के बल ही गिरेगी, चाहे जितनी ऊंचाई से चाहे जिस प्रकार आप बिल्ली को फेंक देना, वो जमीन पर आने के ठीक पहले अपना ध्यान केंद्रित करके ठीक पैरों के बल ही गिरेगी। ऐसे ही व्यक्ति को होना चाहिए इतना सावधान कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां रहें, उसकी मुस्कुराहट, उसकी जागृति, उसकी सतर्कता केंद्रित रहनी चाहिए। क्योंकि जब आप घर जाएंगे, लोगों से बातें करेंगे, तो लोग तरह तरह के तर्क देंगे शिविर के बारे में, धाम के बारे में, हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में, वो तुम्हें डीमोटिवेट कर

0: ताकि सब चोरों को साथ साथ गालियां मिले। हम चाहते हैं कि लोग हमारे जैसे बने, हम चाहते हैं हमारी फौज बड़ी हो। अधार्मिक व्यक्ति चाहता है अधार्मिक ज्यादा हो, नास्तिक चाहते हैं नास्तिक ज्यादा हो। तो स्वाभाविक है कि जब तुम यहां से जाओगे तो कुतर्क करने वाले तुम्हारे आसपास आएंगे, पर तुम्हारा ध्यान कैट मेडिटेशन होना चाहिए। कौन सा? बिल्ली जैसा। तुमने कभी ब्रेन वॉश्ड लोगों को देखा है? देखा? आसपास देखना जिनका ब्रेन एकदम वॉश्ड होता है, ब्रेन वॉश कहते हैं उसको, देखना कभी, बड़े खतरनाक लोग होते। प्रेम में पड़ी हुई लड़का या लड़की को देखना कभी, उसे कितना भी समझाओ तर्क दो ये सब बेकार है, कहीं कुछ नहीं है, कहाँ पड़े हो बेफिजुली में, सौ तर्क दे देना, वो धीरे से यही कहेंगे हम रहेंगे तो उन्हीं के साथ में। हाँ हाँ, 500 तर्क दे दो, माँ मर जाएगी, बाप को अटैक आ जाएगा, वो तुम्हें काट काट के रख देगा, सूटकेस में बंद कर देगा, कहाँ फंसी बेफिजुली में, भाग छोड़ दे, उसके चक्कर में मत पड़, बढ़िया शादी कराएंगे, 2 साल बाद शादी कर लेना, अभी मत करना। नहीं, चाहे जो हो जाए हम तो उन्हीं के साथ में रहेंगे। इस शिविर के बाद तुम्हारे मन की आदत भी ऐसी ही हो जानी चाहिए कि चाहे जो हो जाए हम रहेंगे तो परमात्मा के ही साथ में, ध्यान के ही साथ में, आनंद के। तो इस ध्यान का नाम नोट कर सकते हैं आप, इस पर थोड़ा सा पढ़ लेना, रिसर्च कर लेना, बिल्ली के बारे में, बिल्ली की सतर्कता के बारे में। तो इसका नाम क्या है? कैट मेड। आज पूरे दिन आपको यही करना है, जैसे बिल्ली चूहों की तरफ ध्यान रखती है, आपको एक एक वस्तु की तरफ ध्यान केंद्रित रखना। कोई हवा आई और आज आपको किसी से बोलना नहीं, आज अपना नाम परिचय भी दिन में किसी को नहीं बताना, कोई पूछे ज्यादा तो अपना कार्ड दिखा देना। आज पूरे दिन परिक्रमा लगाओ, धाम पे घूमो, पहली बार आप एक नई हरकत करो कि बोलते हुए कहते हुए बातें करते हुए आप भीड़ में रहे। आज पहली बार आपको एक नई हरकत करनी है कि आज आपको मौन रहना है, दुनिया को बोलना है, ये आपको हरकत करनी है दिन में। तो जैसे ही भोजन पाएं तो आपको 1 घंटे के लिए परिक्रमा में जाना होगा, मंदिर जाना होगा, और जो जो बोल रहे उन्हें ध्यान से देखना है, कुछ नहीं करना, देखना है। और तुम शाम को ये रिजल्ट पाओगे कि कितने व्यर्थ की बात है तुम बोलते रहते थे, जब उन लोगों को सुनोगे दुकानों पे बैठ के, कहीं भी बैठना ऐसे ही, किसी की भी बात ऐसे ही सुनना, वो बल्कि तुम्हें बहुत नजर से देखेंगे कि भाई तुम हमें क्यों सुन रहे, लेकिन तुम सुनना। तो तुम पाओगे कि तुम दिन जिंदगी में कितनी व्यर्थ की बातें बोलते रहे जिनका कोई सेंस ही नहीं, मतलब ही नहीं, सामने वाला सुन ही, और सच में यहां कोई किसी की नहीं सुन रहा, सब मतलब की सुन रहा, कोई यदि सुन भी रहा सिर्फ अपने मतलब की बातों को सुन रहा है। तो पूरे दिन
1: क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति बहुत साहसी हो जाता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति के अंदर बहुत आकर्षण पैदा होता है? क्या मंगल दोष होने से व्यक्ति को बड़ी सारी संपत्ति का फायदा होता है? क्या मंगल दोष होने से भी हो सकता है लाभ? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: जोधपुर में आज से 22 सितंबर तक वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास, भारत और जापान की वायुसेना के लड़ाकू विमान दिखाएंगे दमखम। देश भर में गणेश उत्सव को लेकर सजे बाजार, अकोला से लेकर सूरत तक बप्पा के आगमन पर खुशी के साथ झूमे भक्त। बप्पा के विशेष भोग की तैयारी, चॉकलेट से लेकर स्ट्रॉबेरी तक मोदक के नए फ्लेवर तैयार, घरों में भी बनाए जा रहे तरह तरह के मोदक। महाराष्ट्र में पोला पर्व की उमंग, बैलों के श्रृंगार के सामान से सजे बाजार, रस्सी और घुंघरू वाले पट्टे खरीदने पहुंच रहे किसान। एप्पल ने की आईफोन 18 प्रो, प्रो मैक्स और अल्ट्रा लॉन्च की तैयारी, ग्राहकों में उत्साह, रात हो सकता है लॉन्च।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: अकोला में 30 फीट ऊंचे चिंतामणि गणपति बप्पा का हुआ भव्य आगमन, ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर भक्त जमकर झूमे। सिविल लाइन चौक पर बप्पा के मुख से लाल कपड़ा हटाया गया, दर्शन होते ही पूरा चौक गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष के साथ गूंज उठा। चिंतामणि बप्पा के भव्य स्वरूप के दर्शन के लिए सैकड़ों भक्त पहुंचे, हर कोई बप्पा के दर्शन के साथ तस्वीर और वीडियो बनाता हुआ नजर आया। बप्पा के स्वागत में शानदार फायर शो, आतिशबाजी की गई, आसमान रोशनी से जगमगा उठा, भक्तों का उत्साह देखते ही बना। चिंतामणि गणपति यानी सभी की चिंता हरने वाले बप्पा से भक्तों ने प्रार्थना की अच्छी बारिश और हर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की गई। जैसलमेर में अनोखा गणेश मंदिर, यहां भक्त पत्थरों से छोटा घर बनाकर भगवान से मांगते हैं अपना आशियाना। चौदह सौ साल पुराना है चुंदी गणेश मंदिर, मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नदी के बीच बिराजे हैं गणेश जी, मंदिर की मूर्ति को लेकर मान्यता है कि प्रतिमा खुद प्रकट हुई थी। मंदिर के पास बने हैं सैकड़ों छोटे घर, भक्त इन्हें बनाकर अपने लिए भी घर मिलने की प्रार्थना करते हैं। गणेश चतुर्थी पर लगता है भव्य मेला, दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और गणपति से अपनी मनोकामना मांगते हैं। दिल्ली की रुचि गुप्ता 8 साल से घर पर गणपति बप्पा की बना रही मूर्ति, इस बार भी मिट्टी से बप्पा को आकार देकर रंग और सजावट से अंतिम रूप दिया जा रहा। रुचि गणपति विसर्जन भी घर पर ही करती हैं ताकि पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। चावड़ी बाजार में 35 साल से मोदक की मिठास कायम, शाम स्वीट्स में आज करीब 25 तरह के मोदक तैयार हो रहे हैं। मोदक बनाने का हुनर महाराष्ट्र से दिल्ली आया, करीब 40 साल पहले दुकान के मालिक रेसिपी कारीगर सांचा महाराष्ट्र से लाए थे। चॉकलेट से लेकर स्ट्रॉबेरी तक मोदक के नए फ्लेवर तैयार, काजू, ड्राई फ्रूट्स, हेजलनट और कलाकंद भी ग्राहकों को पसंद आ रहे। गणेश चतुर्थी को लेकर झांसी के बाजारों में बढ़ी रौनक, बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। भोलेनाथ के साथ गणेश के अनोखे स्वरूप ने खींचा लोगों का ध्यान, मिट्टी की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं की सबसे ज्यादा डिमांड। नागपुर में गणपति बप्पा के आगमन की धूम, गणेश उत्सव से पहले सजे भव्य गणपति पंडाल। गणपति बप्पा मौर्या के जयकारों की गूंज, गणपति आगमन के साथ शहर में बढ़ी उत्सव की रौनक, बप्पा के भक्तों में जबरदस्त उत्साह। दिल्ली में श्री धरणीधर जन्मोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, धाकड़ समुदाय ने धूमधाम से मनाई भगवान धरणीधर की जयंती। अयोध्या में नए सीईओ जितेंद्र मिश्र की नई जिम्मेदारी, राम मंदिर की प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था संभाली। राम मंदिर के सीईओ जितेंद्र मिश्र बोले, जल्द बताएंगे मंदिर की आगे की कार्य की योजना। राम मंदिर कार्यालय में कोषाध्यक्ष महेश भागचंदका के साथ की बैठक। सूरत में साई युवक मंडल की ओर से भगवान गणेश की भव्य आगमन यात्रा आयोजित की गई, भगवान के 12 अवतार को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया। इस आगमन यात्रा में भगवान शिव के तांडव की विशेष प्रस्तुति पेश की गई, आग के लपटों के बीच में शिव तांडव का दृश्य देखने के लिए मंत्रमुग्ध हुए तमाम दर्शक। कोणार्क सूर्य मंदिर की तर्ज पर बन रहा है गणेश पंडाल, हर वर्ष अपनी अनूठी कला और थीम के लिए पूरे सूरत में माना जाता है ये पंडाल। महाराष्ट्र में पोला पर्व की तैयारी तेज, किसान 364 दिन साथ देने वाले अपने बैल को एक दिन का खास सम्मान देता है। करीब 1.5 महीने से बारिश नहीं होने से किसान परेशान, फसलों पर संकट है, फिर भी किसान पोला मनाने की तैयारी में जुटा है। अकोला के बाजार बैलों के श्रृंगार के सामान से सज गए हैं, रस्सी, घुंघरू वाले पट्टे, झूम और झूल खरीदने किसान पहुंच रहे हैं। पोला के दिन बैल से खेत में कोई काम नहीं करवाया जाता, किसान इस दिन अपनी मेहनती साथी को पूरा आराम और सम्मान देता है। आर्थिक परेशानी के बावजूद किसान बैल का पोला धूमधाम से मनाएगा, बैल को सजाकर पूर्ण पोली खिलाई जाएगी। वडोदरा में पीएम मोदी का जेन जी से सीधा संवाद हुआ, नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में 6,000 से ज्यादा छात्र पहुंचे। देश के युवाओं और जेन जी को प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से जोड़ने के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम, युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। पीएम मोदी का मेगा इवेंट के लिए पहली बार बुक माई शो से रजिस्ट्रेशन हुआ, 1 घंटे में फुल हुई सारी सीट्स। डिजिटल एम टिकट और क्यूआर कोड से कार्यक्रम में एंट्री हुई। पहली बार निजी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए रजिस्ट्रेशन और एंट्री व्यवस्था को बड़े स्तर पर किया जा रहा है इस्तेमाल। वडोदरा दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन लोकार्पण किया। 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं को बांटे नियुक्ति पत्र। 4 नए प्रकार की योजनाओं की घोषणा की। सीएम योगी ने 5,00,000 हेल्थ कवर देने की बड़ी घोषणा की। रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग पर दिया जोर। इससे पहले हनुमानगढ़ी जाकर योगी ने की पूजा अर्चना। माता शबरी के नाम पर बने भोजनालयों का किया जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आया एक बेहद खूबसूरत इंस्टाग्राम रील। रील में एक बच्ची ड्रम बजाते हुए तो दूसरे तिरंगे के साथ आई नजर। पीएम मोदी का कैप्शन भी है बड़ा शानदार। जेन जी के बाद जेन अल्फा को मिल रहा पीएम का प्यार। भारत जापान की वायुसेनाएं जोधपुर में वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास करेंगी। 9 से 22 सितंबर तक दोनों देशों के लड़ाकू विमान आसमान में दिखाएंगे दमखम। इस अभ्यास में भारत के तेजस, सुखोई 30 और राफेल लड़ाकू विमान शामिल होंगे। वहीं जापान अपने F-2A फाइटर जेट के साथ इस अभ्यास में उतरेगा। दोनों देशों के सैनिक मिलकर युद्ध की तैयारी, मिशन प्लानिंग और सुरक्षा पर अभ्यास करेंगे। वीर गार्जियन से भारत जापान की सैन्य दोस्ती और मजबूत होगी। राजस्थान के पोखरण में 14 से 16 सितंबर तक होगा ड्रोनाथोन 2026। वायुसेना के इस कार्यक्रम में देश की कंपनियां नए ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम दिखाएंगी। ड्रोनाथोन में निगरानी झुंड में उड़ने वाले ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर जोर रहेगा। वायुसेना इन तकनीकों को परख कर देश की सुरक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं का 3 महीने का वर्षावास शुरू हुआ। भिक्षु एक जगह पर रहकर ध्यान साधना पूजा अर्चना करेंगे। बारिश में जमीन पर छोटे छोटे जीव निकलते हैं, इसीलिए भिक्षु बाहर नहीं घूमते। किसी जीव को पैर से नुकसान न पहुंचे, इसी सोच से वर्षावास मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में वर्षावास की परंपरा बेहद खास मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने एक ही जगह पर 24 बार वर्षावास किया था। वर्षावास के दौरान भिक्षु सुबह शाम साधना ध्यान के साथ प्रवचन भी देते हैं। इन प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 3 महीने का वर्षावास पूरा होने के बाद कठिन चीवर दान की परंपरा निभाई जाती है। श्रद्धालु भिक्षुओं को विशेष वस्त्र दान में देते हैं। दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा चाक चौबंद। NSG और दिल्ली पुलिस ने किया मेगा मॉक ड्रिल। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई हाई लेवल काउंटर टेररिज्म मॉक ड्रिल। हर तरह के आतंकी हमले, इमरजेंसी से निपटने के लिए ब्लैक कैट कमांडोज का खास अभ्यास। भारतीय सेना की बड़ी सफलता, चिनूक से अल्ट्रा लाइट होवित्सर का चुनौतीपूर्ण इलाकों में तैनात करने का सफल परीक्षण। मिस्र के एल अलामीन एयर शो में आज दिखेगा भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर का दमखम। स्वदेशी ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर से सारंग दिखाएगी हवाई करतब। आसमान में सटीक फॉर्मेशन से दर्शक होंगे रोमांचित। सारंग टीम पेश करेगी डॉल्फिन लीप और स्पॉट स्टॉल टर्न। ग्यारह सितंबर को दिल्ली में बंद रहेंगे स्कूल। ब्रिक्स समिट को देखते हुए लिया गया है ये फैसला। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे के घायलों के साथ मिलने अस्पताल पहुंची रेखा गुप्ता, जाना इनका हालचाल। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने घायलों को सौंपे 5,000,000 के चेक। इलाज का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। कर्नाटक के सीएम ने यशवंतपुर APMC मार्केट का किया औचक निरीक्षण, किसानों से संवाद किया। इस दौरे के दौरान सीएम ने मार्केट में किसानों और मजदूरों के साथ किया नाश्ता। उपज की क्वालिटी और कीमत के बारे में भी ली जानकारी। हरिद्वार में बारिश के उफान पर चलते बरसाती नाले, एक बच्ची का किया गया सफल रेस्क्यू। मालदा में गंगा के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ के हालात बने, स्वास्थ्य केंद्र भी प्रभावित हुआ, घुसा पानी। लगातार बारिश से बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर, रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से जनजीवन प्रभावित हुआ। मोतिहारी में भीषण बारिश से इलाकों में भर गया पानी, स्थानीय लोगों की बड़ी मुसीबत। बिहार में गंभीर हुए बाढ़ के हालात, भागलपुर में एनएच 80 पर 2 फीट पानी भर गया।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भारत में घर घर में जो स्तुति सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है की जाती है, बच्चा बच्चा बचपन से जिस स्तुति को जानता है वो है हनुमान चालीसा। आज आपको बताएंगे हनुमान चालीसा के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में, हनुमान चालीसा के पाठ का महत्व क्या है और हनुमान चालीसा की चमत्कारी पंक्तियां कौन सी हैं, इस विषय में बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं श्री हनुमान चालीसा के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि चालीसा है क्या और इसका महत्व क्या है। भक्त द्वारा अपने भगवान या अपने ईष्ट को प्रसन्न करने के लिए और अपनी समस्याओं के निवारण के लिए सरल भाषा में जो प्रार्थना की जाती है वो चालीसा कहलाती है। इसको चालीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 40 लाइनें होती हैं। सरल भाषा में लिखा होने की वजह से किसी भी चालीसा को आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसमें मंत्र की तरह नियम नहीं है। चूंकि चालीसा पढ़ना सरल है, आसान है, इसीलिए ये जनता में काफी लोकप्रिय हुआ। चालीसा की जो 40 लाइनें होती हैं उसमें अलग अलग लाइन का अलग अलग महत्व होता है और अलग अलग लाइनों का, पंक्तियों का विशेष समस्याओं में विशेष प्रयोग किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई हनुमान चालीसा सर्वाधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय मानी जाती है। वैसे दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, गायत्री चालीसा सब आती है, लेकिन जो स्थान हनुमान चालीसा का है या जितनी पॉपुलैरिटी हनुमान चालीसा की है उतनी शक्तिशाली और उतनी प्रसिद्धि किसी चालीसा की नहीं है। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो उसको पढ़ने का तरीका क्या है ये भी समझ लेते हैं। हनुमान जी और उनके ईष्ट भगवान श्री राम के चित्र की स्थापना करिए या उनकी मूर्ति रखिए। इसके बाद उनके सामने जल से भरा हुआ एक पात्र रखिएगा। कम से कम 3 बार या 3 बार से ज्यादा 108 बार तक आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर समय का बहुत अभाव है तो श्रद्धा पूर्वक 1 बार भी पाठ किया जा सकता है। चालीसा के पाठ के बाद उस जल को जो सामने रखा था प्रसाद की तरह ग्रहण करिएगा और प्रयास करिए कि रोज एक समय बना लीजिए कि मैं शाम को 7 बजे या 8 बजे चालीसा का पाठ करूंगा और उसी समय अगर रोज पाठ करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। विशेष दशाओं में यात्रा करते समय और सोते समय भी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। आप ट्रेन से, प्लेन से यात्रा कर रहे हैं
और चालीसा पढ़ने का समय हो गया है तो आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या बहुत बीमार हैं तो पलंग पर लेटे लेटे भी आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा की पंक्तियों को, हनुमान चालीसा की जो अलग अलग 40 लाइनें हैं, उनको अलग अलग मंत्र की तरह भी जपा जा सकता है, मंत्र की तरह भी जपकर प्रयोग किया जा सकता है। चालीसा की अलग अलग पंक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे वो आगे आपको बताएंगे, साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब आप जब चालीसा की लाइन को मंत्र की तरह पढ़ने जा रहे हैं तो उसके नियम और सावधानियां क्या हैं? देखिए, हनुमान चालीसा में से किसी एक पंक्ति का चुनाव अपनी आवश्यकता के अनुसार करिए। रोज सुबह तुलसी की माला पर मंत्र की तरह 3 से लेकर 11 माला तक जप करिए, और जितने समय तक आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या हनुमान चालीसा की पंक्ति का पाठ कर रहे हैं उतने समय तक अपना खान पान सात्विक रखिए और अपने आचरण की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। आप चाहें तो हनुमान चालीसा की पंक्ति को लाल कलम से पीले कागज पर लिखकर अपने पास रख सकते हैं। तो हनुमान चालीसा की वैसे तो हर पंक्ति चमत्कारी है, लेकिन आपको बताते हैं कुछ चमत्कारी पंक्तियों के बारे में और उनके प्रयोग के बारे में। अगर आप अपनी विद्या बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं तो क्या पढ़ेंगे? बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये निरंतर अगर आप रोज सुबह 108 बार पढ़ें और प्रयास करें तो आपको विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी। अगर स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो पढ़िएगा लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। अगर आप रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं, संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं तो आप पढ़ेंगे रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं, क्रोध से बचना चाहते हैं, स्वास्थ्य को हमेशा अच्छा रखना चाहते हैं तो पढ़िएगा नासय रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासय रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। और जब आपके जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाएं और समस्या काफी कठिन हो जाए तब क्या पढ़ेंगे? दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते
सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। तो आप पूरी हनुमान चालीसा न भी पढ़ें, अपनी जरूरत के हिसाब से आप किसी एक पंक्ति का चुनाव करें और उसको मंत्र की तरह अगर रोज प्रातः 108 बार पाठ करें तो आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो हमने आज आपको बताया हनुमान चालीसा के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में। अब बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। धन रखने की आलमारी इस तरह से रखिए कि आलमारी पूरब या उत्तर दिशा की तरफ खुले। अगर इस तरह से अलमारी रखते हैं कि वो पूरब उत्तर की तरफ खुले और उसमें धन रखते हैं तो इससे धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, बचत सरलता से होगी। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लें। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: जोधपुर में भारत और जापान की वायुसेनाएं आज से करेंगी युद्धाभ्यास। वीर गार्जियन 2026 एक्सरसाइज में 22 सितंबर तक दोनों देशों के लड़ाकू विमान दिखाएंगे दमखम। देश भर में गणेशोत्सव को लेकर सजे बाजार, अकोला से लेकर सूरत तक बप्पा के आगमन पर खुशी के साथ झूमे तमाम भक्त। राजधानी में बप्पा के भोग की विशेष तैयारी, चॉकलेट से लेकर स्ट्रॉबेरी तक मोदक के नए फ्लेवर तैयार, काजू, ड्राई फ्रूट्स, हेजलनट और कलाकंद भी ग्राहकों को खूब पसंद आ रहे। महाराष्ट्र में पोला पर्व की उमंग, बैलों के श्रृंगार के सामान से सजे बाजार, रस्सी और घुंघरू वाले पट्टे खरीदने पहुंच रहे किसान। एप्पल ने आईफोन 18 प्रो, प्रो मैक्स और अल्ट्रा लॉन्च की तैयारी की, ग्राहकों में उत्साह, आज रात हो सकता है लॉन्च।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुडलक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मंगल दोष के बारे में। अधिकतर लोगों का मानना है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष होता है तो कुछ ना कुछ अशुभ जरूर होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि मंगल दोष होने से भी आपके जीवन में आ सकते हैं बहुत सारे लाभ, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिससे आपकी जिंदगी ही बदल सकती है। लेकिन उस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अपने घर में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन एक ही बर्तन में न तो पकाइए और न परोसिए। ऐसा करने से घर के भोजन में कभी पवित्रता नहीं रह पाएगी। और आपके घर में उसी थाल में आप नॉनवेज खाते हैं, उसी थाल में भगवान को भोग लगाते हैं, तो ऐसा भोग स्वीकार नहीं होगा, ऐसी पूजा पवित्र नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिए।
0: और आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि मंगल दोष का आखिर अर्थ क्या है।
1: जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो मंगल दोष के जीवन में फायदे भी होते हैं। क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, मंगल दोष के, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मंगल दोष का अर्थ क्या होता है। किसी भी कुंडली में मंगल की विशेष स्थिति को मंगल दोष कहा जाता है। मंगल अगर कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में बैठा हो तो इसको मंगल दोष कहते हैं। दक्षिण भारत में कुंडली के दूसरे भाव में भी मंगल बैठा हो तो इसको भी मंगल दोष कहा जाता है। माना जाता है, लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कुंडली में मंगल दोष है तो ये स्थिति नकारात्मक ही होती है। इससे वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य में समस्या अवश्य होती है। लोग मंगल दोष को ज्यादातर बुरा और ज्यादातर निगेटिव मानते हैं, लेकिन मंगल दोष के विशेष लाभ भी जीवन में पाए जाते हैं। मंगल के दोष के नुकसान अवश्य हैं, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं है, लेकिन मंगल दोष के कभी कभी बहुत सारे फायदे भी होते हैं जो हम आपको बताएंगे कि मंगल दोष के फायदे और नुकसान क्या हैं।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मंगल दोष के बारे में। अगर मंगल प्रथम भाव में हो तो इसके लाभ और इससे क्या क्या हानि हो सकती है, आइए जानते हैं।
1: अगर मंगल कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हो तो क्या फायदा, क्या नुकसान। अगर मंगल कुंडली के लग्न में बैठा है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होता, चेहरे पर खासतौर से गालों पर एक लालिमा रहती है। लग्न में जब मंगल प्रथम भाव में बैठता है तो व्यक्ति अपनी माता और जीवन साथी के प्रति खराब व्यवहार करता है और इस वजह से वैवाहिक जीवन में समस्या आ जाती है। फायदे क्या हैं? अगर लग्न में मंगल बैठा है तो व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है, कठिन से कठिन स्थितियों में भी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। यानी अगर लग्न में मंगल होगा तो आदमी साहसी होगा, मुश्किलों का सामना कर लेगा। इस मंगल के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए नियमित रूप से गुड़ का सेवन करना चाहिए और लाल रंग का प्रयोग जीवन में कम से कम करना चाहिए।
0: और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता दिख रहा है, परिवार में व्यस्तता रहेगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में सुधार होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और आइए अब जानते हैं कि अगर मंगल चतुर्थ भाव में हो तो इसके लाभ क्या है और इससे क्या क्या हानि है जो हो सकते हैं।
1: अगर मंगल चतुर्थ भाव में है तो इसकी हानियां क्या हैं और इसके लाभ क्या हैं। चतुर्थ भाव का मंगल दोष सबसे कम अशुभ प्रभाव पैदा करता है, लीस्ट डेंजरस है, सबसे हल्का मंगल दोष है। ये मंगल वैवाहिक जीवन में तालमेल में समस्या देता है, बिना वजह के पति पत्नी के बीच में डिफरेंसेस पैदा होते हैं। ऐसे लोग जिनका चतुर्थ भाव में मंगल होता है, ऐसे लोग बड़े शक्तिशाली और बड़े आकर्षक होते हैं, ताकतवर बहुत होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और दूसरों को बड़ी तेजी से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। चतुर्थ भाव के मंगल की वजह से अगर दिक्कत आ रही है तो हनुमान जी की उपासना करने से लाभ होगा और घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करिए ताकि घर में एनर्जी का लेवल बैलेंस बना रहे।
0: और आइए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और अब वक्त हो गया है आज के सवालों का, जिसके जवाब पंडित जी आपको देते हैं। और वक्त है पहले सवाल का, तो आइए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
1: आज का पहला प्रश्न नम्रता ने हमें लिखा है और नम्रता हमें मेल लिखती हैं बरेली उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 19 जून 1986, जन्म का समय रात में 11:10, जन्म स्थान है मुरादाबाद। मेल लिखती हैं बरेली से। ये लिख रही हैं कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत परिश्रम करने के बावजूद भी जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो भविष्य हमारा कैसा रहेगा। नम्रता, आपको बता दें कि आपकी कुंडली के हिसाब से आर्थिक स्थिति देखो कुल मिला के मध्यम रहेगी, लेकिन इतना जरूर रहेगा कि जीवन आराम से चल सके। 2027 के आरंभ होने के साथ स्थितियां बेहतर होंगी, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। दो काम करिए, रोज सुबह और शाम दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिए और रोज सुबह जितना दिन कर सकें सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल डालिए, आपको लाभ होगा।
0: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप हमें सवाल भेजना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का दूसरा सवाल वो किसका लेंगे।
1: जी, अगला प्रश्न प्रशांत जी ने हमें लिखा है और प्रशांत जी हमें अमृतसर पंजाब से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 जनवरी 1973, जन्म का समय शाम के 6:00, जन्म का स्थान है गुरदासपुर पंजाब। ये कह रहे हैं कि मैं काफी समय से अपना मकान बनाने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन मकान नहीं बन पा रहा है, कोई ना कोई अड़चन उसमें आ रही है, तो मैं अपना मकान कब तक बना पाऊंगा और अड़चनों को दूर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? 6 से 8 महीने लगेंगे, अगले साल के अप्रैल मई के बाद आप नए मकान में शिफ्ट हो पाएंगे। मंगल की गड़बड़ी की वजह से इसमें बार बार बाधा आ रही है, तो सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं या गुड़ का दान करें तो काफी बेहतर होगा।
0: तो चलिए जानते हैं कि अगर मंगल सप्तम भाव में हो तो इससे हमारे जीवन में क्या क्या लाभ हो सकते हैं और किस तरह की हानि है जो हमें हो सकती है।
1: अब अगर मंगल किसी की कुंडली के 7वें स्थान में बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो, तो इसके नुकसान क्या हैं और इसके फायदे क्या हैं? देखिए, सप्तम भाव में जब मंगल बैठता है तो ये व्यक्ति के अंदर उग्रता और हिंसा, एग्रेशन और वायलेंस पैदा करता है। इसकी वजह से व्यक्ति अपने पारिवारिक

0: का फायदा ये है कि ये मंगल संपत्ति और संपत्ति संबंधी कार्यों में लाभकारी होता है। ऐसा व्यक्ति बड़े पद पर रहता है और ढेर सारी संपत्तियों का स्वामी होता है। इस मंगल के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए मंगलवार का उपवास रखें और एक तांबे का छल्ला मंगलवार को अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में धारण करें। सप्तम भाव के मंगल का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा।
1: और आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी, चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, सेहत बिगड़ सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के निवेश में सावधानी रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: इससे पहले हमने जाना कि अगर मंगल सप्तम भाव में है तो उसके क्या लाभ और हानि हो सकते हैं, और अब बारी है मंगल के अष्टम भाव में होने की। तो अगर आपका मंगल अष्टम भाव में है तो उससे क्या है जो आपके जीवन में लाभ हो सकते हैं, खुशियां आ सकती हैं, और किस तरह की हानि है जो आपके जीवन को बदल सकती है, आइए जानते हैं।
0: अगर मंगल कुंडली के आठवें स्थान में बैठा हो तो इसके नुकसान क्या है और इससे फायदा क्या होता है। देखिए, अगर मंगल अष्टम भाव में है तो ये सबसे ज्यादा नकारात्मक मंगल है, सबसे ज्यादा निगेटिव मंगल है। ये मंगल वाणी को और स्वभाव को खराब कर देता है। अष्टम के मंगल की वजह से जीवन में अकेलापन भी पैदा होता है और कभी कभी पाइल्स की और त्वचा की समस्या भी हो जाती है। अष्टम का मंगल वैवाहिक जीवन में अलगाव का या दुर्घटनाओं का कारण बनता है। इसका फायदा यह है

0: कारण आकस्मिक रूप से धन का लाभ होता है और व्यक्ति कभी कभी बहुत अच्छा शल्य चिकित्सक सर्जरी वाला व्यक्ति सर्जन बन जाता है। अगर अष्टम का मंगल है तो इसके दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए रोज सवेरे मंगल के मंत्र का जप करिएगा और हर मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाइएगा।
1: और अब वक्त हो गया है मंगल के द्वादश भाव के बारे में जानने का। अगर आपका मंगल द्वादश भाव में है तो किस तरह का गेम चेंजर ये हो सकता है, किस तरह के लाभ आपके जीवन में इससे आ सकते हैं और किस तरह की हानि आपके जीवन में हो सकती है, आइए जानते हैं।
0: आखिरी मंगल दोष बनता है अगर मंगल कुंडली के द्वादश भाव में हो, यानी कुंडली के 12वें स्थान में हो। ये मंगल 12वें का मंगल भी उतना ज्यादा नकारात्मक नहीं होता। ये मंगल सुख की, भोग विलास की इच्छा को भड़काता है। द्वादश में अगर मंगल हो, 12वें मंगल हो, तो ऐसे लोग किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते। ये मंगल वैवाहिक जीवन में और रिश्तों में अहंकार की समस्या देता है। 12वें स्थान का जो मंगल दोष है ये भी सामान्य नकारात्मक होता है, बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं होता। इसका फायदा यह है कि अगर 12वें स्थान में मंगल है तो व्यक्ति विदेश में बड़ी सफलता पाता है, ढेर सारे लोगों के प्रेम और आकर्षण का पात्र बनता है। द्वादश का मंगल होगा, आप अपने परिवार से, अपने घर से, अपने नेटिव प्लेस से जितना दूर जाएंगे उतना ही आप सफल होंगे। द्वादश के मंगल के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए मंगलवार का उपवास रखना फायदेमंद होता है।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफलों को जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, आपके परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, परिवार में समस्या हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें, ऑफिस में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और आइए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का तीसरा सवाल वो किसका और कहां से लेने वाले हैं।
0: जी अगला प्रश्न स्वाति ने हमें लिखा है और स्वाति हमें मेल लिखती हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 24 मई 1994। जन्म का समय 11:30 सवेरे। जन्म स्थान है दिल्ली। स्वाति कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूं और काफी समय से उसमें अड़चन आ रही है, तो क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो पाएगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। स्वाति, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से ही होगा, जाने पहचाने बालक के साथ, और इस साल के अंत में आपके विवाह हो जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हो सके तो एक बार कुंडली भी बालक की दिखा लीजिएगा, उसमें कुछ कमी है तो विवाह के पहले उसका उपाय कर लीजिएगा ताकि आगे चल करके उसमें कोई मुश्किल ना आए। एक जरकन बनवा लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का जरकन, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक जरकन धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब समय हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो चलिए जानते हैं आज का अंतिम और चौथा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न आलोक अग्रवाल ने हमें लिखा है और आलोक जी हमें मेल लिखते हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1980। जन्म का समय 9:10। जन्म का स्थान है आगरा। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी में काफी समय से बदलाव की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मेरी नौकरी में बदलाव नहीं हो पा रहा है, तो नौकरी मेरी कब तक बदलेगी और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। आलोक, ज्योतिष के हिसाब से अभी नौकरी बदलने का उचित समय नहीं है, जहां पर हैं वहीं पर रहिए। अप्रैल 2027 के बाद अगर आप नौकरी बदलने का प्रयास करें तो उस समय नौकरी बदलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखिएगा, बिना जरूरत के बिना वजह व्यापार में मत जाइएगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, एक सवाल था, बहुत से लोग, इनफैक्ट हर घर में शायद ये होता होगा कि अगर आप मांगलिक हैं तो आपकी शादी किसी मांगलिक से ही होगी, वरना नहीं होगी, वरना शादी में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती। तो क्या सच में ऐसा होता है कि हमारी शादी जो मांगलिक है वो मांगलिक से ही होनी चाहिए?
0: जी देखिए, अगर आपकी कुंडली मांगलिक है तो लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे बेटे की, मेरी बेटी की कुंडली मांगलिक है तो इसकी शादी तो मंगली से ही कराएंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है कि मंगली की शादी मंगली से ही हो जाए तो ठीक है, लेकिन याद रखिए आपको सिर्फ ये देखना है कि मान लिया लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, लेकिन लड़की की कुंडली से अगर लड़के का मंगल कैंसिल हो रहा है तो मंगली हो या ना हो शादी हो सकती है। यानी अगर मान लिया लड़के की कुंडली में मंगल लग्न में बैठा है, कुंडली मांगलिक है, लड़की की कुंडली मांगलिक नहीं है लेकिन लड़की के लग्न में सूर्य बैठा है या राहु बैठा है या केतु बैठा है, उसी भाव में पाप ग्रह बैठे हैं लड़की के जन्मांग में, तो लड़के का मंगल दोष कैंसिल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर मंगल दोष को मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बिल्कुल मत समझिए कि मंगली की शादी मंगली से ही होनी चाहिए। मंगली की शादी करते समय ये देखिए कि आप जिस लड़की से या जिस लड़के से शादी कर रहे हैं उसकी कुंडली से आपका मंगल कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर मंगल कैंसिल हो रहा है भले ही अगला आदमी मांगलिक ना हो तो भी विवाह किया जा सकता है। ऐसा कोई नियम जरूरी नहीं है कि मंगलिक की शादी मांगलिक से ही कराई जाए।
1: जिनका जन्मदिन है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, करियर में इस समय कोई जोखिम कोई रिस्क ना लें, आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी, अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रां राहवे नमः। पूरे साल भर इस मंत्र का जप करें, वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि बहुत सारे लोग फटे हुए कपड़े फैशन में पहनते हैं, खास तौर से फटी हुई जीन्स, तो क्या फैशन में फटे हुए वस्त्र पहनना उचित है? देखिए, फटे हुए वस्त्र दरिद्रता और दुर्भाग्य के प्रतीक हैं। फैशन के तौर पर फटे वस्त्र पहनना उचित नहीं है। हाँ, मजबूरी है, पैसा ही नहीं है, अभाव बहुत है, तो मजबूरी में फटे वस्त्र पहनना एक अलग बात है।
1: गुडलक में हम जानेंगे शुभ पहर के बारे में, तो आइए जानते हैं आज का शुभ पहर कौन सा है।
0: शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है, जो बाधा चली आ रही है, वो बाधा समाप्त होगी।
1: और आइए जानते हैं कि आपकी गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए सप्ताह का कौन सा दिन बहुत शुभ होता है और कौन सा दिन शुभ नहीं होता है। आज की गुडलक राशि है तुला। इनके लिए शनिवार का दिन सबसे ज्यादा अनुकूल रहता है। इनको बृहस्पतिवार के दिन महत्वपूर्ण काम करने से बचना चाहिए।
1: गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: बहुत बार ऐसा होता है कि हम नया घर खरीदते हैं, नया फ्लैट खरीदते हैं, और जब नए घर में चले जाते हैं रहने, नए घर में रहने लगते हैं, तो नए मकान में प्रवेश के बाद से समस्याएं आने लगती हैं। क्या करें अगर नए मकान में प्रवेश के बाद समस्याएं आ रही हैं? घर में लगातार 3 रविवार को गायत्री मंत्र से हवन करवा लीजिए। घर के दक्षिण दिशा में ऊपर एक लाल रंग का ध्वज, लाल रंग का झंडा लगा लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर राइट या लेफ्ट एक अनार का पौधा लगा दीजिए। आपके घर की शुभता बढ़ेगी और घर में प्रवेश करने के बाद जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं गायब हो जाएंगी।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: चलिए अब बात विघ्नहर्ता के प्रिय भोग मोदक की कर लेते हैं। देखिए, गणपति की स्थापना से लेकर विसर्जन तक पूजा पाठ और भक्ति की परंपरा निभाई जाती है। इस दौरान बप्पा को मोदक का भोग लगाना बेहद अहम परंपरा है। दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में एक ऐसी ही दुकान मौजूद है जो 116 साल पुरानी है और करीब 35 साल से मोदक बना रही है। बदलते वक्त के साथ भगवान गणेश के प्रिय भोग मोदक का रंग रूप ही नहीं, उसका स्वाद भी बदलता जा रहा है। कभी नारियल, गुड़ और शुद्ध घी से तैयार होने वाला पारंपरिक मोदक गणपति बप्पा के भोग की पहचान बना हुआ करता था, लेकिन अब दिल्ली की ये बेहद पुरानी दुकान मोदक के नए नए फ्लेवर परोस रही है। पहले मोदक मुख्य रूप से स्टीम या फिर फ्राई करके बनाए जाते थे, लेकिन अब समय के साथ इसकी रेसिपी और अंदाज भी बदल गया है।

0: गणेश, गजानन, गणपति, विनायक, लंबोदर, गौरीपुत्र। पापा के नाम अनेक है लेकिन भाव एक ही है, भक्ति और विश्वास का। पापा को सच्चे मन से जिस नाम से भी पुकारो, वो अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। गणेश उत्सव के पावन 10 दिनों में श्रद्धा और विश्वास के साथ गणपति के नाम का स्मरण मात्र से जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। मन को नई शक्ति, आशा और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सबसे बड़ी बात, भगवान गणेश को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। गौरीपुत्र का मन मोहने के लिए मोदक सबसे प्रिय और उत्तम भोग माना जाता है। गणेश चतुर्थी या किसी भी शुभ अवसर पर बप्पा को 21 मोदक का भोग लगाने का विधान है। बिना मोदक के गणपति की पूजा अधूरी मानी जाती है। पारंपरिक तौर पर नारियल और गुड़ से बनने वाला मोदक भगवान गणेश का सबसे प्रिय भोग है। भक्तों की तरफ से बप्पा को मोदक के भोग मात्र से शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि गणेश उत्सव के दौरान मोदक की खुशबू से गणपति अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। दिल्ली के चावड़ी बाजार में मिठाई की कैसी पुरानी दुकान मौजूद है जो बप्पा को भोग लगाने के लिए तरह तरह के मोदक बना रही है। 1910 से यहाँ मौजूद दुकान में मोदक बनाने का काम 35 वर्षों से चल रहा है।
1: बप्पा के आने की तैयारियां हर तरफ दिखाई पड़ रही है। आज हम आपको दिल्ली के दिल चांदनी चौक में लेकर आए हैं और चांदनी चौक की उस दुकान पर जहां पिछले 35 साल से लगातार मोदक तैयार किया जा रहा है, बप्पा का फेवरेट भोग तैयार हो रहा है। आज भी हम आपको यहां पर अलग अलग तरह के मोदक की तैयारी दिखा रहे हैं, वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं, उनकी मेकिंग दिखा रहे हैं। किचन में हम मौजूद हैं और आपको बात करवाएंगे उन लोगों से भी जो पिछले 35 सालों से लगातार इस काम में लगे हुए हैं। ये दुकान 1910 के आसपास शुरू हुई थी, लेकिन ये इस दुकान के उन लोगों का इनोवेशन ही था कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नई चीज़ लाई जाए जो कि नॉर्थ इंडिया में भी बहुत तेज़ी से चल जाए। और नए के नाम पर वो पहुँचे महाराष्ट्र और वहाँ से लेकर आए ये सांचा। ये वो पहला सांचा है जो इस दुकान के पूर्वज लेकर आए थे मोदक बनाने के लिए। ये सांचा आया और तब से यहाँ पर बप्पा का फेवरेट भोग मोदक बनना शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक ये लगातार ऐसे ही बन रहा है। 25 से ज़्यादा फ्लेवर ये लोग खुद बनाते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल फ्लेवर ऑर्डर भी करता है तो उसकी पसंद का मोदक भी यहाँ पर तैयार हो जाता है।
0: घी, गुड़ और नारियल का मिलन ही मोदक का असली और पारंपरिक स्वाद है। हालांकि 35 साल से मोदक बेचने वाली ये दुकान बदलते वक्त के साथ ग्राहकों के मिजाज के साथ अपने स्वाद में नए नए फ्लेवर जोड़ रही है। दुकान की पुरानी पहचान में कुछ नया जोड़ने के लिए दुकान से जुड़े लोग महाराष्ट्र गए थे, जहां से वो मोदक की रेसिपी, साचा और उसे तैयार करने वाले दोनों को दिल्ली लेकर आए और तब से मोदक बनाने का सिलसिला शुरू हो गया।
2: हमारे बड़े गए, कभी बाहर घूमने गए होंगे या किसी कारणवश गए होंगे किसी काम से, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ देखी, तो वहाँ से मोदक बनाने का साँचा लेके आए, वहाँ से रेसिपी लेके आए, वहाँ से कारीगर को लेके आए, वो बनाना सीखा, वो रेसिपी आज तक है हमारे पास। और वो साँचे भी हैं, जैसे ये बहुत पुराने साँचे हैं, मतलब मैं अगर गलत नहीं हूँ तो करीबन 40 से एक साल तो हो गए होंगे इस साँचे को, जो आज भी हमने संभाल के रख रखा है उनकी याद में।
1: कि सबसे पहले आया था?
2: हाँ जी, ये आया था एक बड़े के लिए और एक छोटे के लिए, ये था इस तरीके से जी है। तो पहले तो अब तो आज की डेट में बहुत सारे स्टील के बनते हैं, स्टेनलेस स्टील के, प्लास्टिक के बनते हैं, बट ये पहले के जमाने में जो हाथ से बनते थे ये यही थे।
0: यहाँ चावल, काजू, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट के अलावा स्ट्रॉबेरी, हेजलनट, कलाकंद के मोदक भी ग्राहकों को खूब पसंद आते हैं। जेनजी को ध्यान में रखते हुए पिछले कई सालों से चॉकलेट और उसके अलग अलग फ्लेवर के मोदक के स्वाद को भी तैयार कर रहे हैं।
2: मोदक असल बनना शुरू हुआ था महाराष्ट्र से, साउथ साइड से वो बनना शुरू होता है सब अनाज का, बट दिल्ली में आते आते उसके फ्लेवर्स वेरिएशंस चेंज हो गए। जैसे अब आप यहाँ पे इस थाल में देख पा रहे हैं, एक मोतीचूर का है, केसर का है, मोती बूंदी का है, स्ट्रॉबेरी का है, आपका खोए का है, पेड़े का है, ये आपका कीवी का हो गया, मोटे गोले का हो गया, अल्फांसो विद चॉकलेट हो गया, कलाकंद का हो गया, ये केसर मिक्स हो गए, इस तरीके से वेरिएशंस हैं अलग अलग तरीके के, और इसके अलावा ना जाने कितने किस्म के बन जाते हैं।
0: मोदक की कीमत, उसकी वैरायटी और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री के हिसाब से तय होती है। यहाँ मोदक करीब 600 रुपए प्रति किलो से मिलना शुरू हो जाते हैं। खास बात यह है कि ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से भी मोदक के अलग अलग स्वाद यानी वैरायटी चुन सकते हैं।
1: तो हम लोग इसकी बात करें तो पैकेजिंग का भी आप लोग बहुत खास ख्याल रखते हैं। जो आप प्लेट देख रहे हैं ये भी मेरे ख्याल से गिफ्टिंग की ही प्लेट है, पैकेजिंग की प्लेट है।
2: ये प्लेट भी गिफ्टिंग की है, जैसे ये जर्मन सिल्वर की है प्लेट, इस तरीके से प्लेट्स रहती हैं। मैं आपको एक प्लेट और दिखाता हूँ, ये देखिए एक प्लेट और, ये प्लेट भी है। इसके अंदर भी लगा के दिए जाते हैं, इसके अंदर हम मिठाई लगाएं, मोदक लगाएं, मल्टीपर्पज़ तरीके से तैयार हो जाती हैं ये, जैसे सामने वाले का मन हो। और इसमें गणेश जी के एक आइडल भी है साथ में।
0: बप्पा को हर दो बार मोदक का भोग लगता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश उत्सव के दौरान मोदक की खुशबू से गणपति अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। दिल्ली से मनीष अरोसे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए अब बात महाकाल की नगरी उज्जैन की कर लेते हैं, जहां सावन भादो माह की बाबा की छठी और अंतिम राजसी सवारी पूरे धूमधाम के साथ निकली। इस विशेष मौके पर सोमवार को महाकाल की पूरी नगरी आस्था की दिव्य छटाओं से सराबोर नजर आई। इस सवारी को देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से विशेष रूप से लोग यहां पर पहुंचे और बाबा के अलग अलग रूपों के दर्शन कर धन्य भी हुए।
4: कराबीन के धमाके, पुलिस बैंड की शानदार धुन, भोले शंकर और मां पार्वती का रूप धरे कलाकार, भूत पिशाच के रूप में भगवान शिव की कथा, पुरुष और महिला भजन मंडलियों का उत्साह, वाद्य यंत्रों की थाप के साथ भक्तों का जबरदस्त जोश, महाकाल की सोमवार को सावन भादो मास की जब छठी और आखिरी राजसी सवारी निकली तो उसकी छटा देखने लायक थी। हर कोई शिव भक्ति में मगन, हर किसी पर छाया था महाकाल के नगर भ्रमण की खुशी का। सवारी निकलने से पहले मंदिर के सभा मंडप में भगवान के सभी स्वरूपों का पूजन किया गया और फिर शंख ध्वनि और जयकारों के साथ शाम 4 बजे रजत पालकी पर सवार होकर भगवान चंद्रमौलेश्वर अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने निकले। सवारी में आगे आगे धमाका करते कड़ाबीन का दल सृष्टि के अधिपति के आने की सूचना दे रहा था। पुलिस का अश्वरोही दल, पुलिस बैंड की मधुर धुन, सशस्त्र बल की टुकड़ी भगवान की राजसी वैभव की गाथा कह रहे थे। डमरू झांझ मजीरे बजाने वाला दल और महिला पुरुषों की भजन मंडलियां माहौल को भक्तिमय बना रही थी। रास्ते में पुष्प वर्षा कर महाकाल की सवारी का स्वागत होता रहा। इस बार सिंहस्थ थीम पर आधारित सवारी में प्रसिद्ध 84 महादेव और सिंहस्थ कुंभ से जुड़ी झांकियां भी शामिल रही। सवारी में कोई शिव पार्वती के रूप में था तो कोई बालाजी भगवान के रूप में, नन्हे बच्चे भी शिव वेश में आकर्षित करते रहे। सवारी के साथ बच्चे कर्तव्य करते भी आगे चल रहे थे। डमरू दल झांझ मजीरे बचाते भक्त पूरी तरह से महाकाल की भक्ति में डूबे नजर आए। महिलाएं भी पूरी तरह से शिव भक्ति में लीन थी।
5: बाबा महाकाल महाराज अवंती में भगवान तो स्वरूप में है ही सही, बाकी पूरे अवंतिका के राजा भी है। तो राजा अपने और भगवान महाकाल महाराज और राजा अधिराज भक्त वत्सल है, तो भक्तों को दर्शन देने भी जाते हैं और खुद भी अपने भक्तों के दर्शन करते हैं।
4: सवारी में भगवान महाकाल ने अपने 6 दिव्य रूपों में भक्तों को दर्शन दिए। रजत पालकी में भगवान चंद्रमौलेश्वर, गरुड़ पर शिव तांडव, नंदी पर उमा महेश, डोल पर होलकर मुखौटा, इसके बाद सप्तधान मुखौटा और हाथी पर मन महेश स्वरूप में बाबा के दिव्य स्वरूपों के दर्शन पाकर भक्त धन्य हो गए।
6: भव्य सवारी देखी, हम दिल्ली से आए हैं और स्पेशली भगवान के दर्शन करने आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर दर्शन हुए और बस बता नहीं सकते, हमें बहुत अच्छा लगा।
4: भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच महाकाल की राजसी सवारी ने भक्तों को दर्शन देने के लिए करीब 11 किलोमीटर का भ्रमण किया। नगर के अलग अलग मार्गों से होते हुए सवारी क्षिप्रा नदी पहुंची, जहां क्षिप्रा के पावन जल से भगवान का अभिषेक पूजन किया गया।
5: क्योंकि ये सावन और भादों की अंतिम सवारी है और श्रद्धा का आस्था का विषय है, तो लाखों लोग पब्लिक दर्शन करने के दर्शन लाभ ले चुके हैं क्षिप्रा नदी पे भगवान का पूजन, क्योंकि क्षिप्रा मोक्षदायिनी है और महाकाल महाराज में क्षिप्रा का बड़ा ही महत्व है। जिस प्रकार से ओमकारेश्वर में नर्मदा का महत्व है, जगत काशी में गंगा का महत्व है, उसी प्रकार महाकाल अवंतिका में क्षिप्रा का महत्व है। क्षिप्रा पूजन भगवान महाकाल महाराज का किया जाता है।
4: महाकाल की नगरी उज्जैन में श्रावण भादो मास में बाबा महाकाल को नगर भ्रमण कराने की सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा है। श्रावण मास की प्रतिपदा से भाद्रपद की अमावस्या तिथि तक जितने भी सोमवार आते हैं उनमें महाकाल की दिव्य सवारी यूं ही निकलती है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: सोचिए जरा, एक रोबोट आपके घर में आए और सिर्फ चलने या बोलने के बजाय फ्रिज खोले, सामान उठाए, चीजों को सही तरीके से पकड़े और आपके साथ मिलकर काम करे। सुनने में भविष्य की कहानी लगती है, लेकिन ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद के सामने इसकी झलक दिखाई गई। एआई पावर्ड रोबोट्स ने अपनी ऐसी क्षमताओं का प्रदर्शन किया जो आने वाले वक्त में घर से लेकर फैक्ट्री तक काम करने का तरीका बदल सकती हैं।

0: ये तस्वीर उस भविष्य की है जहां मशीनें सिर्फ मशीन नहीं रहेंगी। ब्रसेल्स में यूरोपियन संसद के खास रोबोटिक शोकेस में एआई पावर्ड रोबोट्स ने ताकत दिखाई। चलते रोबोट्स, चीजें उठाते रोबोट्स और बारीकी से काम करते रोबोट्स। 14 देशों के 31 एकेडमिक और इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के 15 रोबोट्स ने दिखाया कि मशीनें अब सिर्फ प्रोग्राम किए गए काम दोहराने से आगे बढ़ रही हैं। इन रोबोट्स की सबसे बड़ी खासियत है अपने आसपास की दुनिया के साथ तालमेल, किसी वस्तु को पहचानना, उसके आकार और स्थिति को समझना, फिर उतनी ही ताकत से पकड़ना जितना जरूरी हो। इंसान के हाथ के लिए ये सब बेहद स्वाभाविक है, लेकिन एक रोबोट के लिए हर मूवमेंट के पीछे सेंसर, एआई और बेहद सटीक गणना काम करती है। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है फ्रिज खोलना, हमारे लिए रोज का मामूली काम, लेकिन रोबोट के लिए एक पूरा मिशन। उसे फ्रिज देखना है, हैंडल पहचानना है, सही जगह हाथ ले जाना है, ग्रिप बनानी है और फिर सही ताकत लगाकर डोर खोलना है।
1: So they have to interact with our environment, open doors, open door, drawers. In the case of our robot has to open the fridge, which seems like a simple task, we do it all the time. But imagine when you do it and your hand is very soft and compliant and is doing very quick movement.
0: असली कमाल सिर्फ रोबोट्स के चलने में नहीं, कमाल तब है जब वो देखकर फैसला करे, हाथ बढ़ाए और काम पूरा करे। और यही क्षमता इन्हें घर, अस्पताल और दूसरी जगहों पर इंसान का मददगार बनाने की दिशा में ले जा रही है। लेकिन इस तकनीकी दौड़ में यूरोप के सामने बड़ी चुनौती भी है। चीन और अमेरिका ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में भारी निवेश के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यूरोप के पास मजबूत रिसर्च है, लेकिन उसे लैब से निकालकर बड़े पैमाने पर उत्पादन तक पहुंचाने की रफ्तार अभी चुनौती बनी हुई है।
2: Huge ecosystem of suppliers, of technology, manufacturing facility that allow to accelerate and go very, very fast as China is doing or how US is doing because of the large investment that they are receiving.
0: ये सिर्फ तकनीक की दौड़ नहीं है, बुजुर्ग होती आबादी और घटते वर्कफोर्स के बीच आने वाले वक्त में ऐसे रोबोट्स की जरूरत और बढ़ सकती है।
3: It's definitely lack of funding and lack of political awareness. It's not that we don't get funding. It's not that the politicians do not pay attention to robotics, but clearly not at the same level as what happens in China.
0: फ्रिज के डोर खोलने से शुरू हुई ये कहानी घर के काम से लेकर फैक्ट्री के मुश्किल काम तक पहुंच सकती है। बेशक रोबोट्स इंसान नहीं बन सकते, लेकिन उन्हें इंसान की तरह काम सिखाने की कोशिश अब पूरी रफ्तार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: गुजरात के आनंद में गणेशोत्सव की खास तैयारी, कार्टून कैरेक्टर्स ने बच्चों को लुभाया, निकली भव्य झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी यहां पर आयोजन किया गया।
8: पापा के विशेष भोग की तैयारी, चॉकलेट से लेकर स्ट्रॉबेरी तक मोदक के नए फ्लेवर तैयार, घरों में भी बनाए जा रहे हैं तरह तरह के मोदक।
7: महाराष्ट्र में पोला पर्व की उमंग, बैलों के श्रृंगार के सामान से सजे बाजार, रस्सी और घुंघरू वाले पट्टे खरीदने पहुंच रहे किसान।
8: जोधपुर में आज से 22 सितंबर तक वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास, भारत और जापान की वायुसेना के लड़ाकू विमान दिखाए दमखम।
7: एप्पल ने की आईफोन 18 प्रो, प्रो मैक्स और अल्ट्रा लॉन्च की तैयारी, ग्राहकों में उत्साह, आज रात हो सकता है लॉन्च।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
7: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
8: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा, बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को,
7: तो चलिए शुभ समाचार की शुरुआत गणेशोत्सव के साथ कर लेते हैं। पूरा देश गजानन के रंग में रंगने लगा है, कहीं विशाल पंडाल तैयार हो रहे हैं, तो कहीं बप्पा की भव्य प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी है। मुंबई सूरत में पंडाल सज चुके हैं, तो दिल्ली में खास मोदक बनाए जा रहे हैं, ये सभी तस्वीरें आपके सामने रखेंगे।
8: साथ ही आपको महाराष्ट्र के बैल पोला उत्सव भी लिए चलेंगे, जहां पर इस उत्सव को मनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। महाराष्ट्र में ये उत्सव मुख्य रूप से श्रावण महीने की अमावस्या यानी कि श्रावणी अमावस्या के दिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। किसान इस मौके पर न सिर्फ अपने बैल को सजाते हैं, बल्कि उनका स्वागत और सम्मान भी करते हैं। तो और क्या खास तैयारी कर रही जा रही है, इसके बारे में आगे बताएंगे।
7: देखिये, वही बात आगे करेंगे फिल्म हनुमान अंश के बारे में। फिल्म ने 5वें हफ्ते में रिकॉर्ड बना दिया है और अब भी सिनेमाघरों में लंबी लाइन लगी है। इसी बीच जेएनटी ने फिल्म की टीम से बातचीत की और इस फिल्म को मिल रहे प्यार को हनुमान जी का आशीर्वाद बताया और क्या कुछ कहा, ये भी इस बुलेटिन में आपको बताएंगे।
8: उधर एप्पल आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा ही धमाका करने जा रहा है। नए आईफोन से लेकर एप्पल वॉच और एयरपोड्स तक कई बड़े प्रोडक्ट से पर्दा उठ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें हैं एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन पर। खबरों के मुताबिक एप्पल पहली बार फोल्डेबल फोन की दुनिया में कदम रख सकता है, तो और क्या प्रोडक्ट होंगे पेश आगे बताएंगे।
7: तो इसके अलावा आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क लिए चलेंगे, जहां एक खास एग्जीबिशन लगने जा रही है जिसमें चीन के कलाकार की बनाई मोम की मूर्तियों को दिखाया जाएगा। इस प्रदर्शनी में नामचीन हस्तियों की वैक्स स्टैचू शोकेस की जाएंगी, तो आपको वहां भी लेकर चलेंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 9 बजे की नौ गुड न्यूज का।
8: देशभर में गणेश उत्सव को लेकर उत्साह है। उस बीच अकोला में 30 फीट ऊंचे चिंतामणि गणपति बप्पा का भव्य आगमन हुआ। ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर भक्त जमकर झूमे।
7: और देखिए वहीं पर सिविल लाइन चौक पर बप्पा के मुख से लाल कपड़ा हटाया गया। दर्शन होते ही पूरा चौक गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष के साथ गूंज उठा। गणेशोत्सव पर जैसलमेर में स्थित अनोखे गणेश मंदिर में चहल कदमी बढ़ गई है। यहां भक्त पत्थरों से छोटा घर बनाकर भगवान से अपना आशियाना मांगते हैं। चुंधी गणेश मंदिर 1400 साल पुराना है। मंदिर की मूर्ति को लेकर मान्यता है कि प्रतिमा खुद प्रकट हुई थी। गणेश चतुर्थी पर भव्य मेला लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, गणपति से अपनी मनोकामना मांगते हैं।
8: महाराष्ट्र में पोला पर्व की तैयारी तेज हो गई है। इस मौके पर किसान 364 दिन के साथ देने वाले अपने बैल को एक दिन का खास सम्मान देते हैं। अकोला के बाजार बैलों के श्रृंगार के सामान से सजे हुए हैं। रस्सी, घुंघरू वाले पट्टे, झूम और झूल खरीदने किसान पहुंच रहे हैं। पोला के दिन बैल से खेत में कोई भी काम नहीं कराया जाता।
7: बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं का 3 महीने का वर्षावास शुरू हो गया है। भिक्षु एक जगह रहकर ध्यान साधना पूजा अर्चना करेंगे। बौद्ध धर्म में वर्षावास की परंपरा बेहद खास मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी एक ही जगह पर 24 बार वर्षावास किया था। वर्षावास के दौरान भिक्षु सुबह शाम ध्यान साधना के साथ प्रवचन देते हैं। इन प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं।
8: भारत जापान की वायुसेनाएं जोधपुर में वीर गार्जियन 2026 युद्ध अभ्यास करेंगी। 9 से 22 सितंबर तक दोनों देशों के लड़ाकू विमान आसमान में ताकत दिखाएंगे। इस अभ्यास में भारत के तेजस, सुखोई 30 और राफेल लड़ाकू विमान शामिल होंगे। वहीं जापान अपने F-2A फाइटर जेट के साथ इस अभ्यास में उतरेगा। दोनों देशों के सैनिक मिलकर युद्ध की तैयारी, मिशन प्लानिंग और सुरक्षा पर अभ्यास करेंगे।
7: राजस्थान के पोखरण में 14 से 16 सितंबर तक ड्रोनाथोन 2026 होगा। वायुसेना के इस कार्यक्रम में देश की कंपनियां नए ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम सिखाएंगी। ड्रोनाथोन में निगरानी, झुंड में उड़ने वाले ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर जोर रहेगा। वायुसेना इन तकनीकों को परख कर देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता को और भी मजबूत करेगी।
8: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान का तीसरा गाना मैं तो हैवान नहीं हूं रिलीज कर दिया गया है। गाने में अक्षय कुमार, सैफ अली खान के साथ श्रिया पिलगांवकर और सयामी खेर भी नजर आ रहे हैं। दरअसल इस गाने को प्रीतम ने कंपोज किया है, जबकि इसके बोल कुमार ने लिखे हैं और राघव चैतन्य ने अपनी आवाज दी है।
7: अहमदाबाद में वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज स्टेज 3 के तीसरे दिन भारत ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। मेंस रिकर्व में हरविंदर सिंह और विजय सुंदी की जोड़ी और मेंस कंपाउंड में तोमान कुमार और श्याम सुंदरस्वामी की जोड़ी चैंपियन बनी, तो वहीं विमेंस रिकर्व में भावना और पूजा की जोड़ी चीन से हार गई। उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा।
8: न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में कैरिबियाई संस्कृति का रंग देखने को मिला। वेस्ट इंडियन परेड में हजारों लोग संगीत, नृत्य, रंग बिरंगे परिधानों के साथ सड़कों पर उतरे। स्टील ड्रम की धुन पर लोग जमकर थिरके और जुए के जरिए कैरिबियाई परंपराओं की झलक दिखाई गई। परेड के दौरान अलग अलग रंगों और वेशभूषा ने माहौल को बेहद खास बनाया।

0: तो चलिए शुभ समाचार की शुभ शुरुआत विघ्नहर्ता गणपति बप्पा से। देखिए पूरा देश गजानन के रंग में रंगना शुरू हो गया है। कहीं विशाल पंडाल तैयार हो रहे हैं तो कहीं बप्पा की भव्य प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बन गई है। रंग बिरंगी रोशनी, फूलों की सजावट और भव्य दिव्य झांकियों ने गणपति उत्सव में रंग भर दिए हैं। गुजरात के सूरत शहर में गणेश उत्सव को लेकर उत्साह और उमंग अपने चरम पर पहुंच गया है।
1: गणेश चतुर्थी से पहले ही शहर के अलग अलग इलाकों में गणेश प्रतिमाओं के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है। इस साल सूरत के भटार इलाके में गणेश उत्सव के लिए एक और खास तैयारी की जा रही है। यहां पर गणेश मंडल की ओर से ओडिशा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर भव्य गणेश पंडाल तैयार किया जा रहा है, जो कि बेहद ही भव्य और दिव्य होने वाला है।
0: और देखिए इस साल सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली बप्पा का क्रेज देखने के लिए मिल रहा है। गणेश उत्सव को लेकर देश भर में इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं मूर्तिकारों द्वारा बनाई जा रही भगवान सिद्धि विनायक की कुछ ऐसी ही मनमोहक मूर्तियां, जिनको कुछ लोग तो थीम बेस्ड डेकोरेशन के साथ घर में स्थापित भी करने आ रहे हैं।

0: आ रहे इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा, शुभता और पर्यावरण की सौगात देंगे सिद्धि विनायक। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं, ये शब्द अब हर किसी की जुबान पर है, जिसका प्रचलन पिछले कुछ सालों से काफी लोकप्रिय भी हो रहा है। मिट्टी, लकड़ी की छाल, बांस, धूप, अगरबत्ती, नारियल के रेशों से लेकर धान, दाल जैसे अनाजों का इस्तेमाल बप्पा की इन मूर्तियों को काफी आकर्षक लुक दे रहा है। इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति को आकार देने के लिए कुछ ऐसा ही अनुपम प्रयोग दिल्ली के इस घर में भी हो रहा है, जहां रुचि पिछले 8 सालों से घर पर चिकनी मिट्टी के गणपति बनाकर आस्था और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को न केवल बढ़ावा दे रही हैं, बल्कि थीम बेस्ड डेकोरेशन को भी अपनी क्रिएटिविटी का उन्होंने हिस्सा बनाया हुआ है।
1: हमेशा चिकनी मिट्टी के ही गणपति बप्पा बनाए हैं। इवन दो रही बात थीम बेस्ड डेकोरेशन की, तो डेफिनेटली मैं हर साल ट्राई करती हूँ, खुद से 1-2 महीने पहले सोचना शुरू कर देती हूँ कि इस बार बैकड्रॉप में क्या थीम होगी। तो कभी फ्लोरल डेकोरेशन कर लिया, कभी बैकड्रॉप पे एक उनका बप्पा का ही एक कर्टन लगा दिया, लेकिन इस बार जो मेरी थीम है वो अष्ट विनायक बैकड्रॉप की है।
0: जाहिर है, जहां आटे या चॉकलेट जैसी चीजों से बनाए गणपति को 2-3 दिन ही बैठाकर घर से विदा करने की मजबूरी रहती है, वहीं रुचि चिकनी मिट्टी या क्ले से बनाए बप्पा का 10 दिन तक स्वागत सत्कार करती रही हैं। और बप्पा की मूर्ति की खूबसूरती में 4 चांद लगाती रही है रुचि की थीम बेस्ड डेकोरेशन, जो इस बार अष्ट विनायक गणपति है।
2: देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर स्वरूप दिख जाएंगे और बीच में आपको हमारे
1: अर्ध नरेश्वर, ये मतलब इसमें दोनों शिव जी और पार्वती जी, जो कि मैंने रंगोली से एक ट्रांसपेरेंट शीट पे रंगोली से डेकोरेट किए हुए हैं।
0: तो जहाँ चिकनी मिट्टी से बनाने की 8 साल पुरानी इस परंपरा के जरिए दिल्ली की रुचि हर साल ग्रीन गणेशोत्सव मनाती है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की रायपुर जेल में कैदी भी बेहद आकर्षक और रंग बिरंगी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं हर साल बना रहे हैं। हर साल नए नए तरीके से बप्पा की मूर्तियों को आकार देने वाले कैदी इस बार भी अपनी इन मनोहारी और रंग बिरंगी प्रतिमाओं को बिक्री के लिए रखेंगे।
3: अब इस साल दुकान अलग हट के बनाबो मूर्ति लगी के अलग बनाए, जेमा राम भगवान के रूप अंतर पर दिला, शंकर जी के रूप देहन, राधा कृष्ण के रूप देहन, कृष्ण भगवान सुखते हैं, एला इकर कलर ला पूरा इधर ही हट के बनाना है पूरा।
0: दरअसल इस बार ये कैदी बीज वाली गणेश मूर्तियां बना रहे हैं, जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि ऐसी बीज वाली मूर्तियां विसर्जन के बाद एक पौधा अंकुरित करने का संदेश भी दे रही हैं।
4: बीज डाल दिए हैं हम लोगों ने, ताकि ऐसे जहाँ पर भी ये मिट्टी जाए तो वहाँ पे कोई ना कोई पौधे लग जाए। वैसे तो इसको विसर्जित कर दिया जाता है, तो यदि नदियों में किया जाएगा तो संभावना कम होगी, लेकिन यदि कहीं आसपास या इको फ्रेंडली जगहों पे किया जाएगा या कुंड बना के किया जाएगा तो निश्चित रूप से कई पौधे उग सकते हैं।
0: यानी रायपुर सेंट्रल जेल के कैदी भी इस बार लोगों के बीच ग्रीन गणेशोत्सव को बढ़ावा देने का संदेश दे रहे हैं, जो यकीनन एक सराहनीय पहल है। ये तस्वीर झांसी की है, जहां गणेश उत्सव को लेकर बाजार में रौनक बढ़ रही है। मूर्तिकारों ने प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे दिया है। यहां भोलेनाथ के साथ गणेश के अनोखे स्वरूप ने लोगों का ध्यान खींचा हुआ है, और सबसे खास ये कि मिट्टी से बनी इन इको फ्रेंडली प्रतिमाओं की झांसी में भी काफी डिमांड है। ये सच है कि पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियां धरती को प्रदूषण से बचाती हैं, जल और मिट्टी को नुकसान कम होता है। ऐसे में प्राकृतिक चीजों से बनी ये तमाम प्रतिमाएं पर्यावरण की सुरक्षित और खूबसूरत बने रहने की एक सराहनीय मिसाल ही हैं। झांसी से अजय झा और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: देखिए, पूरे देश में अभी से गणेश उत्सव की उमंग दिखाई दे रही है। अलग अलग शहरों में बप्पा की प्रतिमाओं का आगमन शुरू हो गया है। भक्त पूरे उत्साह के साथ बप्पा का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। अकोला और सूरत में बप्पा के आगमन की शानदार तस्वीरें देखिए।

0: अकोला का शास्त्री नगर खुशी से झूम रहा है। आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के बीच चिंतामणि गणपति बप्पा का स्वागत हो रहा है। जाहिर है यहाँ गणेश भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सबकी चिंता हरने, मनोकामना पूरी करने बप्पा जो पधार रहे हैं। सिविल लाइन चौक पर जैसे ही बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा से लाल कपड़ा हटाया गया, अपने आराध्य के दर्शन कर भक्त खुशी से झूम उठे। ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा का स्वागत किया गया और गणपति बप्पा मोरिया की गूंज के साथ यहाँ की फिजाओं में बप्पा की भक्ति की सुगंध फैल गई।
1: पहले उसका आपन जो है बड़े जल्लोष के साथ होना चाहिए। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि

0: के जीवन में सुख समृद्धि आए और चिंतामणि विघ्नहर्ता सबकी चिंता दूर करें।
1: पापा आने के बाद सब आगमन जो होता है तो उसमें सब विघ्न दूर हो जाते हैं और ये चिंतामणि है, मन की सब चिंता दूर कर देता है।
0: सूरत में भी गणेशोत्सव को लेकर भारी उत्साह दिख रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में गणपति प्रतिमाओं के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है। ये तस्वीरें भटार इलाके की हैं। यहाँ गणेश मंडल की ओर से उड़ीसा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर भव्य गणेश पंडाल तैयार किया जा रहा है।
2: यहाँ पे एक महाराष्ट्र की टीम और सूरत के लोकल डेविड भाई करके एक मंडप का बहुत बड़ा इवेंट का आयोजन करते हैं और पिछले 3-4 महीनों से अलग अलग थीम पे बातें होती रहती है, तो हम लोग ने इस बार सूर्य कोणार्क मंदिर पे पंडाल बनाने का आयोजन किया है।
0: हर साल ये गणेश मंडल अलग अनोखी थीम के लिए गणेश भक्तों के बीच खास पहचान रखता है। इस बार पंडाल को ऐतिहासिक कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर तैयार किया गया है, जिसका निर्माण स्थानीय कलाकारों के साथ महाराष्ट्र से आए दस्तकारों ने मिलकर किया है।
3: ये सूरत के भटार इलाके में साईंराम युवक मंडल है, जहां की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं फिलहाल गणेश भगवान की जो प्रतिमा है उसको ढक के रखा गया है। तो इस तरह से सूरत में अलग अलग जगहों पर, अनेक जगहों पर गणेश भगवान की स्थापना की जाती है गणेश उत्सव के दौरान। इस बार कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर ये पंडाल तैयार किया जाएगा और इसमें भगवान को बैठाया जाएगा और उनकी पूजा पाठ की जाएगी। तो गणेश उत्सव को लेकर के एक तरफ जहां महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, शहरों में उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं महाराष्ट्र से सटे गुजरात के सूरत में भी गणेश उत्सव को लेकर के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग थीम पर भगवान गणेश के पंडाल तैयार किए जा रहे हैं।
0: इससे पहले बप्पा के आगमन की शोभा यात्रा में धार्मिक आध्यात्मिक संस्कृति के भव्य रंग देखने को मिले। आगमन यात्रा में भगवान के 12 अवतारों को भी अलग अलग रूपों में दिखाया गया। इस दौरान धार्मिक और पौराणिक कथाओं से जुड़े पात्रों को देश के कोने कोने से आए कलाकारों ने अपनी वेशभूषा और अभिनय के जरिए जीवंत कर दिया। इस तरह गणेश उत्सव के पहले ही सूरत शहर बप्पा की भक्ति में सराबोर है। अकोला से धनंजय साबले और सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए अब बात कर लेते हैं विघ्नहर्ता के प्रिय भोग मोदक की। देखिए, गणपति की स्थापना से लेकर ना विसर्जन तक पूजा पाठ और भक्ति की परंपरा निभाई जाती है। इस दौरान बप्पा को मोदक का भोग लगाना बेहद खास परंपरा है। दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में एक ऐसी ही दुकान मौजूद है जो 116 साल पुरानी है
5: और करीब 35 साल से मोदक यहां पर बनाए जा रहे हैं। बदलते वक्त के साथ भगवान गणेश के प्रिय भोग मोदक का रंग रूप ही नहीं, उसका स्वाद भी बदल रहा है। कभी नारियल, गुड़ और शुद्ध घी से तैयार होने वाला पारंपरिक मोदक गणपति बप्पा के भोग की पहचान हुआ करता था, लेकिन अब दिल्ली की ये बेहद ही पुरानी दुकान मोदक के नए नए फ्लेवर परोस रही है।

0: गणेश, गजानन, गणपति, विनायक, लंबोदर, गौरीपुत्र। पापा के नाम अनेक है लेकिन भाव एक ही है, भक्ति और विश्वास का। सबसे बड़ी बात, भगवान गणेश को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। गौरीपुत्र का मन मोहने के लिए मोदक सबसे प्रिय और उत्तम भोग माना जाता है। गणेश चतुर्थी या किसी भी शुभ अवसर पर बप्पा को 21 मोदक का भोग लगाने का विधान है। बिना मोदक के गणपति की पूजा अधूरी मानी जाती है। पारंपरिक तौर पर नारियल और गुड़ से बनने वाला मोदक भगवान गणेश का सबसे प्रिय भोग है। दिल्ली के चावड़ी बाजार में मिठाई की कैसी पुरानी दुकान मौजूद है जो बप्पा को भोग लगाने के लिए तरह तरह के मोदक बना रही है। 1910 से यहाँ मौजूद दुकान में मोदक बनाने का काम 35 वर्षों से चल रहा है।
1: बप्पा के आने की तैयारियां हर तरफ दिखाई पड़ रही है। आज हम आपको दिल्ली के दिल चांदनी चौक में लेकर आए हैं और चांदनी चौक की उस दुकान पर जहाँ पिछले 35 साल से लगातार मोदक तैयार किया जा रहा है, बप्पा का फेवरेट भोग तैयार हो रहा है। आज भी हम आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के मोदक की तैयारी दिखा रहे हैं, वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं, उनकी मेकिंग

0: दिखा रहे हैं, किचन में हम मौजूद हैं और आपको बात करवाएंगे उन लोगों से भी जो पिछले 35 सालों से लगातार इस काम में लगे हुए हैं।
1: हालांकि 35 साल से मोदक बेचने वाली ये दुकान बदलते वक्त के साथ ग्राहकों के मिजाज के साथ अपने स्वाद में नए नए फ्लेवर जोड़ रही है। दुकान की पुरानी पहचान में कुछ नया जोड़ने के लिए दुकान से जुड़े लोग महाराष्ट्र गए थे, जहाँ से वो मोदक की रेसिपी साचा और उसे तैयार करने वाले दोनों को दिल्ली लेकर आए और तब से मोदक बनाने का सिलसिला शुरू हो गया।
2: हमारे बड़े गए, कभी बाहर घूमने गए होंगे या किसी कारणवश गए होंगे किसी काम से, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ देखी, तो वहाँ से मोदक बनाने का साचा लेके आए, वहाँ से रेसिपी लेके आए, वहाँ से कारीगर को लेके आए, वो बनाना सीखा, वो रेसिपी आज तक है हमारे पास और वो साचे भी हैं। जैसे ये बहुत पुराने साचे हैं, मतलब मैं अगर गलत नहीं हूँ तो करीबन 40 से एक साल तो हो गए होंगे इस साचे को, जो आज भी हमने संभाल के रख रखा है उनकी याद में।
0: ये सबसे पहले आया था?
2: हाँ जी, ये आया था एक बड़े के लिए और एक छोटे के लिए, ये था इस तरीके से जी है। तो पहले तो, अब तो आज की डेट में बहुत सारे स्टील के बनते हैं, स्टेनलेस स्टील के, प्लास्टिक के बनते हैं, बट ये पहले के जमाने में जो हाथ से बनते थे ये यही थे।
1: यहाँ चावल, काजू, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट के अलावा स्ट्रॉबेरी, हेजलनट, कलाकंद के मोदक भी ग्राहकों को खूब पसंद आते हैं। जेंजी को ध्यान में रखते हुए पिछले कई सालों से चॉकलेट और उसके अलग अलग फ्लेवर के मोदक के स्वाद को भी तैयार कर रहे हैं।
2: मोदक असल बनना शुरू हुआ था महाराष्ट्र से, साउथ साइड से वो बनना शुरू होता है सब अनाज का, बट दिल्ली में आते आते उसके फ्लेवर्स वेरिएशंस चेंज हो गए। जैसे अब आप यहाँ पे इस थाल में देख पा रहे हैं, एक मोतीचूर का है, केसर का है, मोती बूंदी का है, स्ट्रॉबेरी का है, आपका खोए का है, पेड़े का है, या आपका कीवी का हो गया, मोटे गोले का हो गया, अल्फांसो विद चॉकलेट हो गया, कलाकंद का हो गया, ये केसर मिक्स हो गए, इस तरीके से वेरिएशंस हैं अलग अलग तरीके के, और इसके अलावा ना जाने कितने किस्म के बन जाते हैं।
1: मोदक की कीमत उसकी वैरायटी और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री के हिसाब से तय होती है। यहाँ मोदक करीब 600 रुपए प्रति किलो से मिलना शुरू हो जाते हैं। खास बात यह है कि ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से भी मोदक के अलग अलग स्वाद यानी वैरायटी चुन सकते हैं।
0: तो हम लोग इसकी बात करें तो पैकेजिंग का भी आप लोग बहुत खास ख्याल रखते हैं। जो आप प्लेट देख रहे हैं ये भी मेरे ख्याल से गिफ्टिंग की ही प्लेट है, पैकेजिंग की प्लेट है।
2: ये प्लेट भी गिफ्टिंग की है, जैसे ये जर्मन सिल्वर की है प्लेट, इस तरीके से प्लेट्स रहती हैं। ये प्लेट भी है, इसके अंदर भी लगा के दिए जाते हैं, इसके अंदर हम मिठाई लगाएं, मोदक लगाएं, मल्टीपर्पज तरीके से तैयार हो जाती हैं ये।
1: बप्पा को हर दो बार मोदक का भोग लगता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश उत्सव के दौरान मोदक की खुशबू से गणपति अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। दिल्ली से मनीष चौरसे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद देखिए जीएनटी पर हनुमान अंश की टीम।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: हनुमान चालीसा की किस पंक्ति का पाठ करने से रोग और बीमारियां दूर हो जाते हैं? हनुमान चालीसा की किस पंक्ति का पाठ करने से बड़ी समस्या मिट जाती है? क्या है हनुमान चालीसा की महिमा और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: गुजरात के आनंद में गणेशोत्सव की खास तैयारी, कार्टून कैरेक्टर्स ने बच्चों को लुभाया, निकली भव्य झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। बप्पा की विशेष भोग की तैयारी, चॉकलेट से लेकर स्ट्रॉबेरी तक मोदक के नए फ्लेवर तैयार, घरों में भी बनाए जा रहे तरह तरह के मोदक। महाराष्ट्र में पोला पर्व की उमंग, बैलों के श्रृंगार के सामान से सजे बाजार, रस्सी और घुंघरू वाले पट्टे खरीदने के लिए पहुंच रहे किसान। जोधपुर में आज से 22 सितंबर
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: और देखिए नीम करौली बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। इस फिल्म ने बॉलीवुड की तमाम बड़े बजट वाली फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। भारत में ही फिल्म ने 150 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। अब बहुत जल्द फिल्म का कलेक्शन 200 करोड़ तक पहुंचने वाला है। खास बात यह है कि फिल्म महज 2 करोड़ रुपए में बनी थी, अब ये करोड़ का आंकड़ा छूने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वर्ड ऑफ माउथ के जरिए इस फिल्म की मार्केटिंग हुई और मार्केटिंग का भरपूर फायदा इस फिल्म को मिल रहा है। फिल्मों के मामले में आमतौर पर पहले और दूसरे हफ्ते की कमाई अहम मानी जाती है, क्योंकि चौथे और पांचवें हफ्ते तक रफ्तार धीमी हो जाती है। हनुमान अंश के मामले में कहानी उल्टी है। फिल्म ने पांचवें हफ्ते में ही रिकॉर्ड बना दिया और कुल 51 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर इस फिल्म में रिकॉर्ड बनाया है। और देखिए फिल्म को ज्यादा प्रमोट करने के लिए भी टीम हनुमान अंश इन दिनों यूपी के सफर पर निकली हुई है। लखनऊ में उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव ने, सुनिए।
1: बाबा जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये किरदार निभाया है। मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, सब वही कर रहे थे।
2: एक बड़ा रिकॉर्ड बना रहे हैं इस किरदार को लेकर, कहते हैं कि एक हफ्ते में इतना ऊंचा पहुंच गया। और नीम करौली बाबा जिसको
1: मेरे लिए रिकॉर्ड मैंने नहीं रखता है, बाबा का नाम जगह जगह जा रहा है, ये मेरे लिए मायने रखता है।
2: भी गाना लगातार आपने गाया है इसमें, कैसे ये जो गाने लगातार हिट हो रहे हैं, लगातार लोग सुन रहे हैं उनको, क्या आपने धुन बनाई, किस तरीके से दिमाग?
3: वो तो जो डायरेक्टर्स के निर्देश होते हैं उन निर्देशों का पालन करके कोई भी कंपोजर गाने कंपोज करता है, लिखता है। तो सौभाग्य से मैंने कंपोज किए इनके निर्देशन में, बात बनी। और
2: जहीं बस अगर आप सुना दें तो बहुत ज्यादा ठीक रहे।
4: जुद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे सप्तऋषि काय जिद कर रही काय को मर रही काय जिद कर रही काय को मर रही ऐसे बर खेलाने कैसे बर खेलाने जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर ऐसा जाके शीश पे गंगा और गले पे डारे फिर ऐसा इतने सीधे साधे हैं सब कहते भोलेनाथ भोलेनाथ।
2: 16वें दिन तक फिल्म बिल्कुल नहीं गुमनाम बनी रही, 17वें दिन से इसका शुरू हुआ, क्या कहेंगे?
5: तो 14 दिन तक एक्चुअली फिल्म जो है ना, चूंकि सिर्फ 27 थिएटर में थी और हमको ऐसा लग रहा था कि फिल्म जो है ना शायद उतर भी जाएगी, बड़ी फिल्म और आ रही थी, लेकिन लेकिन जो है 15वें दिन से हमारी फिल्म के साथ में कुछ ऐसा होना शुरू हो गया, जनता ने जमीन से उठा के फिल्म को जो ना ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। और उसके लिए मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि जनता का ही सबसे बड़ा धन्यवाद मुझे देना चाहिए। और क्योंकि उन लोगों ने जो है ना रील्स बनाने शुरू किया और बोला कि फिल्म के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा, ये फिल्म जो है ना इतनी अच्छी फिल्म है, हमारे बच्चों को भी दिखाई देनी चाहिए फिल्म। तो इस तरह से जो है ना होते होते फिल्म जो है ना अचानक से परवान चढ़ गई और जनता ने इस फिल्म को जमीन से उठा के, क्योंकि इस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाए थे हम लोग, तो जनता ने इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। और हमारे जो है वो मतलब हमारी फिल्म को लेके और अच्छी कहानियों को कहने के को लेके हमारी जो है ना विश्वास को बढ़ा दिया।
2: नीम करौली बाबा की भी कृपा मानेंगे इसको
5: पूरी तरह से, नीम करौली बाबा की कृपा है। पहले सबसे पहले बात तो ये बात हमको बतानी चाहिए कि उनकी कहानी है ये, हमारी कहानी तो बाद में है, हमने तो कहानी बाद में बोली, लेकिन महाराज जी की कहानी है जिस कहानी को बोल रहे थे हम, और वो कहानी इतनी बड़ी हो गई और महाराज जी की कृपा और हनुमान जी कृपा से के ऊपर कुछ भी नहीं है इसमें।
2: इस कामयाबी के बाद आगे का क्या प्लान है, प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद क्या प्लान?
5: इस फिल्म को अभी जब तक तो ये थिएटर्स में लगी है तब तक हम इस फिल्म को प्रमोट करते रहेंगे, हम इस फिल्म को जगह जगह ले जाते रहेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। और इसको जन जन तक पहुंचाना है, बच्चों को फिल्म दिखानी है, क्योंकि फिल्म बच्चों को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई गई है कि बच्चों को महत्व पता चले, हनुमान चालीसा का महत्व पता चले।
2: जीवन से कितना आप बदलाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पर्दे पर आपने ईश्वर की पूरी इस एक कृपा को उतारा है और किरदार निभाने वाले के जीवन पर क्या असर पड़ा है, क्योंकि ये बड़ा दिव्यात्मक भूमिका पर्दे पर आप लाए।
5: जी, तो कहीं ना कहीं जो है ना हम सबके जीवन में परिवर्तन हमें महसूस भी हो रहा है, जो हमारे अंदर परिवर्तन आया है। सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि हमें ईश्वर को सरेंडर करना यानी उनको समर्पित करना अपने आप को सीखा है हमने, क्योंकि जब जब हम किसी समस्या में फंसते थे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते पूरी टीम ने ऐसा महसूस किया कि हमारी जो है ना समस्याएं थी वो रिजॉल्व हो जाती थी। तो इसलिए सब सारी टीम मेम्बर्स ने इस बात को महसूस किया है और ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि हमने ईश्वर में श्रद्धा होने के अलावा आपको उनमें विश्वास रखना बहुत आवश्यक है, उनको सरेंडर करना आपको पता होना।
2: उत्तर प्रदेश में आपको इसको लेकर क्या लग रहा है, कैसे लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कितना देख रहे हैं, क्योंकि लोग तो नंगे पैर भी जा रहे हैं मॉल में?

0: बहुत सारे उत्तर प्रदेश के, जैसे गोरखपुर में किसी ने प्रसाद बंटवारा को बांटना, वितरण करना शुरू कर दिया। आगरा में थिएटर थे जहाँ पे उन्होंने ऐसे जो फटके होते हैं उन्होंने राम नाम के फटके जो है ना बांटे, हमने वहाँ जाके हनुमान चालीसा भी की। बहुत सारे जगहों पे लोग चप्पलें भी अपने उतार रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादातर हो रहा है और ये इसका कारण ये है कि फिल्म उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की ये लोगों द्वारा बनाई गई है और उत्तर प्रदेश की कहानी, मतलब जी श्री निकोली बाबा महाराज जी यहीं के यहीं पैदा हुए थे और यहीं पे उनका देहावसान।
1: चलिए अब टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। अगर आप भी देखिए एप्पल की डाई हार्ट फैन हैं तो आपके लिए आज एक गुड न्यूज आने वाली है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एप्पल नया धमाका करने के लिए तैयार है। नए आईफोन से लेकर एप्पल वॉच और एयरपोड्स तक कई बड़े प्रोडक्ट्स से पर्दा आज उठ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन पर। खबरों की माने तो एप्पल पहली बार फोल्डेबल फोन की दुनिया में कदम रख सकता है। ऐसे में मुकाबला सैमसंग समेत दूसरे फोल्डेबल फोन के साथ होगा। इस बार एप्पल के लॉन्च प्लान में बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। आईफोन 18 का बेस मॉडल तुरंत लॉन्च नहीं होगा बल्कि इसके 2027 के वसंत में आने की खबरें हैं, जबकि आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स पहले ही पेश किए जा सकते हैं।
2: मैं इस वक्त हूं कुपरटिनो में, जो कि एप्पल पार्क, जहां पे आईफोन इस साल का लॉन्च होने वाला है, बस कुछ ही देर दूर है और मैं काफी एक्साइटेड हूं इस साल के आईफोन लॉन्च के लिए। सबसे पहले तो बात करें आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स, जो कि दो डिवाइसेस इस साल लॉन्च होंगे। डिजाइन के मामले में ज्यादा कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि डिजाइन 17 प्रो मैक्स जैसा ही लगने वाला है। लेकिन अगर थोड़े कुछ चेंजेस की बात करें जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो है डायनामिक आइलैंड चेंज होगा, जो एक बार होता है आगे वो छोटा हो जाएगा। अंदर बैटरी एफिशिएंसी चेंज होगी, क्योंकि एक नया A20 प्रो एक चिपसेट नया एप्पल इसमें डालेगा। और डिजाइन के बारे में बात करें, पीछे जो कैमरा है आइलैंड बिल्कुल सेम रहने वाला है, लेकिन एक वेरिएबल एपर्चर कैमरा आपको प्रो मैक्स मॉडल में मिलेगा, जिससे आपकी फोटोग्राफी थोड़ा डेप्थ आपको जो मिलता है वो चेंज हो सकता है। बाकी ओवरऑल डिजाइन में ज्यादा आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे। ऐसा भी माना जा रहा है कि जो इस साल का जो कवर है जो 17 प्रो में आप यूज कर सकते थे वो आप 18 प्रो में भी यूज कर पाएंगे, तो एक्सेसरीज काफी सिमिलर रहने वाली हैं। तो 18 प्रो और प्रो मैक्स ये दो मॉडल्स जो लॉन्च होंगे, ऐसा लग रहा है कि ये काफी एक्सपेक्टेशंस हैं। प्राइसिंग के मामले में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकी प्राइसिंग कम से कम 1,20,000 से शुरू होगी, क्योंकि इस साल आपको शायद जो आईफोन 18 जो बेस मॉडल होता है वो ना मिले, वो अगले साल उसका लॉन्च शिफ्ट हो जाए आईफोन 18 के साथ। तो स्टार्टिंग पॉइंट ही, एंट्री पॉइंट प्राइसिंग की इंडिया में शायद 1,20,000 होगी आईफोन 18 प्रो की, तो ये एक्सपेक्टेशन हमारी है। बाकी अगर बात करें जो बड़ा अनाउंसमेंट हम इस साल देख सकते हैं आईफोन इवेंट पे, वो है आईफोन 4, जो कि फोल्डेबल है। काफ़ी लंबे टाइम से चर्चा हो रही है इसके बारे में ऑनलाइन, सैमसंग हो गई या फिर गूगल हो गया, शाओमी तक इस डिज़ाइन के साथ एक्सपेरिमेंट कर चुका है। तो अब आईफोन की बारी है कि आईफोन फोल्डेबल के साथ किस तरह डिज़ाइन को चेंज कर सकता है। एक बड़ी बात ये कही जा रही है कि जो फोल्डेबल में क्रीज होता है, शायद एप्पल उसको शायद इम्प्रूव करे, शायद बिना क्रीज के एक फ़ोन आपको मिले। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है हमें, आईफोन फोल्ड जो होगा वो बिल्कुल ही फोल्डेबल जो है एप्पल इकोसिस्टम में उसको बुरी तरह चेंज कर देगा। और इंडिया में काफ़ी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, मुझसे आके पूछते हैं कि फोल्ड आएगा कि नहीं, तो मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट 80-90% कन्फर्म्ड है कि आईफोन का फोल्ड हमें इस साल देखने को मिलेगा।
1: कहते हैं मन में जब भगवान के प्रति अटूट आस्था हो तो मुश्किल हालात भी आसानी से गुजर जाते हैं। ऐसी ही दो तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आए हैं, एक है यूपी के चित्रकूट की, दूसरी तस्वीर है एमपी के मुरैना की। दोनों ही इलाकों में भयंकर बाढ़ आई है, लोग सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन चित्रकूट और मुरैना में दो ऐसे मंदिर हैं जहां के साधुओं ने बाढ़ में घिरे मंदिरों से बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया। प्रशासन की टीम उन्हें वहां से लेने के लिए पहुंची, लेकिन उन्होंने अपने आराध्य को अकेला छोड़ने से साफ इनकार कर दिया।
3: जब मन में भगवान के प्रति आस्था हो तो भय का वजूद खत्म हो जाता है, जब भक्ति अटूट हो तो मौत का खौफ भी इंसान के कदम डिगा नहीं सकता। भारत की इस पावन धरा पर ईश्वर के प्रति यही निष्ठा युगों युगों से चलती आई है। इसी की मिसाल मध्य प्रदेश के मुरैना और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में देखने को मिली। चारों तरफ बाढ़ का पानी, हालात ऐसे कि हर कोई महफूज ठिकानों का रुख कर रहा है, लेकिन भक्ति की ताकत के आगे बाढ़ की आपदा भी छोटी पड़ जाती है। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की, जहां उफनती आसन नदी ने सिद्ध बाबा मंदिर को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए जब एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम नाव की मदद से सिद्ध बाबा मंदिर के साधु को वहां से सुरक्षित जगह तक ले जाने के लिए पहुंची, लेकिन उन्होंने सुरक्षित स्थान पर जाने से साफ इनकार कर दिया। बाबा का कहना था कि मंदिर में वर्षों से अखंड ज्योति जल रही है और वो अपने भगवान और इस पावन ज्योति को बीच मझधार में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। बाढ़ के पानी से घिरे होने के बावजूद संत मंदिर के अंदर ही रुककर अपना भोजन खुद बना रहे हैं और निरंतर पूजा अर्चना में लीन है। अतः भक्ति की ऐसी ही एक और भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई चित्रकूट से, जहां मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट का ऐतिहासिक बड़ा मठ मंदिर धीरे धीरे डूबने लगा। हालात बिगड़ते देख खुद डीएम पुलकित गर्ग और एसपी अरुण कुमार भारी प्रशासनिक अमले के साथ मंदिर परिसर पहुंचे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे अधिकारी मंदिर के पुजारी से गुहार लगाते हैं। डीएम ने मिन्नतें की कम से कम बाढ़ उतरने तक मंदिर खाली कर दें, लेकिन पुजारी का जवाब सुन अधिकारी भी निशब्द हो गए। पुजारी ने बेहद शांत भाव से कहा, पूरी जिंदगी भगवान के चरणों में गुजारी है, आज इस संकट की घड़ी में अपने प्रभु को अकेला कैसे छोड़ दो, जो होगा भगवान की इच्छा से अच्छा ही होगा।
4: आप देखिए, हम सब लोगों की जिम्मेदारी, जिन्होंने उसके लिए जिम्मेदार है ना, और आप जिम्मेदार हैं सभी के लिए। तो आप आइए आइए सर, लोग आपका वेट कर रहे हैं। ताला लगाई है ना, ये सुरक्षित रहेगा। बाकी लोगों को जाने की अनुमति दीजिए,
5: बाकी लोग जा सकते हैं।
3: पुजारी के हठ और निष्ठा के आगे आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। हालांकि पुजारी के कहने पर मंदिर के दूसरे सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन मुख्य पुजारी प्रभु की सेवा में वहीं डटे रहे और अधिकारियों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। चित्रकूट से अखिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक खास एग्जीबिशन लगने जा रही है, जिसमें कि चीन के कलाकार की बनाई गई मोम की मूर्तियों को दिखाया जाएगा। इस प्रदर्शनी में नामचीन हस्तियों की वैक्स स्टैचू शोकेस की जाएंगी और लोगों के सामने चीनी संस्कृति की एक अनूठी झलक भी पेश की जाएगी।
7: द वॉन्ग कंटेम्प्रेरी संस्था के फाउंडर अलेक्जेंडर वॉन्ग के लिए ये खास पल है। न्यूयॉर्क के वेलकम होम नाम के इस गेस्ट हाउस में चीन की वैक्स आर्टिस्ट झोउ ज़ुएरोंग की कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगने जा रही है, जिसमें ज़ुएरोंग की बनाई 10 वैक्स स्टैचू को शोकेस किया जाएगा। द वॉन्ग कंटेम्प्रेरी नाम की इस प्रदर्शनी में मशहूर हस्तियां कैलीग्राफी और एक्यूपंक्चर का अनुभव लेती दिखाई देंगी। खास बात ये है कि इन मोम की मूर्तियों के जरिए पश्चिमी पॉप कल्चर में चीनी रीति रिवाज और रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाने की कोशिश की गई है। अलेक्जेंडर वैंग के लिए ये पल बेहद खास है, क्योंकि अमेरिका में ये इनकी पहली प्रदर्शनी होगी। द वैंग कंटेम्प्रेरी चाइना टाउन का एक सांस्कृतिक संगठन है, जिसे पेशे से फैशन डिजाइनर अलेक्जेंडर वांग और उनकी माँ यिंग वांग ने शुरू किया था।
8: We wanted this to be something that could be opened up to the public for a longer period of time. And so, when we started thinking about the format and kind of characters and what it meant logistically, I thought, what a interesting kind of approach to think about wax figures. And, you know, traditionally I felt wax figures, whether in a museum in a historical sense or, you know, a Madame Tussauds, it hasn't really been explored in this context.
7: इन वैक्स स्टैचू में खाना बनाते, फूड शेयर करते, टी पार्टी में हिस्सा लेते, कैलीग्राफी का अभ्यास करते और एरहू, जो कि एक चीनी वाद्य यंत्र है, उसे बजाती हुई महिलाएं नजर आएंगी। इन तमाम कलाकृतियों में एक बात कॉमन है, ये सभी मोम की मूर्तियां मेहमान नवाजी के भाव से प्रेरित हैं। इन कलाकृतियों के जरिए चीनी संस्कृति के उस भाव को पेश करने की कोशिश की गई है, जो इस मान्यता पर आधारित है कि किसी का घर में स्वागत करने का विचार कभी कभी कही गई बातों से नहीं बल्कि प्यार भरे काम से जाहिर होता है। न्यूयॉर्क के कला प्रेमियों के लिए गुड न्यूज ये भी है कि द वॉन्ग कंटेम्प्रेरी एग्जीबिशन पूरे महीने वीकेंड पर यहाँ फ्री में दिखाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुफा की खामोशी से जब संगीत बाहर आए तो मानो पत्थर भी कोई राज सुनाते हैं। कुछ यही संगीत में इस राज सुना रही है चीन की एक प्राचीन गुफा जो कि गुइजोऊ में है।

0: और ये एक कास्ट यानी कि चूना पत्थर की गुफा है। दरअसल इसकी विशाल चट्टानी परतें और गुंबदनुमा ऊंचे कक्ष और प्राकृतिक बनावट इस तरह की है कि यहां पर कोई भी साउंड गूंजती नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन कॉन्सर्ट हॉल की तरह नेचुरल साउंड इफेक्ट्स देती है।
1: तस्वीरों में नजर आ रहा गुफा के अंदर संगीत प्रेमियों का ये अनोखा कॉन्सर्ट खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बीते दिनों दक्षिण पश्चिमी चीन के गुइजोऊ में बरसों पुरानी एक कास्ट गुफा पहले ही लोगों के लिए ऐतिहासिक रही है, लेकिन संगीत की धुनों ने अब इस प्राचीन गुफा को एक खास डेस्टिनेशन भी बना दिया है। करीब एक अरब साल पुरानी इस गुफा में जब संगीत प्रेमी जुटे तो गुफा की नेचुरल साउंड सिस्टम यानी एकॉस्टिक्स ने पूरी जगह को ही भर दिया और ये म्यूजिकल परफॉर्मेंस हर किसी म्यूजिक लवर के दिल को छू गई। दरअसल ये एक कार्स्ट यानी चूना पत्थर की गुफा है जिसकी विशाल चट्टानी परतें, गुंबद नुमा ऊंचे कक्ष और प्राकृतिक बनावट इस तरह की है कि यहाँ कोई साउंड गूंजती नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन कॉन्सर्ट हॉल की तरह नेचुरल साउंड इफेक्ट पैदा करती है। ऐसे में पियानो या स्ट्रिंग वाद्य यंत्रों की आवाज गुफा की प्राचीन चट्टानी परतों के बीच जब गूंजी तो पूरा माहौल ही संगीतमय हो उठा। बता दें कि चीन में गुइजोऊ जैसे कुछ और प्रांतों में चूना पत्थर की विशाल अंडरग्राउंड गुफाएं हैं जहां की प्राकृतिक ध्वनि व्यवस्था बेहद शानदार है। यही कारण है कि ऐसी बेहतरीन जगहों पर चैम्बर ऑर्केस्ट्रा, स्ट्रिंग क्वार्टेट और शानदार संगीत समारोह आयोजित किए जाते हैं। यकीनन संगीत प्रेमियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: एक दिन पहले देश की दो जानी मानी हस्तियों का जन्मदिन मनाया गया। इनमें एक हैं भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और कवि भूपेन हजारिका, जबकि दूसरा नाम है हिंदी सिनेमा में 8 दशकों तक अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली दिवंगत गायिका आशा भोसले, जिनकी 93 जयंती थी। इन दो महान हस्तियों की जयंती के खास मौके पर सिंगर पारमिता देशमुख ने अपने सुरीले अंदाज से इन्हें याद किया।

0: चलिए इंस्टा स्टोरी का वक्त हो चला है, अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील्स सिखा देते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल करते ही हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने में भी पीछे नहीं हटते। देखिए दीपिका चिखलिया की ये फनी इंस्टा स्टोरी।
1: गुरु जी मैं एक छोटा सा भजन गाना चाहती हूँ।
2: जरा सा गाना पे सबको बात करनी है।
1: ओके
2: जल्दी।
1: गुरु में संसार समाया, सॉरी भूल गई।
0: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार मैच की वजह। चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए, अच्छे और पॉजिटिव खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल

0: बढ़ रही है, देश देख रहा है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: पोखरण में 14 सितंबर से ड्रोनाथोन 2026 का आयोजन, ड्रोन से ड्रोन रोधी सिस्टम तक दिखेगी भारत की स्वदेशी तकनीक की ताकत। जोधपुर में आज से 22 सितंबर तक वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास, भारत और जापान की वायुसेना के लड़ाकू विमान दिखाएंगे दमखम। गुजरात के आनंद में गणेशोत्सव की खास तैयारी, कार्टून कैरेक्टर्स ने बच्चों को लुभाया, निकली भव्य झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। बप्पा के विशेष भोग की तैयारी, चॉकलेट से लेकर स्ट्रॉबेरी तक मोदक के नए फ्लेवर तैयार, घरों में भी बनाए जा रहे तरह तरह के मोदक। महाराष्ट्र में पोला पर्व की उमंग, बैलों के श्रृंगार के सामान से सजे बाजार, रस्सी और घुंघरू वाले पट्टे खरीदने पहुंच रहे किसान। एप्पल ने की आईफोन 18 प्रो, प्रो मैक्स और अल्ट्रा लॉन्च की तैयारी, ग्राहकों में उत्साह, आज रात हो सकता है लॉन्च।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भारत में घर घर में जो स्तुति सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है की जाती है, बच्चा बच्चा बचपन से जिस स्तुति को जानता है वो है हनुमान चालीसा। आज आपको बताएंगे हनुमान चालीसा के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में, हनुमान चालीसा के पाठ का महत्व क्या है और हनुमान चालीसा की चमत्कारी पंक्तियां कौन सी हैं, इस विषय में बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशि फल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं श्री हनुमान चालीसा के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि चालीसा है क्या और इसका महत्व क्या है। भक्त द्वारा अपने भगवान या अपने ईष्ट को प्रसन्न करने के लिए और अपनी समस्याओं के निवारण के लिए सरल भाषा में जो प्रार्थना की जाती है वो चालीसा कहलाती है। इसको चालीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 40 लाइनें होती हैं। सरल भाषा में लिखा होने की वजह से किसी भी चालीसा को आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसमें मंत्र की तरह नियम नहीं है। चूंकि चालीसा पढ़ना सरल है, आसान है, इसीलिए ये जनता में काफी लोकप्रिय हुआ। चालीसा की जो 40 लाइनें होती हैं उसमें अलग अलग लाइन का अलग अलग महत्व होता है और अलग अलग लाइनों का, पंक्तियों का विशेष समस्याओं में विशेष प्रयोग किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई हनुमान चालीसा सर्वाधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय मानी जाती है। वैसे दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, गायत्री चालीसा सब आती है, लेकिन जो स्थान हनुमान चालीसा का है या जितनी पॉपुलैरिटी हनुमान चालीसा की है उतनी शक्तिशाली और उतनी प्रसिद्धि किसी चालीसा की नहीं है।

चालीसा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में सुधार होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो उसको पढ़ने का तरीका क्या है ये भी समझ लेते हैं। हनुमान जी और उनके ईष्ट भगवान श्री राम के चित्र की स्थापना करिए या उनकी मूर्ति रखिए। इसके बाद उनके सामने जल से भरा हुआ एक पात्र रखिएगा। कम से कम तीन बार या तीन बार से ज्यादा 108 बार तक आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर समय का बहुत अभाव है तो श्रद्धा पूर्वक एक बार भी पाठ किया जा सकता है। चालीसा के पाठ के बाद उस जल को जो सामने रखा था प्रसाद की तरह ग्रहण करिएगा और प्रयास करिए कि रोज एक समय बना लीजिए कि मैं शाम को 7 बजे या 8 बजे चालीसा का पाठ करूंगा, और उसी समय अगर रोज पाठ करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। विशेष दशाओं में यात्रा करते समय और सोते समय भी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। आप ट्रेन से, प्लेन से यात्रा कर रहे हैं और चालीसा पढ़ने का समय हो गया है तो आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या बहुत बीमार हैं तो पलंग पर लेटे लेटे भी आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा की पंक्तियों को, हनुमान चालीसा की जो अलग अलग 40 लाइनें हैं उनको अलग अलग मंत्र की तरह भी जपा जा सकता है, मंत्र की तरह भी जप कर प्रयोग किया जा सकता है। चालीसा की अलग अलग पंक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे वो आगे आपको बताएंगे, साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में।
अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन

पर दूर होगी, लेकिन चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, सेहत बिगड़ सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के निवेश में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आप जब चालीसा की लाइन को मंत्र की तरह पढ़ने जा रहे हैं तो उसके नियम और सावधानियां क्या हैं? देखिए, हनुमान चालीसा में से किसी एक पंक्ति का चुनाव अपनी आवश्यकता के अनुसार करिए। रोज सुबह तुलसी की माला पर मंत्र की तरह 3 से लेकर 11 माला तक जप करिए और जितने समय तक आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या हनुमान चालीसा की पंक्ति का पाठ कर रहे हैं उतने समय तक अपना खान पान सात्विक रखिए और अपने आचरण की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। आप चाहें तो हनुमान चालीसा की पंक्ति को लाल कलम से पीले कागज पर लिखकर अपने पास रख सकते हैं। तो हनुमान चालीसा की वैसे तो हर पंक्ति चमत्कारी है, लेकिन आपको बताते हैं कुछ चमत्कारी पंक्तियों के बारे में और उनके प्रयोग के बारे में। अगर आप अपनी विद्या बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं तो क्या पढ़ेंगे? बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये निरंतर अगर आप रोज सुबह 108 बार पढ़ें और प्रयास करें तो आपको विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी। अगर स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो पढ़िएगा लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। अगर आप रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं, संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं तो आप पढ़ेंगे रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। रघुपति कीन्ही

बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं, क्रोध से बचना चाहते हैं, स्वास्थ्य को हमेशा अच्छा रखना चाहते हैं, तो पढ़िएगा नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और जब आपके जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाएं और समस्या काफी कठिन हो जाए, तब क्या पढ़ेंगे? दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। तो आप पूरी हनुमान चालीसा न भी पढ़ें, अपनी जरूरत के हिसाब से आप किसी एक पंक्ति का चुनाव करें और उसको मंत्र की तरह अगर रोज प्रातः 108 बार पाठ करें तो आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, परिवार में समस्या हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें, ऑफिस में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो हमने आज आपको बताया हनुमान चालीसा के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में। अब बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। धन रखने की अलमारी इस तरह से रखिए कि अलमारी पूरब या उत्तर दिशा की तरफ खुले। अगर इस तरह से अलमारी रखते हैं कि वो पूरब उत्तर की तरफ खुले और उसमें धन रखते हैं तो इससे धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, बचत सरलता से होगी। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लें। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन

इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

एक बात आपको हमेशा याद रखनी होगी, सफलता एक दिन में नहीं मिलती पर एक दिन जरूर मिलती। सफलता एक दिन में नहीं मिलती ये तो तय है, पर एक दिन जरूर मिलती है ये भी तय है। अब वो दिन कब हो सकता इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, रोज तैयारी करनी पड़ेगी, रोज दुकान, ग्राहक आए न आए दुकान तो खोली जानी चाहिए। अब मंदिर में कोई दर्शन करने आए न आए इसका मतलब ये थोड़ी कि आज मंदिर के आज बालाजी का स्नान नहीं करवाएंगे, श्रृंगार नहीं करेंगे, प्रसाद नहीं लगाएंगे, आज किसी को आना ही नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। कोई आए या ना आए मंदिर के पट तो खुलेंगे, पूजा तो होगी ही होगी। किसी समय एक बात ऐसी घटना हुई कि एक बार बादलों ने नाराजगी जताई कि हम बरसेंगे नहीं, और उन्होंने घोषणा भी कर दी कि कोई किसानी तैयारी ना करे, खेती की तैयारी ना करे, हम नहीं बरसेंगे। शायद पहले बादल बोलते होंगे तो सब किसान अपना अपना सामान रख के अंदर बैठ गए। एक किसान था बड़ा हटीला, वो अपने हल को तैयार कर रहा था और खेती को तैयार की, खेती बोने की तैयारी कर रहा था, और इतना विचित्र किसान कि तपती धूप में दोपहर 12 बजे

0: उसने लगा दिया हल, तो ऊपर से जो बादल गुजर रहे थे वो ठहरे कि हमने एक साल पहले घोषणा कर रखी कि हमें नहीं बरसना। जब नहीं बरसना तो बीज की बुवाई भी नहीं होगी, खेती भी नहीं होगी, फिर भी तुम तैयारी क्यों कर रहे, खेत क्यों जोत रहे। किसान ने कहा कि हमें ये पता है कि आप नहीं बरसोगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपना काम करें ना। बोले उससे क्या फायदा होगा। बोले आप पता नहीं कब बरसोगे, जिस साल बरसोगे तब तक हम भूल ना जाएं, तो कहीं हम खेती बोना ना भूल जाएं, खेत जुताई ना भूल जाएं, इसलिए हम अपनी आदत बनाए रखना चाहते हैं। तो बादलों को भी शर्म लगी कि जब ये अपनी ऐसी तैयारी कर रहा तो कहीं हम बरसना ना भूल जाएं। ऐसे ही ये जीवन है कि एक दिन सफलता तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन में सफलता नहीं मिलती, पर एक दिन तो मिलती। पर वो एक दिन कब हो सकता ये तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए रोज ध्यान करना चाहिए। इन तीन दिन में सीख कर आप जब घर जाएं तो रोज ये आदत डालें, सुबह या शाम जब आपको मौका मिले, सुबह शाम ना भी आपको मौका मिले तो रात को थोड़ी देर ही सही, 10 मिनट का ध्यान। हम आपको कल एक विधि बतला देंगे कि जो आप घर बैठ करके 10 मिनट में ध्यान कंप्लीट कर पाएंगे, आपका ज्यादा समय भी ना लगेगा, काम भी हो जाएगा। पर रोज आदत डालो, किसी ना किसी दिन आपके जीवन में एक नया सवेरा घट ही जाएगा। वो पागलपंती आपके जीवन में उतर ही जाएगी, वो आनंद आपके जीवन में उतर ही जाएगा। और हम चाहते भी यही है कि आपके अंदर वो एक बार उतर जाए, वो आनंद आपके जीवन में एक बार आ जाए, वो मस्ती एक बार आपके जीवन में चालू हो जाए, जो कभी बंद ना हो। अभी कोशिश करनी पड़ रही है। अब ऐसा हाल हो जैसे कल वो बच्ची बहुत अच्छा बात कह रही थी अपनी कविता में कि लोग करते होंगे आपको ध्यान, हमें तो बिसरते ही नहीं, भूलते ही नहीं। तो हम भी यही चाहते हैं कि आपको ऐसी आदत पड़ जाए ध्यान करने की कि ध्यान करना ना पड़े, ध्यान होता रहे, ये आपकी आदत में हो जाए। मुस्कुराहट के लिए, हंसने के लिए, प्रसन्नता के लिए आपको कुछ करना ना पड़े, अपने आप प्रसन्नता जीवन में बनी रहे। उल्टा ये कोशिश करनी चाहिए कि कहीं ऐसी जगह ना हंस दें जहां लफड़ा हो जाए। हमें ये कोशिश करनी पड़ती है, हमारे साथ ये लफड़ा होता है कई बार। हमारी आदत है हर बात पे हंसने की, हर बात पे कोई ना कोई बहाना निकालने की हंसने की। हमें ये ध्यान करना पड़ता है कि कहीं शोक सभा में ना हम चले जाएं। इसलिए हमारी अक्सर आपने देखा होगा शोक सभाएं बहुत कम होती हैं हमारी, हम जाते ही नहीं शोक सभा में, जाएं कब लफड़ा हो जाए कोई ठिकाना थोड़ी है। हम अपनी दादी जी के में गए थे तो लफड़ा हो गया था, उसके बाद में फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दादी जी के में गए तो बहुत देर हो गई, सुबह सुबह दादी जी चल बसी, हम पन्ना में थे, माता जी ने खबर दी कि आओ, आ गए 10-15 मिनट तो मुँह लटकाए बैठे रहे, हमें नहीं आए रोना, अब पूरा घर छाती पीट पीट रो गए, सब ताऊ चाचा जितने रहते थे सब आ गए, लगे रोने। थोड़ी देर हुई 15-20 मिनट तो हमने अपनी बहन से कहा, रीता से, कि रो लिया हो तो चाय बनाओ। तो माता जी ने ऐसी देखा हमारी तरफ कि मानो हमने उनका प्रोग्राम फेल कर दिया, बहुत नाराज हुई वो, आंख चिड़ा चिड़ा के। अब पूरा खानदान बैठा, सब ताई चाची हरे बैठे, भाभी मामी हरे आ गई, वहां दादी जी के भी खानदान के वहां से आ गए, मायके से लोग आ गए, सबकी नजर हमारी तरफ। हमने कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, ये सब हमें देखे और हम करें क्या, हम टिके बैठे हैं बढ़िया ऐसे। अब बहुत देर तक हम गमगीन रह लिए, 10 मिनट बहुत होता है हमारे लिए। हमका बनाओ चाय, बहन जी से कहा, माताजी से तो कहा ही नहीं, आवाज थोड़ा तेज हो गई कि रो लिया हो तो चाय बना लो। अब माताजी बड़ी नाराज, उन्होंने ऐसा मुक्का बनाया, ऐसे हाथ में यहां मारा, तो हमने पूछा काहे मार रही, तो शर्म नहीं आती, दादी जी मरी रखी वो तो मैं चाय पुसा रही। तो उनका माता जी हमारे चाय ना पीने से इन्हें जगना हो तो हम छोड़ देते, अगर ये जाग जाए तो लो हम छोड़ देते, वैसे तो चाय हमें छोड़ना बहुत मुश्किल है पर इन्हें जगा लो आप। अब और नाराज, तो तुम्हें शर्म नहीं आती, आदमी मरा रखा है और तुम्हें ऐसी बात है, ऐसे समय पे भी प्रवचन ही सुनाते। बड़ी नाराज हूँ, बहुत नाराज। हमारे एक मित्र हैं गांव के, रिक्की सिंह, वो बगल में बैठे थे, तो काहे को तमाशे कर रहे ऐसी हालत है। उनका तमाशे थोड़ी, सीधी सीधी बात है भैया, चाय बना दे पिला दे यदि हमारे तो। अब माता जी कह रही, अरे कम से कम लोगों की तरफ देख, सब रो रहे छाती पीट पीट के। हमका माता जी हमारे रोने से इन्हें जगना है नहीं। अब तुम लोग खूब रो रही हो दो घंटा से, जाग गई क्या? और ये जितने रो रहे हैं ये जब तक जिंदा रही तब तक तो आए नहीं, सब सब यही चाहते थे। कुछ हमारे परिवार कुछ लोग ऐसे थे हमका कुछ जब ये जिंदा थी तब चाहते थे कब जाएंगे, अब चली गई सो रो रहे हैं, और जग जाएंगे तो ये फिर चले जाएंगे सब। हम कहे इन्हें जगना है नहीं, यदि माता जी हमारे रोने से जागे तो सबसे ज्यादा छाती पीट पीट के हम रोएंगे। बाद में हमारे मित्र ने समझाया, लफड़ा नहीं करते, चलो चाय हम अपने घर पे लाते हैं। तो हम उनके घर गए, दादी जी वहां रखी नहीं, हम चाय पीते रहे। उस दिन के बाद हमने शोक सभा में जाना बंद कर दिया। जाते भी हैं तो 10-15 दिन जब हो जाते हैं, किसी के यहाँ जाना भी पड़े परिवार में भी 2-4-10 दिन हो जाए ताकि भाई माहौल शांत रहे। जाते भी हैं तो वही अपनी स्टाइल में, वो कुछ ना कुछ हमारे साथ गलती हो ही जाती है, कितना भी हम कंट्रोल करें कोई ना कोई बात ऐसी निकल ही जाती है कि जिसके घर पे ये घटना हुई होती है वो भी हंसते ही है। हाँ वो भी हंसते ही है, हमसे नहीं हो पाता है कंट्रोल। तो हम चाहते भी आपके साथ ही, बल्कि इस हालत में लोग तुम्हें पागल कहेंगे, घोषित कर देंगे, पर हम चाहते भी यही है, हमारे जैसा तुम्हें कंट्रोल करना पड़े कि भाई कहाँ नहीं हंसना है, ये कंट्रोल किया जाए। इसका मतलब है, हंसने का मतलब ये नहीं कि बहाने खोजें, वो अपने आप अंदर से आता है, उसके लिए कोई बहाने खोजने की आवश्यकता, सहज बस आता है। वो सहज बस तभी आएगा जब आप अंदर बाहर से एक हो जाओगे, जब आप बाहर की तरफ भागना बंद करके अंदर की तरफ जागना प्रारंभ करोगे, तब स्वाभाविक रूप से आपके अंदर में मुख खुल जाएगा। तो इस 3 दिन के शिविर में आज दूसरे दिन में थोड़ा सा प्रयोग अलग है। आपको कल जो प्रयोग कराया गया उससे थोड़ा सा भर अलग है, बाकी एकदम वैसा ही है। कल जो कम आपके मन में बहुत डर था कि अब क्या करना, अब क्या करना, गलत तो नहीं कर रहे हैं, कुछ उल्टा तो नहीं कर रहे हैं, विपरीत तो नहीं हो जाएगा, आज ऐसा सोचना आपको बंद करना है। जैसा आए वैसा पूरा डूब के करना है, बस इतना ख्याल रखना है, जितना भी करें वो पूरी ताकत जोर लगा करके और पूरा डूब के करें। ये भाव हटा दें कि हमारा लोग सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, क्योंकि जब ध्यान करते हैं, जब वो उस क्रिया में 5 चरण में जाते हैं तो कोई किसी को नहीं सुनता, सब अपने में ही लगे रहते हैं। जैसे बारात में सब श्रृंगार करके जाते हैं कि हमें लोग देखेंगे देखेंगे, पर पूरी बारात में कोई किसी को नहीं देखता, सब खुद को ही देखते रहते हैं। ऐसे यहाँ पर कोई किसी को नहीं सुन रहा, आपको ये मानना है आप अकेले हैं। और वो कल वाला याद रखना सूत्र, दुनिया लुट चुकी है, सुनामी आ चुकी है और तुम अकेले बचे, ऐसा मान करके तुम्हें फिर ध्यान करना है, तो ध्यान थोड़ा गहरा हो पाएगा। तो आज दूसरे दिन में आप सब बहुत धैर्यता और विनम्रता के साथ आज के सत्र को, क्योंकि वैसे भी लेट हो गए हैं, तो ज़्यादा लेट नहीं हुए, थोड़ा ही, थोड़ा दूर दूर बैठ जाएं, शायद लोग बढ़ गए कि हमें ऐसा लग रहा है। हाँ
1: अच्छा
0: कर लें तो इधर दिख नहीं रहे थे, चलो ठीक है, अच्छा थोड़ा दूरी दूरी कर लें, ये हाथ वाली दूरी आप आपस में ही अंदाजा लगा लें कि पता लगे कि एक दूसरे का तनाव एक दूसरे पर छोड़ दें, इतनी दूरी बना करके रखें, शरीर को एकदम ढीला कर लें। इस आत्मशुद्धि शिविर का नाम ही है आओ पागल बने। क्या बने? तो तुम बनना चाहते हो, लोग हंसेंगे तुम पर, तो आप आओ पागल बने में तीन सूत्र हमने कल आपको दिए थे, आज एक उसमें बात हम और कहना चाह रहे हैं जो चूक गए हैं। आज पूरे दिन आपको एक कोशिश करनी है सतर्क रहने की, ये नियम आपको आज, कल मौन पर जोर था, आज भी मौन पर जोर है, पर मौन थोड़ा अलग तरीके से होगा। आज का मौन जो आपका दिन का होगा, जैसे ही संवाद ये साधना पूरी होगी, वैसे ही आज के मौन का जो जोर होगा वो होगा सक्रिय रहने की, सतर्क रहने की। सक्रिय रहने का थोड़ा तरीका समझ लें, मौन है पर सक्रिय मौन। सक्रिय मौन क्या है? ये आवाज आ रही है, अभी आपको सिर्फ हमारी आवाज सुनाई पड़ रही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोगों को कूलर की आवाज सुनाई पड़ रही होगी, लेकिन कुछ लोगों को कूलर के साथ साथ पीछे से साउंड की, माइक की आरती की आवाज भी सुनाई पड़ रही, पर सबका ध्यान वहां केंद्रित नहीं, सबका ध्यान सिर्फ हमारी आवाज पर केंद्रित। पर सक्रिय मौन यही है जिसका तीनों आवाजों पर ध्यान है, कूलर भी सुन रहा, पीछे के माइक को भी सुन रहा, खुद की श्वास को भी सुन रहा है। इतना सक्रिय रहें, मतलब एक पत्ता भी हिले तो आपको ख्याल है। इस ध्यान का नाम ही है कैट मेडिटेशन। क्या नाम है? जरा जोर से बोलो, बड़ा अजीब नाम है, कैट मेडिटेशन, बिल्ली का ध्यान। और बिल्ली का ध्यान है इतना गहरा, किसी से आप कुछ सीख पाओ या ना सीख पाओ, बिल्ली से आप सीख सकते। बिल्ली जब चूहों को पकड़ने में बैठती है, चूहे को पकड़ने में बिल के बाहर, तो पत्ता भी थोड़ा हिले तो बिल्ली सतर्क रहती। चूहा जितनी रफ्तार से भागता चूहा ही जानता, पर बिल्ली का ध्यान इतना बारीक होता है, इतना बारीक होता है, इतना बारीक होता है कि वो चूहे के पैर की आवाज को भी सुनने की क्षमता रखती, इतना बारीक ध्यान होता है। और आप कभी बिल्लियों पर एक प्रयोग देखना, हो सके तो नेट पे भी देख सकते हैं आप, बिल्लियों पे एक प्रयोग देखना, कितनी भी ऊंचाई से बिल्ली को फेंका जाए, वो नीचे गिरने के पहले अपना संतुलन ठीक वैसे ही कर लेगी जैसे फेंका जाता है, वो हमेशा सीधी ही गिरेगी, पैरों के बल ही गिरेगी, चाहे जितनी ऊंचाई से, चाहे जिस प्रकार आप बिल्ली को फेंक देना, वो जमीन पर आने के ठीक पहले अपना ध्यान केंद्रित करके ठीक पैरों के बल ही गिरेगी। ऐसे ही व्यक्ति को होना चाहिए इतना सावधान कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां रहें, उसकी मुस्कुराहट, उसकी जागृति, उसकी सतर्कता केंद्रित रहनी चाहिए। क्योंकि जब आप घर जाएंगे, लोगों से बातें करेंगे, तो लोग तरह तरह के तर्क देंगे शिविर के बारे में, धाम के बारे में, हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में, वो तुम्हें डीमोटिवेट करेंगे, कहां पड़े बेफिजूली के, क्या हो जाएगा उससे, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं पा रहे और तुम्हें करते हुए देख करके वो खुश ही नहीं, उन्हें लग रहा है कि यदि ये आदमी कुछ कर लेगा तो बेफिजूली में उनको गाली मिलेंगी, इसलिए वो चाहते ही नहीं कि तुम कुछ करो, वो चाहते हैं हमारे जैसे निकम्मे बनो, और सब अपनी अपनी फौज बढ़ाना चाहते, चोर चाहते हैं कि चोर और बढ़े ताकि सब चोरों को साथ साथ गालियां मिले, हम चाहते हैं कि लोग हमारे जैसे बने, हम चाहते हैं हमारी फौज बड़ी हो, अधार्मिक व्यक्ति चाहता है अधार्मिक ज्यादा हो, नास्तिक चाहते हैं नास्तिक ज्यादा हो। तो स्वाभाविक है कि जब तुम यहां से जाओगे तो कुतर्क करने वाले तुम्हारे आसपास आएंगे, पर तुम्हारा ध्यान कैट मेडिटेशन होना चाहिए। कौन सा? बिल्ली जैसा। तुमने कभी ब्रेन वॉश्ड लोगों को देखा है? देखा? आसपास देखना जिनका ब्रेन एकदम वॉश्ड होता है, ब्रेन वॉश कहते उसको, देखना कब, बड़े खतरनाक लोग होते। प्रेम में पड़ी हुई लड़का या लड़की को देखना कभी, उसे कितना भी समझाओ तर्क दो ये सब बेकार है, कहीं कुछ नहीं है, कहां पड़े हो बेफिजुली में, सौ तर्क दे देना, वो धीरे से यही कहेंगे हम रहेंगे तो उन्हीं के साथ में। हाँ हाँ, 500 तर्क दे दो, माँ मर जाएगी, बाप को अटैक आ जाएगा, वो तुम्हें काट काट के रख देगा, सूटकेस में बंद कर देगा, कहाँ फंसी बेफिजूली में, भाग छोड़ दे, उसके चक्कर में मत पड़, बढ़िया शादी कराएंगे, 2 साल बाद शादी कर लेना, अभी मत करना। नहीं, चाहे जो हो जाए हम तो उन्हीं के साथ में रहेंगे। इस शिविर के बाद तुम्हारे मन की आदत भी ऐसी ही हो जानी चाहिए कि चाहे जो हो जाए हम रहेंगे तो परमात्मा के ही साथ में, ध्यान के ही साथ में, आनंद के। तो इस ध्यान का नाम नोट कर सकते हैं आप, इस पर थोड़ा सा पढ़ लेना, रिसर्च कर लेना बिल्ली के बारे में, बिल्ली की सतर्कता के बारे में। तो इसका नाम क्या है? कैट मेडिटेशन। आज पूरे दिन आपको यही करना है।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
7: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
8: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
9: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
10: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
7: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
11: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
12: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
7: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
13: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
7: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
14: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए। इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
7: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
4: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
15: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति अभी?
4: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
7: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
16: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
7: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
11: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
7: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
17: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
11: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
18: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
19: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
7: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
20: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
7: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
21: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
7: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
14: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है, अंदर से जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
22: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
9: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
7: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
23: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
24: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरे तरीके से राहत है।
0: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
7: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
8: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है। और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
7: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
10: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
7: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
13: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
7: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: पोखरण में 14 सितंबर से ड्रोनाथॉन 2026 का आयोजन, ड्रोन से ड्रोन रोधी सिस्टम तक दिखेगी भारत की स्वदेशी तकनीक की ताकत। जोधपुर में आज से 22 सितंबर तक वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास, भारत और जापान की वायुसेना के लड़ाकू विमान दिखाएंगे दमखम। गुजरात के आणंद में गणेश उत्सव की खास तैयारी, कार्टून कैरेक्टर्स ने बच्चों को लुभाया, निकली भव्य झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। बप्पा के विशेष भोग की तैयारी, चॉकलेट से लेकर स्ट्रॉबेरी तक मोदक के नए फ्लेवर तैयार, घरों में भी बनाए जा रहे हैं तरह तरह के मोदक। महाराष्ट्र में पोला पर्व की उमंग, बैलों के श्रृंगार के सामान से सजे बाजार, रस्सी और घुंघरू वाले पट्टे खरीदने पहुंच रहे किसान। एप्पल ने की आईफोन 18 प्रो, प्रो मैक्स और अल्ट्रा लॉन्च की तैयारी, ग्राहकों में उत्साह, आज रात हो सकता है इसका लॉन्च।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
3: गुजरात के आणंद में बप्पा का जोरदार स्वागत, राजा गणराज 2026 की आगमन यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ देखने को मिली कई आकर्षक प्रस्तुतियां, बच्चों के लिए अलग अलग लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर्स भी बने यात्रा का हिस्सा। यात्रा में भक्ति के साथ रोमांच और शौर्य का भी शानदार संगम, छावा एक्ट ने लोगों में भरा जोश, कलाकारों ने पारंपरिक शस्त्र कला का किया प्रदर्शन। विघ्नहर्ता के शानदार आगमन यात्रा में महिला शक्ति की भी दिखी खास झलक, महिलाओं ने पेश की कई रोमांचक प्रस्तुतियां। हर तरफ एक सुनाई दिया गणपति बप्पा मोरिया का जयघोष, गणपति भक्ति के रंग में रंगा नजर आया पूरा शहर। अकोला में 30 फीट ऊंचे चिंतामणि गणपति बप्पा का हुआ भव्य आगमन, ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर भक्त जमकर झूमे। सिविल लाइन चौक पर बप्पा के मुख से लाल कपड़ा हटाया गया, दर्शन होते ही पूरा चौक गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष से गूंज उठा। चिंतामणि बप्पा के भव्य स्वरूप के दर्शन के लिए सैकड़ों भक्त पहुंचे, हर कोई बप्पा के दर्शन के साथ तस्वीर और वीडियो बनाता हुआ नजर आया। बप्पा के स्वागत में शानदार फायर शो और आतिशबाजी का आयोजन किया गया, आसमान रोशनी से जगमगा उठा और भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। चिंतामणि गणपति यानी सभी की चिंता हरने वाले बप्पा से भक्तों ने प्रार्थना की, अच्छी बारिश और हर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की गई। जैसलमेर में अनोखा गणेश मंदिर, यहां भक्त पत्थरों से छोटा घर बना के भगवान से मांगते हैं अपना आशियाना। 1400 साल पुराना है गूंदी गणेश मंदिर, मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना जरूर पूरी होती है। नदी के बीच विराजते हैं गणेश जी, मंदिर की मूर्ति को लेकर मान्यता है कि ये प्रतिमा खुद ही प्रकट हो गई थी। मंदिर के पास बने हैं सैकड़ों छोटे छोटे घर, भक्त इन्हें बनाकर अपने लिए भी घर मांगने की प्रार्थना करते हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर लगता है भव्य मेला, दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और गणपति से अपनी मनोकामना मांगते हैं। दिल्ली की रुचि गुप्ता 8 साल से घर पर गणपति बप्पा की बना रही है मूर्ति, इस बार भी मिट्टी से बप्पा को आकार देकर रंग और सजावट से अंतिम रूप दिया जा रहा है। रुचि गणपति विसर्जन भी घर पर ही करती है ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, विसर्जन के बाद पानी पौधों में डालकर इस परंपरा को इको फ्रेंडली बनाया जाता है। चावड़ी बाजार में 35 साल से मोदक की मिठास कायम, शाम स्वीट्स में आज करीब 25 तरह के मोदक हो रहे तैयार। मोदक बनाने का हुनर महाराष्ट्र से दिल्ली आया, करीब 40 साल पहले दुकान के मालिक रेसिपी कारीगर और साचा महाराष्ट्र से लाए थे। चॉकलेट से लेकर स्ट्रॉबेरी तक मोदक के नए फ्लेवर्स तैयार हैं, काजू, ड्राई फ्रूट, हेजलनट और कलाकंद भी ग्राहकों को खूब पसंद आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पोला पर्व की तैयारियां तेज, किसान 364 दिन साथ देने वाले अपने बैल को एक दिन का खास सम्मान देते हैं। करीब डेढ़ महीने से बारिश नहीं होने से किसान परेशान, फसलों पर संकट है, फिर भी किसान पोला मनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अकोला के बाजार बैलों के श्रृंगार के सामान से सज गए हैं, रस्सी घुंघरू वाले पट्टे, झूम और घूल खरीदने किसान पहुंच रहे हैं। पोला के दिन बैल से खेत में कोई भी काम नहीं कराया जाता है, किसान इस दिन अपने मेहनती साथी को पूरा आराम देते हैं और उसे सम्मान भी देते हैं। आर्थिक परेशानी के बावजूद किसान बैल का पोला धूमधाम से मना रहे हैं। बैल को सजाकर पूरण पोली खिलाई जाएगी और उनके स्वस्थ रहने की कामना की जाएगी। जम्मू कश्मीर में फिर लगा आस्था का मेला, डोडा जिले के बदरवाह घाटी में वार्षिक 3 दिवसीय प्राचीन कैलाश कुंड यात्रा की शुरुआत। इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। भद्रवाह घाटी के आराध्य देवता माने जाने वाले भगवान वासुकी नाग को समर्पित सदियों पुरानी यात्रा। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में स्थित कैलाश कुंड झील में भक्त करेंगे स्नान। 10 सितंबर से शुरू होगी वापसी यात्रा। देहरादून में ज्ञान गंगा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल हुए। आयोजन में सीएम धामी ने शिक्षकों को सम्मानित किया, मेधावी विद्यार्थियों को दी छात्रवृत्ति। उत्तर प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों के लिए तोहफा, अब 70 साल की उम्र तक सरकारी डॉक्टर दे सकेंगे अपनी सेवाएं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ग्रामीण महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर, जैविक अचार, जैम और मुरब्बा बनाकर कमा रही हैं जीविका। कृषि विभाग और स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से महिलाएं पारंपरिक नुस्खों और सरकारी योजनाओं का उठा रही है लाभ, हो रही है अच्छी आमदनी। कश्मीरी कारीगर संजोए हुए हैं वाद्य यंत्र बनाने के पारंपरिक और प्राचीन कला, पिछले 32 सालों से हाथ से बना रहे हैं रबाब, संतूर और साजो कश्मीर जैसे कश्मीरी वाद्य यंत्र। हर वाद्य यंत्र को बनाने में कारीगर मुश्ताक अहमद डार को लगाते हैं लगभग 2 महीने, पूरे भारत से मिलते ऑर्डर, विदेशों में भी पहचान। एप्पल का सरप्राइज एंड शाइन इवेंट, आज आईफोन 18 प्रो समेत कई प्रोडक्ट्स होंगे लॉन्च। कंपनी के पहले फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा के आने की भी उम्मीद, एप्पल के लिए भारी उत्साह। कंपनी का अब तक का सबसे महंगा स्मार्टफोन हो सकता है फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा, भारत में करीब 2.5 लाख रुपए रह सकते हैं इसकी कीमत। कई अन्य बड़े प्रोडक्ट्स भी उतारने की तैयारी में है एप्पल, एप्पल वॉच सीरीज 12 और नई एप्पल वॉच अल्ट्रा के शामिल होने की उम्मीद। टिम कुक के पद छोड़ने के बाद नए सीईओ बने जॉन टर्नर्स का होगा पहला कीनोट, भारतीय समय अनुसार आज रात 10:30 बजे शुरू होगा इवेंट। कटियार में बाढ़ के बीच अनोखी तस्वीर आई सामने, नाव पे सवार होकर दुल्हन के घर पहुंची बारात। बाढ़ भी नहीं रोक पाई ने कहा कि खुशियां, पानी के बीच दूल्हा दुल्हन ने निभाई शादी की रस्में। भागलपुर में बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी, दीपक आनंद ने राहत के कामों का लिया जायजा। तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी का पानी बढ़कर हुआ 9,200 क्यूसेक, कावेरी डेल्टा में सिंचाई के लिए पानी छोड़े जाने की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। थूथुकुड़ी में देखे साइबेरिया से आए खूबसूरत पक्षी, लोगों को कर रहे आकर्षित। बाराबंकी में सरयू नदी का बड़ा जलस्तर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी, प्रशासन अलर्ट मोड पर। फरुखाबाद में बाढ़ जैसे हालात बने, कई इलाके पानी में डूबे, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बिहार में बाढ़ से हालात गंभीर, गंगा और सोन नदी के जलस्तर में भी कमी के बावजूद पटना में गंगा नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। समस्तीपुर में गंगा का जलस्तर 10 सेमी घटा, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही नदी, बाढ़ पीड़ितों को राहत का इंतजार। बिहार के खगड़िया में बाढ़ से करीब 1.5 लाख आबादी प्रभावित, कई गांव टापू में तब्दील हुए, नेशनल हाईवे के किनारे रहने को मजबूर लोग। भारत जापान की वायु सेनाएं जोधपुर में वीर गाजन 2026 युद्धाभ्यास करेंगी, 9 से 22 सितंबर तक दोनों देशों के लड़ाकू विमान आसमान में अपनी ताकत दिखाएंगे। इस अभ्यास में भारत के तेजस, सुखोई 30 और राफेल लड़ाकू विमान शामिल होंगे, वहीं जापान अपने F-2A फाइटर जेट के साथ इस अभ्यास में उतरेगा। दोनों देशों के सैनिक मिलकर युद्ध की तैयारी, मिशन प्लानिंग और सुरक्षा पर अभ्यास करेंगे। वीर गार्जियन से भारत जापान की सैन्य दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। राजस्थान के पोखरण में 14 से 16 सितंबर तक होगा ड्रोनाथॉन 2026। वायुसेना के इस कार्यक्रम में देश की कंपनियां नए ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम दिखाएंगी। ड्रोनाथॉन में निगरानी झुंड में उड़ने वाले ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर जोर रहेगा। वायुसेना इन तकनीकों को परखकर देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। बॉक्स ऑफिस पर शायकालीन भैया मिर्जापुर द मूवी की भारत में नेट कमाई 100 करोड़ रुपए के पार। प्यार विश्वासघात की कहानी लेकर आ रही फिल्म लव लॉटरी अक्षय ओबेरॉय की सस्पेंस थ्रिलर का ट्रेलर जारी। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान का तीसरा गाना मैं तो हैवान नहीं हूं हुआ रिलीज। इस गाने को प्रीतम ने कंपोज किया है जबकि इसके बोल कुमार ने लिखे हैं। रवि किशन के वायरल मीम पर टी सीरीज ने बनाया गाना मनी फॉलोज माई ब्रदर टाइटल के गाने का टीजर जारी। 4 साल बाद फिर से छठ पूजा स्पेशल गीत लेकर आ रहे सिंगर विशाल मिश्रा जल्द ही आने वाला है उनका ये गीत। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसके बारे में जानकारी दी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
5: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं और उसका नाम क्या है बवासीर। अरे भाई और बहनों ये कोई शर्म की बात नहीं है ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है न पैसा देखता है न पद या ओहदा देखता है बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन दर्द खून आना बैठ भी ना पाए मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे कई दवाइयां खाई होंगी लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो। नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर। और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर

शरीर को नहीं इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़।
बवासी

0: की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: पोखरण में 14 सितंबर से ड्रोनाथॉन 2026 का आयोजन, ड्रोन से ड्रोन रोधी सिस्टम तक दिखेगी भारत की स्वदेशी तकनीक की ताकत। जोधपुर में आज से 22 सितंबर तक वीर गाजन 2026 युद्धाभ्यास, भारत और जापान की वायुसेना के लड़ाकू विमान दिखाएंगे दमखम। गुजरात के आणंद में गणेश उत्सव की खास तैयारी, कार्टून कैरेक्टर्स ने बच्चों को लुभाया, निकली भव्य झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। गणेश उत्सव को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, सभी गणेश पंडालों में मुफ्त होगी बिजली सप्लाई, भक्तों में खुशी की लहर। महाराष्ट्र में पोला पर्व की उमंग, बैलों के श्रृंगार के सामान से सजे बाजार, रस्सी और घुंघरू वाले पट्टे खरीदने पहुंच रहे किसान। एप्पल ने की आईफोन 18 प्रो, प्रो मैक्स और अल्ट्रा लॉन्च की तैयारी, ग्राहकों में काफी उत्साह, आज रात हो सकता है इसका लॉन्च।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम आज बात कर रहे हैं रोज नए कीर्तिमान बना रही फिल्म हनुमान अंश की। शुरुआत में जिस फिल्म को ज्यादा नोटिस नहीं किया गया, आज वो फिल्म 150 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है और हैरानी की बात नहीं होगी अगर ये फिल्म जल्द ही 200 करोड़ रुपए के क्लब में भी शामिल हो जाए। आज आपको इस फिल्म की कामयाबी के आंकड़े और इसे मिल रहा दर्शकों का दुलार उसको भी दिखाएंगे। इसके अलावा फिल्म हनुमान अंश के स्टार कास्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत होगी, साथ ही आपको बताएंगे कौन कौन दिग्गज बाबा के दर पर पहुंचे। लेकिन सबसे पहले बात हनुमान अंश की, जिसने धीमी शुरुआत के बाद बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ी और अब बड़े बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रही है। अपनी रिलीज के 32वें दिन यानी 5वें सोमवार को करीब 9 से 10 करोड़ रुपए का इस फिल्म ने कलेक्शन किया है, तो जो देखिए छोटी बात नहीं है, क्योंकि इसके साथ तमाम बड़ी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी, जैसे यश की टॉक्सिक जो कि एक पैन इंडिया फिल्म थी, लेकिन उसके बावजूद हनुमान अंश ने सबको सरप्राइज कर दिया है। देखिए इस फिल्म ने जो किया है वो किसी भी हिंदी फिल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा 5वां सोमवार साबित हुआ है। और आखिर इस फिल्म को दर्शकों का इतना प्यार क्यों मिल रहा है, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं।
1: करना क्या चाहते?
2: न बड़ा बजट, न बड़ी स्टार कास्ट,
3: क्योंकि मुझे
2: न प्रमोशन,
3: अम्मा के पास
2: न रिलीज होने तक कोई चर्चा। लेकिन फिल्म हनुमान अंश का कमाल देखिए, आंकड़ों का कीर्तिमान देखिए, इसकी शोहरत देखिए, और एक महीना गुजरने के बाद भी दर्शकों में से लेकर दीवानगी देखिए।
4: चमत्कारिक रूप से हनुमान अंश लगातार बिजनेस करती जा रही है, 100 करोड़ के पार मूवी पहुंच चुकी है, रफ्तार अब 150 करोड़ के आसपास है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कि फिल्म देखकर निकले हैं, कैसी लगी फिल्म आप?
5: बहुत अच्छी पिक्चर थी, और यहाँ हमें ना नीम करौली बाबा की पूरी स्टोरी समझ में आई, कि मतलब पहले उतना नहीं पता था, लेकिन पिक्चर देख के मन खुश हो गया।
6: बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी मूवी है, आप सबको देखनी चाहिए। मैं लेकिन हमने सोशल मीडिया पे देख के ही इतना मतलब वो हुए कि मूवी देखनी चाहिए।
4: सोशल मीडिया पर लोग जिस तरह बहुत तारीफ कर रहे थे, यहाँ आकर वैसे ही लगा या कुछ और था?
7: नहीं, हमें बिल्कुल वैसे ही लगा। और वैसे मैं वेकेशन में गर्मियों में हर साल नीम करौली बाबा जाती भी हूँ, और यहाँ देख के तो मुझे बहुत लगा कि उसी मंदिर में मैं आ गई हूँ।
4: सबसे ज्यादा खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से चर्चा शुरू हुई फिल्म की, उसके बाद इन्हें इंस्पिरेशन मिली कि इन्हें भी जाकर फिल्म देखनी चाहिए। हालांकि ये सब पहले से ही, अधिकतर लोग इनमें से नीम करौली बाबा के बारे में जानते थे, कई लोग वहां जाते भी हैं, दर्शन भी करते हैं, लेकिन बड़े पर्दे पर फिल्म को अनुभव करना इनके लिए बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। कह रहे हैं कि जो बातें पहले हमको भी नहीं पता थी वो बातें आज इस फिल्म ने बताई हैं।
2: ये जादू है जो बार बार नहीं होता। दर्शकों में ऐसी कोई फिल्म आती है जो पहले तो नोटिस नहीं की जाती और फिर बॉक्स ऑफिस पर तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर देती है। सिर्फ 2 करोड़ में बनी फिल्म का कारोबार 150 करोड़ के पार जा चुका है। लेकिन हैरान करने वाला आंकड़ा ये है कि फिल्म ने 31वें दिन 22 करोड़ 75 लाख की धांसू कमाई की और 32वें दिन भी 9 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया।
8: आंखें वही देखती हैं।
2: और इस तरह 5वें वीकेंड में कमाई करने के मामले में हनुमान अंश ने धुरंधर, छावा और पुष्पा 2 जैसी धाकड़ फिल्मों को पछाड़ दिया है।
9: इतनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, वो वहां से निकाल ही लेंगे।
2: लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकता दिख रहा, असली चमत्कार तो शायद अब होना है। हनुमान अंश का ग्रॉस कलेक्शन करीब 155 करोड़ हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म जल्दी ही 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है, क्योंकि ये फिल्म 11 सितंबर से वर्ल्ड वाइड रिलीज होने जा रही है। दर्शक फिल्म देखकर गदगद हैं और फिल्मी पंडित हैरान,
10: भगवान जी को सोने का चढ़ावा नहीं,
2: क्योंकि जिस फिल्म ने रिलीज होने के 17 दिनों तक किसी का ध्यान नहीं खींचा, 2 हफ्ते तक कमाई सिर्फ लाखों में रही, फिर अचानक 17वें दिन एक चमत्कार हुआ और इसने रविवार को 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की कमाई की। ये इतिहास बनने की शुरुआत थी, जिसके बाद से फिल्म ने फिर पलट कर नहीं देखा है।
3: विशाल चतुर्वेदी की हनुमान अंश एक नया रिकॉर्ड बनाने की कगार पर है। जी हाँ, इस फिल्म ने 100 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर चुका है। बहुत ही छोटे बजट पे बनी ये फिल्म, सिर्फ 2 करोड़ रुपए में बनी थी और आज जाकर ये बड़े बड़े फिल्में जैसे कि टॉक्सिक, आवारापन 2 और यानी यहाँ तक कि मिर्जापुर द मूवी को भी एक पीछे छोड़कर अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग तोड़ रहा है। और ये एक डिवोशनल ड्रामा है, नीम करोली बाबा के जर्नी के पे बेस्ड है और कहीं ना कहीं ये फिल्म की ना जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। जब रिलीज हुई थी तो बिल्कुल 2 हफ्ते तक ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे थे, स्क्रीन्स काफी कम थे एंड सडनली 3rd हफ्ते से जो इस फिल्म ने एक जंप ली है वो बहुत ही एक रिमार्केबल एक अचीवमेंट कहला सकता है।
2: ना कोई प्रचार और ना कोई तामझाम, पर बाबा नीम करौली के चमत्कारिक जीवन से प्रभावित इस फिल्म ने अपने कंटेंट की बदौलत हर पीढ़ी को सिनेमा हॉल तक खींच लिया है।
8: फिल्म हनुमान अंश को दर्शकों से बेहद ही शानदार और भावुक रिस्पांस मिल रहा है। रिलीज के बाद अब 100 करोड़ से भी ज्यादा ये मूवी जो है वो कमाई कर चुकी है और लगातार लोग जो है, फैमिलीज जो है वो इस मूवी को देखना पसंद कर रही है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि मूवी के बाहर जो है लोगों की भीड़ आपको थोड़ी बहुत नजर आ जाएगी, हालांकि कुछ लोग अभी पीछे गए, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग नजर आने वाले जो इस मूवी के बारे में सुन सुनकर यहाँ पर आए। तो लोगों के मन में क्या चल रहा है मूवी देखने से पहले वो हम जानेंगे। तो मैम आपसे ही सवाल है, मूवी के बारे में किसने को बताया, क्या कुछ सुनने को मिला?
11: जी मेरी बेटी ने बताया, कहा कि मम्मी आप देख के आओ, बहुत अच्छी फिल्म है।
8: हनुमान जी के भक्त हो वैसे, ये बताइए।
11: जी हाँ,
8: नीम करौली बाबा के आश्रम गए हो आप?
11: नहीं
8: नहीं, लेकिन मूवी देखने आप जरूर आए हो।
11: जी हाँ,
8: आप बताइए अंकल, आप कितना एक्साइटेड है मूवी देखने के लिए कि मतलब कैसी मूवी होने वाली, क्या लग रहा है?
12: मूवी तो बढ़िया हुई है।
8: हाँ,
12: बढ़िया हुई, अच्छी हुई,
8: अच्छी होगी। हनुमान जी को वैसे ही मानते
12: हैं? हाँ, हनुमान जी को वैसे।
8: और आज मंगलवार भी है?
12: हाँ जी, वही तो कह रहा हूँ, हनुमान जी का।
8: अच्छा, इसीलिए खासा है। अच्छा आप, मैं ये जेन जी के अंदर भी क्रेज आ रहा है क्योंकि जेन जी जो है इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से भजन क्लबिंग भी ट्रेंड बन गया उसमें भी जेन जी का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। एज अ जेन जी आप मूवी देखने आए हो तो कैसे, कितने एक्साइटेड हो?
13: मैम बहुत एक्साइटेड है, मेरे पापा जी ने रिकमेंड करी थी मेरे को।
8: हाँ,
13: तो उन्हीं के रिगार्डिंग मैं आया हूँ।
8: अच्छा, उन्हीं के रिगार्डिंग?
13: फिर पापा जी देख गए।
8: अच्छा, उनको अच्छी लगी?
13: मेरे मम्मी पापा दोनों देख गए मूवी।
8: कैसा रिस्पॉन्ड था उनका?
13: अच्छा था,
8: अच्छा था,
13: बहुत अच्छा।
2: हनुमान अंश की कामयाबी को अलग अलग तरीके से डिकोड किया जा रहा है, लेकिन एक बात सभी मान रहे हैं कि मनोरंजन के अलावा ये फिल्म दर्शकों को एक आध्यात्मिक एहसास से जोड़ती है। भक्ति, सेवा, श्रद्धा के संदेश के साथ साथ नीम करौली बाबा की जीवन यात्रा से जोड़ती है। सबसे बड़ी बात कि फिल्म दर्शकों को हनुमान जी की भक्ति से जोड़ती है और यही इसकी कामयाबी की असली वजह है।
14: क्योंकि मुझे मेरी अम्मा के पास पहुंचना है।
15: मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको बोलना चाहता हूँ कि प्लीज जाइए थिएटर में एंड वॉच हनुमान अंश। आई जस्ट वेंट विद माय मॉम एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। गो, अपने माता पिता को लेके जाइए, अपने बच्चों को लेके जाइए, गो विद योर फ्रेंड्स। आई हाईली रिकमेंड दिस फिल्म टू एवरीवन। किसी ने मुझे बोला नहीं है ये बनाने के लिए, कोई किसी का फोन वोन कुछ नहीं, आई जस्ट वॉन्टेड टू डू दिस एंड बचपन से मेरा एक कनेक्शन रहा है हनुमान जी के साथ, बट दिस इज समथिंग एल्स। ये देखिए, बहुत ही प्योरली बनी हुई फिल्म है। आई वुडंट इवन कॉल इट अ फिल्म, इट्स जस्ट इट्स समथिंग डिवाइन।
2: हनुमान अंश का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। आम दर्शक ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक्टर और निर्देशक इसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। वरुण धवन तो इसे अपनी मां के साथ देखने पहुंचे और धुरंधर बनाने वाले आदित्य धर ने भी इसे सराहा है। प्रीति जिंटा ने अपने इंस्टाग्राम पर थिएटर के अंदर की तस्वीरें शेयर करके लिखा, सीताराम और वाव लिखकर फिल्म के लिए अपना प्यार जताया। वहीं एक्टर विवेक ओबेरॉय ने भी इसकी जमकर तारीफ की है।
16: मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई दायरा फिक्स्ड नहीं है। कुछ लोगों को वेब सीरीज अच्छी लग रही है, कुछ लोगों को फिल्म्स अच्छी लग रही हैं। ये वही भारत है जहाँ पे मिर्जापुर जैसी फिल्म भी बहुत अच्छी चलती है, हनुमान अंश जैसी फिल्म भी इतनी खूबसूरत चलती है, छोटी से बजट की, कोई स्टार नहीं, लेकिन कई लोग जाके देखते हैं, उसे इतना प्यार देते हैं, इतना सराहना देते हैं। तो आई थिंक ये ऑडियंस के मन में क्या है और ऑडियंस चाहती क्या है, ये तो बहुत मुश्किल है समझना।
2: दुनिया। शानदार विजुअल इफेक्ट्स, जीवंत अभिनय और सनातन संस्कृति के गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ी है और इसीलिए इसे दर्शकों का स्नेह और आशीर्वाद भी मिल रहा है। अब देखिए आंकड़ों का ये कीर्तिमान कहां जाकर ठहरता है। नोएडा से मनीष चौरसिया, दिल्ली से मनीषा लड्डा, मुंबई से सना फरजीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज स्टडी।
17: एक बार बाबा ने अगर आपको अपना लिया तो चाहे आप कहीं पर कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो वो वहां से निकाल ही लेंगे।
0: फिल्मों के मामले में आमतौर पर पहले और दूसरे हफ्ते की कमाई ही काफी ज्यादा अहम मानी जाती है क्योंकि चौथे और पांचवें हफ्ते तक रफ्तार धीमी हो जाती है, अक्सर यही ट्रेंड देखा जाता है। हनुमान अंश के मामले में कहानी उलट है। देखिए फिल्म ने पांचवें हफ्ते में ही रिकॉर्ड बना दिया है, कुल 51 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करके इस फिल्म ने रिकॉर्ड बना दिया है। फिल्म को ज्यादा प्रमोट करने के लिए टीम हनुमान अंश इन दिनों यूपी के सफर पर है। लखनऊ में उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने।
18: ये किरदार निभाया है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, सब वही कर रहे थे।
19: एक बड़ा रिकॉर्ड बना रही है इस किरदार को लेकर, कहते हैं कि एक हफ्ते में इतना ऊंचा पहुंच गया और नीम करोली बाबा जिसको
18: मेरे लिए रिकॉर्ड मायने नहीं रखता है, बाबा का नाम जगह जगह जा रहा है ये मेरे लिए मायने रखता है।
19: अब भी गाना लगातार आपने गाया है इसमें, कैसे ये जो गाने लगातार हिट हो रहे हैं, लगातार लोग सुन रहे हैं उनको, क्या आपने धुन बनाई, किस तरीके से दिमाग में?
20: वो तो जो डायरेक्टर्स के निर्देश होते हैं उन निर्देशों का पालन करके कोई भी कंपोजर गाने कंपोज करता है, लिखता है, तो सौभाग्य से मैंने कंपोज किए इनके निर्देशन में, बात बनी। और
19: जंगल बस अगर आप सुना दें तो बहुत ज्यादा ठीक रहे।
21: जुद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे सप्त ऋषि, काय जिद कर रही काय को मर रही, काय जिद कर रही काय को मर रही, ऐसे बर खेलाने कैसे भर के लाने, जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर ऐसा, जाके शीश पे गंगा और गले पे डारे फिर ऐसा, इतने सीधे साधे हैं सब कहते बोले नाथ बोले नाथ।
19: विशाल जी ये आप 16वें दिन तक फिल्म बिल्कुल नहीं गुमनाम बनी रही, 17वें दिन से इसका शुरू हुआ, क्या कहेंगे?
22: तो 14 दिन तक एक्चुअली फिल्म जो है ना, चूंकि सिर्फ 27 थिएटर में थी और हमको ऐसा लग रहा था कि फिल्म जो है ना शायद उतर भी जाएगी, बड़ी फिल्म और आ रही थी, लेकिन लेकिन जो है 15वें दिन से हमारी फिल्म के साथ में कुछ ऐसा होना शुरू हो गया, जनता ने जमीन से उठा के फिल्म को जो है ना ऊंचाइयों तक पहुँचा दिया। और उसके लिए मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि जनता का ही सबसे बड़ा धन्यवाद मुझे देना चाहिए। और क्योंकि उन लोगों ने जो है ना रील्स बनाने शुरू किया और बोला कि ये फिल्म के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा, ये फिल्म जो है ना इतनी अच्छी फिल्म है, हमारे बच्चों को भी दिखाई देनी चाहिए फिल्म, तो इस तरह से जो है ना होते होते फिल्म जो है ना अचानक से परवान चढ़ गई और जनता ने इस फिल्म को जमीन से उठा के, क्योंकि इस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाए थे हम लोग, तो जनता ने इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया और हमारे जो है वो मतलब हमारी फिल्म को लेकर और अच्छी कहानियों को कहने के को लेकर हमारी जो है ना विश्वास को बढ़ा दिया।
19: करोली बाबा की भी कृपा मानेंगे इसको
22: पूरी तरह से? नीम करोली बाबा की कृपा है, पहले सबसे पहले बात तो ये बात हमको बतानी चाहिए कि उनकी कहानी है ये, हमारी कहानी तो बाद में है, हमने तो कहानी बाद में बोली, लेकिन महाराज जी की कहानी है जिस कहानी को बोल रहे थे हम, और वो कहानी इतनी बड़ी हो गई और महाराज जी की कृपा और हनुमान जी कृपा से के ऊपर कुछ भी नहीं है इसमें।
19: इस कामयाबी के बाद आगे का क्या प्लान है, प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद क्या प्लान?
22: इस फिल्म को अभी जब तक तो ये थिएटर्स में लगी है तब तक हम इस फिल्म को प्रमोट करते रहेंगे, हम इस फिल्म को जगह जगह ले जाते रहेंगे, ये हमारा उद्देश्य है, और इसको जन जन तक पहुंचाना है, बच्चों को फिल्म दिखानी है, क्योंकि फिल्म बच्चों को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई गई है कि बच्चों को महत्व पता चले, हनुमान चालीसा का महत्व पता चले।
19: जीवन से कितना आप बदलाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पर्दे पर आपने ईश्वर की पूरी इस एक कृपा को उतारा है और किरदार निभाने वाले के जीवन पर क्या असर पड़ा है, क्योंकि ये बड़ा दिव्यात्मक भूमिका पर्दे पर आप लाए
22: जी, तो कहीं ना कहीं जो है ना हम सबके जीवन में परिवर्तन हमें महसूस भी हो रहा है, जो हमारे अंदर परिवर्तन आया है, सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि हमें ईश्वर को सरेंडर करना यानी उनको समर्पित करना अपने आप को सीखा है हमने, क्योंकि जब जब हम किसी समस्या में फंसते थे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते पूरी टीम ने ऐसा महसूस किया कि हमारी जो है ना समस्याएं थी वो रिजॉल्व हो जाती थी, तो इसलिए सारी टीम मेंबर्स ने इस बात को महसूस किया है और ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि हमने ईश्वर को ईश्वर में श्रद्धा होने के अलावा आपको उनमें विश्वास रखना बहुत आवश्यक है, उनको सरेंडर करना आपको पता होना।
19: उत्तर प्रदेश में आपको इसको लेकर क्या लग रहा है, कैसे लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कितना देख रहे हैं, क्योंकि लोग तो नंगे पैर भी जा रहे हैं मॉल में
22: जी। बहुत सारे उत्तर प्रदेश के जैसे गोरखपुर में किसी ने प्रसाद बंटवारा को बांटना वितरण करना शुरू कर दिया, आगरा में थिएटर से जहाँ पे उन्होंने ऐसे जो फटके होते हैं उन्होंने राम नाम के फटके जो है ना बांटे, हमने वहाँ जाके हनुमान चालीसा भी की। बहुत सारे जगहों पे लोग चप्पलें भी उतार रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादातर हो रहा है और ये उसका कारण ये है कि फिल्म उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की ये लोगों द्वारा बनाई गई है और उत्तर प्रदेश की कहानी मतलब जी श्री कोली बाबा महाराज जी यहीं के यहीं पैदा हुए थे और यहीं पे उनका देहावसान।
0: तो चलिए फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।

0: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

नीव करौली बाबा के प्रति आस्था ऐसी कि नामचीन लोग भी उनके शरण में पहुंचने लगे और उनके आशीर्वाद से कामयाबी का सफर तय किया। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को बाबा का भक्त माना जाता है, तो फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग भी बाबा के धाम पहुंचे। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स तो तस्वीर देखकर ही बाबा के भक्त बन गए। दिग्गजों के मन में बाबा के प्रति आस्था बढ़ती ही जा रही है।

0: वो हमेशा कंबल ओढ़कर बैठते थे। कभी तख्त पर बैठे तो कभी पेट के बल लेट जाते। भक्तों की मन की बात तुरंत समझ लेते और उनकी दुविधा को दूर कर देते थे। ऐसा ही था बाबा का अंदाज। वो कभी भी लंबा प्रवचन नहीं देते थे। वो भक्तों की मुक्ति में विश्वास करते थे। कहते हैं जब फेसबुक संकट में था तो कंपनी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कंपनी बिक जाएगी। तब कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग नीब करोरी बाबा की शरण में ही आए थे।
1: और मार्क जुकरबर्ग किसकी सलाह पर आए? तो स्टीव जॉब्स के सलाह पर आए। फेसबुक की शुरुआती दौर में जब वे व्यवसाय को लेकर संशय में थे, तब उन्होंने स्टीव जॉब्स के कहने पर कैंची धामा करके बाबा नीम करोली का दर्शन किया और आकर उन्होंने स्वयं कहा कि उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिला, मानसिक शांति मिली, जीवन में क्लैरिटी प्राप्त हुई।
0: फेसबुक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कंपनी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। कंपनी बिकने के कगार पर थी। ऐसे में मार्क जुकरबर्ग एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स से मिले। स्टीव ने उन्हें नीब करोरी बाबा की शरण में जाने को कहा। दावा किया जाता है कि कैंची धाम में सिर झुकाकर लौटने के बाद उनकी किस्मत चमक गई। कंपनी पर मंडरा रहे संकट के बादल छट गए। एक और चमत्कार की बात 1974 की है। स्टीव जॉब्स का करियर ठीक नहीं चल रहा था। ऐसे में वो आध्यात्मिक शांति के लिए भारत आ गए। नीब करोरी बाबा की चर्चा उन तक भी पहुंची थी।
1: 1974 में एप्पल मोबाइल के संस्थापक उत्तराखंड के कैंची धाम में आते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में। यद्यपि उनके आने के पहले ही बाबा ने अपना देह त्याग दिया था। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की तलाश में आए थे और उनको जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो अद्भुत थी। इसी कारण नीम करोली बाबा को अपना आध्यात्मिक गुरु आज भी मानते हैं।
0: स्टीव जॉब्स अप्रैल 1974 में कैंची धाम पहुंचे थे, लेकिन बाबा सितंबर 1973 में देह त्याग चुके थे। वो बाबा का सदैव दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन बाबा का आशीर्वाद उन पर खूब बरसा। स्टीव जब कैंची धाम पहुंचे थे तब उनकी आंखों में सपने तो खूब थे, लेकिन जीप खाली थी, नौकरी भी नहीं थी। लेकिन कैंची धाम आने के बाद उनकी किस्मत और जिंदगी दोनों बदल गई। कैंची धाम से अमेरिका लौटने के बाद स्टीव ने काम शुरू किया, एप्पल की नींव रखी और देखते ही देखते एप्पल पूरी दुनिया में छा गया। स्टीव जॉब्स जब तक जिंदा रहे बाबा का गुणगान हर किसी से करते रहे। उनके जेब में हमेशा बाबा की एक तस्वीर रहती थी। ऐसा बताया जाता है कि जब उन्होंने आखिरी सांस ली तब भी उनके सिरहाने बाबा की तस्वीर थी। हनुमान जी के भक्त नीब करोरी बाबा भी अपने आराध्य की तरह ही चमत्कारों के लिए ही जाने जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा चमत्कार है सामने वाले के मन को पढ़ लेना। अब हम आपको बाबा के चमत्कार की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये रिचर्ड एल्पोर्ट की तस्वीर है। ये गणितज्ञ हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों के साथ जुड़े हैं। वो 60 का दशक था। हैरान परेशान रिचर्ड शांति की तलाश में भारत आए हुए थे। 6 महीना पहले ही रिचर्ड की मां का निधन हुआ था। इस बात से तो वो परेशान थे ही, उनका मन भी काफी अशांत था। कहते हैं कि अपनी भारत यात्रा के दौरान रिचर्ड की मुलाकात भगवान दास से हुई, जो अमेरिकी नागरिकता ले चुके थे और बाबा नीब करोरी के शिष्य बन चुके थे। भगवान दास ने रिचर्ड को नीब करोरी बाबा से मिलने की सलाह दी। नीब करोरी बाबा से मिलने को लेकर रिचर्ड दुविधा में थे। बाद में वो मन मार कर नीब करोरी बाबा से मिलने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं कि रास्ते में रात को आसमान में टिमटिमाते तारे को देख रिचर्ड को अपनी माँ की याद आ गई। वो और उदास हो गए। रिचर्ड भगवान दास के साथ बाबा के आश्रम कैंची धाम पहुंचे। भगवान दास ने साक्षांग होकर बाबा को प्रणाम किया, लेकिन रिचर्ड ने ऐसा नहीं किया। रिचर्ड ने बाद में खुद ही बताया कि मैं ये सोच रहा था कि हार्वर्ड का गणित का प्रोफेसर इस तरह किसी को लेटकर प्रणाम करेगा, वो चुपचाप खड़े रहे। इस पर बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि वो तारों में अपनी माँ को ढूंढ रहे थे। नीप करौरी बाबा की बात सुन रिचर्ड सकते में रह गए। वो समझ ही नहीं पाए कि बाबा उनके मन की बात कैसे जान गए। उनका अहंकार छू हो गया, वो बाबा की चरणों में गिर गए। वो समझ गए कि जिस गुरु की तलाश में वो भटक रहे थे वो उनके सामने बैठे हैं। नीप करौरी बाबा से मुलाकात के बाद उनकी जिंदगी बदल गई, वो उसी वक्त बाबा के शिष्य बन गए। नाम रिचर्ड एल्पर्ट से रामदास हो गया।
1: इनके पास अलौकिक शक्तियां थी ऐसा माना जाता है। ये लोगों के मन को जान जाते थे और उनका दुख दूर कर देते थे। इनका जीवन अत्यंत सरल था, एक कंबल, सामान्य पहनावा और पूरा जीवन ये हनुमान जी महाराज की सेवा में, भक्ति में व्यतीत कर दिए। हनुमान जी का चालीसा पढ़ते थे और अपने भक्तों से भी हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए प्रेरित करते थे।
0: नीप करौरी बाबा के चमत्कारों की फेहरिस्त काफी लंबी है। चमत्कारों की कहानी खुद भक्त ही बयां करते हैं। चमत्कार की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है, यह आस्था और विश्वास की चीज है और जाहिर तौर पर किसी भी तरह की तार्किकता से परे है।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
2: इसके साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: चमोली में धूमधाम से जारी है मां नंदा की बड़ी जात यात्रा, जगह जगह लोकगीतों से हो रहा यात्रा का स्वागत, पहाड़ी संस्कृति के दिखाई दे रहे हैं।
12: गुजरात के आणंद में गणेश उत्सव की खास तैयारी, कार्टून कैरेक्टर्स ने बच्चों को लुभाया, निकली भव्य झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन।

0: गणेशोत्सव को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, सभी गणेश पंडालों में मुफ्त होगी बिजली की सप्लाई, भक्तों में खुशी की लहर। पोखरण में 14 सितंबर से ड्रोनाथॉन 2026 का आयोजन, ड्रोन से रोधी सिस्टम तक दिखेगी भारत की स्वदेश तकनीक की तक। जोधपुर में आज से 22 सितंबर तक वीर गार्जियन 2026 का युद्धाभ्यास, भारत और जापान की वायुसेना के लड़ाकू विमान दिखाएं दमखम।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
0: सच गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रीवत्सा सारंगी।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं, आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: जम्मू कश्मीर में फिर लगा आस्था का मेला, डोडा जिले की भद्रवाह घाटी में वार्षिक 3 दिवसीय प्राचीन कैलाश कुंड यात्रा शुरू। गुजरात के आनंद में बप्पा का जोरदार स्वागत, राजा गणराज 2026 की आगमन यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, कार्टून कैरेक्टर्स भी बने इस यात्रा का हिस्सा। अकोला में 30 फीट ऊंचे चिंतामणि गणपति बप्पा का हुआ भव्य आगमन, ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर भक्त झूमकर नाचे। महाराष्ट्र में पोला पर्व की तैयारी तेज, बैलों के श्रृंगार के सामान से सज गए हैं अकोला के बाजार, रस्सी घुंघरू वाले पट्टे, झूम और झूल खरीदने के लिए पहुंच रहे किसान। देहरादून में ज्ञान गंगा समारोह का आयोजन किया गया, सीएम धामी ने शिक्षकों को सम्मानित किया, मेधावी विद्यार्थियों को दी छात्रवृत्ति।
2: कश्मीरी कारीगर संजोए हुए हैं वाद्य यंत्र बनाने की पारंपरिक और प्राचीन कला, पिछले 32 सालों से हाथ से बना रहे हैं रबाब, संतूर और साजे कश्मीर जैसे कश्मीरी वाद्य यंत्र। यूपी में सरकारी डॉक्टर्स के लिए तोहफा, अब तक 70 साल की उम्र तक सरकारी डॉक्टर दे सकेंगे सेवाएं। आज से भारत जापान की वायुसेनाएं जोधपुर में करेंगी वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास, 22 सितंबर तक दोनों देशों के लड़ाकू विमान आसमान में दिखाएंगे ताकत। राजस्थान के पोखरण में 14 से 16 सितंबर तक होगा ड्रोनाथॉन 2026, वायुसेना के इस कार्यक्रम में देश की कंपनियां नए ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम दिखाएंगी। एप्पल का सरप्राइज एंड शाइन इवेंट, आज आईफोन 18 प्रो समेत कई प्रोडक्ट्स होंगे लॉन्च।
0: बॉक्स ऑफिस पर छाई काली भैया, मिर्जापुर द मूवी की भारत में नेट कमाई 100 करोड़ रुपए के पार। प्यार विश्वासघात की कहानी लेकर आ रही फिल्म लव लॉटरी, अक्षय ओबेरॉय की सस्पेंस थ्रिलर का ट्रेलर जारी। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान का तीसरा गाना मैं तो हैवान नहीं हूं रिलीज हो गया है, इस गाने को प्रीतम ने कंपोज किया है। रवि किशन के वायरल मीम पर टी सीरीज ने बनाया गाना मनी फॉलोज माय ब्रदर टाइटल के गाने का टीजर रिलीज।
3: पढ़ाई में तो ध्यान लगता नहीं है, कुछ सोचा है आगे चलकर क्या बनोगे?
4: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है। सुनो,
0: My brother. 4 साल के बाद फिर से छठ पूजा स्पेशल गीत लेकर आ रहे हैं सिंगर विशाल मिश्रा, जल्द ही आने वाला है उनका ये गीत।
2: अहमदाबाद में वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज स्टेज 3 के तीसरे दिन भारत ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। मेंस रिकवर में हरविंदर सिंह और साथ ही विजय सुंडी की जोड़ी और मेंस कंपाउंड में तुमान कुमार और श्याम सुंदर स्वामी की जोड़ी बनी चैंपियन। विमेंस रिकर्व में देश को मिला सिल्वर, भावना और पूजा की जोड़ी ने रजत पदक किया अपने नाम। आईसीसी की ताजा वनडे टीम रैंकिंग में भारत नंबर वन के पायदान पर बरकरार, 33 मैचों में 116 रेटिंग के साथ टॉप पर भारतीय टीम। महिला एशिया कप सेमीफाइनल में भारत बांग्लादेश की भिड़ंत, कल दुबई में शाम 8 बजे से खेला जाएगा महामुकाबला। नीली जर्सी में ही एशियन गेम्स खेलेगी भारतीय हॉकी टीम, हॉकी इंडिया को टीम किट के लिए नारंगी या ब्लू कलर चुनने का दिया गया था विकल्प, जिसमें ब्लू जर्सी का हुआ चुनाव।
5: चीन में 1 अरब साल पुरानी गुफा में हुआ खास कॉन्सर्ट, पत्थरों से टकराकर संगीत की आवाज ने माहौल को और भी शानदार बना दिया। ब्रुकलिन की सड़कों पर सुबह 6 बजे से ओवर्ट उत्सव शुरू हुआ, स्ट्रीम ड्रम डांस, रंग बिरंगे कपड़ों में लोगों ने अपनी संस्कृति का जश्न मनाया। क्यूबा के लोरेंजो सुआरेज ने घर में उगाए 100 से ज्यादा ऑर्किड की किस्में, रंग बिरंगे फूलों से भरी खूबसूरत दुनिया बन गया उनका ग्रीन हाउस। ग्रीस के अटिका जूलॉजिकल पार्क में 3 सुमात्रन टाइगर शावकों का पहला हेल्थ चेकअप हुआ, 2 नर और 1 मादा शावक को वैक्सीन और माइक्रोचिप लगाई गई हैं। इंसानों की तरह रोबोट ने एक साथ डांस किया और रिपोर्टर से हाथ भी मिलाए, रोबोट लोगों से बात कर सकते हैं, असली दुनिया में कई काम कर रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है,
5: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
2: भारत जापान वायु रक्षा सहयोग का नया चरणवीर गार्जियन 2026 का आज से आरंभ, 22 सितंबर तक चलेगा युद्ध अभ्यास।
5: देशभर में जारी है बप्पा के आगमन की तैयारी, इको फ्रेंडली मूर्तियों की भारी डिमांड।
2: महाराष्ट्र में पोला पर्व की उमंग, बैल के श्रृंगार के सामान से सजे बाजार, रस्सी और घुंघरू वाले पट्टे खरीदने पहुंच रहे हैं किसान।
5: एप्पल ने की आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स और अल्ट्रा लॉन्च की तैयारी, ग्राहकों में जबरदस्त उत्साह, आज रात को हो सकता है लॉन्च।
2: भारत के बाद विदेशों में दिखेगा हनुमान अंश का जलवा, 11 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सिनेमाघरों में देगी दस्तक।

0: और चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की। देखिए, गणपति उत्सव में अब बस एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है, लिहाजा पूरा देश गणपति के रंग में रंगना शुरू हो गया है। कहीं विशाल पंडाल तैयार हो रहे हैं तो कहीं बप्पा की भव्य प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बन गई है। रंग बिरंगी रोशनी, फूलों की सजावट और भव्य दिव्य झांकियों ने गणपति उत्सव में रंग भर दिए। गुजरात के सूरत शहर में गणेश उत्सव को लेकर उत्साह और उमंग अपने चरम पर दिखाई दे रहा है।
1: तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। गणेश चतुर्थी से पहले ही शहर के अलग अलग इलाकों में गणेश प्रतिमाओं के आगमन का सिलसिला शुरू हो चुका है। सूरत के भटार इलाके में गणेश उत्सव के लिए एक और खास तैयारी की जा रही है। यहाँ गणेश मंडल की ओर से ओडिशा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर भव्य गणेश पंडाल तैयार किया जा रहा है, जो बेहद ही भव्य और दिव्य होने वाला है। और इस साल सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली बप्पा का क्रेज देखने को मिल रहा है। गणेश उत्सव को लेकर देश भर में इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं मूर्तिकारों द्वारा बनाई जा रही भगवान सिद्धि विनायक की कुछ ऐसी मनमोहक मूर्तियां, जिनको कुछ लोग तो थीम बेस्ड डेकोरेशन के साथ घर में भी स्थापित करते आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, बस जल्द ही विघ्नहर्ता पधार रहे हैं और उससे पहले तैयारियां मुंबई से सूरत तक हर जगह पर देखने को मिल रही है।
0: देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही तस्वीरें आपको नजर आएंगी, क्योंकि गणपति उत्सव बहुत नजदीक है। गणेश चतुर्थी का ये पावन त्यौहार, जिसको लेकर देश भर में उत्साह और उमंग देखी जा सकती है। मूर्तियां बनाने में दिन रात कारीगर जुटे हुए हैं, लेकिन इस बार जो खासी डिमांड है वो है इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियों की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी वजह से पर्यावरण को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपके विघ्नों का नाश करने के लिए पधार रहे हैं विघ्नहर्ता।

0: आ रहे इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा, शुभता और पर्यावरण की सौगात देंगे सिद्धि विनायक। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं, ये शब्द अब हर किसी की जुबान पर है, जिसका प्रचलन पिछले कुछ सालों से काफी लोकप्रिय भी हो रहा है। मिट्टी, लकड़ी की छाल, बांस, धूप, अगरबत्ती, नारियल के रेशों से लेकर धान, दाल जैसे अनाजों का इस्तेमाल बप्पा की इन मूर्तियों को काफी आकर्षक लुक दे रहा है। इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति को आकार देने के लिए कुछ ऐसा ही अनुपम प्रयोग दिल्ली के इस घर में भी हो रहा है, जहां रुचि पिछले 8 सालों से घर पर चिकनी मिट्टी के गणपति बनाकर आस्था और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को न केवल बढ़ावा दे रही हैं, बल्कि थीम बेस्ड डेकोरेशन को भी अपनी क्रिएटिविटी का उन्होंने हिस्सा बनाया हुआ है।
1: हमेशा चिकनी मिट्टी के ही गणपति बप्पा बनाए हैं। इवन दो रही बात थीम बेस्ड डेकोरेशन की, तो डेफिनेटली मैं हर साल ट्राई करती हूँ, खुद से 1-2 महीने पहले सोचना शुरू कर देती हूँ कि इस बार बैकड्रॉप में क्या थीम होगी। तो कभी फ्लोरल डेकोरेशन कर लिया, कभी बैकड्रॉप पे एक उनका बप्पा का ही एक कर्टन लगा दिया, लेकिन इस बार जो मेरी थीम है वो अष्ट विनायक बैकड्रॉप की है।
0: जाहिर है, जहां आटे या चॉकलेट जैसी चीजों से बनाए गणपति को 2-3 दिन ही बैठाकर घर से विदा करने की मजबूरी रहती है, वहीं रुचि चिकनी मिट्टी या क्ले से बनाए बप्पा का 10 दिन तक स्वागत सत्कार करती रही हैं, और बप्पा की मूर्ति की खूबसूरती में 4 चांद लगाती रही है रुचि की थीम बेस्ड डेकोरेशन, जो इस बार अष्ट विनायक गणपति है।
2: देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर स्वरूप दिख जाएंगे, और बीच में आपको हमारे
1: अर्ध नरेश्वर, ये मतलब इसमें दोनों शिव जी और पार्वती जी, जो कि मैंने रंगोली से एक ट्रांसपेरेंट शीट पे रंगोली से डेकोरेट किए हुए हैं।
0: तो जहाँ चिकनी मिट्टी से बनाने की 8 साल पुरानी इस परंपरा के जरिए दिल्ली की रुचि हर साल ग्रीन गणेशोत्सव मनाती है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की रायपुर जेल में कैदी भी बेहद आकर्षक और रंग बिरंगी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं हर साल बना रहे हैं। हर साल नए नए तरीके से बप्पा की मूर्तियों को आकार देने वाले कैदी इस बार भी अपनी इन मनोहारी और रंग बिरंगी प्रतिमाओं को बिक्री के लिए रखेंगे।
3: अब इस साल दुकान अलग हट के बनाबो मूर्ति लगी के अलग बनाए, जेमा राम भगवान के रूप अंतर पर देला, शंकर जी के रूप देहान, राधा कृष्ण के रूप देहान, कृष्ण भगवान सुनते हैं, एला कर कलर ला पूरा इधर हट के बनाना है पूरा।
0: दरअसल इस बार ये कैदी बीज वाली गणेश मूर्तियां बना रही हैं, जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि ऐसी बीज वाली मूर्तियां विसर्जन के बाद एक पौधा अंकुरित करने का संदेश भी दे रही हैं।
4: बीज डाल दिए हैं हम लोगों ने, ताकि ऐसे जहाँ पर भी ये मिट्टी जाए तो वहाँ पे कोई न कोई पौधे लग जाए। वैसे तो इसको विसर्जित कर दिया जाता है, तो यदि नदियों में किया जाएगा तो संभावना कम होगी, लेकिन यदि कहीं आसपास या इको फ्रेंडली जगहों पे किया जाएगा या कुंड बना के किया जाएगा तो निश्चित रूप से कई पौधे उग सकते हैं।
0: यानी रायपुर सेंट्रल जेल के कैदी भी इस बार लोगों के बीच ग्रीन गणेशोत्सव को बढ़ावा देने का संदेश दे रहे हैं, जो यकीनन एक सराहनीय पहल है। ये तस्वीर झांसी की है, जहां गणेश उत्सव को लेकर बाजार में रौनक बढ़ रही है। मूर्तिकारों ने प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे दिया है। यहां भोलेनाथ के साथ गणेश के अनोखे स्वरूप ने लोगों का ध्यान खींचा हुआ है, और सबसे खास ये कि मिट्टी से बनी इन इको फ्रेंडली प्रतिमाओं की झांसी में भी काफी डिमांड है। ये सच है कि पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियां धरती को प्रदूषण से बचाती हैं, जल और मिट्टी को नुकसान कम होता है। ऐसे में प्राकृतिक चीजों से बनी ये तमाम प्रतिमाएं पर्यावरण की सुरक्षित और खूबसूरत बने रहने की एक सराहनीय मिसाल ही हैं। झांसी से अजय झा और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: अब बात कर लेते हैं विघ्नहर्ता के प्रिय भोग मोदक की। दरअसल गणपति की स्थापना से लेकर विसर्जन तक पूजा पाठ और भक्ति की परंपरा निभाई जाती है। इस दौरान बप्पा को मोदक का भोग लगाना बेहद ही अहम परंपरा है। दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में एक ऐसी ही दुकान मौजूद है जो कि 116 साल पुरानी है और करीब 35 साल से मोदक बना रही है।
6: और देखिये, बदलते वक्त के साथ भगवान गणेश के प्रिय भोग मोदक का
0: रंग रूप ही नहीं बल्कि उसका स्वाद भी बदल रहा है। कभी नारियल, गुड़ और शुद्ध घी से तैयार होने वाला पारंपरिक मोदक गणपति बप्पा के भोग की पहचान हुआ करता था, लेकिन अब दिल्ली की ये बेहद पुरानी दुकान मोदक के नए नए फ्लेवर्स भी परोस रही है।

गणेश, गजानन, गणपति, विनायक, लंबोदर, गौरीपुत्र। बप्पा के नाम अनेक है लेकिन भाव एक ही है, भक्ति और विश्वास का। सबसे बड़ी बात, भगवान गणेश को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। गौरीपुत्र का मन मोहने के लिए मोदक सबसे प्रिय और उत्तम भोग माना जाता है। गणेश चतुर्थी या किसी भी शुभ अवसर पर बप्पा को 21 मोदक का भोग लगाने का विधान है। बिना मोदक के गणपति की पूजा अधूरी मानी जाती है। पारंपरिक तौर पर नारियल और गुड़ से बनने वाला मोदक भगवान गणेश का सबसे प्रिय भोग है। दिल्ली के चावड़ी बाजार में मिठाई की कैसी पुरानी दुकान मौजूद है जो बप्पा को भोग लगाने के लिए तरह तरह के मोदक बना रही है। 1910

0: सीक्रेट भोग तैयार हो रहा है। आज भी हम आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के मोदक की तैयारी दिखा रहे हैं, वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं, उनकी मेकिंग दिखा रहे हैं। किचन में हम मौजूद हैं और आपको बात करवाएंगे उन लोगों से भी जो पिछले 35 सालों से लगातार इस काम में लगे हुए हैं।
1: हालांकि 35 साल से मोदक बेचने वाली ये दुकान बदलते वक्त के साथ ग्राहकों के मिजाज के साथ अपने स्वाद में नए नए फ्लेवर जोड़ रही है। दुकान की पुरानी पहचान में कुछ नया जोड़ने के लिए दुकान से जुड़े लोग महाराष्ट्र गए थे, जहां से वो मोदक की रेसिपी साचा और उसे तैयार करने वाले दोनों को दिल्ली लेकर आए और तब से मोदक बनाने का सिलसिला शुरू हो गया।
2: हमारे बड़े गए, कभी बाहर घूमने गए होंगे या किसी कारणवश गए होंगे किसी काम से, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ देखी, तो वहाँ से मोदक बनाने का साचा लेके आए, वहाँ से रेसिपी लेके आए, वहाँ से कारीगर को लेके आए, वो बनाना सीखा, वो रेसिपी आज तक है हमारे पास। और वो साचे भी हैं, जैसे ये बहुत पुराने साचे हैं, मतलब मैं अगर गलत नहीं हूँ तो करीबन 40 से एक साल तो हो गए होंगे इस साचे को, जो आज भी हमने संभाल के रख रखा है उनकी याद में।
0: ये सबसे पहले आया था?
2: हाँ जी, ये आया था एक बड़े के लिए और एक छोटे के लिए, ये था इस तरीके से जी है। तो पहले तो, अब तो आज की डेट में बहुत सारे स्टील के बनते हैं, स्टेनलेस स्टील के, प्लास्टिक के बनते हैं, बट ये पहले के जमाने में जो हाथ से बनते थे ये यही थे।
1: यहाँ चावल, काजू, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट के अलावा स्ट्रॉबेरी, हेजलनट, कलाकंद के मोदक भी ग्राहकों को खूब पसंद आते हैं। जेंजी को ध्यान में रखते हुए पिछले कई सालों से चॉकलेट और उसके अलग अलग फ्लेवर के मोदक के स्वाद को भी तैयार कर रहे हैं।
2: मोदक असल बनना शुरू हुआ था महाराष्ट्र से, साउथ साइड से वो बनना शुरू होता है सब अनाज का, बट दिल्ली में आते आते उसके फ्लेवर्स वेरिएशंस चेंज हो गए। जैसे अब आप यहाँ पे इस थाल में देख पा रहे हैं, एक मोतीचूर का है, केसर का है, मोती बूंदी का है, स्ट्रॉबेरी का है, आपका खोए का है, पेड़े का है, या आपका कीवी का हो गया, मोटे गोले का हो गया, अल्फांसो विद चॉकलेट हो गया, कलाकंद का हो गया, ये केसर मिक्स हो गए, इस तरीके से वेरिएशंस हैं अलग अलग तरीके के, और इसके अलावा ना जाने कितने किस्म के बन जाते हैं।
1: मोदक की कीमत उसकी वैरायटी और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री के हिसाब से तय होती है। यहाँ मोदक करीब 600 रुपए प्रति किलो से मिलना शुरू हो जाते हैं। खास बात यह है कि ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से भी मोदक के अलग अलग स्वाद यानी वैरायटी चुन सकते हैं।
0: हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो पैकेजिंग का भी आप लोग बहुत खास ख्याल रखते हैं। जो आप प्लेट देख रहे हैं ये भी मेरे ख्याल से गिफ्टिंग की ही प्लेट है, पैकेजिंग की प्लेट है।
2: ये प्लेट भी गिफ्टिंग की है, जैसे ये जर्मन सिल्वर की है प्लेट, इस तरीके से प्लेट्स रहती हैं। ये प्लेट भी है, इसके अंदर भी लगा के दिए जाते हैं, इसके अंदर हम मिठाई लगाएं, मोदक लगाएं, मल्टीपर्पज तरीके से तैयार हो जाती हैं ये।
1: बप्पा को हर दो बार मोदक का भोग लगता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश उत्सव के दौरान मोदक की खुशबू से गणपति अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। दिल्ली से मनीष चौरसे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और देखिए, पूरे देश में अभी से गणेशोत्सव की उमंग दिखाई दे रही है। अलग अलग शहरों में बप्पा की प्रतिमाओं का आगमन शुरू हो गया है। भक्त पूरे उत्साह के साथ बप्पा का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। देखिए अकोला और सूरत में बप्पा के आगमन की शानदार तस्वीरें।

अकोला का शास्त्री नगर खुशी से झूम रहा है। आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के बीच चिंतामणि गणपति बप्पा का स्वागत हो रहा है। जाहिर है यहाँ गणेश भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सबकी चिंता हरने, मनोकामना पूरी करने बप्पा जो पधार रहे हैं। सिविल लाइन चौक पर जैसे ही बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा से लाल कपड़ा हटाया गया, अपने आराध्य के दर्शन कर भक्त खुशी से झूम उठे। ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा का स्वागत किया गया और गणपति बप्पा मोरिया की गूंज के साथ यहाँ की फिजाओं में बप्पा की भक्ति की सुगंध फैल गई। ये अकोला के चिंतामणि गणपति का भव्य स्वरूप है। हर भक्त यहाँ अपने आराध्य के

0: दर्शन कर खुद को धन्य महसूस कर रहा है। गणेश भक्त बप्पा से अच्छी बारिश की कामना कर रहे हैं ताकि यहाँ के किसान परिवारों के जीवन में सुख समृद्धि आए और चिंतामणि विघ्नहर्ता सबकी चिंता दूर करें।
1: बाप्पा आने के बाद सब आगमन जो होता है तो उसमें सब विघ्न दूर हो जाते हैं और ये चिंतामणि है, मन की सब चिंता दूर कर देता है।
0: सूरत में भी गणेशोत्सव को लेकर भारी उत्साह दिख रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में गणपति प्रतिमाओं के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है। ये तस्वीरें भटार इलाके की हैं। यहाँ गणेश मंडल की ओर से उड़ीसा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर भव्य गणेश पंडाल तैयार किया जा रहा है।
2: यहाँ पे एक महाराष्ट्र की थीम और सूरत के लोकल डेविड भाई करके एक मंडप का बहुत बड़ा इवेंट का आयोजन करते हैं और पिछले 3-4 महीनों से अलग अलग थीम पे बातें होती रहती है, तो हम लोग ने इस बार सूर्य कोणार्क मंदिर पे पंडाल बनाने का आयोजन किया है।
0: हर साल ये गणेश मंडल अलग अनोखी थीम के लिए गणेश भक्तों के बीच खास पहचान रखता है। इस बार पंडाल को ऐतिहासिक कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर तैयार किया गया है, जिसका निर्माण स्थानीय कलाकारों के साथ महाराष्ट्र से आए दस्तकारों ने मिलकर किया है।
3: ये सूरत के भटार इलाके में साईंराम युवक मंडल है, जहां की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं फिलहाल गणेश भगवान की जो प्रतिमा है उसको ढक के रखा गया है। तो इस तरह से सूरत में अलग अलग जगहों पर, अनेक जगहों पर गणेश भगवान की स्थापना की जाती है गणेश उत्सव के दौरान। इस बार कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर ये पंडाल तैयार किया जाएगा और इसमें भगवान को बैठाया जाएगा और उनकी पूजा पाठ की जाएगी। तो गणेश उत्सव को लेकर के एक तरफ जहां महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, शहरों में उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं महाराष्ट्र से सटे गुजरात के सूरत में भी गणेश उत्सव को लेकर के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग थीम पर भगवान गणेश के पंडाल तैयार किए जा रहे हैं।
0: इससे पहले बप्पा के आगमन की शोभा यात्रा में धार्मिक आध्यात्मिक संस्कृति के भव्य रंग देखने को मिले। आगमन यात्रा में भगवान के 12 अवतारों को भी अलग अलग रूपों में दिखाया गया। इस दौरान धार्मिक और पौराणिक कथाओं से जुड़े पात्रों को देश के कोने कोने से आए कलाकारों ने अपनी वेशभूषा और अभिनय के जरिए जीवंत कर दिया। इस तरह गणेश उत्सव के पहले ही सूरत शहर बप्पा की भक्ति में सराबोर है। अकोला से धनंजय साबले और सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए अब आपको दिखाते हैं बप्पा के स्वागत की तैयारी जो गुजरात के आनंद से आई है। यहां पर भगवान गणेश की आगमन यात्रा सिर्फ एक शोभा यात्रा नहीं रही बल्कि देखते ही देखते भव्य जन उत्सव में बदल गई। राजा गणराज्य की आगमन यात्रा में जैसा जन सैलाब उमड़ा कि सड़कें भक्तों से पट गई। देखिए इस यात्रा में भक्ति के तमाम रंग दिखाई दिए, रोमांच और शौर्य का शानदार संगम देखने को मिला। छावा एक्ट ने लोगों में जोश भर दिया तो वहीं हैरतअंगेज हुला हूप स्टंट्स ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया। इसके अलावा कलाकारों ने पारंपरिक शस्त्र कला का प्रदर्शन भी किया, यानी एक यात्रा में भक्ति, संस्कृति, शौर्य और मनोरंजन सबका शानदार मेल देखने को मिला। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में भगवान नरसिंह अवतार की मनमोहक प्रस्तुति ने माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। इसके बाद हुई भव्य महाआरती में श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।

0: चलिए गणपति उत्सव के रंग तो आपको दिखाते रहेंगे, अब आपको दिखाते हैं पोला उत्सव के रंग। लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां बैल पोला उत्सव मनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। महाराष्ट्र में ये उत्सव मुख्य रूप से श्रावण माह की अमावस्या यानी श्रावणी अमावस्या के दिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। किसान इस मौके पर न सिर्फ अपने बैलों को सजाते हैं बल्कि उनका स्वागत और सम्मान भी करते हैं।
1: श्रावणी अमावस्या के मौके पर महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले बैल पोला उत्सव को लेकर हर तरफ रौनक बिखरी हुई है। सजे धजे बैल हैं और इन बैलों के साथ अन्नदाता किसान हैं, जो इस उत्सव को लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं।
2: किसान का सबसे बड़ा साथी होता है उसका ऋषभ राजा बैल, और बैल का महाराष्ट्र में पोला जो है श्रावणी अमावस्या के दिन मनाया जाता है, लेकिन इस साल जो है 2 महीने से लगभग बारिश ही नहीं है, जिसके चलते जो है वो किसान बेहद परेशान है। बावजूद जो है वो किसान जो है वो यहाँ पर अपने ऋषभ राजा के लिए, अपने साथीदार बैल के लिए जो है रस्सी और उसको सजाने के लिए जो है यहाँ पर जो है सामान लेता नजर आ रहा है।
1: अकोला के बाजारों की ये रौनक बता रही है कि ये उत्सव किसानों के लिए कितना अहम है। किसान अपने बैल के लिए रंग बिरंगी रस्सी, घुंघरू वाले गले के पट्टे, कंधे के लिए सजावटी कपड़े, बैलों की सींगों के लिए ऑयल पेंट और नकली फूलों की खरीदारी में जुटे हैं, ताकि उत्सव के दिन बैलों को सबसे सुंदर तरीके से पेश किया जा सके।
3: उसको हम नहाते धोते सब उसको नवे दो नवे मटाटे कलर कटाते हैं, सिंग को कलर लगाते हैं, बाद में उसको पोले में लेके जाते हैं।
4: आज के दिन क्या खरीदते हैं उसके लिए?
3: आज के दिन उसके तो सामान लिया, दोर लिया, बटरे लिया, डब्बे लिया कलर के,
4: सब नाथ गेठा मुर्गा दोर झूल सब खरीदते हैं, और गोंडे वगैरह सब खरीदते, लेकिन उनके पास पैसा भी नहीं है ना, अभी तो हमारे पास में भी नहीं आ रहे वो।
1: महाराष्ट्र में 2 दिनों तक इस त्योहार को मनाने की परंपरा है। पहले दिन बैल पोला और दूसरे दिन तान्हा पोला मनाया जाता है। बैल पोला वाले दिन बैलों की पूजा का महत्व होता है, जबकि तान्हा पोला में बच्चे मिट्टी के बैल लेकर घर घर जाते हैं और लोग उनकी पूजा कर कुछ न कुछ न्योछावर करते हैं, इसलिए बाजार में रंग बिरंगे मिट्टी के बैल भी देखने को मिल रहे हैं।
2: सबसे अहम बात यही है कि श्रावणी अमावस्या के दिन जो बैल पोला होता है, उस दिन जो किसान है वो किसान अपने बैल को सुबह से ही नहलाता है, उसे जो है नए जो ये उसके गले के रस्से जो है वो रस्से उसे बांधने वाले जो रस्से है, उसके बाद में उसके गले में घुंघरू है, ये सभी जो है वो खरीदता नजर आ रहा है।
1: किसान और बैल का रिश्ता सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रिश्ता मेहनत, भरोसे और भावनाओं का है। इसलिए बैल पोला के दिन किसान बैलों से काम नहीं लेते हैं, बल्कि इस दिन किसान अपने बैलों का सम्मान करते हैं। बैल पोला का ये त्योहार देश की लोक परंपराओं से जुड़ा त्योहार है, जिसे देश के हर हिस्से में अलग अलग नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र के अलावा ये त्योहार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में भी मनाया जाता है। अकोला से धनंजय सावले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: जम्मू कश्मीर के डोडा में कड़ी सुरक्षा के बीच सालाना कैलाश कुंड यात्रा का शुभारंभ हुआ। 3 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में स्थानीय लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में पर्यटक भी हिस्सा ले रहे हैं।
5: आस्था भक्ति से सजी ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की है, जहां प्राचीन वासुकी नाग मंदिर से पवित्र छड़ी मुबारक के रवाना होने के साथ ही कैलाश कुंड यात्रा का शुभारंभ हुआ। ये उत्सव भगवान वासुकी नाग को समर्पित है, जिसे भद्रवाह घाटी के आराध्य देवता के रूप में पूजा जाता है। सदियों से कैलाश कुंड यात्रा की परंपरा चली आ रही है, जिसमें इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस यात्रा में श्रद्धालु पवित्र छड़ी को हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच कैलाश कुंड झील तक ले जाते हैं, जो समुद्र तल से करीब 14,700 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। आज श्रद्धालुओं का जत्था कैलाश कुंड पहुंचेगा और पवित्र झील में स्नान करेगा। इसके बाद यात्रा नलथी पहुंचेगी और कल यानी 10 सितंबर से वापसी यात्रा शुरू होगी।
6: सुकीनाग जी को भद्रवा भद्रकाशी का राजा भी माना जाता है और उसके बाद वासुकीनाग जी यहाँ जो ऊपर कैलाश है जिसको यहाँ स्थानिया भाषा में कबलास कहते हैं, वासुकुंड कहते हैं, और भगवान शिव यहाँ से हिमाचल प्रदेश चले गए चंबा में और वासुकीनाग जी क्योंकि भगवान शिव के प्रिय भगत थे इसलिए वो वहाँ रहते हो। तो आज हर वर्ष की तरह जो है यहाँ से यात्रा जाती है, इसके साथ जुड़े हुए यहाँ जागरू है, पट मेला है, बहुत सारा यहाँ पे कल्चर जो है वासुकी नाग का कल्चर जो नागाज कल्चर है, यहाँ हर आदमी के इष्ट देवता जो है वह वासुकी नाग हैं।
5: दरअसल इस परंपरा के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। इन श्रद्धालुओं की मान्यता है कि भगवान वासुकी नाग भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए भद्र कैलाश झील गए थे। यहाँ के लोग आज भी बड़ी आस्था और भक्ति के साथ इस परंपरा को निभाते हैं। खास बात ये भी है कि इस पावन यात्रा में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं।
7: मैंने 96 में सुना था इनके बारे में, तो मेरी प्रार्थना अब जाके स्वीकार हुई भगवान वासुकीनाथ के यहाँ।
5: यहाँ के लोगों का मानना है कि पवित्र कैलाश कुंड झील के आसपास दुर्लभ औषधि पाई जाती है और ऐसी भी मान्यता है कि कैलाश कुंड के जल में स्नान करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। यही वजह है कि सालाना कैलाश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और इस साल भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए चमोली में बड़ी जात यात्रा की धूम।
8: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
9: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: फतेहपुर शेखावटी में भादवा मेले का आयोजन, मंदिर का भव्य श्रृंगार, राजस्थान समेत करीब 12 राज्यों के लोग मेले में होंगे शामिल।
6: चमोली में धूमधाम से जारी है मां नंदा की राज जात यात्रा, जगह जगह लोक गीतों से हो रहा है यात्रा का स्वागत, पहाड़ी संस्कृति के दिख रहे हैं रंग।
5: गणेशोत्सव को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, सभी गणेश पंडालों में मुफ्त होगी बिजली सप्लाई, भक्तों में खुशी की लहर।
6: बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी का शपथ ग्रहण, सीएम फडणवीस और राज्यपाल की मौजूदगी में ली शपथ।
5: पोखरण में 14 सितंबर से ड्रोनाथोन 2026 का आयोजन, ड्रोन से ड्रोन रोधी सिस्टम तक दिखेगी भारत की स्वदेशी तकनीक की ताकत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: और चलिए उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ का चमोली इन दिनों नंदामय है, लोक आस्था संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी मां नंदा की बड़ी राज जात यात्रा इन दिनों पूरे चमोली को नंदामय किए हुए है। पूरे 12 साल बाद हो रही इस राज जात यात्रा को लेकर भक्तों में खास उत्साह दिखाई दे रहा है, गांव गांव मां नंदा की डोलियां पहुंच रही हैं, उनके स्वागत में लोकगीतों जागरों और ढोल दमाऊं की थाप से पहाड़ की वादियां गूंज रही हैं। सिद्धपीठ कुरूर से कैलाश की ओर रवाना हुई ये यात्रा तीनों देव डोलियों को अपने अपने तीसरे पड़ाव पर लेकर पहुंच गई हैं। यात्रा मार्ग में जगह जगह श्रद्धालु देव डोलियों का भव्य स्वागत कर रहे हैं। जहां भी नंदा की डोली पहुंच रही है वहां पूरा माहौल उत्सव में बदल जा रहा है। आपको बता दें राज जात यात्रा की शुरुआत 5 सितंबर को हुई थी, अब 15 सितंबर को तीनों डोलियों का मिलन वाण गांव में होगा। इसके बाद वाण से आगे की यात्रा तीनों डोलियां एक साथ करेंगी और नंदा की राज जात यात्रा का सबसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण चरण शुरू होगा। 20 सितंबर को सभी पड़ाव पार कर नंदा की यात्रा हेमकुंड पहुंचेगी, जहां विशेष पूजा अनुष्ठानों के बाद मां नंदा की विदाई की जाएगी।

0: लोग माता जी का बड़ा स्वागत कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपनी बिटिया के तरह इनको विदा करना कर रहे हैं और माँ हम लोगों का सब पे आशीर्वाद बना रहे हैं। जय माता दी।
1: हम माता को अपनी माँ मान के, साक्षी मान के हम उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और हम माता से यही विनती करेंगे, माता हम सबकी रक्षा करे और सारे प्रदेश देशवासियों की रक्षा करे और माता की कृपा हम सब भी भक्तों पे बनी रहे।
0: बहुत ज्यादा उत्साह है, हम इसको बहुत मानते हैं अपनी बेटी की तरह और हम इसको रोज विदा करते हैं, वहाँ तक तो पहुँचाते हैं जहाँ मंदिर है ऊपर सीमल देवी मंदिर और इसको हम बहुत भव्य दृष्टि से
2: भगवती नंदा खुद राजा राजेश्वरी है और कामाख्या खुद राजा राजेश्वरी का ही स्थान है, तो माई की प्रेरणा से ही मैं मैया के साथ आया हूँ। मूल रूप से मान लीजिए कि भगवती हमारी माँ है और राजराजेश्वरी भगवती यहाँ की बेटी है, तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मैं अपने मामा के वहाँ हूँ और जैसे मामा के वहाँ सबको प्यार मिलता है वैसा ही प्यार मुझे यहाँ पर मिल रहा है।
3: हम लोगों की बड़ी भावना है माँ के प्रति और निरंतर ये यात्रा हमारी जो चल रही है, तो प्रत्येक गाँव का भ्रमण किया जा रहा है और हमारी माँ बहने अपनी कोई बेटी के रूप में, कोई माँ के रूप में, कोई इष्ट के रूप में माँ की माँ से मनौती भी मांगती है और उसके साथ साथ कैलाश के लिए माँ नंदा को विदा करती है।
4: उत्सव और उल्लास की एक तस्वीर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित फतेहपुर शेखावटी से भी आई है। यहाँ पर भादो अमावस्या उत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है जिसमें कि शामिल होने के लिए पूरे प्रदेश से लोग फतेहपुर शेखावटी पहुंच रहे हैं। दरअसल अग्रवाल समाज की कुलदेवी का मंदिर शेखावटी में है जो कि इन दिनों दुल्हन की तरह सजा हुआ है। एक दिन पहले इस उत्सव की शुरुआत हुई, माँ के दरबार को फूलों से सजाया गया और पूरे आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना हुई। उसके बाद माँ को 56 प्रकार का भोग भी लगाया गया। श्रद्धालुओं ने कुलदेवी के दर्शन और उनके प्रति सम्मान, श्रद्धा और समर्पण का भाव भी अर्पित किया।
5: और देखिए, भादो अमावस्या का उत्सव यहाँ के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का बेहद अहम हिस्सा माना जाता है जो मुख्य रूप से मारवाड़ी प्रवासियों को स्थानीय समाज को अपनी जड़ों के साथ जोड़ता है। इस महोत्सव में देश विदेश से आने वाले प्रवासी अपनी कुलदेवी दादी माँ के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भादो अमावस्या उत्सव का समापन 11 सितम्बर को होगा।
4: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक खास एग्जीबिशन लगने जा रहा है। दरअसल इसमें चीन की कलाकार की बनाई गई मोम की मूर्तियों को दिखाया जाएगा। इस प्रदर्शनी में नामचीन हस्तियों की वैक्स स्टैचू शोकेस की जाएंगी जो कि लोगों के सामने चीनी संस्कृति की अनूठी झलक पेश करेंगी।
6: द वांग कंटेम्प्रेरी संस्था के फाउंडर अलेक्जेंडर वांग के लिए ये खास पल है। न्यूयॉर्क के वेलकम होम नाम के इस गेस्ट हाउस में चीन की वैक्स आर्टिस्ट झोउ ज़ुएरोंग की कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगने जा रही है जिसमें ज़ुएरोंग की बनाई 10 वैक्स स्टैचू को शोकेस किया जाएगा। द वांग कंटेम्प्रेरी नाम की इस प्रदर्शनी में मशहूर हस्तियाँ कैलीग्राफी और एक्यूपंक्चर का अनुभव लेती दिखाई देंगी। खास बात ये है कि इन मोम की मूर्तियों के जरिए पश्चिमी पॉप कल्चर में चीनी रीति रिवाज और रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाने की कोशिश की गई है। अलेक्जेंडर वैंग के लिए ये पल बेहद खास है क्योंकि अमेरिका में ये इनकी पहली प्रदर्शनी होगी। द वैंग कंटेम्प्रेरी चाइना टाउन का एक सांस्कृतिक संगठन है जिसे पेशे से फैशन डिजाइनर अलेक्जेंडर वांग और उनकी माँ यिंग वांग ने शुरू किया था।
7: We wanted this to be something that could be opened up to the public for a longer period of time. And so, when we started thinking about the format and kind of characters and what it meant logistically, I thought, what a interesting kind of approach to think about wax figures. And, you know, traditionally I felt wax figures, whether in a museum in a historical sense or, you know, Madame Tussauds, it hasn't really been explored in this context.
6: इन वैक्स स्टैचू में खाना बनाते, फूड शेयर करते, टी पार्टी में हिस्सा लेते, कैलीग्राफी का अभ्यास करते और एरहू जो कि एक चीनी वाद्य यंत्र है उसे बजाती हुई महिलाएं नजर आएंगी। इन तमाम कलाकृतियों में एक बात कॉमन है, ये सभी मोम की मूर्तियां मेहमान नवाजी के भाव से प्रेरित हैं। इन कलाकृतियों के जरिए चीनी संस्कृति के उस भाव को पेश करने की कोशिश की गई है जो इस मान्यता पर आधारित है कि किसी का घर में स्वागत करने का विचार कभी कभी कही गई बातों से नहीं बल्कि प्यार भरे काम से जाहिर होता है। न्यूयॉर्क के कला प्रेमियों के लिए गुड न्यूज ये भी है कि द वांग कंटेम्प्रेरी एग्जीबिशन पूरे महीने वीकेंड पर यहाँ फ्री में दिखाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल ये वीडियो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप का है, जो इस वीडियो में घुड़सवारी करती हुई नजर आई। इवांका ने अपना ये वीडियो खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया है, और जैसे ही उन्होंने ये वीडियो शेयर किया, देखते ही देखते इस वीडियो को जबरदस्त व्यूज भी मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है इवांका, जो कई बार आपने देखा होगा कि कई मुद्दों के चलते सुर्खियों में भी रहती हैं, लेकिन इस बार इनका ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और लोगों को पसंद भी आ रहा है।
8: गुफा की खामोशी से जब संगीत बाहर आए तो मानो पत्थर भी कोई राज सुनाते हैं। कुछ यही संगीतमयी राज सुना रही है चीन की एक प्राचीन गुफा जो गुएजोउ में है। दरअसल ये एक कास्ट यानी कि चूना पत्थर की गुफा है, जिसकी विशाल चट्टाने परते गुंबद नुमा ऊंचे कक्ष और प्राकृतिक बनावट इस तरह की है कि यहां पर कोई भी साउंड गूंजती नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन कॉन्सर्ट हॉल की तरह नेचुरल साउंड इफेक्ट पैदा करती है।
9: तस्वीरों में नजर आ रहा गुफा के अंदर संगीत प्रेमियों का ये अनोखा कॉन्सर्ट खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बीते दिनों दक्षिण पश्चिमी चीन के गुइजोउ में बरसों पुरानी एक कास्ट गुफा पहले ही लोगों के लिए ऐतिहासिक रही है, लेकिन संगीत की धुनों ने अब इस प्राचीन गुफा को एक खास डेस्टिनेशन भी बना दिया है। करीब 1 अरब साल पुरानी इस गुफा में जब संगीत प्रेमी जुटे तो गुफा की नेचुरल साउंड सिस्टम यानी एकॉस्टिक्स ने पूरी जगह को ही भर दिया, और ये म्यूजिकल परफॉर्मेंस हर किसी म्यूजिक लवर के दिल को छू गई। दरअसल ये एक कार्स्ट यानी चूना पत्थर की गुफा है, जिसकी विशाल चट्टानी परतें, गुंबद नुमा ऊंचे कक्ष और प्राकृतिक बनावट इस तरह की है कि यहाँ कोई साउंड गूंजती नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन कॉन्सर्ट हॉल की तरह नेचुरल साउंड इफेक्ट पैदा करती है। ऐसे में पियानो या स्ट्रिंग वाद्य यंत्रों की आवाज गुफा की प्राचीन चट्टानी परतों के बीच जब गूंजी तो पूरा माहौल ही संगीतमय हो उठा। बता दें कि चीन में गुइजोउ जैसे कुछ और प्रांतों में चूना पत्थर की विशाल अंडरग्राउंड गुफाएं हैं, जहां की प्राकृतिक ध्वनि व्यवस्था बेहद शानदार है। यही कारण है कि ऐसी बेहतरीन जगहों पर चैम्बर ऑर्केस्ट्रा, स्ट्रिंग क्वार्टेट और शानदार संगीत समारोह आयोजित किए जाते हैं। यकीनन संगीत प्रेमियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो एप्पल लवर्स के लिए आज गुड न्यूज आने वाली है। आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा धमाका होने वाला है। नए आईफोन से लेकर एप्पल वॉच और एयरपोर्ट्स तक कई बड़े प्रोडक्ट्स से पर्दा उठ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन पर। खबरों की माने तो एप्पल पहली बार फोल्डेबल फोन की दुनिया में कदम रख सकता है। ऐसे में मुकाबला होगा सैमसंग समेत दूसरे फोल्डेबल फोन्स के साथ। वहीं इस बार एप्पल के लॉन्च प्लान में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आईफोन 18 का बेस मॉडल तुरंत लॉन्च नहीं होगा, बल्कि इसके 2027 में वसंत में आने की खबरें हैं, जबकि आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स पहले ही आ सकते हैं। चलिए इसी के साथ लंच टाइम में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
11: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश की बात कर लेते हैं, जो कि इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। इस फिल्म ने बॉलीवुड की तमाम बड़े बजट वाली फिल्मों को पछाड़ दिया है। भारत में ही फिल्म 150 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है और अब बहुत जल्द फिल्म का कलेक्शन 200 करोड़ तक पहुंचने वाला है। खास बात यह है कि फिल्म का बजट महज 2 करोड़ था और अब यह कमाई के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म की स्टार कास्ट और डायरेक्टर ने कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। शुरुआत के 2 हफ्तों में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दर्शकों ने इस फिल्म की खूबियों को पहचान लिया। देखते ही देखते फिल्म कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगी। 5वें सोमवार को फिल्म ने करीब 9.5 करोड़ का कलेक्शन किया।
1: देखिए, कमाई के आंकड़ों में ये फिल्म धुरंधर 2 को भी अब पीछे छोड़ चुकी है।
2: बाबा जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये किरदार निभाया है। मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, सब वही कर रहे थे।
3: एक बड़ा रिकॉर्ड बना रही है इस किरदार को लेकर, कहते हैं कि एक हफ्ते में इतना ऊंचा पहुंच गया। और नीम करोली बाबा जिसको
2: मेरे लिए रिकॉर्ड मैंने नहीं रखता है, बाबा का नाम जगह जगह जा रहा है, ये मेरे लिए मायने रखता है।
3: भी गाना लगातार आपने गाया है इसमें, कैसे ये जो गाने लगातार हिट हो रहे हैं, लगातार लोग सुन रहे हैं उनको, क्या आपने धुन बनाई, किस तरीके से दिमाग में?
4: वो तो जो डायरेक्टर्स के निर्देश होते हैं उन निर्देशों का पालन करके कोई भी कंपोजर गाने कंपोज करता है, लिखता है। तो सौभाग्य से मैंने कंपोज किए इनके निर्देशन में, बात बनी। और
3: जमीन बस अगर आप सुना दें तो बहुत ज्यादा ठीक रहे।
5: युद्ध पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे सप्तऋषि सप्तऋषि सप्तऋषि, काय जिद कर रही काय को मर रही, काय जिद कर रही काय को मर रही, ऐसे वर खेलाने कैसे भर के लाने, जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर ऐसा, जाके शीश पे गंगा और गले पे डारे फिर ऐसा, इतने सीधे साधे हैं सब कहते भोलेनाथ भोलेनाथ।
3: 16वें दिन तक फिल्म बिल्कुल नहीं गुमनाम बनी रही, 17वें दिन से इसका शुरू हुआ, क्या कहेंगे?
6: तो 14 दिन तक एक्चुअली फिल्म जो है ना, चूंकि सिर्फ 27 थिएटर में थी और हमको ऐसा लग रहा था कि फिल्म जो है ना शायद उतर भी जाएगी, बड़ी फिल्म और आ रही थी, लेकिन लेकिन जो है 15वें दिन से हमारी फिल्म के साथ में कुछ ऐसा होना शुरू हो गया, जनता ने जमीन से उठा के फिल्म को जो ना ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। और उसके लिए मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि जनता का ही सबसे बड़ा धन्यवाद मुझे देना चाहिए। और क्योंकि उन लोगों ने जो है ना रील्स बनानी शुरू की और बोला कि ये फिल्म के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा, ये फिल्म जो है ना इतनी अच्छी फिल्म है, हमारे बच्चों को भी दिखाई देनी चाहिए फिल्म, तो इस तरह से जो है ना होते होते फिल्म जो है ना अचानक से परवान चढ़ गई और जनता ने इस फिल्म को जमीन से उठा के, क्योंकि इस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाए थे हम लोग, तो जनता ने इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया और हमारे जो है वो मतलब हमारी फिल्म को लेकर और अच्छी कहानियों को कहने के को लेके हमारी जो है ना विश्वास को बढ़ा दिया।
3: नीम करोली बाबा की भी कृपा मानेंगे इसको
6: पूरी तरह से? नीम करोली बाबा की कृपा है पहले, सबसे पहले बात तो ये बात हमको बतानी चाहिए कि उनकी कहानी है ये, हमारी कहानी तो बाद में है, हमने तो कहानी बाद में बोली, लेकिन महाराज जी की कहानी है जिस कहानी को बोल के बोल रहे थे हम, और वो कहानी इतनी बड़ी हो गई और महाराज जी की कृपा और हनुमान जी कृपा से के ऊपर कुछ भी नहीं है इसमें।
3: इस कामयाबी के बाद आगे का क्या प्लान है, प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद क्या प्लान?
6: इस फिल्म को अभी जब तक तो ये थिएटर्स में लगी है तब तक हम इस फिल्म को प्रमोट करते रहेंगे, हम इस फिल्म को जगह जगह ले जाते रहेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। और इसको जन जन तक पहुंचाना है, बच्चों को फिल्म दिखानी है, क्योंकि फिल्म बच्चों को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई गई है कि बच्चों को महत्व पता चले, हनुमान चालीसा का महत्व पता चले।
3: जीवन से कितना आप बदलाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पर्दे पर आपने ईश्वर की पूरी इस एक कृपा को उतारा है और किरदार निभाने वाले के जीवन पर क्या असर पड़ा है, क्योंकि ये बड़ा दिव्यात्मक भूमिका पर्दे पर आप लाए?
6: जी, तो कहीं ना कहीं जो है ना हम सबके जीवन में परिवर्तन हमें महसूस भी हो रहा है, जो हमारे अंदर परिवर्तन आया है, सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि हमें ईश्वर को सरेंडर करना यानी उनको समर्पित करना अपने आप को सीखा है हमने, क्योंकि जब जब हम किसी समस्या में फंसते थे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते पूरी टीम ने ऐसा महसूस किया कि हमारी जो है ना समस्याएं थी वो रिजॉल्व हो जाती थी, तो इसलिए सब सारी टीम मेंबर्स ने इस बात को महसूस किया है और ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि हमने ईश्वर को, ईश्वर में श्रद्धा होने के अलावा आपको उनमें विश्वास रखना बहुत आवश्यक है, उनको सरेंडर करना आपको पता होना।
3: उत्तर प्रदेश में आपको इसको लेकर क्या लग रहा है, कैसे लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कितना देख रहे हैं, क्योंकि लोग तो नंगे पैर भी जा रहे हैं मॉल में?
6: जी, बहुत सारे उत्तर प्रदेश के जैसे गोरखपुर में किसी ने प्रसाद बंटवारा को बांटना वितरण करना शुरू कर दिया, आगरा में थिएटर से जहाँ पे उन्होंने ऐसे जो फटके होते हैं उन्होंने नाम नाम के फटके जो है ना बांटे, हमने वहां जाके हनुमान चालीसा भी की, बहुत सारे जगहों पे लोग चप्पलें भी उतार रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में ही ज्यादातर हो रहा है और ये उसका कारण ये है कि फिल्म उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की ये लोगों द्वारा बनाई गई है और उत्तर प्रदेश की कहानी, मतलब जी श्री निमकोली बाबा महाराज जी यहीं के यहीं पैदा हुए थे और यहीं पे उनका देह अवसर।
0: इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना,
7: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए, अच्छी और पॉजिटिव खबरें लगातार जा रही हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
8: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: फतेहपुर शेखावटी में भादवा मेले का आयोजन, मंदिर का भव्य श्रृंगार, राजस्थान समेत करीब 12 राज्यों के लोग मेले में होंगे शामिल। चमोली में धूमधाम से जारी है मां नंदा की राज जात यात्रा, जगह जगह लोक गीतों से हो रहा है यात्रा का स्वागत, पहाड़ी संस्कृति के दिख रहे रंग। गणेशोत्सव को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, सभी गणेश पंडालों में मुफ्त होगी बिजली सप्लाई, भक्तों में खुशी की लहर। बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी का शपथ ग्रहण, सीएम फडणवीस और राज्यपाल की मौजूदगी में ली शपथ। पोखरण में 14 सितंबर से ड्रोनाथोन 2026 का आयोजन, ड्रोन से ड्रोन रोधी सिस्टम तक दिखेगी भारत की स्वदेशी तकनीक की ताकत।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: राजस्थान के सीकर में बिखरे उत्सव के रंग, शानदार भादो अमावस्या मेला का हुआ शुभारंभ। राजस्थान समेत एक दर्जन से ज्यादा प्रांतों के लोग पहुंच रहे फतेहपुर शेखावटी बिंदल कुल देवी मंदिर में लगे उत्सव में शामिल हुए। इस उत्सव पर मां के दरबार की फूलों से हुई भव्य सजावट, भजन कीर्तन पर थिरकती नजर आई महिलाएं। 11 सितंबर तक आयोजित होगा 5 दिवसीय भादो अमावस्या उत्सव मेला, देश भर से जुट रहे भक्त। इस मेले में अपनी कुल देवी को थोक लगाते हैं भक्त, पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु मां को लगाएंगे 56 भोग। चमोली के हिमालय अंचल में दिखी लोक संस्कृति आस्था परंपरा की झलक, धूमधाम से जारी मां नंदा की बड़ी जात यात्रा। जगह जगह लोकगीतों से हो रहा भव्य यात्रा का स्वागत, पहाड़ी संस्कृति के दिखाई दे रहे रंग। कुरूड़ सिद्धपीठ मंदिर से विशेष पूजा अनुष्ठान के बाद अपने अपने निर्धारित पड़ावों के लिए कैलाश की ओर रवाना हुई बधाण की नंदा, दशोली की नंदा और बंड की नंदा की डोलियां। गांव-गांव पहुंच रही ये डोलियां, उनके स्वागत में लोग गीत जागरों और ढोल दमाऊं की थाप से वादियां गूंज रही। पहाड़ में केवल देवी नहीं बल्कि घर की बेटी और बहन के रूप में पूजी जाती है मां नंदा, यही वजह है कि डोली के गांव में पहुंचते ही महिलाएं गा रही पारंपरिक गीत। जम्मू कश्मीर में फिर से लगा आस्था का मेला, डोडा जिले की भद्रवाह घाटी में वार्षिक 3 दिवसीय प्राचीन कैलाश कुंड यात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु हुए शामिल, भद्रवाह घाटी के आराध्य देवता माने जाने वाले भगवान वासुकी नाग को समर्पित सदियों पुरानी है ये परंपरा। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में स्थित कैलाश कुंड झील में भक्त करेंगे स्नान, 10 सितंबर से शुरू होगी वापसी की यात्रा। भव्य झांकियों और मंदिरों की सजावट के साथ गणपति के रंग में रंगा पूरा देश, कहीं हो रहे विशाल पंडाल तैयार तो कहीं बप्पा की भव्य प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी। दक्षिण भारत में बप्पा के आगमन की तैयारी, आंध्र प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नारा लोकेश का ऐलान, गणेशोत्सव के दौरान पूरे प्रदेश में गणेश पंडालों को मिलेगी फ्री में बिजली। गुजरात के आनंद में बप्पा का जोरदार स्वागत, राजा गणराज 2026 की आगमन यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ देखने को मिली कई आकर्षक प्रस्तुतियां, बच्चों के लिए अलग अलग लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर्स भी बने यात्रा का हिस्सा। इस यात्रा में भक्ति के साथ रोमांच और शौर्य का भी शानदार संगम दिखा, छावा एक्ट ने लोगों में भरा जोश, कलाकारों ने पारंपरिक शस्त्र कला का प्रदर्शन किया। विघ्नहर्ता की शानदार आगमन यात्रा में महिला शक्ति की भी दिखाई दी झलक, महिलाओं ने पेश की कई रोमांचक प्रस्तुतियां। हर तरफ सुनाई दिया गणपति बप्पा मोरया का जय घोष, गणपति भक्ति में पूरी तरह से रंगा नजर आया शहर। अकोला में 30 फीट ऊंचे चिंतामणि गणपति बप्पा का भव्य आगमन हुआ, ढोल नगाड़ों डीजे की धुन पर जमकर नाचे भक्त। सिविल लाइन चौक पर बप्पा के मुख से लाल कपड़ा हटाया गया, दर्शन होते ही पूरा चौक गणपति बप्पा मोरया के जय घोष के साथ गूंज उठा। चिंतामणि बप्पा के भव्य स्वरूप के दर्शन के लिए सैकड़ों भक्त पहुंचे, हर कोई बप्पा के दर्शन के साथ तस्वीर और वीडियो बनाता हुआ नजर आया। बप्पा के स्वागत में शानदार फायर शो, आतिशबाजी की गई, आसमान रोशनी से जगमगा उठा और भक्तों का उत्साह देखते ही बना। चिंतामणि गणपति यानी सभी की चिंता हरने वाले बप्पा से भक्तों ने प्रार्थना की अच्छी बारिश और हर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की गई। जैसलमेर में अनोखा गणेश मंदिर, यहां भक्त पत्थरों से छोटा घर बनाकर भगवान से मांगते हैं अपना आशियाना। 1400 साल पुराना है चूंधी गणेश मंदिर, मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना पूरी होती है। नदी के बीच विराजे हैं गणेश जी। मंदिर की मूर्ति को लेकर मान्यता है कि प्रतिमा खुद प्रकट हुई थी। मंदिर के पास बने हैं सैकड़ों छोटे घर, भक्त इन्हें बनाकर अपने लिए घर मिलने की प्रार्थना करते हैं। गणेश चतुर्थी पर लगता है भव्य मेला, दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और गणपति से अपनी मनोकामना मांगते हैं। महाराष्ट्र में पोला पर्व की तैयारी तेज, किसान 364 दिन साथ देने वाले अपने बैल को एक दिन का खास सम्मान देता है। करीब डेढ़ महीने से बारिश नहीं होने से किसान परेशान, फसलों पर संकट है, फिर भी किसान पोला मनाने की तैयारी में जुटा है। अकोला के बाजार बैलों के श्रृंगार के सामान से सज गए हैं, रस्सी घुंघरू वाले पट्टे झूम और झूल खरीदने किसान पहुंच रहे हैं। पोला के दिन बैल से खेत में कोई काम नहीं करवाया जाता, किसान इस दिन अपनी मेहनती साथी को पूरा आराम देते हैं। आर्थिक परेशानी के बावजूद किसान बैल का पोला धूमधाम से मनाएगा, बैल को सजाकर पूर्ण पोली भी खिलाई जाएगी। यूपी में सरकारी डॉक्टरों के लिए तोहफा, आप 70 साल की उम्र तक सरकारी डॉक्टर दे सकेंगे अपनी सेवाएं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ग्रामीण महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर, जैविक अचार जैम मुरब्बा बनाकर कमा रही अपनी आजीविका। कृषि विभाग और स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से महिलाएं पारंपरिक नुस्खों और सरकारी योजनाओं का उठा रही फायदा, हो रही अच्छी आमदनी। कश्मीरी कारीगर संजोए हुए हैं वाद्य यंत्र बनाने की पारंपरिक और प्राचीन कला, पिछले 32 सालों से हाथ से बना रहे रबाब संतूर और साजे, कश्मीर जैसे कश्मीरी वाद्य यंत्र। हर वाद्य यंत्र को बनाने में कारीगर मुश्ताक अहमद डार को लगते हैं लगभग 2 महीने, पूरे भारत से मिलते हैं इनको ऑर्डर। देहरादून में ज्ञान गंगा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल हुए। आयोजन में सीएम धामी ने शिक्षकों को किया सम्मानित, मेधावी विद्यार्थियों को दी छात्रवृत्ति। 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, श्रीलंका में बेली ब्रिज लगाने के लिए तैनात भारतीय सेना के इंजीनियर टास्क फोर्स से बातचीत की। संवाद के दौरान भारतीय सेना के इंजीनियर टास्क फोर्स के कार्यों और योगदान की सराहना की गई, बढ़ाया गया इनका हौसला। कोलंबो में राजनाथ सिंह ने श्रीलंका के नेता सजित प्रेमदासा के साथ द्विपक्षीय बैठक की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। आज से भारत जापान की वायुसेनाओं का वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास, 22 सितंबर तक दोनों देशों के लड़ाकू विमान आसमान में दिखाएंगे दमखम। इस अभ्यास में भारत के तेजस, सुखोई 30 और राफेल लड़ाकू विमान शामिल हैं, वहीं जापान अपने F-2A फाइटर जेट के साथ इस अभ्यास में होगा शामिल। दोनों देशों के सैनिक मिलकर कर रहे युद्ध की तैयारी, मिशन प्लानिंग और सुरक्षा पर अभ्यास, वीर गार्जियन से और मजबूत होगी दोनों देशों की दोस्ती। राजस्थान के पोखरण में 14 से 16 सितंबर तक होगा ड्रोनाथोन 2026, वायुसेना के इस कार्यक्रम में देश की कंपनियां नए ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम दिखाएंगी। ड्रोनाथोन में निगरानी झुंड में उड़ने वाले ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर जोर रहेगा, वायुसेना इन तकनीकों को परख कर देश की सुरक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। एप्पल का सरप्राइज और शाइन इवेंट आज, आईफोन 18 प्रो समेत कई प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। कंपनी के पहले फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा के आने की पूरी उम्मीद, एप्पल में भारी उत्साह। कंपनी का अब तक का सबसे महंगा स्मार्टफोन हो सकता है फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा, भारत में करीब 2.5 लाख रुपए तक रह सकती है इसकी कीमत। कई अन्य बड़े प्रोडक्ट्स भी उतारने की तैयारी में एप्पल, एप्पल वॉच सीरीज 12, नई एप्पल वॉच अल्ट्रा के शामिल होने की भी उम्मीद है। टिम कुक के पद छोड़ने के बाद नए सीईओ बने जॉन टर्नस का होगा पहला कीनोट, भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा इवेंट। बॉक्स ऑफिस पर छाए काली भैया, मिर्जापुर द मूवी में भारत में नेट कमाई 100 करोड़ के पार हुई। प्यार विश्वासघात की कहानी लेकर आ रही फिल्म लव लॉटरी, अक्षय ओबेरॉय की सस्पेंस थ्रिलर का ट्रेलर जारी। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान का तीसरा गाना मैं तो हैवान नहीं हूं रिलीज हुआ है। इस गाने को प्रीतम ने कंपोज किया है। रवि किशन के वायरल मीम पर टी सीरीज में बनाया गाना मनी फॉलोज माय ब्रदर टाइटल के गाने का टीजर जारी। 4 साल के बाद फिर से छठ पूजा स्पेशल गीत लेकर आ रहे सिंगर विशाल मिश्रा, जल्द ही आने वाला है उनका ये गीत। अहमदाबाद में वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज स्टेज 3 के तीसरे दिन भारत ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। मेंस रिकवर में हरविंदर सिंह और विजय सुंडी की जोड़ी और मेंस कंपाउंड में तोमान और श्याम सुंदर स्वामी की जोड़ी बनी चैंपियन। विमेन्स रिकव में देश को मिला पहला सिल्वर, भावना और पूजा की जोड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया। आईसीसी की ताजा वनडे टीम रैंकिंग में भारत नंबर 1 के पायदान पर बरकरार है। 33 मैचों में 116 रेटिंग के साथ टॉप पर भारतीय टीम। महिला एशिया कप सेमीफाइनल में भारत बांग्लादेश की भिड़ंत हुई, कल दुबई में शाम को 8 बजे से खेला जाएगा ये मैच। नीली जर्सी में ही एशियन गेम्स खेलेगी भारतीय हॉकी टीम। हॉकी इंडिया को टीम किट के लिए नारंगी या ब्लू कलर चुनने का दिया गया था ऑप्शन। कटिहार में बाढ़ के बीच में अनोखी सी तस्वीर, नाव पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंची बारात। बाढ़ भी नहीं रोक पाई निकाह की खुशियां, पानी के बीच दूल्हा दुल्हन ने निभाई शादी की रस्में। भागलपुर में बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी, दीपक आनंद ने राहत के कामों का लिया जायजा। तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी का पानी बढ़कर हुआ 9200 क्यूसेक, कावेरी डेल्टा में सिंचाई के लिए पानी छोड़े जाने की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। थूथुकुड़ी में दिखे साइबेरिया से आए खूबसूरत पक्षी, लोगों को किया आकर्षित।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है आप सबको वायरल वीडियोस दिखाने का, क्योंकि इसमें ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे और साथ ही गुदगुदाएंगे।
2: प्यार और दुलार सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, जानवर भी अपने अंदाज में प्यार जताना जानते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बंदर बेड पर सो रहे बच्चे को बिल्कुल माँ की तरह दुलार करता नजर आ रहा है। कभी बच्चे को प्यार से देखता है तो कभी सिर हिलाकर उसे हंसाने की कोशिश करता है। बंदर का यह मासूम अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखकर लोग भी इस अनोखी दोस्ती पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। उम्र छोटी है लेकिन हुनर किसी बड़े खिलाड़ी से कम नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो एक नन्ही बच्ची की शानदार स्केटिंग का है। बच्ची पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना परफॉर्मेंस शुरू करती है और टाइमर के हिसाब से उसे पूरा भी करती है। स्केटिंग के दौरान उसके शानदार मूव्स और बैलेंस को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इतनी कम उम्र में बच्ची का ये हुनर देखकर लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। सड़क पर चलती इस अनोखी ट्रेन को देखकर हर कोई हैरान है। लकड़ी के पहिए, उस पर लगी कुर्सियां और एक के पीछे एक जुड़ी ये सवारी बिल्कुल ट्रेन जैसी नजर आ रही है। इसे देखने के लिए सड़क पर लोगों की नजरें भी थम जाती हैं। ट्रेन जैसी इस अनोखी सवारी को देखकर कई लोगों की हंसी नहीं रुक रही, वहीं इसे तैयार करने वाले के हुनर की भी खूब तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सड़क पर तेज रफ्तार साइकिलें और उन पर सवार छोटे छोटे बच्चे, लेकिन इनकी रफ्तार से ज्यादा चर्चा इनके हौसलों की हो रही है। वायरल वीडियो में बच्चे साइकिल पर एक से बढ़कर एक शानदार स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। उनका बैलेंस और तालमेल देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्होंने इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग ली हो। बच्चों का ये हुनर देखकर लोग भी हैरान हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है और लोग बच्चों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। खुश रहने की कोई उम्र नहीं होती और जब साथ में हो अपनी सखियां तो खुशी दोगुनी हो जाती है। वायरल वीडियो में कुछ महिलाएं एक साथ झूले पर बैठकर जमकर झूला झूलते नजर आ रही हैं। झूले पर बैठते ही सभी के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आती है जैसे बचपन के दिन फिर लौट आए हों। सखियों के साथ हंसी मजाक और झूले की मस्ती का ये पल लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है। वीडियो देखकर हर कोई उनकी खुशी की तारीफ कर रहा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: फतेहपुर शेखावटी में भादव मेले का आयोजन, मंदिर का भव्य श्रृंगार, राजस्थान समेत करीब 12 राज्यों के लोग मेले में होंगे शामिल। चमोली में धूमधाम से जारी है मां नंदा की राज जात यात्रा, जगह जगह लोक गीतों से हो रहा है यात्रा का स्वागत, पहाड़ी संस्कृति के दिखाई दे रहे रंग। गणेशोत्सव को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, सभी गणेश पंडालों में मुफ्त होगी बिजली सप्लाई, भक्तों में खुशी की लहर। बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी का शपथ ग्रहण, सीएम फडणवीस और राज्यपाल की मौजूदगी में ली शपथ। पोखरण में 14 सितंबर से ड्रोनाथोन 2026 का आयोजन, ड्रोन से ड्रोन रोधी सिस्टम तक दिखेगी भारत की स्वदेशी तकनीक की ताकत।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: तब की प्यारी रिंकी भाभी सीरियल्स के ड्रामे से लेकर रियलिटी शोज और वेब सीरीज की सारी हलचल तक यहां मिलेगी आपको मनोरंजन की हर न्यूज। लेकिन सबसे पहले देखिए आज की हेडलाइंस।
1: एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटियां में आज देखिए मायरा को सरप्राइज देने के लिए परेशान होंगे अरमान अभीरा।
2: क्या करा सब आपका और जेल में अकेले जाऊं मैं?
3: जाओगे तो तुम दोनों ही।
1: अनुपमा के सामने आएगा सच, बजेगी गौतम की बैंड।
2: सबके सामने पिटाई होगी।
4: यू शट अप गौतम गांधी।
1: भेस बदल डॉक्टर अवंतिका चलेंगी चाल, लेकिन आरंभी बनेगी रक्षक।

0: लक्ष्य और मुस्कान की सगाई में क्या बंसरी करेगी मुस्कान का खुलासा।
1: सुनो बंसरी, सब ठीक है ना?
2: मिलियन डॉलर शॉप,
3: तू पुलिस से बात क्यों कर रही थी?
2: वो अनंत को बचाने के लिए जिस गुंडों को मुस्कान ने पकड़ लाए थे वो सब छूट गए थे।
0: दही हांडी के मौके पर झूमकर नाचेगा परिवार, होगी संजय की घरवाली।

कटघरे में महादेव एंड संस करेंगे बगावत, मिलेगी तारीख पर तारीख। और साथ ही करेंगे मुलाकात बंसरी के देवर लक्ष्य यानी कि साहिल बलानी से, जानेंगे उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: अंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में ताईजी की शादी को लेकर ईशा और सूरज में बहस हो गई है। एक तरफ जहां ईशा ताईजी की दूसरी शादी करवाना चाहती है, तो वहीं सूरज इस शादी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस बहस का क्या रिजल्ट निकलता है, देखना होगा दिलचस्प।
1: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा ईशा जी। ठीक है, तो आज से हम डिसाइड करते हैं कि हम अपने दिनचर्या में से वक्त निकाल के ताई माँ के साथ टाइम स्पेंड करें।
2: सूरज, हमारा ताई माँ के साथ टाइम स्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। आई थिंक हमें जल्दी से ताई माँ की शादी करवा दो।
1: शादी?
3: ईशा की सूरज को समझाने की कोशिश।
1: क्या आपका ईशा जी कुछ भी बोले जा रहे
2: हैं? सूरज,
3: अपनी बीवी से नाराज हुआ पति ब्रह्मचारी।
2: मैंने अपने को अकेले पर एक इंसान है जो उन्हें अच्छे से समझ, और कलमा को भी उनका समझना बहुत अच्छा लगता है।
1: क्या नाम शराब बोले जा रही हैं आप?
3: ईशा ने छेड़ी ताई जी की शादी की बात।
1: बस बस ईशा जी, बहुत हो गया, अब एक लफ्ज मत निकालो।
3: दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज सूरज बंटी से कुछ बातें कर रहा होता है कि वहाँ ईशा आ जाती है, और कोई और समझ कर देखिए कैसे सूरज का हाथ उठ जाता है। बस मिल गया ईशा को मौका सूरज को खरी खोटी सुनाने का। ऐसे में इन दोनों की बहसबाजी शुरू हुई और बंटी तो यहाँ से निकल लिया।
2: रुक क्यों गए? मारो ना सूरज, मारो, यही तो बाकी रह गया है। वैसे भी तुम किसी की कहां सोचते हो, मारो मारो।
1: कैसी बात कर रहा है? आप पर भला हाथ उठाने का मैं सोच सकता हूँ, और मैं आपको इतनी बार कॉल कर रहा था, वो क्यों नहीं उठा रही?
3: में देखिए कैसे दोनों फिर एक दूसरे से लड़ पड़े हैं। लेकिन आज ईशा यहाँ आई है सूरज को कुछ जरूरी बात बताने के लिए।
1: बताइए ईशा जी, अगर आप नहीं आती ना तो मैं खुद ही उठ के आ जाता।
2: कितनी बातें करते हो?
1: ठीक है, ज्यादा बोलता हूँ, अब बोलूंगा।
2: पता है सूरज, हमारे घर में 3 बड़े बच्चे, एक मीका, एक ब्लूटूथ और एक तुम। ये सब छोड़ो और सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है।
1: क्या किया आकाश?
2: ओहो सूरज, आकाश को भी छोड़ो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो बस। पर सबसे पहले तुम वादा करो कि तुम बिल्कुल गुस्सा नहीं करोगे, बिल्कुल भी।
1: हाँ, पर डिपेंड करता है ना ईशा जी कि बात क्या है।
3: ऐसे में ईशा बात की शुरुआत कुछ इस तरह करती है कि सूरज को लगता है कि ईशा अपनी बात कर रही है कि कैसे बुढ़ापे में ये दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। और ऐसे में देखिए कैसे पेन पेपर लेकर सूरज आ गए हैं ईशा की बात को नोट डाउन करने के लिए। लेकिन बातों बातों में जब ईशा बताती है कि वो ताई जी की बात कर रही है और ताई जी और चंदू की शादी करानी चाहिए, तो सूरज को लगता है जोर का झटका।
1: अब चलिए बताइए बात क्या है।
2: एक एज के बाद इंसान कितना अकेला हो जाता है, मतलब उसके आस पास हर कोई रहता है पर वो खुद से बहुत दूर हो जाता है, और ये अकेलापन धीमे धीमे सुन्नापन बन के उन्हें खा लेता है।
1: लिखवा लीजिए, मैं तब भी आपको उतना ही प्यार करूंगा, तब भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा जब आपके चेहरे पर छुरियां पड़ जाएंगी और आपके सारे दांत गिर जाएंगे।
2: मतलब दादियों के पास हम सब, उनका परिवार तो है, वो इंसान नहीं है जिससे वो अपने दिल की बात शेयर कर
1: सके। मैं कैसा करूँ सूरज,
2: दादियों को एक साथ ही।
1: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा ईशा जी। ठीक है, तो आज से हम डिसाइड करते हैं कि हम अपने दिनचर्या में से वक्त निकाल के ताई माँ के साथ टाइम स्पेंड करें।
2: सूरज, हमारा ताई माँ के साथ टाइम स्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। आई थिंक हमें जल्दी से ताई माँ की शादी करवा देनी चाहिए।
1: देखो शादी, आत्मा खराब हो गया है क्या आपका? ईशा जी कुछ भी बोले जा रहे हैं।
3: भाई ईशा तो समझ चुकी है कि ताई जी को एक हमसफर की जरूरत है, जो कि है चंदू, उनके बचपन का प्यार। लेकिन ये बात सूरज को समझाना काफी मुश्किल है, क्योंकि सूरज तो ईशा की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। उसे तो ये बात ही हजम नहीं हो रही कि ताई जी की दूसरी शादी की बात भी हो सकती है। ऐसे में देखिए कैसे सूरज वहाँ से नाराज होकर निकल जाता है।
2: मैंने ताइमा को अकेले परेशान होते हुए देखा है, पर एक इंसान है जो उन्हें अच्छे से समझता है और ताइमा को भी उनका समझना बहुत अच्छा लगता है।
1: क्या नाम शना बोले जा रही है आप? ताइमा माँ है मेरी और अपनी माँ की शादी के बारे में भला कोई कैसे सोच सकता है?
2: अरे सूरज, सिचुएशन के अकॉर्डिंग में सोचना चाहिए।
1: तब तो आपने उनके लिए दूल्हा भी डिसाइड कर ही लिया है ना? बस ईशा जी, बहुत हो गया, अब एक लफ्ज मत निकालना इन अफसे से।
4: बच्चे नहीं बच्ची,
5: ये ईशा जी करवाना चाह रही हैं, पूछिए।
4: हाँ, तो मतलब ईशा ने ताइमा और चंदू अंकल को साथ में देखा हंसते हुए, दोनों टाइम स्पेंड कर रहे। पहले ईशा को भी जाता है कि डाउट,
5: बचपन के हैं और प्यार भी था।
4: ईशा सूरज दोनों को पता चला है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर एक मजबूरी में ताइमा को किसी और से शादी करनी पड़ी थी, बिकॉज उनके पिताजी, मतलब उन्होंने अपनी चीजें बताई, अपना किस्सा बताया, क्या मजबूरी थी। तो ईशा वही फिगर आउट कर रही है कि हाँ ये सब तो, बट अब भी दोनों का बॉन्ड देख रही है कि कितना प्यार से रह रहे हैं। तो वो सूरज को मनाने आ रही है, समझाने आ रही है कि सूरज हमें उन्हें टाइम देना चाहिए, उनकी शादी करवा देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। बट सूरज तो सूरज है,
5: सूरज थोड़ा सा जिद्दी खोर है और उसे ये लगता है कि यार क्या है ये शादी विधि, कुछ भी बोले जा रही है, फालतू की बातें, ये मॉडर्न ख्यालात, मतलब वो भी है मॉडर्न, बट उसको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि क्या ताई माँ बुढ़ी हो गई हैं, ये हो गए शादी करवाने
4: चाहिए। अपनी माँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना तुरंत की माँ, और ईशा बहू होने के नाते वो करवा रही है।
5: और सूरज को ये लगता है ठीक है, जो था था, पास्ट था ना, अभी प्रेजेंट है, दोनों की जिंदगी अलग हो चुकी है, अब इस समय थोड़ी ना ये सब चलता है और लोग क्या बोलेंगे, मतलब वो सब भी सोचना पड़ रहा है बेचारे को। तो ये सब थॉट में है जो वाकई एक इंसान रहता है असल जिंदगी में। तो सूरज वो थॉट में और ईशा जी आई थिंक वो सारे थॉट के काफी बियॉन्ड में है, क्योंकि ईशा जी यही सोचती है कि इंसान की खुशी मैटर करती है। सूरज अभी बस यही सोच रहा है कि ठीक है यार ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए, बट शायद से जो ईशा जी सोच रही है वो बहुत जल्द सूरज को समझ में आ जाएगा,
4: वो समझा देगी सूरज को।
3: भाई फिलहाल तो ईशा की ये कोशिश नाकाम हो गई है, लेकिन ईशा पूरी कोशिश करेगी सूरज को मनाने की। तो भाई अब देखना होगा कि क्या सूरज ईशा की बात को समझेगा और क्या वाकई ताई जी और चंदू की शादी होगी। भाई ये तो कहानी में है आने वाला नया मोड़। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: सीरियल हमारी भाभी नंबर 1 में चल रही है, लक्ष्य और मुस्कान की सगाई रस्म, जहां इस सगाई को लेकर बंसरी खुश नहीं है और वो इस सगाई को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। क्या बंसरी अपनी इस कोशिश में कामयाब होगी? देखने के लिए चलते हैं सेट पर।

0: को ही संभाल।
1: लक्ष्य और मुस्कान की सगाई,
0: दूरो दूरो जानी है, जान कट जानी है।
1: भाभी ने चुनरी की रस्म निभाई, देवरानी जिठानी में तशनेबाजी, दंगल टीवी के सीरियल हमारी भाभी नंबर वन में आज हो रही है बंसरी के लालू और मुस्कान की सगाई। ऐसे में सभी घरवाले बहुत खुश हैं और सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहा है लालू यानी कि लक्ष्य, क्योंकि आज वो मुस्कान के साथ एक रिश्ते में बंधने वाला है। ऐसे में पूरा परिवार मौजूद है रस्में निभाने के लिए। इसी बीच बंसरी मुस्कान को चुनरी उड़ाने के लिए जाती है, लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि बंसरी को आ जाता है पुलिस का कॉल। ऐसे में चुनरी छोड़ बंसरी चली जाती है अपना फोन उठाने और उसकी ये हरकत घर वालों को रास नहीं आ रही और अनंत वो तो हैरान हो रहा है।
2: ए बाकला, चुनरी उठा ली, फोन बाद में बात कर ली।
3: कोई बात, एक महत्व का फोन आया, मैं जरा बात कर लेती हूँ ना, बे मिनट आती हूँ।
1: अब बंसरी तो बात करते हुए वहाँ से निकल गई, लेकिन बंसरी के इस कॉल ने रस्मों पर ब्रेक लगा दिया। ऐसे में सभी घर वाले बंसरी का इंतजार कर रहे हैं और बंसरी फोन पर लगी हुई है। बात करते करते वो नजदीक आती भी है लेकिन वापस चली जाती है। ऐसे में बाप फैसला लेती है कि सगाई की बाकी रस्में होती रहेंगी, पहले अंगूठी एक्सचेंज कर ली जाए। ऐसे में घर की दूसरी बहू लक्ष्य और मुस्कान को अंगूठी दे देते हैं एक दूसरे को पहनाने के लिए। इससे पहले कि लक्ष्य और मुस्कान अंगूठी पहनाते, बंसरी बात करते हुए फिर से नजदीक आ जाती है और वहाँ मुस्कान के मम्मी पापा, उन दोनों की नजर लगातार बंसरी पर बनी हुई है, क्योंकि उन्हें शक हो रहा है कि बंसरी कहीं उनके सच का पता ना लगा ले। ऐसे में होता भी वही है, बंसरी अचानक पुलिस का नाम ले लेती है, जिसके चलते मुस्कान और मुस्कान के मम्मी पापा सबकी हवाइयाँ उड़ जाती है।
3: भले इंस्पेक्टर साहब, आपकी जैसी मर्जी, आपको जो करना है कीजिए। हाँ
4: सुनो बंसरी, सब ठीक है ना?
3: मिलियन डॉलर शॉप,
2: तू पुलिस से बात क्यों कर रही थी?
4: वो अनंत को बचाने के लिए जिस गुंडों को मुस्कान ने पकड़ लाए थे, वो सब छूट गए हैं जेल।
3: अरे तू भी इतनी चिंता करी मुस्कान ना? अरे वो गुंडे कौन थे, कहाँ से आए थे और उन्होंने अनंत पे हमला क्यों किया, ये सब तो बस पुलिस कर लेगी।
4: तुम चिंता मत करो।
3: लालो चलो अंगूठी पहनो।
4: हाँ हाँ चलो
3: चलो।

0: か。
1: भाई बंसरी को तो पता चल गया है कि मुस्कान किस खेत की मूली है। ऐसे में बंसरी ने भी पूरी तैयारी कर ली है मुस्कान को सबक सिखाने की। इतना ही नहीं, मुस्कान और लक्ष्य दोनों ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई। सभी घर वाले बहुत खुश हुए, उन पर फूल बरसाया, ढेर सारी तालियां बजाई और नए रिश्ते की इन्होंने शुरुआत भी कर ली।

अब घर वालों को क्या पता कि बंसरी क्या करना चाहती है। ऐसे में बंसरी आ जाती है चुनरी की रस्म अदा करने के लिए और देखिए कैसे वो खुद अपने हाथों से मुस्कान को चुनरी पहनाती है और उसका मुंह मीठा करती है, साथ ही साथ अपना टशन भी दिखाती है।

0: अब बंसरी ने लक्ष्य की भाभी होने का फर्ज तो निभा दिया, बारी है सच का पता लगाने की। ऐसे में बंसरी वहाँ से निकल जाती है मुस्कान की माँ का हाथ पकड़कर। अब देखना होगा क्या बंसरी मुस्कान की माँ को डरा धमकाकर उनकी सच्चाई बाहर निकलवा पाएगी। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: सीरियल महादेव एंड सन्स में मोगरा के षड्यंत्र के कारण पूरी फैमिली कटघरे में खड़ी है। ऐसे में रज्जी आज वकील बन अपनी फैमिली को बचाने में लगी है। क्या नाकाम होगी मोगरा की चाल और क्या अपनी फैमिली को बचा पाएगी रज्जी, देखना होगा, काफी दिलचस्प।

0: नाकाम रही रज्जी की कोशिशें। शुरू हुआ तारीख पर तारीख का किस्सा। कलर्स के सीरियल महादेव एंड सन्स में मोगरा और उसके परिवार वालों ने महादेव और उसके घर वालों पर इल्जाम लगाया है दहेज लेने और घरेलू हिंसा का, जिसके चलते महादेव, धीरज और केतन तीनों कटघरे में पहुंच गए हैं और रज्जी तीनों को छुड़ाने की कोशिश में आज उनकी वकालत कर रही है। ऐसे में मोगरा के वकील मिस्टर सूरी ने महादेव से सवाल पूछ लिया बाकी दो बहुओं के बारे में, जिसको लेकर महादेव ने अपनी राय बताई है।
1: केतन और नर्मदा ने अपनी मर्जी से शादी की थी और धीरज और रज्जी ने भी अपनी मर्जी से ही विवाह किया था।
2: और आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी या आप खुश थे अपने बेटों के फैसले से?
1: देखिए, जो भी विवाह हुआ था हमारी मर्जी के खिलाफ हुआ था, हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उस वक्त हम उस विवाह से खुश नहीं थे।
0: वही जैसे ही महादेव ने अपनी बात बताई, मिस्टर सूरी ने उस बात को पकड़ लिया और जज के सामने ये बता दिया कि दोनों बहुओं के परिवार वालों से उन्हें दहेज नहीं मिला, जिसके चलते वो दोनों को पसंद नहीं करते। बस फिर क्या, ये सुनकर महादेव, धीरज और केतन तीनों हैरान रह जाते हैं और तो और मिस्टर सूरी कटघरे में बुला लेते हैं लाजवंती को भी, जो आकर लगाती है सीधा महादेव पर इल्जाम।
3: सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा था, राय होने के बाद महादेव जी ने अचानक 10 लाख रुपए की दहेज की मांग की।
4: अरे
3: आप
4: झूठ बोल
3: रही
4: है,
3: झूठ झूठ
4: मैडम,
1: मिस्टर
4: से बीच में मत बोली,
1: झूठ बोलेंगे मेरे को, सफेद झूठ बोले जी है। अरे हमने कभी इनसे इनके परिवार से दहेज नहीं मांगा, हम तो खुद दहेज के खिलाफ है।
4: महादेव जी पहले उनकी बात को खत्म होने दीजिए वरना कोर्ट की कार्यवाही कैसे पूरी होगी।
1: झूठ कह
4: रही है
3: आप लोग। हम महादेव जी का असली चेहरा देख कर एकदम चकित रह गए कि हम तो इतने बहुत शरीफ और सज्जन इंसान समझते थे, लेकिन अब ये अपना असली रंग दिखाने लग गए। हमने इनके सामने हाथ जोड़ा, मिन्नत है कि हम बहुत गरीब हैं, 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है हमारे लिए, हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये आदमी अपनी बात पे अड़ा रहा।
5: तो आपने शादी क्यों नहीं तोड़ी? तोड़ देते आप शादी?
3: हमने सोचा था कि शादी तोड़ते, अब हमें लड़की की मांग, आप तो सवाल जानते हैं, हमारी बिटिया मोगरा की सगाई हो चुकी है, अब अगर हम शादी तोड़ते तो हमारी बिटिया को बहुत अपमान होता, समाज में 10 तरह की बातें बनती, बहुत बदनामी हो।
0: भाई लाजवंती ने तो यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया और तो और जज के सामने लड़की के माँ बाप होने का दुखड़ा सुना दिया। बस फिर क्या, ये सुनकर रज्जी अपने आप को रोक नहीं पाई और देखिए कैसे वो मोगरा के सारे खुलासे करने लगी।
6: जज साहब प्लीज हमारी बात सुनिए, ये पूरा नैरेटिव सूरी जी ने बनाया, पूरा नैरेटिव नकली है, असली क्रिमिनल्स ये लाजवंती है और मोगरा है, इन्होंने मिलकर ये पूरी प्लानिंग करी है। तो और प्लानिंग तो छोड़िए, इन्होंने एक छोटे से बच्चे को भी नहीं बख्शा, इन्होंने हमारी नर्मदा भाभी के बच्चे को मार दिया, उसे दुनिया में आने नहीं दिया, इसीलिए पापा जी ने मोगरा को घर से बाहर निकाला कि लाजवंती एकदम छूटी है, मोगरा भी छूटी है।
4: अगर आप कोर्ट को टेकरम को मेंटेन नहीं कर पाएंगी तो आपको कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा और अगर दोबारा कोर्ट में आप कदम भी नहीं रख पाएंगी, बेहतर होगा कि आप खुद भी चुप रहिए और अपने डिफेंडेंट्स को चुप कराइए।
6: अच्छा, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज हमारी बात को समझिए, ये सारा केस झूठा है, ये लोग एक फ्रॉड फैमिली है, ये पूरा नैरेटिव झूठा है, हम आराम से कह रहे हैं, प्लीज प्लीज ये मोगरा और ये लाजवंती असली क्रिमिनल है, ये झूठे आंसू है सर, प्लीज
4: आज के लिए बस इतना ही,
1: लेकिन
4: अगली कार्यवाही नेक्स्ट हियरिंग में होगी, द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे।
7: सो बेसिकली सीन में यही हुआ है कि रज्जी जो है हमें बेल दिलाने की कोशिश कर रही है, रज्जी हमारे केस लड़ रही है, जिसको जूही मुही ने बताया कि कैसे उसको फाइट करना है, बट जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आ रही हैं जिसकी वजह से मतलब ये बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं और हम लोगों को बेल नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मोगरा की जो मदर हैं और फादर हैं वो उन्होंने आकर के झूठ बोल दिया है कि वो बार बार बार बार हम लोग उन पर जोर डाल रहे थे कि वो दहेज हम दहेज मांग रहे थे, तो इस बार भी हम लोगों को बेल नहीं मिल पाई है और वापस से महादेव और धीरज और केतन को जेल जाना पड़ रहा है। तो रज्जी ने काफ़ी ट्राई किया लेकिन इस बार भी बेल नहीं मिली है।
0: भाई एक बार अदालत में केस चला गया तो उसको सिर्फ तारीख पर तारीख ही मिलती है, और महादेव के परिवार के साथ भी ऐसा ही हो गया है, जिसके चलते पुलिस वाले महादेव, केतन और धीरज तीनों को पकड़कर वापस सलाखों के पीछे ले गए हैं, और विद्या बिचारी अपना दुख मना रही है। अब देखना होगा कि रज्जी कैसे अपने ससुर, अपने पति और अपने जेठ को जेल से छुड़वाएगी और कैसे वापस घर लाएगी।
8: मिस्टर सूरी ने कोर्ट के सामने जो कुछ भी कहा है वो दया बटोरने के लिए बनाई गई एक झूठी कहानी है, और ये हम साबित करेंगे। मोगरा और उसकी फैमिली शुरू से ही महादेव परिवार को मैनिपुलेट करती आ रही है, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है 10 लाख रुपए का लोन।
0: मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
9: सीरियल्स की दुनिया में आते हैं ढेर सारे ट्विस्ट, और जितनी कहानियां उतने सारे ट्विस्ट, तो चलिए देखते हैं कि कौन से सीरियल में आया है कौन सा ट्विस्ट।
10: भाकरवड़ी नहीं खानी है तो
0: स्टारप्लस के सीरियल अनुपमा में आज अनुपमा को अपने बेटे तोशु पर बहुत प्यार आ रहा है, तभी तो देखिए कैसे एक माँ अपने बेटे पर लाड़ जताने के लिए अपने हाथों से उसे मिठाई खिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेटा राजा वो तो उनके हाथ से मिठाई खाने से कोसों दूर भाग रहा है, तभी तो देखिए कैसे घर वाले ये देखकर हैरान है कि माँ बेटे ने इस घर में भागम भाग मचा दी है, लेकिन घर वालों को क्या पता कि अनुपमा ये सब इसलिए कर रही है ताकि गौतम सबके सामने इस बात का खुलासा कर दे कि कंपटीशन के दौरान अनुपमा की आवाज गौतम के चक्कर में ही गई थी।
11: नहीं नहीं नहीं नहीं, ये ना मैंने बनाया था ना मंटू ने भेजा, उसका तो स्नैक्स का काम ही नहीं है, ये आपने बनाया होगा मुझसे बदला लेने के लिए, मुझे पता है।
10: अरे मैं किस बात का बदला लूंगी, ये तो मंटू लाया है, मंटू ने बनाया है और मंटू ने तेरे लिए भेजा है।
11: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये मैंने नहीं बनाया और ना मंटू ने भेजा, ये तो उस कंपनी ने गौतम ने भेजा।
0: तोशु के मुंह से ये सच जानकर सभी घर वाले हैरान हो रहे हैं, लेकिन तोशु अपने आप को बेगुनाह साबित कर रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं था, उसे भी धोखा मिला है, लेकिन अनुपमा ये बात मानने को तैयार नहीं है। उसका तो दिल इस बात को लेकर टूट गया है कि बिना जाने सोचे समझे उसने अपनी माँ को उसके दुश्मन की दी हुई मिठाई खिला दी। इतना ही नहीं, अब तो अनुपमा को ये भी यकीन हो चला है कि आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन अखबार में अनुपमा की भी खबर आ ही जाएगी।
12: जब भी ऐसी खबरें देखती थी ना, सुनती थी ना, तो भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि किसी भी माता पिता को ऐसी औलाद ना दे। और देखिए मेरी औलाद ही ऐसी निकली है। किसी दिन बापूजी ऐसी मेरी भी खबर आएगी अखबार में फ्रंट पेज पे कि बेटे ने पैसों के लालच में आकर माँ की निर्मम हत्या कर दी, परितोष शाह ने अनुपमा जोशी को जान से मार डाला, उसका खून कर दिया।
13: बेटा ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते।
12: बच्चे ऐसा करते हैं क्या बापूजी? जो इसने किया।
0: अब अपने बेटे से जिस माँ को धोखा मिलेगा उसके तो आंसू ही निकलेंगे, और अनुपमा वो तो बिलक बिलक कर रो रही है क्योंकि तोशु एक के बाद एक सिर्फ धोखा ही देता आया है। इतना ही नहीं, बहुत जल्द गौतम भी अपना किया कबूलेगा और अनुपमा उसे सजा भी देगी।
14: बहुत रॉन्ग किया आपने, किया करा सब आपका, और जेल में अकेले जाऊँ मैं?
15: जाओगे तो तुम दोनों ही, वो भी पारा के भाव।
14: गौतम जी मुझे लगता है इस बार सबके सामने पिटाई होगी।
15: गौतम गांधी, तुझे स्वाद बिगाड़ना नहीं था ने, स्वाद छीनना था।
14: देखिए अनुपमा जी,
15: तू देख गौतम गांधी, तू देख,
12: जिस दिन सबूत मिलेगा ना उस दिन तुझे और मेरी इस गई गुजरी औलाद को कोई नहीं बचा पाएगा, बचा पाएगा।
16: देना साथ मेरा
17: यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा।
0: स्टार प्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में आज अपराजिता और रक्षित दोनों की हल्दी हो रही है, वो भी अनोखी वाली, क्योंकि ये हल्दी सिर्फ अपराजिता और रक्षित एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, वो भी घर वालों से छिपकर एक कमरे में। जरा देखिए कैसे अपराजिता बड़े ही प्यार से पहले तो रक्षित को हल्दी लगाती है और फिर उसके गालों से हल्दी अपने गालों में लगाती है ताकि हल्दी की रस्म पूरी हो सके।
14: ये क्या करें?

0: मुझे उम्मीद तो थी कि जिंदगी में कोई ऐसा है जो मुझसे इतना प्यार करे, मुझे इतनी इज्जत दे, लेकिन जिंदगी एक पल में इतना सब कुछ दे देगी कि नहीं सोच रहे।
1: ये तो बस शुरुआत है। दुनिया की हर खुशी जो है ना, तुम्हारे कदमों पर ला कर रख दूंगा मैं।
0: ना सब कुछ दे देंगे तो मैं एहसान कैसे उतारूंगी? मेरे पास कुछ नहीं आपको देने के लिए।
1: वो हम नवा तुम देना साथ मेरा।
0: हमेशा।

सीरियल हमारी भाभी नंबर वन में बंसरी भाभी के प्यारे देवर लक्ष्य का किरदार निभाने वाले एक्टर साहिल बलानी संग हमारी टीम ने किया एक मजेदार डे आउट, जहां हमने देखा बाइक के लिए साहिल का प्यार और कि उनकी रियल फैमिली से भी मुलाकात। तो चलिए करते हैं इस डे आउट की

थोड़े नटखट हैं, रियल लाइफ में संस्कारी हैं, टीवी के नए देवर हैं, भाभी माँ के लाडले हैं। हम बात कर रहे हैं साहिल बलानी की, जो नजर आ रहे हैं दंगल टीवी के नए शो हमारी भाभी नंबर वन में, जिसमें वो देवरजी लक्ष्य का किरदार निभा रहे हैं। और आज हम लक्ष्य संग पूरा एक दिन बिताएंगे, जानेंगे उनके बारे में कई बातें, करेंगे उनके साथ सेट तक का सफर, देखेंगे उनका मेकओवर, मिलेंगे उनकी रियल फैमिली से। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं इस डे आउट की शुरुआत। ये जो मेरे साहिल काफी संस्कारी हैं और आज वो अपने दिन की शुरुआत मंदिर जाने से कर रहे हैं। तो भाई सेट तक का सफर करने से पहले आज साहिल पहुंच गए हैं साईं बाबा मंदिर लेने उनका आशीर्वाद। तो चलिए हम भी चलते हैं इस मंदिर में और देखते हैं साहिल के संस्कार।

Hi, good morning. So Sahil Balani this side, playing Laksh from the new upcoming show Hamari Bhabhi number 1, only on Dangal TV. So shoot पे जाने से पहले मैं अपना normal routine जो या तो घर पे पूजा करता हूँ, आज special है क्योंकि आज interview भी हो रहा है, तो मैं सोचा कि क्यों ना मंदिर में पूजा करके फिर यहाँ से जाऊँ. तो बस वही आज आया हूँ मंदिर में पूजा करने, मंदिर में पूजा करके फिर यहाँ पे भगवान की blessings लेके उनको थैंक यू करके यहाँ से फिर अभी मैं निकलूँगा शूट के लिए.

0: भाई भगवान जी के दर्शन तो हो गए, अब करते हैं सेट के सफर की शुरुआत। वैसे आज साहिल धूम मचाने वाले हैं क्योंकि वो सेट तक का सफर करते हैं अपनी इस राम प्यारी यानी अपनी इस बाइक पर होकर सवार।
1: चलिए अब हमारे मंदिर दर्शन हो गए, अब चलते हैं सेट पे। चलते हैं सेट पे। ये है मेरी बाइक, वेरी स्पेशल बाइक होती है क्योंकि ये मेरे चाचू थे, उनका बहुत बड़ा गिफ्ट था मेरे, आज वो है नहीं, वेरी क्लोज। सो मैं इसी से डेली ट्रैवल करता हूँ, इसी से अपनी राइड एंजॉय करता हूँ। और कुछ भी मेरा मूड होता है, सबसे पहला थॉट जो मेरे माइंड में आता है वो ये होता है कि लेट्स गो ऑन अ बाइक राइड, अगर मुझे माइंड को फ्रेश करना होता है। चलिए चलते हैं फिर सेट पर।
0: तो चलिए शुरू करते हैं बाइक राइड का सेट तक का ये सफर।

0: फाइनली धूम मचाते हुए साहिल पहुंच गए हैं हमारी भाभी नंबर वन के सेट पर, जहां उनका मेकओवर होगा और अब वो साहिल से बनेंगे लक्ष्य यानी भाभी के लाडले देवर जी। तो सीधा चलते हैं इनके मेकअप रूम में।
1: सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारे सेट, तो आइए मैं आपको सेट का टूर कराता हूं और लेट्स गेट रेडी विद मी। सो ये है मेरा रूम जहां मैं साहिल से लक्ष्य में बनता हूँ। रियली स्पेशल पर्सन टू मी क्योंकि बहुत ही फनी स्टोरी है। लक्ष्य के लिए लॉक होने के लिए मैंने लगभग 10 बार मॉक शूट दिया था, फ्रॉम ऑडिशन 4 बार, उसके बाद 10 बार मॉक शूट दिया था। तो तब से ये विजय मेरे साथ है, मेरी हेयर स्टाइलिंग से लेके मेरा मेकअप सब कुछ यही करता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल बनना है, फ्रॉम डे वन से पहले टू गेट इन टू लक्ष्य, तब से ये मेरे साथ है, तब से मुझे लक्ष्य में बना रहा है। तो आइए रेडी होते हैं।
0: तो झटपट से करते हैं मेकअप की शुरुआत। वैसे तो लड़कों को ज्यादा मेकअप करने की जरूरत ही नहीं होती, हेयर स्टाइलिंग और हल्का सा बेस हो गए ये रेडी।
1: बट भाई ये बहुत डिमांडिंग है इधर मेकअप आर्टिस्ट विजय, सबको विजय चाहिए। विजय को करना मेरा पसंद है लेकिन इसको ये सबको चाहिए होता है। तो
0: वैसे रेडी होते होते साहिल सुना रहे हैं अपने शूटिंग के किस्से भी।

0: लोग द्वारका गए थे 2 दिन के शूट के लिए, तो वहाँ लिटरली एक फैमिली जिनको घर जाना था दर्शन करके, जब तक सर का शूट हो रहा था तब तक वो फैमिली वहीं पे थी एक फोटो निकालने के लिए बस सर की।
1: फोटो छोड़ो, एक आंटी तो इतनी पर्सनली वो हो गई कि जैसे उन्होंने पता नहीं मतलब कितने जन्मों से खोया वो बच्चा उनको मिल गया, ऐसे वैसा हो गया था। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड, मैंने किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग मुझे बाड़ू से पहचानेंगे। तो माय प्रीवियस शो ने क्या सा, टच वुड, इट वाज अ ग्रेट शो, इट इज़ अ ग्रेट शो, इट इज़ स्टिल रनिंग। मैंने लीव के बाद थोड़ा डिसाइड किया टू लीव दैट शो, तो मतलब मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट द्वारका में इतना प्यार मिला मुझे, इतना प्यार मिला दैट दे लिटरली हैड टू सर्कल अराउंड मी कि शूट हो सके और मैं आराम से शूट तक पहुंच सकूं। ये लेवल तक मुझे प्यार मिला, इट वाज अमेजिंग, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस हो गया था द्वारका में।

0: तो भाई इनकी मेकअप और हेयर स्टाइलिंग हो गई पूरी और अब चेंज कर ये पूरी तरह से लक्ष्य के किरदार में ढल जाएंगे।
1: हाँ जी, तो अब मेरा हेयर एंड मेकअप तो हो चुका है, अब बारी है मेरी रेडी होने की। सो आज का जो मेरा आउटफिट है वो ये देखिए, चमक धमक से भरपूर। ये मेरी एक्सेसरीज, ये वॉच एंड ये लक्ष्य हमेशा पहनता है, ये कड़ा इसका। अब आप सोच रहे होगे कि इतना चमक धमक आउटफिट क्यों, वो मैं आपको रेडी होके बताऊंगा। चलिए तो मैं रेडी हो जाता हूँ और फिर मिलते हैं। आई एम रेडी, आप देख सकते हो मुझे, कैसा लग रहा है गेटअप? अच्छा ना, एकदम फिट एंड फाइन। I personally believe an actor should smell always good. That's why मैं हर जगह परफ्यूम तो मेरे कैरी करता हूँ, एक नहीं दो तो तीन तीन है मेरे पास। एक्सेसरीज में ये लक्ष्य का लॉकेट, ये लक्ष्य हमेशा पहनता है चाहे कुछ भी हो जाए।
0: तो देखा आपने, हो गया है साहिल का पूरी तरह से मेकओवर और अब वो बन गए हैं लक्ष्य, जो तैयार है बिहार जाने के लिए। तो इसी खुशी के मौके पर एक डांस तो बनता है।

0: वह शूटिंग शुरू होने में अभी समय है, इसीलिए साहिल हमें मिलवा रहे हैं अपनी रियल फैमिली से। भाई शूटिंग शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इनकी बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है और ये रियल रिश्ते रियल जैसे बन गए हैं।
1: चलिए फिर आज चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन है अभी सेट। सबसे पहले मिलता है हमारी भाभी से। और लड़की बता कुछ मेरे बारे में, कुछ तो बोल।
2: बहुत परेशान करता है, बहुत ज्यादा नटखट है। लिटरली हिज नेम जो इसका लालू कैरेक्टर है ना, वो एक्चुअल में ये वैसा ही है, सबको परेशान करने वाला, सबके सर पे ऐसे नाचने वाला। और मुझसे तो पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, मतलब पूरे सेट पे इसको लगाव है।
1: उसको प्यार बोलते हैं, माँ बेटे वाला प्यार है वो।
2: माँ बेटे वाला प्यार तो कहीं से नहीं है इसको मेरे लिए। हाँ, हर समय मेरी टांग खींचता रहेगा, हर समय मुझे क्या क्या बोलता है तू, बोल। कॉपी कैट है एक नंबर का, जो मैं बोलूंगी वो रिपीट करेगा सबके सामने जाके।
1: मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ भी इसी के साथ, सिर्फ ऐसा होता है जब भी मैं इसका कुछ भी हंसी मजाक करने जाऊँ, यूनिवर्स इसके साथ हो जाता है।
2: You know what? अच्छे लोगों के साथ ना अच्छा ही होता है। एंड कर्मा।
1: इसने तो जब अपना बोलना स्टार्ट किया, बहुत परेशान करता है। 2 मिनट के लिए मैं नर्वस हो गया, पता नहीं क्या बोल देगी ये मेरे लिए। ये इनसे मिलिए, ये हमारी क्रिएटिव हेड डेबोलिना। आज इन्हीं की देन है कि हम सब रोजगार कर रहे हैं, नहीं तो हमारे लिए रोजगार
3: प्रोड्यूसर सर बहुत डांटेंगे, मत बोल।
1: रोजगार पॉसिबल नहीं होता। ये है मेरे बिग ब्रदर आनंद भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप मेरे बारे में, कुछ तो अच्छा बोल देना। अच्छा ही बोल।
4: क्या बोलूं मैं अभी, ये है मेरा, क्या बोलते हैं इसको, मेरा दुलारा, मेरा छोटा भाई, मेरा लालो। प्रोमो में आप लोग ने देख ही लिया होगा, हीरो की एंट्री हो गई है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब आज हमारा ऑलमोस्ट 1 वीक होने को आया, हम साथ में काम कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है।
1: 1 वीक
4: से ऊपर हो गया है, हमने आउटडोर भी शूट किया है साथ में, तो ऑब्वियसली ये वो बॉन्डिंग बन चुकी है अभी भाइयों वाली। तो आई एम वेरी हैप्पी साहिल इस शो में हमारे साथ।
1: वो ठीक है, ये तो ठीक है। मेरे साथ मजा आपको वो वाला, मतलब ऐसे शो वाला, लक्ष्य वाला ठीक है, साहिल के साथ कैसा मजा आ रहा है ये बताओ। लक्ष्य वाला सब छोड़ता रहेगा,
4: साहिल के बारे में ही बोलने वाला था लेकिन तूने बीच में काट दिया।
1: सॉरी।
4: साहिल के साथ एक्चुअली, साहिल जब मैं फर्स्ट साहिल से मिला था तो मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा पता नहीं इसके साथ मेरी जमेगी या नहीं, क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ी अलग थी, मेरी एनर्जी अलग है। ये फुल रणवीर सिंह है अपना, फुल टू एनर्जेटिक और ये तो। लेकिन बहुत अच्छा लगा इसका डेडिकेशन, इसका पैशन टुवर्ड्स एक्टिंग, और जब भी सीन्स वगैरह होते हैं तो ये बहुत अपने आप को बहुत अच्छी तरह से उस पर काम करने की कोशिश करता है। डायरेक्टर क्या बता रहे हैं, बिल्कुल ये डायरेक्टर्स एक्टर है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, मुझे अच्छा लगा कि एज अ फर्स्ट शो इसका एज अ लीड है, तो एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये बहुत मेहनत करा आपने पहले ही शो में।
1: तारीफ इसे कहते हैं। एंड मुझे अच्छा लग रहा है कि ये मेरे पहले लीड शो।
4: अच्छा,
1: में
4: ये बता कि मेरे साथ काम करके तुझे कैसा लग रहा है।
1: मैं वही तो बोल रहा था, आप भी तो मेरे, इसीलिए हम भाई हैं। आइए हम मिलते हैं मेरी हीरोइन से। आइए मुस्कान, कैसी हैं आप?
5: I'm good, how are you? So,
1: बहुत बहुत बहुत expectations हैं मेरी, देख पहले ही बता रहा हूँ मैं। अच्छा बताना।
5: नहीं, he's very good, बहुत अच्छा है, बहुत scenes हमारे अच्छे हो रहे हैं और give and take भी बहुत अच्छे से हो रहा है, he's very cooperative.
1: कुछ अच्छा बोल, कुछ तो ऐसा हो।
5: क्या बोलूँ, साहिल बहुत अच्छा है, साहिल बेस्ट है ना।
1: ऐसे बोल बोल बोल। और जो मैं बोला था तुझे, ट्रेन किया था मैंने अच्छे से, पैसे ले चुकी है तू, अच्छे से बोल
5: और क्या बोलो यार।
1: मैंने तुझे द्वारका में बोला था बोल, तभी फोटोज वोटोज सब चीजें शेयर होंगी, तभी वो अच्छे से वैसे एकदम।
5: तो वही तो बोला था, साहिल बेस्ट है, साहिल हीरो है, साहिल इतना हैंडसम है, और कुछ?
1: साहिल से अच्छा कोई नहीं है,
5: साहिल से अच्छा कोई भी नहीं है।
6: ये लड़का देखो पागल हो गया है, बुआ के साथ फई के साथ लगा पड़ा है फ्लर्ट करने।
1: मैं बता रहा हूँ मुस्कान लक्ष्य छोड़ो फई, मैं कह रहा हूँ मुस्कान लक्ष्य, हर मुंह तू हर मुस्कान लक्ष्य छोड़ो फई और लक्ष्य की स्टोरी को चालू करो। अरे मेरी ब्यूटीफुल,
6: थैंक यू गाइस।
1: ऐसे पैर उठाने वाला पैर मैं क्यों कर रहा हूँ यार, मुझे क्या हो गया, मेरे अंदर की मर्दानगी कहाँ जा रही है?
6: अरे हमारे लालिया की सगाई होने जा रही है गाइस, सॉरी। हम गुजराती लोग ना हर नाम में वो कर देते हैं लालिया, जैसे लालो है तो लालिया ऐसे करके, तो मैं प्यार से इसको लालिया ही बुलाती हूँ, बट ये है मेरा लालो।
1: इनकी वजह से मैं फेमस होने वाला था लालो से, इनकी वजह से मैं लालिया लालिया हो रहा हूँ, सब कोई लालिया लालिया लालिया लगा के रखा है।
6: तू देख लेना गुजरात में सब बोलेंगे लालियो आई वो। एक गाना गा रही हूँ आप लोगों के लिए, अब देखते हैं ये लोग गर पाते भी हैं या नहीं। जैसे कि मैं पहले तो गरबा सिंगर ही थी, तो यही है कि

बड़ों के लिए ना अपने बच्चे हमेशा हमारे गुजरात में हम उसको काना करके ही बुलाते, फिर काना कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। तो ये मेरा लालिया है जो मेरा काना है, मेरा बेटा है, मेरा सब कुछ है। और हम गुजरातियों में नॉर्मली ये भी होते हैं, लड़कियों को हम बोलते हैं रूपाली राधा, क्योंकि राधा जी हमेशा ब्यूटीफुल ही थे। तो ये है हमारी रूपाली राधा मुस्कान, और ये है मेरा बेटा काना, मेरा लाला। आप सबके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, हमारा शो देखते रहिए, हम लोग बहुत एंटरटेन करेंगे आप सबको, और कहानी बहुत प्यारी है और बहुत मजे करेंगे।

0: सब भी हो जाइए तैयार भाभी और देवर की अनोखे रिश्ते की ये कहानी जानने के लिए, क्योंकि इसमें है एंटरटेनमेंट भरपूर। क्योंकि जब देवरानी आएगी तो वो घर में कौन से कलेश करेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल हो गया है साहिल बलानी को बाय बाय कहने का समय, क्योंकि शूटिंग शुरू जो होने वाली है।
1: कैसा लगा आपको लालो का हॉल, लालो का घर, लालो का हॉल? आइए अब लालो का रूम दिखाते हैं। So, अभी बहुत मैसी है क्योंकि लालो भी बहुत मैसी है।

0: काम करेंगे। तो आज का दिन इसी के साथ एंड करते हैं। लालोज डे विथ यू, एंड प्लीज़ लालो को प्यार दीजिए, हमारी भाभी को प्यार दीजिए, हम सबको प्यार दीजिए, एंड कीप वॉचिंग हमारी भाभी नंबर वन 31 अगस्त से रात 9:30 बजे मंडे टू सैटरडे। डोंट मिस इट, हाँ प्लीज, ओनली ऑन दंगल टीवी।
1: तो हो जाइए तैयार ये नई कहानी देखने के लिए। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: मनोरंजन की सारी रॉकिंग और शॉकिंग खबरों को हम लेकर आए हैं आपके लिए, तो चलिए हमारे साथ और देखते हैं क्या है आज की रॉकिंग न्यूज।
3: हाँ जी,
4: आपके साथ कौन कौन ड्यूटी दिया गया
5: है? मेरी ही ड्यूटी है अभी बर्तन की, बट मैं चाय।
1: पेश है बॉलीवुड, ओटीटी और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग और शॉकिंग खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बिग बॉस के इस नए प्रोमो की, जहां मैरी कॉम और रीति तिवारी के बीच छिड़ गई है किचन ड्यूटीज को लेकर जंग।
6: कैप्टन नहीं हो?
7: अरे
6: हाँ, तो आप मत बोलो, प्लीज डोंट डू दिस टू मी, डोंट कम एट मी, डोंट बी लाइक दिस।
7: मैं आया मेरा बात करके, और मेरा नाम
8: रखा मखा,
7: सारे दुनिया मेरे बारे जानती है।
8: जिनसे रेस्पेक्ट करने वाला अलग बॉडी लैंग्वेज में पता चल जाता है।
6: आई रेस्पेक्ट यू, बट आई एम नॉट गोना टेक शिट फ्रॉम यू।
8: द होल वर्ल्ड नो मी,
6: एंड नाउ दे आर नोइंग अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ योर्स।
1: फिर एक बार मामा बनने वाली हैं दीपिका पादुकोण। ऐसे में उन्होंने करवाया अपना मैटरनिटी फोटोशूट, जिसमें नजर आ रही हैं उनकी बिटिया रानी दुआ और साथ ही हैं रणवीर सिंह भी।

0: बताइए क्या हुआ था रात को?
1: शगुन शर्मा बहुत जल्द नजर आने वाली है कलर्स के नए शो क्वीन में। ऐसे में देख लीजिए कैसी है इस शो की पहली झलक।
2: कांड तो होगा ना सर जी?
3: लड़का देखा नहीं?
0: अरे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी तुम। ब्यूटी सीएम का बेटा है वो। कंप्लेंट वापस लो नहीं तो अंदर कर दूंगा, अंदर कर दूंगा।
4: बाबा नीति का किस्सा खत्म।
5: महेंद्र प्रताप का बेटा होने को भरपूर फायदा उठा रहे हो तुम। सत्ता बदली नहीं जाती, झुकाई जाती है।
6: राज प्रताप सिंह तोमर,
7: राज प्रताप सिंह तोमर, राज प्रताप
6: सिंह। तुम्हें क्या लगा मैं हार गई इस नई नीति के जन्म के लिए? जरूरी था पुरानी नीति का मरना।
1: सामने आया है मन्नत का ये प्रोमो जहां धैर्य ने फिर एक बार मन्नत और विक्रांत को मात दे दी है।
8: हमें धैर्य को उसके किए की सजा दिलानी है। मिस मन्नत स्पीड, मिस मन्नत स्पीड।
9: अब जो होगा ना वो तुम दोनों ने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा।
1: भाई बहुत जल्द सभी के घर बप्पा विराजने वाले हैं। ऐसे में ऋत्विक धनजानी हर बार की तरह इस बार भी अपने हाथों से अपने बापा को बना रहे हैं और इस बार उनके साथ शामिल हो गई है शगुन और रूहानी भी।

0: मक्खन मिश्री ना लाया कोई?
1: मक्खन मिश्री नहीं लाए हम। ये देखिए स्वयं कन्हैया जी चले आ रहे हैं।
2: ले बेटा कान्हा जी को स्नान करा दे।

0: शेख ने मनाया अपना 23rd बर्थडे। देख लीजिए बर्थडे सेलिब्रेशन का ये खास पल।
1: लड़की छेड़ रहा है।
2: ओ भाई साहब, बॉयफ्रेंड है मेरा।
0: बन गई है अभिषेक निगम और अनुपमा फेम ऋषि सक्सेना की जोड़ी, जो नजर आएंगे एक रोम कॉम मूवी ममाज बॉय में।
3: मम्मी ढूंढेगी तो तूने जिया कैसे ढूंढ ली? सही मिला, सोचा आपसे अच्छे से मिल लेगी।
4: लेकिन हमें अच्छे से क्यों मिलना है?
5: तू ही ममाज बॉय बोल के इसको भड़काता है ना साले, तेरी तूने

0: टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में गणेश उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। त्योहार की इस खुशी के बीच अवंतिका नया षड्यंत्र रचने में लगी है, जिसके लिए वो मीडिया वालों का सहारा लेना चाहती है। ऐसे में आरंभी अवंतिका के इस प्लान को कैसे नाकाम करती है, चलिए देखते हैं।
1: आरंभी के सामने आई सच्चाई।

आरएमपी की मुश्किलें। कलर्स टीवी के सीरियल डॉक्टर आरएमपी में घर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेशोत्सव का ये त्योहार। ऐसे में देखिए, आज आरएमपी भी सजी धजी है, लेकिन वो परेशान भी है क्योंकि डिंपल ने ड्रामा जो कर दिया है,

भाई आरंभी की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और आ गई एक और मुश्किल, असल में यहाँ आए हैं मीडिया वाले जो काफी गुस्सा है क्योंकि डिंपल अब तक आई नहीं है। ऐसे में इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है आरंभी, और देखिए कैसे आरंभी सभी को ये प्रेस किट दे रही है।

0: आर्मी जी डिंपल जी कहाँ गई?
1: क्या हुआ उन्हें? अच्छा एक साथ मिलकर क्यों कर रही?
2: अच्छा वो आप सब मुझे एक साथ के ही मिल गए, मैं आप लोगों के पास ही आ गई। वो एक्चुअली देखो मैं आपको ना गेंदे के फूल से एलर्जी होकर सर्व करने जा रहे थे, थोड़ा इजी फील कर रही हूँ, थोड़ा पैनिक हो गई, बट प्लीज रेस्टिंग वो 5-10 मिनट में रेस्ट करके तुरंत वापस आ जाएंगे। तब तक मैं आप लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट भिजवाती हूँ, आप लोग प्लीज नाश्ता लेकर आइए। सौंदर्य सबके लिए नाश्ता लेकर आओ, तब तक मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट्स और प्रेस गिफ्ट भी देती हूँ। सौंदर्य
3: भाई प्रेस किट बांटते हुए आरंभ भी लड़खड़ा कर गिर जाती है और साथ ही ये किट भी गिर जाती है। और इसमें भी एक ट्विस्ट है, इन सभी प्रेस किट्स में अवंतिका ने जो पैम्पलेट रखा है उसमें टंडन परिवार तो है लेकिन तस्वीर विश्वास अवंतिका और उनकी बच्ची की है जो आरंभ भी देख नहीं पाती और सभी मीडिया वालों को ये किट बांट देती है।
0: गेंदे फूल की सजावट देखकर डिंपल जी ने जो बवाल किया ऐसा लग रहा है जैसे टंडन परिवार कोई गहरा राज छुपा रहा है।
2: देखिए छोटी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप सब लोग हमारे यहाँ गणपति मनाने आए हैं ना, त्योहार तो ऐसे तहकीकात नहीं करते हैं। सर बता चुकी हूँ आपको, उनके बस सर में दर्द हो रहा था, आप लोग प्लीज रेस्ट में रहें।
3: भाई पहले तो आरंभ भी ये नहीं देख पाती लेकिन दोबारा उसका पैर लड़खड़ाता है और वो गिरती है, तब उसके सामने सारा सच आ जाता है कि कैसे अवंतिका ने ये पैम्पलेट्स बदल दिए हैं और आरंभी और वियान की जगह अवंतिका ने खुद की और अपनी बच्ची की फोटो लगा दी है। ऐसे में अब आरंभी को इन प्रेस किट्स को वापस लेना है, इसीलिए देखिए कैसे वो इन प्रेस किट्स पर जूस गिरा देती है और बहाना कर ये प्रेस किट्स इनसे वापस ले लेती है।

0: दीदी को सबके लिए जूस तैयार। आपको लगी तो नहीं ना? सॉरी वो
1: सॉरी

0: एमपी ने प्लान तो अच्छा किया था कि ताकि सच सबके सामने ना आए, लेकिन बाकी घर वालों ने आकर प्लान बिगाड़ दिया और काम खत्म करने के इरादे से सभी को प्रेस किट फिर से बांट दी, जिसमें वही पैम्पलेट है यानी विश्वास अवंतिका और उनकी बच्ची का। ऐसे में अब देखना होगा कि आरंभी क्या करेगी ताकि सच मीडिया वालों के सामने ना आए। वहीं दूसरी तरफ विश्वास भी त्योहार में आ गया है और ऐसे में विश्वास के पापा और आरंभी भी उसे चेतावनी दे रहे हैं कि त्योहार में कोई ट्विस्ट का ब्रेक ना वो लगाए। अब देखना होगा कि आरंभी कैसे इन सभी मुश्किलों का डटकर सामना करती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं अभिरा और अरमान अपनी प्यारी बेटी मायरा को लेकर फिक्रमंद है, क्योंकि मायरा जल्द ही एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद पढ़ने के लिए घर से दूर जाने वाली है। ऐसे में अभिरा और अरमान अकेली बेटी के घर से बाहर जाने को लेकर अंदर से थोड़े डरे हुए हैं। चलते हैं सीरियल के सेट पर

0: बढ़ रही हैं अभीरा की परेशानियां, हो रही है मायरा और कबीर में गहरी दोस्ती। क्या घर वाले और अरमान अभीरा बन पाएंगे मायरा के दोस्त? स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों अभीरा अपनी बेटी मायरा का ख्याल कुछ ज्यादा ही रखने लगी है, हर पल उसकी खबर रखना चाहती है। ऐसे में आज देखिए कैसे अभीरा रसोई में खाना पैक कर रही है, वो भी मायरा के लिए, और मायरा अपनी दोस्त के यहाँ पढ़ने के लिए गई है। ऐसे में देखिए कैसे अभीरा ने उसकी दोस्त की मम्मी को कॉल लगा दिया एड्रेस जानने के लिए, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे तो उस कॉल के जरिए सरप्राइज मिल जाएगा।
1: हेलो दीपाली जी, मैं अभीरा बोल रही हूँ।
2: हाय अभीरा जी, कैसी
1: हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और होपफुली आपको मेरे हाथ का बनाया खाना भी अच्छा लगेगा जो मैं आपकी फैमिली के लिए और मायरा के लिए भेजना चाह रही हूँ। मुझे बस अपना एड्रेस बता दीजिए प्लीज।
2: श्योर अभीरा जी, पर मायरा के लिए खाना आप यहाँ क्यों भेज रही?
1: वो आपके घर आई है इसलिए।
2: नहीं तो मायरा यहाँ नहीं।
1: आई एम सो सॉरी, वो कोई कंफ्यूजन हो गया था दीपाली जी। बाय, आई एम सो सॉरी।
0: भाई अभीरा तो ये सोचकर हैरान हो रही है कि आखिर मायरा ने उसे झूठ क्यों कहा। इससे पहले कि वो मायरा को कॉल करके पूछ पाती, वहाँ पर आ जाती है दादी सा, और देखिए कैसे दादी सा ना सिर्फ वो कॉल कट करती है बल्कि अभीरा को ये भी बताती है कि मायरा घर पर ही आ रही है। ऐसे में अभीरा अपनी परेशानी दादी सा को बताती है और दादी सा अभीरा को हल देती है।
1: मेरी मम्मा को, आपकी मम्मा को, आपको, इस दुनिया की हर बेटी की मम्मा को मेरी तरफ से सल्यूट है। पता नहीं आप लोगों ने अपने बच्चे को कैसे बड़ा किया, क्योंकि क्लियरली मैं तो फेल हो रही हूँ। ये तुम्हें किसने कह दिया? देखिए ना, मैं कितनी कंट्रोलिंग से बनती जा रही हूँ दादी से।
3: ऐसा नहीं है बच्चा,
1: एंट्रेंस एग्जाम के लिए उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही हूँ, पर ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उसका करियर बन जाए।
3: हाँ ठीक है, लेकिन करियर बनाने के लिए उसे अभी सही फैसला लेना होगा।
1: एग्जैक्टली,
3: तो तुम लोग बिल्कुल सही कर रहे हो।
1: नहीं दादी साहब, मैं और अरमान कुछ तो गलत कर रहे हैं, तभी तो हमारी बेटी हमसे झूठ बोल रही है।
3: मायरा एक अडल्ट हो गई है, और अडल्ट के फैसलों की जिम्मेदारी उसकी खुद की होती है, किसी और की नहीं, माँ बाप की भी नहीं।
0: भाई यहाँ तो दादी सा अभीरा को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें क्या पता कि वही मायरा कबीर संग अपना फोटोशूट करवा रही है, वो भी गार्डन में पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर। खैर इन दिनों मायरा कबीर के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है, क्योंकि कहीं न कहीं वो कबीर को पसंद करने लगी है।

0: नाइस।
1: वहीं दूसरी ओर अरमान अभीरा बेहद परेशान है क्योंकि उनकी बेटी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहती है और ऐसे में अरमान अभीरा उसे देना चाहते हैं सरप्राइज। बस फिर क्या, घर वाले अरमान अभीरा को अपनी राय मशवरा दे रहे हैं कि उन्हें अपनी बेटी मायरा को क्या देना चाहिए। ऐसे में अरमान और अभीरा सबके राय को सुनते हैं लेकिन उनका मन कहीं नहीं मानता।
2: कोई और आइडिया है?
3: चुना हूँ उसे अच्छा सा सोने का सेट।
4: माँ, वो सोने का सेट मुझे वापस करके खुद सोने चली जाएगी और बोलेगी इसे आप ही रखो। और आप लोग क्या इतने बोरिंग सजेशन दे रहे हो? फिरोजमान से इंस्पायर हो रहे हो क्या?
5: बेस्ट आइडिया, मतलब एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद में वो ज्वाइनिंग थोड़ी करेगी, पढ़ाई थोड़ी करेगी, आराम से घूम के आएगी, है ना?
4: नहीं,
6: आप ना उसे हेयर कलर कराने की परमिशन देते ना, गोल्डन, ब्लू, पर्पल, जो भी चाहे वो।
4: मैम, मुझे अपने मंकी के इतने प्यारे बाल खराब नहीं करने हैं। नो नो नो, बुआ साहब, एनी सजेशन? हमेशा हंसती रही, हमें हंसाती रही, हमें खुश रखता, हमारी बात मानी, हमें प्राउड फील करता। सच में वो एक नंबर की स्वीट हूँ क्यूटो के साथ। और ये गिफ्ट सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए इसका गिफ्ट नहीं होगा, ये एक मैसेज होगा दैट वी लव एंड वी ट्रस्ट।
1: अब अरमान अभीरा क्या चाहते हैं घर वाले समझे न समझे, लेकिन दादी सा समझ गई हैं। तभी तो देखिए कैसे दादी सा ने दोनों को सुझाव दे दिया है मायरा को कार देने का। और दादी सा की ये बात सुनकर अभीरा और अरमान दोनों खुश हो गए हैं और उन्हें दादी का ये सुझाव बहुत पसंद आया है।
5: I'm sorry चाचा सा, पर आपके अलावा हम सबको उस एज में पेरेंट्स का भरोसा चाहिए। और इस गाड़ी के जरिए हम उसे बता सकते हैं कि भी ट्रस्ट है।
4: और वैसे भी इतना महंगा गिफ्ट कभी हमने उसे दिया भी कहा?
5: हाँ, वो उसको खूब अच्छे से संभालेगी और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी
4: और वो इंडिपेंडेंटली घूम फिर भी पाएगी और अपनी ही गाड़ी होगी तो उसके पास ज्यादा फ्रीडम भी होगा।
1: खैर, अरमान और अभीरा मायरा के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं काजल को डाउट हो गया है और वो नहीं चाहती कि बच्चों को इतनी छूट दी जाए क्योंकि बच्चे उसका गलत फायदा उठाते हैं। खैर, ये तो आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा कि मायरा अपने मम्मी पापा के विश्वास पर खरी उतरेगी या फिर उसके कदम डगमगाएंगे।
7: मंकी पर ट्रस्ट करो अभीरा, ये क्या कर रही है, पढ़ रही है या नहीं, ये बार बार मत पूछो।
8: नहीं, मैं बस
7: मायरू समझदार हो रही है और समझदार पे भरोसा करते हैं।
1: मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
9: ओ मिस्टर कान्हा, मैंने अपना एंट्रेंस एग्जाम मिस कर दिया।
10: व्हाट, तुम्हारा एग्जाम आज था, तुम यहाँ क्यों आई?
11: सीरियल तू ही रे में चल रही है दही हांडी प्रतियोगिता, जहाँ संजोग भी गोविंदा बन दही हांडी फोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ सेलिब्रेशन के बीच घर में संजय की भी वापसी हो गई है। ऐसे में क्या होगा जब संजय और वृंदा की मुलाकात होगी, चलिए देखते हैं।

जी टीवी के सीरियल तू ही रे मेरे दिल में आज स्वाति के ससुराल में दही हांडी का प्रोग्राम है, जहां पर पूरा परिवार बेहद खुश नजर आ रहा है दही हांडी के लिए। और देखिए कैसे चल रही है नाचते गाते तैयारी दही हांडी को लगाने की, और उसमें वृंदा भी सबका साथ दे रही है, मदद कर रही है। इसी बीच दही हांडी भी लगकर तैयार है और दौर पूरा परिवार जमकर खुशी से झूम रहा है। संजोग परिवार के साथ ताल से ताल मिला रहा है और बेहद खुश नजर आ रहा है।

इसी बीच संजोग चाहता है कि संजय भी दही हांडी के त्योहार पर आ जाए। ऐसे में वो लगा देता है संजय को कॉल, ये जानने के लिए कि आखिर संजय इस दही हांडी पर आ पाएगा या नहीं। खैर, परिवार वाले तो संजोग को भी इस घर का बेटा ही मानते हैं, इसीलिए समय ना बीत जाए ऐसे में दादाजी चाहते हैं कि दही हांडी संजोग फोड़ दे। बस फिर क्या, संजोग भी अपनी तैयारी कर लेता है दही हांडी फोड़ने की। इसी बीच वहाँ पर वृंदा भी आ जाती है और उसके हाथों में लस्सी से भरा ग्लास है, जिसे देखकर संजोग वो लस्सी फटाफट पी लेता है ताकि उसे ताकत मिले और वो दही हांडी फोड़ने के लिए ऊपर चढ़ जाए। ऐसे में वृंदा तो वहाँ से निकल जाती है और संजोग दही हांडी फोड़ने के लिए ऊपर भी पहुँच जाता है कि तभी संजोग की नज़र पड़ जाती है संजय पर। और देखिए कैसे ऐन मौके पर संजय भी पहुँच जाता है अपने दोस्त संजोग का साथ देने के लिए दही हांडी फोड़ने में।

अब जिसका इंतजार था उसका इंतजार तो पूरा हो गया है। संजय के आने पर सभी परिवार वाले बेहद खुश नजर आ रहे हैं और देखिए कैसे संजय, संजोग और पूरा परिवार जमकर नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं इस त्योहार की। लेकिन यहाँ पर वृंदा मौजूद नहीं है।

0: खैर अब संजय की वापसी हो गई है, यानी जल्द ही संजय और वृंदा का आमना सामना भी होगा। देखना होगा जब वृंदा को ये पता चलेगा कि जिसे वो संजय समझ रही थी असल में वो संजय का दोस्त संजोग है, तब कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा। क्योंकि जल्द ही संजय और स्वाति की शादी जो होने वाली है, जो वृंदा को देगी जोरदार झटका। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में छटने लगे हैं सस्पेंस के बादल। ऐसे में जहां जल्द ही रमेश को लेकर वीर की तलाश पूरी होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ भूमिका के आगे उसके पति राज का सच आ चुका है। अब अपने पति को बेनकाब करने के लिए भूमिका क्या प्लानिंग करती है, चलिए देखते हैं।
0: शुरू हुई वीर की तलाश। भूमि हुई राज के खिलाफ। क्या राज को हुआ भूमि पर शक। जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में वीर के हाथों लग गया है उस व्यक्ति का पहचान पत्र जिसको वीर तलाश कर रहा था। ऐसे में वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उसने इस व्यक्ति को इससे पहले और कहां देखा था। इतना ही नहीं, वो तो उस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उसे उसकी जानकारी मिल नहीं पा रही। इसी बीच बात करते हुए वीर के दो दोस्त भी आ जाते हैं, जो एक ग्रुप चैट के बारे में बातें करते हैं। बस फिर क्या, वीर को मौका मिल जाता है उस व्यक्ति को ढूंढने का। ऐसे में वो अपने दोनों दोस्तों की मदद लेता है और वो पहचान पत्र की तस्वीर उन्हें दे देता है।
2: और साथ में लिख देना हमारे नंबर के साथ कि अगर ए के बारे में कुछ पता चले तो सीधा आपका काम है, ठीक है? जे देखो हमारा बुलावा आ गया, चलो।
0: फिलहाल तो वीर को उस व्यक्ति के बारे में कब और कैसे पता चलेगा, ये तो आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो भूमिका, उसे आज मौका मिल गया है अपने पति राज की जासूसी करने का। ऐसे में देखिए कैसे उसकी गैर मौजूदगी में अपने फ्रेंड कुणाल की मदद से वो उसका लैपटॉप ओपन करने की कोशिश कर रही है, और तो और अपना नाम डालते ही वीर का लैपटॉप ओपन भी हो जाता है। इतना ही नहीं, ओपन होते के साथ ही उसके सामने वो वीडियो आता है जिसमें राज ने सचिन को धक्का दिया था। ये देखकर भूमिका हैरान हो जाती है, और तो और उसे यकीन हो जाता है कि जो भी कुणाल कह रहा था वो सही है।
3: ये बहुत मैनिपुलेटिव है भूमिका, हर आपको एक पेन ड्राइव में संभाल के रख लो, ताकि अगर राज ये फाइल यहाँ से डिलीट भी कर दे तो हमारे खिलाफ हमारे पास कोई एविडेंस हो उसके पास।
0: कुणाल के कहे अनुसार भूमिका ने बड़ी ही सावधानी से वो वीडियो एक पेन ड्राइव में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी अचानक भूमिका को आ गई आवाज गाड़ी की, क्योंकि राज घर लौट आया है। बस फिर क्या, उसके चलते भूमिका का डर बढ़ने लगा, क्योंकि जल्द से जल्द वो सारा वीडियो उस पेन ड्राइव में लेना चाहती है। फिलहाल तो ऊपर वाला भूमिका के साथ है। तभी तो देखिए कैसे राज के आने से पहले ही भूमिका ना सिर्फ वो पेन ड्राइव निकाल लेती है, बल्कि उसी चेयर पर सोने का ड्रामा करती है, ताकि राज को ऐसा लगे कि उसका इंतजार करते हुए भूमिका सो गई है। ऐसे में राज को भी वही फील होता है, इसीलिए वो भूमिका के सर पर हाथ रखकर उसे सहलाने की कोशिश करता है, और फिर भूमिका उठने का ड्रामा करती है। इतना ही नहीं, वो तो राज से बहाना कर वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसका पैर टेबल से टकरा जाता है, और तो और वो पेन ड्राइव भी गिर जाता है। इससे पहले कि राज उसे संभालने के लिए आगे बढ़ता, भूमिका बड़ी ही चालाकी से वो पेन ड्राइव उठा लेती है। भाई मानना पड़ेगा, आज तो भूमिका ने जंग जीत ली। खैर वो पेन ड्राइव लेकर जाने लगती है कि तभी राज उसे टोक देता है।
4: एक बार सोने से पहले
0: असल में भूमिका वो पेनड्राइव मंदिर में छिपाने के लिए आगे बढ़ रही है। हालांकि राज की नज़र अब भी भूमिका पर ही टिकी हुई है, क्योंकि राज देखना चाहता है कि आखिर भूमिका करना क्या चाहती है। खैर, अब भूमिका उसमें कामयाब हुई कि नहीं, ये तो आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल तो राज जैसे ही अपना लैपटॉप ओपन करता है, उसे शक हो जाता है। अब देखना होगा कि अपने शक को दूर करने के लिए राज और कौन से कदम बढ़ाएगा। क्या उसी के चलते भूमिका की जान पर बात आ जाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम दिखाते हैं आपको मनोरंजन जगत की रॉकिंग और शॉकिंग न्यूज। तो पेश है आज की रॉकिंग खबरें।
4: बीती शाम मनाया गया हुनर हाली का जन्मदिन, जहां पर नजर आई टीम रिमझिम। इसके अलावा इस बर्थडे पार्टी के खास मेहमान बने चाहत पांडे, जूही परमार, अविनेश रेखी, पूजा गौर, तरुण खन्ना जो नजर आए अपनी वाइफ स्मृति खन्ना संग। इसके अलावा रिधिमा तिवारी, टोनल बिष्ट और मीट ब्रोस ने भी पार्टी में शामिल होकर चार चांद लगा दिए।

0: रहा हूँ, उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। किस सबूत के बारे में बात कर रहे हैं लोग?
1: बहुत इंतजारों के बाद फाइनली आ गया है अजय देवगन की आने वाली फिल्म दृश्यम द कंक्लूजन का ट्रेलर। आइए डालते हैं इस पर एक नजर कि आखिर ये कहानी किस तरीके से अपने असली अंजाम तक पहुंचेगी।
2: पर दिल सब सच बता देता है। क्या मैं एसपी क्राइम ब्रांच हूँ? हाँ, हार्ट बीट एकदम नॉर्मल। तेरे साथ ट्राई करते हैं। क्या तूने बॉडी सेवियो से ली थी?
3: सर, हार्ट अटैक लो हो जाए।
0: अब ये खेल दिमाग का नहीं, नसीब का बन चुका है।
4: वन किस, वन फैमिली, वन पर्सन।
2: तेरी इस पूरी क्रिमिनल फैमिली को सबके सामने ऐसे घसीट के लेके जाऊंगा ना कि कोई दोबारा ऐसा करने की सोचे भी तो उसकी रूह कांप उठे।
5: सास बहू और बेटियां का मजेदार सफर आज यही खत्म होता है। अब कल फिर होगी आपसे मुलाकात और आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन जगत के सुहाने सफर पर, जहां हम आपको दिखाएंगे आपके फेवरेट सीरियल्स, ओटीटी और सितारों से जुड़ी मजेदार न्यूज। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत और आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: फतेहपुर शेखावटी में भादर मेले का आयोजन, मंदिर का भव्य श्रृंगार, राजस्थान समेत करीब 12 राज्यों के लोग मेले में होंगे शामिल। चमोली में धूमधाम से जारी है मां नंदा की रात यात्रा, जगह जगह लोक गीतों से हो रही है यात्रा का स्वागत, पहाड़ी संस्कृति के दिख रहे हैं। गणेश उत्सव को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, सभी गणेश पंडालों में मुफ्त होगी बिजली सप्लाई, भक्तों में खुशी की लहर। ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर राजधानी में तैयारियां तेज, दिल्ली के लगभग सभी होटलों में बुकिंग फुल, चांदनी चौक में भी मेहमानों के लिए खास तैयारियां। ओडिशा के बालासोर जिले के जंगल में मिले 5 ओरैंगउटान, वन विभाग की टीम ने किया उन्हें रेस्क्यू, नंदन कानन में रखा गया।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
7: भव्य झांकियों और मंदिरों की सजावट के साथ गणपति के रंग में रंगा पूरा देश, कहीं हो रहे विशाल पंडाल तैयार तो कहीं बप्पा की भव्य प्रतिमा आकर्षण का केंद्र। पाली में गणपति की मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे हैं कलाकार, इको फ्रेंडली रंगों का कर रहे हैं इस्तेमाल। गोबर मिट्टी और पीओपी से बनाई जा रही है गणपति की मूर्तियां, पर्यावरण बचाने की दिशा में यह अहम कदम। हर आकार और स्वरूप के विघ्नहर्ता की मूर्ति का हो रहा है निर्माण, घरों के लिए खास तौर पर बनाई जा रही है छोटी और सुंदर मूर्तियां। दक्षिण भारत में भी बप्पा के आगमन की तैयारियां, आंध्र प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नारा लोकेश का ऐलान, गणेश उत्सव के दौरान पूरे प्रदेश में गणेश पंडालों को मिलेगी फ्री बिजली। गुजरात के आनंद में बप्पा का जोरदार स्वागत, राजा गणराज 2026 के आगमन यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ देखने को मिली कई आकर्षक प्रस्तुतियां, बच्चों के लिए अलग अलग लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर्स भी बने यात्रा का हिस्सा। यात्रा में भक्ति के साथ रोमांच और शौर्य का भी शानदार संगम, छावा एक्ट ने लोगों में भरा जोश, कलाकारों ने पारंपरिक शस्त्र कला का किया प्रदर्शन। विघ्नहर्ता की शानदार आगमन यात्रा में महिला शक्ति की विधि की झलक, महिलाओं ने पेश की कई रोमांचक प्रस्तुतियां। हर तरफ सुनाई दिया गणपति बप्पा मोरिया का जय घोष, गणपति भक्ति के रंग में रंगा नजर आया पूरा शहर। राजस्थान के सीकर में बिखरे उत्सव के रंग, शानदार भादो अमावस्या मेले का हुआ भव्य शुभारंभ। राजस्थान समेत एक दर्जन से अधिक प्रांतों के लोग पहुंच रहे हैं फतेहपुर शिखावटी बिंदल कुलदेवी मंदिर में लगे उत्सव में शामिल। इस उत्सव पर मां के दरबार की फूलों से हुई भव्य सजावट, भजन कीर्तन पर थिरकती नजर आई महिलाएं। 11 सितंबर तक आयोजित होगा 5 दिवसीय भादो अमावस्या उत्सव मेला, देशभर से जुट रहे हैं भक्त। इस मेले में अपनी कुलदेवी को भोग लगाते हैं भक्त, पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु मां को लगाएंगे 56 भोग। चमोली के हिमालयी अंचल में दिखी लोक आस्था संस्कृति और परंपरा की झलक, धूमधाम से जारी मां नंदा की बड़ी जात यात्रा। जगह जगह लोक गीतों से हो रहा भव्य यात्रा का स्वागत, पहाड़ी संस्कृति के दिख रहे रंग। कुरुड़ सिद्धपीठ मंदिर से विशेष पूजा अनुष्ठान के बाद अपने अपने निर्धारित पड़ावों के लिए कैलाश की ओर रवाना हुई बधाण की नंदा, दशोरी की नंदा और बंड की नंदा की डोलियां, जगह जगह श्रद्धालु कर रहे भव्य स्वागत। गांव-गांव पहुंच रही है डोलियां, उनके स्वागत में लोक गीतों जागरों और ढोल दमाओं के थाप से पहाड़ की वादियां गूंज रही हैं। पहाड़ में केवल देवी नहीं बल्कि घर की बेटी और बहन के रूप में पूजी जाती है मां नंदा। यही वजह है कि डोली के गांव में पहुंचते ही महिलाएं गा रही हैं पारंपरिक मंगल गीत और जागरण। जम्मू कश्मीर में फिर लगा आस्था का मेला, डोडा जिले की भद्रवाह घाटी में वार्षिक 3 दिवसीय प्राचीन कैलाश कुंड यात्रा शुरू। इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल, भद्रवाह घाटी के आराध्य देवता माने जाने वाले भगवान वासुकी नाग को समर्पित सदियों पुरानी यात्रा। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में स्थित कैलाश कुंड झील में भक्त करेंगे स्नान।

10 सितंबर से शुरू होगी वापसी यात्रा। 15 सितंबर से शुरू होने जा रहा चार धाम यात्रा का दूसरा चरण, प्रशासन और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तैयारियां तेज। दूसरे चरण के लिए फिर से शुरू हो रही है केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं, जिसके लिए बुकिंग प्रक्रिया जारी। महाराष्ट्र में पोला पर्व की तैयारी तेज, किसान 364 दिन साथ देने वाले अपने बैल को एक दिन का खास सम्मान देते हैं। करीब डेढ़ महीने से बारिश नहीं होने से किसान परेशान है, फसलों पर संकट है, फिर भी किसान पोला मनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अकोला के बाजार बैलों के श्रृंगार के सामान से सज गए, रस्सी घुंघरू वाले पट्टे झूम और झूल खरीदने किसान पहुंच रहे हैं। पोला के दिन बैल से खेत में कोई भी काम नहीं कराया जाता है, किसान इस दिन अपने मेहनती साथी को पूरा आराम और सम्मान देते हैं। आर्थिक परेशानी के बावजूद किसान बैल का पोला धूमधाम से मनाया जाएगा, बैल को सजाकर पूरन पोली खिलाई जाएगी और उसके स्वस्थ रहने की कामना होगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों के लिए तोहफा, अब 70 साल की उम्र तक सरकारी डॉक्टर्स दे सकेंगे अपनी सेवाएं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ग्रामीण महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर, जैविक अचार जैम और मुरब्बा बनाकर कमा रही है जीविका। कृषि विभाग और स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से महिलाएं पारंपरिक नुस्खों और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, हो रही अच्छी आमदनी। कश्मीरी कारीगर संजोए हुए हैं वाद्य यंत्र बनाने की पारंपरिक और प्राचीन कला, पिछले 32 सालों से हाथ से बना रहे हैं रबाब संतूर। हर वाद्य यंत्र को बनाने में कारीगर मुश्ताक अहमद डार को लगते हैं लगभग 2 महीने, पूरे भारत से मिलते हैं उन्हें ऑर्डर। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय पोषण माह का किया शुभारंभ, बच्चों के पोषण पर दिया जोर। योगी आदित्यनाथ ने युवा को बताया देश की असली ताकत, कहा मां का स्वास्थ्य है स्वस्थ बच्चे की नींद। इस मौके पर सीएम ने नवजात बच्चों का कराया अन्नप्राशन, राधा कृष्ण के वेशभूषा में आए बच्चों को किया दुलार। देहरादून में ज्ञान गंगा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल हुए। आयोजन में सीएम धामी ने शिक्षकों को सम्मानित किया, मेधावी विद्यार्थियों को दी छात्रवृत्ति। 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, श्रीलंका में बेली ब्रिज लगाने के लिए तैनात भारतीय सेना के इंजीनियर टास्क फोर्स से की बात। संवाद के दौरान भारतीय सेना के इंजीनियर टास्क फोर्स के कार्यों और योगदान की सराहना की, बढ़ाया उनका हौसला। कोलंबो में राजनाथ सिंह ने श्रीलंका के नेता सजित प्रेमदासा के साथ की द्विपक्षीय बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पिछले 38 वर्षों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री का यह पहला आधिकारिक दौरा, दोनों देशों के बीच रक्षा रणनीतिक और समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना इसका उद्देश्य। आज भारत जापान की वायु सेनाओं का वीर गाजन 2026 युद्धाभ्यास, 22 सितंबर तक दोनों देशों के लड़ाकू विमान आसमान में दिखाएंगे अपनी ताकत। इस अभ्यास में भारत के तेजस सुखोई 30 और राफेल लड़ाकू विमान होंगे शामिल, वहीं जापान अपने F-2A फाइटर जेट के साथ इस अभ्यास में शामिल। दोनों देशों के सैनिक मिलकर कर रहे हैं युद्ध की तैयारी, मिशन प्लानिंग और सुरक्षा पे अभ्यास, वीर गाजन से और मजबूत होगी भारत जापान की सैन्य दोस्ती। राजस्थान के पोखरण में 14 से 16 सितंबर तक होगा ड्रोनाथॉन 2026, वायुसेना के इस कार्यक्रम में देश की कंपनियां नए ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम दिखाएंगे। ड्रोनाथॉन में निगरानी, झुंड में उड़ने वाले ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर जोर रहेगा, वायुसेना इन तकनीकों को परखकर देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। एप्पल का सरप्राइज और शाइन इवेंट, आज आईफोन 18 प्रो समेत कई प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। कंपनी के पहले फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा के आने की भी उम्मीद, एप्पल में भारी उत्साह। कंपनी का अब तक का सबसे महंगा स्मार्टफोन हो सकता है फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा, भारत में करीब 2.5 लाख रुपए इसकी कीमत रह सकती है। कई अन्य बड़े प्रोडक्ट्स भी उतारने की तैयारी में एप्पल, एप्पल वॉच सीरीज 12 और नई एप्पल वॉच अल्ट्रा के शामिल होने की उम्मीद है। टिम कुक के पद छोड़ने के बाद नए सीईओ बने जॉन टर्नर्स का होगा पहला की नोट, भारतीय समय अनुसार आज रात 10:30 बजे शुरू होगा इवेंट। बॉक्स ऑफिस पर छह कालीन भैया मिर्जापुर द मूवी की भारत में नेट कमाई 100 करोड़ रुपए।

0: प्यार विश्वासघात की कहानी लेकर आ रही है फिल्म लव लॉटरी, अक्षय ओबेरॉय की सस्पेंस थ्रिलर का ट्रेलर जारी। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान का तीसरा गाना मैं तो हैवान नहीं हूं रिलीज। इस गाने को प्रीतम ने कंपोज किया है जबकि इसके बोल कुमार ने लिखे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप
सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिर पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के

उसके पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं, जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं, उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती। ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र। ये गंधपुरा पत्र में 85-99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग। इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल। बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है ये मेजनकरी तेल। इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु। ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल। ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू। इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन। अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस
आयरन जैसे पोषक

0: तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अभ्रक भस्म। यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है। यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: कौन सा ग्रह त्वचा की समस्याएं सबसे ज्यादा देता है? किन ग्रहों की वजह से त्वचा पे झुर्रियां पड़ जाती हैं? अलग अलग ग्रहों का त्वचा की समस्या में क्या है योगदान और क्या है ज्योतिष के अनुसार इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: फतेहपुर शेखावटी में भादव मेले का आयोजन, मंदिर का भव्य श्रृंगार, राजस्थान समेत करीब 12 राज्यों के लोग मेले में होंगे शामिल। चमोली में धूमधाम से जारी मां नंदा की राज जात यात्रा, जगह जगह लोक गीतों से हो रहा यात्रा का स्वागत, पहाड़ी संस्कृति के दिख रहे रंग। गणेश उत्सव को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, सभी गणेश पंडालों में मुफ्त होगी बिजली सप्लाई, भक्तों में खुशी की लहर। ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर राजधानी में तैयारियां तेज, दिल्ली के लगभग सभी होटलों में बुकिंग फुल, चांदनी चौक में भी मेहमानों के लिए खास तैयारियां। ओडिशा के बालासोर जिले के जंगल में मिले 5 ओरैंगुटान, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, नंदन कानन में रखा गया।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ।
9: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार, और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। कल्याणकारी और पुण्यदायी है भाद्रपद की पिठोरी अमावस्या, इसे कुशाग ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या को श्राद्ध अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल मान्यता है कि इस दिन पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए दान पुण्य करना काफी ज्यादा शुभ होता है। माना तो ये भी जाता है कि इस तिथि पे स्नान दान पितृकर्म और कुश इकट्ठा करने का विधान होता है। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन पूर्वज स्वर्ग से धरती पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए इस दिन पूर्वजों के लिए प्रार्थना की जाती है। तो चलिए आज जानेंगे कि कैसे करें पिठोरी अमावस्या पर पूर्वजों को प्रसन्न और क्या है इस दिन का विधान।

0: परम फलकारी है भाद्रपद की अमावस्या। पूर्वजों की मुक्ति के लिए कीजिए तपस्या। संतान की मंगल कामना का पावन अनुष्ठान। कल्याणकारी है अमावस्या पर स्नान, ध्यान और दान। हर माह में आने वाली अमावस्या की तिथि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। भाद्रपद में पड़ने वाली अमावस्या की तिथि को पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। पिठोरी अमावस्या को कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर कुशा को जमीन से निकालकर रख लेते हैं और पूरे साल भर इसका ही इस्तेमाल पूजा पाठ या अन्य संस्कारों में करते हैं। इसीलिए इसे कहीं कहीं कुश अमावस्या भी कहते हैं।
1: कि अमावस्या का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है कुश ग्रहणी अमावस्या। कुश अर्थात पवित्र घास, जो से कुश भी कहते हैं, दर्भ भी कहते हैं, डाब भी लोग अलग अलग भाषाओं में कहते हैं, जिसे वैदिक कर्मकांड में श्राद्ध, तर्पण, यज्ञ और अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। परंपरा में भाद्रपद अमावस्या के दिन वर्ष भर के धार्मिक कार्यों के लिए कुश ग्रहण या कुश को संग्रह करने का विधान बताया गया है। वह इसी दिन यानी इसी अमावस्या को किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है कुशोद पाटनी अमावस्या।
0: भाद्रपद की अमावस्या तिथि को लेकर किसी तरह का भ्रम ना हो, इसीलिए हम आपको इस तिथि पर कब करना है पूजन और तर्पण ये भी बताते हैं। पंचांग की तिथि कहती है कि भाद्रपद अमावस्या की तिथि 10 सितंबर को सुबह 10:33 से आरंभ होगी। ये तिथि 11 सितंबर को सुबह 8:56 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर भाद्रपद अमावस्या 11 सितंबर को होगी, इसीलिए भाद्रपद अमावस्या पर स्नान, दान और पितृकर्म 11 सितंबर को करें। लेकिन पिठोरी व्रत के लिए प्रदोष व्यापिनी अमावस्या का महत्व माना गया है। 10 सितंबर की शाम प्रदोष व्यापिनी अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। इसी समय पिठोरी देवी, सप्त मातृका और 64 योगियों के पूजन की परंपरा है।
1: पिठोरी अमावस्या 10 सितंबर गुरुवार को है। अमावस्या तिथि 10 सितंबर को सुबह 10:33 के समय से प्रारंभ होकर के 11 सितंबर को सुबह 8:56 तक रहेगी। इस दिन पवित्र नदी, सरोवर या तीर्थ में स्नान करके भगवान का स्मरण करना, पितरों के निमित्त तर्पण करना और सामर्थ्य के अनुसार दान करना शुभ माना जाता है।
0: तो देखा आपने, अमावस्या की तिथि तो एक ही है, लेकिन पूर्वजों के निमित्त संस्कार और संतान की मंगल कामना के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान का समय अलग अलग बताया गया है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि जब भी माह में अमावस्या की तिथि आती है तो इस तिथि पर पूर्वजों की मुक्ति का जतन किया जाता है। लेकिन भाद्रपद की अमावस्या पर संतान की मंगल कामना के लिए भी ईश्वर के समक्ष अर्जी लगाने की परंपरा है।
1: यानी पिठोरी का जो नाम है, इसका संबंध आटे से या अनाज के आटे से बनाई जाने वाली प्रतीकात्मक आकृतियों से जुड़ा जाता है। परंपरा में महिलाएं इस दिन पिठोरी देवी यानी 64 योगिनियों और संत मातृकाओं की पूजा करती हैं। विशेष रूप से माताएं अपने बच्चे के स्वास्थ्य, सुख, सुरक्षा, दीर्घायु की कामना से ये व्रत करती हैं। इसलिए यह अमावस्या मातृशक्ति और संतान सुरक्षा से भी विशेष रूप से जुड़ी हुई है।
0: माना जाता है कि पिठोरी अमावस्या पर पिठोरी माता की पूजा संतान की सुख समृद्धि, दीर्घायु और परिवार की मंगल कामना के लिए करने की परंपरा है। चलिए आपको बताते हैं कि पिठोरी अमावस्या पर माताएं कैसे करें अपना व्रत। पिठोरी अमावस्या व्रत की पूजा विधि। पिठोरी अमावस्या पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, सूर्य देव को अर्घ दें, पितरों के निमित्त तर्पण और दान करें। श्रीहरि और महादेव की विधि विधान से पूजा करें।
1: अमावस्या को पितरों के स्मरण और तर्पण की परंपरा बहुत प्राचीन है, शास्त्रों में है। इस दिन प्रातः स्नान करके सूर्योदय को अर्घ दें और अपने पितरों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करें, ध्यान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या तीर्थ में स्नान अवश्य करें, लेकिन ध्यान रखें तीर्थ स्नान ही अनिवार्य नहीं है। यदि तीर्थ जाना संभव न हो तो घर पर भी स्नान करके भी श्रद्धा पूर्वक भगवान और पितरों का स्मरण किया जा सकता है। इसके बाद कुश और जल के माध्यम से पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है।
0: मान्यता है कि बिठोरी माता मातृत्व और संतान की रक्षा से जुड़ी देवी है। इस दिन महिलाएं आटे से देवी की प्रतिमा बनाकर पूजा करती हैं। साथ ही सप्त मातृकाओं और 64 योगिनियों का पूजन करने की भी परंपरा मिलती है।
1: इस दिन महिलाएं संतान की सुख समृद्धि स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना से पिठोरी व्रत करती हैं। परंपरागत विधि से पिठोरी देवी यानी 64 योगिनियां और सप्त मातृकाओं का पूजन किया जाता है। आटे से प्रतीकात्मक आकृतियां बनाने की परंपरा भी बताई गई है। पिठोरी व्रत का संकल्प भी इसी भावना से किया जाता है कि मेरी संतान स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और परिवार में सुख शांति बनी रहे।
0: कहते हैं कि पिठोरी अमावस्या का व्रत करने से संतान पर देवी की कृपा बनी रहती है और परिवार में सुख शांति आती है। माना जाता है कि पिठोरी अमावस्या का व्रत करने से निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। जो माताएं इस व्रत को करती हैं, उन्हें संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आगे हम आपको भाद्रपद की अमावस्या पर पितरों की मुक्ति के लिए किए जाने वाले महा उपाय बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। माना जाता है कि पिठोरी अमावस्या की तिथि पर माताएं अपनी संतान के उज्जवल भविष्य, सुख स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से माँ दुर्गा और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि अमावस्या की तिथि पर पितरों की शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है, इसीलिए अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा का विधान भी शास्त्रों में बताया गया है।

पंचांग की गणना कहती है कि साल में 12 अमावस्या की तिथि आती है और इस तिथि को दर्श अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि चंद्रदेव का दर्शन इस तिथि पर नहीं होता,

0: आस्था कहती है कि अमावस्या की तिथि पर पूर्वज धरती पर अपने प्रियजनों के पास आते हैं, इसीलिए उनका सत्कार करने की परंपरा शास्त्रों में बताई गई है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि पितृदोष से छुटकारा दिलाने के लिए अमावस्या की तिथि पर किए जाने वाले प्रयोग अमोघ हैं। माना जाता है कि अमावस्या की तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा और दान किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन पितृलोक से पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं।
1: भाद्रपद अमावस्या हमें तीन बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती है। पहली, अपने पूर्वजों को मत भूलिए। दूसरी, मातृशक्ति और संतान के प्रति अपने दायित्व को समझना चाहिए। तीसरी, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान और सेवा करना जरूरी है। केवल अंधकार की रात नहीं अमावस्या है, बल्कि यह आत्मचिंतन, साधना, स्मरण और नए संकल्प की भी रात होती है।
0: मान्यता है कि इस दिन पितरों के पूजन, तर्पण और पिंडदान करने से जीवन में आने वाले संकटों का नाश हो जाता है। इस दिन पितरों की शांति के लिए महा उपाय करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अमावस्या की तिथि को श्राद्ध अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि भाद्रपद की अमावस्या पर वो कौन से महा उपाय हैं जिनको अपनाकर पितृदोष से छुटकारा पाया जा सकता है।

0: पेड़ में पितरों का वास माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करके जल चढ़ाएं, तिल के तेल का दीपक जलाकर पितरों का तर्पण करें, पितृ दोष निवारण के लिए पूजा करें। इस दिन मंत्रों का जाप करने से पितरों को शांति मिलती है। काले तिल का दान पितरों को शांति दिलाता है। गरीबों को अन्न का दान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। जरूरतमंदों को वस्त्र दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय को चारा खिलाने से पितर प्रसन्न होते हैं।
1: तो तर्पण करते समय अपनी परंपरा और कुल के अनुचार के अनुसार, कुल के अनुसार विधि करना सबसे उत्तम है। सरल रूप में पितरों का स्मरण करते हैं और कहा जाता है ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। इस मंत्र का या ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यः स्वधा नमः इस मंत्र का। तो इसके साथ अपने दिवंगत माता पिता या दादा दादी या नाना नानी तथा ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण अवश्य करना चाहिए।
0: शास्त्रीय मान्यता है कि स्थिति पर शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करें और भगवान शिव से पितरों के आशीर्वाद की प्रार्थना करें। माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों को शांति मिलेगी और आपका जीवन सुखमय होगा। चलिए आपको भाद्रपद अमावस्या की तिथि पर की जाने वाली कुछ परंपराओं के बारे में बताते हैं जो वाराणसी में महादेव की नगरी में किए जाते हैं। पिठोरी अमावस्या पर आप पिशाच मोचन कुंड जाकर पितरों का तर्पण कर सकते हैं। वहां पर त्रिपिंडी श्राद्ध और तर्पण करें। पिशाच मोचन कुंड पर पितृ ऋण पितृ दोष से मुक्ति मिलने की मान्यता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में इस कुंड का नाम विमलोदक तीर्थ है, जिसकी उत्पत्ति गंगा के धरती पर आने से पहले की मानी जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, लेकिन जिनके अकाल मृत्यु होती है उनको मोक्ष नहीं मिल पाता। काशी में ऐसी अतृप्त आत्माओं की मुक्ति का विधान बताया गया है। जानकार बताते हैं कि यदि आप पिठोरी अमावस्या की तिथि पर पिशाच मोचन को नहीं जा सकते तो घर पर ही अपने पितरों की मुक्ति का विधान कैसे करें, चलिए जाने।
1: मान्यता है कि इस दिन किया गया पितृ तर्पण, स्नान, दान, जप और साधना विशेष फलदायी होती है। और सबसे खास बात, संतान की रक्षा और उसकी दीर्घायु की कामना महिलाएं इस दिन विशेष कर करती हैं। दर्शकों, कुछ केवल एक घास नहीं मानी जाती, बल्कि वैदिक कर्मकांड में इसका विशेष स्थान है। आप गरुड़ पुराण पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो आप समझेंगे कि गरुड़ पुराण में किस तरह से कुछ के महत्व को बताया गया। इसलिए तर्पण, श्राद्ध और धार्मिक अनुष्ठानों में कुछ का प्रयोग किया जाता है।
0: अमावस्या की तिथि पर सुबह उठकर स्नान करें। तर्पण के लिए साफ जल में काले तिल और कुश का प्रयोग करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का स्मरण करते हुए जल अर्पित किया जाता है। कुशा से दिया गया जल पितरों को प्राप्त होता है। भाद्रपद अमावस्या को कुश ग्रहण करने की परंपरा है, इसीलिए इस तिथि को कुशा ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। तर्पण के अलावा पितरों की शांति के लिए पिंडदान और श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। पितरों का स्मरण करके सफेद वस्त्र और अन्न का दान करें, इससे पितृ दोष दूर होगा, साथ ही पितरों का आशीर्वाद मिलेगा।
1: तो अमावस्या को ग्रह शांति और साधना के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति राहु केतु से संबंधित ज्योतिषीय परेशानी के लिए उपाय करना चाहता है तो इस दिन राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः का श्रद्धा पूर्वक जप किया जा सकता है। केतु के लिए ओम केंग केतवे नमः, यह मंत्र, इस मंत्र का जप करना उचित है। इसके साथ ही शिव आराधना, महामृत्युंजय मंत्र का या मृत्युंजय मंत्र का जप और जरूरतमंद व्यक्ति को दान करने की परंपरा भी अपनाई जा सकती है।
0: ज्योतिषी मानते हैं कि 11 सितंबर को अमावस्या तिथि सुबह 8:56 तक रहेगी, लेकिन पितृ कर्म और पितरों का पूजन आप दोपहर 12 बजे से भी कर सकते हैं। पितरों के नाम से पिंडदान करना बहुत शुभ माना जाता है। अमावस्या पर विधिवत रूप से श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिवार जनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या की तिथि पर आप पितरों की शांति के लिए भगवद गीता, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। साथ ही इस तिथि पर सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करें। चूंकि इस तिथि पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इसीलिए चंद्रदेव के पूजन से जीवन से चंद्रमा संबंधी विकार दूर कर सकते हैं। में चंद्रमा कमजोर है उन्हें अवश्य ही अमावस्या की तिथि पर व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल आपका भाग्योदय होगा बल्कि पूर्वजों की भी कृपा हासिल होगी। पंचांग कहती है कि अमावस्या की तिथि पर चंद्रमा पूरी तरह से अस्त हो जाता है और दिखाई नहीं देता है, इसीलिए चंद्रमा की शक्ति इस दिन क्षीण हो जाती है। माना जाता है कि इस शुभ दिन ध्यान, पूजा, जप तप और दान करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है।

0: चंद्रमा जिसे 16 कलाओं से युक्त माना जाता है, शास्त्रों में चंद्रमा को महादेव का आभूषण माना गया है, तो वहीं श्री कृष्ण की कलाओं में भी चंद्रमा की चंचलता है, क्योंकि भाद्रपद महामाधव की उपासना का है, जो श्री हरि के पूर्ण अवतार है और वो 16 कलाओं से युक्त है। वो अपना महारास भी शरद पूर्णिमा पर रचाते हैं, जब चंद्रमा का ओज सबसे प्रबल होता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। चंद्रमा जो मन को स्थिर और विचलित करने की शक्ति रखता है, चंद्रमा जो सौर मंडल का प्रमुख ग्रह है, जिसके कारण समंदर में ज्वार भाटा आता है। चलिए जानते हैं कि प्रकृति और ज्योतिष में क्यों खास है चंदा मामा। नवग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई गणना नहीं की जा सकती है, इसलिए चंद्रमा का ज्योतिष में एक प्रमुख स्थान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति और सारी पृथ्वी के जल तत्व को निमंत्रित करता है। मानव का मन और भावनाएं चंद्रमा का ही क्षेत्र है। अगर चंद्रमा को नियंत्रित किया जा सके तो निश्चित रूप से मानसिक दशा से अपार मजबूती पाई जा सकती है। चंद्रमा का संबंध पेट और हृदय के रोग, एसिडिटी, नींद, आलस, मानसिक स्थिति, फूल, सुगंध, चांदी, गन्ना, माता, जलीय यात्रा और शासन प्रशासन से होता है। माना जाता है कि जब चंद्रमा कुंडली में प्रतिकूल हो तो इंसान निर्णय लेने में असक्षम हो जाता है, साथ ही मन भी तनावग्रस्त और अशांत रहता है। चलिए ज्योतिष के नजरिए से समझते हैं, जब चंद्रमा कष्ट दे रहा हो तब कौन कौन सी परेशानियां हमारे समक्ष आती हैं। व्यक्ति को सांस और शीत जन्य रोगों की समस्या हो जाती है। व्यक्ति का मन हमेशा बिना कारण परेशान रहता है। व्यक्ति को स्त्री पक्ष से या स्त्री को लेकर कष्ट बना रहता है। हार्मोन की समस्या और अवसाद का योग बनता है। नींद न आने की समस्या भी होती है। व्यक्ति बार बार नींद में चौक कर उठ जाता है। व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता या व्यक्ति के संबंध माता से खराब होते हैं। जान लिया कि चंद्रमा अगर मंगलमय ना हो तो क्या होता है। चलिए अब जानते हैं कि जब चंद्रदेव अपना आशीर्वाद बरसाते हैं तो उसके लक्षण क्या होते हैं। व्यक्ति के चेहरे पर सौम्यता और करुणा होती है। व्यक्ति लोगों में काफी प्रसिद्ध होता है। महिलाओं में विशेष लोकप्रियता होती है। इन्हें दूध और दूध से बनी चीजें खाना बहुत अच्छा लगता है। आमतौर पर गोल मटोल होते हैं। माता या स्त्रियों के सहयोग से जीवन में काफी आगे बढ़ता है। सुगंधित जल से नहाने का खूब शौक होता है। शास्त्रों में चंद्रदेव को महादेव का आभूषण माना गया है। कुंडली में चंद्रदोष को ठीक करने के लिए भगवान शिव की पूजा और चंद्रमा से जुड़े दान व मंत्र जाप करना सबसे असरदार उपाय है। माना जाता है कि ऐसा करने से चंद्रमा के अशुभ परिणामों से बचा जा सकता है। भगवान शिव को नियमित रूप से जल अर्पित करें। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें। भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया है। अमावस्या की रात को ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार को केवल जल और फल का सेवन करके उपवास रखें। चांदी की चेन अथवा चांदी का कड़ा धारण करें। काले रंग के वस्त्रों से और बहुत ज्यादा तीखी चीजों से परहेज करें। रात्रि में खुले आसमान के नीचे चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। तो देखा आपने, भाद्रपद में आने वाली ये पिटोरी अमावस्या कितनी कल्याणकारी है। जब न सिर्फ संतान की कामना पूर्ण हो सकती है, बल्कि पूर्वजों की मुक्ति के साथ ही चंद्रमा की शुभता भी पाई जा सकती है। तो आप भी इस शुभकारी तिथि पर सवार लीजिए अपना जीवन।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
3: कौन सा ग्रह त्वचा की समस्याएं सबसे ज्यादा देता है? किन ग्रहों की वजह से त्वचा पे झुर्रियां पड़ जाती हैं? अलग अलग ग्रहों का त्वचा की समस्या में क्या है योगदान और क्या है ज्योतिष के अनुसार इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
1: तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
10: प्यार और दुलार सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, जानवर भी अपने अंदाज में प्यार जताना जानते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बंदर बेड पर सो रहे बच्चे को बिल्कुल माँ की तरह दुलार करता नजर आ रहा है। कभी बच्चे को प्यार से देखता है तो कभी सिर हिलाकर उसे हंसाने की कोशिश करता है। बंदर का यह मासूम अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखकर लोग भी इस अनोखी दोस्ती पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। उम्र छोटी है लेकिन हुनर किसी बड़े खिलाड़ी से कम नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो एक नन्ही बच्ची की शानदार स्केटिंग का है। बच्ची पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना परफॉर्मेंस शुरू करती है और टाइमर के हिसाब से उसे पूरा भी करती है। स्केटिंग के दौरान उसके शानदार मूव्स और बैलेंस को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इतनी कम उम्र में बच्ची का ये हुनर देखकर लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। सड़क पर चलती इस अनोखी ट्रेन को देखकर हर कोई हैरान है। लकड़ी के पहिए, उस पर लगी कुर्सियां और एक के पीछे एक जुड़ी ये सवारी बिल्कुल ट्रेन जैसी नजर आ रही है। इसे देखने के लिए सड़क पर लोगों की नजरें भी थम जाती हैं। ट्रेन जैसी इस अनोखी सवारी को देखकर कई लोगों की हंसी नहीं रुक रही, वहीं इसे तैयार करने वाले के हुनर की भी खूब तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: फतेहपुर शेखावटी में भादव मेले का आयोजन, मंदिर का भव्य श्रृंगार, राजस्थान समेत करीब 12 राज्यों के लोग मेले में होंगे शामिल। चमोली में धूमधाम से जारी है मां नंदा की राजजात यात्रा, जगह जगह लोक गीतों से हो रहा यात्रा का स्वागत, पहाड़ी संस्कृति के रंग नजर आए। गणेशोत्सव को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, सभी गणेश पंडालों में मुफ्त होगी बिजली सप्लाई, भक्तों में खुशी की लहर। ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर राजधानी में तैयारियां तेज, दिल्ली के लगभग सभी होटल्स में बुकिंग फुल, चांदनी चौक में भी मेहमानों के लिए खास तैयारी। ओडिशा के बालासोर जिले के जंगल में मिले 5 ओरंगुटान, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, नंदनकानन में रखा गया।

0: आकार पर कौन शर्मसार, इसी को लेकर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंधावा। दरअसल बॉडी शेमिंग शब्द पिछले कुछ बरसों से बहुत ज्यादा चर्चा में है। कई लोग खुद सोच कर ही बॉडी शेमिंग के शिकार हो जाते हैं, तो कोई किसी पर टिप्पणी करता रहता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? बॉडी शेमिंग को लेकर क्यों फिर से बहस छिड़ गई है? दरअसल अभिनेत्री अंजलि आनंद ने सलाह दी है, नसीहत दी है, और ये नसीहत किसे दी है ये भी आपको आगे बताएंगे। मामला इसी से जुड़ा हुआ है, एक मुद्दा जिस पर खुलकर लगातार बात नहीं होती है, लेकिन आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। क्यों ज्यादातर महिलाएं बन रही हैं इसका निशाना? ऐसे तमाम सवालों का जवाब हम जानेंगे, हमारे साथ होंगे एक्सपर्ट्स। तो बॉडी शेमिंग का एक और मामला सामने आया है। दरअसल अभिनेत्री अंजलि आनंद और पेपराजी के बीच बातचीत के दौरान ये पूरा मामला हुआ है। पेपराजी ने गाड़ी में बैठ रही अंजलि पर टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर टिप्पणी का ये वीडियो वायरल हो रहा है, और इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक गाड़ी में अंजलि और उनके दोस्त शिव ठाकरे साथ बैठ रहे हैं। इसी दौरान एक पेपराजी ने कहा कि शिव को दबा मत देना। ऐसे में अंजलि ने तुरंत नाराज होकर पेपराजी को जवाब दे दिया। अंजलि ने पेपराजी से कहा कि बॉडी शेमिंग जाकर अपनी बीवी से करना। असल में कार में बैठने से पहले अंजलि, शिव और पेपराजी में मजाकिया बातचीत हो रही थी, और इसी बातचीत में पहले अंजलि ने पेपराजी से कहा था कि मैं शिव से लंबी हूं। इसके बाद अंजलि पर बॉडी शेमिंग कमेंट हुआ। बॉडी शेमिंग टिप्पणी के बाद माहौल बदल गया। अंजलि आनंद टीवी और फिल्म अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2017 में टीवी सीरियल ढाई किलो प्रेम से की थी, और इसके बाद साल 2021 में फिल्म में भी डेब्यू किया था। उनकी पहली फिल्म बेल बॉटम रही, बाद में फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी उन्होंने काम किया, और इस फिल्म में भी बॉडी शेमिंग का एक सीन आता है, अगर आपको याद हो, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। फिल्म धमाल 4 में भी उनकी भूमिका नजर आई थी, और डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 11 में भी वो नजर आई थी। अंजलि मुंबई में पली बड़ी हैं, वो वेब सीरीज में भी काम कर चुकी हैं। अंजलि अभिनेता दिनेश आनंद की बेटी हैं। अंजलि आनंद पेपराजी के बीच ये पूरा विवाद हुआ, हालांकि बॉडी शेमिंग को लेकर अंजलि ने पहले भी ये कहा था कि समाज में सोच बदलने की जरूरत है। तो क्या बॉडी शेमिंग पर पार हुई सीमाएं? बॉडी शेमिंग से कैसे निपटे, इसी पर होगी आगे बातचीत। लेकिन आइए हम आपको पूरा वीडियो फिलहाल दिखा देते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और जिसके बाद बॉडी शेमिंग को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है।
1: इसका पिक्चर है ना, इसका पिक्चर है ना, सुंदर
2: दबा मत दो शिव भाई को, दबा मत दो।
1: अरे वाई सी भाई
3: अपनी बीवी की करना चाहिए, चलो
1: भाई। हाँ बीच में इसका पिक्चर है ना, इसका पिक्चर है ना, सुंदर।
0: तो चलिए चर्चा करेंगे इसी पर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जयंती दत्ता क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, मीनल पाठक फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अर्तिका सिंह पब्लिक हेल्थ और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही साथ प्रदीप सरदाना फिल्म जर्नलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी। ठीक है, ये मामला भले ही बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक बार मीनल आपके पास आते हुए, बॉडी शेमिंग को लेकर हमने बहुत बार पहले भी बातचीत की है, और आप हमेशा कहते हैं कि खुद को फिट रखना कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अगर किसी के शरीर को लेकर, किसी की हाइट को लेकर, किसी के रंग को लेकर इस तरह की टिप्पणियां होती हैं, वो भी आज के दौर में, आप इसको किस तरीके से देखेंगे?
4: अगर आप इस एपिसोड को यहाँ पर देखें, आई बिलीव ये बहुत ही लाइट मोड में हो रहा था। इससे पहले कि किसिंग सीन था, दे वर किसिंग एंड दे सेड किस सो दैट दे कैन डू द एंटायर शूट, तो ये पूरा का पूरा एपिसोड एक बहुत लाइट मोड में चल रहा था। एंड आई बिलीव उसी वक्तव्य में चलते चलते पेपराजी ने यह बोल दिया कि आप तो दबा मत दीजिएगा, बिकॉज शी वॉज इन अ वेरी गुड मूड एंड दे हैव बीन लाफिंग अराउंड। So now there are two matters here. One, in which you are taking it in a happy mode and you are going a happy way. But then there is a serious concern behind it. There are a lot of places jahan par isko seriously...
0: मीनल मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी एक बार। अर्तिका आपसे मैं समझना चाहूंगी, आप इसको किस तरीके से, किस नजरिए से देखती हैं?
5: जी थैंक यू नवजोत मुझे आमंत्रित करने के लिए। जैसे कि मीनल जी बोल रही हैं कि उससे पहले मूड थोड़ा लाइट था इसलिए शायद पैपराजी ने बोल दिया, पर जस्ट बिकॉज मजाक हो रहा था ऐसा कुछ बोलना सही तो नहीं है, है ना। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि पैपराजी को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिस समाज में रहते हैं वहां पे इन सारी बातों को काफी नॉर्मलाइज किया गया है। जैसे कि आप कोई भी आजकल की कॉमेडी फिल्म देखेंगे उनमें लड़कियों को या औरतों के ऊपर जोक्स बनाए जाते हैं, वो मिसोजिनिस्टिक होते हैं, बॉडी शेमिंग में होते हैं। तो अगर आप किसी पैपराजी की बात कर रही हैं जो कि कोई एकेडमिक नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, वो उनका काम नहीं है, उनको इतना आइडिया नहीं है कि वो शायद गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वो जिस माहौल में रहते हैं वहां उनको सही लगता है, विच इज वेयर इस जैसे डिस्कशंस, न्यूज चैनल्स काम में आते हैं, ताकि लोग इसके बारे में बात कर सकें और वो समझ सके कि ऐसा बोलना गलत क्यों है।
0: लेकिन मेरे ख्याल से आज की तारीख में माहौल ऐसा है जहां हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है,
5: जी
0: फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह पर ऐसी चर्चाएं चलती हैं, जेंजी का
5: जी
0: बोलबाला है और जेंजी इसको कतई एक्सेप्ट नहीं करता। लोग बहुत ओपनली ये
5: जी
0: बात मानते हैं कि ठीक है अगर हम मोटे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, बॉडी शेमिंग करने की
5: जी
0: जरूरत नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस देखिए, हमारे लुक्स देखिए, वो ज्यादा मैटर करता है।
5: जी और जब भी बॉडी शेमिंग की बात आती है ना, सबसे ज्यादा बात फैट शेमिंग की होती है, पर बॉडी शेमिंग एक्चुअली बहुत लंबा है। जैसे मुझे रिसेंटली, क्योंकि मैं भी कंटेंट पोस्ट करती हूँ, मुझे किसी ने बोला कि आपके दांत के बीच का गैप इतना बड़ा है पूरा कश्मीर फिट आ जाएगा, ये भी बॉडी शेमिंग ही हुआ ना,
0: ऐसी
5: वो
0: बहुत
5: फैट
0: सारी
5: शेमिंग
0: बातें।
5: नहीं
0: बिल्कुल
5: हुआ।
0: मन पर कितना असर होता है जयंती जी, आपसे पूछूंगी, लेकिन एक बार प्रदीप जी आपके पास आती हूँ। एक तो ये पेपराजी कल्चर जिसको आप बहुत अच्छे से समझते भी हैं, जरा समझाइएगा हमारे दर्शकों को, इसका मतलब ये है कि हम किसी को भी कभी भी कुछ भी बोल देंगे और अगर सामने वाला आपके साथ बहुत लाइटर मोड में बातचीत कर रहा है तो क्या आप ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि पेपराजी को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वो क्या शब्द निकाल रहा है मुंह से?
6: देखिए पेपराजी जो है अब इतना जो कल्चर पॉपुलर हो गया है हमारे यहाँ, पेपराजी हो या जर्नलिस्ट हो और जो आर्टिस्ट है, इनका आपस में एक रिश्ता बहुत करीबी रहता है और यही लोग आर्टिस्ट को बताते हैं कि वहाँ जा रहे हैं आप वहाँ आइए, ज़्यादातर जगह कुछ जगह ये खुद इनको स्पॉट करते हैं, एयरपोर्ट पर खड़े हो गए वहाँ खड़े हो गए, लेकिन कुछ ज़्यादातर जगह खुद ही बुलाते हैं इनके पीआर वाले या खुद इनके जिसके अच्छे रिलेशन होते हैं टीवी वाले, खुद फ़ोन करते हैं कि आप आइए वहाँ जा रहे हैं या वो जिम में जाते हैं तो वहाँ जाते हैं, तो ये रिश्ता ऐसा है। लेकिन ये जो कमेंट्स वाला मामला है ये इसको मैं बिल्कुल सही नहीं मानता, कोई आपको किसी व्यक्तिगत रूप पे किसी की बॉडी उस पर या किसी और चीज़ पर या उसकी चाल ढाल पे या उसके कपड़ों पे कमेंट्स किए जाएं, उनकी अपनी इच्छा है वो जो कपड़े पहने जिस तरह पहने, वजन है तो क्या हुआ कोई बात नहीं, आप वो आर्टिस्ट है आप उनकी उसको आलोचना कीजिए, उस पर तो आप कुछ हाथ में है नहीं या उनके जो भी है जिस तरह भी बॉडी बन चुकी है कोई बात नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप ये देखिए कि खुद आर्टिस्ट भी इतने इंसल्ट करते हैं, हमने जैसे जया बच्चन का मामला देखा किस तरह उनका फटी जीन पहन के घूमते रहते हैं, ये क्या है चूहे हैं, तो जब इस तरह की चीजें आती है तो वो भी गलत है। तो दोनों साइड से जब भी इस तरह के कमेंट्स होते हैं उसको मैं गलत मानता हूँ और कितनी बार विवाद हो चुके हैं, सलमान खान का भी कितनी बार उनके साथ विवाद हो चुका है, वो कुछ भी बोल देते हैं, अब कोई जर्नलिस्ट थे उनसे पूछ रही थी कुछ बारे में तो वो जवाब दे रहे उल्टा सीधा बोलने लगे कि आपको घर वालों ने कुछ नहीं सिखाया आपका यही कल्चर है, तो जब ऐसी चीज होती है तो वो गलत है। दूसरा क्या है कि आर्टिस्ट जब उनको बुलाते हैं, कई आर्टिस्ट की इतनी सिचुएशन है, हम जैसे नीतू सिंह हैं हम उनको देखते हैं जब बुलाती है सबसे हंसी मजाक करती रहती हैं और कभी कहती है क्या कर रहे हो अभी चप्पल पहनी हुई है तुम मत खींचो मेरी फोटो क्यों बना रहे हो पीछे हटो वो इस तरह करती रहती हैं। कई बार रवीना टंडन है उनके भी बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत सारे पापा जी के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, वो भी अभी मैं देख रहा था कुछ समय पहले उन्होंने कान के अंदर कुछ ईयर रिंग पहना हुआ था तो उन्होंने उसको पापा जी को दे दिया उतार के गोल्ड का, तो इस तरह के रिलेशन भी हैं। कई बार शादी ब्याह में बुलाते हैं सब कुछ करते हैं जिनके साथ अच्छे रिलेशन को बुलाते हैं, तो ये रिलेशन पर डिपेंड करता है, हम जर्नलिस्ट हो फिल्म क्रिटिक हो या ये जो भी है हमारे जर्नलिस्ट पर रिलेशन पर डिपेंड करता
0: है। बात ठीक है लेकिन जो टिप्पणी की जा रही है वो सबके सामने आएगी, ये जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं जो भी बातचीत होती है वो सबके सामने आती है। एक बार आप जयंती जी को इंक्लूड करूंगी, जयंती जी आज की तारीख में क्या ये मैटर करता है कि हमारा साइज क्या है, हमारा कलर क्या है, हमारी हमारे दांतों की शेप क्या है, जैसे अभी यहाँ पर ये बता रही थी कि कश्मीर फिट आ जाए, क्या इस तरह के चीजें मैटर करती हैं या नहीं, किसके लिए है ये शेमिंग?
7: मेरे ख्याल से ये मैटर इतनी नहीं करती। आज का जो युवा पीढ़ी है वो बहुत लिबरेटेड है एंड यू नो ये छोटी छोटी चीजें उनको चुभती नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये कमेंट किया गया मेरे ख्याल से आपके कमेंट आपकी हैसियत और आपके दायरे के अंदर होना चाहिए। अगर इस तरह से आपने कमेंट किया और उनको बुरा लगा तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी पर्सनल काइंड ऑफ अ थिंग। आपकी बॉडी वेट, आपकी बॉडी इमेज, आपके पर्सनैलिटी यानी कि आपके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा है, उसके ऊपर कोई बाहरी इंसान कमेंट कर दे तो ये चुप जाती है। और मेरे ख्याल से अगर कोई ऐसा पर्सनलाइज्ड कमेंट किसी को चुपती है तो दिस इज डेफिनेटली अ सीरियस मैटर एंड वन हैज नो राइट टू इंडल्ज इन बॉडी शेमिंग। क्योंकि बॉडी शेमिंग जो चीज है, देखिए ये इतना एक अहम हिस्सा है और कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं इस मामले में। जैसे आपने सुना, इन्होंने पहले ही कहा मैं शिप से लंबी हूं, तो ऑलरेडी उनका फोकस जो है अपनी बॉडी फ्रेम के ऊपर है, और उसके ऊपर इससे कह देना, उछालना हुआ ये कि उसको दबा मत देना, यू हैव नो राइट टू कमेंट लाइक दिस। और अगर इनको बुरा लगा है तो मैं उनके साथ हूं, डेफिनेटली शी हैज अ राइट टू फील बैड। आप दांत के ऊपर बोले, हाइट के ऊपर बोले, कई दफे मेरे को बिंदी के लिए सुनना पड़ता है, स्पेशली व्हेन आई एम इन द जुडिशियल एकेडमी और लॉयर्स को पढ़ाती हूँ। सो नेशनल लेवल पे मेरे से पूछा गया, इतनी बड़ी बिंदी आप क्यों लगाती है? नाउ आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई डील इट इन अ डिफरेंट वे। लेकिन अगर आप मीडिया से जुड़ी हुई हैं, आपका अपियरेंस, आपका पब्लिक प्रेजेंस मायने रखता है, वहां पे पपराजी को और भी रिस्पॉन्सिबल तरीके से हैंडल करना चाहिए, अपने कमेंट्स के ऊपर फोकस रखना चाहिए और इस तरह से उछालना नहीं चाहिए कि अगला बंदा जो है उसे बुरा लग जाए। एंड जैसे उन्होंने भी कहा कि तुम अपनी बीबी को जाके बोलना, तो डेफिनेटली आप देखिए कितना बुरा लगा होगा उनको कि उन्होंने भी एक पर्सनल लेवल पे अटैक करने की सी सपोर्टेड दैट। सो आई थिंक यू नो आइदर वे किसी के रिलेशनशिप को लेके, किसी की बॉडी इमेज को लेके, एंड माइंड यू बॉडी इमेज, ये हम लोग तो साइकोलॉजिस्ट हैं तो हमें तो पता है क्या डीप रूटेड कॉम्प्लेक्सेस इसके साथ जुड़ी हुई होती है। अगर आप फाइट कर रही हैं वेट लूज करने के लिए और आप लूज नहीं कर पा रही हैं तो ये एक आपके लिए कॉम्प्लेक्स बन जाता है, आपके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा बन जाता है। और आप सेंसिटिविटी देखिए इनकी, पहले तो इन्होंने शुरुआत करी लेकिन जैसे पपराजी ने बोला इनको बहुत बुरा लगा। आई थिंक इट इज समथिंग व्हिच वन शुड नॉट इंडल्ज।
0: इसीलिए ना जयंती जी, हमने अपने इस शो की जो टैगलाइन दी है ना कि आकार को लेकर कौन शर्मसार, क्या आप खुद शर्मसार हैं या फिर सामने वाला शर्मसार हो रहा है या सामने वाला एक प्लेजर ले रहा है उसमें से। मीनल, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो जरा जवाब रखिए इसका।
4: मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पर क्लियर आ रही है वॉइस?
0: बिल्कुल।
4: सो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है, फर्स्ट पॉइंट ये, हमारे यूपी में बहुत फेमस कहावत है कि जहां पर गड्ढा है वहां पर तो पानी भरेगा। अगर आप खुद ही कॉम्प्लेक्सिव है बाय नेचर एंड यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ तो दूसरे लोग तो इस बात में नितपिकिंग करेंगे। यू लिव इन अ सोशल, यू नो, एक सोशल सेटअप में हम रहते हैं, एक समाज में हम रहते हैं, ऑब्वियसली समाज में कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो आपको बोलेगा। सो द आइडिया हियर इज कि आप खुद इंटरनली कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इट इज अबाउट इनसाइड आउट। आप देखिए ना कितने सारे हमारे कॉमेडियंस हैं जो थोड़े हैवी हैं, हेफ्टी हैं, और वो इसी बात का जोक बनाकर कितना मजा करवाते हैं एंड नोबडी फील्स अबाउट इट। सो दिस इज इट।
0: प्रदीप जी बैठे हैं साथ, बताएंगे जरा, टुनटुन, गुड्डी मारुति, ऐसे बहुत सारे हमारे कॉमेडियंस हैं जिन्होंने, जिनकी स्पेशल डिमांड आई थिंक फिल्मों में हुआ करती थी। प्रदीप जी
4: एक्जेक्टली आप देखिए ना,
6: टुनटुन इतनी पुरानी एक्ट्रेस रही, उनका नाम उमा देवी था, लेकिन उनके थुतले शरीर को, मोटे शरीर को देखकर उनका नाम टुनटुन रखा गया। गुड्डी मारुति तो खैर उसी नाम से रही, गुड्डी उस तरह रही, घर का नाम था उनका। लेकिन ये देखिए नाम भी रखे जाते हैं और बहुत से आर्टिस्ट जो है खुद वेट अपना बढ़ाकर अपना आते हैं, क्योंकि उनको जब वो चल जाते हैं तो उनको लगता है हम जब जरा भी स्लिम हो गए, हमारी बॉडी शेप बदल गई तो हमारे को रिस्क हो जाएगा।
0: वो उसको कितना कॉन्फिडेंटली उन लोगों ने कैरी किया।
6: बिल्कुल, इतना कॉन्फिडेंस किया, कोई वो नहीं किया, हंसी मजाक में करते रहे। कई लोग खुद अपने वेट का मजाक उड़ाते हैं, कोई गंजे होते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं, कोई ज्यादा पतले होने का मजाक उड़ाते हैं। आर्टिस्ट ऐसे करते रहते खुद ही, कि कोई कुछ बोले आप खुद ही करें, मैं क्या, मैं तो सिंगल हड्डी में क्या करूंगा, मेरे तो ज्यादा सी जगह में बैठ जाऊंगा, मेरे को कोई जगह नहीं चाहिए। तो इस तरह बहुत से आर्टिस्ट हम देखते हैं, हम भी जब बातचीत करते हैं बहुत हंसी मजाक करते हैं। तो लेकिन बात यह है कि ये ठीक है कि आपको सामने वाले के साथ आपके कैसे रिलेशन है, दूसरा पब्लिकली कर रहे हैं सब, तो ये इसके लिए सोचने की जरूरत होती है कि हम क्या करे, चाहे वो आर्टिस्ट, इन्होंने भी देखी है खुद, इन्होंने पहले कहा जिस तरह की बात कर सके, मैं लंबी हूँ, मैं मेरा कदम से लंबा है। और भी अगर इनकी फिल्म की बात की जाए, धमाल फिल्म के अंदर इनका नाम जो है रंधावा था, लेकिन गोलू रखा गया बोलने के लिए, क्योंकि इसी वजह से कि जो इनका वेट है इस तरह करके। और खुद धमाल 4 के अंदर कितनी बार इनका मजाक उड़ाया गया, और जब इनसे पूछा गया कि आपको, आप तो खुद बड़े उसको लेकर कॉन्शियस रहती हैं और बड़ी अपनी इसकी वो प्राथमिकता देती हैं कि जैसी भी वो ठीक है, मेरे को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन फिल्मों में जो मजाक करते हैं।
0: तो रॉकी रानी की प्रेम कहानी में जहां पर आता है कि इसकी शादी नहीं हो रही क्योंकि वो मोटी, और उसको बार बार ये कहा जाता है कि तुम पतली हो जाओ,
6: बिल्कुल,
0: और वो उसको किस तरीके से, और वहां भी बॉडी शेमिंग का शब्द आया था, और यही एक्ट्रेस थी वहां पे, कितना कॉन्फिडेंटली दिखाया गया फिल्म में कि आप जैसे भी हैं वैसे ही खूबसूरत।
6: बिल्कुल,
0: मैं कीकू शारदा का एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, कपिल शो में सबसे ज्यादा हिट हैं,
6: सबसे ज्यादा वो है और सबसे ज्यादा हिट चल रहे हैं कीकू शारदा इस तरह से, और महिला बनकर भी आते हैं तब भी कोई वो नहीं है। लेकिन आप देखिए धमाल 4 में तो कितनी बार इनके साथ ये हुआ और इनसे पूछा भी गया, तब इन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, फिल्म में मेरे लेना हाथ में नहीं है, मेरी कोई चॉइस नहीं है, जो डायरेक्टर जो बोलते करना पड़ता है, और मुझे वो रोजी रोटी चलानी है, अपना घर चलाना है, तो मुझे कोई भी कमेंट्स मिलेंगे कैसे भी रोल करेंगे मैं करूंगी। तो होता है कि आप फिर वहां आप इस चीज को एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन जब पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी बात करता है आप खुद उसको बात करती है पहले लंबे होने की, किसी चीज होने की, जब ऐसी बात आती है थोड़ा अखड़ता है।
0: हम फिल्मों में इस चीज को बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, जब हमारी पर्सनल लाइफ की बात आती है, तो यही वो एक्ट्रेस है, यही वो एक्ट्रेसेस, यही वो एक्टर्स हैं जो फिल्मों में तो एक मिसाल कायम करते हैं, एक ट्रेंड सेट करते हैं कि हम मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, तो वहां पे आके कहीं ना कहीं अंदर खाते एक वो हीन भावना अभी भी है जिसका शिकार ये लोग हैं।
5: जी जी,
0: क्या हम अपनी सोसाइटी में सभी को बोलेंगे, इसीलिए हम इसको लेकर चर्चा करें। जयंती जी, बस एक कमेंट अर्तिका से फिर आपके पास आते
5: हैं। जी जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम मुद्दे पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेलिब्रिटी के साथ हुआ है, उसके रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, ठीक है। अब वो सेलिब्रिटी कैसे हैंडल करेंगी, वो मूवी कर रही है नहीं कर रही है एक्सेट्रा, वो अलग बात है, पर दुनिया में, भारत में, हम जिन शहरों में रहते हैं वहां पे आम लोगों के साथ ही रेगुलरली होता है, तो फिर ये बोलना कि नहीं कॉमेडियन से बात करते हैं और इसमें सबको बहुत मजा आता है, ये गलत है। बिकॉज वो सेलिब्रिटीज अपने लिए चॉइस ले रहे हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, उन्होंने अग्री किया होगा कि मुझे मूवी में ऐसे पोर्ट्रे होने में चलेगा, मुझे शी इज गॉट पेड फॉर इट ऑल्सो, राइट। पर जब सेलिब्रिटीज बड़े पर्दे पे कुछ डिपिक्ट करते हैं तो जो आम जनता होती है वो उससे सीखती है, और ये गलत है। आम जनता में ये बोलना कि अगर आपका वेट थोड़ा ज्यादा है या आपका साइज थोड़ा बड़ा है तो फिर आपकी शादी होने में मुश्किल होगी, रॉकी और रानी में एक्चुअली ये पॉजिटिव तरीके में दिखाया गया है कि ये दिखाया गया कि उनका साइज इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट।

0: स्टैंड नहीं लेगा अगेंस्ट सर्टन थिंग्स लाइक बॉडी शेमिंग, तो वो पब्लिकली एक गलत मैसेज जा रहे हैं जो लार्जर जनता को जा रहा है. यंग बच्चे, यंग लड़के लड़कियां, पीपल ऑफ ऑल जेंडर्स, वो क्या सीखेंगे ये सुन के?
1: एक सेकंड जयंती जी, आपके पास आऊंगी. प्रदीप जी, अब हम कीकू शारदा का मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लेना चाहूंगी यहीं से जो अर्तिका ने बात कही है. देखिए, वो अपने अपनी बॉडी को बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं और एक एक कॉमेडी सीन क्रिएट करते हैं, लोगों को हंसाते हैं.
2: बिल्कुल,
1: वहां तक चीजें ठीक हैं, एक्सेप्टेबल भी हैं. लेकिन यही चीज अगर कोई टिप्पणी करता है या फिर वो भी पब्लिकली जाके कहते हैं, खुद में उनको कहीं ना कहीं ये फील होता है या पेपराजी के सामने वो इस तरह की बात करते हैं, तो वो कितना सही आपको लगता है?
2: देखिए, पर्सनल लाइफ में ये सब चीजें चलती रहती हैं, पेपराजी के सामने भी चीजें चल रही
1: हैं. स्टैंड अप कॉमेडियंस भी हैं जो बॉडी शेमिंग को लेकर कॉमेडीज करते हैं.
2: हाँ, बिल्कुल करते हैं, वो उनकी चली इसलिए रही है कॉमेडी सिर्फ उसको लेकर. लेकिन देखिए, पर्सनल लाइफ में जैसे उन्होंने बताया कि आपको कई लोग तो इस चीज को लाइटली लेते हैं, कई वो नहीं करते. मुझे एक बड़ा पुराना किस्सा याद आ रहा, आपने टुनटुन की बात की, तो टुनटुन को किशोर कुमार जो इतने बड़े सिंगर है, उन्होंने खाने पे बुलाया. तो कई लोग बैठे थे, बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने देखा टुनटुन को वजन को मजाक उड़ाते हुए, अरे क्या वो धड़ाधड़ खाई जा रही थी. तो किशोर कुमार थोड़े कंजूस भी थे, बोले ऐसा ना खाना खत्म हो जाए, इतने लोग बैठे हुए. तो वो खाती रही, तो उन्होंने कहा टुनटुन जी ऐसा है कि खाने के बीच में थोड़ा पानी भी पी लेना चाहिए. तो टुनटुन समझ गई, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि खाने का बीच तो हो, अभी तो बीच ही नहीं हुआ मेरा, अभी तो मैंने शुरुआत की है. तो देखिए, इस तरह की चीजें याद आती हैं, तो लगता है कि देखिए कितने अच्छे रिलेशन में सब चीजें बातें होती हैं. लेकिन जब भी कोई होता है, जब हम जिस तरह देखो जया बच्चन का देखते हैं, हर बार ही कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है जब भी पहुंचते हैं. कभी कुछ, कभी कोई ऐश्वर्या से बात कर रहा है, तो उन्होंने कहा ऐश्वर्या तो अगर तुम तो ऐसे बात करो जो तुम्हारी साथ स्कूल मेट हो, ऐसे आवाज ऐश्वर्या करके बात कर रहे हो. तो इसकी कितनी सारी इस तरह की चीजें हो जाती है जिनमें वो आता है, जिस तरह आपको जींस वाली बताई या फोटो खिंचाने में धक्का दे दिया, ये सब कर दिया सेल्फी लेने पे. तो एक पब्लिक लाइफ के अंदर आर्टिस्ट हैं, उनके साथ कुछ प्रेम भी है, उनका कुछ रोजी रोटी भी चल रही है पेपराजी के, तो और बाकी लोगों का प्रेम भी होता है, तो उनसे बात करना चाहते हैं, ठीक है. कई बार कभी किसी का मूड खराब है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह की चीजें कई बार कंट्रोवर्सी में भी ले आती हैं, तो वो भी सोचते चलिए अच्छा पब्लिसिटी मिल रही है इस बहाने. मैंने जो कमेंट किया,
1: आप जयंती जी आपके पास आऊंगी, अपनी बात रखिए.
3: एक बात कही नवजोत जी, हीन भावना. हमारे में थियोरी है ऑर्गन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एडलेरियन थियोरी हम इसे बोलते हैं. अगर आपके अंदर आपकी व्यक्तित्व का ये हिस्सा कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करता है, आप बड़ी आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेती है और उसको लेके आपके अंदर कोई हीन भावना नहीं है, तो आप इस पे मजाक भी सह लेती हैं, मजाक खुद भी कर लेती हैं, एंड यू नो यू एंजॉय दैट बिकॉज दैट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू. लेकिन अगर आपकी सेंसिटिविटी इतनी हाई है कि आपको लगता है ये बॉडी शेमिंग करा और जिस तरह से इन्होंने रिएक्ट किया, तो डेफिनेटली शी इज वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू. वो देखना पड़ता है. जैसे अभी प्रदीप जी कह रहे थे टुनटुन जी है, गुड्डी मारुति, एंड यू नो सो मेनी पीपल जो अपनी बॉडी को लेके इतने ज्यादा चिंतित नहीं है, इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. बेशक उसके लिए आपको पैसा मिले ना मिले, आप मखौल में उस चीज को झेल लेती है, टाल देती है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है. लेकिन अगर आपके अंदर कॉम्प्लेक्स है और आप इसको बॉडी शेमिंग मानती हैं, इट कैन लीड टू इमोशनल प्रॉब्लम्स और उसके लिए आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो चोट खा जाती है. तो इस तरह की चीजों को जब इंसान इतना सेंसिटिव होता है तो हमें एहतियात बरतनी चाहिए और पर्सनल कमेंट्स बहुत ध्यान से देनी चाहिए कि अगला कैसे ले रहा है. अब देखिए, छोटी सी चीज थी, आप उनको दबा मत दीजिएगा, इसके ऊपर इतना बड़ा बवंडर बन गया, तो ऑब्वियसली द लेडी इज वेरी सेंसिटिव. आई एम श्योर अगर वो मीडिया में भी आई हैं इस चीज को लेके, तो ये इनका कॉन्फ्लिक्ट जो है अभी सुलझा नहीं है. इसीलिए मैं कहूंगी कि एहतियात बरतनी चाहिए, खास करके अगर आप पब्लिकली कोई कमेंट कर रहे हैं और वो आपकी बॉडी इमेज को उलझा सकती है, तो वहां पे डेफिनेटली यू शुड नॉट ट्रेड ऑन दैट लाइन.
1: मीनल, अब मीनल को इंक्लूड करूंगी जयंती जी की बात से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. हम कुछ चीजें बहुत लाइटली कह देते हैं, किसी को भी मजाक में कह दी जाती हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि सामने वाले के दिमाग पर उसका, उसकी मेंटल हेल्थ पर इसका कितना असर पड़ता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बॉडी शेमिंग. उसमें कोई भी चीज हो सकती है, किसी कोई भी बातचीत इसको लेकर हो सकती है. मीनल,
0: तो ये जो मेंटल हेल्थ आपने वर्ड दिया है, इसके लिए बताऊंगी कि हम मेंटल हेल्थ के जब सेशंस लेते हैं तो हम एक बहुत सिंपल सी चीज एम्प्लॉइज को सिखाते हैं कि

0: गिव द बटन ऑफ योर इमोशनल हेल्थ और द ट्रिगर टू समबडी एल्स. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और बटन दबाए और आपका रिएक्शन निकल के आए. किसी के हाथ में अपना वो बटन मत दो. ये वही चीज है कि यू आर सो, मतलब आप अपने अंदर से इतने कॉम्प्लेक्सिव हैं अपने वेट को लेकर या अपनी हाइट को लेकर, एंड प्लस आप खुद बॉडी शेमिंग कर रहे हैं यहाँ शिव ठाकरे की. आप ये नहीं बोल रहे हैं शिव ठाकरे को कि मैं इससे लंबी हूँ, तो इसमें तो शिव ठाकरे खड़े होकर बोलते कि ये देखो मेरे साथ बॉडी शेमिंग हुई कि मेरे को मिठा बोला गया है. अरे दीज थिंग्स आर नॉट मेंट इन दोस डायरेक्शन. वो उस तरह से बात हो ही नहीं रही है. इट्स जस्ट दैट कि समबडी इज सो कॉम्प्लेक्स अबाउट देमसेल्व्स कि उनको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया उन्हीं पे फिंगर्स पॉइंट कर रही है और उनका इमोशनल ट्रिगर किसी बात से ट्रिगर हो सकता है. दैट्स व्हाट आई सेड कि आपके अंदर गड्ढा है, पहले अपने गड्ढे को भर लीजिए, देन नथिंग एल्स विल मैटर. यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, नथिंग एल्स विल एवर मैटर. बिकॉज आई लाफ आउट लाउड, वेरी लाउड. So, you know, people would keep on saying कि मीनल बहुत जोर से हंसती है, and you know, public के लिए भी बहुत जोर से हंस जाती है, and all that things. And people have kind of, you know, compared my laughter with many people like Shroop Nakha and Happu Singh and whatever, but that didn't ever change me. So you have to see कि कुछ ना कुछ तो समाज बोलेगा. There's a very beautiful song. People will have something to say about you. Now, what really matters is what you feel about yourself. यहाँ पर वो बहुत कॉन्फिडेंटली ह्यूमर में भी इस चीज का बहुत अच्छे से जवाब दे सकती थी, बिकॉज वैसे भी वो लाइन ह्यूमर में चल रही थी. बट दिस थिंग व्हाट शी डिड लिटरली शोड हर रियल फेस, अंदर से इस बात से कितनी पीड़ित है, ये दिखा उनका कैरेक्टर थ्रू द वे
1: मीनल सेड एंड शी. मीनल, आपने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जयंती जी ने भी इसकी शुरुआत की थी कि जब कहा कि मैं तुमसे लंबी हूँ, चर्चा वहां से ज्यादा इस पर हुई कि दबाव मत देना. तो जाहिर सी बात है कि पुरुषों के लिए भी ये उतनी बॉडी शेमिंग की बात है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे. फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ, चर्चा जारी है.

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: कौन सा ग्रह त्वचा की समस्याएं सबसे ज्यादा देता है? किन ग्रहों की वजह से त्वचा पे झुर्रियां पड़ जाती हैं? अलग अलग ग्रहों का त्वचा की समस्या में क्या है योगदान और क्या है ज्योतिष के अनुसार इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: आकार पर कौन शर्मसार, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बहस शुरू कहां से हुई है वो वीडियो सबसे पहले आपको दिखाते हैं।
2: इसका पिक्चर है ना सुंदर, बीच में इसका पिक्चर है ना सुंदर, दबा मत दो, शिव भाई को दबा मत दो।
3: अरे भाई शिव भाई, दबा मत दो।
1: तो चर्चा इसी को लेकर चल रही है। प्रदीप जी, कितनी लिबर्टी पेपराजी ले लेते हैं?
4: देखिए, पहले तो उन्होंने कहा कि मैं लंबी हूँ, तो पर्सनल बात उन्होंने की, उसके बाद और ज्यादा पर्सनल कर दी उन्होंने बोल के। वो तो दो लोगों की बात कर रही थी ना, उन्होंने कहा अपनी पत्नी से जाके, वाइफ से जाकर मजाक करना, इस तरह की बातों से बोलना, तो वो और ज्यादा पर्सनल हो गई, जो उस शो में नहीं है, उसके अंदर नहीं है, उनको आप बीच में ले आए। तो ये जो ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ कि कोई उनकी बॉडी का मजाक उड़ाए, कोई वॉइस का उड़ाए, कोई गंजेपन का उड़ाए, या लंबे या छोटे होने का उड़ाए। लेकिन जब ये चीजें शुरू होती है तो देखना चाहिए शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत से कहाँ बात बड़ी, वो देखने की बात है। तो इसलिए इसमें मैं ना तो सीधा अंजलि को कह सकता हूँ कि उसकी वो है, ना पेपरा जी इसने पूछा उसको कह सकता हूँ, दोनों का इसमें वो है। शुरुआत लेकिन अंजलि से हुई और वो थोड़ा सा और ज्यादा आगे बढ़ गए
1: पेपरा जी। उन्होंने तो फिर वो वही बात, शुरुआत यहाँ से हुई हाइट को लेकर।
4: हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, बात तो हाइट से लेकर हुई, शुरुआत तो उन्होंने की ना।
1: हाँ,
4: कि मेरे से ये, मैं इनसे लंबी हूँ, तो बात हाइट से हुई। पहले उन्होंने पर्सनल बात की, आप पर्सनल बात मत कीजिए तो कोई बोलेगा भी नहीं, जब एटमोसफेयर ऐसा बन जाता है पर्सनल बात करने का, तो उन्होंने फिर बोल दिया शिव भाई को दवा मत देना बैठते हुए, जैसे होता है। फिर उन्होंने और ज्यादा पर्सनल हो गया कि जो उनकी पत्नी,
1: शिव ने इसको बिल्कुल लाइटली ले लिया,
4: उसको और ज्यादा क्या, अभी सीधा उन्होंने बोल दिया कि अपनी पत्नी से करना, तो वो तो बिल्कुल अलग बात हो गई ना। आप उसी को बोल रहे, अपना ध्यान रख तू, तू मत दवा देना, तो भी कोई बात नहीं।
1: आपने बहुत सारी फिल्म रिपोर्टिंग की, आप बहुत बॉलीवुड को अच्छे से जानते हैं, कभी ऐसी चीजें, बॉडी शेमिंग टाइप ऐसी चीजें पहले आई हैं अभिनेत्री या किसी अभिनेता के साथ भी?
4: नहीं, बिल्कुल होता रहा है। देखिए, हंसी मजाक होता रहता है, वेट के समय
1: नहीं, हंसी मजाक सर एक तरफ है।
4: हाँ।
1: अब जैसे शिव ने बहुत लाइटली इसको लिया, इसको इग्नोर कर दिया बात को।
4: नहीं, कंट्रोवर्सी देखिए, मुझे भी याद है 6-7 साल पहले की बात है, तो पेपरा जी ने एकता कपूर से पूछा कि आप कब शादी कर रही है, खुशखबरी कब सुना रही है, तो एकदम टिक कर बोली, अरे मेरी शादी, तुमको क्या खुशखबरी मिलने वाली है, क्या बात हुई, तुमको क्या खुशखबरी मिलेगी मेरी शादी से। तो अब वो देखिए, उसने बड़ा आत्मीय उससे पूछा कि आप खुशखबरी कब सुना रही हैं, लेकिन उन्होंने एकदम इस तरह चीख कर बोला। और अभी आप ये देखिए, हम अभी ज्यादा दूर भी ना जाएं तो आलिया भट्ट के जो जहाँ रहती हैं, और वो उनके साथ वाले बिल्डिंग में जाके पेपरा जी ने फोटोग्राफ्स लेने की शुरू कोशिश की, उनके घर के अंदर ताक झाक करने की। तो ये कितना गलत है, तो बहुत ही गलत है, मैं इसको बिल्कुल ही इस वो करता हूँ। इस तरह जो ये है, इसका जो है, इनके शर्मिला टैगोर के सैफ अली खान और करीना ये जा रहे थे, तो पेपरा जी पीछे भी जाने लगे, तो उनका आ जाइए मेरे बेडरूम में आ जाइए ना, बाहर खड़े हुए। तो देखिए, इस तरह की इतनी चीजें होती रही हैं। हम मजाक की बात देखें, और भी
1: ऐश्वर्या के साथ भी काफी हुआ है।
4: किसके?
1: ऐश्वर्या।
4: ऐश्वर्या के साथ तो बहुत हुआ है, और जया साथ होती है तो होता ही होता है।
1: हाँ।
4: वो कुछ भी बोले, क्योंकि देखिए ऐश्वर्या बोलेंगे।
1: अच्छा, जया बच्चन जब साथ में होती है तब कहीं ना कहीं पेपराजी को भी मसाला मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि वो लोग भी तो जानबूझ के इसमें इंटरफेयर करते हैं? फिर जब आपको पता है, जब आप जानते हैं कि सामने वाला आपकी इन बातों को टॉलरेट नहीं कर सकता है, तो आप सवाल ही नहीं पूछे, फिर भी पूछे जाते हैं।
4: मैं बच्चन फैमिली को इतने सालों से जानता हूँ। जया पहले इतनी हंसी मजाक करती थी, बिल्कुल गुड्डी ही थी वो, एक तरह से बहुत हंसी मजाक, जब भी मिलो बहुत अच्छे से बात करती थी। लेकिन ठीक है, पिछले 7-8 साल में 10 साल में धीरे धीरे में फर्क आया है, तो उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी है शायद, उसकी वजह से कुछ इस तरह की चीज है, कोई एकदम इरिटेट हो जाते हैं, कोई पूछता है। तो एक बार अभिषेक से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है मामा को, ऐसी कोई बात नहीं है, घर में ठीक है लोग, लेकिन हर चीज को समझते हैं कि घर में भी ऐसा होता होगा, अमिताभ के साथ भी ऐसे बोलते होंगे। केबीसी के मौके पर कितनी बार लोगों ने पूछा, उन्होंने भी कुछ मजाक उड़ाया, मैंने घर जाना है भैया, इस तरह की बात मत करो। तो ये सब चीजें चलती रहती है हंसी मजाक की। आप पर्सनल देखिए, कई बार आर्टिस्ट आते हैं शुरू शुरू में, हम धर्मेंद्र की बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि आपकी आवाज़ ख़राब है, आप इतने लंबे हो, आपके दांत पीले हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। अक्षय कुमार आए थे, उनकी पहली फिल्म खिलाड़ी की यहाँ पर दिल्ली के अंदर वो हुई थी, ललित होटल में पहला उनका वो था, तो इतने घबरा रहे थे मीडिया से सामना करने के लिए, कोई एक्सपेक्ट लगाते थे, हंसते तो उनके मसूड़े दिखते हैं, तो वो ऐसे लग रही है क्या हीरो बनेगा, ये हंसता है तो उसके मसूड़े दिखते हैं, एक्सपेक्ट लगाता है, इतना लंबा है, ये है वो है, ये तो वहाँ पर वो करता था सिंगापुर में वहीं रहता, लेकिन आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो वो भी शुरू में जब आते हैं डरते तो हैं, अगर उनकी किसी कोई कमी होती है, चाहे उसकी एक्टिंग में कमी हो, चाहे उसकी बॉडी में कोई कमी हो,
1: ज्यादा बात नहीं होती थी ना, सोशल मीडिया आ गया इसलिए चर्चा,
4: सोशल मीडिया नहीं था, वो बात जो होती थी वो एक जगह उसी में रह जाती थी, अब क्योंकि हर बात सोशल मीडिया पहुंच जाती है तो कंट्रोवर्सी भी बन जाती है।
1: एक बार जयंती जी, अब मैं आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, दो बातें, पहली बात तो ये है कि यही बात जब शिव पर आई, क्या पुरुष इन चीजों को लाइटली लेते हैं, तो ये समझाइएगा, और दूसरा हम जब बॉडी शेमिंग की आज बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है, लेकिन जयंती जी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर लूज वेट इन दीज डेज, इन वन वीक, इन 10 डेज, फिर अपनी स्किन अगर आपकी डार्क है तो उसका उसको फेयरनेस के लिए भी आप फला फला जगह पर जाएंगे, ये सारी चीजें भी तो हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी तो आपके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को पैदा करती हैं।
2: नवजोत जी, मैंने जो पाया, पुरुष को जब आप इस तरह से कोई कमेंट करते हैं, खास करके अगर कोई लड़की करती है, तो वो लोग टेक इट इन देयर पॉजिटिव स्ट्राइड, अच्छा तो मेरे ऊपर इसने इतना ध्यान दिया, मेरा हाइट देखा, मेरे हाइट के साथ अपनी हाइट की कंपैरिजन करी, फिर उन्होंने ये कमेंट दी, सो दे डोंट फील बैड अबाउट इट। एंड आई थिंक जो लोग इस पे हंसते हैं, जैसे अभी प्रदीप जी इतने सारे हीरोज की बात कर रहे थे कि अमिताभ बच्चन के दांत पीले थे, अक्षय कुमार के जो है मसूड़े दिखते थे, ये लोग जब कंपनसेटरी मैकेनिज्म पे आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा ऑर्गन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, तो आप उसको ओवर कंपनसेट कर लेते हैं, जब आप ओवर कंपनसेट कर लेते हैं तो आप में एक सुपीरियोरिटी की जो कॉम्प्लेक्स है वो आने लगती है, वो पनपने लगती है, जब आप वो लगता है आपको कि आई एम मच बेटर देन अदर पीपल, सो आई एम मच सुपीरियर टू अदर पीपल, तो इस चीज को आप अनदेखा खुद ही करने लग जाते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप जूझ नहीं पा रहे हैं, जो मेरे को लगता है हमारी जिनकी हम बात कर रहे हैं अंजलि जी की, शायद वो परेशान है इस चीज को लेके, वेट रिड्यूस करने की कोशिश वो कर रही होंगी और नहीं हो पा रहा है, कई दफे देखिए आपको लोग खुद ही कह देते हैं डोंट रिड्यूस फर्दर, आपकी पर्सनालिटी, आपकी व्यक्तित्व ऐसी है, इससे ज्यादा लूज मत करिए, सो यू नो यू हैव टू एडजस्ट, अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रही है तो मेरे ख्याल से यू शुड गो फॉर अ थेरेपी सेशन, फाइंड आउट कि कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स आपको परेशान कर रही है, क्योंकि अगर आप माहौल देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा, कमेंट तो इन्हीं ने शुरुआत करी थी, उसके बाद जितनी छोटे से टाइम के अंदर वो पर्सनल अटैक कर गई पपराजी को कि तुम अपने बीवी को जाके बोलो, तो उसको भी तो बुरा लग सकता है, आपने उससे ज्यादा इंटेंस पर्सनल कमेंट दे दिया, तो द मैन इज द पपराजी इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू फील बैड कि आपने उसकी बीवी जो वहां पे है ही नहीं, सी इज नॉट इन द सिनेरियो, आपने उस पे उछाल दिया, तो ये दर्शाता है, देखिए हम साइकोलॉजिस्ट जो है, आपके कमेंट, आपका बिहेवियर, आपका बॉडी पोस्चर, ये बहुत मायने रखती है हमारे लिए आपकी साइकी को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो उसमें अगर आप देखें तो डेफिनेटली शी इज हैविंग सम प्रॉब्लम, एंड एज आई सेड शी शुड मे बी गो फॉर अ थेरेपी सेशन, क्योंकि बॉडी शेमिंग का, देखिए मैं आई डोंट सपोर्ट बॉडी शेमिंग एट ऑल, लेकिन बॉडी शेमिंग है या नहीं वो डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी से आप जूझ रही है इस चीज के साथ, अगर आप नहीं संभाल पा रही हैं तो आप ज्यादा सेंसिटिव हो जाती
1: हैं, इसका मतलब सीधे तौर पर कि आपकी मेंटल हेल्थ पर इसका असर पड़ रहा है। आर्तिका, इस पर क्या कहेंगी आप?
5: जी, मैं सबकी बात सुन रही थी, और एक ना लाइन कहते हैं कि जो आजाद है उनको आजादी मुबारक, तो जो लोग बॉडी पॉजिटिव या बॉडी न्यूट्रैलिटी तक पहुंच गए हैं वो भी एक तरह की आजादी होती है, और उन लोगों को वो आजादी मुबारक। और मैं किसी बुरे तरीके से नहीं बोल रही हूं, पर मीनल जी की बातें सुन के लग रहा है कि वो बॉडी पॉजिटिव है, पर उनका ये कहना कि आप लोगों को भी इसको लाइटली लेना चाहिए, नहीं है ये आपके अंदर गड्ढा है वो जल्दी भर जाना चाहिए, आई थिंक वो थोड़ा गलत है, क्योंकि यहाँ इस चैट में बैठ के सिर्फ मुझे देखकर या जयंती मैम को देखकर या नवजोत जी प्रदीप सर को देखकर क्या कोई कह सकता है कि अभी हमारा हमारी बॉडी के साथ क्या रिलेशन है? सिर्फ मुझे देखकर ये पता लग ही नहीं सकता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि सामने वाले का क्या रिलेशनशिप है उनके खुद के बॉडी के साथ, तो कमेंट मत करिए, क्योंकि आपके बुरे कमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है और पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि किसी को फनी लगेगा। तो जैसे कि जयंती मैम ने बोला कि ऑफकोर्स ये बहुत कॉम्प्लेक्स जर्नी होती है कि आपको अपनी बॉडी के साथ कंफर्टेबल फील करना। किसी किसी लोगों को पतले में भी कंफर्टेबल नहीं होता, किसी को मोटे में नहीं होता, किसी को स्किन प्रॉब्लम सेम। तो वो जर्नी अलग अलग लोग अलग अलग स्पीड पे करेंगे। तो मैं या आप या कोई भी नहीं बोल सकते नहीं नहीं जल्दी करो, बुरा क्यों लग गया। क्योंकि इस बारे में ये बोलना ना कि बुरा क्यों लग गया इज द सेम एज सेइंग कि अच्छा आप डिप्रेस्ड हो, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, विच वी नाउ नो इज नॉट ट्रू।
1: बिल्कुल मीनल, इस पे अपनी बात रखना चाहेंगी आप? आर्तिका की बात पे आप जवाब देना चाहेंगी?
6: नहीं, आई डोंट वांट टू आंसर आर्तिका एज सच, बट आई वांट टू से कि जब आप मीडिया में या ऐसी इंडस्ट्री में होते हैं तो यू एक्चुअली गिव अ चांस फॉर पीपल टू टॉक अबाउट यू ना। आप तो मीडिया इंडस्ट्री में हीरो हीरोइन का करेक्टर ही निभाने इसलिए गए हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू बी देयर। अब आप वहां जाए और आप बोले कि आप हमारे ऊपर कमेंट मत कीजिए, यू कांट टॉक अबाउट अस। अरे आप तो वहां गए इस बारे के लिए गए हैं, यू वॉन्ट टू बिकम अ हाउस नेम, यू वॉन्ट पीपल टू टॉक अबाउट योर सेल्फ। और अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि आप इस चीज का फिर वे आउट क्या है, यू वॉन्ट टू से कि आप पूरी लाइफ इतना स्ट्रगल करेंगे अपनी बॉडी के साथ, दिस इज नॉट राइट वे ऑफ लिविंग। एग्जैक्टली, सो द राइट वे ऑफ लिविंग इज टू एक्सेप्ट व्हाट यू फुली आर। और जब आप अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेंगे, यू इन लाइफ नथिंग एल्स बॉदर्स यू। अगर अर्पिता जी जैसे बोल रही थी कि उनको दांत के बारे में लोग बोलते हैं, अगर वो ये चीज एक्सेप्ट कर लेंगी तो यू नो शी विल नॉट गेट बॉदर्ड बाय एनीथिंग एल्स। और मैं आपको एक बहुत फनी बात बताती हूँ नवजोत, माय मदर इन लॉ आल्सो हैज दिस गैप, यू वोंट बिलीव, इवन आफ्टर 15 इयर्स ऑफ द मैरिज मैंने कभी वो गैप देखा ही नहीं।
1: जयंती जी आप बहुत अच्छे से दोनों को समझ पा रही। मैं एक छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, कितना इजी होता है इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना, खुद को इसके लिए तैयार करना कि मैं जैसी हूं या मैं जैसा हूं, आई एम हैप्पी विद माय बॉडी, विद माय कॉम्प्लेक्शन, विद माय हाइट एंड एवरीथिंग।
2: ये देखिए नवजोत जी, ये आपके अचीवमेंट आपकी सक्सेस से रिलेटेड है। अभी जैसे बता रही थी कि हम बैठे हैं आपके कैमरा के सामने और हम बता दें कि हमारे को ये चीज़ है ये चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं होता। देर इज़ अ साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। हम आपको देख के ही आपके बारे में नहीं निष्कर्ष ले पाते हैं, आपके एक दो कमेंट्स के साथ हम कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करते, हमें देखना पड़ता है। स्पेशली जब हम इंट्रोगेशन सिखाते हैं पुलिस ऑफिसर्स को या सीबीआई ऑफिसर्स को, तब हमें बताना पड़ता है कि बॉडी लैंग्वेज कितनी अहमियत रखती है। तो वहां पे आपको ये देखना पड़ता है कि मेरी बॉडी में क्या खामी है। देखिए जैसे जैसे आप टीनेज अवस्था से एडोलेसेंट अवस्था से एडल्टहुड की तरफ जाती है, तो बॉडी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर पर्सोना। और उस टाइम ही आपके जितने डिफेंसिव स्ट्रेटजीज हैं वो चालू हो जाते हैं। अगर आपने सही डिफेंसिव स्ट्रेटजी ले लिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी बॉडी में ये खामियां हैं, डजंट मैटर। जैसे मैंने कहा, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सुपीरियोरिटी में बदल जाती है। अब जैसे अंजलि जी की हम बात करें, अंजलि जी जिस ओहदे पे हैं, जिस मीडिया के स्तर पे ये पहुंची है, बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते, सो दैट इज आवर मेजर अचीवमेंट। सो अगर वो उस पे थोड़ा सा तवज्जो दे और भूल जाए कि मेरी बॉडी फ्रेम क्या है, किसने मेरे को क्या बोला, तो आई एम श्योर शी विल कम आउट ऑफ इट।
1: बिल्कुल, एक बार प्रदीप जी, हाँ आती है जयंती जी, प्रदीप जी अब मैं आपके पास आऊंगी। मुझे याद आया, अभी हाल फिलहाल में अंशुमन खुराना की और भूमि पेडनेकर की फिल्म आई थी ना, दम लगा के हैशा, और आपको याद होगा उसमें भूमि पेडनेकर को रोल ही इसलिए मिला था क्योंकि वो थोड़ा हैवी थी और उसको सब लोगों ने एक्सेप्ट किया था, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई इसको लेकर कि भाई वो इतनी मोटी हीरोइन इतनी मोटी कैसे हो सकती है, लेकिन तो उसको एक्सेप्ट किया सबने।
4: मैं तो भूमि को और उनकी बदर को बहुत पहले से जानता हूँ कि बदर भी हरियाणवी फिल्म की हीरोइन रही है और ये बहुत मोटी थी शुरू से बहुत ज्यादा, लेकिन उसको रोल इसलिए मिला नहीं तो पीआर की उसमें एजेंसी उनके साथ काम करती थी यशराज के अंदर, इसलिए रोल मिला। बाद में आप देखिए उसने अपने आप को इतना रिड्यूस कर लिया और अपने आप को चेंज कर लिया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं रोल के हिसाब से, जैसे आमिर खान भी देखिए कभी मोटे हो जाते हैं कभी पतले हो जाते हैं, कितना किस तरह के रोल करते हैं। और एक्ट्रेस भी अपने आप में बदलाव करती रहती है। अब श्रीदेवी देखिए कितना हिट हो गई थी, उसके बाद उन्होंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई। शिल्पा शेट्टी ने कई फिल्में आने के बाद अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई फेस की। देवानंद साहब ने प्लास्टिक सर्जरी कराई। बहुत लोग अपनी उसको लिए रोल के हिसाब से, समय के हिसाब से, उम्र बढ़ने के हिसाब से, या लगता है कि मेरे अंदर कमी है इसको कैसे दूर किया जाए, तो वो इस तरह सब करते रहते हैं।
1: अच्छा, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को खुद को भी, क्योंकि एक तो अंजलि का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको अपने अंदर खुद ये लगता है, उनके अंदर कोई ऐसी हीन भावना रहती है कि कुछ कमी है हमारे में?
4: देखिए जब हिट हो जाते हैं ना तब उनमें कोई काम कोई इस तरह की वो नहीं रहती। अब अक्षय कुमार को बोले आपके मसूड़े दिखते हैं हंसते दिखते तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, वो चली रहे उसके अंदर, उसको पसंद कर रहे हैं और बड़ा लाइटली लेते हैं, बड़े अच्छे से हंसी मजाक करते रहते हैं।
1: लेकिन सर एक और चीज बताइए, हाँ, मैं इसी पर आ रही हूँ। नॉर्मली जितना नेचुरल एक्टर होता है, ऐसा नहीं कि लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। भूमि ने जो फिल्म की थी वो बिल्कुल नेचुरल थी। अक्षय कुमार जब एक्टिंग करते हैं बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग होती है, जैसे भी है, जैसा भी अपीयरेंस है उसमें दस लोग कुछ कह सकते हैं, लेकिन जितना इंसान नेचुरल होगा एक्टर या एक्ट्रेस उतना उसको ज्यादा पसंद किया जाएगा। प्रदीप जी,
4: हाँ जी बिल्कुल। देखिए जिस तरह जो होता है अपने रोल के हिसाब से भी आपको जिस तरह की डिमांड होती है। अमिताभ बच्चन को देखिए पामे, उन्होंने किस तरह रोल किया, किस तरह की उनकी पूरी पहचान ही जाते थे, लेकिन उनको अपने अंदर जो है जब चल जाते हैं तब वो नहीं होता, लेकिन वो चाहते हैं कि इंप्रूव करते रहें। हम जब मार्केट के अंदर हैं हमारी किस तरह कोई भी चीज़ कमी ना हो हमको। अमिताभ बच्चन को देखिए उम्र के हिसाब से बढ़ रही है तो गले के अंदर उनकी वो दिखती है तो हमेशा जो है रुमाल पहन के रहते हैं जिससे वो दिखाई ना दे। तो अपने आप को बिल्कुल ठीक है करना चाहिए, इम्प्रूव इस तरह का होता है, अपनी जो भी पर्सनैलिटी किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं वो आपको करनी चाहिए। और ये सिलसिला चला आ रहा है, शुरू भी देखिए कितना जब एक्टर आते हैं। अब धर्मेंद्र जब आए शुरू में 1960 के दौर में तो वो प्रोड्यूसर से मिलने गए तो उन्होंने कहा हमको एक्टर चाहिए, फुटबॉल प्लेयर नहीं चाहिए, कोई कुश्ती वाला पहलवान नहीं चाहिए। उन्होंने फिर अपने आप को थोड़ा ठीक किया और उनको लगा बुरा लगा, उनसे बात होती थी घंटों घंटों, धर्मेंद्र से बात होती थी, इतनी अच्छी बात थी, अपनी सारी पर्सनल बातें कर जाते थे। आप ये देखिए पीने का उनको वो था, अब लोग कई बार ड्रिंक करते तो वो छुपके करते हैं शर्माते हैं, वो खुलकर बात करते थे उनकी, इधर नहीं मैं ड्रिंक करता हूँ तो करता हूँ, कोई बात ना भी करे तो भी हंसी मजाक के अंदर किसी भी शो में जाते थे, कहीं हमको मिलते तो ड्रिंक की बात कर लेते थे। तो ये क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस था कि मेरे में है तो है, जो आदत है मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, तो ये एक अच्छी चीज है।
1: वक्त अभी इतना ही है लेकिन देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। आज की तारीख में भी बॉडी शेमिंग को लेकर हर कोई कॉन्शियस रहता है, एक मेंटल हेल्थ के साथ भी हम इसको जोड़ देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि आप एक्सेप्ट कीजिए जैसे भी आप हैं। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है जो कि आप में होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: जम्मू कश्मीर के डोडा में कड़ी सुरक्षा के बीच सालाना कैलाश कुंड यात्रा का शुभारंभ हुआ। 3 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में पर्यटक हिस्सा ले रहे हैं।
6: आस्था भक्ति से सजी ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की है, जहां प्राचीन वासुकी नाग मंदिर से पवित्र छड़ी मुबारक के रवाना होने के साथ ही कैलाश कुंड यात्रा का शुभारंभ हुआ। ये उत्सव भगवान वासुकी नाग को समर्पित है, जिसे भद्रवाह घाटी के आराध्य देवता के रूप में पूजा जाता है। सदियों से कैलाश कुंड यात्रा की परंपरा चली आ रही है, जिसमें इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस यात्रा में श्रद्धालु पवित्र छड़ी को हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच कैलाश कुंड झील तक ले जाते हैं, जो समुद्र तल से करीब 14,700 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। आज श्रद्धालुओं का जत्था कैलाश कुंड पहुंचेगा और पवित्र झील में स्नान करेगा। इसके बाद यात्रा नलथी पहुंचेगी और कल यानी 10 सितंबर से वापसी यात्रा शुरू होगी।
7: सुखी नाग जी को भद्रवाह भद्रकाशी का राजा भी माना जाता है, और उसके बाद वासुकी नाग जी यहाँ जो ऊपर कैलाश है, जिसको यहाँ स्थानिया भाषा में कबलास कहते हैं, वासुक कुंड कहते हैं, और भगवान शिव यहाँ से हिमाचल प्रदेश चले गए चंबा में, और वासुकी नाग जी क्योंकि भगवान शिव के प्रिय भगत थे इसलिए वो वहाँ रहते, और तो आज हर वर्ष की तरह जो है यहाँ से यात्रा जाती है। इसके साथ जुड़े हुए यहाँ जागरू है, पट मेला है, बहुत सारा यहाँ पे कल्चर जो है वासुकी नाग का कल्चर, जो नागाज कल्चर है, यहाँ हर आदमी के इष्ट देवता जो है वह वासुकी नाग है।
6: दरअसल इस परंपरा के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। इन श्रद्धालुओं की मान्यता है कि भगवान वासुकी नाग भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए भद्र कैलाश झील गए थे। यहाँ के लोग आज भी बड़ी आस्था और भक्ति के साथ इस परंपरा को निभाते हैं। खास बात ये भी है कि इस पावन यात्रा में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं।
8: मैंने 96 में सुना था इनके बारे में, तो मेरी प्रार्थना अब जाके स्वीकार हुई भगवान वासुकीनाथ के यहाँ।
6: यहाँ के लोगों का मानना है कि पवित्र कैलाश कुंड झील के आसपास दुर्लभ औषधि पाई जाती है और ऐसी भी मान्यता है कि कैलाश कुंड के जल में स्नान करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। यही वजह है कि सालाना कैलाश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और इस साल भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: कौन सा ग्रह त्वचा की समस्याएं सबसे ज्यादा देता है? किन ग्रहों की वजह से त्वचा पे झुर्रियां पड़ जाती हैं? अलग अलग ग्रहों का त्वचा की समस्या में क्या है योगदान और क्या है ज्योतिष के अनुसार इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। आज सबसे पहले बात होगी उज्जैन के उस हनुमान मंदिर की, जिसकी तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर हर तरफ छाई हुई हैं। यहां हनुमान जी की मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। दावा यह किया जा रहा है कि मूर्ति टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। तो आखिर क्या है उज्जैन के इस हनुमान मंदिर की पूरी कहानी, आगे आपको विस्तार से बताएंगे।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए, बात होगी एंटरटेनमेंट की भी और बात होगी हनुमान अंश की, जिसका डंका बॉक्स ऑफिस पर लगातार बज रहा है। फिल्म तेजी से 200 करोड़ रुपए की कमाई के करीब पहुंच रही है। दरअसल देखिए, मंगलवार को भी फिल्म ने करीब 11 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और अब 11 सितंबर को फिल्म विदेशों में भी रिलीज होने जा रही है, यानी कि कमाई का जो दायरा है अब इस फिल्म का बढ़ने वाला है। इस खबर पर भी विस्तार से आगे चर्चा करेंगे।
5: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। देखिए, बात रवि किशन की भी करेंगे, जिनके मीम्स सोशल मीडिया पर अक्सर तहलका मचाते रहते हैं, लेकिन अब उनके एक वायरल मीम पर गाना बनाने की तैयारी भी हो रही है। आखिर कौन सा है वो मीम और कैसे मीम से गाने तक पहुंची है पूरी बात, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं देश भर की बड़ी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: गणपति उत्सव के रंग में रंगने लगी पूरी मुंबई। ऐतिहासिक चिंचपोकली उत्सव मंडल में इस बार भगवान वेंकटेश्वर बालाजी से प्रेरित रूप में दिखेंगे बप्पा। फतेहपुर शेखावटी में भादव मेले का आयोजन, मंदिर का भव्य श्रृंगार, राजस्थान समेत करीब 12 राज्यों के लोग मेले में शामिल होंगे। चमोली में धूमधाम से जारी है मानंदा की राजरथ यात्रा, जगह जगह लोकगीतों से हो रहा यात्रा का स्वागत, पहाड़ी संस्कृति के दिख रहे रंग। गणेशोत्सव को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, सभी गणेश पंडालों में मुफ्त होगी बिजली सप्लाई, भक्तों में खुशी की लहर। ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर राजधानी में तैयारियां तेज, दिल्ली के लगभग सभी होटल्स में बुकिंग फुल, चांदनी चौक में मेहमानों के लिए खास तैयारियां। ओडिशा के बालासोर जिले के जंगल में मिले 5 ओरंगुटान, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, नंदनकानन में रखा गया। उत्तराखंड के कई जिलों में कल से 14 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: चलिए शुरुआत करते हैं चाय पर चर्चा की। धर्म और आध्यात्म की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इसके लिए सड़कों को चौड़ा भी किया जा रहा है और इस अभियान के बीच एक अनोखी और भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है।
4: बिल्कुल, देखिए, कंठाल से छतरी चौक रास्ते पर 170 साल पुराने खड़े हनुमान मंदिर की प्रतिमा को नए स्थान पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन और इंजीनियरों की टीम इस काम में लगी हुई है, लेकिन आधुनिक तकनीक के बावजूद हनुमान जी की प्रतिमा अपने स्थान से टस से मस नहीं हुई है। अब इस मामले में IIT इंदौर की मदद ली जा रही है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से हनुमान जी की प्रतिमा हिलने का नाम नहीं ले रही है, जिसके बाद IIT से संपर्क साधा जा रहा है।
7: उज्जैन में सहस्त्र 2028 की तैयारियों के बीच सड़क चौड़ीकरण और आस्था आमने सामने है। सड़क चौड़ी करने के लिए प्रशासन ने प्राचीन खड़े हनुमान मंदिर का भवन तोड़ दिया, लेकिन जब बारी हनुमान प्रतिमा को हटाने की आई तो मामला अटक गया। प्रतिमा अपनी जगह से नहीं हिली। स्थानीय लोगों ने महाआरती की और प्रशासन से प्रतिमा नहीं हटाने की मांग की।
8: महाआरती के माध्यम से शासन प्रशासन दोनों को ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा को यहीं रहने देखो, कि आपने सारे प्रयास कर लिए, बाबा यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। अगर बाबा यहाँ से जाएंगे तो इस क्षेत्र की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी और यहाँ का व्यापार शून्य हो जाएगा, और जो हजारों लाखों भक्त बाबा के यहाँ पे आते हैं अपने आस्था लेके, वो कहाँ जाएंगे।
9: ये स्थान लगभग 200 वर्षों से पहले का स्थान है और इस स्थान पर देश के नहीं अपितु देश के अलावा भी बाहर के लोग भी यहाँ पे आते हैं।
7: मामला उज्जैन के कंठाल चौराहे से छत्री चौक तक होने वाले सड़क चौड़ीकरण से जुड़ा है। सहस्त्र 2028 से पहले पुराने शहर के इस हिस्से को व्यवस्थित करने की तैयारी है। प्रशासन ने सड़क की जद में आ रहे मंदिर के भवन को तोड़ दिया, लेकिन जब बात हनुमान प्रतिमा को सुरक्षित स्थापित करने की आई तो चुनौती बढ़ गई।
8: सामने जो आप प्रतिमा देख रहे हैं ये वही खड़े हनुमान जी की प्रतिमा है, जिसे लेकर के उज्जैन में पिछले 10 दिनों से विवाद चल रहा है। जो प्रशासन है वो सड़क चौड़ीकरण यहाँ पे कर रहा है सिंहस्थ 2028 के चलते, जिसके चलते अगर आप देखें तो इस इलाके के जो तमाम मकान और दुकानें हैं उन्हें तोड़ा गया है और पूरा इलाका जो है वो चौड़ीकरण की जद में है, और इसीलिए जो मंदिर बीच में आ रहे थे, धर्म स्थान आ रहे थे, उन्हें भी हटाने की प्रक्रिया सरकार की तरफ से की जा रही है, प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन मंदिर का एक हिस्सा टूट गया और बाकी अभी जो प्रतिमा है वो स्थापित है।
7: प्रतिमा को नीचे से हटाने की कोशिश छेनी हथौड़े के प्रयास से की गई, लेकिन प्रशासन को सफलता नहीं मिली। अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है।
10: मूर्ति के चारों तरफ की दीवार वगैरह सब चीजें हट चुकी थी, पर जब मूर्ति स्थापन की कार्रवाई की जा रही थी तो ऐसा संज्ञान में आया कि तकनीकी परीक्षण भी इसमें करा लिया जाए। उस तकनीकी परीक्षण की कार्रवाई हमारे द्वारा संचालित की जा रही है प्रशासन के पूरे समन्वय से, और आगे की कार्रवाई जैसी भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे निर्णय आपसी सहमति के आधार पर लिया जाएगा।
7: उज्जैन के लोगों का दावा है कि प्रतिमा हटाने की 4 बार कोशिश हो चुकी है। ऐसे में उनका सवाल है कि जब कई कोशिशों के बाद भी प्रतिमा नहीं हिली तो आखिर इसे हटाने की जरूरत ही क्यों है। अब मांग साफ है, सड़क बने लेकिन हनुमान जी अपनी जगह पर स्थापित रहें।
9: हम भी चाहते हैं कि भाई विकास में हम लोग रोड़ा नहीं है, लेकिन विकास के नाम पे आज तक सब खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम लोग सहमत है, प्रशासन ने मंदिर तोड़ा हम सहमत थे, मूर्ति हटाने का प्रयास किया, एक नहीं तीन तीन चार चार बार किया, जब मूर्ति नहीं हटा पाए तो जैसे हमारा मानना है कि भगवान की इच्छा नहीं है,
11: बाबा यहीं रहना चाहते हैं और बाबा को यहीं रहने दें।
7: उज्जैन ही नहीं, इंदौर से बुलाए गए विशेषज्ञ इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने भी 2 दिन तक सावधानी के साथ प्रयास किया ताकि मूर्ति में कोई टूट फूट ना हो। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल बिना किसी जल्दबाजी के काम करने का फैसला किया है। प्रशासन की योजना प्रतिमा को पूर्ण सम्मान और सुरक्षा के साथ टंकी चौक पर स्थापित करने की है। प्रतिमा के आधार की स्थिति जांचने के लिए 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया है। अब पुरातत्व विभाग की टीम अत्याधुनिक मशीनों से प्रतिमा के आकार, अंदरूनी संरचना और आसपास की मिट्टी को स्कैनिंग करेगी। रिपोर्ट आने के बाद ही अगली तकनीक पर काम किया जाएगा।
12: मशीनों के तरह से देखें तो मशीन से पूरा संपन्न भारत है। जो प्रतिमा है वो 121 साल पुरानी वहाँ प्रतिमा है। प्रशासन चाहे तो उस प्रतिमा को न्यू सहित, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है, न्यू सहित उठा के भी प्रॉपर उसको विराजमान कर सकती है, क्योंकि यह क्या है, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस प्रतिमा को प्रॉपर तरीके से न्यू सहित उठा के उस प्रतिमा को फिर से स्थापित किया जाए।
7: इतिहास के जानकारों का मानना है कि बजरंगबली की प्रतिमा काफी प्राचीन है। हालांकि प्रतिमा पर लंबे समय से चढ़ाए जा रहे सिंदूर की मोटी परत के कारण इसकी मूल भाव भंगिमा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। मंदिर का स्थान उज्जैन के ऐतिहासिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण माना जाता है।
13: उज्जैन के प्राचीन क्षेत्र में आता है और प्राचीन क्षेत्र में अनेक मूर्तियां और इस देवस्थान जो है वो महत्वपूर्ण है, उनमें से एक खड़े हनुमान भी है। हनुमान की आराधना भारत में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है।
7: एक तरफ सिंहस्थ से पहले उज्जैन को बेहतर सड़कें और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहीं दूसरी तरफ इसी विकास की राह में आस्था की ये तस्वीर खड़ी है। अब चुनौती प्रशासन के सामने है कि सड़क भी चौड़ी हो, विकास भी हो, लेकिन हनुमान भक्तों की भावना का भी ख्याल रखा जाए।
14: प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि बिना किसी वैज्ञानिक रिपोर्ट के प्रतिमा को नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। प्रशासन ने बाकायदा IIT इंदौर की मदद लेने का मन बनाया है। IIT इंदौर की टीम प्रतिमा के नीचे जो वास्तविक रिपोर्ट है उसे तैयार करके प्रशासन को सौंपेगी और उसके बाद ही प्रशासन प्रतिमा को किस तरीके से वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हटाया जाए, जिससे प्रतिमा को कोई नुकसान ना हो, ना ही उस स्ट्रक्चर को कोई नुकसान हो, उसके बाद ही आगे का फैसला करेगा। लेकिन इस बीच लोगों ने अब खड़े हनुमान मंदिर पे प्रतिमा के ना हटने को धर्म और चमत्कार से जोड़ दिया है। ये खबर सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुई, लोग न केवल उज्जैन के बल्कि आसपास के अन्य शहरों से भी खड़े हनुमान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, उनके फोटो वीडियो बना रहे हैं और फिर उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर इसे हनुमान जी का चमत्कार बता रहे हैं। लेकिन प्रशासन भी अब वैज्ञानिक स्टडी के बाद ही इस प्रतिमा को हटाने को लेकर किसी फैसले की बात कर रहा है। गुड न्यूज टुडे के लिए उज्जैन से मैं रवीशपाल सिंह।
5: तो चलिए बात करते हैं हनुमान अंश की, जिसने थिएटर्स में काफी ज्यादा बज बनाया हुआ है। नीम करौली बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है और इस फिल्म ने बॉलीवुड की तमाम बड़े बजट वाली फिल्मों को पछाड़ दिया और ये भी कहा जा रहा है कि धुरंधर को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब इस मूवी से ये तो साफ है कि कम बजट में भी कितनी अच्छी मूवी बन सकती है।
15: एक और चीज देखिए, टॉक्सिक कुछ पछाड़ कर नंबर वन पे ट्रेंड कर रही थी।
5: बिल्कुल,
15: अब आप इमेजिन करो टॉक्सिक जैसी फिल्म, 5 हीरोइनें और एक दमदार हीरो और फिर इतना बड़ा बजट जिसको लेकर चर्चाएं बहुत हुई, पब्लिसिटी बहुत हुई, लेकिन बावजूद इसके देखिए।
4: बिल्कुल, देखिए भारत में ही इस फिल्म ने यानी हनुमान अंश ने 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया है और अब बहुत जल्द फिल्म का जो कलेक्शन है 200 करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला है। और खास बात यह है कि फिल्म का बजट महज 2 करोड़ रुपए था, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत छोटे बजट में ये फिल्म बनी है और अब ये कमाई के नए रिकॉर्ड्स बना रही है और इसे ना स्लीपर हिट कहेंगे, सरप्राइज हिट का साल है। मैं तो कहूंगी साल 2026 जो आपने सोचा ना हो वो हो जाता है इस साल में। और ऐसे ही हनुमान अंश ने टॉक्सिक जैसी फिल्म जो कि 700 करोड़ रुपए के बजट में बनी, यश उसमें है, उसे पछाड़ दिया। साथ ही में मिर्जापुर द फिल्म,
15: बिल्कुल
4: उसे भी।
15: एक ये तस्वीर देखिए, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी टीम से मुलाकात की। वैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके बाद शायद ये फिल्म टैक्स फ्री भी हो जाए, लेकिन ये तस्वीर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको याद हो तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ये फिल्म देखी थी।
4: बिल्कुल, और अब आप देखिए जैसे आप कह रहे टैक्स फ्री हो सकती है और दूसरा पार्ट भी इस फिल्म का बताया जा रहा है कि जल्दी आने वाला है। ऐसे में दर्शकों की जो उत्सुकता है इसे लेकर के बहुत बढ़ गई है।
15: स्टार कास्ट डायरेक्टर आज मुख्यमंत्री से मिले भी हैं और चर्चा उनके साथ भी उन्होंने की है।
7: हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है हनुमान अंश की कमाई और इसकी लोकप्रियता, जिसके बूते आध्यात्मिक गुरु नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित ये फिल्म अब सात समंदर पार की उड़ान भरने के लिए तैयार है।
16: युद्ध पे आ गई पार्वती, पार्वती पार्वती समझाने पहुँचे सप्तऋषि, सप्तऋषि सप्तऋषि काय जिद कर रही, काय खुमर रही, काय जिद कर रही, काय खुमर रही है सेवर के लाने, काय सेवर के लाने जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर ऐसा, जाके शीश पे गंगा और गले पे डारे फिर ऐसा, इतने सीधे सादे हैं सब कहते भोलेनाथ भोलेनाथ।
7: 11 सितंबर को हनुमान अंश विदेश में रहने वाले नीम करौली बाबा के भक्तों और तमाम दर्शकों के लिए रिलीज की जाएगी। ये दिन इसलिए भी खास है कि 11 सितंबर को नीम करौली बाबा की 53वीं महासमाधि पुण्यतिथि है। इधर देश के कोने कोने तक फिल्म को प्रमोट करने के मकसद से टीम हनुमान अंश यूपी के सफर पर भी पहुंची।
17: ये थिएटर्स में लगी है, तब तक हम इस फिल्म को प्रमोट करते रहेंगे, हम इस फिल्म को जगह जगह ले जाते रहेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। और इसको जन जन तक पहुंचाना है, बच्चों को फिल्म दिखानी है, क्योंकि फिल्म बच्चों को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई गई है कि बच्चों को सब महत्व पता चले हनुमान चालीसा का महत्व।
18: हनुमान अंश किस कदर दर्शकों के दिलों पर छा गई है, बॉक्स ऑफिस के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। महज 2 करोड़ रुपए के मिनी बजट में बनी ये फिल्म अब तक 170 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और अब भी रोजाना करोड़ों में कमाई कर रही है। रिलीज के 33वें दिन यानी 5वें मंगलवार को इसने 11 करोड़ का दमदार कलेक्शन किया। जाहिर है ओवरसीज रिलीज के बाद इसके कलेक्शन में और भी तेजी से इजाफा होगा।
19: फिल्म हनुमान अंश को दर्शकों से बेहद ही शानदार और भावुक रिस्पांस मिल रहा है। रिलीज के बाद अब 100 करोड़ से भी ज्यादा ये मूवी जो है वो कमाई कर चुकी है और लगातार लोग जो है, फैमिलीज जो है, वो इस मूवी को देखना पसंद कर रही है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि मूवी के बाहर जो है लोगों की भीड़ आपको थोड़ी बहुत नजर आ जाएगी, हालांकि कुछ लोग अभी पीछे गए, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग नजर आने वाले जो इस मूवी के बारे में सुन सुनकर यहाँ पर आए। तो लोगों के मन में क्या चल रहा है मूवी देखने से पहले वो हम जानेंगे। तो मैम आपसे ही सवाल है, मूवी के बारे में किसने आपको बताया, क्या कुछ सुनने को मिला?
20: जी मेरी बेटी ने बताया, कहा कि मम्मी आप देख के आओ, बहुत अच्छी फिल्म है।
19: हनुमान जी के भक्त हो वैसे, ये बताइए।
20: जी हाँ,
19: निमकरौली बाबा के आश्रम गए हो आप?
20: नहीं
19: नहीं, लेकिन मूवी देखने आप जरूर आए हो।
20: जी हाँ।
19: आप बताइए अंकल, आप कितना एक्साइटेड है मूवी देखने के लिए, कि मतलब कैसी मूवी होने वाली, क्या लग रहा है?
21: मूवी तो बढ़िया हुई है।
19: हाँ।
21: बढ़िया हुई, अच्छी हुई है।
19: जी, ये जेन जी के अंदर भी क्रेज आ रहा है, क्योंकि जेन जी जो है इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से भजन क्लबिंग भी ट्रेंड बन गया, उसमें भी जेन जी का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। एज अ जेन जी आप मूवी देखने आए हो, तो कैसे, कितने एक्साइटेड हो?
22: मैम बहुत एक्साइटेड है, मेरे पापा जी ने रिकमेंड करी थी मेरे को, तो उन्हीं के रिगार्डिंग मैं आया हूँ।
19: अच्छा, उन्हीं के रिगार्डिंग?
22: मेरे पापा जी देख गए।
19: अच्छा, उनको अच्छी लगी?
22: मेरे मम्मी पापा दोनों देख गए मूवी।
19: कैसा रिस्पॉन्ड था उनका?
22: अच्छा था,
19: अच्छा था,
22: बहुत अच्छा।
18: आम दर्शकों को तो छोड़िए, हनुमान अंश ने फिल्म हस्तियों को भी अपना दीवाना बना दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने थिएटर में जाकर ये फिल्म देखी। नीम करौली बाबा के किरदार में एक्टर शोभिनव सत्य की सादगी और सच्चाई की प्रीति मुरीद हो गई। प्रीति ने सिनेमा घर में फिल्म देखते हुए अपने इंस्टा अकाउंट पर तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में सीताराम और वाह लिखा। धुरंधर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले आदित्य धर ने भी फिल्म की काफी सराहना की है। विवेक ओबराय भी हनुमान अंश के मुरीद बन बैठे।
23: मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई दायरा फिक्स्ड नहीं है। कुछ लोगों को वेब सीरीज अच्छी लग रही है, कुछ लोगों को फिल्म्स अच्छी लग रही हैं। ये वही भारत है जहाँ पे मिर्जापुर जैसी फिल्म भी बहुत अच्छी चलती है, हनुमान अंश जैसी फिल्म भी इतनी खूबसूरत चलती है, छोटी से बजट की, कोई स्टार नहीं, लेकिन कई लोग जाके देखते हैं, उसे इतना प्यार देते हैं, इतना सराहना देते हैं। तो आई थिंक ये ऑडियंस के मन में क्या है और ऑडियंस चाहती क्या है, ये तो बहुत मुश्किल है समझ।
18: वरुण धवन तो अपनी माँ के साथ फिल्म देखने थिएटर पहुँचे और उसके बाद एक वीडियो संदेश के जरिए तमाम लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील कर डाली।
24: मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको बोलना चाहता हूँ कि प्लीज जाइए थिएटर में एंड वॉच हनुमान अंश। आई जस्ट वेंट विद माय मॉम एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। गो, अपने माता पिता को लेके जाइए, अपने बच्चों को लेके जाइए, गो विद योर फ्रेंड्स। आई हाईली रिकमेंड दिस फिल्म टू एवरीवन। किसी ने मुझे बोला नहीं है ये बनाने के लिए, कोई किसी का फोन वोन कुछ नहीं, आई जस्ट वॉन्टेड टू डू दिस। एंड बचपन से मेरा एक कनेक्शन रहा है हनुमान जी के साथ, बट दिस इज समथिंग एल्स। ये देखिए, बहुत ही प्योरली बनी हुई फिल्म है। आई वुडंट इवन कॉल इट अ फिल्म, इट्स जस्ट इट्स समथिंग डिवाइन।
18: आज के दौर में जहां ज्यादातर फिल्में हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स, हिंसा और भारी भरकम वीएफएक्स पर निर्भर हो गई है, तो वहीं बिना मिर्च मसाले के हनुमान अंश अपनी सादगी से दर्शकों का दिल जीत रही है। दिल्ली से मनीषा लड्डा और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
25: चलिए अब बात बप्पा के आगमन की कर लेते हैं, क्योंकि पूरे देश में देखिए किस तरीके से रंग बिखरे हुए हैं। हर कोई अपनी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहा है, कोई बप्पा की खरीदारी के लिए जा रहा है, कोई मोदक घर पे बना रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग मोदक भी घर पे बनाते हैं, और कहीं कहीं क्योंकि बप्पा घर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसे एक सजाया भी जाएगा उसे।
26: बिल्कुल, और एक दूसरे को गिफ्ट भी करते हैं कि उनको खिलाया जाता है कि मोदक हमने अच्छे बनाए या तुमने अच्छे बनाए, ये भी कॉम्पिटिशन होता है।
27: मोदक मुझे लगता है आजकल तो अलग अलग फ्लेवर्स में भी आ रहे हैं ना मार्केट में,
26: अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं दिल्ली में जो मैं देख रही हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, जो घर में गणपति बप्पा को विराजमान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि मैंने देखा था दिल्ली एनसीआर में इतना ट्रेंड नहीं था, ट्रेंड फॉलो नहीं होता था, लेकिन अब लोग बहुत आस्था से लेकर आते हैं, पूरा तीन दिन तक या चार जितने भी मन होता है वो गणपति बापा को रखते हैं और सेलिब्रेट भी बहुत अच्छे से करते हैं। और मोदक के लिए मुझे इंतजार है कि जल्दी मिलने वाले हैं,
25: नहीं वो हम आपको चाय पे चर्चा में खिला देंगे,
26: खिलाएंगे, इधर ही आए। बिल्कुल, देखिए अकोला में आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के बीच चिंतामणि गणपति बप्पा का स्वागत किया गया है। सूरत में उड़ीसा के मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर भव्य गणेश पंडाल तैयार किया जा रहा है, और देखिए अकोला और सूरत से बप्पा के आगमन की शानदार तस्वीरें आई हैं।

0: अकोला का शास्त्री नगर खुशी से झूम रहा है। आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के बीच चिंतामणि गणपति बप्पा का स्वागत हो रहा है। जाहिर है यहाँ गणेश भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सबकी चिंता हरने, मनोकामना पूरी करने बप्पा जो पधार रहे हैं। सिविल लाइन चौक पर जैसे ही बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा से लाल कपड़ा हटाया गया, अपने आराध्य के दर्शन कर भक्त खुशी से झूम उठे। ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा का स्वागत किया गया और गणपति बप्पा मोरिया की गूंज के साथ यहाँ की फिजाओं में बप्पा की भक्ति की सुगंध फैल गई। ये अकोला के चिंतामणि गणपति का भव्य स्वरूप है। हर भक्त यहाँ अपने आराध्य के दर्शन कर खुद को धन्य महसूस कर रहा है। गणेश भक्त बप्पा से अच्छी बारिश की कामना कर रहे हैं ताकि यहाँ के किसान परिवारों के जीवन में सुख समृद्धि आए और चिंतामणि विघ्नहर्ता सबकी चिंता दूर करें।
1: बाप्पा आने के बाद सब आगमन में जो होता है तो उसमें सब विघ्न दूर हो जाते हैं और ये चिंतामणि है, मन की सब चिंता दूर कर देता है।
0: सूरत में भी गणेशोत्सव को लेकर भारी उत्साह दिख रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में गणपति प्रतिमाओं के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है। ये तस्वीरें भटार इलाके की हैं। यहाँ गणेश मंडल की ओर से उड़ीसा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर भव्य गणेश पंडाल तैयार किया जा रहा है।
2: यहाँ पे एक महाराष्ट्र की टीम और सूरत के लोकल डेविड भाई करके एक मंडप का बहुत बड़ा इवेंट का आयोजन करते हैं और पिछले 3-4 महीनों से अलग अलग थीम पे बातें होती रहती है, तो हम लोग ने इस बार सूर्य कोणार्क मंदिर पे पंडाल बनाने का आयोजन किया है।
0: हर साल ये गणेश मंडल अलग अनोखी थीम के लिए गणेश भक्तों के बीच खास पहचान रखता है। इस बार पंडाल को ऐतिहासिक कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर तैयार किया गया है, जिसका निर्माण स्थानीय कलाकारों के साथ महाराष्ट्र से आए दस्तकारों ने मिलकर किया है।
3: ये सूरत के भटार इलाके में साईंराम युवक मंडल है जहां की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं।

0: में भगवान को बैठाया जाएगा और उनकी पूजा पाठ की जाएगी। तो गणेश उत्सव को लेकर के एक तरफ जहां महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में शहरों में उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं महाराष्ट्र से सटे गुजरात के सूरत में भी गणेश उत्सव को लेकर के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग थीम पर भगवान गणेश के पंडाल तैयार किए जा रहे हैं।
1: इससे पहले बप्पा के आगमन की शोभा यात्रा में धार्मिक आध्यात्मिक संस्कृति के भव्य रंग देखने को मिले। आगमन यात्रा में भगवान के 12 अवतारों को भी अलग अलग रूपों में दिखाया गया। इस दौरान धार्मिक और पौराणिक कथाओं से जुड़े पात्रों को देश के कोने कोने से आए कलाकारों ने अपनी वेशभूषा और अभिनय के जरिए जीवंत कर दिया। इस तरह गणेश उत्सव के पहले ही सूरत शहर बप्पा की भक्ति में सराबोर है। अकोला से धनंजय साबले और सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: उत्तराखंड के चमोली में इन दिनों आस्था का अनोखा रंग देखने को मिल रहा है। मां नंदा की बड़ी जात यात्रा को लेकर गांव-गांव श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। 12 साल बाद यह यात्रा आयोजित की जाती है और हर बार की तरह इस बार भी ढोल दमाऊं और जागरों के बीच मां नंदा की डोली आगे बढ़ रही है।
3: भक्तों के लिए सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि पहाड़ की बेटी को उसके मायके से कैलाश तक पहुंचाने की सदियों पुरानी परंपरा है। कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरती ये यात्रा अब अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही है, जहां मां नंदा की विदाई के साथ ही भावनाओं का सबसे बड़ा क्षण सामने आएगा।
4: वाद्य यंत्रों की ध्वनि से चमोली की वादियां गूंज रही है। कहीं मां नंदा के जागर गाए जा रहे हैं तो कहीं महिलाएं लोक गीतों के जरिए पहाड़ की बेटी को विदाई दे रही है। नंदा देवी की स्तुति में उठते ये सुर उत्तराखंड की फिजाओं को सुरमयी बना रहे हैं। हर गीत में भक्ति है, हर स्वर में विरह है और हर विदाई में अपनी बेटी को मायके से ससुराल भेजने की पहाड़ की सदियों पुरानी परंपरा है।
5: 12 वर्षों के बाद मां नंदा की डोली इस समय नंदा देवी बड़ी जात की यात्रा इस समय चल रही है। ये डोलियां है जो इस समय यहां से अलग अलग पड़ाव से अलग अलग गांव होते हुए आगे बढ़ रही है। इसके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं जो श्रद्धालु है वो चल रहे हैं जय मां नंदा। और बड़ी जात क्योंकि 12 वर्षों के बाद ये हो रही तो बड़ा उत्साह हर गांव हर पड़ाव हर जगहों पे इस समय देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु जो हैं बड़े उत्साह के साथ यहां पे देखने को मिल रही हैं।
4: मां नंदा की बड़ी जात यात्रा ने इन दिनों पूरे चमोली को नंदामय कर दिया है। लंबे अंतराल के बाद मां नंदा की डोलियां गाँव गाँव पहुँच रही है। जहाँ जहाँ डोलियां पहुँच रही है वहाँ आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कहीं फूलों से स्वागत हो रहा है तो कहीं पारंपरिक वाद्य यंत्रों और जागरों के बीच मां नंदा के जयकारे गूंज रहे हैं, मानो पूरा पहाड़ अपनी बेटी के स्वागत में पलके बिछाए खड़ा हो।
6: बहुत आस्था है भक्तों की यहाँ पे और बहुत काफी जनसंख्या में भीड़ लगी है और हम माता को अपनी माँ मान के साक्षी मान के हम उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं।
4: 5 सितंबर को नंदा नगर घाट के कुरुड़ सिद्धपीठ मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान के बाद 3 प्रमुख डोलियां कैलाश की ओर रवाना हुई थी। अब यही डोलियां गांव गांव पहुंच रही है और जहां जहां मां नंदा की डोली पहुंच रही है ढोल दमाऊं की गूंज जागरों के सुर और फूलों की बारिश के बीच मां नंदा का भव्य स्वागत हो रहा है।
7: हम लोग माता जी का बड़ा स्वागत कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपनी बिटिया के तरह इनको विदा कर रहे हैं और माँ हम लोगों का सब पे आशीर्वाद बना रहे हैं।
4: पहाड़ में माँ नंदा को सिर्फ देवी नहीं बल्कि अपनी बेटी और बहन के रूप में पूजा जाता है। यही वजह है कि उनकी यात्रा में भक्ति के साथ अपनापन और भावनाओं का भी अनोखा रंग देखने को मिलता है।
8: भगवती नंदा खुद राजा राजेश्वरी है और कामाख्या खुद राजा राजेश्वरी का ही स्थान है, तो माई की प्रेरणा से ही मैं मैया के साथ आया हूँ। मूल रूप से मान लीजिए कि भगवती हमारी माँ है और राजराजेश्वरी भगवती यहाँ की बेटी

0: छुट्टी है तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मैं अपने मामा के वहाँ हूँ, और जैसे मामा के वहाँ सबको प्यार मिलता है वैसा ही प्यार मुझे यहाँ पर मिल रहा है।
1: 15 सितंबर को चमोली के बांड गांव में तीनों डोलियों का भव्य मिलन होगा। इसके बाद बांड से आगे मां नंदा की तीनों डोलियां एक साथ कैलाश की ओर बढ़ेंगे। यहीं से शुरू होगा बड़ी जात यात्रा का सबसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण सफर। ऊंचे पहाड़, कठिन चढ़ाई और दुर्गम रास्तों के बीच डोलियां आगे बढ़ेंगे। हर कदम के साथ मंजिल होगी मां नंदा का कैलाश धाम, और भाव होगा अपनी बेटी को उसके ससुराल तक पहुंचाने का।
2: पहले जो हमारी कुरूर से मां नंदा का आगमन हुआ बंड क्षेत्र में, तो सबसे पहले हमारे पूरे गांव का भ्रमण करती है। दूसरे में एक एक दिन पड़ाव भी रहता है उनका, और उसके बाद हम लास्ट में जाएंगे अपना बंड भूमियाल का मंदिर है, और वहां से हमारी जो है 11 बजे करीबन हम कैलाश के लिए हमारी माता प्रस्थान करेगी।
1: बेदनी बुग्याल और शिला समुद्र के दुर्गम पड़ावों को पार कर 20 सितंबर को यात्रा होमकुंड पहुंचेगी, जहां विशेष पूजा अनुष्ठान के बाद मां नंदा को विदाई दी जाएगी। इसके बाद परंपरा के अनुसार चौसिंगिया खाड़ू कैलाश की ओर प्रस्थान करेगा और पीछे रह जाएगा पहाड़ की आंखों में बेटी की विदाई का भाव। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में पीजी यानी पेइंग गेस्ट आवासों और कोचिंग संस्थानों को व्यवस्थित करने के लिए सरकार जल्द ही पॉलिसी लाने वाली है। प्रस्तावित बिल में पीजी का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, किराए और सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा, सीसीटीवी और सुरक्षा गार्ड से लेकर शिकायतों के समाधान तक के लिए नए नियमों का प्रस्ताव है।
4: देखिए, पीजी आवासों की जो जानकारी है वो एक जगह उपलब्ध कराने के लिए एक कॉमन वेब पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। पोर्टल से छात्रों को पीजी की अवेलेबिलिटी, वहां मिलने वाली सुविधाओं और सुरक्षा मानकों की जानकारी मिल सकेगी। इससे दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले जो छात्र हैं, जिनकी सबसे ज्यादा तादाद होती है, उनको पीजी खोजने में काफी ज्यादा आसानी होगी।
3: और देखिए, नए नियम से दिल्ली में छात्रों को आसानी से सुरक्षित ठिकाना मिलेगा। दिल्ली में कहां कहां पीजी खाली है, किराया कितना है, क्या क्या सुविधाएं हैं, सारी जानकारी मिलेगी। पीजी से संबंधित शिकायतों और विवादों का निपटारा भी तय समय के भीतर ही होगा।
5: दिल्ली सरकार पीजी आवासों को अब नियमों के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। सरकार का मकसद छात्रों को सुरक्षित और पारदर्शी आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है। राजधानी में संचालित होने वाले सभी पीजी का पंजीकरण कराना जरूरी है। पीजी संचालकों को अपना संचालन जारी रखने के लिए ऑपरेटिंग लाइसेंस लेना होगा। हर पीजी को एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, जिससे उसकी पहचान आसानी से हो सकेगी। पीजी संचालकों के लिए पुलिस, नगर निगम और स्थानीय प्रशासन से एनओसी लेना जरूरी होगा।
4: देखिए, पीजी के एंट्री गेट और कॉमन एरिया में सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगाना अनिवार्य होगा, मैंडेटरी होगा। रात के समय पीजी में सुरक्षा के लिए गार्ड की व्यवस्था करना जरूरी होगा। नए नियम लागू होने के बाद पीजी में किराए की मनमानी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी इससे, और सरकार एक पोर्टल के जरिए अलग अलग पीजी से जुड़ी जानकारी लोगों के लिए उपलब्ध कराएगी। इस पोर्टल पर पीजी का किराया कितना है, उपलब्ध सुविधाएं क्या है और सुरक्षा व्यवस्था जैसी जानकारी दी जाएगी। पीजी से जुड़े किसी भी विवाद को अधिकतम 15 दिनों के भीतर निपटाना होगा।
3: तो चलिए, यहां वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे क्या है एप्पल का नया सरप्राइज।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: अब ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
6: गणपति उत्सव के रंग में रंगने लगी मुंबई। ऐतिहासिक चिंचपोकली उत्सव मंडल में इस बार भगवान वेंकटेश्वर बालाजी से प्रेरित रूप में दिखेंगे बप्पा। आंध्र प्रदेश में गणेश उत्सव को लेकर गुड न्यूज, राज्य सरकार ने सभी गणेश पंडालों में बिजली मुफ्त देने का किया ऐलान। उत्तराखंड के चमोली में मां नंदा देवी की राज जात यात्रा धूमधाम से जारी, लोक गीतों के साथ यात्रा का स्वागत कर रहे लोग पहाड़ी संस्कृति के दिख रहे हैं। तो देखिए आज एप्पल का बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसका नाम है सरप्राइज एंड शाइन। कंपनी पहले ही बता चुकी है कि भारतीय समय के मुताबिक ये इवेंट बुधवार रात 10:30 पर शुरू होगा। इवेंट अमेरिका के एप्पल पार्क में होगा और इस बड़े इवेंट में सबसे ज्यादा नजर जिस प्रोडक्ट पर रहने वाली है वो है आईफोन फोल्ड अल्ट्रा, यानी एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन। और इसके साथ ही कंपनी आईफोन 18 प्रो से भी पर्दा उठा सकती है, इसे लेकर के लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं।
4: बिल्कुल, देखिए सिर्फ आईफोन ही नहीं, एप्पल के नए एयरपॉड्स और नई एप्पल वॉच भी इवेंट में देखने को मिल सकती है। और इस बार एप्पल का इवेंट इसलिए भी खास है क्योंकि करीब 15 साल में पहली बार कंपनी के नए सीईओ जॉन टर्सन इवेंट की शुरुआत करते नजर आएंगे। माना जा रहा है कि वो कंपनी की नई स्ट्रेटजी और आने वाले प्रोडक्ट्स को लेकर बड़ा संदेश भी दे सकते हैं।
7: मैं इस वक्त हूँ कुपरटिनो में, जो कि एप्पल पार्क, जहाँ पे आईफोन इस साल का लॉन्च होने वाला है, बस कुछ ही देर दूर है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस साल के आईफोन लॉन्च के लिए। सबसे पहले तो बात करें आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स, जो कि दो डिवाइसेस इस साल लॉन्च होंगे। डिज़ाइन के मामले में ज़्यादा कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि डिज़ाइन 17 प्रो मैक्स जैसा ही लगने वाला है। लेकिन अगर थोड़े कुछ चेंजेस की बात करें जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो है डायनामिक आइलैंड चेंज होगा, जो एक बार होता है आगे वो छोटा हो जाएगा। अंदर बैटरी एफिशिएंसी चेंज होगी क्योंकि एक नया A20 प्रो एक चिपसेट नया एप्पल इसमें डालेगा। और डिजाइन के बारे में बात करें, पीछे जो कैमरा है आइलैंड बिल्कुल सेम रहने वाला है, लेकिन एक वेरिएबल एपर्चर कैमरा आपको प्रो मैक्स मॉडल में मिलेगा, जिससे आपकी फोटोग्राफी थोड़ा डेप्थ आपको जो मिलता है वो चेंज हो सकता है। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन में ज़्यादा आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे। ऐसा भी माना जा रहा है कि जो इस साल का जो कवर है, जो 17 प्रो में आप यूज़ कर सकते थे, वो आप 18 प्रो में भी यूज़ कर पाएंगे, तो एक्सेसरीज काफ़ी सिमिलर रहने वाली हैं। तो 18 प्रो और प्रो मैक्स ये दो मॉडल्स जो लॉन्च होंगे, ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। प्राइसिंग के मामले में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकी प्राइसिंग कम से कम 1,20,000 से शुरू होगी, क्योंकि इस साल आपको शायद जो आईफोन 18 जो बेस मॉडल होता है वो ना मिले, वो अगले साल उसका लॉन्च शिफ्ट हो जाए आईफोन 18 के साथ। तो स्टार्टिंग पॉइंट ही एंट्री पॉइंट प्राइसिंग की इंडिया में शायद 1,20,000 होगी आईफोन 18 प्रो की, तो ये एक्सपेक्टेशन हमारी है। बाकी अगर बात करें जो बड़ा अनाउंसमेंट हम इस साल देख सकते हैं आईफोन इवेंट पे, वो है आईफोन 4 जो कि फोल्डेबल है। काफ़ी लंबे टाइम से चर्चा हो रही है इसके बारे में ऑनलाइन, सैमसंग हो गई या फिर गूगल हो गया, शाओमी तक इस डिज़ाइन के साथ एक्सपेरिमेंट कर चुका है। तो अब आईफोन की बारी है कि आईफोन फोल्डेबल के साथ किस तरह डिज़ाइन को चेंज कर सकता है। एक बड़ी बात ये कही जा रही है कि जो फोल्डेबल में क्रीस होता है शायद एप्पल उसको शायद इम्प्रूव करे, शायद बिना क्रीस के एक फ़ोन आपको मिले। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है हमें, आईफोन फोल्ड जो होगा वो बिल्कुल ही फोल्डेबल जो है एप्पल इकोसिस्टम में उसको बुरी तरह चेंज कर देगा। और इंडिया में काफ़ी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, मुझसे आके पूछते हैं कि फोल्ड आएगा कि नहीं, तो मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट 80-90% कन्फर्म्ड है कि आईफोन का फोल्ड हमें इस साल देखने को मिलेगा।
8: आगे बढ़ते हैं, सांसद और एक्टर रवि किशन मीम की दुनिया के किंग बन चुके हैं। भोजपुरी स्टार के डांस से लेकर उनके डायलॉग्स खूब वायरल होते हैं और उन पर लाखों रील्स भी बनती हैं। अब रवि किशन अपने गाने से धूम मचाने वाले हैं।
6: बिल्कुल, देखिए रवि किशन के जिस मीम ने इंटरनेट पर खूब धूम मचाई है, वायरल हो रहा है, वही मीम अब म्यूजिक एल्बम बनकर आप सभी के सामने आने वाला है। रवि किशन ने अपने नए गाने का ऐलान कर दिया है और गाने का नाम है मनी फॉलोज माय ब्रदर। ये वही लाइन है जो कुछ समय पहले रवि किशन के एक पॉडकास्ट बयान के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।
9: कभी फिल्मों के डायलॉग से छाए, कभी अपने अनोखे डांस स्टेप से वायरल हुए और कभी कैमरे के सामने बात करने के अंदाज ने इंटरनेट को मीम बनाने का मौका दे दिया। रवि किशन का अंदाज ही कुछ ऐसा है जिसे सोशल मीडिया ने सिर्फ देखा नहीं बल्कि मीम में बदलकर पॉप कल्चर का हिस्सा बना दिया। और अब जिस मीम ने इंटरनेट पर खूब धमाल मचाया, वही मीम अब म्यूजिकल एल्बम बनकर सामने आने वाला है। रवि किशन ने टी सीरीज के साथ मिलकर अपने नए गाने का ऐलान किया है। गाने का नाम है मनी फॉलोज माय ब्रदर।
10: मनी फॉलोज माय ब्रदर।
9: और खास बात तो ये है कि ये वही लाइन है जो कुछ वक्त पहले रवि किशन के एक पॉडकास्ट बयान के बाद सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी, जिसके बाद तो सोशल मीडिया पर इस डायलॉग के मीम की बाढ़ ही आ गई थी।
10: मनी फॉलोज माय ब्रदर।
11: मनी फॉलोज माय ब्रदर। मनी फॉलोज।
12: मम्मी कड़ी पत्ता लाना कि धनिया?
13: धनिया। कड़ी पत्ता फॉलोज माय ब्रदर। कड़ी पत्ता फॉलोज।
10: मनी फॉलोज माय ब्रदर।
9: रवि किशन भी अपने इस मीम अवतार से खुश हुए, लेकिन किसी ने शायद सोचा ही नहीं था कि ये मीम सीधे म्यूजिक एल्बम तक पहुंच जाएगा। अब उसी वायरल लाइन को गाने का टाइटल बनाकर रवि किशन इंटरनेट के मीम कल्चर को म्यूजिक में बदलने जा रहे हैं।
10: Money follows my brother.
14: मैं सभी जेंजीज को, जिनको जेंजीज कहते हैं, मैं उनको कहता हूँ भारत का युवा, हमारी बेटियाँ और एक शक्ति जिनको भारत को आगे चलाना है, पार्लियामेंट में बैठना है, विधानसभा में आप ही लोगों को बैठना है, इस देश को सारे युवाओं को चलाना है। सबसे पुराना देश और सबसे युवा पीढ़ी, ये कॉम्बिनेशन, इसको इंग्लिश में फ्यूजन कहते हैं, वेरी रेयर टू फाइंड दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। सो मैं इनको प्यार दूंगा जिन्होंने मेरे अल्हड़पन को, मेरे अवघड़पन को, मेरे इनपरफेक्शन को, मेरी गलतियों को स्वीकारा, उसमें प्यार दिया।
9: फिलहाल तो रवि किशन ने साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया का मीम अगर सही वक्त पर पकड़ लिया जाए तो वो सिर्फ वायरल कंटेंट नहीं रहता, वो बन सकता है म्यूजिक पॉप कल्चर और एक नया ब्रांड। अब देखना होगा कि रवि किशन का ये मीम वाला अंदाज गाने की रिलीज के बाद कितना धमाल मचाता है, क्योंकि मनी फॉलोज माय ब्रदर गाना 11 सितंबर को रिलीज होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: मनी फॉलोज माय ब्रदर।
4: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ओडिशा के बालासोर जिले में 5 ओरंगुटान मिलने का मामला सामने आया है। स्पेशल टास्क फोर्स इस बात की जांच कर रही है कि ये दुर्लभ जानवर कैसे यहां पहुंचे और उन्हें यहां कौन लाया। सवाल ये भी है कि क्या ये घटना वन्य जीवों की तस्करी से जुड़ी हुई है।
8: एसटीएफ की टीम स्थानीय लोगों से मिली जानकारी, वैज्ञानिक सबूतों और संभावित अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच कर रही है ताकि पता चला लगाया जा सके कि 5 औरंगटन ओडिशा तक किस रास्ते से पहुंचे हैं। और जांच के तहत रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि जानवरों को समंदर के रास्ते भी लाया गया हो, तो एसटीएफ इन कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क में है। ओडिशा वन विभाग और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी जांच में जुटा है।
12: Yesterday at around 10:30 in the night, we have received 5 orangutans from Baleswar Wildlife Division. They have been rescued from one PRF. So after receiving, we had done the health screening of all the orangutans, check their weights, their sex, and then after that we have cleaned them, and then we have put them in the quarantine centers. Quarantine center is CCTV monitored, and our 3 staffs are there who are on the duty, 8-hour duty. So they are monitoring them. They are providing the feed to them, and then we have also given them the potato mash, apple mash, as well as banana. Few of them are eating banana by their hand, but 2 of them, which are very young, so we have fed them by hand, and they have been fed the milk through bottles. When they were brought, one of them was having fever. So we had provided them medication and treatment. So now that fever has subsided, and all the others who were having some sneezing kind of thing, that is also subsided. So we can say that for now they are stable. We are also assessing their health condition, and any underlying disease condition is there, that will also be assessed.
6: तो चलिए अब एक एक करके आपको समझाते हैं कि भारत के जंगल में ओरैंगुटान की मौजूदगी लोगों को क्यों हैरान कर रही है और ये प्रजाति जंगल के लिए क्यों इतने खास माने जाते हैं। देखिए, यहाँ पे ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ओरैंगुटान भारत की प्राकृतिक वन्यजीव प्रजाति नहीं है, यानी भारत के जंगलों में ओरैंगुटान स्वाभाविक तौर पर नहीं पाए जाते हैं। ऐसे में अगर भारत में कहीं ओरैंगुटान मिलते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है सभी के जहन में कि आखिर ये यहाँ पर पहुंचे कैसे। ओरैंगुटान का असली घर इंडोनेशिया और मलेशिया के जंगल हैं, और खास तौर पर बोर्नियो और सुमात्रा के घने वर्षा वनों में इनका प्राकृतिक बसेरा है। ये अपना ज्यादातर वक्त पेड़ों पर ही बिताते हैं।
4: और देखिए, अब सवाल उठता है कि क्या भारत में मिले ओरैंगुटान अवैध तरीके से लाए गए थे, क्योंकि ये भारत की प्राकृतिक प्रजाति नहीं है। इसलिए इनके भारत पहुंचने की वजह और इनके पीछे किसी अवैध वन्यजीव तस्करी के एंगल से भी जांच अहम है। दुनिया में ओरैंगुटान की 3 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें बोर्नियन, सुमात्रन और तपानुली ओरैंगुटान शामिल हैं। तीनों की अपनी अलग अलग भौगोलिक पहचान और खासियतें हैं।
8: लेकिन चिंता की बात यह है कि ओरैंगुटान की तीनों प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। जंगलों की कटाई, प्राकृतिक आवास का खत्म होना और अवैध तस्करी इनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ओरैंगुटान नाम भी अब अपने आप में बेहद दिलचस्प है। ये मलय भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, औरंग यानी कि इंसान और हुतान यानी कि जंगल। यानी ओरैंगुटान का अर्थ हुआ जंगल का इंसान। ओरैंगुटान जंगल की दुनिया के सबसे बड़े वृक्षवासी संधारी हैं। इनके लंबे हाथ और मजबूत पकड़ इन्हें पेड़ों पर आसानी से घूमने में मदद करते हैं।
4: बिल्कुल, देखिए, इंसानों और ओरैंगुटान के डीएनए में करीब 97% तक समानता बताई जाती है, और यही वजह है कि इनके व्यवहार और बुद्धिमत्ता में भी इंसानों से कुछ दिलचस्प समानताएं देखने को मिलती हैं। ओरैंगुटान की याददाश्त भी गजब की होती है। ये जंगल में रास्तों और भोजन मिलने वाली जगहों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। कौन सा पेड़ कब फल देता है और जंगल में किस रास्ते से जाना है, इन चीजों को याद रखने की उनकी क्षमता उन्हें बेहद खास बनाती है।
6: चीन के गोइजोउ में एक पुरानी गुफा की चर्चा हो रही है। संगीत की धुनों ने इस प्राचीन गुफा को एक खास डेस्टिनेशन बना दिया है। करीब 1 अरब साल पुरानी इस गुफा में जब संगीत प्रेमी जुटे तो गुफा की नेचुरल साउंड सिस्टम यानी कि इकोस्टिक्स ने पूरी जगह को ही भर दिया। इस म्यूजिकल परफॉर्मेंस ने हर किसी का दिल जीत लिया।
8: बिल्कुल, दरअसल ये एक कांच यानी कि चूना पत्थर की गुफा है, जिसकी विशाल चट्टानी परतें, गुंबद नुमा ऊंचे कक्ष और प्राकृतिक बनावट इस तरह की है कि यहाँ कोई भी साउंड गूंजती नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन कॉन्सर्ट हॉल की तरह नेचुरल साउंड इफेक्ट पैदा करती है।
9: तस्वीरों में नजर आ रहा गुफा के अंदर संगीत प्रेमियों का ये अनोखा कॉन्सर्ट खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बीते दिनों दक्षिण पश्चिमी चीन के गुइजोऊ में बरसों पुरानी एक कास्ट गुफा पहले ही लोगों के लिए ऐतिहासिक रही है, लेकिन संगीत की धुनों ने अब इस प्राचीन गुफा को एक खास डेस्टिनेशन भी बना दिया है। करीब एक अरब साल पुरानी इस गुफा में जब संगीत प्रेमी जुटे तो गुफा की नेचुरल साउंड सिस्टम यानी एकॉस्टिक्स ने पूरी जगह को ही भर दिया और ये म्यूजिकल परफॉर्मेंस हर किसी म्यूजिक लवर के दिल को छू गई। दरअसल ये एक कार्स्ट यानी चूना पत्थर की गुफा है जिसकी विशाल चट्टानी परतें, गुंबद नुमा ऊंचे कक्ष और प्राकृतिक बनावट इस तरह की है कि यहाँ कोई साउंड गूंजती नहीं है बल्कि एक बेहतरीन कॉन्सर्ट हॉल की तरह नेचुरल साउंड इफेक्ट पैदा करती है। ऐसे में पियानो या स्ट्रिंग वाद्य यंत्रों की आवाज गुफा की प्राचीन चट्टानी परतों के बीच जब गूंजी तो पूरा माहौल ही संगीतमय हो उठा। बता दें कि चीन में गुइजोऊ जैसे कुछ और प्रांतों में चूना पत्थर की विशाल अंडरग्राउंड गुफाएं हैं जहां की प्राकृतिक ध्वनि व्यवस्था बेहद शानदार है। यही कारण है कि ऐसी बेहतरीन जगहों पर चैम्बर ऑर्केस्ट्रा, स्ट्रिंग क्वार्टेट और शानदार संगीत समारोह आयोजित किए जाते हैं। यकीनन संगीत प्रेमियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कैसी होगी वो दुनिया जहां सारे काम रोबोट के हवाले होंगे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: कौन सा ग्रह त्वचा की समस्याएं सबसे ज्यादा देता है? किन ग्रहों की वजह से त्वचा पे झुर्रियां पड़ जाती हैं? अलग अलग ग्रहों का त्वचा की समस्या में क्या है योगदान, और क्या है ज्योतिष के अनुसार इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में खास एग्जीबिशन लगने जा रही है। इसमें चीन के कलाकार की बनाई मोम की मूर्तियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में नामचीन हस्तियों की वैक्स स्टैचू शोकेस की जाएंगी, जो लोगों के सामने चीनी संस्कृति की अनूठी झलक पेश करेंगे।
8: और देखिए सभी मोम की मूर्तियां मेहमान नवाजी के भाव से प्रेरित है। इन कलाकृतियों के जरिए चीनी संस्कृति के उस भाव को पेश करने की कोशिश है, जो इस मान्यता पर आधारित है कि किसी का घर में स्वागत करने का विचार कही गई बातों से नहीं बल्कि प्यार भरे काम से जाहिर होता है।
9: द वांग कंटेम्पररी संस्था के फाउंडर अलेक्जेंडर वांग के लिए ये खास पल है। न्यूयॉर्क के वेलकम होम नाम के इस गेस्ट हाउस में चीन की वैक्स आर्टिस्ट झोउ ज़ुएरोंग की कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगने जा रही है, जिसमें ज़ुएरोंग की बनाई 10 वैक्स स्टैचू को शोकेस किया जाएगा। द वैंग कंटेम्पररी नाम की इस प्रदर्शनी में मशहूर हस्तियां कैलीग्राफी और एक्यूपंक्चर का अनुभव लेती दिखाई देंगी। खास बात यह है कि इन मोम की मूर्तियों के जरिए पश्चिमी पॉप कल्चर में चीनी रीति रिवाज और रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाने की कोशिश की गई है। अलेक्जेंडर वैंग के लिए ये पल बेहद खास है, क्योंकि अमेरिका में ये इनकी पहली प्रदर्शनी होगी। द वैंग कंटेम्पररी चाइना टाउन का एक सांस्कृतिक संगठन है, जिसे पेशे से फैशन डिजाइनर अलेक्जेंडर वांग और उनकी माँ यिंग वांग ने शुरू किया था।
10: We wanted this to be something that could be opened up to the public for a longer period of time. And so when we started thinking about the format, and kind of characters and what it meant logistically, I thought, what a interesting kind of approach to think about wax figures. And, you know, traditionally I felt wax figures, whether in a museum in a historical sense or, you know, Madame Tussauds, it hasn't really been explored in this context.
9: इन वैक्स स्टैचू में खाना बनाते, फूड शेयर करते, टी पार्टी में हिस्सा लेते, कैलीग्राफी का अभ्यास करते और एरहू, जो कि एक चीनी वाद्य यंत्र है, उसे बजाती हुई महिलाएं नजर आएंगी। इन तमाम कलाकृतियों में एक बात कॉमन है, ये सभी मोम की मूर्तियां मेहमान नवाजी के भाव से प्रेरित हैं। इन कलाकृतियों के जरिए चीनी संस्कृति के उस भाव को पेश करने की कोशिश की गई है, जो इस मान्यता पर आधारित है कि किसी का घर में स्वागत करने का विचार कभी कभी कही गई बातों से नहीं बल्कि प्यार भरे काम से जाहिर होता है। न्यूयॉर्क के कला प्रेमियों के लिए गुड न्यूज ये भी है कि द वांग कंटेम्पररी एग्जीबिशन पूरे महीने वीकेंड पर यहां फ्री में दिखाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: तो चीन में सुरक्षा से जुड़ी नई तकनीक और सामान की प्रदर्शनी शुरू हुई है। पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत के लियान युआंग शहर में हो रही इस 5 दिन की प्रदर्शनी में रोबोट कुत्ते, रोबोट ट्रैफिक, पुलिस और बम को नष्ट करने वाले रोबोट लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 100 से ज्यादा कंपनियां शामिल हुई हैं। 13,000 वर्ग मीटर से ज्यादा जगह में लगी इस प्रदर्शनी में सुरक्षा से जुड़े कई नए उपकरण दिखाई दे रहे हैं।
7: देखिए प्रदर्शनी में पुलिस के काम आने वाली नई मशीनें, सुरक्षा के सामान और गाड़ियां भी दिखाई जा रही हैं। इन तकनीकों के जरिए पुलिस और सुरक्षा बलों के काम को आसान और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। और प्रदर्शनी का मकसद नई तकनीक दिखाने के साथ साथ अलग अलग देशों के साथ सुरक्षा के क्षेत्र में अनुभव साझा करना और मिलकर काम करना है।
0: चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, आप रखिए अपना ख्याल, कल शाम 5 बजे होगी मुलाकात ट्राई पर सिर्फ गुड न्यूज सुनकर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: जयपुर में गणेश महोत्सव की रौनक, मोती डूंगरी गणेश में चढ़ाए गए हजारों मोदक, बप्पा को चढ़ाए गए मोदकों में 251 किलो और 51 किलो के मोदक भी शामिल। गणपति उत्सव के रंग में रंगने लगी मुंबई, ऐतिहासिक चिंचपोकली उत्सव मंडल में इस बार भगवान वेंकटेश्वर बालाजी से प्रेरित रूप में दिखेंगे बप्पा। आंध्र प्रदेश में गणेशोत्सव को लेकर गुड न्यूज, राज्य सरकार ने सभी गणेश पंडालों में बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया। उत्तराखंड के चमोली में मां नंदा देवी की राजजात यात्रा धूमधाम से जारी, लोकगीतों के साथ यात्रा का स्वागत कर रहे लोग, पहाड़ी संस्कृति के दिख रहे हैं रंग। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भादर मेले के लिए मंदिर की जबरदस्त सजावट, मेले में राजस्थान समेत कई राज्यों के लोग होंगे शामिल। उत्तराखंड के कई जिलों में कल से 14 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल आज अपने नए प्रोडक्ट्स का करेगी खुलासा, भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा इवेंट।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों

नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी गणेशोत्सव की परंपरा और इतिहास की। अब से चार दिन बाद गणपति उत्सव का शुभारंभ होने वाला है। हर साल 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव को पूरे भारत में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे भारतीय भी इस उत्सव को बड़े उल्लास और उमंग के साथ मनाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में गणपति उत्सव का सबसे गाढ़ा रंग अगर कहीं नजर आता है तो वो है महाराष्ट्र। उत्सव के दौरान पूरे महाराष्ट्र में बप्पा की भक्ति के रंग साफ नजर आते हैं और बताया जाता है कि गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे से हुई थी। कोंकण में गणपति पूजन की परंपरा कई राजवंशों से होते हुए छत्रपति शिवाजी और फिर पेशवाओं के राज में भी समृद्ध होती गई। लेकिन क्या आपको मालूम है कि गणपति उत्सव के वर्तमान स्वरूप की शुरुआत कैसे हुई? तो चलिए आपको दिखाते हैं गणपति उत्सव के श्री गणेश की कहानी।

0: ये सिर्फ एक मूर्ति का स्वागत नहीं है, ये हर साल भारत के हृदय में उठने वाला एक ऐसा ज्वार है जो धर्म, जाति और सीमाओं की हर दीवार को ढहा देता है। वो महापर्व जिसकी जड़ें इतिहास के सीने में बहुत गहराई तक धंसी हैं। शास्त्र कहते हैं कि गणेश बुद्धि के नियंत्रक हैं, विघ्नहर्ता हैं। उनसे मिला शुभता का आशीर्वाद हर शुभ कार्य की दहलीज है। उनके बिना कोई संकल्प पूरा नहीं होता, कोई यात्रा शुरू नहीं होती। हर साल उन्हीं गणनायक के लिए शहर शहर सबसे भव्य यात्रा निकाली जाती है। भाद्रपद की चतुर्थी को इस यात्रा के बाद जब बाप्पा घरों में आते हैं तो वे एक भगवान बनकर नहीं बल्कि घर के सबसे लाडले सदस्य बनकर आते हैं। कोई उन्हें दुलारता है, कोई उनके पसंदीदा मोदक बनाता है, तो कोई अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी उनके कानों में फुसफुसा कर कह देता है। लेकिन गणेशोत्सव का ये रूप हमेशा से ऐसा नहीं था। इस उत्सव को जन जन तक पहुंचने में, एक आंदोलन बनने में सदियों का सफर तय करना पड़ा। 17वीं शताब्दी में हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर में पड़ा आस्था का ये बीज आज महाराष्ट्र में श्रद्धा का वटवृक्ष बनकर लहलहा रहा है। मराठी में एक कहावत है, मनाचा गणेश मनम वसावा, यानी भगवान गणेश हमारे मन में, हमारी चेतना में बसने चाहिए। वास्तव में ये त्योहार महाराष्ट्र की चेतना में गहराई तक समाया है। इस राज्य के लिए गणपति उत्सव एक त्योहार भर नहीं है बल्कि ये सनातन धर्म की परंपराओं को वर्तमान से जोड़ने वाली श्रद्धा की एक डोर है, जिसका एक सिरा इस क्षेत्र में शताब्दियों पहले शासन करने वाले सप्तवाहन शासकों से होता हुआ महाराष्ट्र के गर्व तिलक छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी से जुड़ता है। इतिहास बताता है कोंकण क्षेत्र में शुरुआत से ही शिवपुत्र गणेश की उपासना की जाती रही है। गजानन को यहाँ विद्या और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता रहा है। बताया जाता है कि महाराष्ट्र में सप्तवाहन, राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाओं ने गणेशोत्सव की शुरुआत करवाई थी। छत्रपति शिवाजी के दौर में गणेश उपासना की परंपरा और परवान चढ़ी। इतिहास में ये वर्णन मिलता है कि शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी माँ जीजाबाई ने पुणे के ग्राम देवता कस्बा गणपति की स्थापना की थी। 1630 में जीजाबाई अपने पति शाहजी भोसले के साथ पुणे गई थी। उसी समय उन्होंने इस गणेश मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। कालांतर में शिवाजी महाराज ने पुणे के कस्बा गणपति को अपनी साम्राज्य का केंद्र बिंदु बनाया। भोसले राजवंश के काल में ये पर्व महलों से निकलकर मावल के वीर सैनिकों के घरों तक पहुंचा और मराठा साम्राज्य की सांस्कृतिक पहचान का अविभाज्य अंग बन गया।
1: गणेश जी हिंदुओं के आराध्य देवत है। आराध्य का मतलब ऐसा है कि जो असाध्य काम होते, जो मुमकिन भी नहीं होते, ऐसे कामों करते हैं। और शुरू से बहुत सालों पुराने ये बात है कि सब हिंदू उनकी पहला पूजन करते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि राजाओं ने गणेशोत्सव की प्रथा चलाई है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज, जो वो भी हुए हमारे देवत है, उन्होंने भी गणेश जी की उपासना की है। तो जैसे कि माता भवानी और गणेश जी दोनों की उपासना करते थे।
0: इसी तरह पुणे में पेशवाओं के निवास शनिवार वाड़ा में हर साल भव्य गणपति उत्सव का आयोजन होता था। पुणे के लोग और पेशवाओं के सेवक काफी उत्साह के साथ हर साल गणेश उत्सव मनाते थे। इस उत्सव के दौरान ब्राह्मणों को महाभोज दिया जाता था, गरीबों को मिठाई और पैसे बांटे जाते थे।
1: जैसे कि ये शुरुआत जो हुए, मतलब शिवाजी महाराज वो भी हमारे आराध्य देवत हैं। और उनके बाद जब मराठाओं से पेशवा आ गए वहां गद्दी पे, तो उनको वो तो आदर्श थे ना छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनके आदर्श के रास्ते पर चलना, चलना उनका काम था, और पेशवाओं ने भी उसी तरह जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज पूजन करते थे और उसी तरह उन्होंने भी ये पूजन किया और इसको आगे बढ़ाया।
0: पेशवाओं के महल शनिवार वाड़ा में कीर्तन, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। भजन कीर्तन की ये परंपरा आज भी जारी है। पेशवाओं के चरम और ब्रिटिश शासन के दौर में भी कोंकण क्षेत्र में गणपति उत्सव बदस्तूर जारी रहा, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उत्सव का स्वरूप बदलने लगा। अंग्रेजों के अत्याचार और दमनकारी नीतियों ने समाज को जोड़ने वाली आस्था के इस उत्सव का रंग समय के साथ फीका कर दिया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह उत्सव अपनी वर्तमान भव्यता की ओर बढ़ गया? आगे सुनाएंगे कहानी गणेश उत्सव के उत्थान की। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: तो ये तो बात हुई रजवाड़ों के दौर में गणेशोत्सव के स्वरूप की, लेकिन महाराष्ट्र के गणेशोत्सव का जो स्वरूप आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उसकी शुरुआत आज से लगभग 125 साल पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने करवाई थी। यानी कि इस उत्सव के राष्ट्रीय पहचान तो शिवाजी महाराज और पेशवाओं के दौर में मिली, लेकिन इसे राष्ट्रीय गौरव का विषय बनाया स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं रखा, बल्कि गणेशोत्सव को आजादी की लड़ाई और छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने का जरिया भी बनाया। आजादी के नजदीकी सालों में गणेशोत्सव ने एक आंदोलन का स्वरूप ले लिया था।

0: ये ठीक है कि गणेश उत्सव को गणपति के आगमन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वास्तव में कोंकण के बड़े हिस्से और बाद में पूरे महाराष्ट्र के लिए ये उत्सव आस्था के साथ साथ समाज के उत्थान और बदलाव की धारा का उद्गम स्थल बनता चला गया। महाराष्ट्र के गणपति उत्सव के वर्तमान अध्याय की शुरुआत ठीक इसी जगह पर हुई थी। ये पुणे के भाऊ रंगारी गणपति मंडल का पंडाल है। बताया जाता है कि यही वो पंडाल है जहां से एक लंबे दौर के बाद फिर से गणपति उत्सव की शुरुआत हुई थी, वो भी एक नए उद्देश्य के साथ। ये बात है साल 1893 की, जब मुंबई की पिधौनी में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। अपनी कुटिल नीति और स्वार्थ को सर्वोपरि रखने वाले अंग्रेजों ने दंगों को शांत करने की बजाय उस दौर में समाज और लोगों के बीच दरार बढ़ाने का काम किया। दंगों की वजह से महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके का माहौल खराब हो गया था। ऐसे समय में पुणे के भाऊ साहेब लक्ष्मण जावले यानी भाऊ साहेब रंगारी ने सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए अपने घर में भव्य गणेश पंडाल लगाकर पूजा की शुरुआत करवाई थी।
1: पुणे में भाऊ साहब रंगारी, श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई, ये जो उस जमाने के जो प्रतिष्ठित लोग थे, और उन्होंने ये गणपति उत्सव ये देखा था। यहाँ पुणे के उनके एक सहकारी ग्वालियर में गए थे और वहां उन्होंने 40 दिन का गणेश उत्सव देखा और वो कल्पना उनको बहुत अच्छी लगी। और जो आप बात कर रहे सांप्रदायिक दंगे की, तो उनका एक मीटिंग हुआ लोकमान्य जी तिलक के साथ, और उस मीटिंग में इस बात का महत्व उन्होंने जाना कि इसमें गणेश फेस्टिवल इसको सार्वजनिक यदि किया तो समाज इकट्ठा आ सकता है।
0: दरअसल ब्रिटिश शासन के उस दौर में लोग किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या उत्सव को साथ मिलकर या एक जगह इकट्ठा होकर नहीं मना सकते थे। तो ज्यादातर लोग घरों में ही पूजा किया करते थे। ऐसे में भाऊ रंगारी के घर पर हुए इस भव्य सामूहिक आयोजन की चर्चा दूर दूर तक हुई। जब ये चर्चा स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक तक पहुँची तो उन्होंने अपने अखबार केसरी में इसकी तारीफ की। इसके बाद तिलक ने अपने पुणे के घर केसरीवाड़ा में एक सार्वजनिक गणेश पूजा का आयोजन किया था।
1: बराबर है, लोकमान्य जी तिलक जानते थे कि हर घर में पूजा होती है और उस पूजा को इकट्ठा आने की यहाँ परंपरा है, इसीलिए उन्होंने ऐसी मीटिंग करके गणेश उत्सव की उनकी जो कल्पना है वो सबके सामने रखी। और 1893 में वो पहले साल एक 6-7 गणपति बैठे, उसमें भाऊ साहेब रंगारी, श्रीमंत दगडूशेठ, लोकमान्य जी तिलक का, वैसे नामचीन जो गणेश मंडल थे वो बैठे और वो उसको लोगों ने बहुत सराहा। और नेक्स्ट ईयर 100 मंडल बैठे ऐसे, तो समाज इकट्ठा आने लगा, गणेश जी की सार्वजनिक तौर पे पूजा अर्चा होने लगी।
0: इसके बाद लोकमान्य तिलक ने ऐसी सार्वजनिक आयोजनों को बढ़ावा देने की अपील भी की। लोकमान्य तिलक ने साल 1893 में ही मुंबई के गिरगांव इलाके में पहले गणेश पूजा मंडल की स्थापना की। इस मंडल का नाम था केशवी नाईक चौल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल। ये मंडल आज भी गणपति पूजा का आयोजन करता है।
2: एकता के धागा का नाम था गणेशोत्सव। बाप्पा के चरणों में बाप्पा के सामने सब झुक जाते हैं और इसी कारण एक ही पूजन, एक ही भजन, एक ही देवता और देवता से लेके एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्र तक ये पूरी परंपरा चलनी चाहिए, इसके युग प्रवर्तक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। और खुद का उदाहरण सार्थ करने के लिए अपने ही घर में केसरीवाड़ा में उन्होंने गणेशोत्सव की शुरुआत की।
0: इस तरह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाया। उस वक्त लोकमान्य तिलक को भी यह एहसास नहीं होगा कि आगे चलकर उनका यही प्रयास एक आंदोलन बनने वाला था। बाल गंगाधर तिलक जिस समय गणेश पूजा को सार्वजनिक बनाने की बात कर रहे थे, ये वो दौर था जब जाति, वर्ग और वर्ण के आधार पर कई लोगों के लिए मंदिरों में प्रवेश तक वर्जित था। ऐसे में तिलक और उनके साथियों ने गणेशोत्सव को छुआछूत के खिलाफ अभियान का रूप दे दिया। 1907 में तिलक ने शुक्रवार पेट के गणेश पंडाल में पूजन किया, जबकि ये एक रेड लाइट एरिया था। इसके अलावा भी लोकमान्य तिलक अकोला और सांगली के कई ऐसे पूजा पंडालों में गए जहां उस दौर में अछूतों की संख्या ज्यादा मानी जाती थी। नतीजा ये हुआ कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तो गणेश पूजा पंडालों की संख्या बढ़ी ही, बल्कि इस उत्सव का प्रचार दूसरे प्रांतों तक हो गया।
1: वो जमाना ही ऐसे था, तब वो छूत अछूत वो बातें चलती थी, तो इसी उस जमाने में दगड़ूशेठ मंडल ने एक अनोखा कदम उठाया था। आज की तारीख में भी केसरी के अखबार में वो फोटो है कि हमारे यहाँ जो साफ स्वच्छता करने वाले जो कर्मचारी थे, जो टॉयलेट भी स्वच्छता करते हैं, उस एक जोड़ी को, भंगी जोड़ी को गणेश जी के पूजा आरती हमने करवाई। उस टाइम बहुत लोगों ने, जो कर्मठ थे, उन्होंने टीका भी की गणेश मंडल पे दगड़ूशेठ के, लेकिन बहुत लोगों ने सराहा और तब जाके ये छूत अछूत की बातें कम होने लगी।
0: लोकमान्य तिलक ने उस दौरान गणेशोत्सव को जो स्वरूप दिया, उससे भगवान गजानन राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। 1910 का साल आते आते गणेश पूजा पंडाल बस सार्वजनिक संदेश का मंच भर नहीं रह गए, बल्कि इनके जरिए स्वतंत्रता संग्राम की आवाजें भी उठने लगी।
1: गणेश उत्सव मंडल से ही कार्यकर्ता बनता है, उस कार्यकर्ता से वहाँ के एरिया का वो पॉलिटिकल नेता बनता है, और उससे वहाँ जो जो आगे जाता है वो राज्य की और देश की सेवा करता है। ऐसे बहुत सारे राजकीय नेताओं को गणेश उत्सव ने निर्माण किया है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गणेश उत्सव रस्ते पे होता है, सार्वजनिक तौर पे होता है। अलग अलग विचारधारा वाले कार्यकर्ता एक मंच पे आते हैं और अपनी विचारधारा शेयर करते हैं, लेकिन उनके उनको जो कॉमन बात है वो गणेश जी है, गणेश जी की भक्ति है।
0: उस दौर में क्रांतिकारियों ने गणेश उत्सव का उपयोग आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए किया। महाराष्ट्र के नागपुर, वर्धा, अमरावती जैसे शहरों में गणेश उत्सव के जरिए आजादी के आंदोलन को धार दी गई। गणेश उत्सव में वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बैरिस्टर जयकर, रेंगलर परांजपे, पंडित मदन मोहन मालवीय, मौलिक चंद्र शर्मा, बैरिस्टर चक्रवर्ती, दादा साहेब खारपड़े और सरोजिनी नायडू जैसे मुखर और प्रखर जननेता भाषण देने आने लगे। उत्सव के दौरान पंडाल में गणपति को नेताओं और क्रांतिकारियों के वेश में सजाया जाने लगा।
1: उन नेताओं का प्रभाव भारत के देशवासियों पर था, और गणेश जी ऐसी देवता है कि सबको ऐसा लगता है कि ये गणेश जी के ही गण है। गणेश जी बोले तो गणों के समूह के जो अधिपति है, समूह के ईश्वर है, गणनायक है, और उन नेताओं में वो गणेश गण देखते थे। इसलिए गणेश उत्सव में उसका रिफ्लेक्शन आता था कि गणेश जी की मूर्ति उन नेताओं से मिलती जुलती मूर्तिकार बनाने लगे, ताकि वो लोगों के मन में जो बात है वो एक गणेश जी के एक दूत है, गणेश जी के गण है, तो उसको सोच के उन्होंने ऐसी मूर्तियां उन नेताओं के फेस की उस जमाने में बने हुए।
0: देखते ही देखते गणेश उत्सव स्वाधीनता की लड़ाई का एक मंच बन गया था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेज भी गणेश उत्सव के बढ़ते स्वरूप से घबराने लगे थे। इस बारे में रॉलेट समिति रिपोर्ट में भी चिंता जताई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया, गणेश उत्सव के दौरान युवकों की टोलियां सड़कों पर घूम घूम कर अंग्रेजी शासन विरोधी गीत गाती हैं और स्कूली बच्चे पर्चे बांटते हैं, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने और मराठों से शिवाजी की तरह विद्रोह करने का आह्वान होता है। साथ ही अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए धार्मिक संघर्ष को जरूरी बताया जाता है। कभी पुणे में शुरू हुई गणेश पूजा आजादी के लगभग 8 दशक बाद अब केवल महाराष्ट्र में ही हजारों सार्वजनिक गणेश मंडल हो चुके हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, एमपी, यूपी और गुजरात में भी काफी संख्या में गणेश उत्सव मंडल हैं। इतना ही नहीं, अब तो विदेशों में भी गणेश उत्सव मनाया जाने लगा है। दुनिया भर में फैले भारतीय हर साल धूमधाम से गणपति उत्सव मनाते हैं। भारत में अब गणेश उत्सव के 10 दिनों में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार होता है। पंडालों की बढ़ती संख्या के साथ साथ धीरे धीरे इस उत्सव से जुड़ी एक अलग अर्थव्यवस्था तैयार हुई, जिससे आज लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। 19वीं सदी के अंत में लोकमान्य तिलक का लगाया वो पौधा आज श्रद्धा का विशाल वृक्ष बनकर लहलहा रहा है, जिसकी छांव तले समाज और आस्था साथ साथ पल रहे हैं, चल रहे हैं, बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: कि महाराष्ट्र की बात और है, लेकिन अब गणेशोत्सव देश के ज्यादातर हिस्सों में खूब धूमधाम से मनाया जाने लगा है। इस बार भी बप्पा की आराधना का ये उत्सव बेहद उत्साह से मनाया जाएगा। देश भर में शहर शहर गणपति उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर आज आई है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेशोत्सव के मौके पर 7 दिनों तक भव्य उत्सव चलता है और इसका शुभारंभ हो चुका है। आज मोती डूंगरी मंदिर में अभी गणपति को 2.5 लाख लड्डुओं का झांगी सजाई गई। गणेश चतुर्थी तक भगवान गणेश को कुल 15,000 किलो सामग्री से तैयार हुए 2.50 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। इस मोदक झांकी में सबसे खास बात है 251 किलोग्राम के 2 विशाल मोदक, और इसके अलावा बप्पा के लिए 51 किलोग्राम के 5 मोदक और 21 किलोग्राम के 21 मोदक भी तैयार किए गए हैं। सुबह 5 बजे से ही भक्त इस विशेष झांकी के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में आज बाहर से लाया गया प्रसाद नहीं चढ़ाया जा रहा है, अब क्योंकि लड्डू विशालकाय हैं सो उन्हें बनाने के लिए सामग्री में हजारों किलो के हिसाब से इस्तेमाल सामग्री हुई है। और इस मोदक झांकी में क्या है खास, जयपुर से मेरी सहयोगी रिदम बता रही है।
1: जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में मैं भी मौजूद हूँ, जहाँ आज मोदक झांकी लगाई गई है। 15,000 किलो सामग्री से बनाए हुए ये 2.5 लाख मोदक भगवान गणेश जी महाराज को जिमाए जा रहे हैं, उनको अर्पित किए गए हैं। और आज के दिन ये जो मोदक झांकी है ये आम मोदक नहीं है।

0: हैं। सामग्री की मैं बात करूं तो इन मोदकों को बनाने के लिए करीब 2500 किलो शुद्ध घी की सामग्री इस्तेमाल हुई है, 3000 किलो बेसन इस्तेमाल हुआ है, 9000 किलो शक्कर और करीब 500 किलो सूखे मेवे जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। आज सभी भक्तों को कहा गया है कि आप बाहर से प्रसाद नहीं लेके आए, यहीं पे जो ये 2.5 लाख मोदक गणेश जी को चढ़ाए गए हैं वो ही आज उनको जिमाए जाएंगे, वही प्रसाद के रूप में बांटे जाएंगे। ये बहुत ही भव्य झांकी है और ये अभी से ही नहीं, ये जो गणेश उत्सव है मोती डूंगरी मंदिर का, ये करीब 7 दिन का होता है जो कि 7 सितंबर से शुरू हो गया था, जिसकी शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जिसके बाद में महाअभिषेक यहाँ पे 8 तारीख को किया गया। आज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो बहुत ही भव्य मोदक झांकी है, इसके अलावा आने वाले 3 दिन हम यहाँ पर फूलों की, फलों की और सब्जियों की बहुत ही खूबसूरत झांकियां देख पाएंगे, जिसके बाद में सिंजारा में मेहंदी वितरण समारोह इस मंदिर में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। तो उस दिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो मेहंदी बांटी जा रही है वो अगर लेके जाएंगे तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनको शादी करनी है तो उनकी शादी बहुत जल्द हो जाती है, शुभ मुहूर्त जो है वो उस मेहंदी को लगाने से बहुत जल्द आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो झांकी है ये बहुत खास है। 14 तारीख को गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, जिसमें गणेश जी महाराज यहाँ पे बहुत खूबसूरत श्रृंगार में नजर आएंगे। इस समय पे बहुत ही सारे भक्त मुझे इस मंदिर में नजर आ रहे हैं, हर एक भक्त इंतजार कर रहा है कि कब वो गणेश जी महाराज तक पहुंच पाएगा, क्योंकि आज बुधवार का दिन भी है। तो बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने शुभ काम किए हैं या फिर नई गाड़ियां ली है, अपनी जो प्रॉपर्टी की डील्स है वो की है, तो ऐसे में भी कहा जाता है कि गणेश जी महाराज आज क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय है तो सबसे पहले उनको पूजा जाता है, तो गाड़ी की चाबी या फिर जो भी उनका शुभ काम हुआ है उससे संबंधित चीज के लिए पहले गणेश जी को ढोकने आते हैं। वही भक्त आज यहाँ पे आए हैं, दर्शन करने वाले भी काफी सारे भक्त यहाँ पे आए हैं। जो गणेश उत्सव के कार्यक्रम है वो सिर्फ झांकियों तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, हर शाम यहाँ पे अलग अलग रंगारंग कल्चरल कार्यक्रम होंगे, ध्रुपद गायन जैसा कार्यक्रम होगा, कथक नृत्य के कार्यक्रम होंगे। तो ये जो गणेश उत्सव है वो बहुत ही ज्यादा खास सभी भक्तों के लिए इस बार साबित होने वाला है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, भुवनेश्वरी जयपुर।
1: भगवान को मोदक सबसे ज्यादा पसंद है और रुचिकर लगते हैं, इसलिए भगवान को अलग अलग तरीके के मोदक, अलग अलग आकार में मोदक, अलग अलग वजन में मोदक चढ़ा के भगवान को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ भक्त भी सहस्त्र नाम से, नामावली से, अष्टक स्तोत्र से लड्डू चढ़ा रहे हैं, वो भी इसी जन्मोत्सव की एक कड़ी है, जिससे जिसकी मनोकामना पूरी हो गई या होने चाहती है वो उस हिसाब से अष्टक स्तोत्र से और सहस्त्र नाम से मोदक चढ़ा रहे हैं।
2: और जीएनटी स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: कौन सा ग्रह त्वचा की समस्याएं सबसे ज्यादा देता है? किन ग्रहों की वजह से त्वचा पे झुर्रियां पड़ जाती हैं? अलग अलग ग्रहों का त्वचा की समस्या में क्या है योगदान और क्या है ज्योतिष के अनुसार इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
6: अच्छी

0: खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: जयपुर में गणेश महोत्सव की रौनक, मोती डूंगरी गणेश मंदिर में चढ़ाए गए हजारों मोदक, बप्पा को चढ़ाए गए मोदकों में 251 किलो और 51 किलो के मोदक भी शामिल। गणपति उत्सव के रंग में रंगने लगी मुंबई, ऐतिहासिक चिंचपोकली उत्सव मंडल में इस बार भगवान वेंकटेश्वर बालाजी से प्रेरित रूप में दिखेंगे बप्पा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में निकली 26 छड़ियों की भव्य शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की थाप से गूंजा शहर, शोभा यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। उत्तराखंड के चमोली में मां नंदा देवी की राजजात यात्रा धूमधाम से जारी, लोक गीतों के साथ यात्रा का स्वागत कर रहे हैं लोग, पहाड़ी संस्कृति के दिख रहे हैं रंग। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भादव मेले के लिए मंदिर की जबरदस्त सजावट, मेले में राजस्थान समेत कई राज्यों के लोग होंगे शामिल। उत्तराखंड के कई जिलों में कल से 14 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आज हजारों लाखों मोदकों से खास झांकी सजाई गई, सुबह 5 बजे भक्त भगवान गणेश के कर रहे हैं दर्शन पूजन। गणेश जी की झांकी में 251 किलो के दो विशाल मोदक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र, साथ ही 51 और 21 किलो के मोदक भी सजाए गए। गणेश चतुर्थी तक भगवान को करीब 2.5 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा, इन्हें तैयार करने में कुल 15,000 किलो सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। मोदक बनाने में 2,500 किलो घी, 3,000 किलो बेसन, 1,000 किलो शक्कर और 500 किलो सूखे मेवे का इस्तेमाल हो रहा है। पुष्य नक्षत्र पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश जी का विशेष अभिषेक हुआ, 348 किलो पंचामृत से भगवान का अभिषेक। पाली में गणपति उत्सव की तैयारियां तेज, अनुमान है कि इस बार शहर में 5,000 से ज्यादा प्रतिमाएं स्थापित होंगी। पाली में गोबर मिट्टी और पीओपी से गणपति की प्रतिमाएं हो रही हैं तैयार, भक्त अपनी पसंद और पर्यावरण को ध्यान में रखकर खरीद रहे हैं मूर्तियां। मूर्तिकार गणपति की प्रतिमाओं को रंगों और खास डिजाइन से सजा रहे हैं, कहीं गोल्डन मुकुट तो कहीं पर शिव के प्रतीकों से प्रतिमा का खास श्रृंगार। मिट्टी से बनी छोटी गणपति प्रतिमा भक्तों को खूब पसंद आ रही है, घर में आसानी से स्थापित और विसर्जन के लिए तैयार। गणपति उत्सव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए, बाली में उत्सव का बढ़ता जा रहा है क्रेज। मुंबई में चिंचपोपली चा चिंतामणि मंडल में बप्पा का हो चुका है आगमन, ढोलताशों और जयकारों से गूंजा। इस बार चिंतामणि गणपति की सजावट तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर से प्रेरित है, मूर्ति में गरुड़ शंख और चक्र जैसे धार्मिक प्रतीक। इस बार पंडाल में ऊंचे गोपुरम और पारंपरिक नक्काशी देखने को मिलेगी, श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत में मंदिर जैसा भव्य माहौल देखने को मिलेगा। साल 1920 में शुरू हुआ चिंचपोपली मंडल इस बार 107वें वर्ष में कर रहा है प्रवेश। लालबाग परेल और गिरण गांव की सड़कों पर बप्पा के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां। गुजरात के आणंद में बप्पा का जोरदार स्वागत, राजा गणराज 2026 की आगमन यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ देखने को मिली कई आकर्षक प्रस्तुतियां, बच्चों के लिए अलग अलग लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर्स भी नजर आए। यात्रा में सिर्फ भक्ति के साथ साथ रोमांच और शौर्य का भी शानदार नजारा देखने को मिला, छावा एक्ट ने लोगों का ध्यान खींचा। विघ्नहर्ता की इस शानदार आगमन यात्रा में महिला शक्ति की भी अद्भुत झलक देखने को मिली। हर तरफ एक सुनाई दिया गणपति बप्पा मोरिया का जय घोष, गणपति भक्ति के रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए नजर आए भक्ति में। राजस्थान के सीकर में बिखरे उत्सव के रंग, शानदार भादो अमावस्या मेले का भव्य शुभारंभ। राजस्थान समेत एक दर्जन से ज्यादा प्रांतों के लोग पहुंच रहे हैं फतेहपुर शेखावटी बिंदल कुलदेवी मंदिर में, लग रहे हैं उत्सव के शामिल। इस उत्सव पर रामा के दरबार की फूलों से भव्य सज्जा हुई है, भजन कीर्तन का दौर। 11 सितंबर तक आयोजित होगा 5 दिवसीय भादो अमावस्या का उत्सव का मेला। इस मेले में अपनी कुलदेवी को भोग लगाते हैं भक्त, पूजा अर्चना करने के बाद श्रद्धालु मां को लगाएंगे 56 भोग। चमोली के हिमालयी अंचल में देखिए लोक आस्था संस्कृति और परंपरा की अद्भुत झलक। जगह जगह लोकगीतों से हो रहा भव्य यात्रा का स्वागत, पहाड़ी संस्कृति का अद्भुत रंग। कुरोड़ सिद्धपीठ मंदिर से विशेष पूजा अनुष्ठान करने के बाद अपने अपने निर्धारित पड़ावों के लिए कैलाश की ओर रवाना हुई। गांव गांव पहुंच रही है डोलियां, उनके स्वागत में लोकगीत जागीरों और ढोल तमाऊ नजर आए। पहाड़ में केवल देवी नहीं बल्कि घर की बेटी और बहन के रूप में पूजी जाती है मां नंदा। जम्मू कश्मीर में फिर से लगा आस्था का मेला, डोडा जिले की भद्रपा घाटी में वार्षिक 3 दिवसीय प्राचीन कैलाश कुंड यात्रा। इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, भद्रपा घाटी के आराध्य देवता माने जाने वाले भगवान वासुकी नाग को समर्पित है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में स्थित कैलाश कुंड झील में भक्त करेंगे स्नान। 15 सितंबर से शुरू होने जा रहा है चार धाम यात्रा का दूसरा चरण, प्रशासन और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तैयारियां तेज। दूसरे चरण के लिए फिर से शुरू हो रही है केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं, जिसके लिए बुकिंग प्रक्रिया तेज। सहारनपुर में 26 छड़ियों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, बैंड बाजी और ढोल नगाड़ों के साथ श्रद्धालु शामिल हुए, देर रात तक पूजा और भंडारे। गोगा महाड़ी मेले की तैयारियां हो गई तेज, सहारनपुर में 21 सितंबर से 3 दिन का मेला। 26 छड़ियों का खास श्रृंगार श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र, हर छड़ी के श्रृंगार पर परिवार करीब 2-3 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हैं। गोगा महाड़ी मेले की परंपरा करीब 1114 साल पुरानी, मान्यता है कि जारवीर गोगा जी का सहारनपुर से खास धार्मिक संबंध रहा है। मेले में कई राज्यों से पहुंचेंगे श्रद्धालु, उत्तर प्रदेश हरियाणा उत्तराखंड और हिमाचल से आने वाले श्रद्धालु 26 छड़ियों के दर्शन और पूजन करेंगे। नेपाल जैसी तबाही से पहले अब मिलेगा अलर्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाई आपदा सहायक ऐप, भूस्खलन बादल फटने और बाढ़ का खतरा भयंकर भांप कर ऐसे ऐप लोगों को सतर्क करेंगे। पहाड़ों में खतरा दिखे तो आम लोग भी ऐप से तुरंत सूचना दे सकेंगे। मुरादाबाद के डिडोरी और मंगूपुरा गांव ने पीछ की स्वच्छता की मिसाल, सामुदायिक शौचालय की हो रही है नियमित सफाई। मंगूपुरा गांव में सफाई के साथ साथ शौचालयों और फॉगिंग की व्यवस्था भी बेहतर हुई है। भारत की शीतल देवी ने वर्ल्ड पैरा सीरीज में जीता गोल्ड। अहमदाबाद में हुए रोमांचक मुकाबले में शीतल देवी ने कजाकिस्तान की खिलाड़ी को मात दी। ओडिशा के बालासोर जंगल में 5 नन्हे ओरंगुटान मिले, जिन्हें नंदन कानन चिड़ियाघर लाकर इलाज शुरू किया गया। ओरंगुटान भारत के जंगलों में नहीं पाए जाते, ऐसे में 5 बच्चों के साथ मिलना बड़ा सवाल। रेस्क्यू किए गए 5 ओरंगुटान को अलग रखा गया है, डॉक्टर 24 घंटे सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ओरंगुटान के बच्चे काफी छोटे हैं, इनकी उम्र करीबा 6 महीने से 1 साल के बीच में बताई जा रही है। नंदन कानन में ओरंगुटान के बच्चों को केले, सेब और मैश के आलू दिए जा रहे हैं। 5 को फिलहाल क्वारंटीन में रखा गया है। उत्तर प्रदेश में सरकारी डॉक्टर्स के लिए तोहफा, अब 70 साल की उम्र तक सरकारी डॉक्टर्स दे सकेंगे सेवाएं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ग्रामीण महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर, जैविक का अचार, जैम और मुरब्बा बनाकर कमा रही हैं जीविका। कृषि विभाग और स्वयं सहायता समूहों के सहयोग, महिलाएं परंपराएं नुस्खों और सरकारी योजनाओं का उठा रही हैं लाभ, हो रही अच्छी आमदनी। कश्मीरी कारीगर संजय हुए हैं वाद्य यंत्र बनाने की परंपरा और प्राचीन कला, पिछले 32 सालों से हाथ से बना रहे हैं रबाब, संतूर और साज़े कश्मीर जैसे कश्मीरी वाद्य यंत्र। हर वाद्य यंत्र को बनाने में कारीगर मुश्ताक अहमद डार को लगते हैं लगभग 2 महीने, पूरे भारत से मिलते हैं ऑर्डर्स, विदेशों में भी पहचान। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ, बच्चों के पोषण पर जोर। योगी ने युवा को बताया देश की असली ताकत या जोर, कहा मां का स्वास्थ्य, स्वस्थ बच्चे की नींव। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नवजात बच्चों को कराया अन्नप्राशन, राधा कृष्ण की वेशभूषा में आए बच्चों को दुलार करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। देहरादून में ज्ञान गंगा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। आयोजन मुख्यमंत्री धामी ने शिक्षकों को सम्मानित किया, मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी। 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का श्रीलंका में बैली ब्रिज लगाने के लिए तैनात भारतीय सेना के इंजीनियर टास्क फोर्स से बातचीत। संवाद के दौरान भारतीय सेना के इंजीनियर टास्क फोर्स के कार्यों और योगदान की सराहना की, हौसला बढ़ाया। कोलंबो में राजनाथ सिंह ने श्रीलंका के नेता सजित के साथ द्विपक्षीय बैठक की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। पिछले 38 वर्षों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री का यह पहला आधिकारिक दौरा है, दोनों देशों के बीच रक्षा, रणनीतिक और समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना उद्देश्य। एप्पल का सरप्राइज एंड शाइन इवेंट, आज आईफोन 18 प्रो समेत कई प्रोडक्ट्स होंगे लॉन्च। एप्पल का सरप्राइज एंड शाइन इवेंट, आज आईफोन 18 प्रो समेत कई प्रोडक्ट्स लॉन्च होने जा रहे हैं। कंपनी के पहले फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा के आने की भी उम्मीद है। एप्पल में भारी उत्साह। कंपनी का अब तक सबसे महंगा स्मार्टफोन हो सकता है फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा। भारत में करीब 2.5 लाख रुपया हो सकती है कीमत। कई अन्य बड़े प्रोडक्ट्स भी उतारने की तैयारी में है एप्पल। एप्पल वॉच सीरीज 12 और नई एप्पल वॉच अल्ट्रा के शामिल होने की उम्मीद। टिम कुक के पद छोड़ने के बाद नए सीईओ बने हैं जॉन टर्नस। का होगा ये पहला कीनोट भारतीय समयानुसार। आज रात 10:30 बजे शुरू होगा इवेंट। बॉक्स ऑफिस पर कालीन भैया छाए। मिर्जापुर द मूवी की भारत में नेट कमाई 100 करोड़ के पार। प्यार विश्वासघात की कहानी लेकर आ रही है फिल्म लव लॉटरी। अक्षय ओबराय की सस्पेंस थ्रिलर ट्रेलर जारी। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान का तीसरा गाना मैं तो हैवान नहीं हूं हुआ रिलीज। रवि किशन के वायरल बीम पर टी सीरीज बनाने जा रहा है गाना मनी फॉलोस माय ब्रदर। टाइटल के गाने का टीजर जारी। 4 साल बाद फिर से छठ पूजा स्पेशल गीत लेकर आ रहे हैं सिंगर विशाल मिश्रा। जल्द ही आने वाला है उनका ये गीत। कटिहार में बाढ़ के बीच अनोखी तस्वीरें। नाव पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंची बारात। बाढ़ भी नहीं रोक पाई निकाही खुशियां। पानी के बीच दूल्हा दुल्हन ने निभाई शादी की रस्में। भागलपुर में बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारियां। दीपक आनंद ने राहत के कामों का जायजा लिया। तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी का पानी बढ़कर हुआ 9,200 क्यूसिक। का कावेरी डेल्टा में सिंचाई के लिए पानी छोड़े जाने की ड्रोन तस्वीरें निकलकर सामने आई। थूथुकुड़ी में देखे साइबेरियाई से आए खूबसूरत पक्षी। लोग हो रहे आकर्षित। बाराबंकी में सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। प्रशासन अलर्ट। फरुखाबाद में बाढ़ जैसे बने हालात। कई इलाकों में पानी में डूबे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। प्यार में बाढ़ से हालात गंभीर। गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद पटना में गंगा नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर। समस्तीपुर में गंगा का जलस्तर 10 सेंटीमीटर घटा लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर। बढ़ रहा है नदी बाढ़। पीड़ितों का राहत इंतजार। बिहार के खगड़िया में बाढ़ से करीब 1.5 लाख आबादी प्रभावित हुई है। कई गांव टापू में बदल गए। नेशनल हाईवे के किनारे रहने को मजबूर। शंघाई में इंसानों जैसा दिखने वाला रोबोट एल्फ श्वान 2.0 खींच रहा सभी का ध्यान। इसने लोगों के सामने अपना गाना भी सुनाया। चीन में बने इस रोबोट का चेहरा बिल्कुल इंसानों की तरह नजर आता है। ये खुशी हैरानी और दूसरे सेक्टरों चेहरे के भाव भी दिखाता है।

0: संघाई के एक कार्यक्रम में इस खास रोबोट को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी है कि इंसानों जैसे चेहरे और हाव भाव। ये रोबोट सिर्फ चलता फिरता नहीं बल्कि सामने वाले इस हिसाब से भाव भी बदलता है। इसके चेहरे में कई छोटे सिस्टम लगाए गए हैं जो अलग अलग एक्सप्रेशन देते हैं। इंसान जैसी शक्ल और भावना वाला ये रोबोट अब लोगों के बीच आकर्षण का विषय बना हुआ है। सैकड़ों तरह के चेहरे में भाव खासकर इंसानों जैसी नकल करता है। चीन के जियांगसू शहर में रोबोट पब्लिक सिक्योरिटी एक्सपो आयोजन किया गया। रोबोट ट्रैफिक पुलिस और रोबोट पेट्रोल डॉग्स ने किया रेव्यू। एक्सपो में 100 से ज्यादा कंपनियां शामिल हुई, पिछले 2 सीजन का टूटा रिकॉर्ड। 5 दिनों तक चलेगा यह कार्यक्रम। पब्लिक सिक्योरिटी और पुलिस उपकरण से जुड़ी हुई कंपनियां होंगी शामिल। एक्सपो बना पब्लिक सिक्योरिटी गवर्नेंस को दर्शाने का शानदार प्लेटफॉर्म। पब्लिक सिक्योरिटी की दिशा में एक अहम कदम। कुल 13,000 वर्ग मीटर एरिया में फैला हुआ यह एक्सपो चीन की टेक्नोलॉजिकल ताकत को दर्शाता है। एक्सपो क्यूबा के लॉरेंजो सुआरेज ने घर में उगाए 100 से ज्यादा ऑर्किड की किस्में, रंग बिरंगे फूलों से भरी खूबसूरत दुनिया बना रहे हैं उनका ग्रीन हाउस। लॉरेंजो पहले टमाटर, चावल और दूसरी फसलों पर काम कर रहे थे। 2009 में उन्होंने क्यूबा का पहला सजावटी हाइब्रिड ऑर्किड बनाया जिसका नाम रखा बेला लोरेना। क्यूबा के जंगलों में कई दुर्लभ ऑर्किड खतरे में हैं। लॉरेंजो ऐसे नए फूल बना रहे हैं ताकि लोग जंगल के दुर्लभ ऑर्किड तोड़कर ना लाएं। लॉरेंजो ऐसे हाइब्रिड ऑर्किड तैयार कर रहे हैं जो बढ़ती गर्मी को सहन कर सके। क्यूबा में ऑर्किड की करीब 300 देशी प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: गांव में बीजेपी नेताओं के घुसने पर घमासान। यूजीसी बिल और आरक्षण के विरोध में पिटाई। नेपाल में सैलाब से लड़ते नौजवान का रेस्क्यू। बेबी स्पाइडरमैन। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए वैभव के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
3: कौन सा ग्रह त्वचा की समस्याएं सबसे ज्यादा देता है? किन ग्रहों की वजह से त्वचा पे झुर्रियां पड़ जाती हैं? अलग अलग ग्रहों का त्वचा की समस्या में क्या है योगदान और क्या है ज्योतिष के अनुसार इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अमेरिका की न्यूयॉर्क में लगने वाली एक खास प्रदर्शनी, चीन के कलाकार की बनाई मोम की मूर्तियों वाली इस प्रदर्शनी की खास बात यह है कि इसमें कई नामचीन हस्तियों की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। खास बात यह भी है कि ये मोम की सभी मूर्तियां मेहमान नवाजी के भाव से प्रेरित हैं।
2: द वांग कंटेम्प्रेरी संस्था के फाउंडर अलेक्जेंडर वांग के लिए ये खास पल है। न्यूयॉर्क के वेलकम होम नाम के इस गेस्ट हाउस में चीन की वैक्स आर्टिस्ट झोउ ज़ुएरोंग की कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगने जा रही है, जिसमें ज़ुएरोंग की बनाई 10 वैक्स स्टैचू को शोकेस किया जाएगा। द वांग कंटेम्प्रेरी नाम की इस प्रदर्शनी में मशहूर हस्तियां कैलीग्राफी और एक्यूपंक्चर का अनुभव लेती दिखाई देंगी। खास बात ये है कि इन मोम की मूर्तियों के जरिए पश्चिमी पॉप कल्चर में चीनी रीति रिवाज और रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाने की कोशिश की गई है। अलेक्जेंडर वैंग के लिए ये पल बेहद खास है क्योंकि अमेरिका में ये इनकी पहली प्रदर्शनी होगी। द वैंग कंटेम्प्रेरी चाइना टाउन का एक सांस्कृतिक संगठन है जिसे पेशे से फैशन डिजाइनर अलेक्जेंडर वांग और उनकी माँ यिंग वांग ने शुरू किया था।
3: We wanted this to be something that could be opened up to the public for a longer period of time. And so, when we started thinking about the format and kind of characters and what it meant logistically, I thought, what a interesting kind of approach to think about wax figures. And, you know, traditionally I felt wax figures, whether in a museum in a historical sense or, you know, Madame Tussauds, it hasn't really been explored in this context.
2: इन वैक्स स्टैच्यू में खाना बनाते, फूड शेयर करते, टी पार्टी में हिस्सा लेते, कैलीग्राफी का अभ्यास करते और एरहू जो कि एक चीनी वाद्य यंत्र है उसे बजाती हुई महिलाएं नजर आएंगी। इन तमाम कलाकृतियों में एक बात कॉमन है, ये सभी मोम की मूर्तियां मेहमान नवाजी के भाव से प्रेरित हैं। इन कलाकृतियों के जरिए चीनी संस्कृति के उस भाव को पेश करने की कोशिश की गई है जो इस मान्यता पर आधारित है कि किसी का घर में स्वागत करने का विचार कभी कभी कही गई बातों से नहीं बल्कि प्यार भरे काम से जाहिर होता है। न्यूयॉर्क के कला प्रेमियों के लिए गुड न्यूज ये भी है कि द वांग कंटेम्प्रेरी एग्जीबिशन पूरे महीने वीकेंड पर यहाँ फ्री में दिखाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: गांव में बीजेपी नेताओं के घुसने पर घमासान, यूजीसी बिल और आरक्षण के विरोध में पिटाई, नेपाल में सैलाब से लड़ते नौजवान का रेस्क्यू, बेबी स्पाइडरमैन।
5: वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए वैभव के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: जयपुर में गणेश महोत्सव की रौनक, मोती डूंगरी गणेश मंदिर में चढ़ाए गए हजारों मोदक, बप्पा को चढ़ाए गए मोदकों में 251 किलो और 51 किलो के मोदक भी शामिल। गणपति उत्सव के रंग में रंगने लगी मुंबई, ऐतिहासिक चिंचपोखरी उत्सव मंडल में इस बार भगवान वेंकटेश्वर बालाजी से प्रेरित रूप में दिखेंगे बप्पा। यूपी के सहारनपुर में निकली 26 छड़ियों की भव्य शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की थाप से गूंजा शहर, शोभा यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। उत्तराखंड के कई जिलों में कल से 14 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल आज नए प्रोडक्ट्स का करेगी खुलासा, भारतीय समय के मुताबिक 10:30 बजे शुरू होगा इवेंट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त है 7 बजे के साथ गुड न्यूज का। हम आपको साथ अच्छी खबरें बताएंगे, बात सबसे पहले आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। गणेशोत्सव के आगाज में चंदन बाकी है, लेकिन देश भर में बप्पा के स्वागत की तैयारी ऐसी है मानो गणपति उत्सव की शुरुआत हो गई हो। ऐसे में हमारी आज की सबसे पहली गुड न्यूज यही है, विघ्नहर्ता की शोभा यात्रा में बाल गणेश। शहर शहर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कहीं भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं मोदक तैयार किए जा रहे हैं।

0: ये गुजरात के आणंद जिले की तस्वीर है, जहां गणपति बप्पा के अलग अलग स्वरूपों में सजे कलाकार जब सड़कों पर उतरे तो हर किसी की नजरें थम गई। ढोल नगाड़ों की गूंज, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे और सड़कों पर उमड़ा हजारों भक्तों का हुजूर। लेकिन इस भीड़ के बीच हर किसी की नजरें उन कलाकारों पर टिक गई जो बप्पा के बाल स्वरूप में सड़कों पर उतरे थे। कोई नन्हे गणेश के रूप में नजर आया तो कोई अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स का रूप लेकर बप्पा के साथ कदम ताल करता दिखा। बाल गणेश के इन मनमोहक रूपों और रंग बिरंगे कार्टून कैरेक्टर्स ने आगमन यात्रा को और भी खास बना दिया। इसे देखने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान गणेश की ये आगमन यात्रा महज एक शोभा यात्रा नहीं रही, बल्कि देखते ही देखते एक भव्य जनोत्सव में तब्दील हो गई। ब्लॉकबस्टर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित राजा गणराज 2026 की आगमन यात्रा में ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि सड़कें भक्तों से पट गई। एक से बढ़कर एक झांकी ने लोगों का दिल जीत लिया। नुक्कड़ नाटक से लेकर हैरतअंगेज करतब, कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों से लेकर बप्पा की भव्य दिव्य प्रतिमा तक, आगमन यात्रा में ऐसा नजारा दिखा कि पूरे इलाके का माहौल ही गणेशमय हो गया।
1: हमने अलग अलग प्रकार के 13 इवेंट रखे थे, जिसमें नरसिम्हा एक्ट थे, मणिकर्णिका एक्ट थे, ऐसे बहुत सारे एक्ट हमने हमारे हिंदू धर्म संस्कृति का एक अच्छा संदेश लोगों के सामने पहुंचे वो भी ध्यान रखा था। वो उस प्रकार से कुछ अच्छा आयोजन किया था जिसमें समाज को कुछ अच्छा जानने का अवसर मिले।
0: हर तरफ आस्था, उत्साह और उमंग का रंग नजर आया। बप्पा के स्वागत की ऐसी ही तस्वीर महाराष्ट्र के अकोला में देखने के लिए मिली, जहां अकोला का शास्त्री नगर खुशी से झूम रहा है। आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के बीच चिंतामणि गणपति बप्पा का स्वागत हो रहा है। जाहिर है यहां गणेश भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सबकी चिंता हरने, मनोकामना पूरी करने बप्पा जो पधार रहे हैं।

0: सिविल लाइन चौक पर जैसे ही बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा से लाल कपड़ा हटाया गया, अपने आराध्य के दर्शन कर भक्त खुशी से झूम उठे। ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा का स्वागत किया गया और गणपति बप्पा मोरिया की गूंज के साथ यहाँ की फिजाओं में बप्पा की भक्ति की सुगंध फैल गई।
1: निर्माण हो रहा है कि पापा के स्थापना के पहले उसका आगमन जो है बड़े जल्लोष के साथ होना चाहिए। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि ये भव्य 30 फीट की मूर्ति है गौरी लंदन की, उसका भव्य तरीके से यहाँ पर आयोजन किया गया है।
0: अकोला के बाजार भी बप्पा की भव्य दिव्य मूर्ति से सजे हैं। अकोला के कुम्हारवाड़ा में एक से बढ़कर एक मूर्तिकार बप्पा की भव्य दिव्य मूर्ति को स्वरूप दे रहे हैं। ये मूर्तिकार मनोज गोंडवाल है, जो मूर्ति बनाने वाले अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है। उनके दादा से लेकर आज तक उनके परिवार में गणपति की प्रतिमाएं बनती आ रही है।
2: मूर्ति को बस अब आखिरी स्वरूप देने के लिए जो है कलाकार जुट चुका है। अब कुछ ही घंटे बचे हैं, दिन तो बचे ही है लेकिन कुछ ही घंटे बचे हैं कि बप्पा को अपने घर विराजने के लिए जो है हर भक्त इतना आतुर लगा हुआ है कि कुछ ग्राहक भी जो है अब गणपति प्रतिमाओं को यहाँ पर देखने आ रहे हैं, उनकी चॉइस करने आ रहे हैं। आप देख सकते हो कि ग्राहक भी जो है अब गणपति बप्पा को जो है अपनी मूर्ति कितनी सुंदर हो ये देखने के लिए जो है हर कलाकार के कार्यशाला में आ रहा है।
0: वैसे केवल मूर्तियां ही तैयार नहीं हो रही हैं, बप्पा के सबसे प्यारे मोदक की दुकानें भी सजने लगी हैं। ऐसी मान्यता है कि गणेश उत्सव के दौरान मोदक की खुशबू से गणपति अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। ऐसे में बप्पा के आगमन के साथ मोदक के दुकानों में भी रौनक बढ़ रही है। दिल्ली से मनीष चौरसिया, अकोला से धनंजय साबले, आनंद से हैताली शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के चमोली में इन दिनों आस्था का अनोखा रंग देखने को मिल रहा है। पहाड़ों की बेटी कही जाने वाली मां नंदा अपने मायके से कैलाश यात्रा के लिए निकल रही हैं, लिहाजा जगह जगह उन्हें भावुक विदाई दी जा रही है। 12 साल बाद यात्रा आयोजित की जा रही है। ऐसे में हमारी आज की गुड न्यूज नंबर 2 यही है, लोकगीतों के साथ नंदा देवी की विदाई। हर बार की तरह इस बार भी ढोल दमाऊं और जागरों के बीच मां नंदा की डोली आगे बढ़ रही है। कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरती ये यात्रा अब अपने अलग अलग पड़ावों से होकर गुजर रही है।
4: वाद्य यंत्रों की ध्वनि से चमोली की वादियां गूंज रही है। कहीं मां नंदा के जागर गाए जा रहे हैं तो कहीं महिलाएं लोक गीतों के जरिए पहाड़ की बेटी को विदाई दे रही है। नंदा देवी की स्तुति में उठते ये सुर उत्तराखंड की फिजाओं को सुरमयी बना रहे हैं। हर गीत में भक्ति है, हर स्वर में विरह है और हर विदाई में अपनी बेटी को मायके से ससुराल भेजने की पहाड़ की सदियों पुरानी परंपरा है।
5: 12 वर्षों के बाद मां नंदा की डोली इस समय नंदा देवी बड़ी जात की यात्रा इस समय चल रही है। ये डोलियां है जो इस समय यहां से अलग अलग पड़ाव से अलग अलग गांव होते हुए आगे बढ़ रही है। इसके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं जो श्रद्धालु है वो चल रहे हैं।
4: मां नंदा की बड़ी जात यात्रा ने इन दिनों पूरे चमोली को नंदामय कर दिया है। लंबे अंतराल के बाद मां नंदा की डोलियां गांव-गांव पहुंच रही है। जहां जहां डोलियां पहुंच रही हैं, वहां आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कहीं फूलों से स्वागत हो रहा है तो कहीं पारंपरिक वाद्य यंत्रों और जागरों के बीच मां नंदा के जयकारे गूंज रहे हैं, मानो पूरा पहाड़ अपनी बेटी के स्वागत में पलके बिछाए खड़ा हो।
6: बहुत आस्था है भक्तों की यहाँ पे और बहुत काफी जनसंख्या में भीड़ लगी है और हम माता को अपनी माँ मान के साक्षी मान के हम उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं।
4: 5 सितंबर को नंदा नगर घाट के कुरुड़ सिद्ध पीठ मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान के बाद 3 प्रमुख डोलियां कैलाश की ओर रवाना हुई थी। अब यही डोलियां गांव-गांव पहुंच रही है और जहां जहां मां नंदा की डोली पहुंच रही है, ढोल दमाऊं की गूंज, जागरों के सुर और फूलों की बारिश के बीच मां नंदा का भव्य स्वागत हो रहा है।
7: हम लोग माता जी का बड़ा स्वागत कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपनी बिटिया के तरह इनको विदा कर रहे हैं और माँ हम लोगों का सब पे आशीर्वाद बना रहे हैं।
4: पहाड़ में माँ नंदा को सिर्फ देवी नहीं बल्कि अपनी बेटी और बहन के रूप में पूजा जाता है। यही वजह है कि उनकी यात्रा में भक्ति के साथ अपनापन और भावनाओं का भी अनोखा रंग देखने को मिलता है। 15 सितंबर को चमोली के बांड गांव में तीनों डोलियों का भव्य मिलन होगा। इसके बाद बांड से आगे मां नंदा की तीनों डोलियां एक साथ कैलाश की ओर बढ़ेंगे। यहीं से शुरू होगा बड़ी जात यात्रा का सबसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण सफर। ऊंचे पहाड़, कठिन चढ़ाई और दुर्गम रास्तों के बीच डोलियां आगे बढ़ेंगे। हर कदम के साथ मंजिल होगी मां नंदा का कैलाश धाम और भाव होगा अपनी बेटी को उसके ससुराल तक पहुंचाने का। बेदनी, बुग्याल और शिला समुद्र के दुर्गम पड़ावों को पार कर 20 सितंबर को यात्रा होमकुंड पहुंचेगी, जहां विशेष पूजा अनुष्ठान के बाद मां नंदा को विदाई दी जाएगी। इसके बाद परंपरा के अनुसार चौसिंगिया खाड़ू कैलाश की ओर प्रस्थान करेगा और पीछे रह जाएगा पहाड़ की आंखों में बेटी की विदाई का भाव। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: अमावस्या के मौके पर महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले बैल पोला उत्सव को लेकर हर तरफ रौनक बिखरी हुई है। सजे धजे बैल हैं और इन बैलों के साथ अन्नदाता किसान हैं, जो इस उत्सव को लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं।
1: किसान का सबसे बड़ा साथी होता है उसका ऋषभ राजा बैल, और बैल का महाराष्ट्र में पोला जो है श्रावणी अमावस्या के दिन मनाया जाता है, लेकिन इस साल जो है 2 महीने से लगभग बारिश ही नहीं है, जिसके चलते जो है वो किसान बेहद परेशान है। बावजूद जो है वो किसान जो है वो यहाँ पर अपने ऋषभ राजा के लिए, अपने साथीदार बैल के लिए जो है रस्सी और उसको सजाने के लिए जो है यहाँ पर जो है सामान लेता नजर आ रहा है।
0: अकोला के बाजारों की ये रौनक बता रही है कि ये उत्सव किसानों के लिए कितना अहम है। किसान अपने बैल के लिए रंग बिरंगी रस्सी, घुंघरू वाले गले के पट्टे, कंधे के लिए सजावटी कपड़े, बैलों की सींगों के लिए ऑयल पेंट और नकली फूलों की खरीदारी में जुटे हैं, ताकि उत्सव के दिन बैलों को सबसे सुंदर तरीके से पेश किया जा सके।
2: सवेरे उसको हम नहाते धोते सब, उसको नवे दो नवे मटाटे कलर कटाते, उसको सिंग को कलर लगाते, बाद में उसको कोले में लेके जाते।
3: आज के दिन क्या खरीदते हैं उसके लिए?
2: आज के दिन उसके तो सामान लिया, दोर लिया, बटरे लिया, डब्बे लिया कलर के।
0: महाराष्ट्र में 2 दिनों तक इस त्योहार को मनाने की परंपरा है। पहले दिन बैल पोला और दूसरे दिन तान्हा पोला मनाया जाता है। बैल पोला वाले दिन बैलों की पूजा का महत्व होता है, जबकि तान्हा पोला में बच्चे मिट्टी के बैल लेकर घर घर जाते हैं और लोग उनकी पूजा कर कुछ न कुछ न्योछावर करते हैं, इसलिए बाजार में रंग बिरंगे मिट्टी के बैल भी देखने को मिल रहे हैं।
1: सबसे अहम बात यही है कि श्रावणी अमावस्या के दिन जो बैल पोला होता है, उस दिन जो किसान है वो किसान अपने बैल को सुबह से ही नहलाता है, उसे जो है नए जो ये उसके गले के रस्से जो है वो रस्से उसे बांधने वाले जो रस्से है, उसके बाद में उसके गले में घुंघरू है, ये सभी जो है वो खरीदता नजर आ रहा है।
0: किसान और बैल का रिश्ता सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रिश्ता मेहनत, भरोसे और भावनाओं का है। इसलिए बैल पोला के दिन किसान बैलों से काम नहीं लेते हैं, बल्कि इस दिन किसान अपने बैलों का सम्मान करते हैं। बैल पोला का ये त्योहार देश की लोक परंपराओं से जुड़ा त्योहार है, जिसे देश के हर हिस्से में अलग अलग नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र के अलावा ये त्योहार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में भी मनाया जाता है। अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: उत्सव और उल्लास की एक तस्वीर राजस्थान के सीकर जिले से भी आई है, फतेहपुर शेखावटी से। यहां भादो अमावस्या उत्सव पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग फतेहपुर शेखावटी पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की गुड न्यूज नंबर 4 यानी कि चौथी गुड न्यूज यही है, भादो मेले में पहुंचे प्रवासियों में रौनक। दरअसल अग्रवाल समाज की कुल देवी का मंदिर फतेहपुर शेखावटी में पड़ता है, जो इन दिनों दुल्हन की तरह सजा हुआ है। एक दिन पहले भादो अमावस्या उत्सव की शुरुआत हुई और इसके लिए माँ के दरबार में फूलों से सजावट की गई। पूरे आस्था और भक्ति के साथ पूजन अर्चन हुआ और उसके बाद माँ को 56 प्रकार का भोग लगाया गया। श्रद्धालुओं ने कुल देवी के दर्शन कर उनके प्रति सम्मान, श्रद्धा और समर्पण भाव अर्पित किया। इस उत्सव के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु सीकर पहुंचे थे और वहां पर पूजा अर्चना उन्होंने की। भादो अमावस्या का उत्सव यहाँ के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का बेहद अहम हिस्सा, जो मुख्य रूप से मारवाड़ी प्रवासियों और स्थानीय समाज को अपनी जड़ों से जोड़ता है। इस महोत्सव में देश विदेश से आने वाले प्रवासी अपनी कुल देवी दादी माँ के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भादो अमावस्या उत्सव का समापन 11 सितंबर को होगा। बिहार के जहानाबाद की डीएम शेरवाई भूटिया इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन किसी बड़े प्रशासनिक फैसले की वजह से नहीं, बल्कि अपने अनोखे अंदाज की वजह से। डीएम मैडम इन दिनों सरकारी स्कूल के निरीक्षण पर हैं, जहां वो क्लास भी ले रही हैं और क्लास लगा भी रही हैं। ऐसे में हमारी आज की गुड न्यूज नंबर 5 यही है, बच्चों की क्लास में आई डीएम मैडम। जहानाबाद की जिलाधिकारी जहानाबाद के कन्या मध्य विद्यालय में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंची तो उन्होंने वहां बच्चों की तरह ही व्यवहार किया। यहाँ पर वो क्लासरूम में बैठी और उसके बाद उन्होंने बच्चों की क्लास भी ली।

0: क्लासरूम की सबसे आखिरी सीट पर बैठी ये महिला कोई टीचर या प्रिंसिपल नहीं बल्कि पूरे जिले की अधिकारी है। बिहार के जहानाबाद की डीएम छिड़वाई भूटिया जो अब स्कूल के औचक निरीक्षण पर पहुंची, तो अधिकारी बनकर नहीं बल्कि एक आम छात्र की तरह सबसे पीछे बैठकर पहले क्लास ली। सामने शिक्षक पढ़ा रहे थे और पीछे बैठकर डीएम साहिबा और पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुन रही थी। उनका यह अंदाज देखकर बच्चे भी हैरान रह गए। इसके बाद क्लासरूम में पहले डीएम साहिबा ने बच्चों की तरह क्लास ली और इसके बाद स्कूल के निरीक्षण पर निकली। फिर क्या था, जहां कहीं पढ़ाई में कमी दिखी वहां जिम्मेदारों की क्लास भी लगा दी। यानी पहले बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई समझी और फिर पूरे स्कूल की व्यवस्था की पड़ताल कर बच्चों से लेकर जिम्मेदारों तक सभी की क्लास ली। और जब निरीक्षण के दौरान डीएम साहिबा की नज़र उन छात्रों पर पड़ी जो स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं आए थे, तो उनसे भी सीधे सवाल जवाब शुरू कर दिए। यानी डीएम साहिबा ने सिर्फ स्कूल की व्यवस्था ही नहीं परखी बल्कि बच्चों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और स्कूल का माहौल भी समझने की कोशिश की। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। जहानाबाद की डीएम छिड़वाई भूटिया पहले भी कई बार सरकारी स्कूलों के निरीक्षण पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन उनका अंदाज हर बार कुछ अलग ही नजर आता है। कभी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाते हुए तो कभी उनके साथ खेलकूद में हिस्सा लेते हुए डीएम साहिबा नजर आई है। जहानाबाद से सैयद मुशर्रफ इमाम, गुड न्यूज टुडे।
1: आपसे कुछ ही घंटों में एप्पल टेक्नोलॉजी दुनिया में एक बड़ा पेशकश करने वाली है। अब से थोड़ी देर बाद एप्पल का इवेंट शुरू होने वाला है जिसमें नए आईफोन से लेकर एप्पल वॉच और एयरपॉड्स तक कई बड़े प्रोडक्ट्स की नई सीरीज पर से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन पर टिकी हैं। ऐसे में हमारी आज की गुड न्यूज नंबर 6 यही है। आज लॉन्च होगी आईफोन की नई सीरीज। खबरों के मुताबिक एप्पल पहली बार फोल्डेबल फोन की दुनिया में कदम रख रहा है। ऐसे में मुकाबला सैमसंग समेत दूसरे फोल्डेबल फोन से होगा। वहीं इस बार एप्पल के लॉन्च प्लान में भी बड़ी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आईफोन 18 का बेस मॉडल तुरंत लॉन्च नहीं होगा बल्कि इसके अगले साल यानी 2027 में आने की उम्मीद है। हो सकता है कि आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स पहले पेश किए जा सकते हैं। ये भी बताते चलें कि 1 सितंबर को टिम कुक के पद छोड़ने के बाद नए सीईओ बने जॉन टर्नर्स का ये पहला प्रेजेंटेशन होगा। इवेंट भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा, जिसे एप्पल की वेबसाइट पर लाइव देखा जा सकता है।
2: सबसे पहले तो बात करें आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स जो कि दो डिवाइसेस इस साल लॉन्च हो गए। डिजाइन के मामले में ज्यादा कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट ना ही करें तो बेटर है क्योंकि डिजाइन 17 प्रो मैक्स जैसा ही लगने वाला है। लेकिन अगर थोड़े कुछ चेंजेस की बात करें जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है डायनामिक आइलैंड चेंज होगा, जो एक बार होता है आगे वो छोटा हो जाएगा। अंदर बैटरी एफिशिएंसी चेंज होगी क्योंकि एक नया A20 प्रो एक चिपसेट नया एप्पल इसमें डालेगा। और डिजाइन के बारे में बात करें, पीछे जो कैमरा है आइलैंड बिल्कुल सेम रहने वाला है, लेकिन एक वेरिएबल एपर्चर कैमरा आपको प्रो मैक्स मॉडल में मिलेगा जिससे आपकी फोटोग्राफी थोड़ा डेप्थ आपको जो मिलता है वो चेंज हो सकता है। बाकी ओवरऑल डिजाइन में ज्यादा आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे। ऐसा भी माना जा रहा है कि जो इस साल का जो कवर है जो 17 प्रो में आप यूज कर सकते थे वो आप 18 प्रो में भी यूज कर पाएंगे, तो एक्सेसरीज काफी सिमिलर रहने वाली हैं। तो 18 प्रो और प्रो मैक्स ये दो मॉडल्स जो लॉन्च होंगे ऐसा लग रहा है कि काफी एक्सपेक्टेशंस हैं। प्राइसिंग के मामले में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकी प्राइसिंग कम से कम 1,20,000 से शुरू होगी क्योंकि इस साल आपको शायद जो आईफोन 18 जो बेस मॉडल होता है वो ना मिले, वो अगले साल उसका लॉन्च शिफ्ट हो जाए आईफोन 18 के साथ। तो स्टार्टिंग पॉइंट ही एंट्री पॉइंट प्राइसिंग की इंडिया में शायद 1,20,000 होगी आईफोन 18 प्रो की, तो ये एक्सपेक्टेशन हमारी है। बाकी अगर बात करें जो बड़ा अनाउंसमेंट हम इस साल देख सकते हैं आईफोन इवेंट पे वो है आईफोन फोल्ड जो कि फोल्डेबल है। काफ़ी लंबे टाइम से चर्चा हो रही है इसके बारे में ऑनलाइन। सैमसंग हो गई या फिर गूगल हो गया, शाओमी तक इस डिज़ाइन के साथ एक्सपेरिमेंट कर चुका है, तो अब आईफोन की बारी है कि आईफोन फोल्डेबल के साथ किस तरह डिज़ाइन को चेंज कर सकता है।
1: एशियन गेम्स जापान के आईची और नागोया में 19 सितंबर से आयोजित किए जा रहे हैं और इन गेम्स में भाग लेने वाले 500 से ज्यादा भारतीय खिलाड़ियों का दल जापान जा रहा है। मंगलवार की रात इन खिलाड़ियों को शुभकामनाओं के साथ विदा किया। ऐसे में हमारी आज की गुड न्यूज नंबर 7 यानी कि हमारी आखिरी 7वीं गुड न्यूज यही है। एशियन गेम्स के लिए तैयार भारतीय खिलाड़ी। 2023 के जांगजो में हुए एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार पदकों की सेंचुरी पार करते हुए 107 मेडल अपने नाम किए थे और इस बार इससे ज्यादा पदकों की उम्मीद की जा रही है।

0: जापान के आईटी नागोया में होने वाले एशियन गेम्स 2026 में देश का परचम लहराने के लिए भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं। इन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने के लिए खिलाड़ियों ने कमर कस ली है। खेल मंत्रालय ने 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक होने वाले खेलों के महाकुंभ के लिए अपने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देकर विदा किया है। जापान में होने वाले एशियन गेम्स में इस बार खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इस बार क्रिकेट, हॉकी और एथलेटिक्स और अन्य खेलों में खिलाड़ियों से मेडल की उम्मीद की जा रही है। मंगलवार की शाम दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों की नीली जर्सी को लॉन्च किया गया। इस मौके पर मौजूद खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय दल को पदक जीत कराने के लिए शुभकामनाएं दी।
1: जब एशियन गेम्स में इस बार हमारा कंटिंजेंट 503 टीम के मेंबर के रूप में हम जा रहे हैं, मेरा विश्वास है कि हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे।
0: इस बार इन खेलों में 768 सदस्य भारतीय दल शामिल हो रहा है, जिनमें 503 खिलाड़ी, 246 स्पोर्ट्स स्टाफ और भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से 19 अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी जापान जाएगा। इस बार भारत 43 में से 36 खेलों में अपनी चुनौती पेश करेगा। खिलाड़ियों को उम्मीद है कि इस बार वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे।
2: जी सर, एक्साइटेड तो बहुत हूँ। अभी मैं कॉमनवेल्थ के बाद बैक टू बैक फिर एक महीने बाद अभी एशियन गेम्स के लिए जा रही हूँ, तो एक्साइटेड के साथ साथ मुझे एक्साइटेड होने से नहीं होगा, अभी तो मेडल भी लेना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं अभी बहुत मेहनत कर रही हूँ, ट्रेनिंग भी कर रही हूँ। और अभी हमें 2-3 दिन में हमें जापान भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए, तो आई होप मैं वहाँ पर भी अच्छा ट्रेनिंग करूँगी और मेडल ज़रूर लेके आऊँगी अपने देश में।
0: हांगझोउ एशियन गेम्स में भारत ने 100 पदकों का आंकड़ा पार किया था और इस प्रतियोगिता में कुल 107 मेडल जीतकर इन गेम्स में अपना शानदार

0: और एक अच्छी चीज होगी, जापान में क्रिकेट लोगों को देखने को मिलेगा, उनके लिए एक नया अनुभव है, नई चीज है, तो उसका बहुत अच्छा इंतजाम होगा। और मुझे जो पहले शिकायतें थी कि ग्राउंड ठीक नहीं था, विकेट्स की प्रॉब्लम थी, ड्रेसिंग रूम्स की प्रॉब्लम थी, तो हमारी टीम एशियन क्रिकेट काउंसिल के वहाँ गई थी, उन्होंने सब देख के आके कहा कि नहीं, ग्राउंड ठीक हो गया, विकेट्स भी ठीक है, ड्रेसिंग रूम की भी जो समस्या था वो भी उन्होंने हल कर दी, टॉयलेट्स वगैरह प्रॉब्लम थी वो समस्या भी हल हो गई है।
1: पुरुष और महिलाओं के क्रिकेट इवेंट के लिए भारत का 50 सदस्यों का दल भेजा जा रहा है, इनमें कुल 20 स्पोर्ट्स स्टाफ भी शामिल हैं, जबकि पुरुष एवं महिला हॉकी में भारत कुल 54 सदस्य दल भेज रहा है, इसमें 40 खिलाड़ी और 14 स्पोर्ट्स स्टाफ शामिल हैं। एशियन गेम्स में हॉकी भारत के लिए पदक की अहम भूमिका में शामिल है।
2: हमसे महिलाओं से हम तो उम्मीद ही कर ही रहे हैं, और जिस तरह से वर्ल्ड कप में खेले, टीम का भी कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बरकरार होगा, उम्मीद कर रहे हैं महिलाएं टीम। हाँ, चाइना से हम ये नहीं कह सकते कि हम चाइना को हम जीत सकते हैं, आज भी जिस हिसाब से हम वर्ल्ड कप में देखे हैं, सो उम्मीद काफ़ी है और मुझे कॉन्फिडेंस है, महिलाएं बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे करने जा रहे हैं।
1: वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रमुख सहदेव यादव को शेफ डी मिशन बनाया गया है, जबकि 4 डिप्टी शेफ डी मिशन उनकी मदद करेंगे। डॉक्टर दीन शाह पर्डीवाला इस गेम्स में भारतीय दल की चीफ मेडिकल ऑफिसर की जिम्मेदारी संभालेंगे। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
3: 7:07 गुड न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
5: गांव में बीजेपी नेताओं के घुसने पर घमासान, यूजीसी बिल और आरक्षण के विरोध में पिटाई, नेपाल में सैलाब से लड़ते नौजवान का रेस्क्यू, बेबी स्पाइडरमैन।
6: वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए वैभव के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।

0: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: जयपुर में गणेश महोत्सव की रौनक, मोती डूंगरी गणेश मंदिर में चढ़ाए गए हजारों मोदक, बप्पा को चढ़ाए गए मोदकों में 251 किलो और 51 किलो के मोदक भी शामिल। गणपति उत्सव के रंग में रंगने लगी मुंबई, ऐतिहासिक चिंचपोपली उत्सव मंडल में इस बार भगवान वेंकटेश्वर बालाजी से प्रेरित रूप में नजर आएंगे बप्पा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में निकली 26 छड़ियों की भव्य शोभा यात्रा, ढोल लगाड़ों की थाप से गूंजा शहर, शोभा यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए सोशल मीडिया की दुनिया में आप सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने धड़ाधड़ शेयर करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सिर्फ सीमित नहीं रह गई हैं। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा होता है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। नतीजा यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे उन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच और अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम करते हैं बेनकाब। तो देखिए फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की सच्चाई जिसको शेयर करके ये दावा किया जा रहा है कि गांव में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी नेताओं को सवर्णों ने यूजीसी के नए नियमों और जातिगत आरक्षण के विरोध में पीट दिया। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि बाढ़ में बहते शख्स को बचाने का ये वीडियो नेपाल का है। क्या है वायरल वीडियो का दावे की सच्चाई आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी का झंडा लिए कुछ लोगों को मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोग इस वीडियो के जरिए यह दावा कर रहे हैं कि गांव में प्रचार करने के लिए पहुंचे बीजेपी नेताओं को सवर्णों ने यूजीसी के नए नियम और जातिगत आरक्षण के विरोध में पीटा। बता दें कि यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। वायरल वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए हमने पड़ताल की, रिपोर्ट देखिए।
3: ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों और जातिगत आरक्षण के विरोध में देश के कुछ हिस्सों में प्रदर्शन हुए हैं। हालांकि यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। इससे जोड़कर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी का झंडा लिए हुए कुछ लोगों को मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान एक पुलिस वाला भी नजर आ रहा है, वो उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन एक शख्स पर लोग टूट पड़ते हैं, उस पर थप्पड़ों की बरसात कर देते हैं। इस हमले से वो शख्स जमीन पर गिर जाता है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि गांव में घुसते ही बीजेपी नेताओं पर सवर्णों का हमला। सवर्णों ने कहा, जब सवर्ण नेता यूजीसी रेगुलेशन, एससी एसटी एक्ट और जातिगत आरक्षण पर चुप हैं, तो वोट मांगने और प्रचार करने भी न आए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में कुछ लोगों को मारपीट करते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। खास तौर पर अगर हम देखें तो पुलिस के सामने एक शख्स को खूब पीटा जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिशें भी की लेकिन वीडियो में बीजेपी का झंडा भी नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वीडियो कब और कहां का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि गांव में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी नेताओं को सवर्णों ने यूजीसी के नए नियम और जातिगत आरक्षण के विरोध में पीटा। लेकिन ये दावा सच या झूठ ये जानना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि जो दिखता है वो असल में कई बार सच नहीं होता। वीडियो का सच समझने के लिए हमने वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा। इस दौरान देखिए, हमारा ध्यान गया वीडियो में नजर आ रहे गाड़ियों के नंबर प्लेट पर। लगभग सारी गाड़ियों का नंबर उत्तर प्रदेश का है, इससे यह समझ आ गया था कि वायरल हो रहा वीडियो उत्तर प्रदेश का हो सकता है। इसके अलावा वीडियो में जिस तरीके से गाड़ियां खड़ी हुई थी उससे ऐसा लगा जैसे जानबूझकर रोकी गई हैं। वीडियो में एक फ्रेम ऐसा भी दिखा जिसमें एक व्यक्ति गाड़ी के सामने बैठा दिख रहा है, शायद वो नहीं चाहता कि ये काफिले की गाड़ियां आगे बढ़े। वीडियो में लोगों के हाथों में बीजेपी का झंडा भी नजर आ रहा है, इससे ये साफ हो जाता है कि लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पर क्या मारपीट उनके साथ हुई है, क्या मारपीट करने वाले गांव के लोग हैं, इसकी जांच भी अभी बाकी थी। तो देखिए, वीडियो में जिस तरह की सड़क दिख रही है, सामने पेट्रोल पंप दिख रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि वीडियो किसी हाईवे का है, गांव का तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। इस पूरे वीडियो में एक और गौर करने वाली बात यह है कि इसमें एक ही व्यक्ति बाकी लोगों से पिट रहा है, इसलिए सवाल ये भी उठता है कि अगर गांव वालों से झड़प हुई तो फिर ये तो लोग सिर्फ एक व्यक्ति को क्यों पीट रहे हैं। इस पूरी घटना के तय पहुंचने के लिए हमने ये जानना भी जरूरी समझा कि क्या मारपीट हुई है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल पर भी गया कि पिटने वाला कौन है और ये झगड़ा क्यों हुआ। पड़ताल में क्या निकल कर आया, रिपोर्ट देखिए।
3: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें एक एक्स यूजर की पोस्ट में वायरल वीडियो जैसा ही एक वीडियो मिला। 25 अगस्त को ये वीडियो शेयर करते हुए इसे देवरिया में दो गुटों के बीच हुई मारपीट का बताया गया था। इस जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें 28 अगस्त को छपी एक रिपोर्ट में इस घटना का दूसरा वीडियो अपलोड किया हुआ मिला। रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला 25 अगस्त को यूपी के देवरिया में हुआ था, जहां बीजेपी के सोशल मीडिया के राष्ट्रीय सह संयोजक शिवानंद द्विवेदी के स्वागत कार्यक्रम के दौरान दो गुटों के बीच गाड़ियों को आगे निकालने को लेकर विवाद हो गया था। दोनों पक्षों की तहरीर पर गौरी बाजार पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। रिपोर्ट में अपलोड वीडियो और वायरल वीडियो के कोलाज में देखा जा सकता है कि पिटने वाला व्यक्ति एक ही है। सर्च के दौरान हमें इस घटना से संबंधित एक और रिपोर्ट मिली, जिसमें इस मामले का वीडियो भी अपलोड मिला। रिपोर्ट के मुताबिक देवरिया में बीजेपी नेता के स्वागत कार्यक्रम में पार्टी के गुटों के बीच भिड़ंत हो गई थी। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा गलत साबित हुआ। दरअसल यूपी के देवरिया में बीजेपी नेता के स्वागत कार्यक्रम में पार्टी के गुटों के बीच भिड़ंत हो गई थी। उस घटना के वीडियो को यूजीसी के नए नियमों और जातिगत आरक्षण के विरोध में बीजेपी नेताओं से मारपीट का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। इस हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में एक शख्स पानी में बह रहा है, तभी कुछ लोग पुल पर से उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को नेपाल में आई बाढ़ के दौरान रेस्क्यू का बताकर लगातार वायरल किया जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई देखने के लिए रिपोर्ट देखिए।

0: एक पुल के नीचे पानी की तेज धार और इसमें एक शख्स फंसा हुआ। ऊपर खड़े लोग बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। एक शख्स नीचे फंसे आदमी के हाथ को कसकर पकड़ा हुआ है और ऊपर खड़े लोग उसे पकड़े हुए हैं। जिंदगी के इस जंग में कभी भी कुछ भी हो सकता है। पानी में बहकर जाते एक शख्स को बचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नेपाल का बताकर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि नेपाल में बाढ़ का भयावह दृश्य है। तेज बहाव के बीच बाढ़ के पानी में फंसे एक व्यक्ति को बचाने के लिए एक शख्स अपनी जान जोखिम में डालता नजर आ रहा है। तेज धारा के बीच उसकी बेबसी और फंसे व्यक्ति को बचाने की ये कोशिश वाकई दिल दहला देने वाली है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार वायरल किया जा रहा है।
1: दरअसल नेपाल में 26 अगस्त को आई बाढ़ ऐसी तबाही लेकर आई कि जिसे देखकर हर कोई सहम गया। इस सैलाब में कई लोगों की मौत हो चुकी है जबकि हजारों लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़ के कारण शहरों, सड़कों, पुलों और कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। आपको पता है नेपाल में अभी भी बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इन सबके बीच पानी में बहकर जाते एक शख्स को बचाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में एक शख्स पानी में बह रहा है, तभी कुछ लोग पुल पर से उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को नेपाल में आई बाढ़ के दौरान रेस्क्यू का बताकर लगातार शेयर किया जा रहा है। दावे का सच और झूठ क्या है ये जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वीडियो की पड़ताल हमने की और वीडियो को उसके फ्रेम को देखा और देखने पर हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे हमें इसके दावे पर थोड़ा शक हुआ। वीडियो में एक शख्स हरे रंग की टी शर्ट पहने हुए है और उस पर एक लोगो लगा हुआ है। हमने इस लोगो के बारे में सर्च किया, हमने पाया कि ये मैक्सिको की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी पेमेक्स का लोगो है। इसके अलावा वीडियो में आ रही आवाजों को जब हमने गौर से सुना तो ये स्पेनिश जैसा हमको नजर आया। नेपाल में स्पेनिश ये हमें कुछ अटपटा लगा। दावे की सत्यता पर संदेह हुआ, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए नेपाल में आए बाढ़ को लेकर लगातार तस्वीरें और वीडियोस सामने आ रही हैं, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो जैसा कोई वीडियो हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिल रहा। फैक्ट चेक की टीम भी लगातार ऐसे वीडियो और तस्वीरों की जांच कर रही है। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही है जाहिर तौर पर कि अगर दावा सच है तो इसके बारे में किसी भी आधिकारिक सूत्रों से अब तक कोई जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं पूरे वीडियो में सिर्फ स्पेनिश आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं। तीसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो मैक्सिको के एक न्यूज आउटलेट के आधिकारिक फेसबुक पेज पर मिला। इस वीडियो को 25 अगस्त 2026 को शेयर किया गया था। कैप्शन में मौजूद जानकारी के अनुसार वीडियो मैक्सिको के बेलेडी सेंटियागो इलाके का है। वहाँ भारी बारिश के कारण पानी भर गया था और पानी के तेज बहाव के कारण एक बाइक सवार बहकर पुलिया की ओर चला गया था। उसी शख्स को बचाने के लिए स्थानीय लोग सामने आए थे। सर्च के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक न्यूज रिपोर्ट मैक्सिको की वेबसाइट पर मिली। इस रिपोर्ट को 22 अगस्त 2026 को प्रकाशित किया गया था। स्पेनिश भाषा की इस रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो मैक्सिको के वेलेडी सिंटियागो इलाके का है, जहां भारी बारिश के कारण इलाके में पानी भर गया था। एक बाइक सवार ने तेज बहाव वाले पानी को पार करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वह भी पानी के साथ बहने लगा। जब वहां मौजूद लोगों ने ये देखा तो वह मदद के लिए सामने आए और उस आदमी को बचा लिया। हालांकि इस शख्स को गंभीर चोट नहीं लगी थी। हमें वायरल वीडियो के अलग एंगल से एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर 23 अगस्त 2026 को शेयर किया हुआ मिला। इस पोस्ट के कैप्शन में भी यही जानकारी दी गई है कि ये वीडियो मैक्सिको के वेलेडी सेंटियागो का है। इस तरह हमारे पड़ताल से साफ हो गया कि पानी में बहते शख्स की मदद करते लोगों के वीडियो को लेकर गलत दावा किया जा रहा है। ये वीडियो नेपाल का नहीं बल्कि मैक्सिको का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: तो फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
1: वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। आप देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
8: पापा बेटे की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आ रही है। पिता अपने नटखट बेटे को स्पाइडर मैन बनाकर कभी दीवार से चिपकाते दिखाई दे रहे हैं तो कभी हवा और जमीन पर घुमाते। वीडियो देखने के बाद ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये पापा बेटे स्पाइडर मैन के काफी बड़े फैन हैं। पिता बेटे को दीवारों पर चिपकाकर उसे स्पाइडर मैन जैसा फील करा रहे हैं। मजेदार बात है कि बच्चा भी स्पाइडर मैन की तरह ही चलता हुआ जाल फेंकते हुए दिखाई देता है। बच्ची मायूस है, कुछ खोने के एहसास में बुझी बुझी से दिख रही है। एक पैर में चप्पल है लेकिन दूसरा चप्पल आंखों के सामने नदी में बह रहा है। तभी नदी में एक बोट नजर आता है। पिता जोर से चिल्लाते हैं, बोट में बैठे लोगों को ये इशारा करके बताते हैं कि उनकी बच्ची का चप्पल पानी के अंदर चला गया है, जिसके बाद बोट चप्पल निकालने के लिए मुड़ जाता है और पानी में से चप्पल को निकाल कर किनारे पर मौजूद बच्चे के पिता को दे देते हैं। कभी कभी एक छोटा सा धन्यवाद किसी की पूरी जिंदगी का सबसे यादगार पल बन जाता है। एक क्लासरूम के दौरान टीचर ने पढ़ाने के बीच में स्कूल की सफाई करने वाली महिलाओं को अंदर बुलाया। इसके बाद क्लास के अंदर जो नजारा सामने आया उसने लोगों का दिल जीत लिया। बच्चों ने अपने सफाई कर्मचारियों का न केवल सम्मान किया बल्कि गिफ्ट भी दिया। ये देखकर महिला कर्मचारियों की आंखें नम हो गई, क्योंकि ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं था बल्कि उनकी मेहनत और समर्पण के प्रति सच्चा सम्मान था। बारिश हो रही है और बच्चे के साथ बाहर भी जाना है, लेकिन भीगने का भी डर है। लेकिन इस जुगाड़ से हर समस्या का चुटकी में हल हो गया। बच्चे के साथ बारिश में निकलने के लिए शख्स ने छाती और प्लास्टिक शीट की मदद से अलग तरह का रेनकोट बना दिया। रेनकोट ऐसा कि पानी की एक बूंद भी उसे छू न सके। प्लास्टिक शीट को इस तरह लगाया गया है कि वो ऊपर से और आसपास से आने वाली बारिश बचाने का काम करती हुई दिख रही है। बच्चा भी इस जुगाड़ में खिलखिलाकर हंसता हुआ दिखाई देता है। बच्चे को बारिश से बचाने के लिए बनाया गया ये इंतजाम सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे अपने अपने अंदाज में शेयर और कमेंट कर रहे हैं। ये व्यक्ति अपने काम को कोई बोझ नहीं बल्कि एक परफॉर्मेंस मानकर कर रहा है। वो पूरे जोश के साथ झाड़ू को घुमाता है, उछलता है और ऐसे मूव्स करता है मानो वो सफाई नहीं बल्कि कुंग फू की प्रैक्टिस कर रहा हो। शख्स की शारीरिक फुर्ती और झाड़ू चलाने की गति देखने लायक है। व्यक्ति के चेहरे और उसके हाव भाव से झलकने वाली खुशी देखने वालों में भी सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। जिस जोश के साथ शख्स झाड़ू लगा रहा था उसे देखकर लोग उसका फैन हो गए। दरअसल आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग अपने काम से अक्सर तनाव में रहते हैं, ये देसी निंजा हर किसी को एक बड़ी सीख दे रहा है। काम चाहे जो भी हो, अगर उसे पूरे दिल और मस्ती के साथ किया जाए तो वो कला बन जाता है।
9: किसी वहम में मत रहिए मेरे दोस्त।
8: इंसान जैसा करता है वैसा ही उसे किसी न किसी रूप में वापस मिलता है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए इस बुजुर्ग महिला ने कर्म और पूजा पाठ के बीच का फर्क बड़े ही सीधे अंदाज में समझाकर लोगों का दिल जीत लिया है। हर कर्म का असर कैसे होता है ये आप भी सुनिए।
9: सिर्फ किसी वहम में मत रहिए मेरे दोस्त। जब ऊपर वाला खाता खोलेगा तो ये नहीं देखेगा कि आप कितनी बार केदारनाथ गए, कितनी बार हरिद्वार गए, कितने तीर्थ स्थलों पर गए। वो तो सिर्फ यह देखेगा कि आपने किस किस रिश्ते के साथ कितनी कितनी चालाकियाँ की हैं, किस किस रिश्ते का आपने दिल दुखाया है, किस किस रिश्ते को आपने आंसू बहाने पे मजबूर किया है। बस इतना ही देखा जाएगा। ठीक है ना जी। पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, फॉलो तो आप करेंगे ही। ठीक है ना जी।
8: रूस के एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें एक शख्स स्टोर में रखे ह्यूमनॉइड रोबोट सियोमा के पास पहुंचता है। कुछ देर बाद वो रोबोट को धक्का दे देता है। धक्का लगने के कुछ ही पल बाद रोबोट अचानक अपना एक पैर उस शख्स की तरफ बढ़ाता है। उसकी हरकत देखकर ऐसा लगता है कि वो सामने वाले को किक मारने की कोशिश कर रहा है। वहां मौजूद लोगों के लिए ये पूरा नजारा काफी चौंकाने वाला था। रोबोट की मूवमेंट जारी रहती है और कुछ ही देर में स्थिति थोड़ी अजीब और अफरा तफरी जैसी नजर आने लगती है। आखिरकार रोबोट को बंद कर दिया जाता है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए। कुछ यूजर्स ने इसे मजाक में इंसानों और रोबोट के बीच होने वाली भविष्य की लड़ाई से जोड़ दिया। कई लोगों को हॉलीवुड फिल्म द टर्मिनेटर की याद आ गई, जिसमें स्काईनेट नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इंसानों के खिलाफ हो जाता है और मशीनों और इंसानों के बीच भयानक जंग छिड़ जाती है। आग की तेज लपटें और उसके बीच ट्रेनिंग करते ये जवान, ये जज्बा वाकई सलाम के काबिल है। देश की सेवा का जुनून हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी हौसला नहीं तोड़ सकते। वीडियो में जवान आग के बीच से गुजरते और अपने प्रशिक्षण का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये ट्रेनिंग फौज में शामिल होने से पहले जवानों को कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करती है। आग की तपश के बीच उनका साहस और आत्मविश्वास देखकर हर किसी के मन में देश के जवानों के लिए सम्मान और बढ़ जाता है। दर्जनों लोग जमीन की तरफ झुककर एक ब्रिज की तरह लाइन बनाकर खड़े नजर आ रहे हैं। इशारा मिलते ही ये डॉग तेज स्पीड में दौड़ता है, उन लोगों की पीठ पर दौड़ने लगता है। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे रास्ते उसने एक बार भी अपनी रफ्तार कम नहीं की और न ही उसका संतुलन बिगड़ने दिया। इस कामयाबी के पीछे उसके मालकिन और ट्रेनर जेनिफर फ्रेजर का हाथ है। पूरे टास्क के दौरान वो कुत्ते के बगल में दौड़कर उसे गाइड करती दिखी। उनकी सटीक ट्रेनिंग की बदौलत ही ये डॉग बिना किसी गलती के इस मुश्किल टास्क को कम समय में पूरा करके कनाडा में इंसानों के ऊपर से सबसे ज्यादा बार कूदने का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इस कुत्ते का नाम शार्डोनो है और इसने महज 60 सेकंड में 56 लोगों की कतार को पार किया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से इस कारनामे का वीडियो शेयर किया है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढकर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधवा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अलग अलग रंग रूप में पधार रहे बप्पा 30 फीट के चिंतामणि ने मोह लिया सबका मन। गांव गांव नंदा देवी का स्वागत, मायके से ससुराल तक दिव्य सफर जारी। और हिमालय में विपदा ऐप बनेगा सुरक्षा कवच, आपदा से दो कदम आगे रहेगा। शुरुआत हेडलाइंस से।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: जयपुर में गणेश महोत्सव की रौनक, मोती डूंगरी मंदिर में बप्पा को चढ़ाए गए हजारों मोदक, चढ़ाए गए मोदकों में 251 किलो के दो, 51 किलो और 21 किलो के मोदक भी शामिल। गणपति उत्सव के रंग में रंगने लगी मुंबई, ऐतिहासिक चिंचपोखरी उत्सव मंडल में इस बार भगवान वेंकटेश्वर बालाजी से प्रेरित रूप में दिखेंगे बप्पा। यूपी के सहारनपुर में निकली 26 छड़ियों की भव्य शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की थाप से गूंजा शहर, शोभा यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। उत्तराखंड के कई जिलों में कल से 14 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल आज अपने नए प्रोडक्ट्स का करेगी खुलासा, भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा एप्पल का इवेंट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
2: शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की, सबसे पहले बात गणेशोत्सव से पहले भक्ति के दिव्य नजारों की। महाराष्ट्र समेत देश भर में शहर शहर गणेशोत्सव की तैयारी तेज चल रही है, यहां तक कि जेल में बंद कैदियों ने भी बप्पा की मूर्तियां बनाई हैं। इन सबके बीच गणपति आगमन यात्रा की भव्य तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, भक्त धूमधाम के साथ बप्पा की मूर्तियां ला रहे हैं। इस दौरान महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक दिव्य छटा बिखरी हुई है।

0: लाल कपड़े के हटते ही पूरा वातावरण बप्पा के जयकारों से गूंज उठा और सामने दिखी विघ्नहर्ता की दिव्य छवि। गणपति की इस भव्य प्रतिमा को देखते ही भक्त भाव विभोर हो उठे। आतिशबाजी और फायर शो के बीच बप्पा का भव्य स्वागत किया गया। गणेश उत्सव को लेकर महाराष्ट्र में जगह जगह कुछ ऐसी ही भव्य छटा देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें अकोला के चिंतामणि बप्पा के आगमन की है। ढोल नगाड़ों और डीजे के धुन पर झूमते हुए भक्त जब भगवान गणेश की इस दिव्य प्रतिमा को लेकर सिविल लाइन चौक पहुंचे तो पूरा वातावरण भक्ति के रंगों से सराबोर हो गया। प्रतिमा पर लगे लाल कपड़े को जैसे ही हटाया गया, बप्पा के भव्य स्वरूप के दर्शन कर भक्तों के जयकारे से पूरा चौक गूंज उठा। 30 फीट ऊंचे चिंतामणि गणपति बप्पा का तालियों की गड़गड़ाहट के बीच भव्य स्वागत किया गया। आतिशबाजी के साथ ही शानदार फायर शो ने बप्पा के आगमन यात्रा को और दिव्य बना दिया। बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों में सेल्फी और वीडियो बनाने को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई पड़ा। हर कोई इस खास पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने के लिए बेताब दिखा। छोटे छोटे बच्चे भी बप्पा के चरणों में माथा टेकते और आशीर्वाद लेते दिखाई दिए।
1: बप्पा आने के बाद सब आगमन जो होता है तो उसमें सब विघ्न दूर हो जाते हैं और ये चिंतामणि है, मन की सब चिंता दूर कर देता है।
0: महाराष्ट्र ही नहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी गणेश उत्सव की भव्य तैयारी चल रही है और बप्पा का आगमन भी हो रहा है। अब गुजरात के आनंद में भगवान गणेश के आगमन यात्रा की भव्य तस्वीरें देखिए। ब्लॉकबस्टर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित राजा गणराज की आगमन यात्रा में पूरी सड़क भक्तों से पटी नजर आई। विद्यानगर की शास्त्री मैदान बस स्टैंड से शुरू हुई इस यात्रा में भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ कई आकर्षक प्रस्तुतियां भी देखने को मिली। छावा एक्ट ने लोगों को जोश से भर दिया। वही हैरत अंगेज होला हुप स्टंट्स ने भी लोगों को आकर्षित किया। कलाकारों ने पारंपरिक शस्त्र कला का प्रदर्शन भी किया। अलग अलग लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर्स भी यात्रा का हिस्सा रहे जिसे देखकर बच्चे खुशी से भर उठे। इस यात्रा में भक्ति, संस्कृति, शौर्य और मनोरंजन सबका शानदार मेल देखने को मिला।
2: हमने अलग अलग प्रकार के 13 इवेंट रखे थे जिसमें नरसिम्हा एक्ट थे, मणिकर्णिका एक्ट थे, ऐसे बहुत सारे एक्ट हमने हमारे हिंदू धर्म संस्कृति का एक अच्छा संदेश लोगों के सामने पहुंचे वो भी ध्यान रखा था। वो उस प्रकार से कुछ अच्छा आयोजन किया था जिसमें समाज को कुछ अच्छा जानने का अवसर मिले।
0: छत्तीसगढ़ के रायपुर सेंट्रल जेल की तस्वीरें देखिए जहां कैदी भगवान गणेश की मूर्तियों को फाइनल टच देते नजर आ रहे हैं। जेल के कैदियों ने इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई है, वो भी ऐसी प्रतिमा कि नदियों या तालाबों के बदले उसे बाहर कहीं विसर्जित किया जाए तो उससे पौधे निकलने की संभावना बनी रहे। ये बीज वाली मूर्तियां तैयार होने के बाद प्रदर्शनी और बिक्री के लिए जेल से बाहर भेजी जा रही हैं।
3: उनके द्वारा जो है भगवान गणेश की मूर्तियां प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए तैयार की गई है और इको फ्रेंडली है। हम हर साल जो है इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियां बनाते हैं। इस बार कलर भी जो है इको फ्रेंडली रखा गया है। इस बार कुछ और प्रयोग किया कि कुछ बीज डाल दिए हैं हम लोगों ने ताकि ऐसे जहां पर भी ये मिट्टी जाए तो वहां पे कोई ना कोई पौधे लग जाए।
0: इन सब के अलावा रामनगरी अयोध्या से लेकर देश भर में गणेशोत्सव के लिए प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अकोला से धनंजय साबले, आनंद से हिताली शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: आगे बढ़ते बात उत्तराखंड की संस्कृति की सबसे खूबसूरत झलक की जो आस्था की भव्य यात्रा में देखने को मिल रही है। 5 सितंबर से शुरू हुई मां नंदा देवी की बड़ी जात यात्रा के तहत 3 डोलियां कैलाश की ओर बढ़ती चली जा रही हैं और इस दौरान गांव-गांव ये डोलियां पहुंच रही हैं, जिनका पूरे भक्ति भाव के साथ स्वागत भी किया जा रहा है, जिसमें आस्था और भक्ति के साथ साथ पहाड़ी संस्कृति के भव्य रंग भी देखने को मिल रहे हैं।
5: उत्तराखंड के हिमालय अंचल की लोक आस्था, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी मां नंदा की बड़ी जात यात्रा इन दिनों पूरे चमोली के भक्ति के रंगों से सराबोर कर रही है। 5 सितंबर को नंदानगर घाट के क्रूर सिद्धिपीठ मंदिर से विशेष पूजा अनुष्ठान के बाद तीनों प्रमुख डोलिया, बंधाड़ की नंदा, दशोली की नंदा और बंड की नंदा, कैलाश के लिए रवाना हुई। अब ये डोलियां गांव-गांव पहुंच रही हैं और जहां भी मां नंदा की डोली पहुंच रही है वहां पूरा वातावरण उत्सव में बदल जा रहा है। इन डोलियों के स्वागत में लोकगीतों, जागरों और ढोल दमाओं की थाप से पहाड़ की वादियां गूंज रही हैं। पूजा पाठ और भजन कीर्तन के साथ ही महिलाएं नृत्य गीत से उत्सव मनाती हैं। बंड की नंदा की डोली के नौरख पहुंचते ही ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मां नंदा का स्वागत किया। पूरा गांव लोकगीतों और जागरों से भक्तिमय हो उठा।
6: बहुत बड़ा सैलाब वहाँ पे उमड़ चुका था, तो लोगों की बड़ी भावना है माँ के प्रति और निरंतर ये यात्रा हमारी जो चल रही है, तो प्रत्येक गांव का भ्रमण किया जा रहा है और हमारी माँ बहनें अपनी कोई बेटी के रूप में, कोई माँ के रूप में, कोई इष्ट के रूप में माँ की माँ से मनौती भी मांगती है और उसके साथ साथ कैलाश के लिए माँ नंदा को विदा करती है।
1: भगवती नंदा खुद राजा राजेश्वरी है और कामाख्या खुद राजा राजेश्वरी का ही स्थान है, तो माई की प्रेरणा से ही मैं मैया के साथ आया हूँ और मूल रूप से मान लीजिए कि भगवती हमारी माँ है और राजराजेश्वरी भगवती यहाँ की बेटी हैं, तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मैं अपने मामा के वहाँ हूँ और जैसे मामा के वहाँ सबको प्यार मिलता है वैसा ही प्यार मुझे यहाँ पर मिल रहा है।
5: इसी तरह तीनों डोलियां अलग अलग गांव में पहुंच रही हैं, जहां पारंपरिक रूप से उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। रात्रि विश्राम के बाद डोलियां फिर अपने अगले पड़ाव की ओर निकल पड़ती हैं। मां नंदा को पहाड़ में केवल देवी नहीं बल्कि घर की बेटी और बहन के रूप में पूजा जाता है। यही वजह है कि डोली के गांव में पहुंचते ही महिलाएं पारंपरिक मंगल गीत और जागर गाती हैं और उन्हें मायके आई बेटी की तरह विदा करती नजर आ रही हैं।
7: हम माता को अपनी माँ मान के, साक्षी मान के हम उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और हम माता से यही विनती करेंगे, माता हम सबकी रक्षा करें और सारे प्रदेश देशवासियों की रक्षा करें और माता की कृपा हम सब भी भक्तों पे बनी रहे।
8: यात्रा बड़ी अच्छी रही है, दो जब पहले इससे पहले 12 साल पहले हुई थी उससे अब बेटर हो रही है और हम लोग माता जी का बड़ा स्वागत कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपनी बिटिया के तरह इनको विदा कर रहे हैं और माँ हम लोगों का सब पे आशीर्वाद बना रहे हैं।
9: बहुत ज़्यादा उत्साह है, हम इसको बहुत मानते हैं अपनी बेटी की तरह और हम इसको रोज विदा करते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ मंदिर है ऊपर।
5: नंदा देवी यात्रा के दौरान कई स्थानों पर डोलियों को उफनते गंधेरे और नालों को पार कर आगे बढ़ना पड़ रहा है। दुर्गम पहाड़ी रास्तों और खराब मौसम के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह देखने लायक है।
10: 12 वर्षों के बाद मां नंदा की डोली इस समय नंदा देवी बड़ी जात की यात्रा इस समय चल रही है। ये डोलियां है जो इस समय यहां से अलग अलग पड़ाव से अलग अलग गांव होते हुए आगे बढ़ रही हैं। 3 जो डोलियां हैं नंदा देवी मंदिर जो सिद्धपीठ मंदिर है कुरूर से निकली थी, अलग अलग रास्तों से ये होमकुंड जो वाड़ के बाहर आएगा जहाँ पे इसका पूरा समापन होगा, ये सारी डोलियाँ एकत्रित होकर एक साथ निकलेंगी। ऐसे में जो मानंदा की 12 वर्षों के बाद ये जो बड़ी जात यात्रा हो रही है इसमें बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है।
5: मुख्य रूप से चमोली जिले में आयोजित होने वाली इस यात्रा में 15 सितंबर को तीनों डोलियों का मिलन वाण गांव में होगा। इसके बाद वाण से आगे की यात्रा तीनों डोलियां एक साथ करेंगी और फिर नंदा की बड़ी जात यात्रा का सबसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण चरण शुरू होगा। 20 सितंबर को सभी पड़ाव पार कर मां नंदा की यात्रा हिमालय की दुर्गम चोटियों के बीच हेमकुंड पहुंचेगी, जहां विशेष पूजा अनुष्ठान के बाद मां नंदा की विदाई की जाएगी। इसके बाद परंपरा के अनुसार चौसंगिया खाड़ू यानी चार सिंह वाला मेड़ा कैलाश की ओर प्रस्थान करेगा। ये चौसंगिया खाड़ू यानी भेड़ मां नंदा का संदेश वाहक, शुभ दूत और यात्रा का मुख्य मार्गदर्शक माना जाता है। इसे श्रृंगार सामग्री और बाकी पवित्र सामानों के साथ अकेले कैलाश की ओर विदा किया जाता है। हेमकुंड से चौसंगिया खाड़ू का अकेला आगे बढ़ना मां नंदा के अपने ससुराल शिवधाम कैलाश के लिए विदा होने का प्रतीक है।
11: सबसे पहले जो हमारी कुरूर से मां नंदा का आगमन हुआ बंड क्षेत्र में, तो सबसे पहले हमारे पूरे गाँव का भ्रमण करती है। दूसरे में एक एक दिन पड़ाव भी रहता है उनका, और उसके बाद हम लास्ट में जाएंगे अपना बंड भूमियाल का मंदिर है, और वहाँ से हमारी जो है 11 बजे करीबन हम कैलाश के लिए हमारी माता प्रस्थान करेगी।
12: 13 तारीख को बंड की डोली का मिलन जो दसोली की डोली है उसके साथ होगा रामणी में, और 15 तारीख को जो हमारी तीसरी डोली है जो बधाण की है वाण में तीनों डोलियाँ मिलेंगे। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के बंड क्षेत्र, दसोली क्षेत्र, बधाण क्षेत्र, वहाँ के देवता के निशान, वहाँ की छतोलियाँ और कुमाऊँ से, नौटी से, इन सभी जगहों से बड़ी जात यात्रा में सारे देव छतोलियाँ, देव डोलियाँ, निशान ये सारे मिलेंगे। और उसके बाद अगला पड़ाव उसके बाद होमकुंड तक होगा, और सप्तमी और अष्टमी के दिन होमकुंड में पूजा करने के पश्चात सारी डोलियां अपने अपने सिद्धि पीठों को वापस आएंगी।
5: नंदा देवी की यात्रा पहाड़ की उस अनूठी आस्था और परंपरा को जीवंत करती है जिसमें बेटी के मायके आने और फिर ससुराल लौटने की भावनाएं दिखाई देती हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कुल न्यूज टुडे।
4: चलिए बात एक ऐसे एंड्रॉयड ऐप की जो आबा आपदा से पहले ऊंची पहाड़ियों और तराई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को संभलने का मौका देगा। पहाड़ों में बारिश के साथ भूस्खलन, बादल फटने और फ्लैश फ्लड का खतरा लगातार रहता है। कई बार वक्त रहते कम ऊंचाई पर रहने वाले लोगों तक इसकी सूचना नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से जान माल का नुकसान रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब हिमालय में विपदा के दौरान एक ऐप सुरक्षा कवच बनने का काम करेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालय अध्ययन केंद्र की तरफ से बनाया गया ये ऐप लोगों की तरफ से एक दूसरे को आपदा का अलर्ट पहले से ही देने में मदद करेगा, ताकि खतरा आने से पहले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का वक्त मिल जाए।

0: आपदा के कई रूप हैं, लेकिन नतीजा एक ही होता है, जान माल की हानि। न सिर्फ मकान, सड़क, पुल जैसे बुनियादी ढांचे बर्बाद हो जाते हैं, सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। आपदा से पीड़ित लोगों को संभलने में वर्षों लग जाते हैं। आपदाओं से जुड़ी इन तस्वीरों को देखकर शायद अब घबराने की जरूरत ना पड़े। आपकी रूह को कपा देने वाली, आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें शायद दिखना बंद हो जाए। पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बारिश, बादल फटने, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन और हिमस्खलन जैसे हालात बनने पर यानी उनके आने से पहले ही उनकी आहट सुनाई दे देगी, जिससे तराई के इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क होने का मौका मिल जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालय अध्ययन केंद्र में एक ऐसा मोबाइल ऐप तैयार किया गया है जो प्राकृतिक आपदाओं से पहले ही चेतावनी दे देगा।
1: क्या एक ऐप भारत को नेपाल जैसी त्रासदी से बचा सकती है? जवाब है हाँ। सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज ने एक ऐप तैयार की है। इस ऐप का नाम है आपदा सहायक और ये ऐप जबरदस्त तरीके से काम करती है। करती क्या है ये किसी भी सिचुएशन में, क्राइसिस की सिचुएशन में, चाहे अगर फ्लड आ रहा हो या लैंडस्लाइड हो या कुछ और पहाड़ों पर हो रहा हो, तो उसका अलर्ट जारी करती है। इस ऐप से हर कोई जुड़ा हुआ है, वो जो पहाड़ों पर रहता है, चाहे वो कोई नागरिक हो, चाहे वो DDMA हो, चाहे वो SDMA हो, चाहे वो NDMA हो, चाहे वो गांव का पटवारी हो, प्रधान हो, कोई भी, जो कोई भी पहाड़ के ऊपरी इलाकों में रहते हैं, अगर वो कोई भी एक्टिविटी देखते हैं फ्लैश फ्लड की या ज़्यादा बारिश की या लैंडस्लाइड की, तो वो इस जानकारी को इस ऐप पर अपडेट कर सकते हैं। एक तरह से उनका वो अपडेट नीचे रहने वाले लोगों के लिए एक अलर्ट जैसा होगा। एक ही वक्त पर एक सूचना जो लोग नीचे रह रहे हैं उनको मिलेगी, साथ साथ जो एजेंसीज हैं उनको भी मिल जाएगी। ऐसे में वो लगातार काम करके लोगों को रिस्की इलाकों से इवैक्यूएट कर सकते हैं। आप समझिए, ये वो अलर्ट है जो अलर्ट नेपाल को वक्त रहते नहीं मिला। किस तरह से ये ऐप काम करती है हम आपको इस स्टोरी में बताने जा रहे हैं।
0: आपदा सहायक नाम का ये मोबाइल ऐप लोगों को हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा में भी सतर्क कर देगा, यानी आपदा से जुड़ा खतरा आने से पहले लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचने का मौका मिल जाएगा।
2: इस ऐप में लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड से लेकर के फॉरेस्ट फायर या कोई अन्य चरम घटनाएं जो पर्वतों पर घटती हैं, उससे लोगों को अलर्ट कर देना।
1: इस ऐप में क्या क्या ऑप्शंस हैं? आप फ्लड के लिए इन्फॉर्म कर सकते हैं, लैंडस्लाइड के लिए, अर्थक्वेक के लिए, क्लाउड बर्स्ट के लिए जो बादल फटते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, फायर के लिए जो जंगलों में आग लगती है, और एवलांच के लिए।
0: इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ अलर्ट ही नहीं बल्कि लोग खुद भी अपने आसपास आई आपदा की जानकारी साझा कर सकते हैं। अगर कहीं भूस्खलन हुआ है, सड़क बंद है, अचानक बाढ़ आई है या कोई दूसरा खतरा दिखाई दे रहा है, तो उसकी जानकारी आपदा सहायक ऐप के जरिए साझा की जा सकती है। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रशासन को भी वक्त रहते हालात की गंभीरता समझने का मौका मिलेगा।
1: किस तरह से ये ऐप काम करती है? आपने कहा पब्लिक टू पब्लिक है, कैसे काम करेगी?
2: अब जैसे आज के जमाने में सबके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल जिसके भी हाथ में है, कोई ऊपर जा रहा है, एक छोटा एग्जांपल देता हूं, जैसे आप किसी पहाड़ पर सड़क के पर गाड़ी चलाकर जा रहे हैं, आपके सामने लैंडस्लाइड हो गया, अब आपने उस लैंडस्लाइड का फोटो लैंडस्लाइड के बारे में तुरंत ऐप पर डाल दिया कि फला जगह पे फला रोड पर भीषण लैंडस्लाइड हुआ है, तो उस रोड पर जो भविष्य में आने वाले लोग हैं वो लोग वहां उस रोड को यूज नहीं करेंगे, जिससे कि उनकी जानमाल बच जाएगा, उनका समय बचेगा, उनका जो आने जाने में वक्त लगता है वो बच जाएगा, उससे अलर्टनेस हो जाएगा। इसी तरह से जैसे हमेशा पहाड़ के ऊपरी भाग में क्लाउड बर्स होता है, बारिश होती है, क्लाउड बर्स क्या होता है, एक घंटे के अंदर 1000 मिलीमीटर पानी गिर जाना, तो जैसे ही 1 घंटे में भारी बारिश हुआ तो ऊपरी के ऊपर पहाड़ के ऊपर के गांव वालों लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि बारिश शुरू हो गई और ये क्लाउड बर्स्ट की स्थिति हो गई, उन्होंने उसको तुरंत ऐप पर साझा कर दिया, जिससे कि नीचे जो 15-20 मिनट का टाइम मिल गया जो गांव के नीचे वाले लोगों को, वो कम से कम भाग करके अपनी जान बचा लिए।
0: ऐप के खतरे वाले इलाकों का इंटरेक्टिव मैप, आपातकालीन संपर्क नंबर, स्थानीय सरकारी अधिकारियों की जानकारी और आपदा से पहले क्या करे और क्या ना करे जैसी सुविधाएं दी गई हैं।
1: एजेंसीज में किसके किसके पास जाएगा
2: इसमें? पब्लिक के साथ, देखिए हमने शुरू किया सबसे पहले ग्रामीण स्तर से, गांव के प्रधान से, गांव के पटवारी से, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और बाद में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि पॉलिसी मेकिंग से लेकर के पब्लिक कनेक्ट तक ये ऐप जुड़ा रहेगा।
0: फिलहाल इस ऐप का ट्रायल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में किया गया है। परीक्षण के दौरान ऐप ने आपदा के संकेत लगभग एक घंटे पहले देना शुरू कर दिया था और अंतिम 5 मिनट तक लगातार हालात की जानकारी मुहैया करवाता रहा। हिमाचल के कुल्लू जिले में बादल फटने, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाएं सबसे ज्यादा दर्ज की जाती हैं। मानसून के दौरान यहां का भौगोलिक ढांचा और इंसानों की तरफ से होने वाली गतिविधियां मिलकर भारी तबाही का कारण बन जाती हैं।
1: कुल्लू ही क्यों?
2: कुल्लू क्योंकि पूरे भारत देश में कुल्लू जिला एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे अधिक क्लाउड बस्ट होता है, इसलिए हमने कुल्लू जिला को चुना। और जब कुल्लू जिला के क्लाउड बस्ट के इतिहास में गया तो यह हमारी परिकल्पना सत्य साबित हुई, क्योंकि फिर हमने 150 साल का जो डेटा नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी से लेकर के ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन तक हमें आर्काइव से डेटा लेना पड़ा। उस डेटा के ट्रेंड एनालिसिस से पता चला कि पिछले 150 सालों से जो क्लाउड बर्स्ट है इसकी फ्रिक्वेंसी और मैग्नीट्यूड दोनों लगातार बढ़ रही है, इसलिए हमने पहला एक्सपेरिमेंट इस ऐप का कुल्लू जिला से किया।
0: आने वाले दिनों में ये ऐप हिमाचल के दूसरे शहरों के अलावा सिक्किम, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी में भी काम करना शुरू कर देगा। पहाड़ों में आपदा को रोकना कई बार संभव नहीं हो पाता, लेकिन अगर खतरे की जानकारी कुछ वक्त पहले मिल जाए तो ऐसी कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। आपदा सहायक ऐप इसी सोच के साथ तकनीक और स्थानीय लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि आपदा के खिलाफ विसल ब्लोअर की भूमिका निभा सके, आपदा आने से पहले अलर्ट दे सके ताकि उनसे नीचे के इलाकों में रहने वाले लोग सतर्क हो पाए और जान माल का नुकसान कम किया जा सके।
1: आपदा को रोक पाना या नहीं रोक पाना एक अलग विषय है, लेकिन कम से कम इस ऐप के जरिए उससे होने वाले नुकसान को तो कम किया जा ही सकता है। कैरामन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
3: अच्छी होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
5: कौन सा ग्रह त्वचा की समस्याएं सबसे ज्यादा देता है? किन ग्रहों की वजह से त्वचा पे झुर्रियां

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पेट की समस्या के बाद जो समस्या सबसे ज्यादा होती है वो है त्वचा की समस्या। आज हम आपको बताएंगे कि त्वचा की समस्या के बारे में ज्योतिष क्या कहता है, कौन से ग्रह स्किन प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार होते हैं और त्वचा की समस्या का ज्योतिषीय समाधान क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और कार्य

कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, प्रातः 10:33 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र दोपहर 2:04 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। दिनांक 10 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार को ग्रहों की स्थिति क्या है, आइए जानते हैं। सूर्य चंद्रमा और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, बुध कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि त्वचा की समस्या के लिए ज्योतिष में कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, त्वचा का मामला पृथ्वी तत्व का मामला है, अर्थियल एलिमेंट का मामला है। मुख्य रूप से त्वचा का संबंध होता है बुध के साथ। बुध त्वचा को नवीन यानी नया और अच्छा बनाए रखता है। इसके अलावा मंगल और सूर्य भी त्वचा से संबंध रखते हैं। मेष राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि त्वचा से जुड़ी हुई राशियां मानी जाती हैं। तो मुख्यतः आपकी त्वचा पर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है बुध का, उसके बाद प्रभाव होता है मंगल का और उसके बाद प्रभाव होता है सूर्य का। ये आपकी त्वचा पर असर डालते हैं। त्वचा की समस्या पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में बेहतरी होगी, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, काम का दबाव रहेगा,
धन खर्च से परेशानी होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम में व्यस्तता रहेगी, चोट चपेट से बचाव करें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं बुध की त्वचा की समस्या क्या है और इसका समाधान क्या है। बुध की त्वचा की समस्या में त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, कभी कभी त्वचा रूखी और खराब सी हो जाती है, त्वचा पर दाने आ जाते हैं और छोटे छोटे धब्बे आ जाते हैं, त्वचा का सिकुड़ना, उम्र के पहले त्वचा पर झुर्रियां आना, ये बुध की वजह से होता है। क्या उपाय किया जाए अगर बुध की वजह से त्वचा की समस्या हो रही है? खान पान का हमेशा ख्याल रखें, मांस मदिरा बहुत गरिष्ठ भोजन ग्रहण ना करें, सप्ताह में एक दिन केवल जलीय आहार, केवल लिक्विड डाइट ग्रहण करें, सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल अर्पित करें और सलाह लेकर एक पन्ना या एक माणिक्य धारण करें तो बहुत बेहतर होगा। सूर्य और मंगल की त्वचा की समस्याएं कैसी होती हैं उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन हानि हो सकती है, काम में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, शत्रु और विरोधी शांत होंगे, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य और मन अच्छा रहेगा, अनाज का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। अब जानते हैं कि मंगल किस तरह की त्वचा की समस्या देता है और इसका समाधान क्या है। देखिए, मंगल की जो त्वचा की समस्या है ये आंतरिक गड़बड़ियों की सूचना देता है कि शरीर में कोई रिएक्शन हो गया है, शरीर में केमिकल बैलेंस बिगड़ गया है जिसकी वजह से त्वचा में दिक्कत आ गई है। मंगल के कारण त्वचा की समस्या में शरीर पर दाग और निशान पड़ जाते हैं और कभी कभी किसी दुर्घटना की वजह से भी मंगल शरीर पर दाग या निशान दे देता है। अगर मंगल की वजह से त्वचा की समस्या है तो क्या उपाय करें? पानी का खूब सेवन करें, पानी खूब पिएं, उगते सूर्य की रोशनी में पीठ करके प्रातः काल 5 या 10 मिनट तक बैठें, तांबे के पात्र से पानी पिएं, सलाह लेकर एक देसी मूंगा जरूर धारण करें और जहां पर त्वचा की समस्या है उस प्रभावित जगह पर नारियल का तेल नियमित रूप से लगाइएगा। अब जानते हैं कि सूर्य कैसी त्वचा की समस्या देता है। सूर्य की त्वचा जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य त्वचा में मेलानिन को नियंत्रित करता है। आपके त्वचा के रंग में जो अंतर है वो मेलानिन की वजह से आता है, वो सूर्य की वजह से आता है। सूर्य की त्वचा की समस्या होती है तो त्वचा काली होती जाती है, झुलसी हुई, जली हुई और टूटी टूटी दिखाई देती है। सूर्य अगर गड़बड़ हो तो धूप से सनबर्न भी होता है लोगों को। अगर सूर्य त्वचा की समस्या दे रहा है तो क्या उपाय किया जाए? उगते हुए सूर्य को प्रातः काल जल अर्पित करिएगा। गरिष्ठ भोजन और मांसाहार से परहेज करिएगा। रस वाले फल और नींबू पानी, इसका अगर आप प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर सूर्य की वजह से त्वचा की समस्या है तो सलाह लेकर एक मोती या एक ओपल धारण करने से लाभ होगा। सूर्य की त्वचा की समस्या में अगर आप चांदी धारण करते हैं तो चांदी धारण करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, चोट चपेट से सावधान रहें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
मकर राशि, वाहन सावधानी से चलाएं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, शिक्षा में सफलता मिलेगी, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। घर के पूजा स्थान पर हर समय बल्ब मत जलाए रखिए, नियत समय पर सही समय पर दीपक जलाइए। और बल्ब अगर थोड़ी देर के लिए जलाते हैं तो रात में बल्ब बुझा दीजिए। अब जान लेते हैं दिनांक 10 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीला फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
2: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। रहा जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी शक्ति, रूस की घातक RVVBG मिसाइलों से लैस होंगे लड़ाकू विमान सुखोई, 300 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट कर सकेंगे ध्वस्त। अब आपदा से पहले मिलेगा अलर्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज ने बनाया मोबाइल ऐप आपदा सहायक, पहाड़ी इलाकों को ध्यान में रखकर बनाया गया ऐप। जयपुर में गणेश महोत्सव की रौनक, मोती डूंगरी मंदिर में बप्पा को लगाया गया हजारों मोदकों का भोग, चढ़ाए गए मोदकों में 251 किलो, 51 किलो और 21 किलो के मोदक भी शामिल। गणपति उत्सव के रंग में रंगने लगी मुंबई, ऐतिहासिक चिंचपोकली उत्सव मंडल में इस बार भगवान वेंकटेश्वर बालाजी से प्रेरित रूप में दिखेंगे बप्पा। यूपी के सहारनपुर में निकली 26 छड़ियों की भव्य शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की थाप से गूंजा पूरा शहर, शोभा यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल आज अपने नए प्रोडक्ट्स का खुलासा करेगी, भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा एप्पल का इवेंट।

0: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी, इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा शिमला में आमी थीम वाले कैफे की भी हो रही है।
1: ये तस्वीर देखिए, आम सी दुकान लग रही होगी आपको, लेकिन असल में है बेहद खास क्योंकि उम्मीद भी देती है और भरोसा भी। इस दुकान की खासियत ये है कि यहाँ आपको सामान तो मिलेगा पर कोई दुकानदार नहीं मिलेगा। यहाँ जरूरत का हर सामान कीमत के टैग के साथ रखा गया है। सामान लीजिए, उस पर लगे टैग से सामान की कीमत जानिए और दुकान में रखे QR कोड पर पैसे ऑनलाइन पे कर दीजिए। भरोसे और उम्मीद वाली ये सेल्फ पे दुकान नागालैंड में एक सड़क के किनारे है। सेना के एक जवान ने इसका वीडियो शेयर किया है और बताया है कि जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करें तो समाज कैसा हो सकता है। इस वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं और इस पहल की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। बच्चों के क्लास में आखिरी बेंच पर बैठी ये क्लास टीचर नहीं बल्कि बिहार के जहानाबाद की DM छुड़िरबाई भूटिया है। जहानाबाद के राजा बाजार में सरकारी स्कूल मुरलीधर उच्च विद्यालय के औचक निरीक्षण के लिए आई थी। एक कक्षा में पहुंची और अधिकारियों की तरह आगे कुर्सी पर बैठने के बजाय वो सीधे विद्यार्थियों के बीच चली गईं और आखिरी बेंच पर बैठकर टीचर से कहा, आप पढ़ाइए, आज हम भी क्लास में बैठते हैं। और पीछे बैठकर उन्होंने शिक्षक के पढ़ाने के तरीके को ध्यान से सुना और बच्चों से विषय से जुड़े सवाल भी पूछे। DM छुड़िरबाई भूटिया ने यहाँ न सिर्फ पढ़ाई का स्तर जांचा बल्कि कमजोर शैक्षणिक स्तर को लेकर प्रधान अध्यापक और शिक्षकों से जवाब तलब भी किया। स्कूल निरीक्षण का DM का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। जहाँ चाह वहाँ राह। बिहार में गया के बतसपुर गांव में गंदे पानी को साफ पानी में बदलने का एक मॉडल इन दिनों चर्चा में है। यहाँ नाले और शौचालय से निकलने वाला गंदा पानी पहले गांव के तालाब या खुले में इधर उधर जमा रहता था जिससे दुर्गंध फैलती थी और तालाब का पानी भी प्रदूषित हो रहा था। लेकिन अब यहाँ WSP यानी वेस्ट वाटर स्टेबिलाईजेशन पॉन्ड तकनीक के जरिए दूषित पानी को साफ किया जा रहा है। प्राकृतिक और कम लागत वाली सबश्रेष्ठ जल उपचार प्रणाली के जरिए अब गांव के घरों से निकलने वाले गंदे पानी को तालाब के पास बने 4 चैम्बर में गिराया जाता है और गंदे पानी को सूर्य की रोशनी, ऑक्सीजन, बैक्टीरिया और प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं के जरिए पानी में मौजूद जैविक गंदगी और प्रदूषकों का उपचार कर गंदे पानी को साफ कर गांव के तालाब में गिराया जा रहा है और उस तालाब के साफ पानी का इस्तेमाल अब मछली पालन और खेतों की सिंचाई में हो रहा है। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें यूपी के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की है। देखिए कैसे एक तेज रफ्तार ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच ये शख्स मौत से लड़ रहा है, पर किस्मत अच्छी थी, जान बच गई। प्लेटफॉर्म पर मौजूद GRP की QRT टीम नजर पड़ते ही एक्शन में आ गई और फौरन उस यात्री को खींचकर हादसे का शिकार होने से बचा लिया। बताया जा रहा है कि यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर साबरमती एक्सप्रेस में चढ़ने की कवायद में इनका पैर फिसल गया, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गया, इसी दौरान ट्रेन चल पड़ी। शिमला का कमांड पोस्ट कैफे अपने आर्मी थीम वाले माहौल के लिए लोगों के बीच मशहूर है। देवदार के पेड़, शांत वातावरण और यहाँ का स्वाद न सिर्फ सैलानियों बल्कि स्थानीय लोगों को भी अपनी ओर खींचता है। भारतीय सेना द्वारा संचालित अपनी तरह का ये अनूठा कैफे शिमला में मॉल रोड पर DC ऑफिस के पास है। सबसे खास है इस कैफे की सजावट जिसमें भारतीय सेना के जज्बे और सैन्य संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। कैफे के इंटीरियर को बेहद अनोखे ढंग से तैयार किया गया है। सेना के पुराने और अनुपयोगी सामान जैसे पुराने टायरों से बने गद्देदार स्टूल, ड्रम से बनी टेबल का इस्तेमाल किया गया है।
0: और अब बात करते हैं अपनी जगह से टस से मस तक नहीं हुए हनुमान जी की। उज्जैन में मंदिर तो टूटा लेकिन बजरंग बली को हटाने में मशीनें भी फेल हो गई। दरअसल धर्म और आध्यात्म की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ 2028 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। यहाँ कंठाल से छतरी चौक रास्ते पर 170 साल पुराने खड़े हनुमान मंदिर की प्रतिमा को नए स्थल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है जिसमें आधुनिक मशीनों और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से बड़ी कोशिश की गई लेकिन प्रतिमा अपनी जगह से नहीं हिली। अब प्रशासन के सामने चुनौती सड़क चौड़ीकरण के साथ साथ आस्था का सम्मान बनाए रखने की भी है।
1: कभी पर्दे पर दिखाई गई आस्था लोगों को भीतर तक छू जाती है, तो कभी असल जिंदगी में घटा कोई वाकया लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। इन दिनों ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है।
2: हमारे ये बाबा हैं, ये डॉक्टर दादा हनुमान है हमारे। यहाँ पर जो महिलाएं जिनको बच्चे नहीं होते हैं, वो खासकर जिनको पुत्र की इच्छा होती है, यहाँ से जो दवाई दी जाती है उससे 100% लाभ होता है यहाँ पर। और यहाँ बच्चे जो बीमार होके आते हैं तो हंसते खेलते हुए जाते हैं।
1: एक तरफ हनुमान अंश जैसी फिल्म अपनी कहानी और आध्यात्मिक भावनाओं से दर्शकों का ध्यान खींच रही है, तो दूसरी तरफ उज्जैन से सामने आई एक घटना ने लोगों के बीच चमत्कार की चर्चा छेड़ दी है।
3: उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर का मामला इन दिनों देश भर में जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया। आज की तारीख में सोशल मीडिया पे हर तीसरा पोस्ट उज्जैन के इसी खड़े हनुमान मंदिर का है। ये पूरा विवाद दरअसल हनुमान जी की प्रतिमा हटाने को लेकर है, और इसीलिए इस विवाद ने अब सोशल मीडिया में अपनी गहरी पकड़ भी बना ली है। लोग सोशल मीडिया पर न केवल खड़े हनुमान की असली प्रतिमा बल्कि AI से बनी हुई मिलती जुलती प्रतिमाओं के फोटो भी जमकर शेयर कर रहे हैं। ये खबर इंटरनेट पर न केवल तेजी से वायरल है बल्कि खड़े हनुमान के बारे में अब लोग इंटरनेट पर जमकर सर्चिंग भी कर रहे हैं।
1: मंदिर का ढांचा हट गया, भारी मशीनों से कोशिश हुई, लेकिन जिस प्रतिमा को अपनी जगह से हटाने की कोशिश की जा रही थी वो टस से मस नहीं हुई। अब भक्त इसे बजरंग बली की मौजूदगी और इच्छा से जोड़कर देख रहे हैं।
2: बाबा को यहीं रहने देखो कि आपने सारे प्रयास कर लिए, बाबा यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। अगर बाबा यहाँ से जाएंगे तो इस क्षेत्र की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी और यहाँ का व्यापार शून्य हो जाएगा। और जो हजारों लाखों भक्त बाबा के यहाँ पे आते हैं अपनी आस्था लेके, वो कहाँ जाएंगे।
4: हम भी चाहते हैं कि भाई विकास में हम लोग रोड़ा नहीं है, लेकिन विकास के नाम पे आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मूर्ति हटाने का प्रयास किया, एक नहीं तीन तीन चार बार किया, जब मूर्ति नहीं हटा पाए तो जैसे हमारा मानना है कि भगवान की इच्छा नहीं है, इसलिए ये स्थान यहाँ पर है।
5: बाबा यहीं रहना चाहते हैं और बाबा को यहीं रहने दें। ये सर्वशक्तिमान है बाबा और इनका कोई तोड़ नहीं है।
1: उज्जैन में हनुमान भक्तों की आस्था और विश्वास के आगे उनकी प्रतिमा को हटाने में बड़े से बड़े इंजीनियर और टेक्नोलॉजी फेल हो गई। बजरंग बली के भक्तों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा चमत्कार बार बार नहीं बल्कि कभी कभार देखने को मिलता है।
6: मुझे कुछ भी प्रकार की दिक्कत आती है, परेशानी आती है, बुखार आता है तो मैं बाबा के यहाँ से भभूति लेता हूँ, उससे पूरी तरीके से मेरा बुखार भी उतर जाता है, सब कुछ बीमारी खत्म हो जाती मेरी। तो बाबा से मेरे दिल से आस्था है और मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि बाबा की मूर्ति यथावत रहे, इसको नहीं हटाए। जय श्री राम।
7: मंदिर तो यही रहना चाहिए और हमको तो कम से कम 35 साल तो हो गए मेरे को भी आते होते, बच्चे के मतलब कुछ हो जाती बीमारी वगैरह तो हम यही जाननी डलवाने आते थे, और मतलब जरा सा कुछ रहता तो हम यही आते थे।
1: दरअसल उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ 2028 की तैयारियों के तहत कंठाल चौराहे से छत्री चौक तक सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसके जद में आए करीब 170 साल पुराने हनुमान मंदिर का भवन तो हटा दिया गया, लेकिन प्रतिमा को हटाने की कोशिश सफल नहीं हुई। तकनीकी विशेषज्ञ भी हनुमान की प्रतिमा को नहीं हिला सके।
8: स्थान लगभग 200 वर्षों से पहले का स्थान है और इस स्थान पर देश के नहीं अपितु देश के अलावा भी बाहर के लोग भी यहाँ पे आते हैं और उनकी आस्था यहाँ पूरी होती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो अपने लोग जो छोटे बच्चे हैं उनको जड़वाने लाते हैं, जिन माताओं के बच्चे नहीं होते तो उनको बच्चे भी यहाँ पे हुए हैं, कई प्रकार की बीमारियां भी यहाँ ठीक होती है। और कुल मिला के बात यह कि खड़े हनुमान जी का जो स्थान है, ये देवतुल्य भगवान का जो हमारा स्थान है उसके संबंध में परमारकालीन स्थापत्य कला का ये मंदिर है, और अभी जो प्रतत्व की टीम आई थी उसने भी इसको अध्ययन करा है, देखा है।
1: प्रतिमा को नीचे से हटाने की कोशिश की गई, छेनी हथौड़े से प्रयास हुआ, लेकिन प्रशासन को सफलता नहीं मिली। हालांकि प्रशासन और तकनीकी विशेषज्ञ से धार्मिक मान्यता के बजाय तकनीकी और संरचनात्मक चुनौती के रूप में देख रहे हैं, लिहाजा प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है।
9: मूर्ति के चारों तरफ की दीवार वगैरह सब चीजें हट चुकी थी, पर जब मूर्ति स्थापन की कार्रवाई की जा रही थी तो ऐसा संज्ञान में आया कि तकनीकी परीक्षण भी इसमें करा लिया जाए। उस तकनीकी परीक्षण की कार्रवाई हमारे द्वारा संचालित की जा रही है प्रशासन के पूरे समन्वय से, और आगे की कार्रवाई जैसी भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे निर्णय आपसी सहमति के आधार पर लिया जाएगा।
1: हनुमान भक्तों का दावा है कि प्रतिमा हटाने की 4 बार कोशिश हो चुकी है। ऐसे में उनका सवाल है कि जब कई कोशिशों के बाद भी प्रतिमा नहीं हिली तो आखिर इसे हटाने की जरूरत ही क्यों है। अब मांग साफ है, सड़क बने लेकिन हनुमान जी अपनी जगह पर ही रहे।
2: जब आप बाबा की प्रतिमा को यहाँ से हटाएंगे तो अन्यत्र विस्थापित करें तो बाबा की प्रतिमा क्रेक नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारी मांगे भी मांगी मानी और उसके हिसाब से हमने तैयारी भी करी बाबा को ले जाने की। यहाँ से कुछ दूरी पर ही हमने बाबा का नया स्थान तैयार कर लिया था, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमको निगम ने उपलब्ध करा दिए गए थे, पर जब उन्होंने प्रयास करा बाबा को ले जाने का तो 4 प्रयास कर चुके हैं, चारों में विफल रहे हैं वो अभी तक। इसलिए हमारी अब ये मांग है कि बाबा यहीं रहे, क्योंकि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
1: उज्जैन ही नहीं बल्कि इंदौर से बुलाए गए विशेष इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने 2 दिनों तक सावधानी के साथ प्रयास किया ताकि मूर्ति में कोई टूट फूट न हो। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल बिना किसी जल्दबाजी के काम करने का फैसला लिया है। अब पुरातत्व विभाग की टीम अत्याधुनिक मशीनों से प्रतिमा के आधार, अंदरूनी संरचना और आसपास की मिट्टी की स्कैनिंग करेगी। रिपोर्ट आने के बाद ही अगली तकनीक पर काम किया जाएगा,
10: प्रॉपर उसको विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि यह क्या है, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस प्रतिमा को प्रॉपर तरीके से न्यू सहित उठा के उस प्रतिमा को फिर से स्थापित किया जाए।
11: और क्या कहेंगे?
10: और मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को लोगों की आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इसके पहले भी कई प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं, तो ये प्रतिमा भी प्रॉपर न्यू सहित उठा के स्थापित हो सकती है।
1: इतिहास के जानकारों के मुताबिक बजरंग बली की प्रतिमा काफी प्राचीन है। हालांकि प्रतिमा पर लंबे समय से चढ़ाए जा रहे सिंदूर की मोटी परत के कारण इसकी मूल भाव भंगिमा पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हालांकि मंदिर का स्थान उज्जैन के ऐतिहासिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण माना जाता है।
12: उज्जैन के प्राचीन क्षेत्र में आता है और प्राचीन क्षेत्र में अनेक मूर्तियां और देवस्थान जो है वो महत्वपूर्ण है, उनमें से एक खड़े हनुमान भी हैं। हनुमान की आराधना भारत में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है।
1: माना जाता है कि यह मंदिर 170 साल पुराना यानी 1857 के दौर का है। इसका कनेक्शन परमार वंश और राजा भोज के शासनकाल से भी हो सकता है। अगर दावा सही निकला तो ये प्रतिमा 1000 साल पुरानी मानी जाएगी। वहीं कुछ इतिहासकारों का ये भी दावा है कि ये प्रतिमा माला के बेसाल्ट पत्थर से बनी हुई है और ये मूर्ति करीब 1000 साल पुरानी राजा भोज काल की प्रतिमा निर्माण परंपरा से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि परमार काल और राजा भोज के समय इस तरह के मजबूत बेसाल्ट पत्थर पर मूर्तियां तराशने का चलन था। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये मंदिर कितना पुराना है, लिहाजा प्रतिमा की सटीक उम्र और स्थापना के समय का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक परीक्षण और विशेषज्ञ जांच की जरूरत है।
3: ये पूरा विवाद दरअसल तब शुरू हुआ जब प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के बीच में खड़े हनुमान मंदिर के आने का मामला देखा और फिर इसे यहाँ से हटाने की कोशिश शुरू की। जन्माष्टमी पर प्रशासन की टीम पहुंची और मंदिर का जो मुख्य हिस्सा है उसे हथौड़ों की मदद से हटा दिया गया। लेकिन बारी जब प्रतिमा हटाने की आई तो प्रशासन ये देखकर सहम गया कि दरअसल प्रतिमा के नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता। इसके बाद जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने प्रशासन से मांग की कि विशेषज्ञों की मदद से ही आगे प्रशासन कोई फैसला ले, और प्रशासन ने इसीलिए प्रतिमा को हटाने का काम वहीं रोक दिया। हिंदू संगठनों और स्थानीय श्रद्धालुओं ने इसे बजरंग बली का चमत्कार बताया।
1: अब चुनौती प्रशासन के सामने है कि सड़क भी चौड़ी हो, विकास भी हो, लिहाजा प्रशासन को ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे विकास कार्य भी प्रभावित ना हो और श्रद्धालुओं की भावनाएं भी आहत ना हो। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे।
0: रेलवे के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स को मिली केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
1: पीएमओ मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली 8 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इनमें दक्षिण भारत की 5 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं और मध्य और पूर्वी भारत की 3 परियोजनाएं शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इसके तहत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में करीब 540 किलोमीटर अतिरिक्त रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे। इससे चारों राज्यों के 17 जिलों को फायदा मिलेगा और करीब 2,121 गांवों की रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। परियोजनाओं को 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे ने कोटा मंडल से होकर चलने वाली मुंबई सेंट्रल कानपुर अनवरगंज मुंबई सेंट्रल विशेष ट्रेन की संचालन अवधि बढ़ा दी है। अब ट्रेन के दोनों दिशाओं में 13-13 अतिरिक्त फेरे होंगे। मुंबई सेंट्रल कानपुर अनवरगंज विशेष ट्रेन प्रत्येक रविवार को चलेगी और इसकी वापसी सोमवार को होगी। इससे महाराष्ट्र से कोटा होते हुए यूपी जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। खासकर दशहरा और दीपावली के दौरान घर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेन से फायदा होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मिसाल पेश करने वाली महाराष्ट्र की रमाबाई रणवीर के साहस और संघर्ष को सीजेआई सूर्यकांत ने भी सलाम किया है और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के जरिए उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। सीजेआई के निर्देश पर विधिक सेवा प्राधिकरण अब हिंगोली जिले के पोचरा गांव में रमाबाई को एक सुविधाजनक घर बनाकर दे रहा है। साथ ही साल 2012 में पति के निधन के बाद से रुके हुए मृत्यु प्रमाण पत्र को जारी करने के आदेश दिए गए हैं ताकि उनकी छोटी बेटी आरती को उसकी कंप्यूटर साइंस पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल सके। ओडिशा में बालासोर के एक जंगल से बचाए गए 5 नन्हे ओरांगुटान को भुवनेश्वर के पास नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क लाया गया है। यहां उन्हें क्वारंटीन में रखा गया है और 24 घंटे उनकी निगरानी और देखभाल की जा रही है। इन 5 नन्हे ओरांगुटान में 3 नर और 2 मादा हैं। इन्हें कल यानी मंगलवार 8 सितंबर को जंगल में देखा गया था। ओरांगुटान भारत में नहीं पाए जाते, ऐसे में इनकी तस्करी के अंदेशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। एसटीएफ, वन विभाग और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इस मामले की छानबीन में जुटी है। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में इन दोनों नदियां और तालाब इन सुंदर पंछियों से गुलजार हैं। यहां के जलाशय और तालाब बगुले, एशियन ओपन बेल और पेंटेड स्टॉर्क जैसे पानी में रहने वाले पंछियों के ठिकाने बने हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में अलग अलग प्रजातियों के इन पंछियों को एक साथ देखना दिलचस्प है। यहां के लोगों के लिए ये सुंदर नजारे की तरह है जो मन को सुकून देते हैं।
0: और अब बात करेंगे गणेश उत्सव से पहले भक्ति के दिव्य नजारों की। गणेश उत्सव के आगमन में अब बस चंद ही दिन बाकी हैं। महाराष्ट्र समेत देश भर में शहर शहर गणेश उत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। कहीं भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं मोदक तैयार किए जा रहे हैं। भक्त धूमधाम के साथ बप्पा की मूर्तियां ले जा रहे हैं। यहां तक कि जेल में बंद कैदियों ने भी बप्पा की मूर्तियां बनाई हैं।
1: बाप्पा की प्रतिमा से लाल कपड़ा के हटते ही पूरा वातावरण गणपति के जयकारों से गूंज उठा। गणपति की इस भव्य प्रतिमा को देखते ही भक्त भाव विभोर हो उठे और इनके स्वागत में जमकर आतिशबाजी और फायर शो किया गया। गणेश उत्सव को लेकर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में कुछ ऐसी ही भव्य छटा देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें अकोला के चिंतामणि बाप्पा के आगमन की हैं। ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर झूमते हुए भक्त जब भगवान गणेश की इस दिव्य प्रतिमा को लेकर सिविल लाइन चौक पहुंचे तो पूरा वातावरण भक्ति के रंगों से सराबोर हो गया। 30 फीट ऊंची चिंतामणि गणपति बाप्पा की प्रतिमा से जैसे ही लाल कपड़ा हटाया गया तो अपने आराध्य के दर्शन कर भक्त खुशी से झूम उठे।
11: चिंतामणि के दर्शन करने के लिए छोटे बाल जैसल है जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और सबसे अहम बात यही है ये चिंतामणि के आगमन के लिए यहाँ पर आए तो बोले बड़ी तरीके से लोग के साथ यहाँ पर दादा के साथ जो है यहाँ पर अपने भक्तों की सभी लोग है सभी लोगों का जो उम्र है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। माता का जो स्वागत है मूर्ति और चिंतामणि वो सभी की स्किन का हारने वाला है। किसानों की जो चिंता बच्ची है कि बारिश की आ रही है चिंता और सन्य लोगों की चिंता हारने वाला चिंतामणि का ये स्वागत यहाँ पर किया गया है।
1: बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों में सेल्फी और वीडियो बनाने को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। हर कोई इस खास पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने के लिए बेताब दिखा। छोटे छोटे बच्चे भी बाबा के चरणों में माथा टेकते और आशीर्वाद लेते दिखाई दिए।
13: बाबा आने के बाद सब आगमन में जो होता है तो उसमें सब विघ्न दूर हो जाते हैं और ये चिंतामणि है, मन की सब चिंता दूर कर देता है।
1: महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी गणेशोत्सव की भव्य तैयारी चल रही है और बाप्पा का आगमन भी हो रहा है। गुजरात के आणंद में ब्लॉकबस्टर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित भगवान गणेश के आगमन यात्रा में सड़कों पर भक्तों का सैलाब दिखाई दिया। विद्यानगर के शास्त्री मैदान बस स्टैंड से शुरू हुई इस यात्रा में भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ कई आकर्षक प्रस्तुतियां भी देखने को मिली। छावा नृत्य, हैरत अंगेज होला हो पिस्टंट्स और कलाकारों ने पारंपरिक शस्त्र कला का प्रदर्शन भी किया। इस यात्रा में अलग अलग लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर्स भी दिखाई दिए जिसे देखकर बच्चे खुशी से भर उठे।
14: हमने अलग अलग प्रकार के 13 इवेंट रखे थे जिसमें नरसिम्हा एक्ट थे, मणिकर्णिका एक्ट थे, ऐसे बहुत सारे एक्ट हमने हमारे हिंदू धर्म संस्कृति का एक अच्छा संदेश लोगों के सामने पहुंचे वो भी ध्यान रखा था। वो उस प्रकार से कुछ अच्छा आयोजन किया था जिसमें समाज को कुछ अच्छा जानने का अवसर मिले।
1: छत्तीसगढ़ के रायपुर सेंट्रल जेल की ये तस्वीरें देखिए जहां कैदी भगवान गणपति बाप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यहां जेल के कैदियों ने गणेश की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई हैं, वो भी ऐसी कि नदियों या तालाबों के बदले उसे बाहर कहीं विसर्जित किया जाए तो उससे पौधे निकलने की संभावना बनी रहे। ये बीज वाली मूर्तियां तैयार होने के बाद प्रदर्शनी और बिक्री के लिए जेल से बाहर भेजी जा रही हैं।
15: भगवान गणेश की मूर्तियां प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए तैयार की गई हैं और इको फ्रेंडली है। हम हर साल जो है इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियां बनाते हैं। इस बार कलर भी जो है इको फ्रेंडली रखा गया है। इस बार कुछ और प्रयोग किया कि कुछ बीज डाल दिए हैं हम लोगों ने ताकि ऐसे जहां पर भी ये मिट्टी जाए तो वहां पे कोई ना कोई पौधे लग जाए।
1: बाप्पा के भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 14 सितंबर को पंडालों, मंदिरों और घरों में गणपति अलग अलग स्वरूपों में विराजमान होंगे, लिहाजा उनके आगमन की तैयारियों को लेकर देश भर में रौनक दिखाई देने लगी है। गुजरात के आनंद से हेताली शाह, अकोला से धनंजय साबले के साथ गाजियाबाद से मनीष लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
0: और न्यूज वक्त में आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की तमाम अहम खबरें मौजूद हैं जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाएं, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबर लिया।
1: शेयर बाजार में आज भी गिरावट जारी रही। बुधवार 9 सितंबर को सेंसेक्स 813 अंक लुढ़क कर 74,764 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 204 अंक फिसला, ये गिरकर 23,431 पर आ गया। थाने बाजार में कम मांग के कारण आज राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट आई। सोना 100 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,58,000 रुपए पर आ गई। हालांकि चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बढ़त रही, चांदी 2300 रुपए महंगी हुई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,43,400 रुपए हो गई। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 37 पैसे की गिरावट आई। इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95 रुपए 11 पैसे हो गई।
0: ट्रेलर से भरा है दृश्यम 3 का ट्रेलर। इसके साथ ही ऐसी कई और खबरों को देखने के लिए चलते हैं फिल्मी मोड़ पर।
1: अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड क्राइम सस्पेंस फिल्म दृश्यम द कंक्लूजन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। खास बात यह रही कि ट्रेलर लॉन्च के लिए गोवा के पणजी को चुना गया क्योंकि फिल्म की कहानी की कड़ियां इसी जगह से जुड़ी हैं। इवेंट में अजय देवगन के साथ तब्बू, श्रेया जरन, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज भी नजर

0: सर, हार्ट अटैक ना हो जाए।
1: हनुमान अंश के बॉक्स ऑफिस रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पांचवें हफ्ते में भी फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रही है। मंगलवार के आंकड़ों ने तो एक बार फिर सबको चौंका दिया। पांचवें हफ्ते के मंगलवार को फिल्म ने 10 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया। वहीं शुक्रवार से मंगलवार तक कमाई का आंकड़ा 65 करोड़ 20 लाख रुपए रहा। अब तक भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई 135 करोड़ 6 लाख रुपए बताई जा रही है। डिस्काउंट, टिकट ऑफर और बढ़ते शो इसकी पकड़ को लगातार मजबूत कर रहे हैं। हालांकि आंकड़ों में मामूली बदलाव संभव है। लस्ट स्टोरीज फ्रेंचाइजी एक बार फिर रिश्तों की उलझन, चाहत और दिलचस्प कहानियों के साथ लौट रही है। तीसरे पार्ट के ट्रेलर में 4 अलग अलग कहानियों की झलक दिखाई गई है। कहीं ऑफिस में रिश्तों का समीकरण बिगड़ता नजर आता है, तो कहीं कपल के बीच खामोशी किसी बड़े राज की तरफ इशारा करती है। कॉलेज और पीजी का माहौल भी कहानी में रंग भरता है, जबकि छुट्टियों पर गया एक खुशहाल जोड़ा अचानक अजीब हालात में घिरता दिखता है। राधिका आप्टे, कोंकणा सिंह शर्मा समेत शानदार कलाकारों, 4 निर्देशकों का ये कॉम्बिनेशन खासा दिलचस्प है। फिल्म 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर आएगी। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की नई फिल्म उड़ता तीर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मेकर्स ने फिल्म का पहला पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें दोनों सितारों की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएगी। धर्मा प्रोडक्शंस और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए फिर साथ आए हैं। इससे पहले दोनों बैनर किल 11/11 और द लंच बॉक्स जैसी फिल्मों से जुड़े रहे हैं। आकाश कौशिक इस फिल्म से निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, गुनीत मोंगा कपूर और अचिन जैन इसके निर्माता हैं। उड़ता तीर 9 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। प्यार की कहानी में जब धोखा, कानूनी लड़ाई और छिपे विराज शामिल हो जाएं, तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। फिल्म लव लॉटरी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अक्षय ओबेरॉय और हेली दारूवाला इसमें मुख्य किरदार निभा रहे हैं। कहानी रिश्तों के बीच पैदा होने वाले तनाव और सामने आते सच के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। कबीर दुहान सिंह, हेमंत पांडे, विजयंत कोहली, इंदिरा कृष्णन और संतोष शुक्ला भी अहम भूमिकाओं में हैं। अरविंद पांडे के निर्देशन और अंकुर खत्री की कहानी वाली ये फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
2: और न्यूज पथ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे बढ़े उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी शक्ति, रूस की घातक RBV BD मिसाइलों से लैस होंगे लड़ाकू विमान सुखोई। 300 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट कर सकेंगे ध्वस्त। पहाड़ी इलाकों में अब आपदा से पहले मिलेगा अलर्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज ने बनाया मोबाइल ऐप आपदा सहायक। जयपुर में गणेश महोत्सव की रौनक, मोती डूंगरी मंदिर में बप्पा को लगाया गया हजारों मोदकों का भोग, चढ़ाए गए मोदकों में 251 किलो, 51 किलो और 21 किलो के मोदक शामिल। गणपति उत्सव के रंग में रंगने लगी मुंबई। ऐतिहासिक चिंचपोकली उत्सव मंडल में इस बार भगवान वेंकटेश्वर बालाजी से प्रेरित रूप में दिखेंगे बप्पा। यूपी के सहारनपुर में निकली 26 छड़ियों की भव्य शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की थाप से गूंजा शहर, शोभा यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल आज अपने नए प्रोडक्ट का करेगी खुलासा। भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा एप्पल का इवेंट। और न्यूज पथ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं और कुछ इमोशनल करने वाले हैं।
1: हौसले के आगे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, रास्ता जरूर निकल

0: चलाता है। इस वीडियो में दो छोटे भाइयों का ऐसा ही प्यार और जज्बा दिखाई दे रहा है। एक भाई चलने में थोड़ा कमजोर है, लेकिन लकड़ी के सहारे आगे बढ़ रहा है। वहीं छोटा भाई उसके साथ खड़ा है और लगातार उसका हौसला बढ़ा रहा है। फिर जब वो फुटबॉल खेलने की कोशिश करता है तो भाई का उत्साह देखते ही बनता है। दोनों की ये बॉन्डिंग लोगों का दिल जीत रही है। साइकिल पर सफर का ऐसा अनोखा जुगाड़ आपने शायद ही पहले देखा होगा। आगे साइकिल चल रही है और दोनों तरफ झूलों में बैठी हैं नन्ही बच्चियां। इस अनोखे अंदाज को देखकर कोई भी मुस्कुराते। खास बात यह है कि झूले में बैठी बच्चियां भी सफर का खूब मजा ले रही हैं। उनके चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि उन्हें ये अंदाज कितना पसंद आ रहा है। अब यही मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोगों का ध्यान खींच रहा है। जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए सिर्फ मंजिल देखना काफी नहीं, उसे हासिल करने का हौसला भी होना चाहिए। इस शानदार हाथी का वीडियो भी हमें कुछ ऐसी ही सीख दे रहा है। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, कदम रुकने नहीं चाहिए। सामने कितनी भी बड़ी चुनौती आए, कोशिश जारी रहनी चाहिए। इस हाथी की हर कदम बढ़ाती तस्वीर मानो यही संदेश दे रही है कि अपनी ताकत को पहचानिए, संकल्प मजबूत रखिए और मंजिल की ओर लगातार आगे बढ़ते रहिए। बच्चों की छोटी छोटी कोशिशें ही कई बार चेहरे पर बड़ी मुस्कान ले आती हैं। इस वीडियो में एक नन्ही बच्ची अपने हाथों से खुद मोजे पहनने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। पूरी मेहनत के बाद जब वो आखिरकार अपने पैरों में मोजे पहन लेती है तो उसकी खुशी देखते ही बनती है। अपनी इस छोटी सी कामयाबी पर बच्ची जिस अंदाज में खुद को बधाई देती है वो पल बेहद प्यारा है। मासूमियत से भरा ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता जब प्यार और भरोसे से जुड़ जाए तो वो बेहद खूबसूरत बन जाता है। ऐसा ही दिल छू लेने वाला पल इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। एक शख्स साइकिल से कहीं जा रहा है, तभी हाथी उसे बड़े प्यार से रोक लेता है, मानो अपने खास साथी को कुछ पल और अपने पास रखना चाहता हो। दोनों के बीच नजर आ रहा अपनापन और तालमेल लोगों को खूब पसंद आ रहा है। यही रिश्ता इस वीडियो को खास बना रहा है।
1: और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में सरकारी हॉस्टल की कमी की वजह से हजारों छात्र प्राइवेट पीजी में रहते हैं, जहां उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में दिल्ली के सत्य निकेतन में एक पीजी की बिल्डिंग गिरने के बाद सरकार ने एक रेगुलेशन ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है, जिसे पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन रेगुलेशन एंड वेलफेयर बिल नाम दिया गया है। दिल्ली सरकार की इस ड्राफ्ट पॉलिसी में पीजी रजिस्ट्रेशन, सुरक्षा के मानक, किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट और छात्रों की शिकायतों से जुड़े कई मुद्दे शामिल किए गए हैं। प्रस्तावित पॉलिसी के तहत दिल्ली में पीजी संचालकों को 90 दिनों के भीतर ऑपरेटिंग लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए पुलिस, नगर निगम और स्थानीय प्रशासन से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। हर एक प्राइवेट पीजी को पुलिस और नगर निगम के वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा। हर रजिस्टर्ड पीजी को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिससे उनकी पहचान और वैधता आसानी से पता चल पाएगी। प्रस्ताव में डिजिटल प्लेटफॉर्म गॉव पीजी पोर्टल बनाने की बात कही गई है, जो वेरिफाइड पीजी में मिलने वाली सुविधाएं, किराया और सुरक्षा जैसी जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराएगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए छात्र बिना अपना नाम जाहिर किए पीजी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। पॉलिसी में यह भी प्रावधान है कि पीजी के एंट्री गेट और सामान्य क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे, जिनकी फुटेज 30 दिन तक रखी जाएगी। 15 या फिर इससे ज्यादा छात्रों वाले पीजी को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में एक लाइसेंस प्राप्त नाइट गार्ड भी रखना होगा। विजिटर रजिस्टर रखना जरूरी होगा और प्रस्तावित नियमों के तहत बाहरी लोगों को सुबह 8 बजे से रात 9 बजे के बीच आने की इजाजत होगी। वार्डन को पीजी के 500 मीटर के दायरे में ही रहना होगा या फिर अपना ऑफिस रखना होगा और इमरजेंसी में 15 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचना होगा। प्रस्तावित पॉलिसी में किराया रेगुलेशन कमेटी बनाने की भी बात है, जो अलग अलग इलाकों में बने पीजी के लिए किराए की रेंज तय करेगी। पीजी का किराया तय करने के लिए ऑक्यूपेंसी सुविधाओं, मार्केट रेट और कॉलेजों और ट्रांसपोर्ट जैसी बातों का खास ख्याल रखा जाएगा। ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक सिक्योरिटी डिपॉजिट अधिकतम 3 महीने के किराए के बराबर हो सकता है और छात्र के पीजी छोड़ने के 30 दिन के अंदर ही से वापस करना होगा। इस ड्राफ्ट पॉलिसी में जेंडर, जाति, धर्म या फिर मूल राज्य के आधार पर पीजी में भेदभावपूर्ण कीमत तय करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी है। दिल्ली सरकार ने छात्रों से इस पॉलिसी के बारे में बात करना शुरू कर दिया है कि प्राइवेट घरों में रहने के दौरान उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी मुद्दे पर हमने दिल्ली में पीजी में रहने वाले स्टूडेंट से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए।
2: हिसाब से एक छात्र होने के नाते तुरंत क्या चीजें हों कि छात्रों को राहत मिल सके?
3: एक तो छात्र होने के नाते, एक तो जो ये रेंट बढ़ रहे हैं इतने, ये रेंट पे कंट्रोल होना चाहिए, रेंट एक्ट होना चाहिए। हम टीम विशेष यादव इसी चीज पे पूरे तरीके से खड़े हैं, रेंट एक्ट होना चाहिए। और तो और बच्चों के लिए जो हॉस्टल में बिल्कुल जगह नहीं है बच्चों के लिए, वो होनी चाहिए। और सरकार जो ये MCD जो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बस नोटिस लगाने से कुछ नहीं होता भाई साहब। उस PG को खाली कराने वाला मतलब भी होना चाहिए, खाली कराओ उसमें भाई, नोटिस दिया उस बंदे को पकड़ो जो भी है। ऐसे तो फिर
2: अभी जब एक छात्र बाहर से आता है दूसरे शहर से, फिर उसको यहाँ पर अपने लिए एक ऐसी जगह ढूंढनी है, PG ढूंढना है जहाँ उसको रहना है, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं?
3: बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, जितने भी अपने भाई हैं सारे दिक्कत ही दिक्कत है। एक तो पैसे डबल ये लोग सिक्योरिटी ले रहे हैं,
2: एडवांस मांग,
3: हाँ सब एडवांस सिक्योरिटी मांग रहे हैं, 2 महीने का रेंट एडवांस में मांग रहे हैं। सुनने में आ रहा है आजकल तो रेंट इतना हाई कर दिया है यहाँ का जिसकी कोई हद नहीं होती है, तो इन चीज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए थोड़ा।
4: देखो दिक्कत सबसे ज़्यादा तो एक स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए, जो कि हम यहाँ पे आके देखते हैं कि चारों तरफ गंदगी बहुत रहती है। किसी भी PG में जाके देख लो, जो स्वच्छ वातावरण स्वच्छ पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है टाइम से। और जितनी
2: ये हाल पैसा देने के बाद भी है,
4: हाँ पैसा देने के बाद भी यही हाल है। और ज़्यादातर जितनी भी PG हैं सबका यही हाल है, और सब पुरानी PG हैं, बहुत कम ऐसी 1-2 PG हैं जो नई निर्माण हुआ है, नहीं ज़्यादातर सब पुरानी PG हैं।
2: दिल्ली गवर्नमेंट एक बिल भी लेकर आई, इसमें कह रहे कि हम सारे PG को लिस्ट करेंगे, हर PG का एक यूनिक नंबर होगा, उसमें क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो अगर नहीं होंगी तभी उनको लिस्ट किया जाएगा। आपको लगता है कि इससे थोड़ी राहत मिलेगी छात्रों को?
4: देखो हमको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी, बाकी हम तो यही बोलना चाहें कि अगर सरकारी PG कोई बने अच्छे से तो ही स्टूडेंट का यहाँ पर रहना अनिवार्य है, नहीं तो ये PG तो कुछ भी नहीं है। आज को एक हादसा हुआ, कल को कोई और भी होने को तैयार हो सकता है।
2: ठीक है, तो छात्र कह रहे हैं कि पैसे देने के बाद भी ढंग का अच्छा PG नहीं मिल पाता?
5: नहीं मिलता जी।
2: क्या दिक्कतें होती हैं?
5: बहुत सारी दिक्कत आती हैं जी, जैसे खाने वाने में भी मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं होती उनकी, और कोई सिक्योरिटी नहीं होती, रहा तो कोई भी PG में आ जाता है, कोई भी चल जाता है, तो वो सब चीज़ इनको ठीक करनी चाहिए।
6: मैं PG में नहीं रहता हूँ, मेरा दिल्ली में ही घर है तो मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, बट मेरे बहुत सारे लोग हैं, दोस्त हैं जो PG या फिर फ्लैट्स में रहते हैं, तो जितना उनसे रेंट लिया जाता है जो मेरे को पता है वो बहुत ज़्यादा लिया जाता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो एक कमरे का ही नहीं एक बेड का किराया देते हैं, वो लोग 2 बेड शेयर करते हैं और शायद उसका कुछ 25,000 से 30,000 के बीच में वो किराया देते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। और वो रूम्स में आपका एक बेसिक रूम होगा, 2 स्टडी टेबल होंगे, बेड होगा, वॉशरूम्स होंगे और उसके बाद किचन के लिए अलग फैसिलिटी, बट हाँ ये बहुत ज़्यादा किराया उनसे चार्ज करा जाता है।
2: क्या होना चाहिए ताकि छात्रों को इस इलाके में कम से कम थोड़ी राहत मिले, कि उनको रहने की जगह आराम से मिल जाए, क्या होना चाहिए?
6: आई थिंक अगर क्या होना चाहिए उसके लिए सबसे अच्छी तो यही होगा कि हम हॉस्टल्स का कॉलेजेस हॉस्टल्स की व्यवस्था कर पाएँ, स्पेशली जो लोग बाहर से आए हैं। हम जानते हैं कि मैं खुद लॉ फैक का स्टूडेंट हूँ, अगर लॉ फैक में कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो पहली बात बहुत कम हॉस्टल्स हैं। लॉ फैकल्टी में पूरा लॉ फैकल्टी अगर हम मिला लें CLC, LC1, LC2 कम से कम 9,000 से 10,000 बच्चे लगभग होंगे, बट उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी अगर आप बोलें तो 100 बच्चों के लिए भी हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, शायद 50 के लिए भी ना हो, तो इतना ज़्यादा प्रोपोर्शनेट डिफरेंस है। ठीक है, बट उसके अलावा भी, क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इस एरिया के आप ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो कम से कम 7-8 कॉलेजेस हैं और सारे लगभग सारे डिपार्टमेंट्स यहीं पे हैं, ये साइंस ब्लॉक है पूरा, ये आर्ट्स फैकल्टी का पूरा ब्लॉक है। यहाँ पे जितनी स्नैचिंग की या फिर जितनी ईव टीजिंग की हरकतें रिपोर्ट होती हैं वो शायद दिल्ली में मतलब ज़्यादातर इलाकों पर एक हायर एंड पे होती हैं, जहाँ पे भी होती हैं। तो एक तो सेफ्टी का बहुत बड़ा कंसर्न है जो होना चाहिए, सेफ्टी के बाद ऑब्वियसली जो रेंट जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है यहाँ पे लोगों की वो कम होगी, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक कॉलेजेस एडमिनिस्ट्रेशन को लेनी चाहिए अपने हिस्से पे।
2: PG मिलना कितना मुश्किल होता है?
7: बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है PG मिलना, एंड इफ मिल भी जाता है तो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट कि किसको चूज करें। एक तो अकोमोडेशन में यही प्रॉब्लम आती है, इंफ्रा हर जगह का इंफ्रा अच्छा नहीं है, उसके बाद रेंट इतने ज़्यादा है, सो फॉर अ नॉर्मल फैमिली इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड।
2: देने के बाद भी क्या क्या दिक्कतें होती हैं?
0: पैसे देने के बाद भी,
2: इंफ्रा की आप बात कर रहे थे,
0: हाँ हाँ, पैसे देने के बाद भी पीजीज में इशू आता है, वाटर सप्लाई का भी आता है, फूड का भी आता है, एंड बच्चों की सिक्योरिटी भी देखो उसका कंसर्न भी रहता ही है। एंड इंफ्रा की बात करूँ तो बिल्डिंग्स का मुझे आई थिंक बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको भी पता है क्या हाल है, रिनोवेशन करा देते हैं इतनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स की, सो एंड गारंटी कोई नहीं लेता है उस चीज़ की।
1: पंजाब के मोगा में महिला किसान मनदीप कौर लोगों के लिए एक मिसाल बनकर उभरी है। उन्होंने हालात की आगे हार मानने के बजाय उससे लड़कर कामयाबी की नई कहानी लिखी है। अपनी मेहनत से परिवार की तकदीर बदली और उन्होंने खेती से होने वाले मुनाफे से न सिर्फ सपनों का मकान बनाया बल्कि 3 ट्रैक्टर, लाखों रुपए की कृषि मशीनरी और एक थार गाड़ी भी खरीदी है। साल 2009 में धान और आलू की खेती से सफर शुरू करने वाली मनदीप कौर आज करीब 30 एकड़ में सिर्फ आलू की खेती करती हैं, बाकी जमीन पर धान, मूंग, सब्जियां और मक्के की फसल उगाती हैं।

0: पंजाब के मोगा जिले के तलवंडी मलिया गांव की रहने वाली मनदीप कौर खैरा की कहानी हर उस इंसान के लिए मिसाल है जो हालातों से हार मान लेता है। क्योंकि साल 2009 में जब मनदीप के घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो मनदीप ने घबराने के बजाय खेतों का रुख किया। खुद के पास अपनी एक इंच जमीन नहीं होने के बावजूद 5 एकड़ जमीन ठेके पर लेकर धान और आलू की खेती से अपने सफर की शुरुआत की। शुरुआत छोटी थी, मुश्किलें बड़ी थी, लेकिन मनदीप ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। खेत में मजदूरों के साथ खुद काम किया, पानी लगाया, खाद डाली, दवाई का छिड़काव किया और फसल की हर जरूरत को खुद समझा। आज की तारीख में मनदीप कौर करीब 40 एकड़ जमीन पर खेती कर रही हैं और खास बात यह है ये पूरी जमीन उन्होंने ठेके पर ली हुई है।
1: कैसे शुरू हुआ ये सफर और कितने एकड़ में खेती करते हैं?
2: सर, हमारे पास आधा एकड़ जमीन थी, उसके बाद हमने धीरे धीरे अपना काम और बढ़ाते बढ़ाते 40 एकड़ पर आए।
1: कितनी देर हो गई खेती करते?
2: खेती करते हमें 10 से 15 साल हो गई।
1: किस किस चीज की खेती करते हैं?
2: सर, हम धान उगाते हैं और कनक, और अभी सब्जियां शुरू की हैं तो आलू की खेती करते हैं, यही करते हैं।
1: अच्छा, ये सारी खेती को आप खुद ही करते हो, कैसे करते हो?
2: हाँ जी, पूरा परिवार मिलके करते हैं, मक्का लगाते हैं।
0: मनदीप कौर की मेहनत से परिवार की तकदीर भी बदली और उन्होंने खेती से होने वाले मुनाफे से न सिर्फ सपनों का मकान बनाया बल्कि 3 ट्रैक्टर, लाखों रुपए की कृषि मशीनरी और एक थार गाड़ी भी खरीदी। सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई करने वाली मनदीप आज अपनी बेटी को नर्सिंग की पढ़ाई करवा रही है और अगला लक्ष्य खेती की कमाई से अपनी खुद की जमीन खरीदना है।
2: धान अच्छा निकल आए तो हमें मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है।
1: तो काफी मशीनरी भी बनाई है आपने खेती को लेके?
2: हाँ जी।
1: क्या क्या मशीनरी बनाई?
2: सर, असी खेती जो 3 ट्रैक्टर बनाए ने, ते अपने कोले गड्डी आ, बाकी घर दा जो भी अपना सामान अपन नु जरूरत हुंदी आ वो सारा अपना खेती तो ही अपना लिया हुआ।
1: कितनी फायदेमंद साबित हो रही है आपके लिए खेती?
2: सर, हजे तक तो देखो अपा ये नहीं कह सकते कि कदे नुकसान नहीं होया, नुकसान भी हुंदा तो फायदा भी हुंदा, जे अपा अपना घर दा काम खुद करांगे तो ओदे नाल अपा नु लाभ भी हुंदा वा।
0: मनदीप कौर की कहानी सिर्फ एक महिला किसान की कामयाबी की कहानी नहीं बल्कि बदलते ग्रामीण समाज की तस्वीर भी है जहां कभी खेती को पुरुषों का काम माना जाता था। साथ ही खेती में कामयाबी सिर्फ जमीन की मिल्कियत से तय नहीं होती बल्कि मेहनत, समझ और जोखिम उठाने के हौसले से तय होती है। मोगा से तन्मय सामंथा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और न्यूज पथ पर थोड़ी देर रुकेंगे ब्रेक प्लाजा पर और ब्रेक के उस पार आपको खेल की खबरें दिखाने के लिए लिए चलेंगे खेल चक्कर में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव
8: मुझ में ही है।
9: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है।
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है।
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
1: देखिए 10 साल की शूटर न्यारा ने रचा इतिहास खेल जगत के, और खबरों को जानने के लिए आइए रुक करते हैं खेल जगत।
2: दिल्ली की शूटर न्यारा शर्मा नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। न्यारा ने 10 साल 3 महीने की उम्र में ये इतिहास रचा है। इस युवा शूटर ने 400 में से 363 का स्कोर हासिल कर 10 मीटर एयर राइफल में अपनी जगह बनाई है। भारतीय हॉकी टीम AHF जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। चीन के मुक्की में खेले जा रहे टूर्नामेंट में पूल ए के आखिरी मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने चीनी ताइपे को 15-0 से हरा दिया। कप्तान अनमोल एक्का ने पेनल्टी कॉर्नर से 6 गोल दागे और टीम को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। हार्दिक पांड्या करीब 5 महीने बाद क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। BCCI ने ऑस्ट्रेलिया ए के भारत दौरे के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान कर दिया है। पांड्या को 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए चुना गया है, लेकिन उनका खेलना फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर करेगा। उन्होंने IPL 2026 के बाद से कोई मैच नहीं खेला है। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इंडिया ए की सीरीज में 2 मल्टी डे और 3 वनडे मैच होंगे। सभी मुकाबले पुडुचेरी में खेले जाएंगे। मल्टी डे मैच 22 सितंबर से शुरू होंगे, जबकि पूरी सीरीज 11 अक्टूबर तक चलेगी।
1: और न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: क्या आपकी खुद की फोटो आपकी समस्याओं को दूर कर सकती है? क्या खुद की फोटो की सहायता से आपको रोजगार और धन का फायदा हो सकता है? क्या खुद की फोटो आपको मुकदमेबाजी से मुक्ति दिला सकती है? आपकी अपनी फोटो से कैसे मिलेगी सफलता, कैसे बनेंगे काम, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: क्या आपकी खुद की फोटो आपकी समस्याओं को दूर कर सकती है? क्या खुद की फोटो की सहायता से आपको रोजगार और धन का फायदा हो सकता है? क्या खुद की फोटो आपको मुकदमेबाजी से मुक्ति दिला सकती है? आपकी अपनी फोटो से कैसे मिलेगी सफलता, कैसे बनेंगे काम, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी शक्ति, रूस की घातक आरवीवी बीडी मिसाइलों से लैस होंगे लड़ाकू विमान सुखोई, 300 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट कर सकेंगे ध्वस्त। जयपुर में गणेश महोत्सव की रौनक, मोती डूंगरी मंदिर में बप्पा, लगाया गया हजारों मोदकों का भोग, चढ़ाए गए मोदकों में 251 किलो, 51 किलो और 21 किलो के मोदक भी शामिल। गणपति उत्सव के रंग में रंगने लगी मुंबई, ऐतिहासिक चिंचपोकली उत्सव मंडल में इस बार भगवान वेंकटेश्वर बालाजी से प्रेरित रूप में दिखेंगे बप्पा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में निकली 26 छड़ियों की भव्य शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की थाप से गूंजा शहर, शोभा यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। आपदा से पहले मिलेगा अलर्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज ने बनाया मोबाइल ऐप आपदा सहायक, पहाड़ी इलाकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है ऐप। प्राकृतिक आपदा के बाद हालात संभालने में जुटे नेपाल को भारत ने भेजी मदद की 8वीं खेप, 35 टन जरूरी सामान को लेकर वायुसेना का विमान काठमांडू रवाना। आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल थोड़ी देर में अपनी नई सीरीज का करेगी खुलासा, भारतीय समुदाय समय के अनुसार रात 10:30 बजे शुरू हो जाएगा एप्पल इवेंट।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की
4: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं हिमालय के महाकुंभ की, उस यात्रा की जो उत्तराखंड की लोक परंपरा और धार्मिक आस्था से गहरी जुड़ाव रखती है और प्रकृति के साथ इंसानी रिश्ते की एक मिसाल है। ये यात्रा वैसे तो देवी नंदा की है, लेकिन 12 साल के अंतराल पर उनकी विदाई मायके से बेटी की तरह की जाती है। कुछ दिन पहले शुरू हुई ये यात्रा अब अलग अलग गांव और पगडंडियों से होते हुए आगे बढ़ रही है, लगातार हर गांव, कस्बे और इलाके में देवी नंदा की डोली का भव्य स्वागत किया जा रहा है, लोकगीत गाए जा रहे हैं और जयकारे लगातार लगाए जा रहे हैं। आज आपको इस बड़ी जात यात्रा की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही देवी नंदा का महत्व, उनकी कहानी भी समझाने की कोशिश करेंगे। हिमालय के ऊंचे शिखर पर इस यात्रा का समापन होता है, लेकिन उससे पहले यात्रा के अहम पड़ाव और उनसे जुड़ी कहानियां भी सुनाएंगे आपको। हिमालय की वादियों में इन दिनों आस्था का एक ऐसा सफर चल रहा है जिसमें देवी को सिर्फ पूजा नहीं जाता बल्कि बेटी मानकर विदा किया जाता है। करीब 280 किलोमीटर की इस यात्रा को दुनिया की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा माना जाता है, जिसमें देवी नंदा की डोली के साथ श्रद्धालु ऊंचे पहाड़ की मुश्किल चढ़ाई करते हैं। इस वक्त देवी नंदा की 3 डोलियां सभी गांवों से होकर गुजर रही है। 12 साल बाद होने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में पूरा पहाड़ शामिल होता है। ये यात्रा परंपरा की है, प्रकृति के साथ रिश्तों की है और उस अटूट विश्वास की भी है जो सदियों से देवभूमि की पहचान बना हुआ है।

बादलों से घिरे हिमालय के शिखरों पर यूं तो मौन का बसेरा है, पर गौर से सुनिए, हरे जंगलों के साए में गुजर रही पगडंडियों पर उत्सव का संगीत गूंज रहा है। इन गीतों में पहाड़ों की सामूहिक आस्था है, प्रार्थना है, जीवंत संगीत है। और सदियों से प्रकृति के साथ चले आ रहे पारिवारिक रिश्ते की एक खूबसूरत कहानी है, जिसमें पहाड़ों की देवी सिर्फ देवी नहीं है बल्कि बेटी है, जिसकी मायके से विदाई हो रही है।

0: बेटी ससुराल जा रही है तो खुशी लाजमी है, पर मन उदास भी है और आंखों में नमी भी है। बेटी बहन की तरह विदा करते हुए देवी माँ से गांव समाज परिवार सभी के लिए आशीर्वाद मांगा जा रहा है और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। देवभूमि की आराध्य देवी माँ नंदा की विदाई में पूरा पहाड़ साथ चल रहा है। गांव से निकली उनकी डोली गांव कस्बे जंगल बुग्याल और दुर्गम हिमालय को पार करते हुए हेमकुट जा रही है, लेकिन अभी तो सफर शुरू हुआ है। चमोली के सिद्धपीठ करूर से जो माँ नंदा का मायका माना जाता है, इस यात्रा की 5 सितंबर को शुरुआत हुई। पदार दशोली और बन की 3 डोलियां कैलाश के लिए रवाना हुई, जो अलग अलग गांव से होते हुए अपने पड़ाव की तरफ बढ़ रही हैं। 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर गांव-गांव माँ नंदा की डोलियां पहुंच रही हैं और उनके स्वागत में लोकगीतों जागरों और ढोल दमाओं की थाप से पहाड़ों की वादियां गूंज रही हैं। जिस तरह बेटी की विदाई के अवसर पर मंगल गीत गाए जाते हैं, डोली के गांव में पहुंचते ही महिलाएं गीत और जागर गा रही हैं। हर रास्ते हर चौक पर भक्ति भाव से मां नंदी की डोली का स्वागत नृत्य संगीत और जयकारे से हो रहा है। बड़े बुजुर्ग हों या फिर बच्चे, इस अद्भुत धार्मिक यात्रा में सभी शामिल हैं और नाचते झूमते गाते डोली के संग चल रहे हैं, क्योंकि ये अवसर हर साल नहीं आता। इसीलिए ये जोश, ये भावना और ये भक्ति स्वाभाविक है।
1: माता को अपनी माँ मान के साक्षी मान के हम उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और हम माता से यही विनती करेंगे, माता हम सबकी रक्षा करे और सारे प्रदेश देशवासियों की रक्षा करे और माता की कृपा हम सब भी भक्तों पे बनी रहे।
2: जय माता दी, जय मां नंदा। आज की यात्रा बड़ी अच्छी रही है। इससे पहले 12 साल पहले हुई थी, उससे अब बेटर हो रही है और हम लोग माता जी का बड़ा स्वागत कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपनी बिटिया के तरह इनको विदा कर रहे हैं और माँ हम लोगों का सब पे आशीर्वाद बना रहे हैं।
3: बहुत ज़्यादा उत्साह है, हम इसको बहुत मानते हैं अपनी बेटी की तरह और हम इसको रोज़ विदा करते हैं, वहाँ तक तो पहुँचाते हैं जहाँ मंदिर है ऊपर सीमल देवी मंदिर, और इसको हम बहुत भव्य दृष्टि से देखते हैं और मनाते हैं।
4: सबसे पहले जो हमारी कुरूड़ से माँ नंदा का आगमन हुआ बंड क्षेत्र में, तो सबसे पहले हमारे पूरे गांव का भ्रमण करती है, दूसरे में एक एक दिन पड़ाव भी रहता है उनका, और उसके बाद हम लास्ट में जाएंगे अपना बंड भूमियाल का मंदिर है और वहां से हमारी जो है 11 बजे करीबन हम कैलाश के लिए हमारी माता प्रस्थान करेगी।
0: देवी नंदा को लेकर पहाड़ों में कई कथाएं हैं। लोक परंपराओं में उन्हें हिमवंत और मोणावती की बेटी और भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती का रूप माना जाता है, लेकिन कहीं नंदा को नंद महाराज की बेटी के रूप में भी याद किया जाता है तो कहीं उन्हें राजा भानु प्रताप की पुत्री बताया जाता है। कहानी है कि नंदा एक राजकुमारी थी जिनसे एक राक्षस राजा जबरन विवाह करना चाहता था, लेकिन नंदा ने भागकर पहाड़ की शरण ले ली, उसी चोटी पर जिसे अब हम उनके नाम से जानते हैं। बर्फ और रहस्य से ढकी पहाड़ियां उनका शाश्वत आश्रय बन गई। लोक कथाओं में पूजित मां नंदा उत्तराखंड की, उन्हें राजा भानु प्रताप की पुत्री बताया जाता है। कहानी है कि नंदा एक राजकुमारी थी

जिनसे एक राक्षस राजा जबरन विवाह करना चाहता था, लेकिन नंदा ने भागकर पहाड़ की शरण ले ली, उसी चोटी पर जिसे अब हम उनके नाम से जानते हैं। बर्फ और रहस्य से ढकी पहाड़ियाँ उनका शाश्वत आश्रय बन गई। लोक कथाओं में पूजित माँ नंदा उत्तराखंड की 280 किलोमीटर की ये तीर्थ यात्रा पहाड़ों की सामूहिक धार्मिक आस्था की प्रतीक बन जाती है, इसीलिए तो इसे हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। ये यात्रा है जो हिमालय की ऊंची घाटियों से होकर नंदा देवी के घर तक पौराणिक यात्रा के मार्ग का अनुसरण करती है। तीन हफ्तों ये जो चार सींगों वाला मेढ़ा है इस यात्रा की अगुवाई करता है और मान्यता ये है कि मेढ़ा देवी द्वारा ही ये भेजा जाता है। चार सींग वाला चौसिंगा खाडू इस यात्रा की पहचान है। लोक विश्वास के अनुसार यात्रा से पहले इनका जन्म होता है और इसकी विशेष देखभाल की जाती है। आगे चौसिंगा खाडू और पीछे नंदा की डोली और फिर श्रद्धालुओं का कारवां। जब यात्रा हेमकुंड पहुंचती है तब खाडू की भी विदाई होती है। नंदा के वस्त्र और आभूषण उसके ऊपर रखे जाते हैं। श्रद्धालु उसके माथे पर अक्षत और चंदन लगाते हैं और मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि वो नंदा को सुरक्षित ससुराल पहुंचाए। लेकिन आखिरी पड़ाव आने में अभी देरी है, अभी तो डोलियां गांव-गांव जा रही हैं। निरंतर

0: और सिंगा खाड़ू और पीछे नंदा की डोली और फिर श्रद्धालुओं का कारवां। जब यात्रा हेमकुंड पहुंचती है तब खाड़ू की भी विदाई होती है। नंदा के वस्त्र और आभूषण उसके ऊपर रखे जाते हैं। श्रद्धालु उसके माथे पर अक्षत और चंदन लगाते हैं और मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि वो नंदा को सुरक्षित ससुराल पहुंचाए। लेकिन आखिरी पड़ाव आने में अभी देरी है। अभी तो डोलियां गांव-गांव जा रही हैं।
1: निरंतर ये यात्रा हमारी जो चल रही है तो प्रत्येक गांव का भ्रमण किया जा रहा है और हमारी माँ बहने अपनी कोई बेटी के रूप में कोई माँ के रूप में।
0: श्रद्धालु उसके माथे पर अक्षत और चंदन लगाते हैं और मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि वो नंदा को सुरक्षित ससुराल पहुंचाए। लेकिन आखिरी पड़ाव आने में अभी देरी है।

0: कुरूर से निकलने के बाद नंदा की यात्रा धीरे धीरे गांव से आगे बढ़ रही है। हर पड़ाव के साथ यात्रा का आकार बढ़ता जा रहा है। कहीं जागर लगे हैं, कहीं लोग भी गूंज रहे हैं। नंद केसरी में अलग अलग क्षेत्रों से देवी देवताओं की डोलियां और चंतोलियां पहुंचती हैं, जहां कुरुड़ की नंदा भी आकर मिलती हैं। लेकिन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है वाणगांव। यात्रा 15 सितंबर को यहां पहुंचेगी, जहां देवी नंदा का मिलन उनके धर्म भाई लाटू देवता से होगा। लोक परंपरा में लाटू को नंदा का चचेरा या धर्म भाई माना गया है। वाण के बाद यात्रा ऊंचाई की ओर बढ़ती है और सामने आता है वेदनी बुग्याल, जहां ठंड बढ़ जाती है और सांसों पर ऊंचाई का असर महसूस होने लगता है। लेकिन यात्रियों के कदम नहीं रुकते। फिर आती है एक जगह पातर नचौड़िया। कहानी है कि उज्जैन के राजा यश धवल ने जब यात्रा की थी तो यहाँ पर नृत्य का आयोजन हुआ था। इससे देवी नाराज हो गईं और नर्तकियों को पत्थर में बदल दिया, इसीलिए नाम पड़ा पाथर या पातर नचौड़िया। इसके बाद यात्रा पहुँचती है रूपकुंड। ऊंचे हिमालय में मौजूद ये झील मानव कंकालों के कारण मशहूर है। कंकालों की कहानी भी राजा यश धवल से जुड़ी है, जिन्होंने यात्रा के नियम भंग किए और देवी के कोप से उनका परिवार और साथी संगी मारे गए। लोक विश्वास है कि ये कंकाल उनके ही हैं। यात्रा का अंतिम पड़ाव है होमकुंड, जहां पहुंचकर मानंदा अपनी मायके की अंतिम सीमा पार करती है। 20 सितंबर को होमकुंड में पूजा और हवन होगा। देवी नंदा के वस्त्र और आभूषण चौसिंगा खाड़ू के ऊपर रखे जाएंगे और खाड़ू की विदाई होगी। इसके बाद साथ गए लोग वापस लौटने लगते हैं। लेकिन अभी तो यात्रा आधी भी नहीं हुई है, अभी तो पहाड़ों में रौनक है, उत्सव है। गांव में एक बार फिर चहल पहल लौट आई है। वर्षों से बंद पड़े घरों के ताले खुल गए हैं, क्योंकि प्रवासी परिवार अपने गांव लौट आए हैं। नंदा देवी की यात्रा यहां के लोगों की जड़ों और अपनी माटी से जोड़ती है। मेहमान आए हैं, इसलिए उनके लिए सामूहिक भोजन की व्यवस्था की गई है।
1: भगवती नंदा खुद राजा राजेश्वरी है और कामाख्या खुद राजा राजेश्वरी का ही स्थान है, तो माई की प्रेरणा से ही मैं मैया के साथ आया हूँ। और मूल रूप से मान लीजिए कि भगवती हमारी माँ है और राजराजेश्वरी भगवती यहाँ की बेटी है, तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मैं अपने मामा के वहाँ हूँ, और जैसे मामा के वहाँ सबको प्यार मिलता है वैसा ही प्यार मुझे यहाँ पर मिल रहा है।
0: पहाड़ों की ये यात्रा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये ठीक ठीक कोई नहीं जानता। हाँ, ये जरूर है कि लोक कथा और परंपरा के दम पर ये विरासत आगे बढ़ती जा रही है। इसका महत्व सिर्फ गढ़वाल तक नहीं है, बल्कि कुमाऊं में भी नंदा सुनंदा की पूजा और मेलों की परंपरा है। फिलहाल लोकगीतों की स्वर लहरियों, जागरों की गूंज और ढोल दमाओं की थाप पर यात्रा गांव के पगडंडियों से गुजर रही है। चेहरे पर उत्सव की उमंग है और आंखों में विदाई के आंसू।
2: चमोली जनपद में 12 वर्षों के बाद मां नंदा की डोली इस समय नंदा देवी बड़ी जात की यात्रा इस समय चल रही है। ये डोलियां हैं जो इस समय यहां से अलग अलग पड़ाव से अलग अलग गांव होते हुए आगे बढ़ रही हैं। इसके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं जो श्रद्धालु हैं वो चल रहे हैं जय मां नंदा। और बड़ी जात क्योंकि 12 वर्षों के बाद ये हो रही, तो बड़ा उत्साह हर गांव, हर पड़ाव, हर जगहों पे इस समय देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु जो हैं बड़े उत्साह के साथ यहां पे देखने को मिल रही हैं, हर कोई मां नंदा के जयकारों के साथ, क्योंकि 12 वर्षों के बाद ये यात्रा हो रही है। हर वर्ष लोकजात यात्रा होती है, अगले वर्ष नंदा देवी राजजात यात्रा होनी है। ऐसे में जो उत्साह है 12 वर्षों का, जो भक्त और भगवान की दूरियां हैं वो इस वर्ष 12 वर्षों के बाद हो रही है। ऐसे में तीन जो डोलियां हैं, नंदा देवी मंदिर जो सिद्धपीठ मंदिर है, कुरूर से निकली थी अलग अलग रास्तों से, ये होमकुंड जो वाण के बाद आएगा जहाँ पे इसका पूरा समापन होगा, ये सारी डोलियां एकत्रित होकर एक साथ निकलेंगी। ऐसे में जो मानंदा की 12 वर्षों के बाद ये जो बड़ी जात यात्रा हो रही है, इसमें बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। चाहे नंदा देवी की

0: डोली हो, महाराजा जेश्वरी की डोली हो, अलग अलग पड़ाव पे इस समय लगातार जा रही हैं। हर गांव में हर जगहों पे स्वागत हो रहा है, क्योंकि कई घर ऐसे हैं जिन पे ताले लग जाते हैं, लेकिन माँ नंदा की जब यात्रा होती है तो वो ताले इस समय खुल जाते हैं। हर कोई इस समय माँ नंदा के लिए एक गाँव से दूसरी गाँव, क्योंकि माँ नंदा को जो विदा करने का वो है, वो हर कोई अपनी बेटी की तरह विदा करता है। हर कोई माँ नंदा जो यहाँ की आराध्य देवी है उसे अपनी बेटी की तरह समझता है। इस समय विदाई जब एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो आधे रास्ते तक उस गांव के लोग आते हैं, आधे रास्ते तक उस गांव के लोग उन्हें लेने आते हैं जहाँ आज उनका पड़ाव होगा। अंत में ये होमकुंड रहेंगे, बेदनी और रूपकुंड से ऊपर होमकुंड तक 12 वर्षों के बाद ये डोली यात्रा जाती है। हर वर्ष भले ही लोग जाती है, लेकिन ये 12 वर्षों के बाद जो यात्रा जा रही है वो होमकुंड तक जाएगी। वहीं पे इसका समापन होगा और उसके बाद ये यात्रा समाप्त होगी। 12 वर्षों के बाद एक बार फिर से माँ नंदा की यात्रा चल रही है, तो ऐसे में हर कोई उत्साहित दिखाई दे रहा है। कमलनंदन सिलोड़ी, चमोली, GNT।
1: अब बात करते हैं बप्पा की। जयपुर में गणपति की भक्ति का रंग इस बार कुछ ऐसा चढ़ा है कि बप्पा के दरबार में मिठास भी विशाल हो गई है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में 502 किलो के दो विशाल मोदक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, तो कहीं पर हजारों लड्डुओं से भोग की तैयारी की जा रही है। पुष्य नक्षत्र का विशेष अभिषेक, सिंजारे का श्रृंगार और फिर गणपति जन्मोत्सव की तैयारियां, यानी 9 दिनों तक जयपुर में आस्था उत्सव और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिलेगा।

0: मोदक सामने है, मुख पर मुस्कान है और भक्तों की नजरें बस अपने विघ्नहर्ता पर टिकी हैं। मोदक के बीच गणपति विराजमान है। बड़े मोदक, छोटे मोदक, हर आकार में बप्पा के प्रिय भोग की तैयारी है। 251-251 किलो के दो विशाल मोदक, यानी कुल 502 किलो के मिठास और इनके आसपास सजे सैकड़ों दूसरे मोदक, मानो गणपति के दरबार में भक्ति ने खुद मिठास का रूप ले लिया हो। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में आज सजी ये खास झांकी गणेश महोत्सव का ऐसा आकर्षण बनी है, जिसे देखने सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। 502 किलो के इन दो विशाल मोदकों के साथ 51-51 किलो के 5 मोदक, 21-21 किलो के 21 मोदक और 1.25 किलो के 1100 मोदक भी तैयार किए गए हैं। यही खत्म नहीं होती भोग की ये भव्यता। गणेश चतुर्थी तक करीब 2,41,000 छोटे लड्डू भी बप्पा को जिमाए जाएंगे। बप्पा के दरबार में लगभग 2.5 लाख लड्डुओं का भोग करीब 15,000 किलो सामग्री से तैयार किया जा रहा है। यानी मोती डूंगरी में इस बार गणपति के लिए भोग भी खास है और उसका पैमाना भी खासा विशाल।
1: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, यही जयकारे हैं जो आने वाले कुछ दिन तक हर मंदिर में समय पे पूरे देश भर में सुनाई देने वाले हैं, क्योंकि गणेश उत्सव शुरू हो चुका है। और जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में मैं भी मौजूद हूँ, जहाँ आज मोदक झांकी लगाई गई है। 15,000 किलो सामग्री से बनाए हुए ये 2.5 लाख मोदक भगवान गणेश जी महाराज को जिमाए जा रहे हैं, उनको अर्पित किए गए हैं। और आज के दिन ये जो मोदक झांकी है, ये आम मोदक नहीं है। इस मोदक झांकी में करीब 251 किलो के 2 मोदक यहाँ पे गणेश जी महाराज को अर्पित किए गए हैं। साथ ही साथ में 51-51 किलो के 5 मोदक, 21-21 किलो के 21 मोदक, 1.25 किलो के करीब 1100 मोदक और उसके अलावा जो छोटे छोटे मोदक हैं वो करीब 2,41,000 यहाँ पे अर्पित किए गए हैं, सभी भक्तों में भी बांटे जा रहे हैं। सामग्री की मैं बात करूं तो इन मोदकों को बनाने के लिए करीब 2500 किलो शुद्ध घी की सामग्री इस्तेमाल हुई है, 3000 किलो बेसन इस्तेमाल हुआ है, 9000 किलो शक्कर और करीब 500 किलो सूखे मेवे जो है वो इस्तेमाल किए गए।
0: दोपहर 1:30 से 2 बजे तक आधे घंटे के लिए पट मंगल रहेंगे, इसके बाद फिर भक्तों के लिए कपाट खुलेंगे। जन्मोत्सव पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए इस बार व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहली बार महिलाओं के लिए अलग दर्शन लाइन होगी, 6 प्रवेश और 8 निकास द्वार रखे गए हैं, होल्डिंग एरिया भी बढ़ाए गए हैं। बुजुर्गों और निशक्त जनों के लिए 100 ई रिक्शा, 4 इलेक्ट्रिक लो फ्लोर बसें और व्यवस्थाओं को संभालने के लिए करीब 500 स्वयंसेवक तैनात रहेंगे। तो मोदकों से सजा ये दरबार अभिषेक की पवित्रता से होकर सिंजारे के श्रृंगार तक पहुंचेगा, फिर जन्मोत्सव की खुशियों में खिलेगा और आखिर में शोभा यात्रा बनकर पूरे जयपुर को अपने रंग में रंग देगा। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी शक्ति, रूस की घातक RVV BD मिसाइलों से लैस होंगे लड़ाकू विमान सुखोई 300 किलोमीटर

0: दूर मौजूद टारगेट होंगे ध्वस्त। जयपुर में गणेश महोत्सव की रौनक, मोती डूंगरी मंदिर में बप्पा लगाया गया, उनको हजारों मोदकों का भोग चढ़ाए गए। मोदकों में 251 किलो, 51 किलो और 21 किलो के मोदक भी शामिल। गणपति उत्सव के रंग में रंगने लगी मुंबई। ऐतिहासिक चिंचपोकली उत्सव मंडल में इस बार भगवान वेंकटेश्वर बालाजी से प्रेरित रूप में दिखेंगे बप्पा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में निकली 26 छड़ियों की भव्य शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की थाप से गूंजा शहर, शोभा यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। पहाड़ी इलाकों में अब आपदा से पहले मिलेगा अलर्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज ने बनाया मोबाइल ऐप आपदा सहायक। प्राकृतिक आपदा के बाद हालात संभालने में जुटे नेपाल को भारत ने भेजी मदद की आठवीं खेप, 35 टन जरूरी सामान लेकर वायुसेना का विमान काठमांडू हुआ रवाना।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
0: जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आज हजारों लाखों मोदकों से खास झांकी सजाई गई। सुबह 5 बजे से भक्त भगवान गणेश कर रहे दर्शन। गणेश जी की झांकी में 251 किलो के दो विशाल मोदक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र, साथ ही 51 और 21 किलो के मोदक भी शामिल। गणेश चतुर्थी तक भगवान को करीब 2.5 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। मोदक बनाने में 250 किलो घी, 3000 किलो बेसन, 1000 किलो शक्कर और 500 किलो सूखे मेवे का इस्तेमाल हो रहा है। पुष्य नक्षत्र पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश जी का विशेष अभिषेक हुआ। 348 किलो पंचामृत से भगवान का अभिषेक करके पूजा अर्चना की गई। पाली में गणपति उत्सव की तैयारियां तेज, अनुमान है कि इस बार शहर में 5000 से ज्यादा प्रतिमाएं स्थापित होंगी। पाली में गोबर मिट्टी और पीओपी से गणपति की प्रतिमाएं हो रही हैं तैयार, भक्त अपनी पसंद और पर्यावरण का ध्यान में रखकर खरीद रहे मूर्तियां। मूर्तिकार गणपति की प्रतिमाओं को रंगों और खास डिजाइन से सजा रहे हैं, कहीं गोल्डन मुकुट तो कहीं पर शिव के प्रतीकों को सजाएगा। मिट्टी से बनी छोटी गणपति प्रतिमाएं भक्तों को खूब पसंद आ रही हैं, घर में आसानी से स्थापना और विसर्जन के लिए उपलब्ध। गणपति उत्सव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए। बाली में उत्सव का माहौल, जल्द ही शहर के कई सर्किलों पर प्रतिमाओं का बाजार सजेगा। मुंबई में चिंचपोकली चिंतामणि मंडल में बप्पा का हो चुका है आगमन, ढोल ताशों और जयकारों की गूंज। इस बार चिंतामणि गणपति की सजावट तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर से प्रेरित है, मूर्ति के गरुण शंख और चक्र जैसे धार्मिक प्रतीक भी नजर आए। इस बार पंडाल में ऊंचे गोपुरम और पारंपरिक नक्काशी देखने को मिलेगी, श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के मंदिर जैसा भव्य माहौल मिलेगा। साल 1920 में शुरू हुआ चिंचपोकली मंडल इस बार 107वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आयोजन को खास बनाने के लिए सैकड़ों स्वयंसेवक दिन रात जुटे। लालबाग, परेल और गिरगांव की सड़कों पर बप्पा के स्वागत करने के लिए भारी संख्या में उमड़े भीड़। गणेशोत्सव से पहले मुंबई में उत्सव का रंग। गुजरात के आणंद में बप्पा का जबरदस्त स्वागत, राजा गणराज 2026 की आगमन यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ देखने को मिली कई आकर्षक प्रस्तुतियां, बच्चों के लिए अलग अलग लोकप्रिय कार्टून भी नजर आए। यात्रा में भक्ति के साथ साथ रोमांच और शौर्य का भी शानदार संगम, छावा एक्ट ने लोगों का दिल जीता। अग्निहर्ता की शानदार आगमन यात्रा में महिला शक्ति की भी देखी अद्भुत झलक, महिलाओं ने पेश की रोमांचक प्रस्तुतियां। हर तरफ एक सुनाई दिया गणपति बप्पा मोरिया का जय घोष। राजस्थान के सीकर में बिखरे उत्सव के रंग, शानदार भादो अमावस्या मेले का हुआ भव्य शुभारंभ। राजस्थान समेत कई दर्जन से ज्यादा प्रांतों के लोग पहुंच रहे हैं फतेहपुर शेखावाटी। इस उत्सव पर मां के दरबार की पूरे से हुई भव्य सजावट। 11 सितंबर तक आयोजित होगा 5 दिवसीय भादो अमावस्या उत्सव मेला। इस मेले में अपनी कुलदेवी को धूप लगाते हैं भक्त। चमोली के हिमालय अंचल में देखिए लोक आस्था, संस्कृति और परंपरा की अद्भुत झलक। जगह जगह लोक गीतों से हो रहा भव्य यात्रा का स्वागत, पहाड़ी संस्कृति के रंग। कोरोना सिद्धपीठ मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान करने के बाद अपने अपने निर्धारित पड़ावों के लिए कैलाश की ओर रवाना हुई बधाण की नंदा। गांव गांव पहुंच रही है डोलियां, उनके स्वागत में लोकगीत गाए जा रहे हैं। पहाड़ में केवल देवी नहीं बल्कि घर की बेटी और बहन के रूप में पूजी जाती है मां नंदा। जम्मू कश्मीर में फिर से लगा आस्था का मेला। डोडा जिले की भदरवा घाटी में वार्षिक 3 दिवसीय प्राचीन कैलाश कुंड यात्रा। इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु हो रहे हैं शामिल। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में स्थित कैलाश कुंड झील में भक्त करेंगे स्नान। 10 सितंबर से शुरू होगी वापसी यात्रा। 15 सितंबर से शुरू होने जा रही है चार धाम यात्रा का दूसरा चरण। प्रशासन और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तैयारियां तेज। दूसरे चरण के लिए फिर से शुरू हो रही है केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं। सहारनपुर में 26 छड़ियों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजी और ढोल नगाड़ों के साथ श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। गोगा महाड़ी मेले की तैयारियां हो गई तेज। सहारनपुर में 21 सितंबर से 3 दिन तक लगेगा मेला। 26 छड़ियों की खास श्रृंगार श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र। हर छड़ी के श्रृंगार पर परिवार करीब 2 से 3 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हैं। गोगा महाड़ी मेले की परंपरा करीब 1114 साल पुरानी मान्यता है कि जावीर गोगा जी का सहारनपुर से खास धार्मिक संबंध रहा है। मेले में कई राज्यों से पहुंचेंगे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल से जाने वाले श्रद्धालु। नेपाल जैसी तबाही से पहले अब मिलेगा अलर्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाई आपदा सहायक ऐप। भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ का खतरा पहले से ही मिले रहे।

0: भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी शक्ति, रूस की घातक आरवीवी बीटी मिसाइलों से लैस होंगे लड़ाकू विमान, सो कोई 300 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट कर सकेंगे ध्वस्त। 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, श्रीलंका में बैली ब्रिज लगाने के लिए तैनात भारतीय सेना के इंजीनियरिंग टास्क फोर्स से मुलाकात। संवाद के दौरान भारतीय सेना की इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के कार्यों और योगदान को सराहा। कोलंबो में राजनाथ सिंह ने श्रीलंका के नेता रजित के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पिछले 38 वर्षों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री का यह पहला आधिकारिक दौरा। उत्तर प्रदेश में सरकारी डॉक्टर्स के लिए तोहफा, 70 साल की उम्र तक सरकारी डॉक्टर्स दे सकेंगे सेवा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ग्रामीण महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर, जैविक आचार और जैम कर रही हैं तैयार। कृषि विभाग की और स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से महिलाएं पारंपरिक नुस्खे सीख रही हैं। कश्मीरी कारीगर सजे हुए हैं, वाद्य यंत्र बनाने में पारंपरिक और प्राचीन कला पिछले 32 सालों से दे रहे हैं सेवाएं। हर वाद्य यंत्र को बनाने में कारीगर मुश्ताक अहमद दार को लगते हैं लगभग 2 महीने। ओडिशा के बालासोर जंगल में 5 नन्हे ओरंगटान मिले हैं, नंदनकानन चिड़ियाघर लाकर इलाज शुरू किया गया। ओरंगटान भारत के जंगलों में नहीं पाए जाते हैं, ऐसे में 5 बच्चों के साथ मिलना बड़ा सवाल। रेस्क्यू किए गए 5 ओरंगटान को अलग अलग रखा गया है। अधिकारियों के मुताबिक ओरंगटान के बच्चे काफी छोटे। नंदनकान में ओरंगटान के बच्चों को केले, सेब और रमेश किए गए आलू पेश किए गए। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय पोषण माह के शुभारंभ किया। योगी ने युवा को बताया देश का असली ताकत। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नवजात बच्चों का अन्नप्राशन कराया, राधा कृष्ण की वेशभूषा में नजर आए बच्चे। देहरादून में ज्ञान गंगा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। आयोजन में मुख्यमंत्री धामी ने शिक्षकों को सम्मानित किया। कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में देश की सबसे बुजुर्ग बाघिन महक पर होगी रिसर्च, 23 साल की महक के जीवन पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री। पीलीभीत में खुलेगा देश का दूसरा बासमती और पहला जैविक प्रशिक्षण केंद्र। सिर्फ किसानों के खेत तक का सीमित नहीं रहेगा ये केंद्र, ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। रुद्रप्रयाग में एक पुस्तक दान करें, ज्ञान का वृक्ष लगाया नाम से हुई शुरुआत। नेपाल में बाढ़ में सड़कें पुल टूट गए तो सेना ने ड्रोन से राहत सामग्री पहुंचाई। नेपाल के भारी ड्रोन एक उड़ान में 60 किलो तक का सामान उठा सकते हैं। बाढ़ में हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में जुटे हुए हैं, इसलिए ड्रोन मदद में आगे बढ़ रहे हैं। मंगलवार को ड्रोन ने 281 किलो राहत सामग्री नदी के पार पहुंचाई, इसमें खाना दवाएं तमाम समेत सामग्री। नेपाल सेना पहली बार इतने बड़े स्तर पर भारी ड्रोन कर रही है इस्तेमाल। कटिहार में बाढ़ के बीच अनोखी तस्वीर, नाव पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंची बारात, बाढ़ भी नहीं रोक पाई ने कहा कि खुशियां। भागलपुर में बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी, दीपक आनंद ने राहत के कामों में जायजा लिया। तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी का पानी बढ़कर हुआ 9,200 क्यूसेक। तूतुकुड़ी में देखे साइबेरियाई से आए खूबसूरत पक्षी। चीन की पीली नदी में पानी अचानक बढ़ गया, हुकाऊ और झरने का नजारा भयानक। कई छोटी नदियों का पानी पीली नदी में आ गया, इससे झरने का बहाव तेज हो गया। तेज बहाव के चलते मुख्य और सहायक झरने आसपास से मिल गए। चीन के हुआऊ झरने को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। हुकाऊ वॉटरफॉल चीन की पीली नदी पर बना हुआ है। मर्लिन स्ट्रीप ने द डेविल वियर्स प्रॉडक्ट के कपड़ों की कर दी शुरुआत नीलामी। नीलामी में मर्लिन स्ट्रीप की पहनी हुई जैकेट सबसे ज्यादा खास चीजों में शुमार, फिल्मी मिरांडा प्रीस्टली के किरदार में नजर आएंगी। एमिली ब्लंट का पहना हुआ एक खास बोन कफ भी नीलामी में है शुमार, इसकी कीमत 20,000 से 30,000 डॉलर। नीलामी में रेड कार्पेट और मैगजीन शूट के कई मशहूर कपड़े भी इसमें शामिल हैं। क्रिस्टीज की ये ऑनलाइन नीलामी अभी चल रही है, लोग 15 सितंबर तक के अन्य खास फैशन आइटम्स पर बोली लगा सकते हैं। शंघाई में इंसानों जैसा दिखने वाला रोबोट एल्फ श्वान 2.2 खींच रहा है सभी का ध्यान। चीन में बने इस रोबोट का चेहरा बिल्कुल हूबहू इंसानों की तरह नजर आता है, ये खुशी हैरानी और दूसरे तमाम एक्सप्रेशंस देता है। शंघाई के एक कार्यक्रम में इस खास रोबोट को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े, लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी है इस बात पर कि ये बिल्कुल इंसानों की तरह बर्ताव करता है। ये रोबोट सिर्फ चलता फिरता नहीं है बल्कि ये सामने वाले के हिसाब से भाव भी बदल देता है, इसके चेहरे में कई छोटे छोटे सिस्टम्स लगाए गए हैं। इंसान जैसी शक्ल और भावना वाला ये रोबोट अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ, सैकड़ों तरह के चेहरे के भाव भाव देता है। चीन के जियांगसू शहर में रोबोट पब्लिक सिक्योरिटी एक्सपो का आयोजन किया गया, रोबोट ट्रैफिक पुलिस से लेकर रोबोट पैराट्रॉक्स शामिल हुए। एक्सपो में 100 से ज्यादा कंपनियां शामिल हुई हैं। 5 दिनों तक चलेगा यह कार्यक्रम, पब्लिक सिक्योरिटी और पुलिस उपकरण शामिल है। यह एक्सपो बना पब्लिक सिक्योरिटी गवर्नेंस को दर्शाने वाला शानदार प्लेटफॉर्म। कुल 13,000 वर्ग मीटर के एरिया में फैला हुआ है एक्सपो।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: बात करेंगे गणेश उत्सव से पहले भक्ति के दिव्य नजारों की। गणेश उत्सव के आगमन में अब चंद दिन बाकी रह गए। महाराष्ट्र समेत देश भर में शहर शहर गणेश उत्सव की तैयारियां तेज चल रही हैं। कहीं भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, तो कहीं पर मोदक तैयार किए जा रहे हैं। भक्त धूमधाम के साथ पप्पा की मूर्तियां ले जा रहे हैं, यहां तक कि जेल में बंद कैदियों ने भी पप्पा की मूर्तियां मनाई है।
6: बापा की प्रतिमा से लाल कपड़ा के हटते ही पूरा वातावरण गणपति के जयकारों से गूंज उठा। गणपति की इस भव्य प्रतिमा को देखते ही भक्त भाव विभोर हो उठे और इनके स्वागत में जमकर आतिशबाजी और फायर शो किया गया। गणेश उत्सव को लेकर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में कुछ ऐसी ही भव्य छटा देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें अकोला के चिंतामणि बापा के आगमन की हैं। ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर झूमते हुए भक्त जब भगवान गणेश की इस दिव्य प्रतिमा को लेकर सिविल लाइन चौक पहुंचे, तो पूरा वातावरण भक्ति के रंगों से सराबोर हो गया। 30 फीट ऊंची चिंतामणि गणपति बापा की प्रतिमा से जैसे ही लाल कपड़ा हटाया गया, तो अपने आराध्य के दर्शन कर भक्त खुशी से झूम उठे।
7: यहाँ पर चिंतामणि के दर्शन करने के लिए छोटे बाल जैसा है जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और सत्य है मात यही है, ये चिंतामणि के आगमन के लिए यहाँ पर आए तो बोले बड़ी तरीके से लोग के साथ यहाँ पर तो बोल दाता के साथ जो है यहाँ पर अपने भक्तों की अकोला के सभी लोग है, सभी लोगों का जो उम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भक्ता का जो स्वागत है मूर्ति और चिंतामणि को सभी की चिंता हारने वाला है। किसानों की जो चिंता बची है कि बारिश की आ रही है, चिंता और सभी लोगों की चिंता हारने वाला चिंतामणि का ये स्वागत यहाँ पर किया गया है।
6: बापा के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों में सेल्फी और वीडियो बनाने को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। हर कोई इस खास पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने के लिए बेताब दिखा। छोटे छोटे बच्चे भी बापा के चरणों में माथा टेकते और आशीर्वाद लेते दिखाई दिए।
8: बापा आने के बाद सब आगमन में जो होता है तो उसमें सब विघ्न दूर हो जाते हैं, और ये चिंतामणि है मन की सब चिंता दूर कर देता है।
6: महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी गणेशोत्सव की भव्य तैयारी चल रही है और बापा का आगमन भी हो रहा है। गुजरात के आनंद में ब्लॉकबस्टर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित भगवान गणेश के आगमन यात्रा में सड़कों पर भक्तों का सैलाब दिखाई दिया। विद्यानगर के शास्त्री मैदान बस स्टैंड से शुरू हुई इस यात्रा में भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ कई आकर्षक प्रस्तुतियां भी देखने को मिली। छावा नृत्य, हैरत अंगेज होला हो पिस्टंट्स और कलाकारों ने पारंपरिक शस्त्र कला का प्रदर्शन भी किया। इस यात्रा में अलग अलग लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर्स भी दिखाई दिए, जिसे देखकर बच्चे खुशी से भर उठे।
9: हमने अलग अलग प्रकार के 13 इवेंट रखे थे, जिसमें नरसिम्हा एक्ट थे, मणिकर्णिका एक्ट थे, ऐसे बहुत सारे एक्ट हमने हमारे हिंदू धर्म संस्कृति का एक अच्छा संदेश लोगों के सामने पहुंचे वो भी ध्यान रखा था। वो उस प्रकार से कुछ अच्छा आयोजन किया था जिसमें समाज को कुछ अच्छा जानने का अवसर मिले।
6: छत्तीसगढ़ के रायपुर सेंट्रल जेल की ये तस्वीरें देखिए, जहां कैदी भगवान गणपति बाप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यहाँ जेल के कैदियों ने गणेश की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई हैं, वो भी ऐसी कि नदियों या तालाबों के बदले उसे बाहर कहीं विसर्जित किया जाए तो उससे पौधे निकलने की संभावना बनी रहे। ये बीज वाली मूर्तियां तैयार होने के बाद प्रदर्शनी और बिक्री के लिए जेल से बाहर भेजी जा रही हैं।
10: भगवान गणेश की मूर्तियां प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए तैयार की गई हैं और इको फ्रेंडली है। हम हर साल जो है इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियां बनाते हैं। इस बार कलर भी जो है इको फ्रेंडली रखा गया है। इस बार कुछ और प्रयोग किया कि कुछ बीज डाल दिए हैं हम लोगों ने, ताकि ऐसे जहां पर भी ये मिट्टी जाए तो वहां पे कोई ना कोई पौधे लग जाए।
6: बापा के भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 14 सितंबर को पंडालों, मंदिरों और घरों में गणपति अलग अलग स्वरूपों में विराजमान होंगे, लिहाजा उनके आगमन की तैयारियों को लेकर देश भर में रौनक दिखाई देने लगी है। गुजरात के आनंद से हिताली शाह, अकोला से धनंजय साबले के साथ गाजियाबाद से मनीष लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
11: क्या आपकी खुद की फोटो आपकी समस्याओं को दूर कर सकती है? क्या खुद की फोटो की सहायता से आपको रोजगार और धन का फायदा हो सकता है? क्या खुद की फोटो आपको मुकदमेबाजी से मुक्ति दिला सकती है? आपकी अपनी फोटो से कैसे मिलेगी सफलता, कैसे बनेंगे काम, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
15: भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी शक्ति, रूस की घातक RBV BD मिसाइलों से लैस होंगे लड़ाकू विमान, सुखोई 300 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट कर सकेंगे ध्वस्त। जयपुर में गणेश महोत्सव की रौनक, मोती डूंगरी मंदिर में बप्पा को लगाया गया हजारों मोदकों का भोग, चढ़ाए गए मोदकों में 251 किलो 21 किलो के मोदक। गणपति उत्सव के रंग में रंगने लगी मुंबई, ऐतिहासिक चिंचपोकली उत्सव मंडल में इस बार भगवान वेंकटेश्वर बालाजी से प्रेरित रूप में नजर आए बप्पा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में निकली 26 छड़ियों की भव्य शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की थाप से गूंजा शहर, शोभा यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। अब आपदा से पहले मिलेगा अलर्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज ने बनाया मोबाइल ऐप आपदा सहायक, पहाड़ी इलाकों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया ऐप। प्राकृतिक आपदा के बाद हालात संभालने में जुटे नेपाल को भारत ने भेजी मदद की 8वीं खेप, 35 टन जरूरी सामान लेकर वायुसेना का विमान काठमांडू हुआ रवाना।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा करने वाले हैं पंडित जी के साथ फोटोज के बारे में, फोटोज के प्रयोग के बारे में। आपको बताएंगे कि आपकी बहुत सारी फोटोज होती हैं, अक्सर आप खींचते रहते हैं, सेल्फीज लेते हैं, फोन की गैलरी में रखते हैं बहुत सारी फोटोज, तो अपनी ही फोटो के प्रयोग से कैसे आप सफलता पा सकते हैं, अलग अलग फोटोज का कैसे आपको सही तरीके से प्रयोग करना है, पर्स में रखना है, घर में लगाना है, वॉल पर लगाना है, तो ये सारे उपाय पंडित जी आपको बताएंगे। किस तरह से किस फोटो का प्रयोग करना है वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के गुडलक मंत्र के साथ।
1: अपने पास हमेशा एक पेन जरूर रखिए। पेन रखना आपके लिए जरूरी है। अपने बैग में, शर्ट में, पैंट में एक पेन हमेशा जरूर रखिए। अगर आप पेन अपने साथ में रखते हैं तो बुद्ध को शक्ति मिलेगी, और अगर बुद्ध को शक्ति मिलेगी तो आपके ज्यादातर निर्णय सही होंगे, आप निर्णयों में गलतियां नहीं करेंगे। तो वैसे घर से कहीं भी निकल जाते हैं, ध्यान रखिए कि अपने साथ एक पेन हमेशा रखे रहिए।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 10 सितंबर 2026 बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 10 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, प्रातः 10:33 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, दोपहर 2:04 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया, फोटोज के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं पंडित जी के साथ। सबसे पहला सवाल यही है कि आपकी फोटो से जीवन पर किस तरह से असर पड़ सकता है, कौन कौन सी फोटोज का आपके जीवन पर सही प्रभाव पड़ता है, पंडित जी वो जानते हैं पहले।
1: जी देखिए, वैसे आपको लगता होगा कि फोटो में क्या रखा है, कभी भी खींच लिया, और जब से मोबाइल में ये सुविधा आ गई तो फोटो हम बहुतायत में खूब सारे फोटो खींचते हैं, लेकिन आपका जो ये चित्र है, आपकी जो ये फोटोग्राफ है, ये आपके जीवन पर बड़ा गहरा असर डालती है। आपका चित्र आपके स्वरूप को दर्शाता है। जिस समय की फोटोग्राफ है उस समय की मानसिक स्थिति कैसी है, उस समय का मेंटल स्टेट कैसा है, ये फोटो आपका बता देता है। सामान्यतः इसके अंदर आपकी तरंगे मौजूद होती हैं, आपको दिखें या ना दिखें, ये तरंगे देखने वाले के या संपर्क में आने वाले पर असर डालती हैं। देखिए, देवी देवता का चित्र होता है तो मन में पवित्र भाव पैदा होता है, नमस्कार करते हैं, है तो एक चित्र ही, लेकिन जो तरंगे हैं ना वो आपके मन पर असर डाल देती हैं। अगर चित्र के रंगों में थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए तो तरंगे बदल सकती हैं, और बदली हुई तरंगे आपके भाग्य को बदल सकती हैं। अलग अलग प्रोफेशन के अलग अलग रंगों के वस्त्र, अलग अलग मौकों के अलग अलग रंगों के वस्त्र इसीलिए होते हैं क्योंकि अलग अलग रंग आपके चित्र के साथ जब मिलते हैं तो आपके रूप स्वरूप के अलावा आपकी तरंगों को बदल देते हैं।
0: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, सवाल यह है कि अगर कुछ लोग अपना विवाह जल्दी करवाना चाहते हैं तो विवाह के लिए कौन सी और कैसी फोटो खिंचवाएं ताकि उनका विवाह जल्दी हो जाए।
1: देखिए, विवाह के लिए सबसे पहले बायोडेटा के साथ भेजी जाती है तस्वीर, लड़के की भी और लड़की की भी। तो विवाह के लिए कैसी फोटो खिंचानी चाहिए? विवाह के प्रधान ग्रह माने जाते हैं शुक्र और बृहस्पति। विवाह के लिए जब फोटो खिंचवानी हो तो स्त्री को, लड़की को पीले रंग के कपड़ों में फोटो खिंचानी चाहिए। पीले रंग का कोई भी शेड हो सकता है, लाइट हो, डार्क हो, कैसा भी हो। और पुरुष को विवाह के लिए क्रीम कलर की फोटो, क्रीम कलर के कपड़े में फोटो हो या सफेद रंग के वस्त्रों में फोटो हो तो खिंचवानी चाहिए। फोटो तो आपने खिंचवा ली, अब विवाह के लिए आपको फोटो भेजनी है, फोटो देनी है, तो उसके पहले उस फोटो की एक कॉपी शुक्रवार को भगवान को अर्पित करिएगा। अगर आप ऐसा करें तो निश्चित रूप से आपके विवाह के लिए जो प्रस्ताव जा रहा है वो प्रस्ताव स्वीकार होगा। या अगर आप इंटरनेट पर भी मैरिज के लिए अपनी फोटो लगा रहे हैं तो लड़कियां पीले वस्त्र में लगाएं और लड़के श्वेत या क्रीम वस्त्र में फोटो लगाएं तो प्रपोजल जल्दी स्वीकार होगा।
0: चलिए, इसी से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं जो पंडित जी से आगे जाकर पूछेंगे। राशिफल पर आते हैं और पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी से पूछ लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की। इनके भाग्य में आज क्या लिखा है पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे।
1: मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में बेहतरी होगी, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम का दबाव रहेगा, धन खर्च से परेशानी होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए, शादी विवाह के लिए कैसी फोटो आपको खिंचवानी है वो तो पंडित जी ने आपको बता दिया। अब ये जानते हैं कि विदेश यात्रा पर अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए कैसी फोटो खिंचवाएं ताकि आपका काम भी बन जाए और आपको इसका फायदा भी मिल जाए। पंडित जी,
1: विदेश यात्रा के लिए प्रधान ग्रह शुक्र, शनि और राहु माने जा सकते हैं। जब भी विदेश से संबंधित किसी काम के लिए फोटो आपको खिंचानी हो तो नीले या काले बैकग्राउंड पर सफेद वस्त्रों में फोटो खिंचानी चाहिए। विदेश यात्रा में अगर बाधा आ रही है तो इसी फोटो की एक कॉपी लोहे की किसी भारी चीज से शनिवार को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ऐसा करने से विदेश जाने में या विदेश का काम करने में आपको सुविधा होगी।
0: चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए अगली तीन राशियों का हालचाल आपको बता देते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है अब कर्क, सिंह और कन्या वालों की। इनके भाग्यफल में क्या लिखा है पंडित जी से जान लेते हैं।
1: कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। काम में व्यस्तता रहेगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चोट चपेट से बचाव करिएगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन हानि हो सकती है, काम में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, यानी दर्शकों के सवाल और पंडित जी के जवाब। इससे पहले कि पहले प्रश्न की तरफ बढ़ें, उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है आपका, कोई भी परेशानी है, उसका आप जवाब जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारी परेशानी को दूर हम करें, तो पंडित जी आपको जवाब देंगे। आप अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं ईमेल आईडी के माध्यम से। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न कौन से दर्शक का आया है, पंडित जी से पूछते हैं।
1: जी आज का पहला प्रश्न अनुराधा जी ने हमें लिखा है और अनुराधा जी हमें मेल लिखती हैं हिमाचल प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 26 नवंबर 1976, जन्म का समय रात में 11 बजे, जन्म का स्थान है ऊना। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है, कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या मेरे साथ लगी रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। अनुराधा जी, आपकी कुंडली में स्वास्थ्य में कोई ज्यादातर समस्या नहीं है, मानसिक तनाव मेंटल स्ट्रेस की वजह से आप बीमार हैं। अगर मेंटली आप ठीक हो जाएं तो आपकी मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी। आप सिर्फ इतना करिए, एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा।
0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न इस शो में कौन से दर्शक ने भेजा है वो भी पंडित जी से ही जान लेते हैं। पंडित जी
1: जी, अगला प्रश्न गरिमा ने हमें लिखा है। गरिमा हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 जनवरी 1995। जन्म का समय सुबह के 10:45। जन्म स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि काफी समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रही हूं, मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है, तो नौकरी कब तक बदलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? गरिमा, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी नौकरी बदलने का उचित समय नहीं है। ज्योतिष के हिसाब से आप अप्रैल 2027 के बाद नौकरी बदलने का प्रयास करिएगा। उस समय नौकरी बदलना आपके लिए बेहतर होगा, लाभकारी होगा। अभी अप्रैल 2027 तक नौकरी में कोई भी रिस्क लेने का प्रयास ना करें। एक मोती बनवा के पहने, 8-10 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपको लाभ होगा।
0: चलिए पंडित जी से ये जानते हैं कि धन लाभ की अगर आप प्राप्ति करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का प्रवाह हो बिना किसी हिचक के, तो उसके लिए आपको कौन सी फोटो खिंचवानी चाहिए और क्यों खिंचवानी चाहिए? पंडित जी,
1: आप कैसा चित्र खिंचवाएं और कैसे उसका प्रयोग करें कि निरंतर आपको धन का लाभ होता रहे। धन और आर्थिक रूप से समृद्धि का कारक बुध होता है, कुछ मामलों में शुक्र को भी कह सकते हैं, हालांकि शुक्र वैभव का कारक है। धन प्राप्ति में अगर बाधा आ रही है तो अपनी एक फोटो हरे या गुलाबी वस्त्रों में खिंचवाइएगा। इस फोटो को अपने शयन कक्ष की, अपने बेडरूम की उत्तरी दीवार पर, नॉर्थ वॉल पर शुक्रवार के दिन लगाइएगा। धन की और आर्थिक जीवन की बाधा दूर हो जाएगी। इस फोटो को साफ बनाए रखिएगा, इस पर धूल जमने मत दीजिएगा।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि संतान अगर किसी वजह से किसी कपल को नहीं हो पा रही, संतान की प्राप्ति आप करना चाहते हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए किस प्रकार की फोटो खिंचवाएं ताकि इसका भरपूर फायदा आप सबको मिल जाए? पंडित जी,
1: पति और पत्नी के चित्र के प्रयोग से संतान की प्राप्ति सरलता से हो सकती है, अगर आप इस चित्र का सही प्रयोग करना जाने तो। कैसी फोटो खिंचवाएं? संतान प्राप्ति का जो मुख्य कारक ग्रह है वो है बृहस्पति। पति और पत्नी को अपनी एक ज्वाइंट फोटो खिंचवानी चाहिए, पीले वस्त्रों में या पीले बैकग्राउंड में। काले कपड़े मत पहनिएगा, बाकी कोई भी कपड़ा पहनिए, पीला बैकग्राउंड हो या पति पत्नी के कपड़े पीले हों। इस फोटो को अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में बृहस्पतिवार को सिरहाने लगा देना चाहिए। और याद रखिए, फोटो में किसी के भी कपड़े काले ना हो, और जिस वॉल पर ये फोटो लगाएंगे उस फोटो के आसपास कोई और चित्र ना हो। इस चित्र की तरंगें पति पत्नी के बृहस्पति को प्रबल करेंगी और पति पत्नी के बृहस्पति को प्रबल करने के साथ संतान प्राप्ति की बेहतर संभावनाएं बन जाएंगी।
0: और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है पंडित जी से विस्तार से जानते हैं।
1: तुला राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होती दिखाई दे रही हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, शत्रु और विरोधी शांत होंगे। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य और मन अच्छा रहेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, चोट चपेट से सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए पंडित जी से ये जानते हैं कि रोजगार की प्राप्ति अगर करना चाहते हैं, आपकी नौकरी किसी वजह से लग नहीं पा रही, सही नौकरी के लिए आप चुनाव करना चाहते हैं, नौकरी के लिए किस तरह की फोटो पंडित जी खिंचवानी चाहिए ताकि इसका भी फायदा मिले।
1: आप नौकरी के लिए कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई फॉर्म भर रहे हैं, कहीं फोटो लगा रहे हैं, ये फोटो किस तरह की होनी चाहिए कि आपको नौकरी मिलने में सुविधा हो। देखिए, नौकरी का सामान्य जो कारक है, सामान्यतः जो नौकरी देता है वो शनि है। कुछ दशाओं में बृहस्पति भी नौकरी देता है। नौकरी के लिए हल्के नीले रंग के वस्त्रों में फोटो खिंचानी चाहिए या कम से कम आप किसी और रंग का कपड़ा अगर पहन रहे हैं तो कम से कम नीला बैकग्राउंड होना चाहिए। इसी फोटो को फॉर्म में लगाना उत्तम होगा, एप्लीकेशन में, रिज्यूम में इसी फोटो को लगाएं। फॉर्म में लगाने के पहले इस फोटो को अपने काम करने की जगह पर, जहां आप काम करते हैं वहां सामने लगा लें, एक दिन दो दिन और उसके बाद वहां से निकाल करके अपने फार्म में या अपने रिज्यूम में लगाएं। नौकरी पाने में आपको सुविधा होगी, सहायता मिलेगी।
0: चलिए पंडित जी से जानते हैं कि कोर्ट कचहरी का अगर मामला है, मुकदमे में अगर आप जीत प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन सी फोटोज जो हैं आपके लिए फायदेमंद होंगी, किस प्रकार की फोटो पंडित जी खिंचवानी चाहिए?
1: अगर कोई मुकदमा चल रहा है, विवाद चल रहा है, आप मुकदमे में विजय और सफलता चाहते हैं तो क्या करेंगे? मुकदमेबाजी होती है मुख्यतः मंगल, शनि और राहु की वजह से। इसके लिए लाल वस्त्र में या लाल टाई में एक फोटो खिंचवाइए या लाल बैकग्राउंड में फोटो खिंचवाइए, काले कपड़े में फोटो मत खिंचवाइएगा। इस फोटो को मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के नीचे दबाकर ये प्रार्थना कर लीजिएगा कि आपके मुकदमे और विवाद का निपटारा जल्दी हो। ऐसी स्थिति में मुकदमे का निपटारा फटाफट हो जाएगा।
0: और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं राशिफल के अंत की तरफ। अंतिम तीन राशियों का हाल भी आपको बता देते हैं कैसा रहने वाला है। बारी है अब मकर, कुंभ और मीन वालों की।
1: मकर राशि, वाहन सावधानी से चलाइएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और ऑफिस में विवादों से बचिएगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ

0: 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले पर वापस लौटते हैं, यानी आप दर्शकों के सवालों का फिर से वक्त हो चला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पंडित जी से ही जानते हैं कौन सा है अगला प्रश्न और कौन से दर्शक का है अगला सवाल।
0: जी अगला प्रश्न आलोक कुमार ने हमें लिखा है और आलोक कुमार हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 जुलाई 1982। जन्म का समय शाम के 7:35। जन्म स्थान है रांची झारखंड। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। आलोक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी सेल होने जैसी संभावना लग रही है। आप कोई प्रॉपर्टी सेल करेंगे कर्जा उतारने के लिए और कोलकाता आपका चेंज होगा, कोलकाता चेंज करके किसी अन्य जगह पर जाएंगे, ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। पूरी तरह से स्थितियां आपकी कंट्रोल में आएंगी अक्टूबर 2027 के बाद, लेकिन प्रॉपर्टी सेल होगी और आपका चेंज ऑफ प्लेस भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप अधिक से अधिक हनुमान जी की पूजा करें, सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और मंगलवार का अगर व्रत रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है दर्शकों का अंतिम सवाल इस शो में शामिल करने का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन सा है अंतिम सवाल और कौन से दर्शक का अंतिम सवाल हम ले रहे हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न केशव गुप्ता ने हमें लिखा है और केशव गुप्ता जी हमें मेल लिखते हैं कानपुर से। अपनी पुत्री के विवाह के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है 30 जनवरी 1992। जन्म का समय मध्य रात्रि में 1:15। जन्म स्थान है कानपुर। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री विवाह करना नहीं चाहती है, तो क्या उसका विवाह हो सकेगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। केशव जी, आपकी पुत्री का विवाह जरूर होगा, उनकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने व्यक्ति के साथ साल 2027 के शुरुआती समय में, जनवरी से जून 2027 में इनकी शादी होगी, लेकिन ये करेंगी अपनी इच्छा से और वहां से इनका जीवन कुल मिला जुला के ठीक रहेगा। देखिए, आप अपनी बेटी को समझा नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, आने वाले समय में चीजें खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। आप इतना करिए कि अपनी बेटी के लिए रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए और बेटी के नाम से बृहस्पतिवार को केले का दान करिए। ये दो काम आप निरंतर करें, स्थितियां बेहतर होंगी।
1: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी, अक्सर हमने देखा है किसी के भी फोन में हम देखें तो कोई ना कोई वॉलपेपर लगा होता है, कोई ना कोई फोटो लगी होती है, क्या उसका भी कोई फायदा होता है, क्या उसको भी लगाने में कोई सावधानी बरतनी चाहिए।
0: जी देखिए, जो वॉलपेपर पे आप चित्र लगाते हैं उसको बराबर देखेंगे, अगर मोबाइल के वॉलपेपर पे चित्र लगाएंगे वो आपके मन पर गहरा असर डालेगा। इसीलिए सामान्यतः मोबाइल के वॉलपेपर पर आपको कोई ऐसा चित्र लगाना चाहिए जिसको देखकर मन शांत हो, मन में श्रद्धा या पवित्र भाव पैदा हो, युद्ध के, झगड़े लड़ाई के, हिंसा के, आग के, इस तरह के चित्र आपको अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर नहीं लगाने चाहिए। जो आप अपना खुद का चित्र लगाते हैं, डिस्प्ले पिक्चर लगाते हैं, उसमें बहुत सारे लोग देवी देवताओं के चित्र लगाते हैं, कृपा करके अपने डिस्प्ले पिक्चर पर जहां आपका चित्र होना चाहिए वहां देवी देवताओं का चित्र मत लगाइए, क्योंकि चित्र होगा देवी देवता का, नाम होगा आपका, तरंगे बिगड़ेंगी क्योंकि आपके नाम का वो स्वरूप नहीं है जो आपने लगाया है।

0: इसलिए कृपा करके आप डीपी खाली रखिए, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन नाम हो आपका, चित्र हो देवी देवता का, ये किसी भी हिसाब से उचित नहीं है।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 10 सितंबर को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 10 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में बदलाव और सफलता के योग हैं, आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी, अविवाहितों के विवाह में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव की अगर उपासना करें तो वर्ष बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या मंत्र जप करने के तुरंत बाद जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए? मंत्र जप करने से शरीर में शुभ ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और ये ऊर्जा किसी को स्पर्श करने से उसको प्रभावित करने लगती है। जल को स्पर्श करने से ये ऊर्जा जल में चली जाएगी, फिर मंत्र जप का लाभ नहीं होगा। इसीलिए मंत्र जप करने के बाद जल का स्पर्श करने से बचना चाहिए।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 10 सितंबर 2026 बृहस्पतिवार के शुभहर के बारे में।
0: दिनांक 10 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। विवाह संबंधी आपकी समस्याओं में सुधार होगा।
1: और चलिए शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए बारी आ गई है आपकी राशि के बारे में जान लेने की, तो आज की गुड लक राशि कौन सी है पंडित जी आपको बताएंगे।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को कौन से मेटल का, कौन सी धातु का प्रयोग करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है कन्या। आपको कांसा यानी ब्रॉन्ज अवश्य धारण करना चाहिए, कांसे का छल्ला या कांसे का कड़ा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।
1: चलिए तमाम उपाय और जानकारियां तो आपने प्राप्त कर ली हैं, अब बारी आती है खास उपाय के बारे में जान लेने की, तो पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का खास उपाय जिसको हम महा उपाय कहते हैं वो क्या है। पंडित जी
0: जी, अगर आप कला के क्षेत्र में और कला में भी अभिनय के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हर हाल में विष्णु भगवान की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। नित्य प्रातः एक ओपल या एक हीरा सलाह लेकर धारण करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा।
1: तो पंडित जी इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अच्छे और पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए TNT। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: पूरे देश में अभी से गणेशोत्सव की उमंग देखने को मिल रही है। अलग अलग शहरों में बप्पा की प्रतिमाओं का आगमन शुरू हो चुका है। भक्त पूरे उत्साह के साथ बप्पा का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। अकोला में आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के बीच चिंतामणि गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। सूरत में उड़ीसा के मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर भव्य गणेश पंडाल तैयार किया जा रहा है। देखिए अकोला और सूरत से बप्पा के आगमन की शानदार तस्वीरें।

0: अकोला का शास्त्री नगर खुशी से झूम रहा है। आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के बीच चिंतामणि गणपति बप्पा का स्वागत हो रहा है। जाहिर है यहाँ गणेश भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सबकी चिंता हरने, मनोकामना पूरी करने बप्पा जो पधार रहे हैं। सिविल लाइन चौक पर जैसे ही बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा से लाल कपड़ा हटाया गया, अपने आराध्य के दर्शन कर भक्त खुशी से झूम उठे। ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा का स्वागत किया गया और गणपति बप्पा मोरिया की गूंज के साथ यहाँ की फिजाओं में बप्पा की भक्ति की सुगंध फैल गई। ये अकोला के चिंतामणि गणपति का भव्य स्वरूप है। हर भक्त यहाँ अपने आराध्य के दर्शन कर खुद को धन्य महसूस कर रहा है। गणेश भक्त बप्पा से अच्छी बारिश की कामना कर रहे हैं ताकि यहाँ के किसान परिवारों के जीवन में सुख समृद्धि आए और चिंतामणि विघ्नहर्ता सबकी चिंता दूर करें।
1: बाप्पा आने के बाद सब आगमन जो होता है तो उसमें सब विघ्न दूर हो जाते हैं और ये चिंतामणि है, मन की सब चिंता दूर कर देता है।
0: सूरत में भी गणेशोत्सव को लेकर भारी उत्साह दिख रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में गणपति प्रतिमाओं के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है। ये तस्वीरें भटार इलाके की हैं। यहाँ गणेश मंडल की ओर से उड़ीसा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर भव्य गणेश पंडाल तैयार किया जा रहा है।
2: यहाँ पे एक महाराष्ट्र की थीम और सूरत के लोकल डेविड भाई करके एक मंडप का बहुत बड़ा इवेंट का आयोजन करते हैं और पिछले 3-4 महीनों से अलग अलग थीम पे बातें होती रहती है, तो हम लोग ने इस बार सूर्य कोणार्क मंदिर पे पंडाल बनाने का आयोजन किया है।
0: हर साल ये गणेश मंडल अलग अनोखी थीम के लिए गणेश भक्तों के बीच खास पहचान रखता है। इस बार पंडाल को ऐतिहासिक कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर तैयार किया गया है, जिसका निर्माण स्थानीय कलाकारों के साथ महाराष्ट्र से आए दस्तकारों ने मिलकर किया है।
3: ये सूरत के भटार इलाके में साईंराम युवक मंडल है, जहाँ की ये तस्वीरें हैं, जहाँ आप देख सकते हैं फिलहाल गणेश भगवान की जो प्रतिमा है उसको ढक के रखा गया है। तो इस तरह से सूरत में अलग अलग जगहों पर, अनेक जगहों पर गणेश भगवान की स्थापना की जाती है गणेश उत्सव के दौरान। इस बार कोणार्क सूर्य मंदिर की थीम पर ये पंडाल तैयार किया जाएगा और इसमें भगवान को बैठाया जाएगा और उनकी पूजा पाठ की जाएगी। तो गणेश उत्सव को लेकर के एक तरफ जहां महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, शहरों में उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं महाराष्ट्र से सटे गुजरात के सूरत में भी गणेश उत्सव को लेकर के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग थीम पर भगवान गणेश के पंडाल तैयार किए जा रहे हैं।
0: इससे पहले बप्पा के आगमन की शोभा यात्रा में धार्मिक आध्यात्मिक संस्कृति के भव्य रंग देखने को मिले। आगमन यात्रा में भगवान के 12 अवतारों को भी अलग अलग रूपों में दिखाया गया। इस दौरान धार्मिक और पौराणिक कथाओं से जुड़े पात्रों को देश के कोने कोने से आए कलाकारों ने अपनी वेशभूषा और अभिनय के जरिए जीवंत कर दिया। इस तरह गणेश उत्सव के पहले ही सूरत शहर बप्पा की भक्ति में सराबोर है। अकोला से धनंजय साबले और सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: नीम करोरी बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। इस फिल्म ने बॉलीवुड की तमाम बड़े बजट वाली फिल्मों को पछाड़ दिया। भारत में ही फिल्म 150 करोड़ से ज्यादा का कारोबार अब तक कर चुकी है। बहुत जल्द फिल्म का कलेक्शन 200 करोड़ तक पहुंचने वाला है। खास बात देखिए इसमें यह है कि फिल्म का बजट महज 2 करोड़ था और अब ये कमाई के नए रिकॉर्ड्स बना रही है।
5: गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है हनुमान अंश की कमाई और इसकी लोकप्रियता। जिसके बूते आध्यात्मिक गुरु नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित ये फिल्म अब सात समंदर पार की उड़ान भरने के लिए तैयार है।
6: बुझ पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती समझाने पहुंचे सप्तऋषि सप्तऋषि सप्तऋषि काय जिद कर रही काय खुमर रही काय जिद कर रही काय खुमर रही ऐसे वर खेलाने कैसे बर के लाने जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर ऐसा जाके शीश पे गंगा और गले पे डारे फिर ऐसा इतने सीधे सादे हैं सब कहते भोलेनाथ भोलेनाथ।
5: 11 सितंबर को हनुमान अंश विदेश में रहने वाले नीम करौली बाबा के भक्तों और तमाम दर्शकों के लिए रिलीज की जाएगी। ये दिन इसलिए भी खास है कि 11 सितंबर को नीम करौली बाबा की 53वीं महासमाधि पुण्यतिथि है। इधर देश के कोने कोने तक फिल्म को प्रमोट करने के मकसद से टीम हनुमान अंश यूपी के सफर पर भी पहुंची।
7: ये थिएटर्स में लगी है तब तक हम इस फिल्म को प्रमोट करते रहेंगे, हम इस फिल्म को जगह जगह ले जाते रहेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। और इसको इसको जन जन तक पहुंचाना है, बच्चों बच्चों को फिल्म दिखानी है क्योंकि फिल्म बच्चों को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई गई है कि बच्चों को सब महत्व पता चले हनुमान चालीसा का महत्व।
5: हनुमान अंश किस कदर दर्शकों के दिलों पर छा गई है, बॉक्स ऑफिस के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। महज 2 करोड़ रुपए के मिनी बजट में बनी ये फिल्म अब तक 170 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और अब भी रोजाना करोड़ों में कमाई कर रही है। रिलीज के 33वें दिन यानी 5वें मंगलवार को इसने 11 करोड़ का दमदार कलेक्शन किया। जाहिर है ओवरसीज रिलीज के बाद इसके कलेक्शन में और भी तेजी से इजाफा होगा।
8: फिल्म हनुमान अंश को दर्शकों से बेहद ही शानदार और भावुक रिस्पांस मिल रहा है। रिलीज के बाद अब 100 करोड़ से भी ज्यादा ये मूवी जो है वो कमाई कर चुकी है और लगातार लोग जो है फैमिलीज जो है वो इस मूवी को देखना पसंद कर रही है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि मूवी के बाहर जो है लोगों की भीड़ आपको थोड़ी बहुत नजर आ जाएगी, हालांकि कुछ लोग अभी पीछे गए, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग नजर आने वाले जो इस मूवी के बारे में सुन सुनकर यहाँ पर आए। तो लोगों के मन में क्या चल रहा है मूवी देखने से पहले वो हम जानेंगे। तो मैम आपसे ही सवाल है, मूवी के बारे में किसने आपको बताया, क्या कुछ सुनने को मिला?
9: जी मेरी बेटी ने बताया, कहा कि मम्मी आप देख के आओ, बहुत अच्छी फिल्म है।
8: हनुमान जी के भक्त हो वैसे, ये बताइए।
9: जी हाँ,
8: नीम करौली बाबा के आश्रम गए हो आप?
9: नहीं नहीं,
8: लेकिन मूवी देखने आप जरूर आए हो।
9: जी हाँ,
8: आप बताइए अंकल, आप कितना एक्साइटेड है मूवी देखने के लिए, मतलब कैसी मूवी होने वाली, क्या लग रहा है?
10: मूवी तो बढ़िया हुई है।
8: हाँ।
10: बढ़िया है, अच्छी है।
8: जी ये जेंजी के अंदर भी क्रेज आ रहा है क्योंकि जेंजी जो है इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से भजन क्लबिंग भी ट्रेंड बन गया उसमें भी जेंजी का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। एज अ जेंजी आप मूवी देखने आए हो तो कैसे, कितने एक्साइटेड हो?
11: मैम बहुत एक्साइटेड है, मेरे पापा जी ने रिकमेंड करी थी मेरे को, तो उन्हीं के रिगार्डिंग मैं आया हूँ।
8: अच्छा, उन्हीं के
11: मेरे पापा जी देख गए।
8: अच्छा, उनको अच्छी लगी?
11: मेरे मम्मी पापा दोनों देख गए मूवी।
8: कैसा रिस्पॉन्ड था उनका?
11: अच्छा था,
8: अच्छा था,
11: बहुत अच्छा।
5: आम दर्शकों को तो छोड़िए, हनुमान अंश ने फिल्म हस्तियों को भी अपना दीवाना बना दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने थिएटर में जाकर ये फिल्म देखी। नीम करौली बाबा के किरदार में एक्टर शोभिनव सत्य की सादगी और सच्चाई की प्रीति मुरीद हो गई। प्रीति ने सिनेमा घर में फिल्म देखते हुए अपने इंस्टा अकाउंट पर तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में सीताराम और वाह लिखा। धुरंधर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले आदित्य धर ने भी फिल्म की काफी सराहना की है। विवेक ओबराय भी हनुमान अंश के मुरीद बन बैठे।
12: मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई दायरा फिक्स्ड नहीं है, कुछ लोगों को वेब सीरीज अच्छी लग रही है, कुछ लोगों को फिल्म्स अच्छी लग रही हैं। ये वही भारत है जहाँ पे मिर्जापुर जैसी फिल्म भी बहुत अच्छी चलती है, हनुमान अंश जैसी फिल्म भी इतनी खूबसूरत चलती है, छोटी से बजट की, कोई स्टार नहीं, लेकिन कई लोग जाके देखते हैं, उसे इतना प्यार देते हैं, इतना सराहना देते हैं। तो आई थिंक ये ऑडियंस के मन में क्या है और ऑडियंस चाहती क्या है, ये तो बहुत मुश्किल है समझ।
5: वरुण धवन तो अपनी माँ के साथ फिल्म देखने थिएटर पहुँचे और उसके बाद एक वीडियो संदेश के जरिए तमाम लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील कर डाली।
13: मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको बोलना चाहता हूँ कि प्लीज जाइए थिएटर में एंड वॉच हनुमान अंश। आई जस्ट वेंट विद माई मॉम एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. गो अपने माता पिता को लेके जाइए, अपने बच्चों को लेके जाइए, गो विद योर फ्रेंड्स. आई हाईली रिकमेंड दिस फिल्म टू एवरीवन. किसी ने मुझे बोला नहीं है ये बनाने के लिए, कोई किसी का फोन वोन कुछ नहीं. आई जस्ट वॉन्टेड टू डू दिस एंड बचपन से मेरा एक कनेक्शन रहा है हनुमान जी के साथ. बट दिस इज समथिंग एल्स. ये देखिए बहुत ही प्योरली बनी हुई फिल्म है. आई वुडंट इवन कॉल इट अ फिल्म, इट्स जस्ट इट्स समथिंग डिवाइन.
5: आज के दौर में जहां ज्यादातर फिल्में हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स, हिंसा और भारी भरकम वीएफएक्स पर निर्भर हो गई हैं, तो वहीं बिना मिर्च मसाले के हनुमान अंश अपनी सादगी से दर्शकों का दिल जीत रही है. दिल्ली से मनीषा लड्डा और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
4: चीन में सुरक्षा से जुड़ी नई तकनीक और सामान की प्रदर्शनी शुरू हुई है. पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत के लियांग युगांग शहर में हो रही इस 5 दिन की प्रदर्शनी में रोबोट कुत्ते, रोबोट ट्रैफिक पुलिस और बम को नष्ट करने वाले रोबोट लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. इस प्रदर्शनी में 100 से ज्यादा कंपनियां शामिल हैं. 13,000 वर्ग मीटर से ज्यादा जगह में लगी इस प्रदर्शनी में सुरक्षा से जुड़े कई नए उपकरण दिखाई दे रहे हैं. प्रदर्शनी में पुलिस के काम आने वाली नई मशीनें, सुरक्षा से सामान और गाड़ियां भी नजर आ रही हैं. इन तकनीकों के जरिए पुलिस और सुरक्षा बलों के काम को आसान और बेहतरीन बनाने के लिए कोशिश की जा रही है. प्रदर्शनी का मकसद नई तकनीक दिखाने, साथ साथ अलग अलग देशों के साथ साथ सुरक्षा के क्षेत्र में अनुभव साझा करना और मिलकर काम करना है. चीन के गुइझोऊ में एक पुरानी गुफा की चर्चा खूब हो रही है. संगीत की धुनों ने इस प्राचीन गुफा को एक खास डेस्टिनेशन बना दिया है. जी हां, करीब 1 अरब साल पुरानी इस गुफा में जब संगीत प्रेमी जुटे तो गुफा की नेचुरल साउंड सिस्टम यानी इकोसिस्टम ने पूरी जगह को भर दिया. इस म्यूजिकल परफॉर्मेंस ने हर किसी का दिल जीत लिया.
10: तस्वीरों में नजर आ रहा गुफा के अंदर संगीत प्रेमियों का ये अनोखा कॉन्सर्ट खूब सुर्खियां बटोर रहा है. बीते दिनों दक्षिण पश्चिमी चीन के गुइझोऊ में बरसों पुरानी एक कास्ट गुफा पहले ही लोगों के लिए ऐतिहासिक रही है, लेकिन संगीत की धुनों ने अब इस प्राचीन गुफा को एक खास डेस्टिनेशन भी बना दिया है. करीब 1 अरब साल पुरानी इस गुफा में जब संगीत प्रेमी जुटे तो गुफा की नेचुरल साउंड सिस्टम यानी एकॉस्टिक्स ने पूरी जगह को ही भर दिया और ये म्यूजिकल परफॉर्मेंस हर किसी म्यूजिक लवर के दिल को छू गई. दरअसल ये एक कार्स्ट यानी चूना पत्थर की गुफा है जिसकी विशाल चट्टानी परतें, गुंबद नुमा ऊंचे कक्ष और प्राकृतिक बनावट इस तरह की है कि यहाँ कोई साउंड गूंजती नहीं है बल्कि एक बेहतरीन कॉन्सर्ट हॉल की तरह नेचुरल साउंड इफेक्ट पैदा करती है. ऐसे में पियानो या स्ट्रिंग वाद्य यंत्रों की आवाज गुफा की प्राचीन चट्टानी परतों के बीच जब गूंजी तो पूरा माहौल ही संगीतमय हो उठा. बता दें कि चीन में गुइझोऊ जैसे कुछ और प्रांतों में चूना पत्थर की विशाल अंडरग्राउंड गुफाएं हैं जहां की प्राकृतिक ध्वनि व्यवस्था बेहद शानदार है. यही कारण है कि ऐसी बेहतरीन जगहों पर चैम्बर ऑर्केस्ट्रा, स्ट्रिंग क्वार्टेट और शानदार संगीत समारोह आयोजित किए जाते हैं. यकीनन संगीत प्रेमियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
4: अमेरिका के न्यूयॉर्क में लगने वाली एक खास प्रदर्शनी, चीन के कलाकार की बनाई या मोम की मूर्तियों वाली इस प्रदर्शनी की खास बात यह है कि देखिए इसमें कई नामचीन हस्तियों की मूर्तियां देखने को मिलेंगी. खास बात यह भी है कि ये मोम की सभी मूर्तियां मेहमान नवाजी के भाव से प्रेरित हैं.
0: द वॉन्ग कंटेम्प्रेरी संस्था के फाउंडर अलेक्जेंडर वॉन्ग के लिए ये खास पल है. न्यूयॉर्क के वेलकम होम नाम के इस गेस्ट हाउस में चीन की वैक्स आर्टिस्ट झोउ ज़ुएरोंग की कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगने जा रही है जिसमें ज़ुएरोंग की बनाई 10 वैक्स स्टैचू को शोकेस किया जाएगा. द वॉन्ग कंटेम्प्रेरी नाम की इस प्रदर्शनी में मशहूर हस्तियां कैलीग्राफी और एक्यूपंक्चर का अनुभव लेती दिखाई देंगी. खास बात ये है कि इन मोम की मूर्तियों के जरिए पश्चिमी पॉप कल्चर में चीनी रीति रिवाज और रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाने की कोशिश की गई है. अलेक्जेंडर वैंग के लिए ये पल बेहद खास है क्योंकि अमेरिका में ये इनकी पहली प्रदर्शनी होगी। द वैंग कंटेम्प्रेरी चाइना टाउन का एक सांस्कृतिक संगठन है जिसे पेशे से फैशन डिजाइनर अलेक्जेंडर वांग और उनकी माँ यिंग वांग ने शुरू किया था।
14: We wanted this to be something that could be opened up to the public for a longer period of time. And so when we started thinking about the format and kind of characters and what it meant logistically, I thought, what a interesting kind of approach to think about wax figures. And, you know, traditionally I felt wax figures, whether in a museum in a historical sense or, you know, Madame Tussauds, it hasn't really been explored in this context.
0: इन वैक्स स्टैच्यू में खाना बनाते, फूड शेयर करते, टी पार्टी में हिस्सा लेते, कैलीग्राफी का अभ्यास करते और एरहू जो कि एक चीनी वाद्य यंत्र है उसे बजाती हुई महिलाएं नजर आएंगी। इन तमाम कलाकृतियों में एक बात कॉमन है, ये सभी मोम की मूर्तियां मेहमान नवाजी के भाव से प्रेरित हैं। इन कलाकृतियों के जरिए चीनी संस्कृति के उस भाव को पेश करने की कोशिश की गई है जो इस मान्यता पर आधारित है कि किसी का घर में स्वागत करने का विचार कभी कभी कही गई बातों से नहीं बल्कि प्यार भरे काम से जाहिर होता है। न्यूयॉर्क के कला प्रेमियों के लिए गुड न्यूज ये भी है कि द वांग कंटेम्प्रेरी एग्जीबिशन पूरे महीने वीकेंड पर यहां फ्री में दिखाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
15: क्या आपकी खुद की फोटो आपकी समस्याओं को दूर कर सकती है? क्या खुद की फोटो की सहायता से आपको रोजगार और धन का फायदा हो सकता है? क्या खुद की फोटो आपको मुकदमेबाजी से मुक्ति दिला सकती है? आपकी अपनी फोटो से कैसे मिलेगी सफलता, कैसे बनेंगे काम, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
17: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं हिमालय के महाकुंभ की, उस यात्रा की जो उत्तराखंड की लोक परंपरा और धार्मिक आस्था से गहरी जुड़ाव रखती है और प्रकृति के साथ इंसानी रिश्ते की एक मिसाल है। ये यात्रा वैसे तो देवी नंदा की है, लेकिन 12 साल के अंतराल पर उनकी विदाई मायके से बेटी की तरह की जाती है। कुछ दिन पहले शुरू हुई ये यात्रा अब अलग अलग गांव और पगडंडियों से होते हुए आगे बढ़ रही है। लगातार हर गांव, कस्बे और इलाके में देवी नंदा की डोली का भव्य स्वागत किया जा रहा है। लोकगीत गाए जा रहे हैं और जयकारे लगातार लगाए जा रहे हैं। आज आपको इस बड़ी जात यात्रा की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही देवी नंदा का महत्व, उनकी कहानी भी समझाने की कोशिश करेंगे। हिमालय के ऊंचे शिखर पर इस यात्रा का समापन होता है, लेकिन उससे पहले यात्रा के अहम पड़ाव और उनसे जुड़ी कहानियां भी सुनाएंगे आपको। हिमालय की वादियों में इन दिनों आस्था का एक ऐसा सफर चल रहा है जिसमें देवी को सिर्फ पूजा नहीं जाता बल्कि बेटी मानकर विदा किया जाता है। करीब 280 किलोमीटर की इस यात्रा को दुनिया की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा माना जाता है, जिसमें देवी नंदा की डोली के साथ श्रद्धालु ऊंचे पहाड़ की मुश्किल चढ़ाई करते हैं। इस वक्त देवी नंदा की 3 डोलियां सभी गांवों से होकर गुजर रही है। 12 साल बाद होने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में पूरा पहाड़ शामिल होता है। ये यात्रा परंपरा की है, प्रकृति के साथ रिश्तों की है और उस अटूट विश्वास की भी है जो सदियों से देवभूमि की पहचान बना हुआ है।

बादलों से घिरे हिमालय के शिखरों पर यूं तो मौन का बसेरा है, पर गौर से सुनिए, हरे जंगलों के साए में गुजर रही पगडंडियों पर उत्सव का संगीत गूंज रहा है। इन गीतों में पहाड़ों की सामूहिक आस्था है, प्रार्थना है, जीवंत संगीत है। और सदियों से प्रकृति के साथ चले आ रहे पारिवारिक रिश्ते की एक खूबसूरत कहानी है, जिसमें पहाड़ों की देवी सिर्फ देवी नहीं है बल्कि बेटी है, जिसकी मायके से विदाई हो रही है

बेटी ससुराल जा रही है तो खुशी लाजमी है, पर मन उदास भी है और आंखों में नमी भी है। बेटी बहन की तरह विदा करते हुए देवी माँ से गांव समाज परिवार सभी के लिए आशीर्वाद मांगा जा रहा है और शुभकामनाएं दी जा रही हैं।

0: देवभूमि की आराध्या देवी माँ नंदा की विदाई में पूरा पहाड़ साथ चल रहा है। गांव से निकली उनकी डोली गांव, कस्बे, जंगल, बुग्याल और दुर्गम हिमालय को पार करते हुए हेमकुट जा रही है, लेकिन अभी तो सफर शुरू हुआ है। चमोली के सिद्धपीठ करूर से जो माँ नंदा का मायका माना जाता है, इस यात्रा की 5 सितंबर को शुरुआत हुई। पदार, दशोली और बन की 3 डोलियां कैलाश के लिए रवाना हुई, जो अलग अलग गांव से होते हुए अपने पड़ाव की तरफ बढ़ रही हैं। 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर गांव-गांव माँ नंदा की डोलियां पहुंच रही हैं और उनके स्वागत में लोकगीतों, जागरों और ढोल दमाऊं की थाप से पहाड़ों की वादियां गूंज रही हैं। जिस तरह बेटी की विदाई के अवसर पर मंगल गीत गाए जाते हैं, डोली के गांव में पहुंचते ही महिलाएं गीत और जागर गा रही हैं। हर रास्ते, हर चौक पर भक्ति भाव से मां नंदी की डोली का स्वागत नृत्य संगीत और जयकारे से हो रहा है। बड़े बुजुर्ग हों या फिर बच्चे, इस अद्भुत धार्मिक यात्रा में सभी शामिल हैं और नाचते, झूमते, गाते डोली के संग चल रहे हैं, क्योंकि ये अवसर हर साल नहीं आता। इसीलिए ये जोश, ये भावना और ये भक्ति स्वाभाविक है।
1: माता को अपनी माँ मान के, साक्षी मान के हम उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और हम माता से यही विनती करेंगे, माता हम सबकी रक्षा करे और सारे प्रदेश देशवासियों की रक्षा करे और माता की कृपा हम सब भी भक्तों पे बनी रहे।
2: जय माता दी, जय मां नंदा। आज की यात्रा बड़ी अच्छी रही है। इससे पहले 12 साल पहले हुई थी, उससे अब बेटर हो रही है और हम लोग माता जी का बड़ा स्वागत कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपनी बिटिया के तरह इनको विदा कर रहे हैं और माँ हम लोगों का सब पे आशीर्वाद बना रहे हैं।
3: बहुत ज्यादा उत्साह है, हम इसको बहुत मानते हैं अपनी बेटी की तरह और हम इसको रोज विदा करते हैं, वहाँ तक तो पहुँचाते हैं जहाँ मंदिर है ऊपर सीमल देवी मंदिर, और इसको हम बहुत भव्य दृष्टि से देखते हैं और मनाते हैं।
4: सबसे पहले जो हमारी कुरूड़ से माँ नंदा का आगमन हुआ बंड क्षेत्र में, तो सबसे पहले हमारे पूरे गांव का भ्रमण करती है, दूसरे में एक एक दिन पड़ाव भी रहता है उनका, और उसके बाद हम लास्ट में जाएंगे अपना बंड भूमियाल का मंदिर है और वहां से हमारी जो है 11 बजे करीबन हम कैलाश के लिए हमारी माता प्रस्थान करेगी।
0: देवी नंदा को लेकर पहाड़ों में कई कथाएं हैं। लोक परंपराओं में उन्हें हिमवंत और मोणावती की बेटी और भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती का रूप माना जाता है, लेकिन कहीं नंदा को नंद महाराज की बेटी के रूप में भी याद किया जाता है तो कहीं उन्हें राजा भानु प्रताप की पुत्री बताया जाता है। कहानी है कि नंदा एक राजकुमारी थी जिनसे एक राक्षस राजा जबरन विवाह करना चाहता था, लेकिन नंदा ने भागकर पहाड़ की शरण ले ली, उसी चोटी पर जिसे अब हम उनके नाम से जानते हैं। बर्फ और रहस्य से ढकी पहाड़ियां उनका शाश्वत आश्रय बन गई। लोक कथाओं में पूजित माँ नंदा उत्तराखंड की आराध्य देवी हैं, जिनके प्रति आस्था और भक्ति 12 साल में एक बार अद्भुत रूप से सामने आती है। 280 किलोमीटर की ये तीर्थयात्रा पहाड़ों की सामूहिक धार्मिक आस्था की प्रतीक बन जाती है, इसीलिए तो इसे हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। ये यात्रा है जो हिमालय की ऊंची घाटियों से होकर नंदा देवी के घर तक पौराणिक यात्रा के मार्ग का अनुसरण करती है। 3 हफ्तों की इस यात्रा में हजारों लोग, साधु और भक्त शामिल होते हैं। ये जो 4 सींगों वाला मेढ़ा है, इस यात्रा की अगुवाई करता है और मान्यता ये है कि मेढ़ा देवी द्वारा ही ये भेजा जाता है। 4 सींग वाला चौसिंगा खाडू इस यात्रा की पहचान है। लोक विश्वास के अनुसार यात्रा से पहले इनका जन्म होता है और इसकी विशेष देखभाल की जाती है। आगे चौसिंगा खाड़ू और पीछे नंदा की डोली और फिर श्रद्धालुओं का कारवां। जब यात्रा हेमकुंड पहुंचती है तब खाड़ू की भी विदाई होती है। नंदा के वस्त्र और आभूषण उसके ऊपर रखे जाते हैं, श्रद्धालु उसके माथे पर अक्षत और चंदन लगाते हैं और मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि वो नंदा को सुरक्षित ससुराल पहुंचाए। लेकिन आखिरी पड़ाव आने में अभी देरी है, अभी तो डोलियां गांव-गांव जा रही हैं।
5: निरंतर ये यात्रा हमारी जो चल रही है, तो प्रत्येक गांव का भ्रमण किया जा रहा है और हमारी माँ बहनें अपनी कोई बेटी के रूप में, कोई माँ के रूप में, कोई इष्ट के रूप में माँ की माँ से मनौती भी मांगती है और उसके साथ साथ कैलाश के लिए माँ नंदा को विदा करती है। तो सभी में बड़ा उत्साह है और आप देख रहे होंगे कि आज निरंतर हम प्रातः काल से जो है हमारे पूरे बंड क्षेत्र में भ्रमण हो रहा है। सुबह दिगोली गांव से होकर के हम लोहा गांव, लोहा से गुडरा, गुडरा से अगथला, अगथला से पीपलकोटी में पहुंच गए और रात्रि निवास हमारा जो है आज नौरख में होगा। कल नंदा देवी का हमारा जो सिद्धपीठ यहाँ पे बंड क्षेत्र की है वहाँ पर बहुत बृहद पूजा में की जाएगी और रात्रि का निवास कम्यार गांव में होगा।
0: यात्रा के दौरान कई स्थानों पर डोलियों को उफनते गधेरों और नालों को पार कर आगे बढ़ना पड़ रहा है। दुर्गम पहाड़ी रास्तों और खराब मौसम के बीच श्रद्धालु की आस्था और उत्साह जरा भी कम नहीं है।
6: 5 सितंबर से सिद्धपीठ क्रूड से 3 डोलियां जो बड़ी जात के लिए 3 डोलियां निकल चुकी हैं, जिसमें बधाण की, दसोली की और ये बंड की। आज बंड की डोली अपने 5वें पड़ाव नौरख पीपलकोटी में पहुंच चुकी है और इस तरह से सारी जो तीनों डोलियां हैं अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण करने के पश्चात 13 तारीख को बंड की डोली का मिलन जो दसोली की डोली है उसके साथ होगा रामणी में और 15 तारीख को जो हमारी तीसरी डोली है जो बधाण की है वाण में तीनों डोलियां मिलेंगी। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के बंड क्षेत्र, दसोली क्षेत्र, बधाण क्षेत्र, वहां के देवता के निशान, वहां की छतोलियां और कुमाऊं से, नौटी से, इन सभी जगहों से बड़ी जात यात्रा में सारे देव छतोलियां, देव डोलियां, निशान ये सारे मिलेंगे और उसके बाद अगला पड़ाव उसके बाद होमकुंड तक होगा और सप्तमी और अष्टमी के दिन होमकुंड में पूजा करने के पश्चात सारी डोलियां अपने अपने सिद्धि पीठों को वापस आएंगी।
0: उत्तराखंड की ये महान धार्मिक यात्रा एक देवी या कहीं की बेटी की विदाई है जिसने दुनिया के बजाय पहाड़ों को चुना। इस बेटी के लिए जो प्यार और भक्ति भाव पहाड़ों में है उसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: नंदा देवी न केवल भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है बल्कि उत्तराखंड की पूजनीय देवी भी है। उनके नाम का अर्थ है आनंद देने वाली देवी। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए देवी नंदा एक दिव्य रक्षक, एक बेटी और एक रानी है जिनकी मौजूदगी न सिर्फ लोक कथाओं में है बल्कि रोजमर्रा के जीवन में है। उनकी यात्रा से जुड़े कई पड़ाव हैं और उनसे जुड़ी कई कहानियां भी हैं। चलिए आपको इस यात्रा से जुड़ी मान्यताएं और लोक कथाएं बताते हैं।
8: कपड़ों और गहनों से सजाकर डोली में बैठाकर बेटी की तरह देवी माँ की विदाई। हैरानी नहीं कि नंदा के लिए गाए जाने वाले गीतों में बेटी के बिछड़ने का दर्द सुनाई देता है। लोक कथाओं में विदाई से पहले देवी नंदा बुजुर्गों के गले लगती हैं और महिलाएं उन्हें ससुराल में रहने के तौर तरीके समझाती हैं, स्नेह देती हैं, दुलार करती हैं। इसीलिए ये यात्रा किसी धार्मिक अनुष्ठान से कहीं आगे निकल जाती है, जैसे पूरा पहाड़ एक घर हो और घर से बेटी विदा हो रही हो। कुरूर से निकलने के बाद नंदा की यात्रा धीरे धीरे गांव से आगे बढ़ रही है। हर पड़ाव के साथ यात्रा का आकार बढ़ता जा रहा है। कहीं जागर लगे हैं, कहीं लोग भी गूंज रहे हैं। नंदकेसरी में अलग अलग क्षेत्रों से देवी देवताओं की डोलियां और छंतोलियां पहुंचती हैं, जहां कुरुड़ की नंदा भी आकर मिलती हैं। लेकिन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है वाण गांव। यात्रा 15 सितंबर को यहां पहुंचेगी, जहां देवी नंदा का मिलन उनके धर्म भाई लाटू देवता से होगा। लोक परंपरा में लाटू को नंदा का चचेरा या धर्म भाई माना गया है। वाण के बाद यात्रा ऊंचाई की ओर बढ़ती है और सामने आता है वेदनी बुग्याल। जहां ठंड बढ़ जाती है और सांसों पर ऊंचाई का असर महसूस होने लगता है, लेकिन यात्रियों के कदम नहीं रुकते। फिर आती है एक जगह पातर नचौड़िया। कहानी है कि उज्जैन के राजा यश धवल ने जब यात्रा की थी तो यहाँ पर नृत्य का आयोजन हुआ था। इससे देवी नाराज हो गईं और नर्तकियों को पत्थर में बदल दिया, इसीलिए नाम पड़ा पाथर या पातर नचौड़िया। इसके बाद यात्रा पहुँचती है रूपकुंड। ऊंचे हिमालय में मौजूद ये झील मानव कंकालों के कारण मशहूर है। कंकालों की कहानी भी राजा यश धवल से जुड़ी है, जिन्होंने यात्रा के नियम भंग किए और देवी के कोप से उनका परिवार और साथी संगी मारे गए। लोक विश्वास है कि ये कंकाल उनके ही हैं। यात्रा का अंतिम पड़ाव है होमकुंड, जहां पहुंचकर मानंदा अपनी मायके की अंतिम सीमा पार करती है। 20 सितंबर को होमकुंड में पूजा और हवन होगा। देवी नंदा के वस्त्र और आभूषण चौसिंगा खाड़ू के ऊपर रखे जाएंगे और खाड़ू की विदाई होगी। इसके बाद साथ गए लोग वापस लौटने लगते हैं। लेकिन अभी तो यात्रा आधी भी नहीं हुई है, अभी तो पहाड़ों में रौनक है, उत्सव है। गांव में एक बार फिर चहल पहल लौट आई है। वर्षों से बंद पड़े घरों के ताले खुल गए हैं, क्योंकि प्रवासी परिवार अपने गांव लौट आए हैं। नंदा देवी की यात्रा यहां के लोगों की जड़ों और अपनी माटी से जोड़ती है। मेहमान आए हैं, इसलिए उनके लिए सामूहिक भोजन की व्यवस्था की गई है।
9: भगवती नंदा खुद राजा राजेश्वरी है और कामाख्या खुद राजा राजेश्वरी का ही स्थान है, तो माई की प्रेरणा से ही मैं मैया के साथ आया हूँ। और मूल रूप से मान लीजिए कि भगवती हमारी माँ है और राजराजेश्वरी भगवती यहाँ की बेटी हैं, तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मैं अपने मामा के वहाँ हूँ, और जैसे मामा के वहाँ सबको प्यार मिलता है वैसा ही प्यार मुझे यहाँ पर मिल रहा है।
8: पहाड़ों की ये यात्रा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये ठीक ठीक कोई नहीं जानता। हाँ, ये जरूर है कि लोक कथा और परंपरा के दम पर ये विरासत आगे बढ़ती जा रही है। इसका महत्व सिर्फ गढ़वाल तक नहीं है, बल्कि कुमाऊं में भी नंदा सुनंदा की पूजा और मेलों की परंपरा है। फिलहाल लोकगीतों की स्वर लहरियों, जागरों की गूंज और ढोल दमाओं की थाप पर यात्रा गांव के पगडंडियों से गुजर रही है। चेहरे पर उत्सव की उमंग है और आंखों में विदाई के आंसू।
10: चमोली जनपद में 12 वर्षों के बाद मां नंदा की डोली इस समय नंदा देवी बड़ी जात की यात्रा इस समय चल रही है। ये डोलियां है जो इस समय यहां से अलग अलग पड़ाव से अलग अलग गांव होते हुए आगे बढ़ रही हैं। इसके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं जो श्रद्धालु हैं वो चल रहे हैं जय मां नंदा और बड़ी जात, क्योंकि 12 वर्षों के बाद ये हो रही, तो बड़ा उत्साह हर गांव, हर पड़ाव, हर जगहों पे इस समय देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु जो हैं बड़े उत्साह के साथ यहां पे देखने को मिल रही हैं, हर कोई मां नंदा के जयकारों के साथ, क्योंकि 12 वर्षों के बाद ये यात्रा हो रही है। हर वर्ष लोकजात यात्रा होती है, अगले वर्ष नंदा देवी राजजात यात्रा होनी है। ऐसे में जो उत्साह है 12 वर्षों का, जो भक्त और भगवान की दूरियाँ हैं वो इस वर्ष 12 वर्षों के बाद हो रही है। ऐसे में तीन जो डोलियाँ हैं, नंदा देवी मंदिर जो सिद्धपीठ मंदिर है, कुरूर से निकली थी अलग अलग रास्तों से, ये होमकुंड जो वाण के बाद आएगा जहाँ पे इसका पूरा समापन होगा, ये सारी डोलियाँ एकत्रित होकर एक साथ निकलेंगी। ऐसे में जो मानंदा की 12 वर्षों के बाद ये जो बड़ी जात यात्रा हो रही है, इसमें बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। चाहे नंदा देवी की डोली हो, महाराज राजेश्वरी की डोली हो, अलग अलग पड़ाव पे इस समय लगातार जा रही हैं। हर गांव में हर जगहों पे स्वागत हो रहा है, क्योंकि कई घर ऐसे हैं जिन पे ताले लग जाते हैं, लेकिन मां नंदा की जब यात्रा होती है तो वो ताले इस समय खुल जाते हैं। हर कोई इस समय मां नंदा के लिए एक गाँव से दूसरी गाँव, क्योंकि मां नंदा को जो विदा करने का वो है, वो हर कोई अपनी बेटी की तरह विदा करता है। हर कोई मां नंदा जो यहाँ की आराध्या देवी है उसे अपनी बेटी की तरह समझता है। इस समय विदाई जब एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो आधे रास्ते तक उस गांव के लोग आते हैं, आधे रास्ते तक उस गांव के लोग उन्हें लेने आते हैं जहां आज उनका पड़ाव होगा। अंत में ये होमकुंड रहेंगे, बेदनी और रूपकुंड से ऊपर होमकुंड तक 12 वर्षों के बाद ये डोली यात्रा जाती है। हर वर्ष भले ही लोग जाती है, लेकिन ये 12 वर्षों के बाद जो यात्रा जा रही है वो होमकुंड तक जाएगी, वहीं पे इसका समापन होगा और उसके बाद ये यात्रा समाप्त होगी। 12 वर्षों के बाद एक बार फिर से मां नंदा की यात्रा चल रही है, तो ऐसे में हर कोई उत्साहित दिखाई दे रहा है। कमलन सिलोड़ी, चमोली, GNT।
7: बात करते हैं बप्पा की। जयपुर में गणपति की भक्ति का रंग इस बार कुछ ऐसा चढ़ा है कि बप्पा के दरबार में मिठास भी विशाल हो गई है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में 502 किलो के दो विशाल मोदक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो कहीं पर हजारों लड्डुओं से भोग की तैयारी की जा रही है। पुष्य नक्षत्र का विशेष अभिषेक, संजारे का श्रृंगार और फिर गणपति जन्मोत्सव की तैयारियां, यानी 9 दिनों तक जयपुर में आस्था उत्सव और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिलेगा।

0: मोदक सामने है, मुख पर मुस्कान है और भक्तों की नजरें बस अपने विघ्नहर्ता पर टिकी हैं। मोदक के बीच गणपति विराजमान है। बड़े मोदक, छोटे मोदक, हर आकार में बप्पा के प्रिय भोग की तैयारी है। 251-251 किलो के दो विशाल मोदक, यानी कुल 502 किलो के मिठास और इनके आसपास सजे सैकड़ों दूसरे मोदक, मानो गणपति के दरबार में भक्ति ने खुद मिठास का रूप ले लिया हो। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में आज सजी यह खास झांकी गणेश महोत्सव का ऐसा आकर्षण बनी है, जिसे देखने सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालु पहुँच रहे हैं।
1: भगवान गणेश जी महाराज विराजमान मोती डूंगरी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम कि ये कड़ी है। भगवान को मोदक सबसे ज्यादा पसंद है और रुचिकर लगते हैं, इसलिए भगवान को अलग अलग तरीके के मोदक, अलग अलग आकार में मोदक, अलग अलग वजन में मोदक चढ़ा के भगवान को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ भक्त भी सहस्त्र नाम से, नामावली से, अष्टक सूत्र से लड्डू चढ़ा रहे हैं, वो भी इसी जन्मोत्सव की एक कड़ी है, जिससे जिसकी मनोकामना पूरी हो गई या होने चाहती है उस हिसाब से अष्टक सूत्र से और सहस्त्र नाम से मोदक चढ़ा रहे हैं।
0: 502 किलो के इन दो विशाल मोदकों के साथ 51-51 किलो के 5 मोदक, 21-21 किलो के 21 मोदक और 1.25 किलो के 1100 मोदक भी तैयार किए गए हैं। यही खत्म नहीं होती भोग की भव्यता। गणेश चतुर्थी तक करीब 2,41,000 छोटे लड्डू भी बप्पा को जिमाए जाएंगे। बप्पा के दरबार में लगभग 2.5 लाख लड्डुओं का भोग करीब 15,000 किलो सामग्री से तैयार किया जा रहा है। यानी मोती डूंगरी में इस बार गणपति के लिए भोग भी खास है और उसका पैमाना भी खासा विशाल।
2: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, यही जयकारे हैं जो आने वाले कुछ दिन तक हर मंदिर में समय पे पूरे देश भर में सुनाई देने वाले हैं, क्योंकि गणेश उत्सव शुरू हो चुका है। और जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में मैं भी मौजूद हूँ, जहाँ आज मोदक झांकी लगाई गई है। 15,000 किलो सामग्री से बनाए हुए ये 2.5 लाख मोदक भगवान गणेश जी महाराज को जिमाए जा रहे हैं, उनको अर्पित किए गए हैं। और आज के दिन ये जो मोदक झांकी है, ये आम मोदक नहीं है। इस मोदक झांकी में करीब 251 किलो के 2 मोदक यहाँ पे गणेश जी महाराज को अर्पित किए गए हैं, साथ ही साथ में 51-51 किलो के 5 मोदक, 21-21 किलो के 21 मोदक, 1.25 किलो के करीब 1100 मोदक, और उसके अलावा जो छोटे छोटे मोदक हैं वो करीब 2,41,000 यहाँ पे अर्पित किए गए हैं, सभी भक्तों में भी बांटे जा रहे हैं। सामग्री की मैं बात करूं तो इन मोदकों को बनाने के लिए करीब 2500 किलो शुद्ध घी की सामग्री इस्तेमाल हुई है, 3000 किलो बेसन इस्तेमाल हुआ है, 9000 किलो शक्कर और करीब 500 किलो सूखे मेवे जो है वो इस्तेमाल किए गए।
0: इतने बड़े आयोजन के पीछे तैयारी भी महीनों से चल रही है। घी, बेसन, शक्कर और सूखे मेवों से तैयार हो रही ये मिठाई एक एक लड्डू को बापा के चरणों तक पहुंचाने की लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। दरअसल मोती डूंगरी में 7 से 15 सितंबर तक 9 दिवसीय गणेश महोत्सव चल रहा है। महिलाओं की कलश यात्रा और जलाभिषेक से शुरू हुआ ये उत्सव हर दिन गजानन के अलग स्वरूप और अलग रंग का साक्षी बनेगा। हर दिन बदलता दृश्य, हर शाम नया रंग और हर पल बाप्पा के नाम। उत्सव का एक और खास पड़ाव होगा 13 सितंबर का संजार।
2: भक्तों को कहा गया है कि आप बाहर से प्रसाद नहीं लेके आए, यहीं पे जो ये 2.5 लाख मोदक गणेश जी को चढ़ाए गए हैं वो ही आज उनको जिमाए जाएंगे, वही प्रसाद के रूप में बांटे जाएंगे। ये बहुत ही भव्य झांकी है और ये अभी से ही नहीं, ये जो गणेश उत्सव है मोती डूंगरी मंदिर का, ये करीब 7 दिन का होता है, जो कि 7 सितंबर से शुरू हो गया था, जिसकी शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जिसके बाद में महाअभिषेक यहाँ पे 8 तारीख को किया गया। आज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो बहुत ही भव्य मोदक झांकी है। इसके अलावा आने वाले 3 दिन हम यहाँ पर फूलों की, फलों की और सब्जियों की बहुत ही खूबसूरत झांकियां देख पाएंगे, जिसके बाद में सिंजारा में मेहंदी वितरण समारोह इस मंदिर में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। तो उस दिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो मेहंदी बांटी जा रही है वो अगर लेके जाएंगे तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनको शादी करनी है तो उनकी शादी बहुत जल्द हो जाती है।
0: फिर आएगा वो दिन जिसका इंतजार हर गणेश भक्त को है, 14 सितंबर यानी गणपति का खास दिन।
2: 14 तारीख को गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, जिसमें गणेश जी महाराज यहाँ पे बहुत खूबसूरत श्रृंगार में नजर आएंगे। इस समय पे बहुत ही सारे भक्त मुझे इस मंदिर में नजर आ रहे हैं। हर एक भक्त इंतजार कर रहा है कि कब वो गणेश जी महाराज तक पहुंच पाएगा, क्योंकि आज बुधवार का दिन भी है। तो बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने शुभ काम किए हैं या फिर नई गाड़ियां ली है, अपने जो प्रॉपर्टी की डील्स है वो की है, तो ऐसे में भी कहा जाता है कि गणेश जी महाराज क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय है तो सबसे पहले उनको पूजा जाता है। तो गाड़ी की चाबी या फिर जो भी उनका शुभ काम हुआ है उससे संबंधित चीज के लिए पहले गणेश जी को भोगने आते हैं। वही भक्त आज यहाँ पे आए हैं, दर्शन करने वाले भी काफी सारे भक्त यहाँ पे आए हैं। जो गणेश उत्सव के कार्यक्रम है वो सिर्फ झांकियों तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। हर शाम यहाँ पे अलग अलग रंगारंग कल्चरल कार्यक्रम होंगे, ध्रुपद गायन जैसे कार्यक्रम होगा, कथित नृत्य के कार्यक्रम होंगे। तो ये जो गणेश उत्सव है बहुत ही ज्यादा खास सभी भक्तों के लिए इस बार साबित होने वाला है।
0: दोपहर 1:30 से 2 बजे तक आधे घंटे के लिए पट मंगल रहेंगे, इसके बाद फिर भक्तों के लिए कपाट खुलेंगे। जन्मोत्सव पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए इस बार व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहली बार महिलाओं के लिए अलग दर्शन लाइन होगी, 6 प्रवेश और 8 निकास द्वार रखे गए हैं, होल्डिंग एरिया भी बढ़ाए गए हैं। बुजुर्गों और निशक्त जनों के लिए 100 ई रिक्शा, 4 इलेक्ट्रिक लो फ्लोर बसें और व्यवस्थाओं को संभालने के लिए करीब 500 स्वयंसेवक तैनात रहेंगे। तो मोदकों से सजा ये दरबार अभिषेक की पवित्रता से होकर सिंजारे के श्रृंगार तक पहुंचेगा, फिर जन्मोत्सव की खुशियों में खिलेगा और आखिर में शोभा यात्रा बनकर पूरे जयपुर को अपने रंग में रंग देगा। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: क्या आपकी खुद की फोटो आपकी समस्याओं को दूर कर सकती है? क्या खुद की फोटो की सहायता से आपको रोजगार और धन का फायदा हो सकता है? क्या खुद की फोटो आपको मुकदमेबाजी से मुक्ति दिला सकती है? आपकी अपनी फोटो से कैसे मिलेगी सफलता, कैसे बनेंगे काम, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी शक्ति, रूस की घातक RVV-BD मिसाइलों से लैस होंगे लड़ाकू विमान, सुखोई 300 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट कर सकेंगे ध्वस्त। जयपुर में गणेश महोत्सव की रौनक, मोती डूंगरी मंदिर में बप्पा को लगाया गया हजारों मोदकों का भोग, चढ़ाए गए मोदकों में 251 किलो 21 किलो के मोदक। गणपति उत्सव के रंग में रंगने लगी मुंबई, ऐतिहासिक चिंचपोकली उत्सव मंडल में इस बार भगवान वेंकटेश्वर बालाजी से प्रेरित रूप में नजर आए बप्पा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में निकली 26 छड़ियों की भव्य शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की थाप से गूंजा शहर, शोभा यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। अब आपदा से पहले मिलेगा अलर्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट

नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी गणेशोत्सव की परंपरा और इतिहास की। अब से चार दिन बाद गणपति उत्सव का शुभारंभ होने वाला है। हर साल 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव को पूरे भारत में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे भारतीय भी इस उत्सव को बड़े उल्लास और उमंग के साथ मनाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में गणपति उत्सव का सबसे गाढ़ा रंग अगर कहीं नजर आता है तो वो है महाराष्ट्र। उत्सव के दौरान पूरे महाराष्ट्र में बप्पा की भक्ति के रंग साफ नजर आते हैं और बताया जाता है कि गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे से हुई थी। कोंकण में गणपति पूजन की परंपरा कई राजवंशों से होते हुए छत्रपति शिवाजी और फिर पेशवाओं के राज में भी समृद्ध होती गई। लेकिन क्या आपको मालूम है कि गणपति उत्सव के वर्तमान स्वरूप की शुरुआत कैसे हुई? तो चलिए आपको दिखाते हैं गणपति उत्सव के श्री गणेश की कहानी।

ये सिर्फ एक मूर्ति का स्वागत नहीं है, ये हर साल भारत के हृदय में उठने वाला एक ऐसा ज्वार है जो धर्म, जाति और सीमाओं की हर दीवार को ढहा देता है। वो महापर्व जिसकी जड़ें इतिहास के सीने में बहुत गहराई तक धंसी हैं। शास्त्र कहते हैं कि गणेश बुद्धि के नियंत्रक हैं, विघ्नहर्ता हैं। उनसे मिला शुभता का आशीर्वाद हर शुभ कार्य की दहलीज है। उनके बिना कोई संकल्प पूरा नहीं होता, कोई यात्रा शुरू नहीं होती। हर साल उन्हीं गणनायक के लिए शहर शहर सबसे भव्य यात्रा निकाली जाती है। भाद्रपद की चतुर्थी को इस यात्रा के बाद जब बाप्पा घरों में आते हैं तो वे एक भगवान बनकर नहीं बल्कि घर के सबसे लाडले सदस्य बनकर आते हैं। कोई उन्हें दुलारता है, कोई उनके पसंदीदा मोदक बनाता है, तो कोई अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी उनके कानों में फुसफुसा कर कह देता है। लेकिन गणेशोत्सव का ये रूप हमेशा से ऐसा नहीं था। इस उत्सव को जन जन तक पहुंचने में, एक आंदोलन बनने में सदियों का सफर तय करना पड़ा। 17वीं शताब्दी में हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर में पड़ा आस्था का ये बीज आज महाराष्ट्र में श्रद्धा का वटवृक्ष बनकर लहलहा रहा है। मराठी में एक कहावत है, मनाचा गणेश मनम वसावा, यानी भगवान गणेश हमारे मन में, हमारी चेतना में बसने चाहिए। वास्तव में ये त्योहार महाराष्ट्र की चेतना में गहराई तक समाया है। इस राज्य के लिए गणपति उत्सव एक त्योहार भर नहीं है, बल्कि ये सनातन धर्म की परंपराओं को वर्तमान से जोड़ने वाली श्रद्धा की एक डोर है, जिसका एक सिरा इस क्षेत्र में शताब्दियों पहले शासन करने वाले सप्तवाहन शासकों से होता हुआ महाराष्ट्र के गर्व तिलक छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी से जुड़ता है। इतिहास बताता है कोंकण क्षेत्र में शुरुआत से ही शिवपुत्र गणेश की उपासना की जाती रही है। गजानन को यहाँ विद्या और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता रहा है। बताया जाता है कि महाराष्ट्र में सप्तवाहन, राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाओं ने गणेशोत्सव की शुरुआत करवाई थी। छत्रपति शिवाजी के दौर में गणेश उपासना की परंपरा और परवान चढ़ी। इतिहास में ये वर्णन मिलता है कि शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी माँ जीजाबाई ने पुणे के ग्राम देवता कस्बा गणपति की स्थापना की थी। 1630 में जीजाबाई अपने पति शाहजी

0: घोंसले के साथ पुणे गई थी। उसी समय उन्होंने इस गणेश मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। कालांतर में शिवाजी महाराज ने पुणे के कस्बा गणपति को अपने साम्राज्य का केंद्र बिंदु बनाया। भोसले राजवंश के काल में ये पर्व महलों से निकलकर मावल के वीर सैनिकों के घरों तक पहुंचा और मराठा साम्राज्य की सांस्कृतिक पहचान का अविभाज्य अंग बन गया।
1: गणेश जी हिंदुओं के आराध्य देवत है। आराध्य का मतलब ऐसा है कि जो असाध्य काम होते, जो मुमकिन भी नहीं होते, ऐसे काम वो करते हैं। और शुरू से बहुत सालों पुराने ये बात है कि सब हिंदू उनकी पहला पूजन करते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सातवां राष्ट्रकूट चालुक्य आदि राजाओं ने गणेशोत्सव की प्रथा चलाई है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जो वो भी हुए हमारे देवत है, उन्होंने भी गणेश जी की उपासना की है। तो जैसे कि माता भवानी और गणेश जी दोनों की उपासना करते थे,
0: इसी तरह पुणे में पेशवाओं के निवास शनिवार वाड़ा में हर साल भव्य गणपति उत्सव का आयोजन होता था। पुणे के लोग और पेशवाओं के सेवक काफी उत्साह के साथ हर साल गणेश उत्सव मनाते थे। इस उत्सव के दौरान ब्राह्मणों को महाभोज दिया जाता था, गरीबों को मिठाई और पैसे बांटे जाते थे।
1: जैसे कि ये शुरुआत जो हुए, मतलब शिवाजी महाराज वो भी हमारे आराध्य देवत हैं, और उनके बाद जब मराठाओं से पेशवा आ गए वहां गद्दी पे, तो उनको वो तो आदर्श थे ना छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनके आदर्श के रास्ते पर चलना उनका काम था। और पेशवाओं ने भी उसी तरह जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज पूजन करते थे, और उसी तरह उन्होंने भी ये पूजन किया और इसको आगे बढ़ाया।
0: पेशवाओं के महल शनिवार वाड़ा में कीर्तन भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। भजन कीर्तन की यह परंपरा आज भी जारी है। पेशवाओं के चरम और ब्रिटिश शासन के दौर में भी कोंकण क्षेत्र में गणपति उत्सव बदस्तूर जारी रहा, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उत्सव का स्वरूप बदलने लगा। अंग्रेजों के अत्याचार और दमनकारी नीतियों ने समाज को जोड़ने वाली आस्था के इस उत्सव का रंग समय के साथ फीका कर दिया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह उत्सव अपनी वर्तमान भव्यता की ओर बढ़ गया? आगे सुनाएंगे कहानी गणेश उत्सव के उत्थान की। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: तो ये तो बात हुई रजवाड़ों के दौर में गणेशोत्सव के स्वरूप की, लेकिन महाराष्ट्र के गणेशोत्सव का जो स्वरूप आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उसकी शुरुआत आज से लगभग 125 साल पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने करवाई थी। यानी कि इस उत्सव के राष्ट्रीय पहचान तो शिवाजी महाराज और पेशवाओं के दौर में मिली, लेकिन इसे राष्ट्रीय गौरव का विषय बनाया स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं रखा, बल्कि गणेशोत्सव को आजादी की लड़ाई और छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने का जरिया भी बनाया। आजादी के नजदीकी सालों में गणेशोत्सव ने एक आंदोलन का स्वरूप ले लिया था।

0: ये ठीक है कि गणेश उत्सव को गणपति के आगमन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वास्तव में कोंकण के बड़े हिस्से और बाद में पूरे महाराष्ट्र के लिए ये उत्सव आस्था के साथ साथ समाज के उत्थान और बदलाव की धारा का उद्गम स्थल बनता चला गया। महाराष्ट्र के गणपति उत्सव के वर्तमान अध्याय की शुरुआत ठीक इसी जगह पर हुई थी। ये पुणे के भाऊ रंगारी गणपति मंडल का पंडाल है। बताया जाता है कि यही वो पंडाल है जहां से एक लंबे दौर के बाद फिर से गणपति उत्सव की शुरुआत हुई थी, वो भी एक नए उद्देश्य के साथ। ये बात है साल 1893 की, जब मुंबई की पिधौनी में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। अपनी कुटिल नीति और स्वार्थ को सर्वोपरि रखने वाले अंग्रेजों ने दंगों को शांत करने की बजाय उस दौर में समाज और लोगों के बीच दरार बढ़ाने का काम किया। दंगों की वजह से महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके का माहौल खराब हो गया था। ऐसे समय में पुणे के भाऊ साहेब लक्ष्मण जावले यानी भाऊ साहेब रंगारी ने सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए अपने घर में भव्य गणेश पंडाल लगाकर पूजा की शुरुआत करवाई थी।
1: पुणे में भाऊ साहब रंगारी, श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई, ये जो उस जमाने के जो प्रतिष्ठित लोग थे, और उन्होंने ये गणपति उत्सव ये देखा था। यहाँ पुणे के उनके एक सहकारी ग्वालियर में गए थे और वहां उन्होंने 40 दिन का गणेश उत्सव देखा और वो कल्पना उनको बहुत अच्छी लगी। और जो आप बात कर रहे सांप्रदायिक दंगे की, तो उनका एक मीटिंग हुआ लोकमान्य जी तिलक के साथ, और उस मीटिंग में इस बात का महत्व उन्होंने जाना कि इसमें गणेश फेस्टिवल इसको सार्वजनिक यदि किया तो समाज इकट्ठा आ सकता है।
0: दरअसल ब्रिटिश शासन के उस दौर में लोग किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या उत्सव को साथ मिलकर या एक जगह इकट्ठा होकर नहीं मना सकते थे। तो ज्यादातर लोग घरों में ही पूजा किया करते थे। ऐसे में भाऊ रंगारी के घर पर हुए इस भव्य सामूहिक आयोजन की चर्चा दूर दूर तक हुई। जब ये चर्चा स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक तक पहुंची, तो उन्होंने अपने अखबार केसरी में इसकी तारीफ की। इसके बाद तिलक ने अपने पुणे के घर केसरीवाड़ा में एक सार्वजनिक गणेश पूजा का आयोजन किया था।
1: बराबर है, लोकमान्य जी तिलक जानते थे कि हर घर में पूजा होती है और उस पूजा को इकट्ठा आने की यहाँ परंपरा है, इसीलिए उन्होंने ऐसी मीटिंग करके गणेश उत्सव की उनकी जो कल्पना है वो सबके सामने रखी। और 1893 में वो पहले साल एक 6-7 गणपति बैठे, उसमें भाऊ साहेब रंगारी, श्रीमंत दगडूशेठ, लोकमान्य जी तिलक था, वैसे नामचीन जो गणेश मंडल थे वो बैठे और वो उसको लोगों ने बहुत सराहा। और नेक्स्ट ईयर 100 मंडल बैठे ऐसे, तो समाज इकट्ठा आने लगा, गणेश जी की सार्वजनिक तौर पे पूजा अर्चा होने लगी।
0: इसके बाद लोकमान्य तिलक ने ऐसी सार्वजनिक आयोजनों को बढ़ावा देने की अपील भी की। लोकमान्य तिलक ने साल 1893 में ही मुंबई के गिरगांव इलाके में पहले गणेश पूजा मंडल की स्थापना की। इस मंडल का नाम था केशवी नाईक चौल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल। ये मंडल आज भी गणपति पूजा का आयोजन करता है।
2: एकता के धागा का नाम था गणेशोत्सव। बाप्पा के चरणों में, बाप्पा के सामने सब झुक जाते हैं और इसी कारण एक ही पूजन, एक ही भजन, एक ही देवता, और देवता से लेके एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्र तक ये पूरी परंपरा चलनी चाहिए, इसके युग प्रवर्तक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। और खुद का उदाहरण सार्थ करने के लिए अपने ही घर में केसरीवाड़ा में उन्होंने गणेशोत्सव की शुरुआत।
0: इस तरह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाया। उस वक्त लोकमान्य तिलक को भी यह एहसास नहीं होगा कि आगे चलकर उनका यही प्रयास एक आंदोलन बनने वाला था। बाल गंगाधर तिलक जिस समय गणेश पूजा को सार्वजनिक बनाने की बात कर रहे थे, ये वो दौर था जब जाति, वर्ग और वर्ण के आधार पर कई लोगों के लिए मंदिरों में प्रवेश तक वर्जित था। ऐसे में तिलक और उनके साथियों ने गणेशोत्सव को छुआछूत के खिलाफ अभियान का रूप दे दिया। 1907 में तिलक ने शुक्रवार पेट के गणेश पंडाल में पूजन किया, जबकि ये एक रेड लाइट एरिया था। इसके अलावा भी लोकमान्य तिलक अकोला और सांगली के कई ऐसे पूजा पंडालों में गए जहां उस दौर में अछूतों की संख्या ज्यादा मानी जाती थी। नतीजा ये हुआ कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तो गणेश पूजा पंडालों की संख्या बढ़ी ही, बल्कि इस उत्सव का प्रचार दूसरे प्रांतों तक हो गया।
1: वो जमाना ही ऐसे था, तब वो छूत अछूत वो बातें चलती थी, तो इसी उस जमाने में दगड़ूशेठ मंडल ने एक अनोखा कदम उठाया था। आज की तारीख में भी केसरी के अखबार में वो फोटो है कि हमारे यहाँ जो साफ स्वच्छता करने वाले जो कर्मचारी थे, जो टॉयलेट भी स्वच्छता करते हैं, उस एक जोड़ी को, भंगी जोड़ी को गणेश जी के पूजा आरती हमने करवाई। उस टाइम बहुत लोगों ने, जो कर्मठ थे, उन्होंने टीका भी की गणेश मंडल पे दगड़ूशेठ के, लेकिन बहुत लोगों ने सराहा और तब जाके ये छूत अछूत की बातें कम होने लगी।
0: लोकमान्य तिलक ने उस दौरान गणेशोत्सव को जो स्वरूप दिया, उससे भगवान गजानन राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। 1910 का साल आते आते गणेश पूजा पंडाल बस सार्वजनिक संदेश का मंच भर नहीं रह गए, बल्कि इनके जरिए स्वतंत्रता संग्राम की आवाजें भी उठने लगी।
1: गणेश उत्सव मंडल से ही कार्यकर्ता बनता है, उस कार्यकर्ता से वहाँ के एरिया का वो पॉलिटिकल नेता बनता है, और उससे वहाँ जो जो आगे जाता है वो राज्य की और देश की सेवा करता है। ऐसे बहुत सारे राजकीय नेताओं को गणेश उत्सव ने निर्माण किया है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गणेश उत्सव रस्ते पे होता है, सार्वजनिक तौर पे होता है। अलग अलग विचारधारा वाले कार्यकर्ता एक मंच पे आते हैं और अपनी विचारधारा शेयर करते हैं, लेकिन उनके उनको जो कॉमन बात है वो गणेश जी है, गणेश जी की भक्ति है।
0: उस दौर में क्रांतिकारियों ने गणेश उत्सव का उपयोग आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए किया। महाराष्ट्र के नागपुर, वर्धा, अमरावती जैसे शहरों में गणेश उत्सव के जरिए आजादी के आंदोलन को धार दी गई। गणेश उत्सव में वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बैरिस्टर जयकर, रेंगलर परांजपे, पंडित मदन मोहन मालवीय, मौलिक चंद्र शर्मा, बैरिस्टर चक्रवर्ती, दादा साहेब खारपड़े और सरोजिनी नायडू जैसे मुखर और प्रखर जननेता भाषण देने आने लगे। उत्सव के दौरान पंडाल में गणपति को नेताओं और क्रांतिकारियों के वेश में सजाया जाने लगा।
1: उन नेताओं का प्रभाव भारत के देशवासियों पर था, और गणेश जी ऐसी देवता है कि सबको ऐसा लगता है कि ये गणेश जी के ही गण है। गणेश जी बोले तो गणों के समूह के जो अधिपति है, समूह के ईश्वर है, गणनायक है, और उन नेताओं में वो गणेश गण देखते थे। इसलिए गणेश उत्सव में उसका रिफ्लेक्शन आता था कि गणेश जी की मूर्ति उन नेताओं से मिलती जुलती मूर्तिकार बनाने लगे, ताकि वो लोगों के मन में जो बात है वो एक गणेश जी के एक दूत है, गणेश जी के गण है, तो उसको सोच के उन्होंने ऐसी मूर्तियां उन नेताओं के फेस की उस जमाने में बनाई होगी।
0: देखते ही देखते गणेश उत्सव स्वाधीनता की लड़ाई का एक मंच बन गया था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेज भी गणेश उत्सव के बढ़ते स्वरूप से घबराने लगे थे। इस बारे में रॉलेट समिति रिपोर्ट में भी चिंता जताई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया, गणेश उत्सव के दौरान युवकों की टोलियां सड़कों पर घूम घूम कर अंग्रेजी शासन विरोधी गीत गाती हैं और स्कूली बच्चे पर्चे बांटते हैं, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने और मराठों से शिवाजी की तरह विद्रोह करने का आह्वान होता है। साथ ही अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए धार्मिक संघर्ष को जरूरी बताया जाता है। कभी पुणे में शुरू हुई गणेश पूजा आजादी के लगभग 8 दशक बाद अब केवल महाराष्ट्र में ही हजारों सार्वजनिक गणेश मंडल हो चुके हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, एमपी, यूपी और गुजरात में भी काफी संख्या में गणेश उत्सव मंडल हैं। इतना ही नहीं, अब तो विदेशों में भी गणेश उत्सव मनाया जाने लगा है। दुनिया भर में फैले भारतीय हर साल धूमधाम से गणपति उत्सव मनाते हैं। भारत में अब गणेश उत्सव के 10 दिनों में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार होता है। पंडालों की बढ़ती संख्या के साथ साथ धीरे धीरे इस उत्सव से जुड़ी एक अलग अर्थव्यवस्था तैयार हुई, जिससे आज लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। 19वीं सदी के अंत में लोकमान्य तिलक का लगाया वो पौधा आज श्रद्धा का विशाल वृक्ष बनकर लहलहा रहा है, जिसकी छांव तले समाज और आस्था साथ साथ पल रहे हैं, चल रहे हैं, बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: महाराष्ट्र की बात और है, लेकिन अब गणेशोत्सव देश के ज्यादातर हिस्सों में खूब धूमधाम से मनाया जाने लगा है। इस बार भी बप्पा की आराधना का ये उत्सव बेहद उत्साह से मनाया जाएगा। देश भर में शहर शहर गणपति उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर आज आई है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेशोत्सव के मौके पर 7 दिनों तक भव्य उत्सव चलता है और इसका शुभारंभ हो चुका है। आज मोती डूंगरी मंदिर में अभी गणपति को 2.5 लाख लड्डुओं का झांगी सजाई गई। गणेश चतुर्थी तक भगवान गणेश को कुल 15,000 किलो सामग्री से तैयार हुए 2.50 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। इस मोदक झांकी में सबसे खास बात है 251 किलोग्राम के 2 विशाल मोदक, और इसके अलावा बप्पा के लिए 51 किलोग्राम के 5 मोदक और 21 किलोग्राम के 21 मोदक भी तैयार किए गए हैं। सुबह 5 बजे से ही भक्त इस विशेष झांकी के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में आज बाहर से लाया गया प्रसाद नहीं चढ़ाया जा रहा है, अब क्योंकि लड्डू विशालकाय हैं, सो उन्हें बनाने के लिए सामग्री में हजारों किलो के हिसाब से इस्तेमाल सामग्री हुई है। और इस मोदक झांकी में क्या है खास, जयपुर से मेरी सहयोगी रिदम बता रही है।
1: जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में मैं भी मौजूद हूँ, जहाँ आज मोदक झांकी लगाई गई है। 15,000 किलो सामग्री से बनाए हुए ये 2.5 लाख मोदक भगवान गणेश जी महाराज को जिमाए जा रहे हैं, उनको अर्पित किए गए हैं। और आज के दिन ये जो मोदक झांकी है ये आम मोदक नहीं है, इस मोदक झांकी में करीब 251 किलो के 2 मोदक यहाँ पे गणेश जी महाराज को अर्पित किए गए हैं। साथ ही साथ में 51 किलो के 5 मोदक, 21 किलो के 21 मोदक, 1.25 किलो के करीब 1100 मोदक, और उसके अलावा जो छोटे छोटे मोदक हैं वो करीब 2,41,000 यहाँ पे अर्पित किए गए हैं, सभी भक्तों में भी बांटे जा रहे हैं। सामग्री की मैं बात करूं तो इन मोदकों को बनाने के लिए करीब 2500 किलो शुद्ध घी की सामग्री इस्तेमाल हुई है, 3000 किलो बेसन इस्तेमाल हुआ है, 9000 किलो शक्कर और करीब 500 किलो सूखे मेवे जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। आज सभी भक्तों को कहा गया है कि आप बाहर से प्रसाद नहीं लेके आए, यहीं पे जो ये 2.5 लाख मोदक गणेश जी को चढ़ाए गए हैं वो ही आज उनको जिमाए जाएंगे, वही प्रसाद के रूप में बांटे जाएंगे। ये बहुत ही भव्य झांकी है, और ये अभी से ही नहीं, ये जो गणेश उत्सव है मोती डूंगरी मंदिर का, ये करीब 7 दिन का होता है, जो कि 7 सितंबर से शुरू हो गया था, जिसकी शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जिसके बाद में महाअभिषेक यहाँ पे 8 तारीख को किया गया। आज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो बहुत ही भव्य मोदक झांकी है, इसके अलावा आने वाले 3 दिन हम यहाँ पर फूलों की, फलों की और सब्जियों की बहुत ही खूबसूरत झांकियां देख पाएंगे, जिसके बाद में सिंजारा में मेहंदी वितरण समारोह इस मंदिर में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। तो उस दिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो मेहंदी बांटी जा रही है वो अगर लेके जाएंगे तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनको शादी करनी है तो उनकी शादी बहुत जल्द हो जाती है, शुभ मुहूर्त जो है वो उस मेहंदी को लगाने से बहुत जल्द आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो झांकी है ये बहुत खास है। 14 तारीख को गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, जिसमें गणेश जी महाराज यहाँ पे बहुत खूबसूरत श्रृंगार में नजर आएंगे। इस समय पे बहुत ही सारे भक्त मुझे इस मंदिर में नजर आ रहे हैं, हर एक भक्त इंतजार कर रहा है कि कब वो गणेश जी महाराज तक पहुंच पाएगा, क्योंकि आज बुधवार का दिन भी है। तो बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने शुभ काम किए हैं या फिर नई गाड़ियां ली है, अपनी जो प्रॉपर्टी की डील्स हैं वो की है, तो ऐसे में भी कहा जाता है कि गणेश जी महाराज आज क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय है तो सबसे पहले उनको पूजा जाता है, तो गाड़ी की चाबी या फिर जो भी उनका शुभ काम हुआ है उससे संबंधित चीज के लिए पहले गणेश जी को ढोकने आते हैं। वही भक्त आज यहाँ पे आए हैं, दर्शन करने वाले भी काफी सारे भक्त यहाँ पे आए हैं। जो गणेश उत्सव के कार्यक्रम है वो सिर्फ झांकियों तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, हर शाम यहाँ पे अलग अलग रंगारंग कल्चरल कार्यक्रम होंगे, ध्रुपद गायन जैसा कार्यक्रम होगा, कथक नृत्य के कार्यक्रम होंगे। तो ये जो गणेश उत्सव है वो बहुत ही ज्यादा खास सभी भक्तों के लिए इस बार साबित होने वाला है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, भुवनेश्वरी, जयपुर।
2: भगवान को मोदक सबसे ज्यादा पसंद है और रुचिकर लगते हैं, इसलिए भगवान को अलग अलग तरीके के मोदक अलग अलग आकार में मोदक, अलग अलग वजन में मोदक चढ़ा के भगवान को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ भक्त भी सहस्त्र नाम से, नामावली से, अष्टक स्तोत्र से लड्डू चढ़ा रहे हैं, वो भी इसी जन्मोत्सव की एक कड़ी है, जिससे जिसकी मनोकामना पूरी हो गई या होने चाहती है वो उस हिसाब से अष्टक स्तोत्र से और सहस्त्र नाम से मोदक चढ़ा रहे हैं।
0: और जीएनटी स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: क्या आपकी खुद की फोटो आपकी समस्याओं को दूर कर सकती है? क्या खुद की फोटो की सहायता से आपको रोजगार और धन का फायदा हो सकता है? क्या खुद की फोटो आपको मुकदमेबाजी से मुक्ति दिला सकती है? आपकी अपनी फोटो से कैसे मिलेगी सफलता, कैसे बनेंगे काम, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी शक्ति, रूस की घातक RBV BD मिसाइलों से लैस होंगे लड़ाकू विमान, सुखोई 300 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट कर सकेंगे ध्वस्त। जयपुर में गणेश महोत्सव की रौनक, मोती डूंगरी मंदिर में बप्पा को लगाया गया हजारों मोदकों का भोग चढ़ाया गया, मोदकों में 251 किलो 21 किलो के मोदक। गणपति उत्सव के रंग में रंगने लगी मुंबई, ऐतिहासिक चिंचपोकली उत्सव मंडल में इस बार भगवान वेंकटेश्वर बालाजी से प्रेरित रूप में नजर आया बप्पा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में निकली 26 छड़ियों की भव्य शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की थाप से गूंजा शहर, शोभा यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। अब आपदा से पहले मिलेगा अलर्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज ने बनाया मोबाइल ऐप आपदा सहायक, पहाड़ी इलाकों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया ऐप। प्राकृतिक आपदा के बाद हालात संभालने में जुटे नेपाल को भारत ने भेजी मदद की, 8वीं खेप 35 टन जरूरी सामान लेकर वायुसेना का विमान काठमांडू हुआ रवाना।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं हिमालय के महाकुंभ की, उस यात्रा की जो उत्तराखंड की लोक परंपरा और धार्मिक आस्था से गहरी जुड़ाव रखती है और प्रकृति के साथ इंसानी रिश्ते की एक मिसाल है। ये यात्रा वैसे तो देवी नंदा की है, लेकिन 12 साल के अंतराल पर उनकी विदाई मायके से बेटी की तरह की जाती है। कुछ दिन पहले शुरू हुई ये यात्रा अब अलग अलग गांव और पगडंडियों से होते हुए आगे बढ़ रही है। लगातार हर गांव, कस्बे और इलाके में देवी नंदा की डोली का भव्य स्वागत किया जा रहा है। लोकगीत गाए जा रहे हैं और जयकारे लगातार लगाए जा रहे हैं। आज आपको इस बड़ी जात यात्रा की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही देवी नंदा का महत्व, उनकी कहानी भी समझाने की कोशिश करेंगे। हिमालय के ऊंचे शिखर पर इस यात्रा का समापन होता है, लेकिन उससे पहले यात्रा के अहम पड़ाव और उनसे जुड़ी कहानियां भी सुनाएंगे आपको। हिमालय की वादियों में इन दिनों आस्था का एक ऐसा सफर चल रहा है जिसमें देवी को सिर्फ पूजा नहीं जाता बल्कि बेटी मानकर विदा किया जाता है। करीब 280 किलोमीटर की इस यात्रा को दुनिया की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा माना जाता है, जिसमें देवी नंदा की डोली के साथ श्रद्धालु ऊंचे पहाड़ की मुश्किल चढ़ाई करते हैं। इस वक्त देवी नंदा की 3 डोलियां सभी गांवों से होकर गुजर रही है। 12 साल बाद होने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में पूरा पहाड़ शामिल होता है। ये यात्रा परंपरा की है, प्रकृति के साथ रिश्तों की है और उस अटूट विश्वास की भी है जो सदियों से देवभूमि की पहचान बना हुआ है।

बादलों से घिरे हिमालय के शिखरों पर यूं तो मौन का बसेरा है, पर गौर से सुनिए, हरे जंगलों के साए में गुजर रही पगडंडियों पर उत्सव का संगीत गूंज रहा है। इन गीतों में पहाड़ों की सामूहिक आस्था है, प्रार्थना है, जीवंत संगीत है। और सदियों से प्रकृति के साथ चले आ रहे पारिवारिक रिश्ते की एक खूबसूरत कहानी है, जिसमें पहाड़ों की देवी सिर्फ देवी नहीं है बल्कि बेटी है, जिसकी मायके से विदाई हो रही है

बेटी ससुराल जा रही है तो खुशी लाजमी है, पर मन उदास भी है और आंखों में नमी भी है। बेटी बहन की तरह विदा करते हुए देवी माँ से गांव समाज परिवार सभी के लिए आशीर्वाद मांगा जा रहा है और शुभकामनाएं दी जा रही हैं।

0: देवभूमि की आराध्या देवी माँ नंदा की विदाई में पूरा पहाड़ साथ चल रहा है। गांव से निकली उनकी डोली गांव, कस्बे, जंगल, बुग्याल और दुर्गम हिमालय को पार करते हुए हेमकुट जा रही है। लेकिन अभी तो सफर शुरू हुआ है। चमोली के सिद्धपीठ करूर से जो माँ नंदा का मायका माना जाता है, इस यात्रा की 5 सितंबर को शुरुआत हुई। पदार, दशोली और बन की 3 डोलियां कैलाश के लिए रवाना हुई, जो अलग अलग गांव से होते हुए अपने पड़ाव की तरफ बढ़ रही हैं। 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर गांव-गांव माँ नंदा की डोलियां पहुंच रही हैं और उनके स्वागत में लोकगीतों, जागरों और ढोल दमाऊं की थाप से पहाड़ों की वादियां गूंज रही हैं। जिस तरह बेटी की विदाई के अवसर पर मंगल गीत गाए जाते हैं, डोली के गांव में पहुंचते ही महिलाएं गीत और जागर गा रही हैं। हर रास्ते, हर चौक पर भक्ति भाव से माँ नंदी की डोली का स्वागत नृत्य संगीत और जयकारे से हो रहा है। बड़े बुजुर्ग हों या फिर बच्चे, इस अद्भुत धार्मिक यात्रा में सभी शामिल हैं और नाचते, झूमते, गाते डोली के संग चल रहे हैं। क्योंकि ये अवसर हर साल नहीं आता, इसीलिए ये जोश, ये भावना और ये भक्ति स्वाभाविक है।
1: माता को अपनी माँ मान के, साक्षी मान के हम उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और हम माता से यही विनती करेंगे, माता हम सबकी रक्षा करे और सारे प्रदेश देशवासियों की रक्षा करे और माता की कृपा हम सब भी भक्तों पे बनी रहे।
2: जय माता दी, जय माँ नंदा। आज की यात्रा बड़ी अच्छी रही है। दो जब पहले, इससे पहले 12 साल पहले हुई थी, उससे अब बेटर हो रही है और हम लोग माता जी का बड़ा स्वागत कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपनी बिटिया के तरह इनको विदा कर रहे हैं और माँ हम लोगों का सब पे आशीर्वाद बना रहे हैं।
3: बहुत ज्यादा उत्साह है, हम इसको बहुत मानते हैं अपनी बेटी की तरह और हम इसको रोज विदा करते हैं, वहाँ तक तो पहुँचाते हैं जहाँ मंदिर है ऊपर सीमल देवी मंदिर, और इसको हम बहुत भव्य दृष्टि से देखते हैं और मनाते हैं।
4: सबसे पहले जो हमारी कुरूर से माँ नंदा का आगमन हुआ बंड क्षेत्र में, तो सबसे पहले हमारे पूरे गांव का भ्रमण करती है। दूसरे में एक एक दिन पड़ाव भी रहता है उनका और उसके बाद हम लास्ट में जाएंगे अपना बंड भूमियाल का मंदिर है और वहां से हमारी जो है 11 बजे करीबन हम कैलाश के लिए हमारी माता प्रस्थान करेगी।
0: देवी नंदा को लेकर पहाड़ों में कई कथाएं हैं। लोक परंपराओं में उन्हें हिमवंत और मोणावती की बेटी और भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती का रूप माना जाता है, लेकिन कहीं नंदा को नंद महाराज की बेटी के रूप में भी याद किया जाता है तो कहीं उन्हें राजा भानु प्रताप की पुत्री बताया जाता है। कहानी है कि नंदा एक राजकुमारी थी जिनसे एक राक्षस राजा जबरन विवाह करना चाहता था, लेकिन नंदा ने भागकर पहाड़ की शरण ले ली, उसी चोटी पर जिसे अब हम उनके नाम से जानते हैं। बर्फ और रहस्य से ढकी पहाड़ियां उनका शाश्वत आश्रय बन गई। लोक कथाओं में पूजित माँ नंदा उत्तराखंड की आराध्य देवी हैं, जिनके प्रति आस्था और भक्ति 12 साल में एक बार अद्भुत रूप से सामने आती है। 280 किलोमीटर की ये तीर्थयात्रा पहाड़ों की सामूहिक धार्मिक आस्था की प्रतीक बन जाती है, इसीलिए तो इसे हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। ये यात्रा है जो हिमालय की ऊंची घाटियों से होकर नंदा देवी के घर तक पौराणिक यात्रा के मार्ग का अनुसरण करती है। 3 हफ्तों की इस यात्रा में हजारों लोग, साधु और भक्त शामिल होते हैं। ये जो 4 सींगों वाला मेढ़ा है, इस यात्रा की अगुवाई करता है और मान्यता ये है कि मेढ़ा देवी द्वारा ही ये भेजा जाता है। 4 सींग वाला चौसिंगा खाडू इस यात्रा की पहचान है। लोक विश्वास के अनुसार यात्रा से पहले इनका जन्म होता है और इसकी विशेष देखभाल की जाती है। आगे चौसिंगा खाड़ू और पीछे नंदा की डोली और फिर श्रद्धालुओं का कारवां। जब यात्रा हेमकुंड पहुंचती है तब खाड़ू की भी विदाई होती है। नंदा के वस्त्र और आभूषण उसके ऊपर रखे जाते हैं, श्रद्धालु उसके माथे पर अक्षत और चंदन लगाते हैं और मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि वो नंदा को सुरक्षित ससुराल पहुंचाए। लेकिन आखिरी पड़ाव आने में अभी देरी है, अभी तो डोलियां गांव-गांव जा रही हैं।
5: निरंतर ये यात्रा हमारी जो चल रही है, तो प्रत्येक गांव का भ्रमण किया जा रहा है और हमारी माँ बहनें अपनी कोई बेटी के रूप में, कोई माँ के रूप में, कोई इष्ट के रूप में माँ की माँ से मनौती भी मांगती है और उसके साथ साथ कैलाश के लिए माँ नंदा को विदा करती है। तो सभी में बड़ा उत्साह है और आप देख रहे होंगे कि आज निरंतर हम प्रातः काल से जो है हमारी पूरे बंड क्षेत्र में भ्रमण हो रहा है। सुबह दिगोली गांव से होकर के हम लोहा गांव, लोहा से गडरा, गडरा से अगथला, अगथला से पीपलकोटी में पहुंच गए और रात्रि निवास हमारा जो है आज नौरख में होगा। कल नंदा देवी का हमारा जो सिद्धपीठ यहाँ पे बंड क्षेत्र की है वहाँ पर बहुत बृहद पूजा में की जाएगी और रात्रि का निवास कम्यार गांव में होगा।
0: यात्रा के दौरान कई स्थानों पर डोलियों को उफनते गधेरों और नालों को पार कर आगे बढ़ना पड़ रहा है। दुर्गम पहाड़ी रास्तों और खराब मौसम के बीच श्रद्धालु की आस्था और उत्साह जरा भी कम नहीं है।
6: 5 सितंबर से सिद्धपीठ कुरूड से 3 डोलियां जो बड़ी जात के लिए 3 डोलियां निकल चुकी हैं, जिसमें बधाण की, दसोली की और ये बंड की। आज बंड की डोली अपने 5वें पड़ाव नौरख पीपलकोटी में पहुंच चुकी है और इस तरह से सारी जो 3ों डोलियां हैं अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण करने के पश्चात 13 तारीख को बंड की डोली का मिलन जो दसोली की डोली है उसके साथ होगा रामणी में और 15 तारीख को जो हमारी 3री डोली है जो बधाण की है वाण में 3ों डोलियां मिलेंगे। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के बंड क्षेत्र, दसोली क्षेत्र, बधाण क्षेत्र, वहां के देवता के निशान, वहां की छतोलियां और कुमाऊं से, नौटी से, इन सभी जगहों से बड़ी जात यात्रा में सारे देव छतोलियां, देव डोलियां, निशान ये सारे मिलेंगे और उसके बाद अगला पड़ाव उसके बाद होम कुंड तक होगा और सप्तमी और अष्टमी के दिन होम कुंड में पूजा करने के पश्चात सारी डोलियां अपने अपने सिद्धिपीठों को वापस आएंगी।
0: उत्तराखंड की ये महान धार्मिक यात्रा एक देवी या कहें कि बेटी की विदाई है जिसने दुनिया के बजाय पहाड़ों को चुना। इस बेटी के लिए जो प्यार और भक्ति भाव पहाड़ों में है उसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: नंदा देवी न केवल भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है बल्कि उत्तराखंड की पूजनीय देवी भी है। उनके नाम का अर्थ है आनंद देने वाली देवी। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए देवी नंदा एक दिव्य रक्षक, एक बेटी और एक रानी है जिनकी मौजूदगी न सिर्फ लोक कथाओं में है बल्कि रोजमर्रा के जीवन में है। उनकी यात्रा से जुड़े कई पड़ाव हैं और उनसे जुड़ी कई कहानियां भी हैं। चलिए आपको इस यात्रा से जुड़ी मान्यताएं और लोक कथाएं बताते हैं।
8: कपड़ों और गहनों से सजाकर डोली में बैठाकर बेटी की तरह देवी माँ की विदाई। हैरानी नहीं कि नंदा के लिए गाए जाने वाले गीतों में बेटी के बिछड़ने का दर्द सुनाई देता है। लोक कथाओं में विदाई से पहले देवी नंदा बुजुर्गों के गले लगती हैं और महिलाएं उन्हें ससुराल में रहने के तौर तरीके समझाती हैं, स्नेह देती हैं, दुलार करती हैं। इसीलिए ये यात्रा किसी धार्मिक अनुष्ठान से कहीं आगे निकल जाती है, जैसे पूरा पहाड़ एक घर हो और घर से बेटी विदा हो रही हो। कुरूर से निकलने के बाद नंदा की यात्रा धीरे धीरे गांव से आगे बढ़ रही है। हर पड़ाव के साथ यात्रा का आकार बढ़ता जा रहा है। कहीं जागर लगे हैं, कहीं लोग भी गूंज रहे हैं। नंद केसरी में अलग अलग क्षेत्रों से देवी देवताओं की डोलियां और चंतोलियां पहुंचती हैं, जहां कुरुड़ की नंदा भी आकर मिलती हैं। लेकिन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है वाण गांव। यात्रा 15 सितंबर को यहां पहुंचेगी, जहां देवी नंदा का मिलन उनके धर्म भाई लाटू देवता से होगा। लोक परंपरा में लाटू को नंदा का चचेरा या धर्म भाई माना गया है। वाण के बाद यात्रा ऊंचाई की ओर बढ़ती है और सामने आता है वेदनी बुग्याल। जहां ठंड बढ़ जाती है और सांसों पर ऊंचाई का असर महसूस होने लगता है, लेकिन यात्रियों के कदम नहीं रुकते। फिर आती है एक जगह पातर नचौड़िया। कहानी है कि उज्जैन के राजा यशधवल ने जब यात्रा की थी तो यहाँ पर नृत्य का आयोजन हुआ था। इससे देवी नाराज हो गईं और नर्तकियों को पत्थर में बदल दिया, इसीलिए नाम पड़ा पाथर या पातर नचौड़िया। इसके बाद यात्रा पहुँचती है रूपकुंड। ऊंचे हिमालय में मौजूद ये झील मानव कंकालों के कारण मशहूर है। कंकालों की कहानी भी राजा यशधवल से जुड़ी है, जिन्होंने यात्रा के नियम भंग किए और देवी के कोप से उनका परिवार और साथी संगी मारे गए। लोक विश्वास है कि ये कंकाल उनके ही हैं। यात्रा का अंतिम पड़ाव है होमकुंड, जहां पहुंचकर मानंदा अपनी मायके की अंतिम सीमा पार करती है। 20 सितंबर को होमकुंड में पूजा और हवन होगा। देवी नंदा के वस्त्र और आभूषण चौसिंगा खाड़ू के ऊपर रखे जाएंगे और खाड़ू की विदाई होगी। इसके बाद साथ गए लोग वापस लौटने लगते हैं, लेकिन अभी तो यात्रा आधी भी नहीं हुई है। अभी तो पहाड़ों में रौनक है, उत्सव है। गांव में एक बार फिर चहल पहल लौट आई है। वर्षों से बंद पड़े घरों के ताले खुल गए हैं, क्योंकि प्रवासी परिवार अपने गांव लौट आए हैं। नंदा देवी की यात्रा यहां के लोगों की जड़ों और अपनी माटी से जोड़ती है। मेहमान आए हैं, इसलिए उनके लिए सामूहिक भोजन की व्यवस्था की गई है।
9: भगवती नंदा खुद राजा राजेश्वरी है और कामाख्या खुद राजा राजेश्वरी का ही स्थान है, तो माई की प्रेरणा से ही मैं मैया के साथ आया हूँ। और मूल रूप से मान लीजिए कि भगवती हमारी माँ है और राजराजेश्वरी भगवती यहाँ की बेटी है, तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मैं अपने मामा के वहाँ हूँ, और जैसे मामा के वहाँ सबको प्यार मिलता है वैसा ही प्यार मुझे यहाँ पर मिल रहा है।
8: पहाड़ों की ये यात्रा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये ठीक ठीक कोई नहीं जानता। हाँ, ये जरूर है कि लोक कथा और परंपरा के दम पर ये विरासत आगे बढ़ती जा रही है। इसका महत्व सिर्फ गढ़वाल तक नहीं है, बल्कि कुमाऊं में भी नंदा सुनंदा की पूजा और मेलों की परंपरा है। फिलहाल लोकगीतों की स्वर लहरियों, जागरों की गूंज और ढोल दमाओं की थाप पर यात्रा गांव के पगडंडियों से गुजर रही है। चेहरे पर उत्सव की उमंग है और आंखों में विदाई के आंसू।
10: चमोली जनपद में 12 वर्षों के बाद मां नंदा की डोली इस समय नंदा देवी बड़ी जात की यात्रा इस समय चल रही है। ये डोलियां है जो इस समय यहां से अलग अलग पड़ाव से अलग अलग गांव होते हुए आगे बढ़ रही हैं। इसके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं जो श्रद्धालु हैं वो चल रहे हैं जय मां नंदा। और बड़ी जात क्योंकि 12 वर्षों के बाद ये हो रही, तो बड़ा उत्साह हर गांव, हर पड़ाव, हर जगहों पे इस समय देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु जो हैं बड़े उत्साह के साथ यहां पे देखने को मिल रही हैं, हर कोई मां नंदा के जयकारों के साथ, क्योंकि 12 वर्षों के बाद ये यात्रा हो रही है। हर वर्ष लोकजात यात्रा होती है, अगले वर्ष नंदा देवी राजजात यात्रा होनी है। ऐसे में जो उत्साह है 12 वर्षों का, जो भक्त और भगवान की दूरियां हैं वो इस वर्ष 12 वर्षों के बाद हो रही है। ऐसे में तीन जो डोलियां हैं, नंदा देवी मंदिर जो सिद्धपीठ मंदिर है कुरूर से निकली थी, अलग अलग रास्तों से ये होमकुंड जो वाण के बाद आएगा जहाँ पे इसका पूरा समापन होगा, ये सारी डोलियां एकत्रित होकर एक साथ निकलेंगी। ऐसे में जो मानंदा की 12 वर्षों के बाद ये जो बड़ी जात यात्रा हो रही है, इसमें बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। चाहे नंदा देवी की डोली हो, महाराज राजेश्वरी की डोली हो, अलग अलग पड़ाव पे इस समय लगातार जा रही हैं। हर गांव में हर जगहों पे स्वागत हो रहा है, क्योंकि कई घर ऐसे हैं जिन पे ताले लग जाते हैं, लेकिन मां नंदा की जब यात्रा होती है तो वो ताले इस समय खुल जाते हैं। हर कोई इस समय मां नंदा के लिए एक गाँव से दूसरी गाँव, क्योंकि मां नंदा को जो विदा करने का वो है, वो हर कोई अपनी बेटी की तरह विदा करता है। हर कोई मां नंदा जो यहाँ की आराध्य देवी है उसे अपनी बेटी की तरह समझता है। इस समय विदाई जब एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो आधे रास्ते तक उस गांव के लोग आते हैं, आधे रास्ते तक उस गांव के लोग उन्हें लेने आते हैं जहां आज उनका पड़ाव होगा। अंत में ये होमकुंड रहेंगे, जो बेदनी और रूपकुंड से ऊपर होमकुंड तक 12 वर्षों के बाद ये डोली यात्रा जाती है। हर वर्ष भले ही लोग जाती है, लेकिन ये 12 वर्षों के बाद जो यात्रा जा रही है वो होमकुंड तक जाएगी, वहीं पे इसका समापन होगा और उसके बाद ये यात्रा समाप्त होगी। 12 वर्षों के बाद एक बार फिर से मां नंदा की यात्रा चल रही है, तो ऐसे में हर कोई उत्साहित दिखाई दे रहा है। कमल नंद सिलोड़ी, चमोली, GNT।
7: अब बात करते हैं बप्पा की। जयपुर में गणपति की भक्ति का रंग इस बार कुछ ऐसा चढ़ा है कि बप्पा के दरबार में मिठास भी विशाल हो गई है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में 502 किलो के दो विशाल मोदक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो कहीं पर हजारों लड्डुओं से भोग की तैयारी की जा रही है। पुष्य नक्षत्र का विशेष अभिषेक, संजारे का श्रृंगार और फिर गणपति जन्मोत्सव की तैयारियां, यानी 9 दिनों तक जयपुर में आस्था उत्सव और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिलेगा।

0: मोदक सामने है, मुख पर मुस्कान है और भक्तों की नजरें बस अपने विघ्नहर्ता पर टिकी हैं। मोदक के बीच गणपति विराजमान है। बड़े मोदक, छोटे मोदक, हर आकार में बप्पा के प्रिय भोग की तैयारी है। 251-251 किलो के दो विशाल मोदक, यानी कुल 502 किलो के मिठास और इनके आसपास सजे सैकड़ों दूसरे मोदक, मानो गणपति के दरबार में भक्ति ने खुद मिठास का रूप ले लिया हो। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में आज सजी ये खास झांकी गणेश महोत्सव का ऐसा आकर्षण बनी है, जिसे देखने सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालु पहुँच रहे हैं।
1: भगवान गणेश जी महाराज विराजमान मोती डूंगरी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम कि ये कड़ी है। भगवान को मोदक सबसे ज्यादा पसंद है और रुचिकर लगते हैं, इसलिए भगवान को अलग अलग तरीके के मोदक, अलग अलग आकार में मोदक, अलग अलग वजन में मोदक चढ़ा के भगवान को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ भक्त भी सहस नाम से, नामावली से, अष्टक स्तोत्र से लड्डू चढ़ा रहे हैं, वो भी इसी जन्मोत्सव की एक कड़ी है, जिससे जिसकी मनोकामना पूरी हो गई या होने चाहती है उस हिसाब से अष्टक स्तोत्र से और सहस नाम से मोदक चढ़ा रहे हैं।
0: 502 किलो के इन दो विशाल मोदकों के साथ 51-51 किलो के 5 मोदक, 21-21 किलो के 21 मोदक और 1.25 किलो के 1100 मोदक भी तैयार किए गए हैं। यही खत्म नहीं होती भोग की ये भव्यता। गणेश चतुर्थी तक करीब 2,41,000 छोटे लड्डू भी बप्पा को जिमाए जाएंगे। बप्पा के दरबार में लगभग 2.5 लाख लड्डुओं का भोग करीब 15,000 किलो सामग्री से तैयार किया जा रहा है। यानी मोती डूंगरी में इस बार गणपति के लिए भोग भी खास है और उसका पैमाना भी खासा विशाल।
2: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, यही जयकारे हैं जो आने वाले कुछ दिन तक हर मंदिर में समय पे पूरे देश भर में सुनाई देने वाले हैं, क्योंकि गणेश उत्सव शुरू हो चुका है। और जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में मैं भी मौजूद हूँ, जहाँ आज मोदक झांकी लगाई गई है। 15,000 किलो सामग्री से बनाए हुए ये 2.5 लाख मोदक भगवान गणेश जी महाराज को जिमाए जा रहे हैं, उनको अर्पित किए गए हैं। और आज के दिन ये जो मोदक झांकी है, ये आम मोदक नहीं है। इस मोदक झांकी में करीब 251 किलो के 2 मोदक यहाँ पे गणेश जी महाराज को अर्पित किए गए हैं, साथ ही साथ में 51-51 किलो के 5 मोदक, 21-21 किलो के 21 मोदक, 1.25 किलो के करीब 1100 मोदक और उसके अलावा जो छोटे छोटे मोदक हैं वो करीब 2,41,000 यहाँ पे अर्पित किए गए हैं, सभी भक्तों में भी बांटे जा रहे हैं। सामग्री की मैं बात करूं तो इन मोदकों को बनाने के लिए करीब 2500 किलो शुद्ध घी की सामग्री इस्तेमाल हुई है, 3000 किलो बेसन इस्तेमाल हुआ है, 9000 किलो शक्कर और करीब 500 किलो सूखे मेवे जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं।
0: इतने बड़े आयोजन के पीछे तैयारी भी महीनों से चल रही है। घी, बेसन, शक्कर और सूखे मेवों से तैयार हो रही ये मिठाई एक एक लड्डू को बापा के चरणों तक पहुंचाने की लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। दरअसल मोती डूंगरी में 7 से 15 सितंबर तक 9 दिवसीय गणेश महोत्सव चल रहा है। महिलाओं की कलश यात्रा और जलाभिषेक से शुरू हुआ ये उत्सव हर दिन गजानन के अलग स्वरूप और अलग रंग का साक्षी बनेगा। हर दिन बदलता दृश्य, हर शाम नया रंग और हर पल बाप्पा के नाम। उत्सव का एक और खास पड़ाव होगा 13 सितंबर का संजार।
2: भक्तों को कहा गया है कि आप बाहर से प्रसाद नहीं लेके आए, यहीं पे जो ये 2.5 लाख मोदक गणेश जी को चढ़ाए गए हैं वो ही आज उनको जिमाए जाएंगे, वही प्रसाद के रूप में बांटे जाएंगे। ये बहुत ही भव्य झांकी है और ये अभी से ही नहीं, ये जो गणेश उत्सव है मोती डूंगरी मंदिर का, ये करीब 7 दिन का होता है, जो कि 7 सितंबर से शुरू हो गया था, जिसकी शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जिसके बाद में महाअभिषेक यहाँ पे 8 तारीख को किया गया। आज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो बहुत ही भव्य मोदक झांकी है, इसके अलावा आने वाले 3 दिन हम यहाँ पर फूलों की, फलों की और सब्जियों की बहुत ही खूबसूरत झांकियां देख पाएंगे, जिसके बाद में सिंजारा में मेहंदी वितरण समारोह इस मंदिर में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। तो उस दिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो मेहंदी बांटी जा रही है वो अगर लेके जाएंगे तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनको शादी करनी है तो उनकी शादी बहुत जल्द हो जाती है।
0: फिर आएगा वो दिन जिसका इंतजार हर गणेश भक्त को है, 14 सितंबर यानी गणपति का खास दिन।
2: 14 तारीख को गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, जिसमें गणेश जी महाराज यहाँ पे बहुत खूबसूरत श्रृंगार में नजर आएंगे। इस समय पे बहुत ही सारे भक्त मुझे इस मंदिर में नजर आ रहे हैं। हर एक भक्त इंतजार कर रहा है कि कब वो गणेश जी महाराज तक पहुंच पाएगा, क्योंकि आज बुधवार का दिन भी है। तो बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने शुभ काम किए हैं या फिर नई गाड़ियां ली है, अपने जो प्रॉपर्टी की डील्स है वो की है। तो ऐसे में भी कहा जाता है कि गणेश जी महाराज क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय है तो सबसे पहले उनको पूजा जाता है। तो गाड़ी की चाबी या फिर जो भी उनका शुभ काम हुआ है उससे संबंधित चीज के लिए पहले गणेश जी को भोगने आते हैं। वही भक्त आज यहाँ पे आए हैं, दर्शन करने वाले भी काफी सारे भक्त यहाँ पे आए हैं। जो गणेश उत्सव के कार्यक्रम है वो सिर्फ झांकियों तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। हर शाम यहाँ पे अलग अलग रंगारंग कल्चरल कार्यक्रम होंगे, ध्रुपद गायन जैसे कार्यक्रम होगा, कथित नृत्य के कार्यक्रम होंगे। तो ये जो गणेश उत्सव है वो बहुत ही ज्यादा खास सभी भक्तों के लिए इस बार साबित होने वाला है।
0: दोपहर 1:30 से 2 बजे तक आधे घंटे के लिए पट मंगल रहेंगे, इसके बाद फिर भक्तों के लिए कपाट खुलेंगे। जन्मोत्सव पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए इस बार व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहली बार महिलाओं के लिए अलग दर्शन लाइन होगी, 6 प्रवेश और 8 निकास द्वार रखे गए हैं, होल्डिंग एरिया भी बढ़ाए गए हैं। बुजुर्गों और निशक्त जनों के लिए 100 ई-रिक्शा, 4 इलेक्ट्रिक लो फ्लोर बसें और व्यवस्थाओं को संभालने के लिए करीब 500 स्वयंसेवक तैनात रहेंगे। तो मोदकों से सजा ये दरबार अभिषेक की पवित्रता से होकर सिंजारे के श्रृंगार तक पहुंचेगा, फिर जन्मोत्सव की खुशियों में खिलेगा और आखिर में शोभा यात्रा बनकर पूरे जयपुर को अपने रंग में रंग देगा। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: क्या आपकी खुद की फोटो आपकी समस्याओं को दूर कर सकती है? क्या खुद की फोटो की सहायता से आपको रोजगार और धन का फायदा हो सकता है? क्या खुद की फोटो आपको मुकदमेबाजी से मुक्ति दिला सकती है? आपकी अपनी फोटो से कैसे मिलेगी सफलता, कैसे बनेंगे काम, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी शक्ति, रूस की घातक आरवीवी बीडी मिसाइलों से लैस होंगे लड़ाकू विमान, सुखोई 300 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट कर सकेंगे ध्वस्त। जयपुर में गणेश महोत्सव की रौनक, मोती डूंगरी मंदिर में बप्पा को लगाया गया हजारों मोदकों का भोग, चढ़ाए गए मोदकों में 251 किलो 21 किलो के मोदक। गणपति उत्सव के रंग में रंगने लगी मुंबई, ऐतिहासिक चिंचपोकली उत्सव मंडल में इस बार भगवान वेंकटेश्वर बालाजी से प्रेरित रूप में नजर आए बप्पा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में निकली 26 छड़ियों की भव्य शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की थाप से गूंजा शहर, शोभा यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। अब आपदा से पहले मिलेगा अलर्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज ने बनाया मोबाइल ऐप आपदा सहायक, पहाड़ी इलाकों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया ऐप। प्राकृतिक आपदा के बाद हालात संभालने में जुटे नेपाल को भारत ने भेजी मदद की 8वीं खेप, 35 टन जरूरी सामान लेकर वायुसेना का विमान काठमांडू हुआ रवाना।

नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी गणेशोत्सव की परंपरा और इतिहास की। अब से चार दिन बाद गणपति उत्सव का शुभारंभ होने वाला है। हर साल 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव को पूरे भारत में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे भारतीय भी इस उत्सव को बड़े उल्लास और उमंग के साथ मनाते हैं।

महाराष्ट्र में बप्पा की भक्ति के रंग साफ नजर आते हैं। और बताया जाता है कि गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे से हुई थी। कोंकण में गणपति पूजन की परंपरा कई राजवंशों से होते हुए छत्रपति शिवाजी और फिर पेशवाओं के राज में भी समृद्ध होती गई। लेकिन क्या आपको मालूम है कि गणपति उत्सव के वर्तमान स्वरूप की शुरुआत कैसे हुई? तो चलिए आपको दिखाते हैं गणपति उत्सव के श्री गणेश की कहानी।

0: ये सिर्फ एक मूर्ति का स्वागत नहीं है, ये हर साल भारत के हृदय में उठने वाला एक ऐसा ज्वार है जो धर्म, जाति और सीमाओं की हर दीवार को ढहा देता है। वो महापर्व जिसकी जड़ें इतिहास के सीने में बहुत गहराई तक धंसी हैं। शास्त्र कहते हैं कि गणेश बुद्धि के नियंत्रक हैं, विघ्नहर्ता हैं। उनसे मिला शुभता का आशीर्वाद हर शुभ कार्य की दहलीज है। उनके बिना कोई संकल्प पूरा नहीं होता, कोई यात्रा शुरू नहीं होती। हर साल उन्हीं गणनायक के लिए शहर शहर सबसे भव्य यात्रा निकाली जाती है। भाद्रपद की चतुर्थी को इस यात्रा के बाद जब बाप्पा घरों में आते हैं तो वे एक भगवान बनकर नहीं बल्कि घर के सबसे लाडले सदस्य बनकर आते हैं। कोई उन्हें दुलारता है, कोई उनके पसंदीदा मोदक बनाता है, तो कोई अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी उनके कानों में फुसफुसा कर कह देता है। लेकिन गणेशोत्सव का ये रूप हमेशा से ऐसा नहीं था। इस उत्सव को जन जन तक पहुंचने में, एक आंदोलन बनने में सदियों का सफर तय करना पड़ा। 17वीं शताब्दी में हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर में पड़ा आस्था का ये बीज आज महाराष्ट्र में श्रद्धा का वटवृक्ष बनकर लहलहा रहा है। मराठी में एक कहावत है, मनाचा गणेश मनम वसावा, यानी भगवान गणेश हमारे मन में, हमारी चेतना में बसने चाहिए। वास्तव में ये त्योहार महाराष्ट्र की चेतना में गहराई तक समाया है। इस राज्य के लिए गणपति उत्सव एक त्योहार भर नहीं है, बल्कि ये सनातन धर्म की परंपराओं को वर्तमान से जोड़ने वाली श्रद्धा की एक डोर है, जिसका एक सिरा इस क्षेत्र में शताब्दियों पहले शासन करने वाले सप्तवाहन शासकों से होता हुआ महाराष्ट्र के गर्व तिलक छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी से जुड़ता है। इतिहास बताता है कोंकण क्षेत्र में शुरुआत से ही शिवपुत्र गणेश की उपासना की जाती रही है। गजानन को यहाँ विद्या और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता रहा है। बताया जाता है कि महाराष्ट्र में सप्तवाहन, राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाओं ने गणेशोत्सव की शुरुआत करवाई थी। छत्रपति शिवाजी के दौर में गणेश उपासना की परंपरा और परवान चढ़ी। इतिहास में ये वर्णन मिलता है कि शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी माँ जीजाबाई ने पुणे के ग्राम देवता कस्बा गणपति की स्थापना की थी। 1630 में जीजाबाई अपने पति शाहजी भोसले के साथ पुणे गयी थी। उसी समय उन्होंने इस गणेश मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। कालांतर में शिवाजी महाराज ने पुणे के कस्बा गणपति को अपने साम्राज्य का केंद्र बिंदु बनाया। भोसले राजवंश के काल में ये पर्व महलों से निकलकर मावड़ के वीर सैनिकों के घरों तक पहुंचा और मराठा साम्राज्य की सांस्कृतिक पहचान का अविभाज्य अंग बन गया।
1: गणेश जी हिंदुओं के आराध्य देवत है। आराध्य का मतलब ऐसा है कि जो असाध्य काम होते, जो मुमकिन भी नहीं होते, ऐसे काम वो करते हैं। और शुरू से बहुत सालों पुराने ये बात है कि सब हिंदू उनकी पहला पूजन करते हैं और इसी को मद्देनजर रखते

0: हुए सातवां राष्ट्रकूट चालुक्य आदि राजाओं ने गणेशोत्सव की प्रथा चलाई है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जो वो भी हुए हमारे देवत है, उन्होंने भी गणेश जी की उपासना की है। तो जैसे कि माता भवानी और गणेश जी दोनों की उपासना करते थे।
1: इसी तरह पुणे में पेशवाओं के निवास शनिवार वाणा में हर साल भव्य गणपति उत्सव का आयोजन होता था। पुणे के लोग और पेशवाओं के सेवक काफी उत्साह के साथ हर साल गणेश उत्सव मनाते थे। इस उत्सव के दौरान ब्राह्मणों को महाभोज दिया जाता था, गरीबों को मिठाई और पैसे बांटे जाते थे।
0: जैसे कि ये शुरुआत जो हुए, मतलब शिवाजी महाराज वो भी हमारे आराध्य देवत हैं, और उनके बाद जब मराठाओं से पेशवा आ गए वहां गद्दी पे, तो उनको वो तो आदर्श थे ना राज छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनके आदर्श के रास्ते पर चलना उनका काम था। और पेशवाओं ने भी उसी तरह जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज पूजन करते थे, और उसी तरह उन्होंने भी ये पूजन किया और इसको आगे बढ़ाया।
1: पेशवाओं के महल शनिवार वाड़ा में कीर्तन भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। भजन कीर्तन की ये परंपरा आज भी जारी है। पेशवाओं के चरम और ब्रिटिश शासन के दौर में भी कोंकण क्षेत्र में गणपति उत्सव बदस्तूर जारी रहा, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उत्सव का स्वरूप बदलने लगा। अंग्रेजों के अत्याचार और दमनकारी नीतियों ने समाज को जोड़ने वाली आस्था के इस उत्सव का रंग समय के साथ फीका कर दिया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह उत्सव अपनी वर्तमान भव्यता की ओर बढ़ गया? आगे सुनाएंगे कहानी गणेश उत्सव के उत्थान की। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: तो ये तो बात हुई रजवाड़ों के दौर में गणेशोत्सव के स्वरूप की, लेकिन महाराष्ट्र के गणेशोत्सव का जो स्वरूप आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उसकी शुरुआत आज से लगभग 125 साल पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने करवाई थी। यानी कि इस उत्सव के राष्ट्रीय पहचान तो शिवाजी महाराज और पेशवाओं के दौर में मिली, लेकिन इसे राष्ट्रीय गौरव का विषय बनाया स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं रखा, बल्कि गणेशोत्सव को आजादी की लड़ाई और छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने का जरिया भी बनाया। आजादी के नजदीकी सालों में गणेशोत्सव ने एक आंदोलन का स्वरूप ले लिया था।

0: ये ठीक है कि गणेश उत्सव को गणपति के आगमन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वास्तव में कोंकण के बड़े हिस्से और बाद में पूरे महाराष्ट्र के लिए ये उत्सव आस्था के साथ साथ समाज के उत्थान और बदलाव की धारा का उद्गम स्थल बनता चला गया। महाराष्ट्र के गणपति उत्सव के वर्तमान अध्याय की शुरुआत ठीक इसी जगह पर हुई थी। ये पुणे के भाऊ रंगारी गणपति मंडल का पंडाल है। बताया जाता है कि यही वो पंडाल है जहां से एक लंबे दौर के बाद फिर से गणपति उत्सव की शुरुआत हुई थी, वो भी एक नए उद्देश्य के साथ। ये बात है साल 1893 की, जब मुंबई की पिधौनी में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। अपनी कुटिल नीति और स्वार्थ को सर्वोपरि रखने वाले अंग्रेजों ने दंगों को शांत करने की बजाय उस दौर में समाज और लोगों के बीच दरार बढ़ाने का काम किया। दंगों की वजह से महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके का माहौल खराब हो गया था। ऐसे समय में पुणे के भाऊ साहेब लक्ष्मण जावले यानी भाऊ साहेब रंगारी ने सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए अपने घर में भव्य गणेश पंडाल लगाकर पूजा की शुरुआत करवाई थी।
1: पुणे में भाऊ साहब रंगारी, श्रीमंत दब्बूशेठ हलवाई, ये जो उस जमाने के जो प्रतिष्ठित लोग थे, और उन्होंने ये गणपति उत्सव ये देखा था। यहाँ पुणे के उनके एक सहकारी ग्वालियर में गए थे और वहाँ उन्होंने 40 दिन का गणेश उत्सव देखा और वो कल्पना उनको बहुत अच्छी लगी। और जो आप बात कर रहे हैं सांप्रदायिक दंगे की, तो उनका एक मीटिंग हुआ लोकमान्य जी तिलक के साथ, और उस मीटिंग में इस बात का महत्व उन्होंने जाना कि इसमें गणेश फेस्टिवल, इसको सार्वजनिक यदि किया तो समाज इकट्ठा आ सकता है।
0: दरअसल ब्रिटिश शासन के उस दौर में लोग किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या उत्सव को साथ मिलकर या एक जगह इकट्ठा होकर नहीं मना सकते थे। ज्यादातर लोग घरों में ही पूजा किया करते थे। ऐसे में भाऊ रंगारी के घर पर हुए इस भव्य सामूहिक आयोजन की चर्चा दूर दूर तक हुई। जब ये चर्चा स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक तक पहुंची, तो उन्होंने अपने अखबार केसरी में इसकी तारीफ की। इसके बाद तिलक ने अपने पुणे के घर केसरी वाड़ा में एक सार्वजनिक गणेश पूजा का आयोजन किया था।
1: बराबर है, लोकमान्य जी तिलक जानते थे कि हर घर में पूजा होती है और उस पूजा को इकट्ठा आने की यहाँ परंपरा है, इसीलिए उन्होंने ऐसी मीटिंग करके गणेश उत्सव की उनकी जो कल्पना है वो सबके सामने रखी। और 1893 में वो पहले साल एक 6-7 गणपति बैठे, उसमें भाऊ साहेब रंगारी, श्रीमंत दब्बूशेठ, लोकमान्य जी तिलक था, वो ऐसे नामचीन जो गणेश मंडल थे वो बैठे और वो उसको लोगों ने बहुत सराहा। और नेक्स्ट ईयर 100 मंडल बैठे ऐसे, तो समाज इकट्ठा आने लगा, गणेश जी की सार्वजनिक तौर पे पूजा अर्चा होने लगी।
0: इसके बाद लोकमान्य तिलक ने ऐसी सार्वजनिक आयोजनों को बढ़ावा देने की अपील भी की। लोकमान्य तिलक ने साल 1893 में ही मुंबई के गिरगांव इलाके में पहले गणेश पूजा मंडल की स्थापना की। इस मंडल का नाम था केशवी नाइक चौल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल। ये मंडल आज भी गणपति पूजा का आयोजन करता है।
2: एकता के धागा का नाम था गणेशोत्सव। बाप्पा के चरणों में बाप्पा के सामने सब झुक जाते हैं और इसी कारण एक ही पूजन, एक ही भजन, एक ही देवता और देवता से लेके एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्र तक ये पूरी परंपरा चलनी चाहिए, इसके युग प्रवर्तक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। और खुद का उदाहरण सार्थक करने के लिए अपने ही घर में केसरीवाड़ा में उन्होंने गणेशोत्सव की शुरुआत की।
0: इस तरह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाया। उस वक्त लोकमान्य तिलक को भी यह एहसास नहीं होगा कि आगे चलकर उनका यही प्रयास एक आंदोलन बनने वाला था। बाल गंगाधर तिलक जिस समय गणेश पूजा को सार्वजनिक बनाने की बात कर रहे थे, ये वो दौर था जब जाति, वर्ग और वर्ण के आधार पर कई लोगों के लिए मंदिरों में प्रवेश तक वर्जित था। ऐसे में तिलक और उनके साथियों ने गणेशोत्सव को छुआछूत के खिलाफ अभियान का रूप दे दिया। 1907 में तिलक ने शुक्रवार पेट के गणेश पंडाल में पूजन किया, जबकि ये एक रेड लाइट एरिया था। इसके अलावा भी लोकमान्य तिलक अकोला और सांगली के कई ऐसे पूजा पंडालों में गए जहां उस दौर में अछूतों की संख्या ज्यादा मानी जाती थी। नतीजा ये हुआ कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तो गणेश पूजा पंडालों की संख्या बढ़ी ही, बल्कि इस उत्सव का प्रचार दूसरे प्रांतों तक हो गया।
1: वो जमाना ही ऐसे था, तब वो छूत अछूत वो बातें चलती थी। तो इसी उस जमाने में दगड़ूशेठ मंडल ने एक अनोखा कदम उठाया था। आज की तारीख में भी केसरी के अखबार में वो फोटो है कि हमारे यहाँ जो साफ स्वच्छता करने वाले जो कर्मचारी थे, जो टॉयलेट भी स्वच्छता करते हैं, उस एक जोड़ी को, भंगी जोड़ी को गणेश जी के पूजा आरती हमने करवाई। उस टाइम बहुत लोगों ने, जो कर्मठ थे, उन्होंने टीका भी की गणेश मंडल पे दगड़ूशेठ के, लेकिन बहुत लोगों ने सराहा और तब जाके ये छूत अछूत की बातें कम होने लगी।
0: लोकमान्य तिलक ने उस दौरान गणेशोत्सव को जो स्वरूप दिया, उससे भगवान गजानन राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। 1910 का साल आते आते गणेश पूजा पंडाल बस सार्वजनिक संदेश का मंच भर नहीं रह गए, बल्कि इनके जरिए स्वतंत्रता संग्राम की आवाजें भी उठने लगी।
1: गणेश उत्सव मंडल से ही कार्यकर्ता बनता है, उस कार्यकर्ता से वहाँ के एरिया का वो पॉलिटिकल नेता बनता है, और उससे वहाँ जो आगे जाता है वो राज्य की और देश की सेवा करता है। ऐसे बहुत सारे राजकीय नेताओं को गणेश उत्सव ने निर्माण किया है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गणेश उत्सव रस्ते पे होता है, सार्वजनिक तौर पे होता है। अलग अलग विचारधारा वाले कार्यकर्ता एक मंच पे आते हैं और अपनी विचारधारा शेयर करते हैं, लेकिन उनके उनको जो कॉमन बात है वो गणेश जी है, गणेश जी की भक्ति है।
0: उस दौर में क्रांतिकारियों ने गणेश उत्सव का उपयोग आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए किया। महाराष्ट्र के नागपुर, वर्धा, अमरावती जैसे शहरों में गणेश उत्सव के जरिए आजादी के आंदोलन को धार दी गई। गणेश उत्सव में वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बैरिस्टर जयकर, रेंगलर परांजपे, पंडित मदन मोहन मालवीय, मौलिक चंद्र शर्मा, बैरिस्टर चक्रवर्ती, दादा साहेब खारपड़े और सरोजिनी नायडू जैसे मुखर और प्रखर जननेता भाषण देने आने लगे। उत्सव के दौरान पंडाल में गणपति को नेताओं और क्रांतिकारियों के वेश में सजाया जाने लगा।
1: उन नेताओं का प्रभाव भारत के देशवासियों पर था, और गणेश जी ऐसी देवता है कि सबको ऐसा लगता है कि ये गणेश जी के ही गण है। गणेश जी बोले तो गणों के समूह के जो अधिपति है, समूह के ईश्वर है, गणनायक है, और उन नेताओं में वो गणेश गण देखते थे। इसलिए गणेश उत्सव में उसका रिफ्लेक्शन आता था कि गणेश जी की मूर्ति उन नेताओं से मिलती जुलती मूर्तिकार बनाने लगे, ताकि वो लोगों के मन में जो बात है वो एक गणेश जी के दूत है, गणेश जी के गण है, तो उसको सोच के उन्होंने ऐसी मूर्तियां उन नेताओं के फेस की उस जमाने में बने हुए।
0: देखते ही देखते गणेश उत्सव स्वाधीनता की लड़ाई का एक मंच बन गया था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेज भी गणेश उत्सव के बढ़ते स्वरूप से घबराने लगे थे। इस बारे में रॉलेट समिति रिपोर्ट में भी चिंता जताई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया, गणेश उत्सव के दौरान युवकों की टोलियां सड़कों पर घूम घूम कर अंग्रेजी शासन विरोधी गीत गाती हैं और स्कूली बच्चे पर्चे बांटते हैं जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने और मराठों से शिवाजी की तरह विद्रोह करने का आह्वान होता है। साथ ही अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए धार्मिक संघर्ष को जरूरी बताया जाता है। कभी पुणे में शुरू हुई गणेश पूजा आजादी के लगभग 8 दशक बाद अब केवल महाराष्ट्र में ही हजारों सार्वजनिक गणेश मंडल हो चुके हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, MP, UP और गुजरात में भी काफी संख्या में गणेश उत्सव मंडल हैं। इतना ही नहीं, अब तो विदेशों में भी गणेश उत्सव मनाया जाने लगा है। दुनिया भर में फैले भारतीय हर साल धूमधाम से गणपति उत्सव मनाते हैं। भारत में अब गणेश उत्सव के 10 दिनों में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार होता है। पंडालों की बढ़ती संख्या के साथ साथ धीरे धीरे इस उत्सव से जुड़ी एक अलग अर्थव्यवस्था तैयार हुई, जिससे आज लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। 19वीं सदी के अंत में लोकमान्य तिलक का लगाया वो पौधा आज श्रद्धा का विशाल वृक्ष बनकर लहलहा रहा है, जिसकी छांव तले समाज और आस्था साथ साथ पल रहे हैं, चल रहे हैं, बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: ये महाराष्ट्र की बात और है, लेकिन अब गणेशोत्सव देश के ज्यादातर हिस्सों में खूब धूमधाम से मनाया जाने लगा है। इस बार भी बप्पा की आराधना का ये उत्सव बेहद उत्साह से मनाया जाएगा। देश भर में शहर शहर गणपति उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर आज आई है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेशोत्सव के मौके पर 7 दिनों तक भव्य उत्सव चलता है और इसका शुभारंभ हो चुका है। आज मोती डूंगरी मंदिर में अभी गणपति को 2.5 लाख लड्डुओं का झांगी सजाई गई। गणेश चतुर्थी तक भगवान गणेश को कुल 15,000 किलो सामग्री से तैयार हुए 2.50 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। इस मोदक झांकी में सबसे खास बात है 251 किलोग्राम के 2 विशाल मोदक, और इसके अलावा बप्पा के लिए 51 किलोग्राम के 5 मोदक और 21 किलोग्राम के 21 मोदक भी तैयार किए गए हैं। सुबह 5 बजे से ही भक्त इस विशेष झांकी के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में आज बाहर से लाया गया प्रसाद नहीं चढ़ाया जा रहा है, अब क्योंकि लड्डू विशालकाय हैं सो उन्हें बनाने के लिए सामग्री में हजारों किलो के हिसाब से इस्तेमाल सामग्री हुई है। और इस मोदक झांकी में क्या है खास, जयपुर से मेरी सहयोगी रिदम बता रही है।
1: जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में मैं भी मौजूद हूँ, जहाँ आज मोदक झांकी लगाई गई है। 15,000 किलो सामग्री से बनाए हुए ये 2.5 लाख मोदक भगवान गणेश जी महाराज को जिमाए जा रहे हैं, उनको अर्पित किए गए हैं। और आज के दिन ये जो मोदक झांकी है ये आम मोदक नहीं है, इस मोदक झांकी में करीब 251 किलो के 2 मोदक यहाँ पे गणेश जी महाराज को अर्पित किए गए हैं। साथ ही साथ में 51 किलो के 5 मोदक, 21 किलो के 21 मोदक, 1.25 किलो के करीब 1100 मोदक, और उसके अलावा जो छोटे छोटे मोदक हैं वो करीब 2,41,000 यहाँ पे अर्पित किए गए हैं, सभी भक्तों में भी बांटे जा रहे हैं। सामग्री की मैं बात करूं तो इन मोदकों को बनाने के लिए करीब 2500 किलो शुद्ध घी की सामग्री इस्तेमाल हुई है, 3000 किलो बेसन इस्तेमाल हुआ है, 9000 किलो शक्कर और करीब 500 किलो सूखे मेवे जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। आज सभी भक्तों को कहा गया है कि आप बाहर से प्रसाद नहीं लेके आए, यहीं पे जो ये 2.5 लाख मोदक गणेश जी को चढ़ाए गए हैं वो ही आज उनको जिमाए जाएंगे, वही प्रसाद के रूप में बांटे जाएंगे। ये बहुत ही भव्य झांकी है, और ये अभी से ही नहीं, ये जो गणेश उत्सव है मोती डूंगरी मंदिर का, ये करीब 7 दिन का होता है, जो कि 7 सितंबर से शुरू हो गया था, जिसकी शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जिसके बाद में महाअभिषेक यहाँ पे 8 तारीख को किया गया। आज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो बहुत ही भव्य मोदक झांकी है, इसके अलावा आने वाले 3 दिन हम यहाँ पर फूलों की, फलों की और सब्जियों की बहुत ही खूबसूरत झांकियां देख पाएंगे, जिसके बाद में सिंजारा में मेहंदी वितरण समारोह इस मंदिर में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। तो उस दिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो मेहंदी बांटी जा रही है वो अगर लेके जाएंगे तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनको शादी करनी है तो उनकी शादी बहुत जल्द हो जाती है, शुभ मुहूर्त जो है वो उस मेहंदी को लगाने से बहुत जल्द आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो झांकी है ये बहुत खास है। 14 तारीख को गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, जिसमें गणेश जी महाराज यहाँ पे बहुत खूबसूरत श्रृंगार में नजर आएंगे। इस समय पे बहुत ही सारे भक्त मुझे इस मंदिर में नजर आ रहे हैं, हर एक भक्त इंतजार कर रहा है कि कब वो गणेश जी महाराज तक पहुंच पाएगा, क्योंकि आज बुधवार का दिन भी है। तो बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने शुभ काम किए हैं या फिर नई गाड़ियां ली है, अपनी जो प्रॉपर्टी की डील्स है वो की है, तो ऐसे में भी कहा जाता है कि गणेश जी महाराज आज क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय है तो सबसे पहले उनको पूजा जाता है, तो गाड़ी की चाबी या फिर जो भी उनका शुभ काम हुआ है उससे संबंधित चीज के लिए पहले गणेश जी को ढोकने आते हैं। वही भक्त आज यहाँ पे आए हैं, दर्शन करने वाले भी काफी सारे भक्त यहाँ पे आए हैं। जो गणेश उत्सव के कार्यक्रम है वो सिर्फ झांकियों तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, हर शाम यहाँ पे अलग अलग रंगारंग कल्चरल कार्यक्रम होंगे, ध्रुपद गायन जैसा कार्यक्रम होगा, कथक नृत्य के कार्यक्रम होंगे। तो ये जो गणेश उत्सव है वो बहुत ही ज्यादा खास सभी भक्तों के लिए इस बार साबित होने वाला है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, भुवनेश्वर जयपुर।
2: भगवान को मोदक सबसे ज्यादा पसंद है और रुचिकर लगते हैं, इसलिए भगवान को अलग अलग तरीके के मोदक अलग अलग आकार में मोदक, अलग अलग वजन में मोदक चढ़ा के भगवान को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ भक्त भी सहस्त्र नाम से, नामावली से, अष्टक स्तोत्र से लड्डू चढ़ा रहे हैं, वो भी इसी जन्मोत्सव की एक कड़ी है, जिससे जिसकी मनोकामना पूरी हो गई या होने चाहती है वो उस हिसाब से अष्टक स्तोत्र से और सहस्त्र नाम से मोदक चढ़ा रहे हैं।
0: और जीएनडी स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: क्या आपकी खुद की फोटो आपकी समस्याओं को दूर कर सकती है? क्या खुद की फोटो की सहायता से आपको रोजगार और धन का फायदा हो सकता है? क्या खुद की फोटो आपको मुकदमेबाजी से मुक्ति दिला सकती है? आपकी अपनी फोटो से कैसे मिलेगी सफलता, कैसे बनेंगे काम, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चले।
3: भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी शक्ति, रूस की घातक आरवीवी बीडी मिसाइलों से लैस होंगे लड़ाकू विमान, सुखोई 300 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट कर सकेंगे ध्वस्त। जयपुर में गणेश महोत्सव की रौनक, मोती डूंगरी मंदिर में बप्पा को लगाया गया हजारों मोदकों का भोग, चढ़ाए गए मोदकों में 251 किलो 21 किलो के मोदक। गणपति उत्सव के रंग में रंगने लगी मुंबई, ऐतिहासिक चिंचपोकली उत्सव मंडल में इस बार भगवान वेंकटेश्वर बालाजी से प्रेरित रूप में नजर आए बप्पा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में निकली 26 छड़ियों की भव्य शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की थाप से गूंजा शहर, शोभा यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। अब आपदा से पहले मिलेगा अलर्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज ने बनाया मोबाइल ऐप आपदा सहायक, पहाड़ी इलाकों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। प्राकृतिक आपदा के बाद हालात संभालने में जुटे नेपाल को भारत ने भेजी मदद की 8वीं खेप, 35 टन जरूरी सामान लेकर वायुसेना का विमान काठमांडू हुआ रवाना।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं हिमालय के महाकुंभ की, उस यात्रा की जो उत्तराखंड की लोक परंपरा और धार्मिक आस्था से गहरी जुड़ाव रखती है और प्रकृति के साथ इंसानी रिश्ते की एक मिसाल है। ये यात्रा वैसे तो देवी नंदा की है, लेकिन 12 साल के अंतराल पर उनकी विदाई मायके से बेटी की तरह की जाती है। कुछ दिन पहले शुरू हुई ये यात्रा अब अलग अलग गांव और पगडंडियों से होते हुए आगे बढ़ रही है। लगातार हर गांव, कस्बे और इलाके में देवी नंदा की डोली का भव्य स्वागत किया जा रहा है। लोकगीत गाए जा रहे हैं और जयकारे लगातार लगाए जा रहे हैं। आज आपको इस बड़ी जात यात्रा की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही देवी नंदा का महत्व, उनकी कहानी भी समझाने की कोशिश करेंगे।

हिमालय के ऊंचे शिखर पर इस यात्रा का समापन होता है, लेकिन उससे पहले यात्रा के अहम पड़ाव और उनसे जुड़ी कहानियां भी सुनाएंगे आपको। हिमालय की वादियों में इन दिनों आस्था का एक ऐसा सफर चल रहा है जिसमें देवी को सिर्फ पूजा नहीं जाता बल्कि बेटी मानकर विदा किया जाता है। करीब 280 किलोमीटर की इस यात्रा को दुनिया की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा माना जाता है, जिसमें देवी नंदा की डोली के साथ श्रद्धालु ऊंचे पहाड़ की मुश्किल चढ़ाई करते हैं। इस वक्त देवी नंदा की 3 डोलियां सभी गांवों से होकर गुजर रही है। 12 साल बाद होने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में पूरा पहाड़ शामिल होता है। ये यात्रा परंपरा की है, प्रकृति के साथ रिश्तों की है और उस अटूट विश्वास की भी है जो सदियों से देवभूमि की पहचान बना हुआ है।

बादलों से घिरे हिमालय के शिखरों पर यूं तो मौन का बसेरा है, पर गौर से सुनिए, हरे जंगलों के साए में गुजर रही पगडंडियों पर उत्सव का संगीत गूंज रहा है। इन गीतों में पहाड़ों की सामूहिक आस्था है, प्रार्थना है, जीवंत संगीत है। और सदियों से प्रकृति के साथ चले आ रहे पारिवारिक रिश्ते की एक खूबसूरत कहानी है, जिसमें पहाड़ों की देवी सिर्फ देवी नहीं है बल्कि बेटी है, जिसकी मायके से विदाई हो रही है

बेटी ससुराल जा रही है तो खुशी लाजमी है, पर मन उदास भी है और आंखों में नमी भी है। बेटी बहन की तरह विदा करते हुए देवी माँ से गांव समाज परिवार सभी के लिए आशीर्वाद मांगा जा रहा है और शुभकामनाएं दी जा रही हैं।

0: देवभूमि की आराध्या देवी माँ नंदा की विदाई में पूरा पहाड़ साथ चल रहा है। गाँव से निकली उनकी टोली गाँव कस्बे जंगल बुग्याल और दुर्गम हिमालय को पार करते हुए हेमकुट जा रही है, लेकिन अभी तो सफर शुरू हुआ है। चमोली के सिद्धपीठ करूर से जो माँ नंदा का मायका माना जाता है, इस यात्रा की 5 सितंबर को शुरुआत हुई। पदार्थ दशोली और बन की 3 डोलियां कैलाश के लिए रवाना हुई, जो अलग अलग गांव से होते हुए अपने पड़ाव की तरफ बढ़ रही हैं। 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर गांव-गांव माँ नंदा की डोलियां पहुंच रही हैं और उनके स्वागत में लोकगीतों जागरों और ढोल दमाओं की थाप से पहाड़ों की वादियां गूंज रही हैं। जिस तरह बेटी की विदाई के अवसर पर मंगल गीत गाए जाते हैं, डोली के गाँव में पहुँचते ही महिलाएं गीत और जागर गा रही हैं। हर रास्ते हर चौक पर भक्ति भाव से मां नंदी की डोली का स्वागत नृत्य संगीत और जयकारे से हो रहा है। बड़े बुजुर्ग हों या फिर बच्चे, इस अद्भुत धार्मिक यात्रा में सभी शामिल हैं और नाचते झूमते गाते डोली के संग चल रहे हैं, क्योंकि ये अवसर हर साल नहीं आता। इसीलिए ये जोश, ये भावना और ये भक्ति स्वाभाविक है।
1: माँ मान के साक्षी मान के हम उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और हम माता से यही विनती करेंगे, माता हम सबकी रक्षा करें और सारे प्रदेश देशवासियों की रक्षा करें और माता की कृपा हम सभी भक्तों पे बनी रहे।
2: जय माता दी, जय माँ नंदा। आज की यात्रा बड़ी अच्छी रही है। दो जब पहले इससे पहले 12 साल पहले हुई थी, उससे अब बेटर हो रही है और हम लोग माता जी का बड़ा स्वागत कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपनी बिटिया के तरह इनको विदा कर रहे हैं और माँ हम लोगों का सब पे आशीर्वाद बना रहे हैं।
3: बहुत ज़्यादा उत्साह है, हम इसको बहुत मानते हैं अपनी बेटी की तरह और हम इसको रोज विदा करते हैं, वहाँ तक तो पहुँचाते हैं जहाँ मंदिर है।

0: पर सीमल देवी मंदिर, और इसको हम बहुत भव्य दृष्टि से देखते हैं और मनाते हैं।
1: सबसे पहले जो हमारी कुरुड़ से माँ नंदा का आगमन हुआ बंड क्षेत्र में, तो सबसे पहले हमारे पूरे गांव का भ्रमण करती है। दूसरे में एक एक दिन पड़ाव भी रहता है उनका, और उसके बाद हम लास्ट में जाएंगे अपना बंड भूमियाल का मंदिर है, और वहाँ से हमारी जो है 11 बजे करीबन हम कैलाश के लिए हमारी माता प्रस्थान करेगी।
2: देवी नंदा को लेकर पहाड़ों में कई कथाएं हैं। लोक परंपराओं में उन्हें हिमवंत और मूणावती की बेटी और भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती का रूप माना जाता है, लेकिन कहीं नंदा को नंद महाराज की बेटी के रूप में भी याद किया जाता है, तो कहीं उन्हें राजा भानु प्रताप की पुत्री बताया जाता है। कहानी है कि नंदा एक राजकुमारी थी जिनसे एक राक्षस राजा जबरन विवाह करना चाहता था, लेकिन नंदा ने भागकर पहाड़ की शरण ले ली, उसी चोटी पर जिसे अब हम उनके नाम से जानते हैं। बर्फ और रहस्य से ढकी पहाड़ियाँ उनका शाश्वत आश्रय बन गई। लोक कथाओं में पूजित माँ नंदा उत्तराखंड की आराध्य देवी हैं, जिनके प्रति आस्था और भक्ति 12 साल में एक बार अद्भुत रूप से सामने आती है। 280 किलोमीटर की ये तीर्थयात्रा पहाड़ों की सामूहिक धार्मिक आस्था की प्रतीक बन जाती है, इसीलिए तो इसे हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। ये यात्रा है जो हिमालय की ऊंची घाटियों से होकर नंदा देवी के घर तक पौराणिक यात्रा के मार्ग का अनुसरण करती है। 3 हफ्तों की इस यात्रा में हजारों लोग साधु और भक्त शामिल होते हैं। ये जो 4 सींगों वाला मेढ़ा है इस यात्रा की अगुवाई करता है, और मान्यता ये है कि मेढ़ा देवी द्वारा ही ये भेजा जाता है। 4 सींग वाला चौसिंगा खाडू इस यात्रा की पहचान है। लोक विश्वास के अनुसार यात्रा से पहले इनका जन्म होता है और इसकी विशेष देखभाल की जाती है। आगे चौसिंगा खाड़ू और पीछे नंदा की डोली और फिर श्रद्धालुओं का कारवां। जब यात्रा हेमकुंड पहुंचती है तब खाड़ू की भी विदाई होती है। नंदा के वस्त्र और आभूषण उसके ऊपर रखे जाते हैं। श्रद्धालु उसके माथे पर अक्षत और चंदन लगाते हैं और मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि वो नंदा को सुरक्षित ससुराल पहुंचाए। लेकिन आखिरी पड़ाव आने में अभी देरी है, अभी तो डोलियां गांव-गांव जा रही हैं।
3: निरंतर ये यात्रा हमारी जो चल रही है, तो प्रत्येक गांव का भ्रमण किया जा रहा है, और हमारी माँ बहिने अपनी कोई बेटी के रूप में, कोई माँ के रूप में, कोई इष्ट के रूप में माँ की माँ से मनौती भी मांगती है, और उसके साथ साथ कैलाश के लिए माँ नंदा को विदा करती है। तो सभी में बड़ा उत्साह है, और आप देख रहे होंगे कि आज निरंतर हम प्रातः काल से जो है हमारे पूरे बंड क्षेत्र में भ्रमण हो रहा है। सुबह दिगोली गांव से होकर के हम लोहा गांव, लोहा से गडरा, गडरा से अगथला, अगथला से पीपलकोटी में पहुंच गए, और रात्रि निवास हमारा जो है आज नौरख में होगा। कल नंदा देवी का हमारा जो सिद्धपीठ यहां पे बंड क्षेत्र की है वहां पर बहुत बृहद पूजा में की जाएगी, और रात्रि का निवास कम्यार गांव में होगा।
2: यात्रा के दौरान कई स्थानों पर डोलियों को उफनते गधेरों और नालों को पार कर आगे बढ़ना पड़ रहा है। दुर्गम पहाड़ी रास्तों और खराब मौसम के बीच श्रद्धालु की आस्था और उत्साह जरा भी कम नहीं है।
4: 5 सितंबर से सिद्धपीठ कुरुड़ से 3 डोलियां, जो बड़ी जात के लिए 3 डोलियां निकल चुकी हैं, जिसमें बधाण की, दसोली की और ये बंड की। आज बंड की डोली अपने 5वें पड़ाव नौरख पीपलकोटी में पहुंच चुकी है, और इस तरह से सारी जो तीनों डोलियां हैं अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण करने के पश्चात 13 तारीख को बंड की डोली का मिलन जो दसोली की डोली है उसके साथ होगा रामणी में, और 15 तारीख को जो हमारी तीसरी डोली है जो बधाण की है वाण में तीनों डोलियां मिलेंगे। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के बंड क्षेत्र, दसोली क्षेत्र, बधाण क्षेत्र, वहां के देवता के निशान, वहां की छतोलियां, और कुमाऊं से, नौटी से, इन सभी जगहों से बड़ी जात यात्रा में सारे देव छतोलियां, देव डोलियां, निशान ये सारे मिलेंगे, और उसके बाद अगला पड़ाव उसके बाद होमकुंड तक होगा, और सप्तमी और अष्टमी के दिन होमकुंड में पूजा करने के पश्चात सारी डोलियां अपने अपने सिद्धिपीठों को वापस आएंगी।
2: उत्तराखंड की ये महान धार्मिक यात्रा एक देवी या कहीं की बेटी की विदाई है जिसने दुनिया के बजाय पहाड़ों को चुना। इस बेटी के लिए जो प्यार और भक्ति भाव पहाड़ों में है उसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: नंदा देवी न केवल भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है बल्कि उत्तराखंड की पूजनीय देवी भी है। उनके नाम का अर्थ है आनंद देने वाली देवी। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए देवी नंदा एक दिव्य रक्षक, एक बेटी और एक रानी है जिनकी मौजूदगी न सिर्फ लोक कथाओं में है बल्कि रोजमर्रा के जीवन में है। उनकी यात्रा से जुड़े कई पड़ाव हैं और उनसे जुड़ी कई कहानियां भी हैं। चलिए आपको इस यात्रा से जुड़ी मान्यताएं और लोक कथाएं बताते हैं।
2: कपड़ों और गहनों से सजाकर डोली में बैठाकर बेटी की तरह देवी माँ की विदाई। हैरानी नहीं कि नंदा के लिए गाए जाने वाले गीतों में बेटी के बिछड़ने का दर्द सुनाई देता है। लोक कथाओं में विदाई से पहले देवी नंदा बुजुर्गों के गले लगती हैं और महिलाएं उन्हें ससुराल में रहने के तौर तरीके समझाती हैं, स्नेह देती हैं, दुलार करती हैं। इसीलिए ये यात्रा किसी धार्मिक अनुष्ठान से कहीं आगे निकल जाती है, जैसे पूरा पहाड़ एक घर हो और घर से बेटी विदा हो रही हो। कुरूर से निकलने के बाद नंदा की यात्रा धीरे धीरे गांव से आगे बढ़ रही है। हर पड़ाव के साथ यात्रा का आकार बढ़ता जा रहा है। कहीं जागर लगे हैं, कहीं लोग भी गूंज रहे हैं। नंदकेसरी में अलग अलग क्षेत्रों से देवी देवताओं की डोलियां और चंतोलियां पहुंचती हैं, जहां कुरुड़ की नंदा भी आकर मिलती हैं। लेकिन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है वाणगांव। यात्रा 15 सितंबर को यहां पहुंचेगी, जहां देवी नंदा का मिलन उनके धर्म भाई लाटू देवता से होगा। लोक परंपरा में लाटू को नंदा का चचेरा या धर्म भाई माना गया है। वाण के बाद यात्रा ऊंचाई की ओर बढ़ती है और सामने आता है वेदनी बुग्याल, जहां ठंड बढ़ जाती है और सांसों पर ऊंचाई का असर महसूस होने लगता है। लेकिन यात्रियों के कदम नहीं रुकते। फिर आती है एक जगह पातर नचौड़िया। कहानी है कि उज्जैन के राजा यश धवल ने जब यात्रा की थी तो यहाँ पर नृत्य का आयोजन हुआ था। इससे देवी नाराज हो गईं और नर्तकियों को पत्थर में बदल दिया, इसीलिए नाम पड़ा पाथर या पातर नचौड़िया। इसके बाद यात्रा पहुँचती है रूपकुंड। ऊंचे हिमालय में मौजूद ये झील मानव कंकालों के कारण मशहूर है। कंकालों की कहानी भी राजा यश धवल से जुड़ी है, जिन्होंने यात्रा के नियम भंग किए और देवी के कोप से उनका परिवार और साथी संगी मारे गए। लोक विश्वास है कि ये कंकाल उनके ही हैं। यात्रा का अंतिम पड़ाव है होमकुंड, जहां पहुंचकर मानंदा अपनी मायके की अंतिम सीमा पार करती है। 20 सितंबर को होमकुंड में पूजा और हवन होगा। देवी नंदा के वस्त्र और आभूषण चौसिंगा खाड़ू के ऊपर रखे जाएंगे और खाड़ू की विदाई होगी। इसके बाद साथ गए लोग वापस लौटने लगते हैं। लेकिन अभी तो यात्रा आधी भी नहीं हुई है। अभी तो पहाड़ों में रौनक है, उत्सव है। गांव में एक बार फिर चहल पहल लौट आई है। वर्षों से बंद पड़े घरों के ताले खुल गए हैं, क्योंकि प्रवासी परिवार अपने गांव लौट आए हैं। नंदा देवी की यात्रा यहां के लोगों की जड़ों और अपनी माटी से जोड़ती है। मेहमान आए हैं, इसलिए उनके लिए सामूहिक भोजन की व्यवस्था की गई है।
6: भगवती नंदा खुद राजा राजेश्वरी है और कामाख्या खुद राजा राजेश्वरी का ही स्थान है, तो माई की प्रेरणा से ही मैं मैया के साथ आया हूँ। और मूल रूप से मान लीजिए कि भगवती हमारी माँ है और राज राजेश्वरी भगवती यहाँ की बेटी हैं, तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मैं अपने मामा के वहाँ हूँ। और जैसे मामा के वहाँ सबको प्यार मिलता है, वैसा ही प्यार मुझे यहाँ पर मिल रहा है।
2: पहाड़ों की ये यात्रा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये ठीक ठीक कोई नहीं जानता। हाँ, ये जरूर है कि लोक कथा और परंपरा के दम पर ये विरासत आगे बढ़ती जा रही है। इसका महत्व सिर्फ गढ़वाल तक नहीं है, बल्कि कुमाऊं में भी नंदा सुनंदा की पूजा और मेलों की परंपरा है।
7: फिलहाल लोकगीतों की स्वर लहरियों, जागरों की गूंज और ढोल दमाओं की थाप पर यात्रा गांव के पगडंडियों से गुजर रही है। चेहरे पर उत्सव की उमंग है और आंखों में विदाई के आंसू।
8: चमोली जनपद में 12 वर्षों के बाद माँ नंदा की डोली इस समय नंदा देवी बड़ी जात की यात्रा इस समय चल रही है। ये डोलियां है जो इस समय यहाँ से अलग अलग पड़ाव से अलग अलग गांव होते हुए आगे बढ़ रही हैं। इसके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं जो श्रद्धालु हैं वो चल रहे हैं जय माँ नंदा और बड़ी जात, क्योंकि 12 वर्षों के बाद ये हो रही तो बड़ा उत्साह हर गांव, हर पड़ाव, हर जगहों पे इस समय देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु जो हैं बड़े उत्साह के साथ यहां पे देखने को मिल रही हैं, हर कोई मां नंदा के जयकारों के साथ, क्योंकि 12 वर्षों के बाद ये यात्रा हो रही है। हर वर्ष लोकजात यात्रा होती है, अगले वर्ष नंदा देवी राजजात यात्रा होनी है। ऐसे में जो उत्साह है 12 वर्षों का, जो भक्त और भगवान की दूरियाँ हैं वो इस वर्ष 12 वर्षों के बाद हो रही है। ऐसे में तीन जो डोलियाँ हैं, नंदा देवी मंदिर जो सिद्धपीठ मंदिर है, कुरूर से निकली थी अलग अलग रास्तों से, ये होमकुंड जो वाण के बाहर आएगा जहाँ पे इसका पूरा समापन होगा, ये सारी डोलियाँ एकत्रित होकर एक साथ निकलेंगी। ऐसे में जो माँ नंदा की 12 वर्षों के बाद ये जो बड़ी जात यात्रा हो रही है इसमें बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। चाहे नंदा देवी की डोली हो, महाराज राजेश्वरी की डोली हो, अलग अलग पड़ाव पे इस समय लगातार जा रही हैं। हर गांव में हर जगहों पे स्वागत हो रहा है, क्योंकि कई घर ऐसे हैं जिन पे ताले लग जाते हैं, लेकिन माँ नंदा की जब यात्रा होती है तो वो ताले इस समय खुल जाते हैं। हर कोई इस समय माँ नंदा के लिए एक गाँव से दूसरी गाँव, क्योंकि माँ नंदा को जो विदा करने का वो है, वो हर कोई अपनी बेटी की तरह विदा करता है। हर कोई माँ नंदा जो यहाँ की आराध्य देवी है उसे अपनी बेटी की तरह समझता है। इस समय विदाई जब एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो आधे रास्ते तक उस गांव के लोग आते हैं, आधे रास्ते तक उस गांव के लोग उन्हें लेने आते हैं जहाँ आज उनका पड़ाव होगा। अंत में ये होमकुंड रहेंगे, बेदनी और रूपकुंड से ऊपर होमकुंड तक 12 वर्षों के बाद ये डोली यात्रा जाती है। हर वर्ष भले ही लोग जाती है, लेकिन ये 12 वर्षों के बाद जो यात्रा जा रही है वो होमकुंड तक जाएगी, वहीं पे इसका समापन होगा और उसके बाद ये यात्रा समाप्त होगी। 12 वर्षों के बाद एक बार फिर से माँ नंदा की यात्रा चल रही है, तो ऐसे में हर कोई उत्साहित दिखाई दे रहा है। कमलनंदन सिलोड़ी, चमोली, GNT।
5: अब बात करते हैं बप्पा की। जयपुर में गणपति की भक्ति का रंग इस बार कुछ ऐसा चढ़ा है कि बप्पा के दरबार में मिठास भी विशाल हो गई है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में 502 किलो के दो विशाल मोदक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, तो कहीं पर हजारों लड्डुओं से भोग की तैयारी की जा रही है। पुष्य नक्षत्र का विशेष अभिषेक, संजारी का श्रृंगार और फिर गणपति जन्मोत्सव की तैयारियां, यानी 9 दिनों तक जयपुर में आस्था उत्सव और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिलेगा।

0: मोदक सामने है, मुख पर मुस्कान है और भक्तों की नजरें बस अपने विघ्नहर्ता पर टिकी हैं। मोदक के बीच गणपति विराजमान है। बड़े मोदक, छोटे मोदक, हर आकार में बप्पा के प्रिय भोग की तैयारी है। 251-251 किलो के दो विशाल मोदक, यानी कुल 502 किलो के मिठास और इनके आसपास सजे सैकड़ों दूसरे मोदक, मानो गणपति के दरबार में भक्ति ने खुद मिठास का रूप ले लिया हो। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में आज सजी ये खास झांकी गणेश महोत्सव का ऐसा आकर्षण बनी है, जिसे देखने सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालु पहुँच रहे हैं।
1: भगवान गणेश जी महाराज विराजमान मोती डूंगरी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम कि ये कड़ी है। भगवान को मोदक सबसे ज्यादा पसंद है और रुचिकर लगते हैं, इसलिए भगवान को अलग अलग तरीके के मोदक, अलग अलग आकार में मोदक, अलग अलग वजन में मोदक चढ़ा के भगवान को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ भक्त भी सहस्त्र नाम से, नामावली से, अष्टक स्तोत्र से लड्डू चढ़ा रहे हैं, वो भी इसी जन्मोत्सव की एक कड़ी है, जिससे जिसकी मनोकामना पूरी हो गई या होने चाहती है उस हिसाब से अष्टक स्तोत्र से और सहस्त्र नाम से मोदक चढ़ा रहे हैं।
0: 502 किलो के इन दो विशाल मोदकों के साथ 51-51 किलो के 5 मोदक, 21-21 किलो के 21 मोदक और 1.25 किलो के 1100 मोदक भी तैयार किए गए हैं। यही खत्म नहीं होती भोग की ये भव्यता। गणेश चतुर्थी तक करीब 2,41,000 छोटे लड्डू भी बप्पा को जिमाए जाएंगे। बापा के

0: दरबार में लगभग 2.5 लाख लड्डुओं का भोग करीब 15,000 किलो सामग्री से तैयार किया जा रहा है। यानी मोती डूंगरी में इस बार गणपति के लिए भोग भी खास है और उसका पैमाना भी खासा विशाल।
1: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, यही जयकारे हैं जो आने वाले कुछ दिन तक हर मंदिर में समय पे पूरे देश भर में सुनाई देने वाले हैं, क्योंकि गणेश उत्सव शुरू हो चुका है। और जयपुर के मोरे डोंगरी मंदिर में मैं भी मौजूद हूँ, जहाँ आज मोदक झांकी लगाई गई है। 15,000 किलो सामग्री से बनाए हुए ये 2.5 लाख मोदक भगवान गणेश जी महाराज को जिमाए जा रहे हैं, उनको अर्पित किए गए हैं। और आज के दिन ये जो मोदक झांकी है, ये आम मोदक नहीं है। इस मोदक झांकी में करीब 251 किलो के दो मोदक यहाँ पे गणेश जी महाराज को अर्पित किए गए हैं। साथ ही साथ में 51 किलो के 5 मोदक, 21 किलो के 21 मोदक, 1.25 किलो के करीब 1100 मोदक, और उसके अलावा जो छोटे छोटे मोदक है वो करीब 2,41,000 यहाँ पे अर्पित किए गए हैं। सभी भक्तों में भी बांटे जा रहे हैं। सामग्री की मैं बात करूं तो इन मोदकों को बनाने के लिए करीब 2500 किलो शुद्ध घी की सामग्री इस्तेमाल हुई है, 3000 किलो बेसन इस्तेमाल हुआ है, 9000 किलो शक्कर और करीब 500 किलो सूखे मेवे जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं।
0: इतने बड़े आयोजन के पीछे तैयारी भी महीनों से चल रही है। घी, बेसन, शक्कर और सूखे मेवों से तैयार हो रही ये मिठाई एक एक लड्डू को बापा के चरणों तक पहुंचाने की लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। दरअसल मोती डूंगरी में 7 से 15 सितंबर तक 9 दिवसीय गणेश महोत्सव चल रहा है। महिलाओं की कलश यात्रा और जलाभिषेक से शुरू हुआ ये उत्सव हर दिन गजानन के अलग स्वरूप और अलग रंग का साक्षी बनेगा। हर दिन बदलता दृश्य, हर शाम नया रंग और हर पल बाप्पा के नाम। उत्सव का एक और खास पड़ाव होगा 13 सितंबर का संजार।
1: भक्तों को कहा गया है कि आप बाहर से प्रसाद नहीं लेके आए, यहीं पे जो ये 2.5 लाख मोदक गणेश जी को चढ़ाए गए हैं वो ही आज उनको जिमाए जाएंगे, वही प्रसाद के रूप में बांटे जाएंगे। ये बहुत ही भव्य झांकी है। और ये अभी से ही नहीं, ये जो गणेश उत्सव है मोती डोंगरी मंदिर का, ये करीब 7 दिन का होता है, जो कि 7 सितंबर से शुरू हो गया था, जिसकी शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जिसके बाद में महाअभिषेक यहाँ पे 8 तारीख को किया गया। आज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो बहुत ही भव्य मोदक झांकी है। इसके अलावा आने वाले 3 दिन हम यहाँ पर फूलों की, फलों की और सब्जियों की बहुत ही खूबसूरत झांकियां देख पाएंगे, जिसके बाद में सिंजारा में मेहंदी वितरण समारोह इस मंदिर में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। तो उस दिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो मेहंदी बांटी जा रही है वो अगर लेके जाएंगे तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनको शादी करनी है तो उनकी शादी बहुत जल्द हो जाती है।
0: फिर आएगा वो दिन जिसका इंतजार हर गणेश भक्त को है, 14 सितंबर यानी गणपति का खास दिन।
1: 14 तारीख को गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, जिसमें गणेश जी महाराज यहाँ पे बहुत खूबसूरत श्रृंगार में नजर आएंगे। इस समय पे बहुत ही सारे भक्त मुझे इस मंदिर में नजर आ रहे हैं। हर एक भक्त इंतजार कर रहा है कि कब वो गणेश जी महाराज तक पहुंच पाएगा, क्योंकि आज बुधवार का दिन भी है। तो बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने शुभ काम किए हैं या फिर नई गाड़ियां ली है, अपने जो प्रॉपर्टी की डील्स है वो की है। तो ऐसे में भी कहा जाता है कि गणेश जी महाराज क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय है तो सबसे पहले उनको पूजा जाता है, तो गाड़ी की चाबी या फिर जो भी उनका शुभ काम हुआ है उससे संबंधित चीज के लिए पहले गणेश जी को भोगने आते हैं। वही भक्त आज यहाँ पे आए हैं, दर्शन करने वाले भी काफी सारे भक्त यहाँ पे आए हैं। जो गणेश उत्सव के कार्यक्रम है वो सिर्फ झांकियों तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। हर शाम यहाँ पे अलग अलग रंगारंग कल्चरल कार्यक्रम होंगे, ध्रुपद गायन जैसे कार्यक्रम होगा, कथित नृत्य के कार्यक्रम होंगे। तो ये जो गणेश उत्सव है वो बहुत ही ज्यादा खास सभी भक्तों के लिए इस बार साबित होने वाला है।
0: दोपहर 1:30 से 2 बजे तक आधे घंटे के लिए पट मंगल रहेंगे, इसके बाद फिर भक्तों के लिए कपाट खुलेंगे। जन्मोत्सव पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए इस बार व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहली बार महिलाओं के लिए अलग दर्शन लाइन होगी, 6 प्रवेश और 8 निकास द्वार रखे गए हैं, होल्डिंग एरिया भी बढ़ाए गए हैं। बुजुर्गों और निशक्त जनों के लिए 100 ई रिक्शा, 4 इलेक्ट्रिक लो फ्लोर बसें और व्यवस्थाओं को संभालने के लिए करीब 500 स्वयंसेवक तैनात रहेंगे। तो मोदकों से सजा ये दरबार अभिषेक की पवित्रता से होकर सिंजारे

के श्रृंगार तक पहुंचेगा, फिर जन्मोत्सव की खुशियों में खिलेगा और आखिर में शोभा यात्रा बनकर पूरे जयपुर को अपने रंग में रंग देगा। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: क्या आपकी खुद की फोटो आपकी समस्याओं को दूर कर सकती है? क्या खुद की फोटो की सहायता से आपको रोजगार और धन का फायदा हो सकता है? क्या खुद की फोटो आपको मुकदमेबाजी से मुक्ति दिला सकती है? आपकी अपनी फोटो से कैसे मिलेगी सफलता, कैसे बनेंगे काम, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
4: भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी शक्ति, रूस की घातक RBV BD मिसाइलों से लैस होंगे लड़ाकू विमान, सुखोई 300 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट कर सकेंगे ध्वस्त। जयपुर में गणेश महोत्सव की रौनक, मोती डूंगरी मंदिर में बप्पा को लगाया गया हजारों मोदकों का भोग, चढ़ाए गए मोदकों में 251 किलो 21 किलो के मोदक। गणपति उत्सव के रंग में रंगने लगी मुंबई, ऐतिहासिक चिंचपोकली उत्सव मंडल में इस बार भगवान वेंकटेश्वर बालाजी से प्रेरित रूप में नजर आए बप्पा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में निकली 26 छड़ियों की भव्य शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की थाप से गूंजा शहर, शोभा यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। अब आपदा से पहले मिलेगा अलर्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज ने बनाया मोबाइल ऐप आपदा सहायक, पहाड़ी इलाकों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया ऐप। प्राकृतिक आपदा के बाद हालात संभालने में जुटे नेपाल को भारत ने भेजी मदद की 8वीं खेप, 35 टन जरूरी सामान लेकर वायुसेना का विमान काठमांडू हुआ रवाना।

नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी गणेशोत्सव की परंपरा और इतिहास की। अब से चार दिन बाद गणपति उत्सव का शुभारंभ होने वाला है। हर साल 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव को पूरे भारत में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे भारतीय भी इस उत्सव को बड़े उल्लास और उमंग के साथ मनाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में गणपति उत्सव का सबसे गाढ़ा रंग अगर कहीं नजर आता है तो वो है महाराष्ट्र। उत्सव के दौरान पूरे महाराष्ट्र में बप्पा की भक्ति के रंग साफ नजर आते हैं और बताया जाता है कि गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे से हुई थी। कोंकण में गणपति पूजन की परंपरा कई राजवंशों से होते हुए छत्रपति, शिवाजी और फिर पेशवाओं के राज में भी समृद्ध होती गई। लेकिन क्या आपको मालूम है कि गणपति उत्सव के वर्तमान स्वरूप की शुरुआत कैसे हुई? तो चलिए आपको

0: ये सिर्फ एक मूर्ति का स्वागत नहीं है, ये हर साल भारत के हृदय में उठने वाला एक ऐसा ज्वार है जो धर्म, जाति और सीमाओं की हर दीवार को ढहा देता है। वो महापर्व जिसकी जड़ें इतिहास के सीने में बहुत गहराई तक धंसी हैं। शास्त्र कहते हैं कि गणेश बुद्धि के नियंत्रक हैं, विघ्नहर्ता हैं। उनसे मिला शुभता का आशीर्वाद हर शुभ कार्य की दहलीज है। उनके बिना कोई संकल्प पूरा नहीं होता, कोई यात्रा शुरू नहीं होती। हर साल उन्हीं गणनायक के लिए शहर शहर सबसे भव्य यात्रा निकाली जाती है। भाद्रपद की चतुर्थी को इस यात्रा के बाद जब बाप्पा घरों में आते हैं तो वे एक भगवान बनकर नहीं बल्कि घर के सबसे लाडले सदस्य बनकर आते हैं। कोई उन्हें दुलारता है, कोई उनके पसंदीदा मोदक बनाता है, तो कोई अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी उनके कानों में फुसफुसा कर कह देता है। लेकिन गणेशोत्सव का ये रूप हमेशा से ऐसा नहीं था। इस उत्सव को जन जन तक पहुंचने में, एक आंदोलन बनने में सदियों का सफर तय करना पड़ा। 17वीं शताब्दी में हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर में पड़ा आस्था का ये बीज आज महाराष्ट्र में श्रद्धा का वटवृक्ष बनकर लहलहा रहा है। मराठी में एक कहावत है, मनाचा गणेश मनम वसावा, यानी भगवान गणेश हमारे मन में, हमारी चेतना में बसने चाहिए। वास्तव में ये त्योहार महाराष्ट्र की चेतना में गहराई तक समाया है। इस राज्य के लिए गणपति उत्सव एक त्योहार भर नहीं है, बल्कि ये सनातन धर्म की परंपराओं को वर्तमान से जोड़ने वाली श्रद्धा की एक डोर है, जिसका एक सिरा इस क्षेत्र में शताब्दियों पहले शासन करने वाले सप्तवाहन शासकों से होता हुआ महाराष्ट्र के गर्व तिलक छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी से जुड़ता है। इतिहास बताता है कोंकण क्षेत्र में शुरुआत से ही शिवपुत्र गणेश की उपासना की जाती रही है। गजानन को यहाँ विद्या और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता रहा है। बताया जाता है कि महाराष्ट्र में सप्तवाहन, राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाओं ने गणेशोत्सव की शुरुआत करवाई थी। छत्रपति शिवाजी के दौर में गणेश उपासना की परंपरा और परवान चढ़ी। इतिहास में ये वर्णन मिलता है कि शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी माँ जीजाबाई ने पुणे के ग्राम देवता कस्बा गणपति की स्थापना की थी। 1630 में जीजाबाई अपने पति शाहजी भोसले के साथ पुणे गयी थी। उसी समय उन्होंने इस गणेश मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। कालांतर में शिवाजी महाराज ने पुणे के कस्बा गणपति को अपने साम्राज्य का केंद्र बिंदु बनाया। भोसले राजवंश के काल में ये पर्व महलों से निकलकर मावड़ के वीर सैनिकों के घरों तक पहुंचा और मराठा साम्राज्य की सांस्कृतिक पहचान का अविभाज्य अंग बन गया।
1: गणेश जी हिंदुओं के आराध्य देवत है। आराध्य का मतलब ऐसा है कि जो असाध्य काम होते, जो मुमकिन भी नहीं होते, ऐसे काम वो करते हैं। और शुरू से बहुत सालों पुराने ये बात है कि सब हिंदू उनकी पहला पूजन करते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि राजाओं ने गणेशोत्सव की प्रथा चलाई है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जो वो भी हुए हमारे देवत है, उन्होंने भी गणेश जी की उपासना की है। तो जैसे कि माता भवानी और गणेश जी दोनों की उपासना करते थे,
0: इसी तरह पुणे में पेशवाओं के निवास शनिवारवाड़ा में हर साल भव्य गणपति उत्सव का आयोजन होता था। पुणे

0: लोग और पेशवाओं के सेवक काफी उत्साह के साथ हर साल गणेश उत्सव मनाते थे। इस उत्सव के दौरान ब्राह्मणों को महाभोज दिया जाता था, गरीबों को मिठाई और पैसे बांटे जाते थे।
1: जैसे कि ये शुरुआत जो हुए, मतलब शिवाजी महाराज वो भी हमारे आराध्य देवत हैं, और उनके बाद जब मराठाओं से पेशवा आ गए वहां गद्दी पे, तो उनको वो तो आदर्श थे ना राज, छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनके आदर्श के रास्ते पर चलना उनका काम था, और पेशवाओं ने भी उसी तरह जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज पूजन करते थे, और उसी तरह उन्होंने भी ये पूजन किया और इसको आगे बढ़ाया।
0: पेशवाओं के महल शनिवार वाड़ा में कीर्तन, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। भजन कीर्तन की यह परंपरा आज भी जारी है। पेशवाओं के चरम और ब्रिटिश शासन के दौर में भी कोंकण क्षेत्र में गणपति उत्सव बदस्तूर जारी रहा, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उत्सव का स्वरूप बदलने लगा। अंग्रेजों के अत्याचार और दमनकारी नीतियों ने समाज को जोड़ने वाली आस्था के इस उत्सव का रंग समय के साथ फीका कर दिया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह उत्सव अपनी वर्तमान भव्यता की ओर बढ़ गया? आगे सुनाएंगे कहानी गणेश उत्सव के उत्थान की। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: तो ये तो बात हुई रजवाड़ों के दौर में गणेशोत्सव के स्वरूप की, लेकिन महाराष्ट्र के गणेशोत्सव का जो स्वरूप आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उसकी शुरुआत आज से लगभग 125 साल पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने करवाई थी। यानी कि इस उत्सव के राष्ट्रीय पहचान तो शिवाजी महाराज और पेशवाओं के दौर में मिली, लेकिन इसे राष्ट्रीय गौरव का विषय बनाया स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं रखा, बल्कि गणेशोत्सव को आजादी की लड़ाई और छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने का जरिया भी बनाया। आजादी के नजदीकी सालों में गणेशोत्सव ने एक आंदोलन का स्वरूप ले लिया था।

0: ये ठीक है कि गणेश उत्सव को गणपति के आगमन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वास्तव में कोंकण के बड़े हिस्से और बाद में पूरे महाराष्ट्र के लिए ये उत्सव आस्था के साथ साथ समाज के उत्थान और बदलाव की धारा का उद्गम स्थल बनता चला गया। महाराष्ट्र के गणपति उत्सव के वर्तमान अध्याय की शुरुआत ठीक इसी जगह पर हुई थी। ये पुणे के भाऊ रंगारी गणपति मंडल का पंडाल है। बताया जाता है कि यही वो पंडाल है जहां से एक लंबे दौर के बाद फिर से गणपति उत्सव की शुरुआत हुई थी, वो भी एक नए उद्देश्य के साथ। ये बात है साल 1893 की, जब मुंबई की पिधौनी में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। अपनी कुटिल नीति और स्वार्थ को सर्वोपरि रखने वाले अंग्रेजों ने दंगों को शांत करने की बजाय उस दौर में समाज और लोगों के बीच दरार बढ़ाने का काम किया। दंगों की वजह से महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके का माहौल खराब हो गया था। ऐसे समय में पुणे के भाऊ साहेब लक्ष्मण जावले यानी भाऊ साहेब रंगारी ने सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए अपने घर में भव्य गणेश पंडाल लगाकर पूजा की शुरुआत करवाई थी।
1: पुणे में भाऊ साहब रंगारी, श्रीमंत दब्बूशेठ हलवाई, ये जो उस जमाने के जो प्रतिष्ठित लोग थे, और उन्होंने ये गणपति उत्सव ये देखा था। यहाँ पुणे के उनके एक सहकारी ग्वालियर में गए थे और वहाँ उन्होंने 40 दिन का गणेश उत्सव देखा और वो कल्पना उनको बहुत अच्छी लगी। और जो आप बात कर रहे हैं सांप्रदायिक दंगे की, तो उनका एक मीटिंग हुआ लोकमान्य जी तिलक के साथ, और उस मीटिंग में इस बात का महत्व उन्होंने जाना कि इसमें गणेश फेस्टिवल, इसको सार्वजनिक यदि किया तो समाज इकट्ठा आ सकता है।
0: दरअसल ब्रिटिश शासन के उस दौर में लोग किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या उत्सव को साथ मिलकर या एक जगह इकट्ठा होकर नहीं मना सकते थे, तो ज्यादातर लोग घरों में ही पूजा किया करते थे। ऐसे में भाऊ रंगारी के घर पर हुए इस भव्य सामूहिक आयोजन की चर्चा दूर दूर तक हुई। जब ये चर्चा स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक तक पहुंची, तो उन्होंने अपने अखबार केसरी में इसकी तारीफ की। इसके बाद तिलक ने अपने पुणे के घर केसरीवाड़ा में एक सार्वजनिक गणेश पूजा का आयोजन किया था।
1: बराबर है, लोकमान्य जी तिलक जानते थे कि हर घर में पूजा होती है और उस पूजा को इकट्ठा आने की यहाँ परंपरा है, इसीलिए उन्होंने ऐसी मीटिंग करके गणेश उत्सव की उनकी जो कल्पना है वो सबके सामने रखी। और 1893 में वो पहले साल एक 6-7 गणपति बैठे, उसमें भाऊ साहेब रंगारी, श्रीमंत दब्बूशेठ, लोकमान्य जी तिलक था, वो ऐसे नामचीन जो गणेश मंडल थे वो बैठे और वो उसको लोगों ने बहुत सराहा। और नेक्स्ट ईयर 100 मंडल बैठे ऐसे, तो समाज इकट्ठा आने लगा, गणेश जी की सार्वजनिक तौर पे पूजा अर्चा होने लगी।
0: इसके बाद लोकमान्य तिलक ने ऐसी सार्वजनिक आयोजनों को बढ़ावा देने की अपील भी की। लोकमान्य तिलक ने साल 1893 में ही मुंबई के गिरगांव इलाके में पहले गणेश पूजा मंडल की स्थापना की। इस मंडल का नाम था केशवी नाइक चौल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल। ये मंडल आज भी गणपति पूजा का आयोजन करता है।
2: एकता के धागा का नाम था गणेशोत्सव। बाप्पा के चरणों में बाप्पा के सामने सब झुक जाते हैं और इसी कारण एक ही पूजन, एक ही भजन, एक ही देवता, और देवता से लेके एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्र तक ये पूरी परंपरा चलनी चाहिए, इसके युग प्रवर्तक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। और खुद का उदाहरण सार्थक करने के लिए अपने ही घर में केसरीवाड़ा में उन्होंने गणेशोत्सव की शुरुआत की।
0: इस तरह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाया। उस वक्त लोकमान्य तिलक को भी यह एहसास नहीं होगा कि आगे चलकर उनका यही प्रयास एक आंदोलन बनने वाला था। बाल गंगाधर तिलक जिस समय गणेश पूजा को सार्वजनिक बनाने की बात कर रहे थे, ये वो दौर था जब जाति, वर्ग और वर्ण के आधार पर कई लोगों के लिए मंदिरों में प्रवेश तक वर्जित था। ऐसे में तिलक और उनके साथियों ने गणेशोत्सव को छुआछूत के खिलाफ अभियान का रूप दे दिया। 1907 में तिलक ने शुक्रवार पेट के गणेश पंडाल में पूजन किया, जबकि ये एक रेड लाइट एरिया था। इसके अलावा भी लोकमान्य तिलक अकोला और सांगली के कई ऐसे पूजा पंडालों में गए जहां उस दौर में अछूतों की संख्या ज्यादा मानी जाती थी। नतीजा ये हुआ कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तो गणेश पूजा पंडालों की संख्या बढ़ी ही, बल्कि इस उत्सव का प्रचार दूसरे प्रांतों तक हो गया।
1: वो जमाना ही ऐसे था, तब वो छूत अछूत वो बातें चलती थी। तो इसी उस जमाने में दगड़ूशेठ मंडल ने एक अनोखा कदम उठाया था। आज की तारीख में भी केसरी के अखबार में वो फोटो है कि हमारे यहाँ जो साफ स्वच्छता करने वाले जो कर्मचारी थे, जो टॉयलेट भी स्वच्छता करते हैं, उस एक जोड़ी को, भंगी जोड़ी को गणेश जी के पूजा आरती हमने करवाई। उस टाइम बहुत लोगों ने, जो कर्मठ थे, उन्होंने टीका भी की गणेश मंडल पे दगड़ूशेठ के, लेकिन बहुत लोगों ने सराहा और तब जाके ये छूत अछूत की बातें कम होने लगी।
0: लोकमान्य तिलक ने उस दौरान गणेशोत्सव को जो स्वरूप दिया, उससे भगवान गजानन राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। 1910 का साल आते आते गणेश पूजा पंडाल बस सार्वजनिक संदेश का मंच भर नहीं रह गए, बल्कि इनके जरिए स्वतंत्रता संग्राम की आवाजें भी उठने लगी।
1: गणेश उत्सव मंडल से ही कार्यकर्ता बनता है, उस कार्यकर्ता से वहाँ के एरिया का वो पॉलिटिकल नेता बनता है, और उससे वहाँ जो आगे जाता है वो राज्य की और देश की सेवा करता है। ऐसे बहुत सारे राजकीय नेताओं को गणेश उत्सव ने निर्माण किया है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गणेश उत्सव रस्ते पे होता है, सार्वजनिक तौर पे होता है। अलग अलग विचारधारा वाले कार्यकर्ता एक मंच पे आते हैं और अपनी विचारधारा शेयर करते हैं, लेकिन उनके उनको जो कॉमन बात है वो गणेश जी है, गणेश जी की भक्ति है।
0: उस दौर में क्रांतिकारियों ने गणेश उत्सव का उपयोग आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए किया। महाराष्ट्र के नागपुर, वर्धा, अमरावती जैसे शहरों में गणेश उत्सव के जरिए आजादी के आंदोलन को धार दी गई। गणेश उत्सव में वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बैरिस्टर जयकर, रेंगलर परांजपे, पंडित मदन मोहन मालवीय, मौलिक चंद्र शर्मा, बैरिस्टर चक्रवर्ती, दादा साहेब खारपड़े और सरोजिनी नायडू जैसे मुखर और प्रखर जननेता भाषण देने आने लगे। उत्सव के दौरान पंडाल में गणपति को नेताओं और क्रांतिकारियों के वेश में सजाया जाने लगा।
1: उन नेताओं का प्रभाव भारत के देशवासियों पर था, और गणेश जी ऐसी देवता है कि सबको ऐसा लगता है कि ये गणेश जी के ही गण है। गणेश जी बोले तो गणों के समूह के जो अधिपति है, समूह के ईश्वर है, गणनायक है, और उन नेताओं में वो गणेश गण देखते थे। इसलिए गणेश उत्सव में उसका रिफ्लेक्शन आता था कि गणेश जी की मूर्ति उन नेताओं से मिलती जुलती मूर्तिकार बनाने लगे, ताकि वो लोगों के मन में जो बात है वो एक गणेश जी के दूत है, गणेश जी के गण है, तो उसको सोच के उन्होंने ऐसी मूर्तियां उन नेताओं के फेस की उस जमाने में बने हुए।
0: देखते ही देखते गणेश उत्सव स्वाधीनता की लड़ाई का एक मंच बन गया था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेज भी गणेश उत्सव के बढ़ते स्वरूप से घबराने लगे थे। इस बारे में रॉलेट समिति रिपोर्ट में भी चिंता जताई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया, गणेश उत्सव के दौरान युवकों की टोलियां सड़कों पर घूम घूम कर अंग्रेजी शासन विरोधी गीत गाती हैं और स्कूली बच्चे पर्चे बांटते हैं जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने और मराठों से शिवाजी की तरह विद्रोह करने का आह्वान होता है। साथ ही अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए धार्मिक संघर्ष को जरूरी बताया जाता है। कभी पुणे में शुरू हुई गणेश पूजा आजादी के लगभग 8 दशक बाद अब केवल महाराष्ट्र में ही हजारों सार्वजनिक गणेश मंडल हो चुके हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, MP, UP और गुजरात में भी काफी संख्या में गणेशोत्सव मंडल हैं। इतना ही नहीं, अब तो विदेशों में भी गणेशोत्सव मनाया जाने लगा है। दुनिया भर में फैले भारतीय हर साल धूमधाम से गणपति उत्सव मनाते हैं। भारत में अब गणेश उत्सव के 10 दिनों में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार होता है। पंडालों की बढ़ती संख्या के साथ साथ धीरे धीरे इस उत्सव से जुड़ी एक अलग अर्थव्यवस्था तैयार हुई, जिससे आज लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। 19वीं सदी के अंत में लोकमान्य तिलक का लगाया वो पौधा आज श्रद्धा का विशाल वृक्ष बनकर लहलहा रहा है, जिसकी छांव तले समाज और आस्था साथ साथ पल रहे हैं, चल रहे हैं, बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: महाराष्ट्र की बात और है, लेकिन अब गणेशोत्सव देश के ज्यादातर हिस्सों में खूब धूमधाम से मनाया जाने लगा है। इस बार भी बप्पा की आराधना का ये उत्सव बेहद उत्साह से मनाया जाएगा। देश भर में शहर शहर गणपति उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर आज आई है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेशोत्सव के मौके पर 7 दिनों तक भव्य उत्सव चलता है और इसका शुभारंभ हो चुका है। आज मोती डूंगरी मंदिर में अभी गणपति को 2.5 लाख लड्डुओं का झांगी सजाई गई। गणेश चतुर्थी तक भगवान गणेश को कुल 15,000 किलो सामग्री से तैयार हुए 2.50 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। इस मोदक झांकी में सबसे खास बात है 251 किलोग्राम के 2 विशाल मोदक, और इसके अलावा बप्पा के लिए 51 किलोग्राम के 5 मोदक और 21 किलोग्राम के 21 मोदक भी तैयार किए गए हैं। सुबह 5 बजे से ही भक्त इस विशेष झांकी के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में आज बाहर से लाया गया प्रसाद नहीं चढ़ाया जा रहा है, अब क्योंकि लड्डू विशालकाय हैं, सो उन्हें बनाने के लिए सामग्री में हजारों किलो के हिसाब से इस्तेमाल सामग्री हुई है। और इस मोदक झांकी में क्या है खास, जयपुर से मेरी सहयोगी रिदम बता रही है।
1: जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में मैं भी मौजूद हूँ, जहाँ आज मोदक झांकी लगाई गई है। 15,000 किलो सामग्री से बनाए हुए ये 2.5 लाख मोदक भगवान गणेश जी महाराज को जिमाए जा रहे हैं, उनको अर्पित किए गए हैं। और आज के दिन ये जो मोदक झांकी है ये आम मोदक नहीं है, इस मोदक झांकी में करीब 251 किलो के 2 मोदक यहाँ पे गणेश जी महाराज को अर्पित किए गए हैं। साथ ही साथ में 51 किलो के 5 मोदक, 21 किलो के 21 मोदक, 1.25 किलो के करीब 1100 मोदक, और उसके अलावा जो छोटे छोटे मोदक हैं वो करीब 2,41,000 यहाँ पे अर्पित किए गए हैं, सभी भक्तों में भी बांटे जा रहे हैं। सामग्री की मैं बात करूं तो इन मोदकों को बनाने के लिए करीब 2500 किलो शुद्ध घी की सामग्री इस्तेमाल हुई है, 3000 किलो बेसन इस्तेमाल हुआ है, 9000 किलो शक्कर और करीब 500 किलो सूखे मेवे जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। आज सभी भक्तों को कहा गया है कि आप बाहर से प्रसाद नहीं लेके आए, यहीं पे जो ये 2.5 लाख मोदक गणेश जी को चढ़ाए गए हैं वो ही आज उनको जिमाए जाएंगे, वही प्रसाद के रूप में बांटे जाएंगे। ये बहुत ही भव्य झांकी है, और ये अभी से ही नहीं, ये जो गणेश उत्सव है मोती डूंगरी मंदिर का, ये करीब 7 दिन का होता है, जो कि 7 सितंबर से शुरू हो गया था, जिसकी शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जिसके बाद में महाअभिषेक यहाँ पे 8 तारीख को किया गया। आज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो बहुत ही भव्य मोदक झांकी है, इसके अलावा आने वाले 3 दिन हम यहाँ पर फूलों की, फलों की और सब्जियों की बहुत ही खूबसूरत झांकियां देख पाएंगे, जिसके बाद में सिंजारा में मेहंदी वितरण समारोह इस मंदिर में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। तो उस दिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो मेहंदी बांटी जा रही है वो अगर लेके जाएंगे तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनको शादी करनी है तो उनकी शादी बहुत जल्द हो जाती है, शुभ मुहूर्त जो है वो उस मेहंदी को लगाने से बहुत जल्द आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो झांकी है ये बहुत खास है। 14 तारीख को गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, जिसमें गणेश जी महाराज यहाँ पे बहुत खूबसूरत श्रृंगार में नजर आएंगे। इस समय पे बहुत ही सारे भक्त मुझे इस मंदिर में नजर आ रहे हैं, हर एक भक्त इंतजार कर रहा है कि कब वो गणेश जी महाराज तक पहुंच पाएगा, क्योंकि आज बुधवार का दिन भी है। तो बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने शुभ काम किए हैं या फिर नई गाड़ियां ली है, अपनी जो प्रॉपर्टी की डील्स है वो की है, तो ऐसे में भी कहा जाता है कि गणेश जी महाराज आज क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय है तो सबसे पहले उनको पूजा जाता है, तो गाड़ी की चाबी या फिर जो भी उनका शुभ काम हुआ है उससे संबंधित चीज के लिए पहले गणेश जी को ढोकने आते हैं। वही भक्त आज यहाँ पे आए हैं, दर्शन करने वाले भी काफी सारे भक्त यहाँ पे आए हैं। जो गणेश उत्सव के कार्यक्रम है वो सिर्फ झांकियों तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, हर शाम यहाँ पे अलग अलग रंगारंग कल्चरल कार्यक्रम होंगे, ध्रुपद गायन जैसा कार्यक्रम होगा, कथक नृत्य के कार्यक्रम होंगे। तो ये जो गणेश उत्सव है वो बहुत ही ज्यादा खास सभी भक्तों के लिए इस बार साबित होने वाला है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, भुवनेश्वर, जयपुर।
2: भगवान को मोदक सबसे ज्यादा पसंद है और रुचिकर लगते हैं, इसलिए भगवान को अलग अलग तरीके के मोदक, अलग अलग आकार में मोदक, अलग अलग वजन में मोदक चढ़ा के भगवान को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ भक्त भी सहस्त्र नाम से, नामावली से, अष्टक स्तोत्र से लड्डू चढ़ा रहे हैं, वो भी इसी जन्मोत्सव की एक कड़ी है, जिससे जिसकी मनोकामना पूरी हो गई या होने चाहती है वो उस हिसाब से अष्टक स्तोत्र से और सहस्त्र नाम से मोदक चढ़ा रहे हैं।
0: और GNT स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: क्या आपकी खुद की फोटो आपकी समस्याओं को दूर कर सकती है? क्या खुद की फोटो की सहायता से आपको रोजगार और धन का फायदा हो सकता है? क्या खुद की फोटो आपको मुकदमेबाजी से मुक्ति दिला सकती है? आपकी अपनी फोटो से कैसे मिलेगी सफलता, कैसे बनेंगे काम, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
0: और आपको समझाएंगे,
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी शक्ति, रूस की घातक RBV BD मिसाइलों से लैस होंगे लड़ाकू विमान, सुखोई 300 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट कर सकेंगे ध्वस्त। जयपुर में गणेश महोत्सव की रौनक, मोती डूंगरी मंदिर में बप्पा को लगाया गया हजारों मोदकों का भोग, चढ़ाए गए मोदकों में 251 किलो 21 किलो के मोदक। गणपति उत्सव के रंग में रंगने लगी मुंबई, ऐतिहासिक चिंचपोकली उत्सव मंडल में इस बार भगवान वेंकटेश्वर बालाजी से प्रेरित रूप में नजर आए बप्पा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में निकली 26 छड़ियों की भव्य शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की थाप से गूंजा शहर, शोभा यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। अब आपदा से पहले मिलेगा अलर्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज ने बनाया मोबाइल ऐप आपदा सहायक, पहाड़ी इलाकों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया ऐप। प्राकृतिक आपदा के बाद हालात संभालने में जुटे नेपाल को भारत ने भेजी मदद की 8वीं खेप, 35 टन जरूरी सामान लेकर वायुसेना का विमान काठमांडू हुआ रवाना।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं हिमालय के महाकुंभ की, उस यात्रा की जो उत्तराखंड की लोक परंपरा और धार्मिक आस्था से गहरी जुड़ाव रखती है और प्रकृति के साथ इंसानी रिश्ते की एक मिसाल है। ये यात्रा वैसे तो देवी नंदा की है, लेकिन 12 साल के अंतराल पर उनकी विदाई मायके से बेटी की तरह की जाती है। कुछ दिन पहले शुरू हुई ये यात्रा अब अलग अलग गांव और पगडंडियों से होते हुए आगे बढ़ रही है। लगातार हर गांव, कस्बे और इलाके में देवी नंदा की डोली का भव्य स्वागत किया जा रहा है। लोकगीत गाए जा रहे हैं और जयकारे लगातार लगाए जा रहे हैं। आज आपको इस बड़ी जात यात्रा की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही देवी नंदा का महत्व, उनकी कहानी भी समझाने की कोशिश करेंगे। हिमालय के ऊंचे शिखर पर इस यात्रा का समापन होता है, लेकिन उससे पहले यात्रा के अहम पड़ाव और उनसे जुड़ी कहानियां भी सुनाएंगे आपको। हिमालय की वादियों में इन दिनों आस्था का एक ऐसा सफर चल रहा है जिसमें देवी को सिर्फ पूजा नहीं जाता बल्कि बेटी मानकर विदा किया जाता है। करीब 280 किलोमीटर की इस यात्रा को दुनिया की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा माना जाता है, जिसमें देवी नंदा की डोली के साथ श्रद्धालु ऊंचे पहाड़ की मुश्किल चढ़ाई करते हैं। इस वक्त देवी नंदा की 3 डोलियां सभी गांवों से होकर गुजर रही है। 12 साल बाद होने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में पूरा पहाड़ शामिल होता है। ये यात्रा परंपरा की है, प्रकृति के साथ रिश्तों की है और उस अटूट विश्वास की भी है जो सदियों से देवभूमि की पहचान बना हुआ है।

बादलों से घिरे हिमालय के शिखरों पर यूं तो मौन का बसेरा है, पर गौर से सुनिए, हरे जंगलों के साए में गुजर रही पगडंडियों पर उत्सव का संगीत गूंज रहा है। इन गीतों में पहाड़ों की सामूहिक आस्था है, प्रार्थना है, जीवंत संगीत है। और सदियों से प्रकृति के साथ चले आ रहे पारिवारिक रिश्ते की एक खूबसूरत कहानी है, जिसमें पहाड़ों की देवी सिर्फ देवी नहीं है बल्कि बेटी है, जिसकी मायके से विदाई हो रही है

बेटी ससुराल जा रही है तो खुशी लाजमी है, पर मन उदास भी है और आंखों में नमी भी है। बेटी बहन की तरह विदा करते हुए देवी माँ से गांव समाज परिवार सभी के लिए आशीर्वाद मांगा जा रहा है और शुभकामनाएं दी जा रही हैं।

0: देवभूमि की आराध्य देवी माँ नंदा की विदाई में पूरा पहाड़ साथ चल रहा है। गांव से निकली उनकी डोली गांव, कस्बे, जंगल, बुग्याल और दुर्गम हिमालय को पार करते हुए हेमकुट जा रही है, लेकिन अभी तो सफर शुरू हुआ है। चमोली के सिद्धपीठ करूर से जो माँ नंदा का मायका माना जाता है, इस यात्रा की 5 सितंबर को शुरुआत हुई। पदार, दशोली और बन की 3 डोलियां कैलाश के लिए रवाना हुई, जो अलग अलग गांव से होते हुए अपने पड़ाव की तरफ बढ़ रही हैं। 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर गांव-गांव माँ नंदा की डोलियां पहुंच रही हैं और उनके स्वागत में लोकगीतों, जागरों और ढोल दमाऊं की थाप से पहाड़ों की वादियां गूंज रही हैं। जिस तरह बेटी की विदाई के अवसर पर मंगल गीत गाए जाते हैं, डोली के गांव में पहुंचते ही महिलाएं गीत और जागर गा रही हैं। हर रास्ते, हर चौक पर भक्ति भाव से मां नंदी की डोली का स्वागत नृत्य संगीत और जयकारे से हो रहा है। बड़े बुजुर्ग हों या फिर बच्चे, इस अद्भुत धार्मिक यात्रा में सभी शामिल हैं और नाचते, झूमते, गाते डोली के संग चल रहे हैं, क्योंकि ये अवसर हर साल नहीं आता। इसीलिए ये जोश, ये भावना और ये भक्ति स्वाभाविक है।
1: माता को अपनी माँ मान के, साक्षी मान के हम उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और हम माता से यही विनती करेंगे, माता हम सबकी रक्षा करे और सारे प्रदेश देशवासियों की रक्षा करे और माता की कृपा हम सभी भक्तों पे बनी रहे।
2: जय माता दी, जय मां नंदा। आज की यात्रा बड़ी अच्छी रही है। इससे पहले 12 साल पहले हुई थी, उससे अब बेटर हो रही है और हम लोग माता जी का बड़ा स्वागत कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपनी बिटिया के तरह इनको विदा कर रहे हैं और माँ हम लोगों का सब पे आशीर्वाद बना रहे हैं।
3: बहुत ज़्यादा उत्साह है, हम इसको बहुत मानते हैं अपनी बेटी की तरह और हम इसको रोज विदा करते हैं, वहाँ तक तो पहुँचाते हैं जहाँ मंदिर है ऊपर सीमल देवी मंदिर, और इसको हम बहुत भव्य दृष्टि से देखते हैं और मनाते हैं।
4: सबसे पहले जो हमारी कुरूर से माँ नंदा का आगमन हुआ बंड क्षेत्र में, तो सबसे पहले हमारे पूरे गांव का भ्रमण करती है, दूसरे में एक एक दिन पड़ाव भी रहता है उनका, और उसके बाद हम लास्ट में जाएंगे अपना बंड भूमियाल का मंदिर है और वहां से हमारी जो है 11 बजे करीबन हम कैलाश के लिए हमारी माता प्रस्थान करेगी।
0: देवी नंदा को लेकर पहाड़ों में कई कथाएं हैं। लोक परंपराओं में उन्हें हिमवंत और मूणावती की बेटी और भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती का रूप माना जाता है, लेकिन कहीं नंदा को नंद महाराज की बेटी के रूप में भी याद किया जाता है तो कहीं उन्हें राजा भानु प्रताप की पुत्री बताया जाता है। कहानी है कि नंदा एक राजकुमारी थी जिनसे एक राक्षस राजा जबरन विवाह करना चाहता था, लेकिन नंदा ने भागकर पहाड़ की शरण ले ली, उसी चोटी पर जिसे अब हम उनके नाम से जानते हैं। बर्फ और रहस्य से ढकी पहाड़ियां उनका शाश्वत आश्रय बन गई। लोक कथाओं में पूजित माँ नंदा उत्तराखंड की आराध्य देवी हैं, जिनके प्रति आस्था और भक्ति 12 साल में एक बार अद्भुत रूप से सामने आती है। 280 किलोमीटर की ये तीर्थयात्रा पहाड़ों की सामूहिक धार्मिक आस्था की प्रतीक बन जाती है, इसीलिए तो इसे हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। ये यात्रा है जो हिमालय की ऊंची घाटियों से होकर नंदा देवी के घर तक पौराणिक यात्रा के मार्ग का अनुसरण करती है। 3 हफ्तों की इस यात्रा में हजारों लोग, साधु और भक्त शामिल होते हैं। ये जो 4 सींगों वाला मेढ़ा है, इस यात्रा की अगुवाई करता है और मान्यता ये है कि मेढ़ा देवी द्वारा ही ये भेजा जाता है। 4 सींग वाला चौसिंगा खाडू इस यात्रा की पहचान है। लोक विश्वास के अनुसार यात्रा से पहले इनका जन्म होता है और इसकी विशेष देखभाल की जाती है। आगे चौसिंगा खाड़ू और पीछे नंदा की डोली और फिर श्रद्धालुओं का कारवां। जब यात्रा हेमकुंड पहुंचती है तब खाड़ू की भी विदाई होती है। नंदा के वस्त्र और आभूषण उसके ऊपर रखे जाते हैं, श्रद्धालु उसके माथे पर अक्षत और चंदन लगाते हैं और मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि वो नंदा को सुरक्षित ससुराल पहुंचाए। लेकिन आखिरी पड़ाव आने में अभी देरी है, अभी तो डोलियां गांव-गांव जा रही हैं।
5: निरंतर ये यात्रा हमारी जो चल रही है, तो प्रत्येक गांव का भ्रमण किया जा रहा है और हमारी माँ बहनें अपनी कोई बेटी के रूप में, कोई माँ के रूप में, कोई इष्ट के रूप में माँ की माँ से मनौती भी मांगती है और उसके साथ साथ कैलाश के लिए माँ नंदा को विदा करती है। तो सभी में बड़ा उत्साह है और आप देख रहे होंगे कि आज निरंतर हम प्रातः काल से जो है हमारे पूरे बंड क्षेत्र में भ्रमण हो रहा है। सुबह दिगोली गांव से होकर के हम लोहा गांव, लोहा से गडरा, गडरा से अगथला, अगथला से पीपलकोटी में पहुंच गए और रात्रि निवास हमारा जो है आज नौरख में होगा। कल नंदा देवी का हमारा जो सिद्धपीठ यहाँ पे बंड क्षेत्र की है वहाँ पर बहुत बृहद पूजा में की जाएगी और रात्रि का निवास कम्यार गांव में होगा।
0: यात्रा के दौरान कई स्थानों पर डोलियों को उफनते गधेरों और नालों को पार कर आगे बढ़ना पड़ रहा है। दुर्गम पहाड़ी रास्तों और खराब मौसम के बीच श्रद्धालु की आस्था और उत्साह जरा भी कम नहीं है।
6: 5 सितंबर से सिद्धपीठ क्रूड से 3 डोलियां जो बड़ी जात के लिए 3 डोलियां निकल चुकी हैं, जिसमें बधाण की, दसोली की और ये बंड की। आज बंड की डोली अपने 5वें पड़ाव नौरख पीपलकोटी में पहुंच चुकी है और इस तरह से सारी जो तीनों डोलियां हैं अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण करने के पश्चात 13 तारीख को बंड की डोली का मिलन जो दसोली की डोली है उसके साथ होगा रामणी में और 15 तारीख को जो हमारी तीसरी डोली है जो बधाण की है वाण में तीनों डोलियां मिलेंगी। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के बंड क्षेत्र, दसोली क्षेत्र, बधाण क्षेत्र, वहां के देवता के निशान, वहां की छतोलियां और कुमाऊं से, नौटी से, इन सभी जगहों से बड़ी जात यात्रा में सारे देव छतोलियां, देव डोलियां, निशान ये सारे मिलेंगे और उसके बाद अगला पड़ाव उसके बाद होमकुंड तक होगा और सप्तमी और अष्टमी के दिन होमकुंड में पूजा करने के पश्चात सारी डोलियां अपने अपने सिद्धि पीठों को वापस आएंगी।
0: उत्तराखंड की ये महान धार्मिक यात्रा एक देवी या कहीं की बेटी की विदाई है जिसने दुनिया के बजाय पहाड़ों को चुना। इस बेटी के लिए जो प्यार और भक्ति भाव पहाड़ों में है उसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: नंदा देवी न केवल भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है बल्कि उत्तराखंड की पूजनीय देवी भी है। उनके नाम का अर्थ है आनंद देने वाली देवी। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए देवी नंदा एक दिव्य रक्षक, एक बेटी और एक रानी है जिनकी मौजूदगी न सिर्फ लोक कथाओं में है बल्कि रोजमर्रा के जीवन में है। उनकी यात्रा से जुड़े कई पड़ाव हैं और उनसे जुड़ी कई कहानियां भी हैं। चलिए आपको इस यात्रा से जुड़ी मान्यताएं और लोक कथाएं बताते हैं।
8: कपड़ों और गहनों से सजाकर डोली में बैठाकर बेटी की तरह देवी माँ की विदाई। हैरानी नहीं कि नंदा के लिए गाए जाने वाले गीतों में बेटी के बिछड़ने का दर्द सुनाई देता है। लोक कथाओं में विदाई से पहले देवी नंदा बुजुर्गों के गले लगती हैं और महिलाएं उन्हें ससुराल में रहने के तौर तरीके समझाती हैं, स्नेह देती हैं, दुलार करती हैं। इसीलिए ये यात्रा किसी धार्मिक अनुष्ठान से कहीं आगे निकल जाती है, जैसे पूरा पहाड़ एक घर हो और घर से बेटी विदा हो रही हो। कुरूर से निकलने के बाद नंदा की यात्रा धीरे धीरे गांव से आगे बढ़ रही है। हर पड़ाव के साथ यात्रा का आकार बढ़ता जा रहा है। कहीं जागर लगे हैं, कहीं लोग भी गूंज रहे हैं। नंदकेसरी में अलग अलग क्षेत्रों से देवी देवताओं की डोलियां और छंतोलियां पहुंचती हैं, जहां कुरुड़ की नंदा भी आकर मिलती हैं। लेकिन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है वाण गांव। यात्रा 15 सितंबर को यहां पहुंचेगी, जहां देवी नंदा का मिलन उनके धर्म भाई लाटू देवता से होगा। लोक परंपरा में लाटू को नंदा का चचेरा या धर्म भाई माना गया है। वाण के बाद यात्रा ऊंचाई की ओर बढ़ती है और सामने आता है वेदनी बुग्याल। जहां ठंड बढ़ जाती है और सांसों पर ऊंचाई का असर महसूस होने लगता है, लेकिन यात्रियों के कदम नहीं रुकते। फिर आती है एक जगह पातर नचौड़िया। कहानी है कि उज्जैन के राजा यश धवल ने जब यात्रा की थी तो यहाँ पर नृत्य का आयोजन हुआ था। इससे देवी नाराज हो गईं और नर्तकियों को पत्थर में बदल दिया, इसीलिए नाम पड़ा पाथर या पातर नचौड़िया। इसके बाद यात्रा पहुँचती है रूपकुंड। ऊंचे हिमालय में मौजूद ये झील मानव कंकालों के कारण मशहूर है। कंकालों की कहानी भी राजा यश धवल से जुड़ी है, जिन्होंने यात्रा के नियम भंग किए और देवी के कोप से उनका परिवार और साथी संगी मारे गए। लोक विश्वास है कि ये कंकाल उनके ही हैं। यात्रा का अंतिम पड़ाव है होमकुंड, जहां पहुंचकर मानंदा अपनी मायके की अंतिम सीमा पार करती है। 20 सितंबर को होमकुंड में पूजा और हवन होगा। देवी नंदा के वस्त्र और आभूषण चौसिंगा खाड़ू के ऊपर रखे जाएंगे और खाड़ू की विदाई होगी। इसके बाद साथ गए लोग वापस लौटने लगते हैं। लेकिन अभी तो यात्रा आधी भी नहीं हुई है, अभी तो पहाड़ों में रौनक है, उत्सव है। गांव में एक बार फिर चहल पहल लौट आई है। वर्षों से बंद पड़े घरों के ताले खुल गए हैं, क्योंकि प्रवासी परिवार अपने गांव लौट आए हैं। नंदा देवी की यात्रा यहां के लोगों की जड़ों और अपनी माटी से जोड़ती है। मेहमान आए हैं, इसलिए उनके लिए सामूहिक भोजन की व्यवस्था की गई है।
9: भगवती नंदा खुद राजा राजेश्वरी है और कामाख्या खुद राजा राजेश्वरी का ही स्थान है, तो माई की प्रेरणा से ही मैं मैया के साथ आया हूँ। और मूल रूप से मान लीजिए कि भगवती हमारी माँ है और राजराजेश्वरी भगवती यहाँ की बेटी हैं, तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मैं अपने मामा के वहाँ हूँ, और जैसे मामा के वहाँ सबको प्यार मिलता है वैसा ही प्यार मुझे यहाँ पर मिल रहा है।
8: पहाड़ों की ये यात्रा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये ठीक ठीक कोई नहीं जानता। हाँ, ये जरूर है कि लोक कथा और परंपरा के दम पर ये विरासत आगे बढ़ती जा रही है। इसका महत्व सिर्फ गढ़वाल तक नहीं है, बल्कि कुमाऊं में भी नंदा सुनंदा की पूजा और मेलों की परंपरा है। फिलहाल लोकगीतों की स्वर लहरियों, जागरों की गूंज और ढोल दमाओं की थाप पर यात्रा गांव के पगडंडियों से गुजर रही है। चेहरे पर उत्सव की उमंग है और आंखों में विदाई के आंसू।
10: चमोली जनपद में 12 वर्षों के बाद मां नंदा की डोली इस समय नंदा देवी बड़ी जात की यात्रा इस समय चल रही है। ये डोलियां है जो इस समय यहां से अलग अलग पड़ाव से अलग अलग गांव होते हुए आगे बढ़ रही हैं। इसके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं जो श्रद्धालु हैं वो चल रहे हैं जय मां नंदा और बड़ी जात, क्योंकि 12 वर्षों के बाद ये हो रही, तो बड़ा उत्साह हर गांव हर पड़ाव हर जगह पे इस समय देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु जो हैं बड़े उत्साह के साथ यहां पे देखने को मिल रही हैं, हर कोई मां नंदा के जयकारों के साथ, क्योंकि 12 वर्षों के बाद ये यात्रा हो रही है। हर वर्ष लोकजात यात्रा होती है, अगले वर्ष नंदा देवी राजजात यात्रा होनी है। ऐसे में जो उत्साह है 12 वर्षों का, जो भक्त और भगवान की दूरियां हैं वो इस वर्ष 12 वर्षों के बाद हो रही है। ऐसे में तीन जो डोलियां हैं, नंदा देवी मंदिर जो सिद्धपीठ मंदिर है कुरूर से निकली थी अलग अलग रास्तों से, ये होमकुंड जो वाण के बाहर आएगा जहाँ पे इसका पूरा समापन होगा, ये सारी डोलियां एकत्रित होकर एक साथ निकलेंगी। ऐसे में जो मानंदा की 12 वर्षों के बाद ये जो बड़ी जात यात्रा हो रही है इसमें बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। चाहे नंदा देवी की डोली हो, महाराज राजेश्वरी की डोली हो, अलग अलग पड़ाव पे इस समय लगातार जा रही हैं। हर गांव में हर जगहों पे स्वागत हो रहा है, क्योंकि कई घर ऐसे हैं जिन पे ताले लग जाते हैं, लेकिन मां नंदा की जब यात्रा होती है तो वो ताले इस समय खुल जाते हैं। हर कोई इस समय मां नंदा के लिए एक गांव से दूसरी गांव, क्योंकि मां नंदा को जो विदा करने का वो है, वो हर कोई अपनी बेटी की तरह विदा करता है। हर कोई मां नंदा जो यहाँ की आराध्या देवी है उसे अपनी बेटी की तरह समझता है। इस समय विदाई जब एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो आधे रास्ते तक उस गांव के लोग आते हैं, आधे रास्ते तक उस गांव के लोग उन्हें लेने आते हैं जहां आज उनका पड़ाव होगा। अंत में ये होमकुंड रहेंगे, बेदनी और रूपकुंड से ऊपर होमकुंड तक 12 वर्षों के बाद ये डोली यात्रा जाती है। हर वर्ष भले ही लोग जाती है, लेकिन ये 12 वर्षों के बाद जो यात्रा जा रही है वो होमकुंड तक जाएगी, वहीं पे इसका समापन होगा और उसके बाद ये यात्रा समाप्त होगी। 12 वर्षों के बाद एक बार फिर से मां नंदा की यात्रा चल रही है, तो ऐसे में हर कोई उत्साहित दिखाई दे रहा है। कमलनंदन सिलोड़ी, चमोली, GNT।
7: और बात करते हैं बप्पा की। जयपुर में गणपति की भक्ति का रंग इस बार कुछ ऐसा चढ़ा है कि बप्पा के दरबार में मिठास भी विशाल हो गई है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में 502 किलो के दो विशाल मोदक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो कहीं पर हजारों लड्डुओं से भोग की तैयारी की जा रही है। पुष्य नक्षत्र का विशेष अभिषेक, संजारे का श्रृंगार और फिर गणपति जन्मोत्सव की तैयारियां, यानी 9 दिनों तक जयपुर में आस्था उत्सव और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिलेगा।

0: मोदक सामने है, मुख पर मुस्कान है और भक्तों की नजरें बस अपने विघ्नहर्ता पर टिकी हैं। मोदक के बीच गणपति विराजमान है। बड़े मोदक, छोटे मोदक, हर आकार में बप्पा के प्रिय भोग की तैयारी है। 251-251 किलो के दो विशाल मोदक, यानी कुल 502 किलो के मिठास और इनके आसपास सजे सैकड़ों दूसरे मोदक, मानो गणपति के दरबार में भक्ति ने खुद मिठास का रूप ले लिया हो। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में आज सजी यह खास झांकी गणेश महोत्सव का ऐसा आकर्षण बनी है, जिसे देखने सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालु पहुँच रहे हैं।
1: भगवान गणेश जी महाराज विराजमान मोती डूंगरी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम कि ये कड़ी है। भगवान को मोदक सबसे ज्यादा पसंद है और रुचिकर लगते हैं, इसलिए भगवान को अलग अलग तरीके के मोदक, अलग अलग आकार में मोदक, अलग अलग वजन में मोदक चढ़ा के भगवान को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ भक्त भी सहस्त्र नाम से, नामावली से, अष्टक स्तोत्र से लड्डू चढ़ा रहे हैं, वो भी इसी जन्मोत्सव की एक कड़ी है, जिससे जिसकी मनोकामना पूरी होगी या होने चाहती है उस हिसाब से अष्टक स्तोत्र से और सहस्त्र नाम से मोदक चढ़ा रहे हैं।
0: 502 किलो के इन दो विशाल मोदकों के साथ 51-51 किलो के 5 मोदक, 21-21 किलो के 21 मोदक और 1.25 किलो के 1100 मोदक भी तैयार किए गए हैं। यही खत्म नहीं होती भोग की ये भव्यता। गणेश चतुर्थी तक करीब 2,41,000 छोटे लड्डू भी बप्पा को जिमाए जाएंगे। बप्पा के दरबार में लगभग 2.5 लाख लड्डुओं का भोग करीब 15,000 किलो सामग्री से तैयार किया जा रहा है। यानी मोती डूंगरी में इस बार गणपति के लिए भोग भी खास है और उसका पैमाना भी खासा विशाल।
2: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, यही जयकारे हैं जो आने वाले कुछ दिन तक हर मंदिर में समय पे पूरे देश भर में सुनाई देने वाले हैं, क्योंकि गणेश उत्सव शुरू हो चुका है। और जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में मैं भी मौजूद हूँ, जहाँ आज मोदक झांकी लगाई गई है। 15,000 किलो सामग्री से बनाए हुए ये 2.5 लाख मोदक भगवान गणेश जी महाराज को जिमाए जा रहे हैं, उनको अर्पित किए गए हैं। और आज के दिन ये जो मोदक झांकी है, ये आम मोदक नहीं है। इस मोदक झांकी में करीब 251 किलो के दो मोदक यहाँ पे गणेश जी महाराज को अर्पित किए गए हैं, साथ ही साथ में 51-51 किलो के 5 मोदक, 21-21 किलो के 21 मोदक, 1.25 किलो के करीब 1100 मोदक और उसके अलावा जो छोटे छोटे मोदक हैं वो करीब 2,41,000 यहाँ पे अर्पित किए गए हैं, सभी भक्तों में भी बांटे जा रहे हैं। सामग्री की मैं बात करूं तो इन मोदकों को बनाने के लिए करीब 2500 किलो शुद्ध घी की सामग्री इस्तेमाल हुई है, 3000 किलो बेसन इस्तेमाल हुआ है, 9000 किलो शक्कर और करीब 500 किलो सूखे मेवे जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं।
0: इतने बड़े आयोजन के पीछे तैयारी भी महीनों से चल रही है। घी, बेसन, शक्कर और सूखे मेवों से तैयार हो रही ये मिठाई एक एक लड्डू को बापा के चरणों तक पहुंचाने की लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। दरअसल मोती डूंगरी में 7 से 15 सितंबर तक 9 दिवसीय गणेश महोत्सव चल रहा है। महिलाओं की कलश यात्रा और जलाभिषेक से शुरू हुआ ये उत्सव हर दिन गजानन के अलग स्वरूप और अलग रंग का साक्षी बनेगा। हर दिन बदलता दृश्य, हर शाम नया रंग और हर पल बाप्पा के नाम। उत्सव का एक और खास पड़ाव होगा 13 सितंबर का संजार।
2: भक्तों को कहा गया है कि आप बाहर से प्रसाद नहीं लेके आए, यहीं पे जो ये 2.5 लाख मोदक गणेश जी को चढ़ाए गए हैं वो ही आज उनको जिमाए जाएंगे, वही प्रसाद के रूप में बांटे जाएंगे। ये बहुत ही भव्य झांकी है और ये अभी से ही नहीं, ये जो गणेश उत्सव है मोती डूंगरी मंदिर का, ये करीब 7 दिन का होता है, जो कि 7 सितंबर से शुरू हो गया था, जिसकी शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जिसके बाद में महाअभिषेक यहाँ पे 8 तारीख को किया गया। आज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो बहुत ही भव्य मोदक झांकी है। इसके अलावा आने वाले 3 दिन हम यहाँ पर फूलों की, फलों की और सब्जियों की बहुत ही खूबसूरत झांकियां देख पाएंगे, जिसके बाद में सिंजारा में मेहंदी वितरण समारोह इस मंदिर में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। तो उस दिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो मेहंदी बांटी जा रही है वो अगर लेके जाएंगे तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनको शादी करनी है तो उनकी शादी बहुत जल्द हो जाती है।
0: फिर आएगा वो दिन जिसका इंतजार हर गणेश भक्त को है, 14 सितंबर यानी गणपति का खास दिन।
2: 14 तारीख को गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, जिसमें गणेश जी महाराज यहाँ पर बहुत खूबसूरत श्रृंगार में नजर आएंगे। इस समय पे बहुत ही सारे भक्त मुझे इस मंदिर में नजर आ रहे हैं। हर एक भक्त इंतजार कर रहा है कि कब वो गणेश जी महाराज से पहुंच पाएगा, क्योंकि आज बुधवार का दिन भी है। तो बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने शुभ काम किए हैं या फिर नई गाड़ियां ली है, अपने जो प्रॉपर्टी की डील्स है वो की है। तो ऐसे में भी कहा जाता है कि गणेश जी महाराज क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय है तो सबसे पहले उनको पूजा जाता है, तो गाड़ी की चाबी या फिर जो भी उनका शुभ काम हुआ है उससे संबंधित चीज के लिए पहले गणेश जी को भोगने आते हैं। वही भक्त आज यहाँ पे आए हैं, दर्शन करने वाले भी काफी सारे भक्त यहाँ पे आए हैं। जो गणेश उत्सव के कार्यक्रम है वो सिर्फ झांकियों तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। हर शाम यहाँ पे अलग अलग रंगारंग कल्चरल कार्यक्रम होंगे, ध्रुपद गायन जैसे कार्यक्रम होगा, कथित नृत्य के कार्यक्रम होंगे। तो ये जो गणेश उत्सव है वो बहुत ही ज्यादा खास सभी भक्तों के लिए इस बार साबित होने वाला है।
0: दोपहर 1:30 से 2 बजे तक आधे घंटे के लिए पट मंगल रहेंगे, इसके बाद फिर भक्तों के लिए कपाट खुलेंगे। जन्मोत्सव पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए इस बार व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहली बार महिलाओं के लिए अलग दर्शन लाइन होगी, 6 प्रवेश और 8 निकास द्वार रखे गए हैं, होल्डिंग एरिया भी बढ़ाए गए हैं। बुजुर्गों और निशक्त जनों के लिए 100 ई रिक्शा, 4 इलेक्ट्रिक लो फ्लोर बसें और व्यवस्थाओं को संभालने के लिए करीब 500 स्वयंसेवक तैनात रहेंगे। तो मोदकों से सजा ये दरबार अभिषेक की पवित्रता से होकर सिंजारे के श्रृंगार तक पहुंचेगा, फिर जन्मोत्सव की खुशियों में खिलेगा और आखिर में शोभा यात्रा बनकर पूरे जयपुर को अपने रंग में रंग देगा। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से

परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: क्या आपकी खुद की फोटो आपकी समस्याओं को दूर कर सकती है? क्या खुद की फोटो की सहायता से आपको रोजगार और धन का फायदा हो सकता है? क्या खुद की फोटो आपको मुकदमेबाजी से मुक्ति दिला सकती है? आपकी अपनी फोटो से कैसे मिलेगी सफलता, कैसे बनेंगे काम, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी शक्ति, रूस की घातक RBV BD मिसाइलों से लैस होंगे लड़ाकू विमान, सुखोई 300 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट कर सकेंगे ध्वस्त। जयपुर में गणेश महोत्सव की रौनक, मोती डूंगरी मंदिर में बप्पा को लगाया गया हजारों मोदकों का भोग, चढ़ाए गए मोदकों में 251 किलो 21 किलो के मोदक। गणपति उत्सव के रंग में रंगने लगी मुंबई, ऐतिहासिक चिंचपोकली उत्सव मंडल में इस बार भगवान वेंकटेश्वर बालाजी से प्रेरित रूप में नजर आए बप्पा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में निकली 26 छड़ियों की भव्य शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की थाप से गूंजा शहर, शोभा यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। आपदा से पहले मिलेगा अलर्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज ने बनाया मोबाइल ऐप आपदा सहायक, पहाड़ी इलाकों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया ऐप। प्राकृतिक आपदा के बाद हालात संभालने में जुटे नेपाल को भारत ने भेजी मदद की 8वीं खेप, 35 टन जरूरी सामान लेकर वायुसेना का विमान काठमांडू हुआ रवाना।

नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी गणेशोत्सव की परंपरा और इतिहास की। अब से चार दिन बाद गणपति उत्सव का शुभारंभ होने वाला है। हर साल 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव को पूरे भारत में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे भारतीय भी इस उत्सव को बड़े उल्लास और उमंग के साथ मनाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में गणपति उत्सव का सबसे गाढ़ा रंग अगर कहीं नजर आता है तो वो है महाराष्ट्र। उत्सव के दौरान पूरे महाराष्ट्र में बप्पा की भक्ति के रंग साफ नजर आते हैं और बताया जाता है कि गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे से हुई थी। कोंकण में गणपति पूजन की परंपरा कई राजवंशों से होते हुए छत्रपति शिवाजी और फिर पेशवाओं के राज में भी समृद्ध होती गई। लेकिन क्या आपको मालूम है कि गणपति उत्सव के वर्तमान स्वरूप की शुरुआत कैसे हुई? तो चलिए आपको दिखाते हैं गणपति उत्सव के श्री गणेश की कहानी।

ये सिर्फ एक मूर्ति का स्वागत नहीं है, ये हर साल भारत के हृदय में उठने वाला एक ऐसा ज्वार है जो धर्म, जाति और सीमाओं की हर दीवार को ढहा देता है।

0: तक धसी हैं। शास्त्र कहते हैं कि गणेश बुद्धि के नियंत्रक हैं, विघ्नहर्ता हैं। उनसे मिला शुभता का आशीर्वाद हर शुभ कार्य की दहलीज है। उनके बिना कोई संकल्प पूरा नहीं होता, कोई यात्रा शुरू नहीं होती। हर साल उन्हीं गणनायक के लिए शहर शहर सबसे भव्य यात्रा निकाली जाती है। भाद्रपद की चतुर्थी को इस यात्रा के बाद जब बाप्पा घरों में आते हैं तो वे एक भगवान बनकर नहीं बल्कि घर के सबसे लाडले सदस्य बनकर आते हैं। कोई उन्हें दुलारता है, कोई उनके पसंदीदा मोदक बनाता है, तो कोई अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी उनके कानों में फुसफुसा कर कह देता है। लेकिन गणेशोत्सव का ये रूप हमेशा से ऐसा नहीं था। इस उत्सव को जन जन तक पहुंचने में, एक आंदोलन बनने में सदियों का सफर तय करना पड़ा। 17वीं शताब्दी में हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर में पड़ा आस्था का ये बीज आज महाराष्ट्र में श्रद्धा का वटवृक्ष बनकर लहलहा रहा है। मराठी में एक कहावत है, मनाचा गणेश मनम वसावा, यानी भगवान गणेश हमारे मन में, हमारी चेतना में बसने चाहिए। वास्तव में ये त्योहार महाराष्ट्र की चेतना में गहराई तक समाया है। इस राज्य के लिए गणपति उत्सव एक त्योहार भर नहीं है बल्कि ये सनातन धर्म की परंपराओं को वर्तमान से जोड़ने वाली श्रद्धा की एक डोर है, जिसका एक सिरा इस क्षेत्र में शताब्दियों पहले शासन करने वाले सप्तवाहन शासकों से होता हुआ महाराष्ट्र के गर्व तिलक छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी से जुड़ता है। इतिहास बताता है कोंकण क्षेत्र में शुरुआत से ही शिवपुत्र गणेश की उपासना की जाती रही है। गजानन को यहाँ विद्या और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता रहा है। बताया जाता है कि महाराष्ट्र में सप्तवाहन, राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाओं ने गणेशोत्सव की शुरुआत करवाई थी। छत्रपति शिवाजी के दौर में गणेश उपासना की परंपरा और परवान चढ़ी। इतिहास में ये वर्णन मिलता है कि शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी माँ जीजाबाई ने पुणे के ग्राम देवता कस्बा गणपति की स्थापना की थी। 1630 में जीजाबाई अपने पति शाहजी भोसले के साथ पुणे गई थी। उसी समय उन्होंने इस गणेश मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। कालांतर में शिवाजी महाराज ने पुणे के कस्बा गणपति को अपने साम्राज्य का केंद्र बिंदु बनाया। भोसले राजवंश के काल में ये पर्व महलों से निकलकर मावल के वीर सैनिकों के घरों तक पहुंचा और मराठा साम्राज्य की सांस्कृतिक पहचान का अविभाज्य अंग बन गया।
1: गणेश जी हिंदुओं के आराध्य देवत है। आराध्य का मतलब ऐसा है कि जो असाध्य काम होते, जो मुमकिन भी नहीं होते, ऐसे कामों करते हैं। और शुरू से बहुत सालों पुराने ये बात है कि सब हिंदू उनकी पहला पूजन करते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सातवां राष्ट्रकूट चालुक्य आदि राजाओं ने गणेशोत्सव की प्रथा चलाई है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जो वो भी हुए हमारे देवत है, उन्होंने भी गणेश जी की उपासना की है। तो जैसे कि माता भवानी और गणेश जी दोनों की उपासना करते थे।
0: इसी तरह पुणे में पेशवाओं के निवास शनिवारवाड़ा में हर साल भव्य गणपति उत्सव का आयोजन होता था। पुणे के लोग और पेशवाओं के सेवक काफी उत्साह के साथ हर साल गणेश उत्सव मनाते थे। इस उत्सव के दौरान ब्राह्मणों को महाभोज दिया जाता था, गरीबों को मिठाई और पैसे बांटे जाते थे।
1: जैसे कि ये शुरुआत जो हुए, मतलब शिवाजी महाराज वो भी हमारे आराध्य देवत हैं। और उनके बाद जब मराठाओं से पेशवा आ गए वहां गद्दी पे, तो उनको वो तो आदर्श थे ना छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनके आदर्श के रास्ते पर चलना उनका काम था। और पेशवाओं ने भी उसी तरह जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज पूजन करते थे, और उसी तरह उन्होंने भी ये पूजन किया और इसको आगे बढ़ाया।
0: पेशवाओं के महल शनिवार वाड़ा में कीर्तन, भजन।

0: सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। भजन कीर्तन की यह परंपरा आज भी जारी है। पेशवाओं के चरम और ब्रिटिश शासन के दौर में भी कोंकण क्षेत्र में गणपति उत्सव बदस्तूर जारी रहा, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उत्सव का स्वरूप बदलने लगा। अंग्रेजों के अत्याचार और दमनकारी नीतियों ने समाज को जोड़ने वाली आस्था के इस उत्सव का रंग समय के साथ फीका कर दिया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह उत्सव अपनी वर्तमान भव्यता की ओर बढ़ गया? आगे सुनाएंगे कहानी गणेश उत्सव के उत्थान की। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: तो ये तो बात हुई रजवाड़ों के दौर में गणेशोत्सव के स्वरूप की, लेकिन महाराष्ट्र के गणेशोत्सव का जो स्वरूप आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उसकी शुरुआत आज से लगभग 125 साल पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने करवाई थी। यानी कि इस उत्सव के राष्ट्रीय पहचान तो शिवाजी महाराज और पेशवाओं के दौर में मिली, लेकिन इसे राष्ट्रीय गौरव का विषय बनाया स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं रखा, बल्कि गणेशोत्सव को आजादी की लड़ाई और छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने का जरिया भी बनाया। आजादी के नजदीकी सालों में गणेशोत्सव ने एक आंदोलन का स्वरूप ले लिया था।

0: ये ठीक है कि गणेश उत्सव को गणपति के आगमन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वास्तव में कोंकण के बड़े हिस्से और बाद में पूरे महाराष्ट्र के लिए ये उत्सव आस्था के साथ साथ समाज के उत्थान और बदलाव की धारा का उद्गम स्थल बनता चला गया। महाराष्ट्र के गणपति उत्सव के वर्तमान अध्याय की शुरुआत ठीक इसी जगह पर हुई थी। ये पुणे के भाऊ रंगारी गणपति मंडल का पंडाल है। बताया जाता है कि यही वो पंडाल है जहां से एक लंबे दौर के बाद फिर से गणपति उत्सव की शुरुआत हुई थी, वो भी एक नए उद्देश्य के साथ। ये बात है साल 1893 की, जब मुंबई की पिधौनी में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। अपनी कुटिल नीति और स्वार्थ को सर्वोपरि रखने वाले अंग्रेजों ने दंगों को शांत करने की बजाय उस दौर में समाज और लोगों के बीच दरार बढ़ाने का काम किया। दंगों की वजह से महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके का माहौल खराब हो गया था। ऐसे समय में पुणे के भाऊ साहेब लक्ष्मण जावले यानी भाऊ साहेब रंगारी ने सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए अपने घर में भव्य गणेश पंडाल लगाकर पूजा की शुरुआत करवाई थी।
1: पुणे में भाऊ साहब रंगारी, श्रीमंत दब्बूशेठ हलवाई, ये जो उस जमाने के जो प्रतिष्ठित लोग थे, और उन्होंने ये गणपति उत्सव ये देखा था। यहाँ पुणे के उनके एक सहकारी ग्वालियर में गए थे और वहां उन्होंने 40 दिन का गणेश उत्सव देखा और वो कल्पना उनको बहुत अच्छी लगी। और जो आप बात कर रहे सांप्रदायिक दंगे की, तो उनका एक मीटिंग हुआ लोकमान्य जी तिलक के साथ, और उस मीटिंग में इस बात का महत्व उन्होंने जाना कि इसमें गणेश फेस्टिवल इसको सार्वजनिक यदि किया तो समाज इकट्ठा आ सकता है।
0: दरअसल ब्रिटिश शासन के उस दौर में लोग किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या उत्सव को साथ मिलकर या एक जगह इकट्ठा होकर नहीं मना सकते थे, तो ज्यादातर लोग घरों में ही पूजा किया करते थे। ऐसे में भाऊ रंगारी के घर पर हुए इस भव्य सामूहिक आयोजन की चर्चा दूर दूर तक हुई। जब ये चर्चा स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक तक पहुंची, तो उन्होंने अपने अखबार केसरी में इसकी तारीफ की। इसके बाद तिलक ने अपने पुणे के घर केसरी वाड़ा में एक सार्वजनिक गणेश पूजा का आयोजन किया था।
1: बराबर है, लोकमान्य जी तिलक जानते थे कि हर घर में पूजा होती है और उस पूजा को इकट्ठा आने की यहाँ परंपरा है, इसीलिए उन्होंने ऐसी मीटिंग करके गणेश उत्सव की उनकी जो कल्पना है वो सबके सामने रखी। और 1893 में वो पहले साल एक 6-7 गणपति बैठे, उसमें भाऊ साहेब रंगारी, श्रीमंत दब्बूशेठ, लोकमान्य जी तिलक का, वैसे नामचीन जो गणेश मंडल थे वो बैठे और वो उसको लोगों ने बहुत सराहा। और नेक्स्ट ईयर 100 मंडल बैठे ऐसे, तो समाज इकट्ठा आने लगा, गणेश जी की सार्वजनिक तौर पे पूजा अर्चना होने लगी।
0: इसके बाद लोकमान्य तिलक ने ऐसी सार्वजनिक आयोजनों को बढ़ावा देने की अपील भी की। लोकमान्य तिलक ने साल 1893 में ही मुंबई के गिरगांव इलाके में पहले गणेश पूजा मंडल की स्थापना की। इस मंडल का नाम था केशवी नाईक चौल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल। ये मंडल आज भी गणपति पूजा का आयोजन करता है।
2: एकता के धागा का नाम था गणेशोत्सव। बाप्पा के चरणों में बाप्पा के सामने सब झुक जाते हैं और इसी कारण एक ही पूजन, एक ही भजन, एक ही देवता और देवता से लेके एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्र तक ये पूरी परंपरा चलनी चाहिए, इसके युग प्रवर्तक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। और खुद का उदाहरण सार्थक करने के लिए अपने ही घर में केसरीवाड़ा में उन्होंने गणेशोत्सव की शुरुआत की।
0: इस तरह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाया। उस वक्त लोकमान्य तिलक को भी यह एहसास नहीं होगा कि आगे चलकर उनका यही प्रयास एक आंदोलन बनने वाला था। बाल गंगाधर तिलक जिस समय गणेश पूजा को सार्वजनिक बनाने की बात कर रहे थे, ये वो दौर था जब जाति, वर्ग और वर्ण के आधार पर कई लोगों के लिए मंदिरों में प्रवेश तक वर्जित था। ऐसे में तिलक और उनके साथियों ने गणेशोत्सव को छुआछूत के खिलाफ अभियान का रूप दे दिया। 1907 में तिलक ने शुक्रवार पेट के गणेश पंडाल में पूजन किया, जबकि ये एक रेड लाइट एरिया था। इसके अलावा भी लोकमान्य तिलक अकोला और सांगली के कई ऐसे पूजा पंडालों में गए जहां उस दौर में अछूतों की संख्या ज्यादा मानी जाती थी। नतीजा ये हुआ कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तो गणेश पूजा पंडालों की संख्या बढ़ी ही, बल्कि इस उत्सव का प्रचार दूसरे प्रांतों तक हो गया।
1: वो जमाना ही ऐसे था, तब वो छूत अछूत वो बातें चलती थी, तो इसी उस जमाने में दगड़ूशेठ मंडल ने एक अनोखा कदम उठाया था। आज की तारीख में भी केसरी के अखबार में वो फोटो है कि हमारे यहाँ जो साफ स्वच्छता करने वाले जो कर्मचारी थे, जो टॉयलेट भी स्वच्छता करते हैं, उस एक जोड़ी को, भंगी जोड़ी को गणेश जी के पूजा आरती हमने करवाई। उस टाइम बहुत लोगों ने, जो कर्मठ थे, उन्होंने टीका भी की गणेश मंडल पे दगड़ूशेठ के, लेकिन बहुत लोगों ने सराहा और तब जाके ये छूत अछूत की बातें कम होने लगी।
0: लोकमान्य तिलक ने उस दौरान गणेशोत्सव को जो स्वरूप दिया, उससे भगवान गजानन राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। 1910 का साल आते आते गणेश पूजा पंडाल बस सार्वजनिक संदेश का मंच भर नहीं रह गए, बल्कि इनके जरिए स्वतंत्रता संग्राम की आवाजें भी उठने लगी।
1: गणेश उत्सव मंडल से ही कार्यकर्ता बनता है, उस कार्यकर्ता से वहाँ के एरिया का वो पॉलिटिकल नेता बनता है, और उससे वहाँ जो जो आगे जाता है वो राज्य की और देश की सेवा करता है। ऐसे बहुत सारे राजकीय नेताओं को गणेश उत्सव ने निर्माण किया है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गणेश उत्सव रस्ते पे होता है, सार्वजनिक तौर पे होता है। अलग अलग विचारधारा वाले कार्यकर्ता एक मंच पे आते हैं और अपनी विचारधारा शेयर करते हैं, लेकिन उनके उनको जो कॉमन बात है वो गणेश जी है, गणेश जी की भक्ति है।
0: उस दौर में क्रांतिकारियों ने गणेश उत्सव का उपयोग आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए किया। महाराष्ट्र के नागपुर, वर्धा, अमरावती जैसे शहरों में गणेश उत्सव के जरिए आजादी के आंदोलन को धार दी गई। गणेश उत्सव में वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बैरिस्टर जयकर, रेंगलर परांजपे, पंडित मदन मोहन मालवीय, मौलिक चंद्र शर्मा, बैरिस्टर चक्रवर्ती, दादा साहेब खारपड़े और सरोजिनी नायडू जैसे मुखर और प्रखर जननेता भाषण देने आने लगे। उत्सव के दौरान पंडाल में गणपति को नेताओं और क्रांतिकारियों के वेश में सजाया जाने लगा।
1: उन नेताओं का प्रभाव भारत के देशवासियों पर था, और गणेश जी ऐसी देवता है कि सबको ऐसा लगता है कि ये गणेश जी के ही गण है। गणेश जी बोले तो गणों के समूह के जो अधिपति है, समूह के ईश्वर है, गणनायक है, और उन नेताओं में वो गणेश गण देखते थे। इसलिए गणेश उत्सव में उसका रिफ्लेक्शन आता था कि गणेश जी की मूर्ति उन नेताओं से मिलती जुलती मूर्तिकार बनाने लगे, ताकि वो लोगों के मन में जो बात है वो एक गणेश जी के एक दूत है, गणेश जी के गण है, तो उसको सोच के उन्होंने ऐसी मूर्तियां उन नेताओं के फेस की उस जमाने में बने हुए।
0: देखते ही देखते गणेश उत्सव स्वाधीनता की लड़ाई का एक मंच बन गया था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेज भी गणेश उत्सव के बढ़ते स्वरूप से घबराने लगे थे। इस बारे में रॉलेट समिति रिपोर्ट में भी चिंता जताई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया, गणेश उत्सव के दौरान युवकों की टोलियां सड़कों पर घूम घूम कर अंग्रेजी शासन विरोधी गीत गाती हैं और स्कूली बच्चे पर्चे बांटते हैं, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने और मराठों से शिवाजी की तरह विद्रोह करने का आह्वान होता है। साथ ही अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए धार्मिक संघर्ष को जरूरी बताया जाता है। कभी पुणे में शुरू हुई गणेश पूजा आजादी के लगभग 8 दशक बाद अब केवल महाराष्ट्र में ही हजारों सार्वजनिक गणेश मंडल हो चुके हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, MP, UP और गुजरात में भी काफी संख्या में गणेश उत्सव मंडल हैं। इतना ही नहीं, अब तो विदेशों में भी गणेश उत्सव मनाया जाने लगा है। दुनिया भर में फैले भारतीय हर साल धूमधाम से गणपति उत्सव मनाते हैं। भारत में अब गणेश उत्सव के 10 दिनों में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार होता है। पंडालों की बढ़ती संख्या के साथ साथ धीरे धीरे इस उत्सव से जुड़ी एक अलग अर्थव्यवस्था तैयार हुई, जिससे आज लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। 19वीं सदी के अंत में लोकमान्य तिलक का लगाया वो पौधा आज श्रद्धा का विशाल वृक्ष बनकर लहलहा रहा है, जिसकी छांव तले समाज और आस्था साथ साथ पल रहे हैं, चल रहे हैं, बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: महाराष्ट्र की बात और है, लेकिन अब गणेशोत्सव देश के ज्यादातर हिस्सों में खूब धूमधाम से मनाया जाने लगा है। इस बार भी बप्पा की आराधना का ये उत्सव बेहद उत्साह से मनाया जाएगा। देश भर में शहर शहर गणपति उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर आज आई है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेशोत्सव के मौके पर 7 दिनों तक भव्य उत्सव चलता है और इसका शुभारंभ हो चुका है। आज मोती डूंगरी मंदिर में अभी गणपति को 2.5 लाख लड्डुओं का झांगी सजाई गई। गणेश चतुर्थी तक भगवान गणेश को कुल 15,000 किलो सामग्री से तैयार हुए 2.50 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। इस मोदक झांकी में सबसे खास बात है 251 किलोग्राम के 2 विशाल मोदक, और इसके अलावा बप्पा के लिए 51 किलोग्राम के 5 मोदक और 21 किलोग्राम के 21 मोदक भी तैयार किए गए हैं। सुबह 5 बजे से ही भक्त इस विशेष झांकी के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में आज बाहर से लाया गया प्रसाद नहीं चढ़ाया जा रहा है, अब क्योंकि लड्डू विशालकाय हैं, सो उन्हें बनाने के लिए सामग्री में हजारों किलो के हिसाब से इस्तेमाल सामग्री हुई है। और इस मोदक झांकी में क्या है खास, जयपुर से मेरी सहयोगी रिदम बता रही है।
1: जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में मैं भी मौजूद हूँ, जहाँ आज मोदक झांकी लगाई गई है। 15,000 किलो सामग्री से बनाए हुए ये 2.5 लाख मोदक भगवान गणेश जी महाराज को जिमाए जा रहे हैं, उनको अर्पित किए गए हैं। और आज के दिन ये जो मोदक झांकी है ये आम मोदक नहीं है, इस मोदक झांकी में करीब 251 किलो के 2 मोदक यहाँ पे गणेश जी महाराज को अर्पित किए गए हैं। साथ ही साथ में 51 किलो के 5 मोदक, 21 किलो के 21 मोदक, 1.25 किलो के करीब 1100 मोदक, और उसके अलावा जो छोटे छोटे मोदक हैं वो करीब 2,41,000 यहाँ पे अर्पित किए गए हैं, सभी भक्तों में भी बांटे जा रहे हैं। सामग्री की मैं बात करूं तो इन मोदकों को बनाने के लिए करीब 2500 किलो शुद्ध घी की सामग्री इस्तेमाल हुई है, 3000 किलो बेसन इस्तेमाल हुआ है, 9000 किलो शक्कर और करीब 500 किलो सूखे मेवे जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। आज सभी भक्तों को कहा गया है कि आप बाहर से प्रसाद नहीं लेके आए, यहीं पे जो ये 2.5 लाख मोदक गणेश जी को चढ़ाए गए हैं वो ही आज उनको जिमाए जाएंगे, वही प्रसाद के रूप में बांटे जाएंगे। ये बहुत ही भव्य झांकी है, और ये अभी से ही नहीं, ये जो गणेश उत्सव है मोती डूंगरी मंदिर का, ये करीब 7 दिन का होता है, जो कि 7 सितंबर से शुरू हो गया था, जिसकी शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जिसके बाद में महाअभिषेक यहाँ पे 8 तारीख को किया गया। आज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो बहुत ही भव्य मोदक झांकी है। इसके अलावा आने वाले 3 दिन हम यहाँ पर फूलों की, फलों की और सब्जियों की बहुत ही खूबसूरत झांकियां देख पाएंगे, जिसके बाद में सिंजारा में मेहंदी वितरण समारोह इस मंदिर में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। तो उस दिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो मेहंदी बांटी जा रही है वो अगर लेके जाएंगे तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनको शादी करनी है तो उनकी शादी बहुत जल्द हो जाती है, शुभ मुहूर्त जो है वो उस मेहंदी को लगाने से बहुत जल्द आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो झांकी है ये बहुत खास है। 14 तारीख को गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, जिसमें गणेश जी महाराज यहाँ पे बहुत खूबसूरत श्रृंगार में नजर आएंगे। इस समय पे बहुत ही सारे भक्त मुझे इस मंदिर में नजर आ रहे हैं, हर एक भक्त इंतजार कर रहा है कि कब वो गणेश जी महाराज तक पहुंच पाएगा, क्योंकि आज बुधवार का दिन भी है। तो बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने शुभ काम किए हैं या फिर नई गाड़ियां ली है, अपनी जो प्रॉपर्टी की डील्स है वो की है, तो ऐसे में भी कहा जाता है कि गणेश जी महाराज आज क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय है तो सबसे पहले उनको पूजा जाता है, तो गाड़ी की चाबी या फिर जो भी उनका शुभ काम हुआ है उससे संबंधित चीज के लिए पहले गणेश जी को ढोकने आते हैं। वही भक्त आज यहाँ पे आए हैं, दर्शन करने वाले भी काफी सारे भक्त यहाँ पे आए हैं। जो गणेश उत्सव के कार्यक्रम है वो सिर्फ झांकियों तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, हर शाम यहाँ पे अलग अलग रंगारंग कल्चरल कार्यक्रम होंगे, ध्रुपद गायन जैसा कार्यक्रम होगा, कथक नृत्य के कार्यक्रम होंगे। तो ये जो गणेश उत्सव है वो बहुत ही ज्यादा खास सभी भक्तों के लिए इस बार साबित होने वाला है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, भुवनेश्वरी, जयपुर।
2: भगवान को मोदक सबसे ज्यादा पसंद है और रुचिकर लगते हैं, इसलिए भगवान को अलग अलग तरीके के मोदक अलग अलग आकार में मोदक, अलग अलग वजन में मोदक चढ़ा के भगवान को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ भक्त भी सहस्त्र नाम से, नामावली से, अष्टक स्तोत्र से लड्डू चढ़ा रहे हैं, वो भी इसी जन्मोत्सव की एक कड़ी है, जिससे जिसकी मनोकामना पूरी हो गई या होने चाहती है वो उस हिसाब से अष्टक स्तोत्र से और सहस्त्र नाम से मोदक चढ़ा रहे हैं।
0: और जीएनटी स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।